0: जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी विपक्ष के बीच में अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
1: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
2: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
3: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
2: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
4: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं, ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते हैं।
5: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
6: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन ये जो दिमागी नक्सल ये अर्बन नक्सल्स हैं।
7: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
2: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिमागी नक्सल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है।
8: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार में जनता कूदती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में, इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: रांची में छात्रों का आंदोलन जारी और आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगे मानी नहीं गई तो वो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब की बार उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांगा है, साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर भी वो अड़ गए हैं।
9: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
10: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान, हम नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। स्थिति बहुत ही गंभीर है।
9: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरें या बचें।
10: बुखार भी आ रही, सरकार को कोई चिंता नहीं। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मनसा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
9: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है। छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के HDU में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था। ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
11: झंडा फहराने से रोका जा रहा
12: है,
11: ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है?
9: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
13: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
9: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी। लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में है। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और CBI जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को CM आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। कहीं सड़कें दरिया बन गए हैं, कहीं पर नदियां किनारों को काटकर बह रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने चटक रही हैं, लोग मुश्किल में।
9: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टाने चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिम्बी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सावरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसी चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी THGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: तो पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी भी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफी वहाँ पर दबी हुई है, जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी उसमें।
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, सरते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय दो ही दलदल हो रही है। पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें, तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविगेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए, ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात और बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल जमींदोज हो रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तेज जल धारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का जो सिलसिला है जारी है।
0: ये पुल ढह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ढहने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की है। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को दरका दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
4: अभी ये पुलिया में जो बनी है नई, तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी, और ये वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रोड बंद करे और दोनों साइड होगा पक्का काम करे।
5: उनके महीने में लास्ट जून में उद्घाटन हुआ था इसका, और अभी 17 अगस्त है, अभी वहाँ से ढह चुकी है पुलिया। इधर साइडों में भी दो जगह मतलब जुड़ा हुआ है साइडों में दो तरफ, तो इसका ढसने की संभावना है इसकी भी।
6: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
5: ये भी गिर सकती है,
7: ये और भी जब जर्जर हो रही है, ये भी की दो दो इंच छूट चुकी है।
6: अच्छा,
7: साइडों में झुका हुआ है।
0: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ नदी पर बना ये पुल बह गया। हैरानी इस बात की है कि इस पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन ये 10 बरसात भी नहीं झेल सका। निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहाँ तहाँ दरारें दिखाई दे रही थी। 2 दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आंखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए। जिस पुल से होकर दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही होती थी, वो देखते ही देखते पानी की तेज धारा में गायब हो चुका था। कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी, और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। वाहनों की आवाजाही के साथ पुल के अलग अलग हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी थी और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो।
3: रूस और यूक्रेन के बीच घमासान भयंकर हो गया है। रूस ने कीव के आसमान में जबरदस्त बमबारी की, आसपास के इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की गई, जबकि यूक्रेन ने मॉस्को रीजन में मिसाइलों और ड्रोन से बम बरसाकर तबाही मचाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो हथियारों के होड़ को और तेज करने का ऐलान भी कर दिया है।
8: मिसाइलों और ड्रोन से बमों की बरसात, कीव में रूसी हमलों से बढ़ी आफत। यूक्रेन ने मॉस्को रीजन में की एयर स्ट्राइक। ना तो हमले रोकने के लिए रूस तैयार है, ना ही घुटने टेकने को यूक्रेन तैयार। नतीजा इन तस्वीरों के तौर पर आपके सामने है। आग की लपटों में घिरे इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों की तबाही की गवाही दे रहे हैं। हर दूसरे दिन मिसाइलें बम बरसा रही हैं, हर दूसरे दिन ड्रोन डरा रहे हैं और तेल डिपो से लेकर रिहायशी इलाकों में तबाही का तांडव मचा रहे हैं। यूक्रेन के जेपोरिजिया में रूसी हथियारों ने ताजा हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर डाला है। कीव रीजन के कई इलाकों को रूस ने एक साथ निशाना बनाया। इन हमलों में स्कंदर एम, S-400 और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया। आसमान तक उठती आग और धुएं के इस गुब्बार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान झेलना पड़ा होगा। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हर हमले का उसकी सेनाएं जवाब दे रही हैं। मॉस्को रीजन में यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोनों से एयर स्ट्राइक की। रूस का कहना है कि उसने 100 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी कई ड्रोन बम बरसाने और तबाही मचाने में कामयाब हो गए। मॉस्को के पास कोलेदिनो इलाके में वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब में लगी ये आग कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। हजारों स्क्वायर फीट में फैले इस सेंटर में एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरा परिसर आग की लपटों में घिर गया। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में काफी ऊंचाई तक फैल गया। इसके अलावा यूक्रेन ने समारा इलाके में फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला किया। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी सेना ने यूक्रेनी सरहद से करीब 900 किलोमीटर दूर बने रूसी ठिकाने को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ उन्होंने हथियारों की होड़ में यूक्रेन के और मजबूती से आगे बढ़ने का दावा भी किया है।
9: І домовленості заради виробництва в Україні. Це все буде. Це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спершу чули, що це начебто неможливо. І потім чули, українці начебто не зможуть, бо потрібні десятиліття, щоб змогли.
8: Зеленський, є дава бле хі каре, лекін ву джанте хе, कि किस कदर एंटी मिसाइल सिस्टम की कमी रूस के सामने यूक्रेन की बेचारगी लगातार बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व? इस बार नाग पंचमी पर बन रहे हैं कौन से संयोग? भगवान शिव और सर्पों की पूजा का क्या है विधान? और भगवान शिव की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
12: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
13: मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहाँ पर खड़े थे वो, और धूप काफ़ी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। तो बस इतनी बात थी। उसी को एक, जिसको कहते हैं तिल को ताड़ बनाना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, हर चीज़ को कभी बात खड़ा करना, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी लाना। तो हकीकत ये थी कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी के लिए एक व्यवस्था करना चाह रही थी ताकि वो गिर ना जाए।

वंदे मातरम गायन में कथित अपमान लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले तेज, अमित शाह ने उठाए सवाल, बोले इस पाप की माफी में नहीं कांग्रेस का पलटवार, उपदेश न दें, खुद का करेंगे मूल्यांकन। कांग्रेस के खिलाफ देश भर में बीजेपी का प्रदर्शन, कई शहरों में बीजेपी ने निकाला मसाल जुलूस, वंदे मातरम का अपमान करने का लगाया आरोप, कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग। प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान पर टकराव, विपक्षी दलों का मोर्चा, चिदंबरम के बाद महबूबा मुफ्ती का तंज, खुद को बताया दिमागी नक्सल, बीजेपी ने पलटवार किया। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 24वां दिन बीती रात, छात्रों ने सीएम सोरेन, राहुल और तेजस्वी का पुतला फूंका, कहा 20 अगस्त को सीएम आवास का करेंगे घेराव, आज सरकार के साथ बातचीत। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने फिर NTA को घेरा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं आशुतोष मिश्रा, देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर सुबह के सबसे पहले बुलेटिन में हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के आंदोलन का 24वां दिन है आज, और 24 दिनों के बाद भी छात्र जमे हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि 20 अगस्त को वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। 17वें दिन जब उन्होंने विधानसभा मार्च किया, और अब छात्र कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। उससे पहले आज एक और अहम दिन है। आज सरकार और छात्रों का जो कानूनी प्रतिनिधि मंडल है उनके बीच मुलाकात होगी, यानी तीसरे दौर की बातचीत छात्रों और सरकार के बीच होगी। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही उन्हें बातचीत का न्योता दिया है। बीती शाम सरकार की ओर से प्रतिनिधियों के रूप से अधिकारी मिलने गए। उन्होंने कहा कि आपका जो विधिक प्रतिनिधि मंडल है वो आए आज दोपहर 2 बजे। सरकार की ओर से जो मंत्रिमंडल का डेलीगेशन है 4 मंत्रियों का, उनके साथ बातचीत होगी। और इस बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, JSSC और CGL 2200 वो नियुक्तियां जिनमें अनियमितताओं का आरोप है, उन अनियमितताओं को रद्द करने के लिए, परीक्षा दोबारा करवाने के लिए CBI जांच की मांग को लेकर के आज दोपहर 2 बजे एक बार फिर बातचीत होगी।
1: ये रांची में छात्रों के आंदोलन का नया तेवर है, अब गुस्सा बढ़ा है। छात्र हेमंत सोरेन को खुली चुनौती दे रहे हैं। रांची के अल्बर्टी का चौक पर रविवार की शाम प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों का अल्टीमेटम है कि 18 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
2: 20 तारीख को कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों के साथ हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और बताएंगे स्टूडेंट की पावर क्या है। 20 तारीख को बताया जाएगा, आपकी पुलिस भी हमें रोक नहीं पाएगी सर।
1: छात्र नेता कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से सरकार ने बात नहीं मानी, अब वे रास्ता बदलेंगे।
3: गांधी जी के अनुनय विनय से हमने 22 दिनों तक आंदोलन कर लिया, अब भगत सिंह के नक्शे कदम पे चलने का समय आ गया है, सोम गुरु के नक्शे कदम पे चलने का समय आ गया।
1: छात्रों के इस प्रदर्शन को लगातार समर्थन मिल रहा है। एक दिन पहले अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने स्टेडियम में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, मांगों को लेकर उनका समर्थन किया। बढ़ते समर्थन और छात्रों के गुस्से के बीच फिर से सरकार ने छात्रों को न्योता दिया है। स्टेट गेस्ट हाउस में आज दोपहर 2 बजे बातचीत तय है।
4: विधि सलाहकारों के साथ छात्र वहां आने का हम लोग अनुरोध किए हैं, छात्र यह बात स्वीकार किए हैं कि हम लोग चलेंगे।
1: उधर आज 17वें दिन भी देवेंद्रनाथ महतो और अन्य छात्र नेताओं का अनशन जारी है। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
5: आने वाले पीढ़ी के छात्रों को न्याय मिले, यह मेरा मूल मकसद है।
1: BJP ने एक बार फिर झारखंड सरकार से अपील की है कि बिना देरी छात्रों की मांगे मान ली जाएं। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: आंदोलन के 23वीं शाम छात्रों ने पुतला दहन किया। उस वक्त आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार मौके पर थे, देखिए उनकी रिपोर्ट।
6: JPSC रिफॉर्म्स मंच ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया है। साफ तौर से तिरंगा यात्रा के दौरान छात्रों ने यह कहा कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके देख लिया है, अब जो भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, उनके मार्ग पे चलने का समय आ गया है। राहुल गांधी से भी इनकी नाराजगी है, कहना है कि कांग्रेस इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। जब लाठी चार्ज हुआ था तो राहुल गांधी ने संवेदना प्रकट की थी, लेकिन वो दिल से नहीं था, ऊपर से था, नहीं तो वो सरकार पे दबाव बनाते। हेमंत सोरेन पे भी सीधे तौर पे कहा कि अगर वो एग्जामिनेशन और मांगों को मान नहीं सकते, JSSC CGL रद्द नहीं कर सकते हैं, तो पहली बार 15 अगस्त को फॉर्मली इस्तीफे की मांग छात्रों की तरफ से की गई थी और ये घोषणा की गई थी कि राज्यव्यापी पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। पुतला दहन जो है अल्बर्ट टिक्का चौक पे किया जा रहा है, राज्य भर में ये कार्यक्रम है। ये देखिए कि अब जो है पुतला दहन किया जा रहा है, ये पुतला दहन कर दिया गया और जोरदार नारेबाजी की जा रही है। ये पुतला जो है वो देखिए, ये देख सकते हैं, ये पुतला दहन कर दिया गया है, पुतला दहन जो है वो किया गया है। अब ये देखिए, ये लगातार जो है इनके तरफ से पुतला दहन का कार्यक्रम दिया गया था। ये कहा गया था कि ये दोनों ही नेता उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, एक राज्य के मुखिया हैं, दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, संवेदना प्रकट जरूर की थी विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ, लेकिन अंदर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस के तरफ से आज भी मुख्यमंत्री आवास में एनएसयूआई के रांची जिला के अध्यक्ष, रांची जिला महानगर के अध्यक्ष कुमार राजा राहुल गांधी का संदेश लेकर पहुंचे हैं। समस्या का समाधान जो है वो डायलॉग के जरिए करने की बात उन्होंने कही है।
0: तो रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है, इन सब के बीच अनशन कर रहे कई छात्रों की तबीयत बिगड़ रही है, उनमें से कई का रांची के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब वो अपील कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन में शामिल हों।
7: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
8: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है, सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है, मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज्यादा जी पाएंगे, स्थिति बहुत ही गंभीर है।
7: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरें या बचें।
8: बुखार भी आ रही, सरकार को कोई चिंता नहीं, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मनसा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
7: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है, छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के HDU में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था, ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
9: झंडा फहराने से रोका जा रहा
10: है,
9: ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है।
7: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
11: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
7: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी, लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और CBI जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को CM आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बोनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन रहा है, क्योंकि वही गीत सत्ता और विपक्ष की अब सियासत को सुलगा रहा है।
12: पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
13: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को रोकना, गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
12: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धार धार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
10: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
12: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
14: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रोका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
12: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंतर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
15: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
12: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
0: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द के इस्तेमाल ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का राजनीतिक इस्तेमाल किया विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए। इसे लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच भी हमले तेज हो गए हैं।
16: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
17: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
18: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदम्बरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
17: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
19: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं, ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं।
20: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
17: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
2: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन जो दिमागी नक्सल ये अर्बन नक्सल्स हैं।
21: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
17: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उधर भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध सहित अन्य किसानी मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व एक बार फिर आंदोलन शुरू कर चुके हैं। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच किया है, लेकिन रास्ते में बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं।
22: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: क्या हॉर्मुज को सच में अमेरिका का हिस्सा बनाने के अभियान पर ट्रंप निकल गए हैं, या फिर से किसी सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने बयान दिया है? वजह जो भी हो, इस बयान के बाद एक बार अमेरिका और ईरान के बीच उन तल्खियां बढ़ी हैं। हॉर्मुज के समंदर में हर दूसरे दिन हमले हो रहे हैं। अब ट्रंप के बयान ने आग को चिंगारी में तब्दील कर दिया है।

0: قريبا.
1: सामने आया ट्रंप का सबसे विनाशकारी ऐलान, समंदर में मचने वाला है भयंकर कोहराम, अमेरिका का हिस्सा बनने वाला है हॉर्मुज, अब ट्रंप की निगहबानी में चलेगा हॉर्मुज। हॉर्मुज के समंदर की इन लहरों की शांति तूफान से ठीक पहले की है, क्योंकि ट्रंप ने जो ऐलान कर दिया है उससे न सिर्फ ईरान को बुरी तरह चिढ़ा दिया है बल्कि सीज फायर पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको सुना देते हैं ट्रंप का वो बयान जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है।
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
1: सुना आपने, ट्रंप जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान करने वाले हैं। कुछ लोग ट्रंप के इस विनाशकारी बयान को उनके बड़बोलेपन से जोड़कर देख रहे हैं, तो कईयों को इसमें सीज फायर के खात्मे और भयंकर युद्ध फिर से शुरू होने के संकेत दिख रहे हैं। ट्रंप ने इसके साथ ही अपने लोगों से महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार रहने की अपील भी की है, यानी ट्रंप को भी कहीं न कहीं युद्ध के अभी से लंबा खींचने की आशंका लग रही है। ट्रंप इस महंगाई को सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
2: So I just say this. So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing. You just have to remember that what we're doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world. And we're really doing a great job.
1: इस बीच ट्रंप के हॉर्मुज वाले बयान को लेकर ईरान ने सख्त तेवर अपना लिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री कंजेम घरीबाबादी ने ट्रंप के इस बयान की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान की हार के बाद वो जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका के हिस्से के रूप में घोषित कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्वीट से सीज नहीं किया जा सकता, न ही एयरक्राफ्ट करियर से, ना ही एक आदेश जारी करके और ना ही किसी चुनावी भाषण के जरिए। कहने को दोनों देशों के बीच इस वक्त सीज फायर चल रहा है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। अब तो ईरान के विदेश मंत्रालय ने हॉर्मुज में तनाव बढ़ाने का सारा ठीकरा अमेरिका के सिर ही फोड़ दिया है।
3: وضعیت ناامنی در تنگه هرمز منحصرا نتیجه اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح بین المللی خیلی وقتها به نحوی موضوع رو مطرح میکنن، القا میکنن که گویا این ایران هست که باعث ناامنی در تنگه هرمز شده. همه ما میدونیم که تنگه هرمز تا قبل از 9 اسفند 404 هیچ مشکلی نداشت، باز بود. سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از این آبراه برای حمله به ایران.
1: इस बीच हूती के जबरदस्त हमले में यमन से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। धू धू कर जल रहे जहाज, टूटे हुए उपकरण, धुआं धुआं हो रहे पूरे परिसर की ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि ईरान ने हूतियों के जरिए कितनी भारी तबाही मचाई है। हूती ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें सरकारी पोर्ट पर दागी जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
4: रूस और यूक्रेन के बीच भी घमासान युद्ध भयंकर और हो चुका है, क्योंकि रूस ने कीव के आसपास के इलाकों में जबरदस्त बमबारी की, जबकि यूक्रेन ने मॉस्को इलाके में मिसाइलों और ड्रोन से बम बरसाकर तबाही मचाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो हथियारों की होड़ को और तेज करने का ऐलान किया है।
1: मिसाइलों और ड्रोन से बमों की बरसात, कीव में रूसी हमलों से बड़ी आफत। यूक्रेन ने मॉस्को रीजन में की एयर स्ट्राइक। ना तो हमले रोकने के लिए रूस तैयार है, ना ही घुटने टेकने को यूक्रेन तैयार। नतीजा इन तस्वीरों के तौर पर आपके सामने है। आग की लपटों में घिरे इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों की तबाही की गवाही दे रहे हैं। हर दूसरे दिन मिसाइलें बम बरसा रही हैं, हर दूसरे दिन ड्रोन डरा रहे हैं और तेल डिपो से लेकर रिहायशी इलाकों में तबाही का तांडव मचा रहे हैं। यूक्रेन के जेपोरिजिया में रूसी हथियारों ने ताजा हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर डाला है। कीव रीजन के कई इलाकों को रूस ने एक साथ निशाना बनाया। इन हमलों में इस्कांदर एम, S-400 और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया। आसमान तक उठती आग और धुएं के इस गुब्बार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान झेलना पड़ा होगा। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हर हमले का उसकी सेनाएं जवाब दे रही हैं। मॉस्को रीजन में यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोनों से एयर स्ट्राइक की।

0: वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब में लगी ये आग कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। हजारों स्क्वायर फीट में फैले इस सेंटर में एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरा परिसर आग की लपटों में घिर गया। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में काफी ऊंचाई तक फैल गया। इसके अलावा यूक्रेन ने समारा इलाके में फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला किया। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी सेना ने यूक्रेनी सरहद से करीब 900 किलोमीटर दूर बने रूसी ठिकाने को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ उन्होंने हथियारों की होड़ में यूक्रेन के और मजबूती से आगे बढ़ने का दावा भी किया है।
1: ППО для України, ракет, які необхідні для захисту життя і домовленості заради виробництва в Україні. Це все буде, це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спершу чули, що це начебто неможливо. І потім чули, українці начебто не зможуть, бо потрібні десятиліття, щоб змогли.
0: जेलेंस्की ये दावा भले ही करें, लेकिन वो जानते हैं कि किस कदर एंटी मिसाइल सिस्टम की कमी रूस के सामने यूक्रेन की बेचारगी लगातार बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो
2: यार यूक्रेन ब्रेक के लिए खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व? इस बार नाग पंचमी पर बन रहे हैं कौन से संयोग? भगवान शिव और सर्पों की पूजा का क्या है विधान? और भगवान शिव की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
2: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
1: नहीं सर।
2: ट्वेल्थ किससे की हो?
1: ट्वेल्थ सर मेरा PCM से रहा।
2: कंपाउंड क्या होता है?
1: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
2: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
1: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
2: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

पाप की माफी नहीं कांग्रेस का पलटवार, उपदेश ना दें खुद का करेंगे मूल्यांकन। कांग्रेस के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, कई शहरों में बीजेपी ने निकाला मसाल जुलूस, वंदे मातरम का अपमान करने का लगाया आरोप, कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर टकराव, विपक्षी दलों का मोर्चा, चिदंबरम के बाद महबूबा मुफ्ती का तंज, खुद को बताया दिमागी नक्सल, बीजेपी ने किया पलटवार। रांची में आज फिर छात्र प्रतिनिधियों और सरकार के बीच वार्ता, दोपहर 2 बजे बैठक होगी। बीती रात छात्रों ने सीएम सोरेन, राहुल और तेजस्वी का पुतला फूंका, कहा 20 अगस्त को घेरेंगे सीएम आवास। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का हवाला दिया, कांग्रेस ने NTA को घेरा।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। खबरें मौसम की और कुदरत के कहर की, क्योंकि उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ दरकने की बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आई है। नारायणबगड़ इलाके में सीरी रायगांव सड़क मार्ग पर दोपहर के बाद अचानक जोरदार भूस्खलन शुरू हो गया। देखते ही देखते पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर भारी मलबा नीचे गिरने लगा। ऐसा लगा कि मानो पूरा पहाड़ टूट कर सड़क पर बिखर रहा हो। भूस्खलन की पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद हुई। लगातार गिरते मलबे से सड़क पूरी तरह बंद हो गई। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ से चट्टानों की बारिश हो रही थी, उस दौरान सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। इसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चटकती चट्टान और दरकते पहाड़ों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों पर इस समय कुदरत का कहर बरस रहा है। तो पहाड़ ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही है, क्योंकि कहीं सड़कें दरिया बन गई, कहीं नदियों किनारे काट कर बह रही हैं। बाढ़ बारिश के भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें चटक रही हैं, लोग मुश्किल में हैं।
1: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टानें चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिंडी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये। ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका, ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सावरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसी चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी THGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: तो पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफी वहाँ पर दबी हुई है। जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी, उनको सफाई करेगी, तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी उसमें।
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, बशर्ते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है, पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय दो ही दलदल हो रही है। पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी, क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें। तो इसमें हो गया तो जल्द से जल्द उस चीजों को, जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविकेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: तो एक तरफ जहां जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात, बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल भी जमींदोज हो रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। तेज जलधारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला जारी है।
0: देखते ही देखते ये पुल ठह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ठहरने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की हैं। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को धरका दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
4: अभी ये पुलिया में जो बनी है नई, तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी, और ये वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये रोड बंद करें और दोनों साइड होगा पक्का काम करें।
5: उनके महीने में लास्ट जून में उद्घाटन हुआ था इसका, और अभी 17 अगस्त है, अभी वहाँ से हट चुकी है पुलिया। इधर साइडों में भी दो जगह जुड़ा होगा साइडों में दो तरफ, तो इसका ढसने की संभावना है इसकी भी।
6: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
5: ये भी गिर सकती है,
7: और भी तो फिर जर्जर हो रही है, ये भी की दो दो इंच छूट चुकी है।
6: अच्छा,
5: साइडों में झुका,
7: साइडों में झुका हुआ है।
0: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ नदी पर बना ये पुल बह गया। हैरानी इस बात की है कि इस पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन ये 10 बरसात भी नहीं झेल सका। निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहाँ तहाँ दरारें दिखाई दे रही थी। दो दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आंखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए। जिस पुल से होकर दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही होती थी, वो देखते ही देखते पानी की तेज धारा में गायब हो चुका था। कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी, और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। वाहनों की आवाजाही के साथ पुल के अलग अलग हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी थी और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज तक ब्यूरो।
3: उधर मैदानी इलाकों में जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ ही घंटों की बरसात ने शहरों में सैलाब ला दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में तो सुबह चंद घंटे की बरसात ने शहर को समंदर में तब्दील कर दिया। यही हाल इटावा का रहा, जरा सी बरसात सड़कों पर बेहिसाब पानी।

तलैया झरना सागर दरिया दरिया लखनऊ। हाँ जी, यकीन कीजिए यह आपका अपना अदब का शहर है लखनऊ। लखनऊ वाले रविवार की सुबह जब सो के उठे तो उन्हें मालूम चला कि उनका अपना प्यारा लखनऊ तो इटली का वेनिस हो गया है। पानी की लहरों पर उतराने वाला शहर, देखिए ना, ये बच्चे जिस गली से गुजर रही है वहां घुटने तक पानी है। अब सड़क का हाल देखिए, सड़क को सड़क नहीं समंदर कहिए, यहाँ डूब डूब आइए डूब डूब जाइए। इन भाई साहब की बाइक बंद पड़ गई, अब पानी में ये इसे खींचते हुए बढ़े जा रहे हैं। अब एक नजर इन तस्वीरों पर डाल लीजिए, इतनी बरसात हुई है कि ये घर लबालब है, घर में पानी भर गया है, घर के सामान पानी में उतरा रहे हैं। कुछ घंटों की बरसात ने लखनऊ को पानी पानी कर दिया, अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात कैसे बने।

0: आप प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, यहाँ गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। देखिए घाटों तक पानी चढ़ाया है, पंडा पुरोहित जहाँ बैठते हैं वहाँ तक गंगा चढ़ाई है।
1: गंगा जी के तो जलस्तर कल से काफी तेज हुआ है, परसों से बढ़ दो तीन दिन से बढ़े, कल जलस्तर लगभग 4 फीट की ऊंचाई में बढ़ा हुआ, आज भी जल तेज से ही है, लगभग 1 फीट जलाया सुबह से। अरे तकलीफ क्या है, तो हर साल का नियम ही है, हम लोग को गंगा जी बांटते तो हटाना पड़ेगा सामान, फिर बार इस बार तो लेट है, नहीं पिछली बार तो हनुमान जी को भी नहला चुकी, हम लोग ऊपर थे पिछली बार रोड पर थे इस समय, लेकिन इस बार लेट है, अब तकलीफ तो होता ही है, सामान हटाना पड़ता है, अभी वहाँ से ले आए उठा के इधर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे।
2: परसों से गंगा जी काफ़ी तेजी से जो है रफ्तार से बढ़ रही हैं और हमारे पंडा समाज के लोगों का जो है अब वो सामान जाने वाला है ऊपर, किसी गंगा जी का जो ये रूप है और हमारे का दो रोज के अंदर गंगा जी ऊपर भी चली जाएंगे।
0: अब यूपी के ही इटावा की तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर के लिए बरसात क्या हुई, मानो पानी नहीं मुसीबत बरसी है, देखिए सड़कें किस तरह लबालब। इसी तालाब के बीच में लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं, देखिए ये स्कूली बच्चे पानी के बीच से कैसे निकल रहे हैं।
3: देखिए बरसात का मौसम चल रहा है और हमारी जो लाइन पार की मुख्य समस्या है वो यही है कि पचाली क्षेत्र जो है पूरा जलमग्न हो जाता है। विजयनगर चौराहे से आप अगर पचाली क्षेत्र देखेंगे तो अभी गाड़ियों की दुर्दशा आप देख रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं जा पा रहे, स्कूल ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, कोई दवाई लेने जा पा रहा, कोई अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन जन प्रतिनिधियों को ये सारी समस्या दिखती है फिर भी वो इसका कोई समाधान नहीं निकालते, ये बड़ी शर्म की बात है।
4: बारिश बहुत कर रहे होने की वजह से यहाँ पे पानी उतना भर चुका है कि टम्पुआ में पूरे ऊपर तक सीटों तक पानी आ रहा है, पानी टम्पुआ के भीतर तक आ रहा है, और समय जी मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैरों तक ऊपर पानी आता है।
5: ये पानी पुल में भर गया है।
6: अच्छा, कितना पानी भरा होगा लगभग?
5: कम से कम ये समझो सर इतना है,
6: 4 फुट,
5: 4 से 5 फुट है पानी।
6: तो ये रास्ता बंद कराया गया है क्या?
5: हाँ कराया है।
6: क्या दिक्कत क्या उसकी?
5: ये बांध फंस जाते हैं, बांध फंसते हैं, पब्लिक को परेशानी होती है, जाते हैं तो गाड़ी बंद हो होने लगती है, तो वो चक्कर से सुरक्षा के चक्कर से हम लोग खड़े हैं।
0: अब हरियाणा के अंबाला की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी थोड़ी देर की बरसात ने तबाही मचा दी, सड़कें पूरी तरह से लबालब हैं, जहाँ रास्ते थे वहाँ सिर्फ पानी नजर आ रहा है, इतना पानी भरा हुआ है कि आना जाना मुश्किल है, देखिए सड़कों पर जलधारा है और इसी के बीच से लोग गुजर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
7: उधर एक बार फिर किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध सहित अन्य किसानी मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया है। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच किया है, लेकिन रास्ते में बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं।
8: ये हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर है, देखिए इस बॉर्डर को किस तरह से बंद किया गया है। बॉर्डर को 5 लेयर में सील किया गया है, बैरिकेडिंग की गई, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, वाटर कैनन वाली गाड़ियां खड़ी की गई, कंटेनर खड़े किए गए, कंटीली तार लगाई गई। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में आज से किसान बचाओ यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में शुरू हुई है। किसानों की ये यात्रा दाता सिंह वाला से शुरू हुई है और 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचना चाह रही है, लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट, सीमाओं पर अवरोधक लगा दिए गए। देखना होगा कि प्रशासन किसानों को रोक पाता है या नहीं। सुनील कुमार, जींद आज तक।
7: आज सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम को भव्य फूलों से सजाया गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, तो झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में भी भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। कांवड़ियों की करीब 8 किलोमीटर लंबी कतारें भी हैं। हर हर महादेव बोलबम के जयकारों से दोनों धाम गूंज रहे हैं। वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ही महादेव की पूजा अर्चना शुरू हो गई तमाम शिवालयों में, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में देश भर के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बम भोले की जयकार से सारे शिवालय गूंज रहे हैं।

0: देशभर के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तीसरा सोमवार बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि पंचमी का भी मौका और उस पंचमी के बाद बस एक सोमवार और उसी के साथ श्रावण माह की पूर्णाहुति हो जाएगी और ऐसे में तीसरा सोमवार बेहद महत्वपूर्ण तमाम मनोकामनाओं के लिए श्रद्धालु हैं वो लगातार शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे। खबरें कुछ हादसों से जुड़ी हुई। करनाल के घरौंडा में श्रद्धालुओं से भरे कैंटर हाई टेंशन तारों के चपेट में आने का एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। हादसे में कई श्रद्धालु झुलस गए जबकि लोगों को बचाने पहुंचे रिटायर्ड फौजी की करंट लगने से मौत हो गई। देखिए इन तस्वीरों में कि कैंटर की बढ़ी हुई ऊंचाई थी जिसके चलते वो बिजली के तारों के संपर्क में आ गई। अचानक से तेज आवाज और पूरे वाहन में करंट फैल गई, कई लोग झुलस गए। ये देखिए अब तमाम ऐसे में कई बार बड़ी संख्या में चाहे श्रद्धालु हों या लोग अपने काम से निकल रहे और इस तरह कैंटर लेके जब जाते हैं ट्रक की ऊंचाई ज्यादा होती है और जैसे वो हाई टेंशन तारों के नजदीक पहुंचते हैं तुरंत उसका असर होता है। देखिए करंट लगा और जिसके चलते कई लोग झुलस गए। द कर्नाटक के शिवमोगा से भी एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। रिपोनपेट के पास गर्तखिरे में एक शख्स पर लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला किया गया। आरोपी ने पीड़ित के सिर पर पैर से वार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घायल की पहचान मंजुनाथ के तौर पर हुई है जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी राघवेंद्र उर्फ एप्पल रघु को गिरफ्तार कर लिया है। दरागर मालवा में दुकानदार की नजर हटते ही हाथ साफ करने का एक मामला सामने आया है। बदमाश पहले दुकान पर पहुंचता है, मौका मिली तो तेल की केन उठाकर बाहर निकल गया। उसका साथी पहले ही बाइक लेकर इंतजार कर रहा था। दोनों चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए लेकिन पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चोरी की ऐसी एक तस्वीर सूरत से भी सामने आई है। उमरा इलाके में एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखी जहां कर्मचारी पर कैफे संचालक भरोसा करते थे, उसी ने देर रात 80,000 रुपए चुरा लिए, फरार हो गया। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। अब आरोपी चोरी के बाद नोट गिनता भी नजर आ रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व? इस बार नाग पंचमी पर बन रहे हैं कौन से संयोग? भगवान शिव और सर्पों की पूजा का क्या है विधान? और भगवान शिव की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वंदे मातरम गायन में कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले तेज। अमित शाह ने उठाए सवाल, बोले इस पाप की माफी नहीं कांग्रेस का पलटवार। उपदेश ना दें, खुद का करेंगे मूल्यांकन। कांग्रेस के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, कई शहरों में बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस। वंदे मातरम का अपमान करने का लगाया आरोप, कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर टकराव, विपक्षी दलों का मोर्चा। चिदंबरम के बाद महबूबा मुफ्ती का तंज, खुद को बताया दिमागी नक्सल, बीजेपी ने किया पलटवार। रांची में आज फिर छात्र प्रतिनिधियों और सरकार के बीच वार्ता, दोपहर 2 बजे बैठक होगी। बीती रात छात्रों ने सीएम सोरेन, राहुल और तेजस्वी का पुतला फूंका, कहा 20 अगस्त को घेरेंगे सीएम आवास। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला। तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का हवाला दिया, कांग्रेस ने NTA को घेरा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज नाग पंचमी का पर्व है, आज सावन का सोमवार है और आज के दिन सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं, यानी बहुत सारे अद्भुत संयोग आज बने हुए हैं। तो आज मुख्यतः बात करेंगे नाग पंचमी के पर्व की और सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। इसके अलावा 12 राशियों का दैनिक राशिफल आपको बताएंगे और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5 बजे तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 4:19 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं नाग पंचमी के पर्व के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी के पर्व का महत्व क्या है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है।

श्रावण शुक्ल पंचमी विशेष रूप से नागों के लिए बनाई गई है। इस तिथि को भगवान शिव के जो आभूषण हैं, उन नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। ज्योतिष में राहु और केतु को सर्प के समान माना गया है, इसीलिए अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो नाग पंचमी पर विशेष पूजा करके लाभ पाया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर किसी को सांप के सपने ज्यादा आते हो या सर्प से भय लगता हो तो भी इस दिन नागों की पूजा विशेष अनुकूल होती है। आज पूरे देश में, दुनिया में नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है और आज नाग पंचमी का पर्व मनाकर जो भक्त हैं भगवान शिव के, वो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। नाग पंचमी के पर्व को मनाने का तरीका क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, और सावन के पावन महीने में सफलता का एक अचूक उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब जानते हैं कि नाग पंचमी पर सामान्य पूजा कैसे करेंगे। देखिए, आज प्रातः काल 12 बजे के पहले नहा लीजिएगा
और नहा करके भगवान शिव का ध्यान करिएगा, भगवान शिव का स्मरण करिएगा। पहले भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, नमः शिवाय बोलते हुए उनको बेलपत्र और जल अर्पित करेंगे और इसके बाद शिव जी के गले में जो नाग विराजमान हैं उनकी पूजा करेंगे। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद चने, खील बताशे और बहुत जरा सा कच्चा दूध अर्पित करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सांप की आकृति बनाइए और इसकी भी पूजा आपको करनी है। उसके बाद अपने हाथ में जल ले लीजिए, जल को पूरे घर में छिड़किए और जप करते जाइए, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ये कहते जाइए और जल को पूरे घर में छिड़किएगा। इस सरल तरीके से आज आप नाग पंचमी मना सकते हैं और नाग पंचमी मध्य दोपहर के पहले मनाई जाती है तो उसके पहले भगवान शिव की और सर्पों की पूजा करके आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। देखिए आज सावन का सोमवार भी है तो आज शिव जी के मंदिर में जाइए, शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाइए और अगर शिवलिंग के ऊपर सर्प बना हुआ है या सर्प का छत्र लगा हुआ है तो उसको भी जल और जरा सा दूध चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से सावन के सोमवार का और नाग पंचमी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नाग पंचमी की सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

वे होंगे उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो आज हम सब नागपंचमी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना, कुछ सावधानियों का पालन करना जरूरी है। किन बातों का ध्यान रखें? बिना शिव जी की पूजा किए हुए कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। पहले आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, उसके बाद नागों की पूजा करेंगे। नागों की स्वतंत्र पूजा मत करिएगा। नागों की स्वतंत्र पूजा करना उचित नहीं है। वो तंत्र की एक क्रिया है जिसको सामान्यता नहीं करना चाहिए। नागों की पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में उनके गले के सर्पों की पूजा करिएगा। जो लोग नागों की कृपा पाना चाहते हैं उनको आज के दिन ना तो जमीन खोदनी चाहिए और ना साग काटना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स भी आज के दिन काटना उचित नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सांप से बहुत डर लगता है या सांप के सर्प के बहुत ज्यादा सपने आते हैं। तो अगर आपको सर्प से भय लगता है या सर्प के बहुत ज्यादा स्वप्न आते हैं तो क्या करेंगे? चांदी के दो सर्प बनवाइए, एक नाग और एक नागिन, और चांदी का एक स्वस्तिक भी बनवाइएगा। एक थाल में रखकर दोनों सर्पों को रखिए, उनकी पूजा करिए, और एक थाल में स्वस्तिक रखकर उनकी पूजा करिए। जो चांदी के नाग नागिन बनवाए थे उन्हें जरा सा कच्चा दूध और स्वस्तिक पर बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद कम से कम 3 माला या 11 माला ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। नागों को नाग नागिन जो चांदी के बनवाए थे उनको मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, और स्वस्तिक जो है वो लाल धागे में या पीले धागे में गले में धारण करिएगा। आपकी सुरक्षा होगी, सर्प भय कम होगा और सर्प के स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। आज सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो अलग अलग राशियों पर कैसा असर डालेगा इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।
राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में विशेष लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, आज यानी 17 अगस्त को सूर्य देव कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आज सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। इसका अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा आइए जानते हैं। देखिए, सूर्य देव आज कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अगले एक महीने तक अलग अलग राशियों पर पड़ेगा। कैसा होगा प्रभाव? इस राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव वृषभ, कन्या और मकर राशि पर पड़ेगा। वृषभ, कन्या और मकर वालों को अपने स्वास्थ्य का और घटने वाली दुर्घटनाओं का ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस समय आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपके साथ दुर्घटनाएं घट सकती हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन मध्यम रहेगा। इनको बड़े निर्णय लेने में सावधानी रखनी होगी। इस समय लिए गए निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। साथ ही साथ अपने रिश्तों की समस्या का ध्यान आपको देना होगा। रिश्तों की समस्या इस समय आ सकती है। ये परिवर्तन मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए अनुकूल होगा, फायदेमंद रहेगा। यानी मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को करियर और पद प्रतिष्ठा का लाभ अपने जीवन में मिलेगा
और अगर ये लोग थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, तो इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन लाभ के योग हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

सहायता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, चोट चपेट से सावधान रहें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग नाग पंचमी पर काल सर्प योग की पूजा करवाते हैं, क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं है। ज्योतिष के किसी भी प्रारंभिक और प्रामाणिक ग्रंथ में काल सर्प योग का कोई उल्लेख नहीं है। तो जब काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं है तो उसकी पूजा करवाने ना करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काल सर्प योग को लेके परेशान ना हो और इसकी किसी भी तरह की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रिश्तों की समस्या दूर होगी। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, आपके लिए भी यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।

मिनट तक इस समय में नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने पास सफेद फूल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मेष राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है, सावन का पवित्र सोमवार भी है। आज शिव जी को जल अवश्य चढ़ाइएगा और आज सफेद चीजों का, चावल, चीनी, दूध, इसका अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। सावन का पावन महीना चल रहा है तो सावन के चमत्कारी उपाय आपको बताते हैं सावन सूत्र में। अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए तो सावन के किसी भी सोमवार पर, जैसे आज सावन का सोमवार है, तो आज यानी सावन के सोमवार पर अपनी आयु के बराबर बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले पर आमने सामने आ गए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिमागी नक्सल अर्बन नक्सल और पुराने आरोपों का ही नया रूप है। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम को इस बयान पर घेरा। दिमागी नक्सल बयान पर पीएम की बात का संदर्भ समझना चाहिए था। किरण रिजिजू ने दिमागी नक्सल की परिभाषा पर सफाई भी दी। माओवाद और अलगाववाद का समर्थन करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल बयान को लेकर के पूरे विपक्ष ने पलटवार किया है। जयराम रमेश, महबूबा मुफ्ती, संजय सिंह ने बीजेपी पर इस बयान को लेकर के सवाल उठाए। वंदे मातरम विवाद ने अब सियासी रंग ले लिया है। सोनिया गांधी से माफी की मांग को लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। दबाव बनाने की कोशिश। अमित शाह ने भी वंदे मातरम विवाद पर सोनिया गांधी को घेरा। बोले, वंदे मातरम रोकने पर देश और बंकिम चंद्र से माफी मांगे सोनिया गांधी। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कहा, बीजेपी बेवजह एक मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। वंदे मातरम विवाद पर बंगाल में भी घमासान मच गया है। बंकिम चंद्र के वंशज ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। बेंगलुरु में भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। बीजेपी युवा मोर्चा ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है, तहरीर भी दी। वंदे मातरम विवाद अब पुलिस थाने भी पहुंच गया है। सोनिया और राहुल के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है, पुलिस को शिकायत दी गई है। वंदे मातरम विवाद पर प्रशांत किशोर की दो टूक। कहा, गलती है तो बीजेपी केस दर्ज करा दे। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस का रवैया पुराना है। वंदे मातरम विवाद के बीच मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान। बोले, वंदे मातरम देश की जान और जनगणमन देश की आत्मा है। केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर पलटवार। उन्होंने कहा कि आपके लिए ये राजनीति है, लेकिन हमारे लिए ये भावनाओं का मुद्दा है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की कथित गड़बड़ी पर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास घेराव करने का ऐलान कर चुके हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद पर छात्रों का हल्ला बोल भी जारी है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ कल मशाल जुलूस निकाला गया और पुतले भी फूंके गए। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री से अब इस्तीफे की मांग की है छात्रों के रूप में। झारखंड में छात्रों का सरकार के खिलाफ मोर्चा भी जारी है। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के पुतले भी फूंके गए। उधर भर्ती परीक्षा विवाद में कई छात्र पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। अब सरकार से सीजीएल की परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग भी तेज कर दी गई है। छात्र आंदोलन के बीच बीजेपी ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार इन छात्रों की मांगे तत्काल मांगे। झारखंड छात्र आंदोलन में पहुंची अभिनेत्री कुनिका सदानंद। बोली, छात्रों को उनका हक और अवसर मिलना ही चाहिए। भर्ती परीक्षा विवाद पर सरकार ने छात्रों को बातचीत के लिए आज बुलाया है। स्टेट गेस्ट हाउस में दोपहर 2 बजे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बैठक होगी। इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके हेमंत सरकार को घेरा है। उधर यूजीसी नेट जून 2026 में पेपर की गड़बड़ियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। इंग्लिश, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा फिर से कराई जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जांच में पेपर से जुड़ी कई खामियां सामने आई हैं। सवाल दोहराने, गलतियों के बाद री एग्जाम का फैसला लिया गया है। यूजीसी नेट के 3 पेपर पर सवाल उठे हैं। बड़ी संख्या में सवाल रिपीट होने पर भाषा संबंधी गलतियों की शिकायतों पर अब एनटीए दोबारा परीक्षा की तारीख का ऐलान कर चुका है। एनटीए ने यूजीसी नेट में री एग्जाम की तारीखें घोषित कर दी हैं। 9 सितंबर को इंग्लिश कॉमर्स, 10 सितंबर को समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। यूजीसी नेट विवाद पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। परीक्षा और जवाबदेही को लेकर के एनटीए पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। बिहार में परीक्षा व्यवस्था पर तेजस्वी का बड़ा हमला हुआ है। बोले, हर परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। 19 अगस्त को तेजस्वी राजभवन मार्च निकालने का ऐलान कर चुके हैं। पेपर लीक और छात्रों पर गोली चलने के आरोपों पर तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया था। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आज के हालात के अंग्रेजों के दौर की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी लोग अपने अधिकारों के लिए बीजेपी से लड़ने पर मजबूर हैं।
अखिलेश यादव ने भारत सरकार की विदेश नीति पर निशाना साधा, बोले परिसीमन से ज्यादा जरूरी है सीमा सुरक्षा पर देश में चर्चा। केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला बोलते हुए अखिलेश ने ई-20 पेट्रोल, सीमा सुरक्षा, नक्सलवाद को लेकर सरकार से सवाल पूछे। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर तनाव भी बढ़ गया है। खनौरी में किसानों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत मांगों पर किसान का आंदोलन तेज है। डल्लीवाल ने कहा केंद्र से बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। पश्चिम बंगाल में पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की मौत से सियासी घमासान मच गया है। टीएमसी कार्यालय में फंदे से लटका हुआ मिला था उनका शव। आशीष बनर्जी की मौत पर ममता बनर्जी ने दुख जताते हुए कहा कि आखिरी दिनों में मानसिक और भावनात्मक दबाव में भी थे। आशीष बनर्जी की मौत पर बीजेपी ने सवाल उठाया। सुवेंदु अधिकारी ने कॉल रिकॉर्ड की जांच की भी मांग। चमोली में पहाड़ टूटा, सीरी रायगांव सड़क पर भूस्खलन हुआ। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा गिरा। कुदरत का कहर बागेश्वर में भी जारी है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। घर ध्वस्त होने के साथ साथ 14 सड़कें बंद हो गई। 30 गांवों का संपर्क कट गया। जम्मू के डोडा इलाके में भलेसा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। सड़कें और नाले जलमग्न हो गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ से करीब 300 छात्र भी फंस गए। ब्रह्मणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। मुजफ्फरनगर में बारिश मुसीबत बन गई। सड़कें, गलियां जलमग्न हो गई। कई फीट पानी भरने से शहर की रफ्तार थम गई। लोग घरों में कैद हो गए। अच्छी खबर यह है कि भारत के डिफेंस सेक्टर में बड़ी छलांग लगाई है। स्वदेशी जेट पावर दिव्यास्त्र MK3 ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी। जेट पावर दिव्यास्त्र MK3 में स्वदेशी जेट इंजन को इस्तेमाल किया गया है। तय मानकों पर इसकी टेक ऑफ पूरी तरह सफल रही। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम विष्णु देसाई ने कैंसर केयर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस संस्थान ने कैंसर के मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और सुविधाएं भी मिलेंगी। गुरुग्राम में शांति, अहिंसा और सद्भाव के क्षेत्र में योगदान का सम्मान किया गया। आचार्य लोकेश को इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। नागपुर स्नातक सीट पर बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज हो गई। रविन्द्र चौहान ने बैठकें कर रणनीति को धार दी। मोदी फडणवीस के नेतृत्व में जीत का दावा किया गया। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी। तीसरे सोमवार के मौके पर बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान माहौल में दिव्यता घूमी। विश्वनाथ दरबार में उमड़े भक्त जलाभिषेक करने आए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। सावन के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की भव्य सजावट हुई। मंदिर परिसर की खूबसूरती ने मंत्रमुग्ध किया। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में शिव भक्तों का मेला लगा। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। जगत से जुड़ी हुई, राजगढ़ में पट्टे की जमीन के विवाद में एसआई ने चार सगे भाइयों पर गोली दागी। वीडियो सामने आया एक की मौत। नरसिंहपुर में प्रेम संबंध के चलते युवक की हत्या कर दी गई। जीजा और नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। सीधी में 4 साल के मासूम से दुष्कर्म का आरोपी जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ पदस्थ इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में चाइनीज मांझे ने युवक की गर्दन काटी। 11 सेंटीमीटर गहरा घाव किया। दिल्ली रेफर किया गया। करनाल में श्रद्धालुओं से भरा कैंटर हाई टेंशन तारों से टकराया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कई घायल। सहारनपुर में दहेज हत्या के मामले में मृतका की सास को गिरफ्तार किया गया। 22 साल की नाजिश की मौत के मामले में। शिवमोगा में एक युवक पर लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला हुआ। सिर पर वार का ये वीडियो वायरल हुआ। पुलिस तफ्तीश में जुटी।
रतलाम में सराफा व्यापारी से बस में करोड़ों की लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के नवसारी में एक पत्नी से झगड़े के बाद पिता ने बेटे की चाकू मारकर हत्या की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा अस्पताल में गार्ड के इंजेक्शन भरने का एक मामला सामने आया है। वायरल वीडियो के बाद 2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। हाथरस में जीटी रोड पर एक कार पलट गई, 3 की मौत हो गई। इस हादसे में 4 अन्य घायल हो गए। सूरत में छुट्टी की मांग को लेकर अमरोली और कडोदरा में श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। गाजियाबाद के कौशाम्बी में चीनी मांझे से गर्दन कटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लखनऊ में मामूली विवाद में कैसरबाग इलाके में चाय की कैंटीन में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में। खबर वाराणसी से, रेस्टोरेंट में मैगी नहीं मिली तो फूंक दी गाड़ी, जमकर तोड़फोड़ की, मारपीट की। 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने अब FIR दर्ज कर ली। तूतीकोरिन में 2-पहिया शोरूम में भीषण आग लग गई, दमकल विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी। वीडियो सामने आया। मथुरा में बेकाबू डंपर ने लोगों की भीड़ को रौंद दिया, 2 लोगों की मौत हुई। घटना की CCTV फुटेज अब सामने आई। कानपुर में बेटे के जन्मदिन पर दुकानदार की 16 रुपए की सेल ने ऐसी भगदड़ मचाई कि हजारों लोगों की भीड़ दुकान पर उमड़ पड़ी। सहारनपुर में 30 फीट एक गड्ढा धंस गया, मलबे में दबकर पिता पुत्र की मौत हो गई। ईंट निकालते वक्त यह हादसा हुआ। दिल्ली के कल्याणपुर में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, दिनदहाड़े युवक को चाकू मारा गया। CCTV फुटेज भी सामने आया। सुरेंद्रनगर में तीर्थयात्रियों और सिक्योरिटी के बीच झड़प हुई, मारपीट में श्रद्धालु घायल हो गया। सुरेंद्रनगर अस्पताल में महिला की मौत को लेकर के डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप भी लगे, गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। अल्मोड़ा में शमशान घाट में टेबल टेनिस खेलने को मजबूर रहे बच्चे, उत्तराखंड खेल मंत्री की सुविधाओं पर उठाए सवाल। लातेहार में भीषण सड़क हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत हुई। एक कंटेनर वाहन में पहले एक बाइक को टक्कर मारी, इसके बाद सवारी टेम्पो को भी टक्कर मारी। रूस की राजधानी मॉस्को और आसपास के इलाकों में रविवार को यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमला किया। रूस के नियंत्रण वाले डोनेस्क में एक हफ्ते के भीतर 3रे मॉल पर ड्रोन से हमला हुआ। गैलिथका शॉपिंग सेंटर में कई धमाकों के बाद भीषण आग भी लग गई। जंग के बीच की पहुंचे यूनेस्को प्रमुख खालिद अल एनानी, ज़ेलेंस्की के साथ 11वीं सदी के मठ का भी दौरा किया। ईसाई धर्मगुरु पोप लियो ने वेस्ट बैंक में हिंसा खत्म करने की अपील की। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चला रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए उनकी मध्यस्थता। 2 SU-24 लाखों विमान के पायलटों को लेकर ईरान कतर में विवाद बढ़ा, पायलटों की तलाश में ईरान ने कतर से जांच की इजाजत मांगी। इंडोनेशिया के विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 35 हुई, 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद शनिवार को महसूस किए गए थे 341 aftershocks। अगस्त में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा इराक का तेल निर्यात, दैनिक तेल निर्यात अगस्त में प्रतिदिन बढ़कर 20 लाख बैरल तक पहुंच चुका है। अमेरिका के हवाई करीब पहुंचा तूफान लोला, तेज हवाओं भारी बारिश से कई इलाकों में दहशत है। दक्षिण चीन सागर में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई, करीब 3 महीने के बाद चीन प्रशासन ने रोक हटा दी। मशहूर चित्रकार एंटोनियो दा मेसिना की 4 कलाकृतियां चोरी हो गई हैं, इटली के मेसिना के म्यूजियम से ये चोरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: years of finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।
2: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
3: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
4: इट्स द माय वे।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
4: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
3: नहीं सर।
4: 12th किससे की हो?
3: 12th सर मेरा PCM से रहा।
4: कंपाउंड क्या होता
3: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
4: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
3: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
4: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन, किस पर उठे सवाल? क्या सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के पूरे गायन पर आपत्ति जताई? वंदे मातरम के गायन पर क्यों गरमाई सियासत? स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ, लेकिन गायन के दौरान सोनिया गांधी के कुछ इशारों और नेताओं की बातचीत की तस्वीरों ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेता वंदे मातरम के पूरे गायन के दौरान गंभीर नजर नहीं आए।
1: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
0: बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने साफ किया कि वो वंदे मातरम का पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाया गया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोनिया गांधी पर लगाए जा रहे आरोपों को भी खारिज कर दिया।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
0: दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रवैये को शर्मनाक बताया है। जश्न से शुरू हुआ वंदे मातरम का विवाद अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद 15 अगस्त को इसके घमासान की पहली सियासी किश्त भी सामने आ गई है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

उत्तराखंड में कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले तेज। अमित शाह ने उठाए सवाल, बोले इस पाप की माफी नहीं, कांग्रेस का पलटवार, अब देश ना दे खुद का करेंगे मूल्यांकन। कांग्रेस के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, कई शहरों में बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस, वंदे मातरम का अपमान करने का लगाया आरोप, कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग।

चिदम्बरम के बाद अब महबूबा मुफ्ती का तंज, खुद को बताया दिमागी नक्सल, बीजेपी ने किया पलटवार। रांची में आज फिर से छात्र प्रतिनिधियों और सरकार की वार्ता, दोपहर 2 बजे बैठक। बीती रात छात्रों ने सीएम सोरेन, राहुल और तेजस्वी का फूका पुतला, कहा 20 अगस्त को करेंगे घेराव, सीएम आवास। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने एनटीए को घेरा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, सुबह के 8 बज गए हैं। अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी। बात करेंगे रूस पर यूक्रेन के बड़े हमले की खबर, वंदे मातरम के गायन पर घिरी कांग्रेस से जुड़ी भी आपको पूरी डिटेल के साथ देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर कैसे कांग्रेस और बीजेपी में टकराव बढ़ा हुआ है। जिक्र दिमागी नक्सल वाले बयान पर जारी सियासत का भी करेंगे। वहीं यूपी में तेज हो रही है सियासी हलचल, उसकी खबर भी पूरी डिटेल के साथ आपको देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि रांची में छात्रों का नया अल्टीमेटम आखिर क्या है। बात पंजाब की भी होगी, जहां पर किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। और खबर उत्तराखंड में जारी मौसमी संकट की भी आपको डिटेल के साथ देंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। लखीसराय के अशोक धाम में बिजली का तार गिरने के कारण भगदड़ मचने के कारण 7 की श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है। 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बिजली का तार वहां पर गिरा, जिसके बाद जो श्रद्धालु वहां मौजूद थे, भगदड़ का माहौल वहां पर हो गया। लखीसराय के अशोक धाम में ये पूरा हादसा हुआ। 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, क्या अपडेट है, कैसे ये पूरे हालात वहां पर कैसे पैदा हो गए? अभी 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। रोहित, ये भी बताइएगा कितने लोग वहां पर मौजूद थे।
2: पूजा, ये आज सावन का तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार की बहुत ज्यादा महत्वता होती है, और इसी को लेकर आज लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर, जो कि शिव भगवान शिव का बड़ा मंदिर है, वहां पर रात से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो जुटना शुरू हो गए थे जलाभिषेक करने के लिए। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 से 60,000 के लोग जो है वो मंदिर परिसर में पहुंचे हुए थे सावन के मौके पर जल चढ़ाने के लिए। और थोड़ी देर पहले की ये घटना है, जब बताया जा रहा है कि अचानक से बिजली का एक तार है वो टूटकर जो गिरा, और उसके वजह से वहां पर अचानक भगदड़ मच गई। और इस घटना में अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि 7 महिलाओं की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है सभी मौतों की, लेकिन मौत की खबर है, 7 महिलाओं की खबर है। और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो इस घटना में घायल भी हुए हैं इस भगदड़ में, जिन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया है, भर्ती कराया गया है बेहतर इलाज के लिए। और जैसे ही ये भगदड़ की घटना घटी, उसके बाद प्रशासन की टीम जो है वहां पर पहुंचे और फिर राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया है। और क्योंकि भगदड़ की स्थिति हो गई थी, तो प्रशासन की ओर से जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी उसको भी तोड़कर श्रद्धालु मतलब एक दूसरे भागने की और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए, और इसी में ये घटना जो है वो घटी है। पूजा,
1: रोहित, क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बिजली का तार गिरने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है?
2: देखिए, अभी खबर है कि बिजली के तार के गिरने की वजह से ही ये पूरी घटना घटी है। हालांकि प्रशासन ने अभी किन कारणों से ये भगदड़ की स्थिति हुई है उसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं है। और मौत का आंकड़ा भी जो है, खबर आ रही है कि 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने पुष्टि की, अभी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन घटना घटी है पूजा, और कुछ श्रद्धालुओं की इसमें मौत भी हुई है।
1: रोहित, क्योंकि अस्पताल से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कितने लोग वहां पर भर्ती हैं, उनकी हालत कैसी है, उसको लेकर कोई भी अपडेट आया है अभी तक?
2: देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि खबर है कि 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और 1 दर्जन से भी ज्यादा श्रद्धालु, इसमें अधिकतर महिलाएं हैं, वो पूरी घटना में घायल हुई हैं। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब भगदड़ की घटना होती है तो महिलाएं जो होती हैं वो सबसे ज्यादा पीड़ित वही होती हैं, और इसीलिए जैसे ही ये बिजली का तार गिरने की खबर आई कि बिजली का तार टूट गया है, और उसके बाद अचानक से मंदिर परिसर में जो है भगदड़ की स्थिति हुई, सब एक दूसरे जान बचाने के लिए वहां भागते नजर आए, एक दूसरे पर चढ़ते हुए नजर आए, किसी तरीके से जान बचाने के लिए बैरिकेटिंग को तोड़ा गया, और इसीलिए इसी घटना क्रम में, इसी भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है और 1 दर्जन से ज्यादा घायल हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है, कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल प्रशासन वहां पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। पूजा,
1: रोहित, अशोक धाम में जहां पर ये पूरी भगदड़ मची है, उसके बाद अब वहां क्या हालात है, क्या वहां पर किसी तरह की कोई रोक लगा दी गई है?
2: नहीं, फिलहाल वहां पर पुलिस की जो है और ज्यादा बंदोबस्त भी की गई है, और क्योंकि देखिए सावन का तीसरा सोमवार है, जैसे मैं बता रहा था सबसे महत्वपूर्ण तीसरा सोमवार ही होता है, इसीलिए कल पिछले एक दो दिनों से ही बिहार के तमाम शिव मंदिरों में जो है वो पुलिस की गश्ती या पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो तो बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की घटना घटी है। अब भी प्रशासन इसकी जांच करेगा कि किन कारणों से ये घटना घटी, क्या वाकई बिजली का तार टूटा था उसके बाद भगदड़ की स्थिति मची, या किन और कारणों से जो है ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल लखीसराय के अशोक धाम में जो है वो एक बड़ी घटना जो है कह सकते हैं वो घटी है, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है पूजा,
1: क्योंकि 7 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है जो खबर सामने आई है रोहित। ऐसे में किसकी खामी निकलकर सामने आ रही है, किस पर सवाल उठ रहे हैं?
2: देखिए ये अब थोड़ा जांच करने का विषय है, क्योंकि अचानक से अगर बिजली का तार वहां पर टूट कर गिरा है और उसमें अगर वाकई करंट होगा तो भगदड़ की स्थिति शायद इन्हीं कारणों से जो है वो हुई होगी, लेकिन फिलहाल प्रशासन अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। प्रशासन इस वक्त राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है, पुलिस की टीम जो है वो मौके पर है, प्रशासन की टीम मौके पर है, एम्बुलेंस के जरिए जो है घायलों को जो सदर अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या अत्यधिक भीड़ हो जाने के कारण ये भगदड़ की घटना घटी, क्या सब कोई श्रद्धालु एक दूसरे से पहले जलाभिषेक करना चाह रहे हो इसी के कारण भगदड़ मची, या बिजली का तार गिरने की जो बात आ रही है उसके वजह से घटना घटी है। फिलहाल जांच होगी तो पता चलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी प्रशासन का व्यक्ति जो है कोई डीएम या एसपी है अभी फिलहाल इस पर इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं है, लेकिन भगदड़ की घटना घटी है पूजा, और इस घटना में 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है।
1: चलिए ठीक है रोहित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटती हूँ। तो देखिए लखीसराय के अशोक धाम में बिजली का तार गिरा, जिसके बाद वहां पर भगदड़ का माहौल हो गया। इस बीच 7 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी है, कई लोग घायल भी हुए हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर इनका इलाज चल रहा है। ऐसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर बिजली का तार गिरने की वजह से ही ये पूरा हादसा हुआ। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित अब आगे इस पूरे मामले पर क्या होने वाला है, जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है वो कहां के बताए जा रहे हैं, कहां से वो आए थे, कुछ उसके बारे में जानकारी है?
2: देखिए पूजा, ये अशोक धाम जो मंदिर है वो लखीसराय का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है, और इसीलिए कल से ही हम देख रहे हैं शनिवार रविवार से ही वहां पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जुटना शुरू कर चुके हैं, और क्योंकि आज हम मैं बता रहा था बार बार कि ये तीसरा सोमवारी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसीलिए जलाभिषेक करने के लिए आसपास के कई जिलों से भी श्रद्धालु आज अशोक धाम मंदिर पर पहुंचे हुए थे। काफी प्रसिद्ध और मंदिर है और पौराणिक मंदिर है वो, और सुबह से ही हम देख रहे थे जलाभिषेक जो है जब से शुरू हुआ था उसके बाद हजारों की संख्या में, तकरीबन 50 से 60 हजार बताया जा रहा है कि श्रद्धालु आज अशोक धाम पर पहुंचे थे, जिसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई थी, प्रशासन की ओर से पुलिस को की कह सकते हैं बंदोबस्तगी भी की गई थी, प्रशासनिक लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन इसी बीच जो ये खबर आई कि तार बिजली का तार वहां पर टूट कर गिर गया है, और उसके बाद जो है जैसे ही ये बात श्रद्धालुओं के बीच फैली कि बिजली का तार टूट कर गिर गया है, अपनी जान बचाने के लिए श्रद्धालु इधर उधर भागते नजर आए, और उसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, और जो भी बैरिकेटिंग लगाया गया था प्रशासन के तरफ से, पुरुषों का अलग एक लाइन होती है महिलाओं के लिए अलग, वो सबको तोड़कर श्रद्धालु इधर उधर भागते नजर आए, और भगदड़ की स्थिति में 7 महिलाओं की मौत की खबर है पूजा।
1: चलिए ठीक है रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो भगदड़ की वजह से 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बिहार के लखीसराय से अस्पताल में उन सबको भर्ती कराया गया है, ज्यादातर यहां पर महिलाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि जब भगदड़ का माहौल हो जाता है ऐसे में महिलाएं फंस जाती हैं, और इस बीच अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रोहित अभी तक कोई भी बयान सामने आया है जो परिजन हैं उन लोगों के जो घायल हो चुके हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका कुछ इस पर कहना है, उन्होंने कुछ बताया वहां पर व्यवस्था कैसी थी?
2: देखिए क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और तमाम शिव मंदिरों में जो है वो जबरदस्त और कह सकते हैं भयंकर भीड़ जो है वो हो रही है, और बिहार के भी कई जिलों में जो शिव मंदिर है वहां पर कल से ही हम देख रहे हैं कि तीसरे सोमवार को लेकर ज्यादा भीड़ जो है इकट्ठा हो रहा है और अशोक धाम मंदिर लखीसराय का बहुत ही ऐतिहासिक पुराण और प्राचीन मंदिर है वहां पर, और इसीलिए वहां पर कल शनिवार रविवार से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर जुटना शुरू हो गए थे और जलाभिषेक करने के लिए जो है वहां पर तांता लगा हुआ था श्रद्धालुओं का, और इसी को लेकर जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई थी। ऐसा नहीं है कि वहां पर पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद नहीं थे, पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद थे, लेकिन जब ये बात फैली और कि वहां बिजली का तार टूटकर गिर गया है तो इसके बाद ही वहां पर जो श्रद्धालु मौजूद थे वहां हड़कंप मचा और ये बात फैली कि बिजली का तार गिरने से।
1: बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें भी सामने आ रही है, काफी ज्यादा भीड़ थी क्योंकि सावन का सोमवार है, ऐसे में तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे और भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए, ऐसे में वहां पर भगदड़ का माहौल हो गया, कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं लखीसराय के मंदिर से, और पूरा ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि श्रद्धालु की संख्या कई ज्यादा वहां पर थी। शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं मंदिर से, श्रद्धालु की संख्या अच्छी खासी थी तो वहां पर भगदड़ का माहौल हो गया, यानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं शशि?
3: देखिए, व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं और यही सवाल जो लखीसराय के डीएम है उनसे भी हुआ, शैलेंद्र कुमार डीएम है, तो उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इंतजाम करके रखा हुआ था, खुद जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तकरीबन सुबह तड़के 3 बजे से वहां मौजूद थे, लेकिन अचानक से एक गेट के पास भगदड़ की स्थिति बनी है और कारण जो बताया जा रहा है पूजा वो ये कि वहां पर एक अफवाह उड़ी कि जो बिजली का तार है वो गिर गया है। बहुत कुछ कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहा है, लेकिन भगदड़ मची और उस भगदड़ में ही 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबरें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि कितने लोगों की मौत हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका लखीसराय सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीएम खुद मौके पर मौजूद है। जो जिले की SP है प्रेरणा कुमार, वो छुट्टी पे है, उनकी जगह SDPO चार्ज में है, तो वो भी पहुंचे हैं मौके पे, वो भी वहां पे हैं। लेकिन एक घटना हुई है और दुखद घटना हुई है, और सबसे बड़ी बात यह कि ये सावन की तीसरी सोमवारी है, सबको मालूम है कि अशोक धाम जो है उसका एक अपना महत्व है, जो भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और प्रशासन की तरफ से मंदिर प्रबंधन की तरफ से जो बैरिकेड्स है ना वो भी लगाए गए हैं, लेकिन जो स्थिति बनी और किन परिस्थितियों में वहां भगदड़ मची ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक दुखद घटना हुई है। प्रशासन का पूरा फोकस इस वक्त इस बात पे है कि जो घायल है उनको ट्रीटमेंट कराया जा सके, मौके पे एम्बुलेंस जो मौजूद थे उनके जरिए जो घायल श्रद्धालु है उनको अस्पताल ले जाया गया है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके पहचान और उनकी पुष्टि अभी प्रशासन आगे करेगा, लेकिन एक बड़ी दुखद घटना घटी है और लखीसराय अशोक धाम बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन कभी ऐसी घटना यहाँ हुई नहीं, पहली दफे ऐसी कोई घटना हुई है और वो भी सावन के महीने में सोमवारी के दिन।
1: शशि, जो श्रद्धालु वहां पर अब पहुंच रहे हैं, वहां के हालात अभी क्या हैं मंदिर के, क्या अभी उनको पूजा अर्चना वहां पर करने दिया जा रहा है, यहाँ पर किसी तरह की रोक लगा दी गई है क्योंकि इतना बड़ा हादसा वहां हुआ है?
3: नहीं, रोक तो नहीं लगाई गई है, क्योंकि ये घटना सुबह तकरीबन 6:40 से 6:45 के बीच में हुई, जैसा खुद लखीसराय डीएम ने पुष्टि की है, तो रोक नहीं लगाई गई है। हाँ, ये जरूर है कि एक हादसा होने के बाद जो स्थितियां परिस्थितियां होती हैं उसके बाद वहाँ प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है, लेकिन एक घटना हुई है, एक हादसा हुआ है और अब तो ये भी जांच का विषय है कि आखिर किन परिस्थितियों में भगदड़ मची, चूंकि बैरिकेड्स जो लगाए गए थे जिसमें कतारबद्ध होकर के श्रद्धालु अंदर की तरफ जा रहे थे मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, वो बैरिकेड्स टूटा है, और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी जो सामने आया है वो बता रही है कि महिला श्रद्धालु ही बता रही है कि महिलाओं के बीच एक अफवाह फैली कि बिजली का तार टूट गया है, और हालांकि तार कोई गिरा था वहां पे, इस बात की भी पुष्टि हो रही है, वो वायर कवर्ड था, मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें कोई करंट की स्थिति थी, लेकिन एक अफवाह जो होती है ना कि बिजली का तार गिर गया और उसके बाद जो अफरा तफरी मची उस पर एक के बाद एक जो श्रद्धालु है वो गिरते चले गए, और महिलाएं ज्यादा इसके चपेट में आई हैं, क्योंकि भगदड़ की स्थिति जब भी बनती है कहीं तो हमने देखा है कि जो महिलाएं और बच्चे हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ भी लगभग वही बात सामने आई है, बैरिकेड टूटा, भगदड़ मची, एक के बाद एक लोग एक दूसरे पे गिरते गए और नतीजा ये हुआ कि जो आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है लेकिन तकरीबन 7 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं।
1: शशि, जब ये पूरा हादसा हुआ तो जो श्रद्धालु थे वहां पर, जो घायल श्रद्धालु थे, उनको कब तक अस्पताल ले जाया गया, एम्बुलेंस वहां पर कब तक पहुंची थी?
3: देखिए एम्बुलेंस चूंकि प्रशासन, जैसा डीएम खुद कह रहे हैं, प्रतिदर्शी तो भी बहुत स्पष्ट से बता नहीं पा रहे हैं, अफरा तफरी की स्थिति है वहां पर पूजा, लेकिन डीएम लखीसराय जो है वो खुद बता रहे हैं कि जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं इस रामी मेले में या फिर सोमवारी के मद्देनजर, वो इंतजाम रखे गए थे। लेकिन हाँ, चूंकि भीड़ वाला पूरा इलाका है और ये पूरा जोन, जब आप लखीसराय से मुंगेर वाले रूट में जब बढ़ेंगी जो मुख्य सड़क है, तो उसमें अशोक धाम के लिए एक अलग सड़क निकलती है और उस वो पतली सड़क है और आप समझ सकती हैं कि श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ रहती है कि वहां पर उस पूरे कई किलोमीटर के जोन में सामान्य तौर पे कोई गाड़ी जाती नहीं है, वहां पर गाड़ियों के जाने पर भी रोक लगी रहती है। तो वैसी स्थिति में एम्बुलेंस जो तैनात थे उनको निकालना भी, जो विजुअल्स हम दिखा भी रहे अपने दर्शकों को, उसमें निकालना भी गाड़ियों को, एम्बुलेंस को, बहुत आसान नहीं था। लेकिन हाँ, लोगों ने भी थोड़ी दिखाई है सजगता, एम्बुलेंस जो वहां थे उनको निकाला गया है, घायलों को जो सदर अस्पताल है वहां पहुंचाया गया है। तो एक अच्छी बात ये रही है कि लोग इसके बाद सचेत हैं, वहां पे घायलों का इलाज चल रहा है, महिलाएं ज्यादा हैं इसमें और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लखीसराय डीएम भी खुद वहां कैंप कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया एसपी जो है वो छुट्टी पे हैं, प्रेरणा कुमार, और उनकी जगह एसडीपीओ चार्ज में है, तो वो भी फिलहाल कोशिश ये कर रहे हैं कि हालात पर नियंत्रण पाया जाए, जो घायल है उनको उचित ट्रीटमेंट मिले। लेकिन ये एक बड़ा और दुखद हादसा तो हो गया है, सोमवारी जो पवित्र सावन के महीने के दिन तीसरे सोमवारी है, उस दरमियान अशोक धाम
1: जी, क्योंकि अभी तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। शशि, क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है वहां पर, क्या घायलों की कितनी संख्या है, कितने लोग घायल हुए हैं, उसको लेकर अभी तक कोई एग्जैक्ट आंकड़ा आया है?
3: देखिए 1 दर्जन से ज्यादा घायल तो बताए जा रहे हैं और थोड़ी देर पहले तक घायल लाए गए यहाँ पे, हालांकि अब जो हमारी जानकारी है वहां पर अब घायलों को नहीं लाया जा रहा है, तो जो लोग भी लाए गए हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से उनको मतलब जो पहली प्राथमिक उपचार और सुविधा दी जा सकती है वो दी जाए, और जैसा डीएम खुद क्लेम कर रहे हैं कि हमने हर तरह की व्यवस्था करके रखा, लेकिन उनसे सवाल भी हुआ, अगर हम वो बयान दिखा पाए अपने दर्शकों को, तो उनसे सवाल भी हुआ पूजा की क्या प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे तरफ से पूरे इंतजाम थे। अब ये जो डीएम और जिला प्रशासन का क्लेम है वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक हादसा हुआ है और अभी आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो पहली जानकारी हम तक पहुंच रही है 7 श्रद्धालुओं की मौत इस हादसे में हुई है। ऐसी स्थिति या परिस्थिति दिखती नहीं है कि बहुत ज्यादा अब संख्या ये बढ़े, लेकिन जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट इस वक्त वहां लखीसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। पूजा
1: क्या, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से इस वक्त एक बड़ी खबर, एक होटल में लगी भीषण आग, आग की वजह से लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सावन को लेकर होटल में ये श्रद्धालु रुके हुए थे और शॉर्ट सर्किट वहां पर हुआ, जो आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आग लगी है। एक होटल में पश्चिम बंगाल के बीरभूम में यह बड़ा हादसा हुआ है, जिस वजह से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सावन को लेकर होटल में श्रद्धालु रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे और होटल में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास एक होटल में आग लगी है। सावन के आखिरी सोमवार की वजह से तीर्थयात्रियों से खचाखच ये होटल भरा हुआ था। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और वो लोग वहां पर सो रहे थे और उस वक्त ये आग लगी है, इसके बाद वो अपने आप को बचा नहीं पाए, 6 लोगों की मौत हो गई है। वहां पर भी भगदड़ का माहौल हो गया। तो सावन के सोमवार पर ये 2 तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई और अब ये दूसरा पूरा हादसा पश्चिम बंगाल के बीरभूम से। इस वक्त की बड़ी खबर, होटल में भीषण आग लगी है जिस वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। होटल में श्रद्धालु रुके हुए थे और सो रहे थे तब आग लगी, शॉर्ट सर्किट वहां पर हुआ, खचाखच वो तीर्थयात्रियों से पूरा होटल भरा हुआ था। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने लोगों को वहां पर रुकने की इजाजत क्यों दी गई थी। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अनुपम, क्या अपडेट है, कितने श्रद्धालु वहां पर रुके हुए थे, क्योंकि माना जा रहा है कि होटल खचाखच वहां से भरा हुआ था तीर्थयात्रियों से।
3: जी देखिए, अभी जो अपडेट है, आग पर काबू पा लिया गया है, होटल के भीतर अब कोई नहीं है। जो दमकल के सूत्रों से खबर हमें मिल रही है कि भीतर में कोई फंसा हुआ नहीं है। कोशिश की जा रही है कि और भी आसपास देख लिया जाए ताकि पूरी तरह से पुख्ता हो सके कि कोई भीतर में और फंसा हुआ नहीं है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बीच 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या में, काफी संख्या में ये जितने भी होटल है वहां पे अभी फिलहाल भीड़ है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं। तो ऐसे में ये होटल जहाँ पर आग लगी आधी रात के बाद, यहाँ पर भी काफी संख्या में जो यात्री थे वो आए हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि फायर अलार्म नहीं बजा जिसकी वजह से उनकी नींद नहीं टूटी। तो पूरी घटना की जांच भी फिलहाल की जाएगी कि आखिरकार ये आग कैसे लगी, निकलने के रास्ते कैसे थे, क्या हुआ। लेकिन फिलहाल तो जो प्राथमिकता थी वो थी किसी की तरह जो घर में अगर कोई फंसा हुआ हो तो उसको निकालने की। कई लोगों को निकाला गया है, बहुत लोगों को सीढ़ियों के जरिए, लैडर के जरिए जुलाया गया था, दमकल विभाग की ओर से, पुलिस की ओर से, उसके जरिए निकाला गया है। तो फिलहाल यही अपडेट है।
1: अभी वहां पर क्या हालात है अनुपम, क्या अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं, लगभग कितने लोग वहां पर मौजूद थे?
3: ये देखिए, अभी जो ताजा हालात है उसके मुताबिक अभी और कोई फंसा हुआ नहीं है। ये जो दमकल के अधिकारी हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं उनका कहना है, क्योंकि भीतर में उन लोगों ने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया है। अब ज्यादातर होटल में तलाशी अभियान चल रहा है तो जिसमें अभी तक किसी के फंसे होने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। हालांकि एक दो जगह और हैं जहां पर देखने की कोशिश हो रही है, घुसने की कोशिश हो रही है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक लोग भीतर नहीं है। बाहर में बहुत काफी सारे लोग थे, खचाखच भरा हुआ था ये होटल, लेकिन कितनी संख्या थी ये अभी बताना मुश्किल है। बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है, नीचे ऊपर से नीचे उतारा गया है लैडर के जरिए, और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं ये भी कहना है।
1: जो 6 लोगों की मौत हुई है अनुपम, वो कौन थे, कहां से वो आए थे, उनको लेकर कोई जानकारी आई है अभी तक?
3: जी अभी तक ये जानकारी नहीं है कि वो कहां के थे, पहचान करने की कोशिश हो रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके परिचित नहीं मिले हैं, तो इसी हिसाब से देखकर पुख्ता करके ही थोड़ी देर में ये परिचय प्राप्त होगा।
1: जो कहा जा रहा है अनुपम कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी, क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है, क्या कोई और वजह तो सामने नहीं आ रही?
3: देखिए, प्राथमिक अनुमान शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। हालांकि अब तो ये पूरी जांच होगी, फॉरेंसिक जांच होगी, कई तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो आग लगती है प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि प्राथमिक जो अनुमान है वो शॉर्ट सर्किट का है, हालांकि पुख्ता बात तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगी।
1: चलिए ठीक है, आप बने रहिए अनुपम, आपके पास लौटेंगे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह सवेरे दोनों जगह पर यह हादसा हुआ है। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के बीरभूम के एक होटल में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट अभी तक वजह बताई जा रही है जिसके कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर लखीसराय के अशोक धाम में भगदड़ का माहौल हो गया और वहां पर 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग वहां घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अशोक धाम मंदिर में माना जा रहा है कि बिजली का तार वहां पर गिर गया जिसकी वजह से भगदड़ का माहौल हो गया और ऐसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई श्रद्धालु घायल भी बताए जा रहे हैं।
4: लगभग 6:45 बजे हम लोग तो वहां पर, आप लोग देखे, 3:30 बजे से हम लोग वहीं पर हैं, सब व्यवस्थित है, अप्रत्याशित भीड़ हो गई और 6:30-7 बजे के लगभग में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया। एक तो पहले से भीड़ थी उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत में पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था। और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे, पता चला कि एक साइड में खेत के साइड में भीड़ पड़ने से बैरिकेटिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए।
1: तस्वीरों के साथ सुपर 8 में वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
2: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
3: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
1: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
4: वाव दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
2: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
3: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
1: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
4: वाव दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
7: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
12: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
13: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माई वे।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक.
4: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
5: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
4: नहीं सर.
5: ट्वेल्थ किससे की हो?
4: ट्वेल्थ सर मेरा PCM से रहा.
5: कंपाउंड क्या होता
4: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर.
5: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी. तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही. एक मिनट,
4: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है. इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते.
5: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बिहार के लखीसराय में मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत की खबर। बिजली का तार गिरने के कारण बेतहाशा भागे लोग। अचानक 2 ट्रेनों के आने से बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बंगाल के बीरभूमि में होटल में आग लगने के कारण 6 लोगों की गई जान। सावन के मौसम में श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था होटल। वंदे मातरम गायन में कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले तेज। अमित शाह ने उठाए सवाल, बोले इस पाप की माफी नहीं। कांग्रेस का पलटवार, उपदेश ना दे, खुद का करेंगे मूल्यांकन। रांची में आज फिर से छात्र प्रतिनिधियों और सरकार की वार्ता। दोपहर 2 बजे बैठक। बीती रात छात्रों ने सीएम सोरेन और राहुल और तेजस्वी का फूका पुतला। कहा 20 अगस्त को घेरेंगे सीएम आवास। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द। अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला। तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला। कांग्रेस ने एनटीए को घेरा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार के लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में दर्दनाक हादसा हुआ है। लखीसराय में भगदड़ के कारण 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सावन का तीसरा सोमवार, ऐसे में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए ये श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। इसी दौरान श्रद्धालु के बीच बिजली का तार गिरने के कारण अचानक से भगदड़ मच गई। इस पूरे हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस घटना के वक्त मंदिर परिसर में भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि सावन का सोमवार है, ऐसे में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है करीब 50,000 श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए कतार में लगे हुए थे, और इसी दौरान बिजली का तार गिरने के कारण लोग घबराकर वहां से भागने लगे, जिससे कि भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। कई महिलाएं भीड़ में दब गई, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई है। घायलों को तुरंत लखीसराय सदर अस्पताल पहुंचाया गया और उनका अभी वहां पर इलाज चल रहा है। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ का माहौल हो गया। 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई महिलाएं उस भीड़ में दब गईं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। अस्पताल में कई लोगों को भर्ती कराया गया है जो कि घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि वहां पर बिजली का तार गिर गया, जिसकी वजह से पूरा भगदड़ का माहौल हो गया। सावन का सोमवार, जिसके लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे।
1: पीछे से औरत लोग ना लाइन में लगल थी, घुस गई 10-12 गो, धक्का दे दी।
2: अच्छा,
1: गिर गए, मतलब समझ गए 20-25 गो औरत गिर गई एक दूसरा पे, उसी में दब के बहुत लोग बेहोश हो गए। हाँ, हम भी बेहोश हो गए थे।
2: अच्छा,
1: उधर पकड़ करके हम 2-4 गो लेडी लोग लाई, तब पानी उनी छीटी, पानी पे तब होश आए। बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण हुआ,
2: बहुत ज्यादा भीड़।
3: पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है। स्थिति अभी पता कर
0: गया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। शशि, अभी वहां पर क्या स्थिति है? चश्मदीदों को जो मैं सुन रही थी, उनका यही कहना है कि काफी ज्यादा भीड़ थी वहां पर, भगदड़ मच गई, बेहोश हो गए, तो व्यवस्था पर शशि जाहिर है सवाल उठाए जा रहे हैं।
4: बिल्कुल सवाल उठेंगे, क्योंकि हादसा हुआ है और जो प्रारंभिक जानकारी है पूजा, उसमें 7 लोगों की मौत की खबरें भी आ रही है। प्रशासन तो पुष्टि करेगा जब आधिकारिक तौर पे करेगा, लेकिन अगर तमाम इंतजामों के बावजूद अगर इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी और हादसे में इतने लोगों की मौत हुई है और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा घायल है, तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन हाँ, लखीसराय के डीएम जो है वो खुद मौजूद है मौके पे। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक बड़े अधिकारी, जिले के डीएम या जो भी अधिकारी हैं, वो इस घटना के बाद एक्टिव नहीं है। वो सक्रिय हैं और वो खुद मीडिया से बात भी कर रहे थे, जो बयान हम सुना रहे थे अपने दर्शकों को। उनका भी ये कहना है कि एक खास जगह पे, चूंकि ये जो पूरा स्ट्रेच है ना लखीसराय में, जो अशोक धाम मंदिर है, मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, जो मुख्य सड़क है लखीसराय से मुंगेर को जोड़ने वाली सड़क, उस सड़क से एक दूसरी ब्रांच रोड जो है वो अशोक धाम के लिए निकलती है, वो सड़क थोड़ी पतली है। लेकिन वहां पर चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में, आज भी ये माना जा रहा है कि तकरीबन 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन वहां कर चुके हैं और ये संख्या और ज्यादा होगी आज शाम तक, तो उस पूरी सड़क में जहां अशोक धाम मंदिर में लोग जाते हैं पूजा अर्चना के लिए, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। बैरिकेड्स बांस के जो बल्ले होते हैं, जो लकड़ियों के खंभे होते हैं, उसके सहारे बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रेच है और उसके ऊपर बजाबता एक पंडाल भी होता है कि धूप अगर ज्यादा हो या बारिश हो तो जो श्रद्धालु हैं उनको एक सुविधा मिल सके। तो ये जो पूरा इंतजाम प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की तरफ से किया जाता है, उस बैरिकेड्स के अंदर ही श्रद्धालु खड़े थे और वहीं पर एक बिजली का तार जो है वो गिरने की पहले बिजली का तार गिरा भी वहां पे, हालांकि वो कवर्ड वायर था। अब ये जांच का विषय है कि ये तार किस तरह का था, क्या जो पंडाल के अंदर लाइटिंग की जाती है उससे जुड़ा हुआ
0: पावर का। शशि, आपके पास लौटूंगी। डीएम लखीसराय शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, इतना बड़ा हादसा वहां पर आखिर कैसे हो गया? पहले से ही पता था सावन का सोमवार है, काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे।
5: जी मैडम, बताना चाहेंगे कि ये मंदिर परिसर से दूर अशोक धाम रेलवे हॉल्ट के पास की घटना है। ये जो ट्रेन वहां पर अभी, चूंकि वो रेलवे हॉल्ट है, रेगुलर स्टेशन नहीं है, तो अभी श्रावणी मेला के दरमियान में वहां पर ट्रेनें रुकती है, तो उस समय ही 6:30 बजे जो ट्रेनें रुकी, उसे श्रद्धालु सर्व आए, अपना लाइन में लगते जा रहे थे, वो उतना मतलब भीड़ तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था ही कि भीड़ रहेगी और व्यवस्थाएं भी सब थी, लेकिन अशोक धाम हॉल से बाहर निकलते ही राइट साइड में बिजली का पोल था, उस पोल पर मतलब ये मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर की बात है, परिसर से लगभग 800 मीटर बाहर की बात है, अशोक धाम हॉल से 50 मीटर 10-20 मीटर आगे वो बिजली का पोल के ऊपर केबल्ड वायर था, ओपन वायर भी नहीं था, केबल्ड वायर था, लेकिन क्योंकि वो पोल गिरा दाहिने साइड में, दाहिने साइड बोले तो मतलब ये अपोजिट टू द भीड़ का जो क्यू था उसके अपोजिट में गिरा, लेकिन जो वो मेल लोगों का लाइन था उसमें से लोग रूमर उड़ा दिए कि मतलब बिजली का पोल गिर गया, बिजली का पोल गिर गया, तो लेफ्ट साइड की जो महिलाएं थी उनके तरफ लोग दौड़ पड़े, तो वो महिलाएं जो है एक के ऊपर एक, क्योंकि महिला और पुरुष अलग अलग क्यू रहता है, अब पुरुष वाले क्यू के साइड से जैसे ही लोगों ने हल्ला किया कि बिजली का तार, तो सब उधर की ओर भाग पड़े, तो महिलाएं एक के ऊपर एक गिर पड़ी बेचारी, और उसमें वहीं पर एम्बुलेंस था, हम लोग का चलंत एम्बुलेंस था, आपको बाइक एम्बुलेंस रखे गए थे, सारी व्यवस्थाएं वहां पर थी
0: जी।
5: काफी लोगों को तुरंत में हम और एसएसपी के जवान, पुलिस के जवान, मैं खुद वहां 3 बजे से, तो इतना दुखद घटना है, हम लोग के प्रेजेंस में सामने में हम लोग पूरा आगे से पीछे देख रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए भी 3-3 स्वास्थ्य का शिविर लगाया गया है, सभी लोगों को तुरंत एम्बुलेंस में लगा के भेजा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 डेथ यहाँ पर सदर हॉस्पिटल में है, हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर परिजनों के साथ।
0: शैलेंद्र जी, अस्पताल में लगभग कितने लोगों को भर्ती कराया गया, कितने लोग घायल हुए हैं और मौत की पुष्टि कितने लोगों की अभी तक हो चुकी है?
5: अभी हम आए हैं यहाँ पर तो अभी 7-8 लोगों से, 7-8 पेशेंट से मिल चुके हैं, है ना, और 2-3 और होंगे, उससे ज्यादा नहीं, 8-10 लगभग हो, अभी हम एक एक से मिलते जा रहे हैं, आपको बताते हैं चलते हैं।
0: जो अभी श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं शैलेंद्र जी,
5: कोई दिक्कत नहीं
0: जी, जो अभी श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन के लिए, क्योंकि वहां पर डर का माहौल जाहिर है हो गया होगा जब ऐसी खबर सुनते हैं, तो वहां अभी क्या व्यवस्था है, वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए?
5: जी, सब दर्शन हो रहे हैं सर, वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी नियंत्रण में है वहां पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दुखद घटना घट गई, हम लोग सदर हॉस्पिटल में आ गए हैं, ट्राइंग टू टैकल द सिचुएशन राइट नाउ, और जो भी सरकार की तरफ से जो अनुग्रह राशि है, जो भी हम लोग कर सकते हैं, जो व्यवस्था, वो सब लोग लगेंगे, उसमें पूरा प्रशासन राज्य सबसे लगा।
0: चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भगदड़ की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में ये भगदड़ मची है, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ, बिजली का तार वहां पर गिरा जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की मौत हुई, महिलाएं वहां दब गई, भागदौड़ वहां पर मचने लगी और ऐसे में कई लोग घायल भी हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है भाग्य चक्र का, देखिए भाग्य चक्र पंडित शैलेंद्र पांडे के साथ।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5 बजे तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 4:19 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में विशेष लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन लाभ के योग हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आस।

बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, चोट चपेट से सावधान रहें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा, जेन जी हो या जेन अल्फा। संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी।
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
3: चारों तरफ देश में हंगामा है, ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा, इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।

0: श्रद्धालु, बिजली के तार गिरने की खबर से मचा हड़कंप। अस्पताल में भर्ती हैं कई घायल। बंगाल के बीरभूम में होटल में आग लगने से 6 की मौत। सावन के मौसम में श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था होटल, सोते हुए झुलस गए कई लोग। सुबह 4 बजे उठने लगी थी लपटें। वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले तेज। अमित शाह ने उठाए सवाल, कहा इस पाप की माफी नहीं, कांग्रेस का पलटवार। उपदेश ना दे, खुद का करें मूल्यांकन। रांची में आज फिर छात्र प्रतिनिधियों और सरकार की वार्ता, दोपहर 2 बजे बैठक। बीती रात छात्रों ने सीएम सोरेन, राहुल और तेजस्वी का फूका पुतला, कहा अब 20 अगस्त को घेरेंगे सीएम आवास। यूजीसी नीट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द। अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला। तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला। कांग्रेस से एनटीए को घेरा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हफ्ते का पहला दिन, नया दिन, नई शुरुआत और आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिमागी नक्सल पर चिदंबरम के बयान पर बड़ा घमासान, बीजेपी का चौतरफा हमला। चिदंबरम को बताया दिमागी नक्सल का हेडमास्टर। पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला, धुआं धुआं हुआ शहर, रूस का भी हुआ पलटवार। उत्तराखंड में जारी है कुदरत का कहर, चमोली से आई है लैंडस्लाइड की तस्वीरें। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि देश के 2-2 शहरों में 2 हादसे हुए हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और देश के 2 धार्मिक स्थलों पर हुए हादसों में 13 लोगों की जान चली गई है। सबसे बड़ा हादसा बिहार के लखीसराय में हुआ। यहाँ पर भगवान शिव के मशहूर मंदिर अशोक धाम में जलाभिषेक करने आए शिव भक्तों में मचे भगदड़ से 7 लोगों की जान चली गई। उधर पश्चिम बंगाल के तारापीठ में एक होटल में आग लगने से 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे। एक तरफ होटल में आग लगी और वहां पर कई लोग मौत की नींद समा गए। लखीसराय बिहार की तस्वीर देखिए, यहां पर अशोक धाम में भगदड़ मचने से 7 की मौत हुई। आस्था की अंधभक्ति में दरअसल कई बार ऐसा होता है, इसलिए ध्यान से जाइए। मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ हो तो ऐसी जगहों से परहेज करिए। आस्था श्रद्धा अपनी जगह है लेकिन जान उससे भी बड़ी है। तो होटल में आग से 6 की जान चली गई। लखीसराय से शुरुआत कर रहे हैं जहां पर अशोक धाम में भगदड़ मची। दरअसल वहां पर यह अफवाह फैल गई कि बिजली का तार गिर गया है जिसकी वजह से अचानक भगदड़ में 7 लोग मारे गए। शशि भूषण में से योगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, कैसे हुआ यह हादसा, तफसील से बताइए।
2: नेहा देखिए, आज सावन की तीसरी सोमवारी है और अशोक धाम जो है वो लखीसराय और उसके आसपास में मतलब बिहार में एक स्थान है इस मंदिर का, और यहाँ लोग बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। तो आज सुबह से 3 बजे से ही भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी लखीसराय अशोक धाम में, और तकरीबन 6:40 से 6:45 के बीच सुबह में एक सर्टेन मतलब एक एरिया जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से मंदिर तक पहुंचाने के लिए, तो उस बैरिकेड्स के अंदर ही एक जगह पर भगदड़ की स्थिति मची और उसके बाद लोग एक पर एक गिरते चले गए। इसमें कई लोग घायल हुए और जो हमारी जानकारी है अब तक जो खबरें मिल रही हैं, हालांकि प्रशासन ने पुष्टि नहीं की अभी तक किसी आंकड़े की। खुद मैंने लखीसराय डीएम से भी बात की शैलेंद्र कुमार से, उन्होंने कहा कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं लगातार जो मृतक हैं, लेकिन तकरीबन 7 लोगों की मौत हुई है, 7 श्रद्धालुओं की, और वजह यह बताई जा रही है नेहा कि एक बिजली का तार गिरा जिसके बाद ये अफवाह फैली कि बिजली का तार गिर गया है और करंट है उसमें, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति मची। लेकिन जो वहां के डीएम भी बता रहे हैं और वहां से जो इनपुट्स है उसके मुताबिक वो वायर पूरी तरीके से कवर्ड था, कोई भी जो हादसा है वो उस वायर की वजह से नहीं हुआ, लेकिन जो अफवाह फैली उस अफवाह की वजह से भगदड़ की स्थिति मची और वो उस स्थिति में वहाँ पर तकरीबन 7 लोगों की मौत हुई है, 1 दर्जन से ज़्यादा बुरी तरह से घायल हैं। घायलों का इलाज जो लखीसराय सदर अस्पताल है वहाँ पर चल रहा है। खुद DM मौके पर कैंप किए हुए हैं। लखीसराय की जो SP हैं प्रेरणा कुमार वो छुट्टी पे हैं, तो उनकी जगह SDPO जो है वो पुलिस को देख रहे हैं, तो SDPO भी वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। प्रशासन अलर्ट पे है। अगर लखीसराय अशोक धाम की स्थिति कहें तो वहां पर श्रद्धालु एक बार फिर से दर्शन कर रहे हैं, जो थोड़ी देर तक तफरी
0: मैं लौटूंगी आपके पास। चश्मदीद वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि प्रशासन इस पूरे हादसे के बारे में क्या कुछ कह रहा है।
3: पीछे से औरत लोग लाइन में लगल थी, घुस गई 10-12 में और धक्का दे दी।
4: अच्छा,
3: गिर गए, मतलब समझ गए 225 औरत गिर गई एक दूसरा पे, उसी में दब के बहुत लोग बेहोश हो गए। हाँ, हम भी बेहोश हो गए थे।
4: अच्छा,
3: उधर पकड़ करके हमको चार गो नदी लोग लाई, तब पानी उनी छीटी, पानी पे तब होश आए। बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण हुआ,
4: बहुत ज्यादा भीड़।
5: लगभग 7:45 हम लोग तो वहाँ पर, आप लोग देखे 3:30 से हम लोग वहीं पर हैं, सब व्यवस्थित है। अप्रत्याशित भीड़ हो गई और 6:30-7 के लगभग में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया। एक तो पहले से भीड़ थी, उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत में पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था। और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे, पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए।
0: 3 तस्वीरें आपके सामने, कैसे अशोक धाम में अचानक भगदड़ मचने से लगभग 7:45 के आसपास वहां पर 7 लोगों की जान चली गई, 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, किस तरीके से अब घायलों का इलाज चल रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, क्योंकि सावन का सोमवार है, जाहिर तौर पर यह प्रत्याशित था कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्या कतारबद्ध थे या फिर पूरी तरीके से बेतरतीब वहां पर भीड़ दिखाई दे रही थी?
2: नहीं, भीड़ का दबाव तो था नेहा, इससे इनकार नहीं किया सकता है। और प्रशासन खुद ये कह रहा है कि 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है ना, वो आज सोमवार के दिन या उससे ज्यादा मतलब संख्या हो सकती है जो वहां दर्शन करेंगे या जलाभिषेक के लिए वहां पहुंचेंगे। चूंकि सोमवार के दिन सुबह जब अशोक धाम शिव मंदिर का पट खुलता है, मतलब दरवाजा खुलता है, तो पहले जो कतारबद्ध रात से होते हैं श्रद्धालु, वो चाहते हैं जल्द से जल्द वो जलाभिषेक करें, और इसके लिए एक दबाव भी रहता है श्रद्धालुओं पर, बीती रात से वो खड़े रहते हैं। लेकिन प्रशासन का जो इंतजाम होता है यार, मंदिर प्रबंधन जिस तरह का वहां सिस्टम बना करके चलता है, उसमें बजाबता बैरिकेड्स होते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाली बैरिकेड्स, जो बांस और बल्ले लकड़ियों के सहारे जो बैरिकेड्स बनाई जाती है वो बनाई जाती है, और उसके ऊपर बजाबता पंडाल बना होता है कि धूप या बारिश से श्रद्धालु जो है वो बचे रहें। तो पूरा सिस्टम तो तैयार था और उस पूरे सिस्टम के तहत ही श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हुआ यह कि एक पॉइंट पे, जो मंदिर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी मान लीजिए, मतलब जो अशोक धाम हॉल है उससे तकरीबन थोड़ा पहले, वहां पर एक भगदड़ की स्थिति बनी, और वो इस वजह से जो बता रहे थे पहले भी कि वहां एक बिजली का तार गिरा, जिसके बाद ये अफवाह फैली कि उसमें करंट है, बिजली का तार गिर गया है, तो लोग बचने के लिए ना वो अफरा तफरी की स्थिति में आए, और यहीं पर जब भगदड़ की स्थिति बनती है तो सबसे अधिक अगर कोई चपेट में आते हैं तो श्रद्धालुओं में महिलाएं या जहां कहीं भी हमने देखा, और बच्चे आते हैं, और यहां भी वही हुआ है, जो महिलाएं हैं वो उसकी चपेट में आई, कुछ लोग गिरे, उनके ऊपर दूसरे लोग गिरते चले गए, तो भगदड़ जो स्टैम्पेड की स्थिति बनी उसकी वजह से ही लोगों की मौत हुई है। प्रशासन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि किसी को करंट लगा। खुद डीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा भी कि जो तार गिरा था बिजली का वो कवर्ड था, और वो विजुअल्स भी हैं जिसमें वो कवर्ड वायर दिख रहा है बैरिकेड्स के पास। लेकिन जो अफवाह फैली, उस अफवाह की वजह से एक भगदड़ की स्थिति बनी और उसमें ही चपेट में आने से लोगों की मौत हुई, श्रद्धालुओं की मौत हुई।
0: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और हादसे की बात करेंगे जो कि बीरभूम में हुआ है। यहां पर एक होटल में आग लगने से वहां पर सो रहे लोगों की जान चली गई। तारापीठ में 6 की मौत बताई जा रही है। आग की वजह तब तक पता नहीं चला है, लेकिन 6 की जान इस पूरे हादसे में चली गई है। ये लोग भी दर्शन के लिए आए थे बीरभूम की घटना, और होटल की हालत देखिए, अंदर से पूरी तरीके से ये होटल जला हुआ दिखाई दे रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि घायलों की अवस्था काफी ज्यादा गंभीर है। तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, किस तरीके से यह हादसा हुआ है?
4: जी देखिए, आज भोर 4 बजे जब लोग नींद में समाये हुए थे, तभी अचानक से होटल के निचले से यानी ग्राउंड फ्लोर के आसपास कहीं से आग लगने की खबर आई, और जब तक कोई कुछ समझ पाता है एक अफरा तफरी का माहौल बन गया और बहुत तेजी से आग फैलने लगी, ऊपर के फ्लोर्स में फैलने लगे और लोग गहरी नींद में थे। इस वजह से लोग जल्दी बाहर निकल भी नहीं पाए, और इसी बीच जो खबरें मिली आखिरकार 6 लोगों की मृत्यु हुई है दम घुटने से और आग में झुलसने से उनकी मौत हुई है, इस पुलिस की ओर से ये बताया जा रहा है। लेकिन ठीक कहां से और कैसे आग लगी इस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जो माना जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी हो सकती है, लेकिन क्या इस होटल में जो फायर एक्सटिंग्विशिंग ऑपरेटर्स होते हैं, आग बुझाने के जो ताजो सामान होना चाहिए ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग्स में, क्या वो थे, उस बारे में अभी तहकीकात की जा रही है। ये बताया जा रहा है चश्मदीद जो थे वो कह रहे हैं कि होटल के जो पिछला दरवाजा था वो बंद था, इस वजह से जब आग फैली तो कुछ लोग बाहर जाने की कोशिश में थे लेकिन पिछला जो दरवाजा है वो बंद था। लेकिन ये सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन इस समय जितने भी लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और तफ्तीश शुरू की गई है। फिलहाल इस बिल्डिंग के अंदर कोई और मौजूद नहीं है, लेकिन ये पहला ऐसी घटना नहीं है रामपुरा या तारापीठ में, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अब देखना यह होगा क्या कुछ सरकार की ओर से कार्रवाई की जाती है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इसमें अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन हकीकत तो यह है कि लापरवाही हो या फिर एक्सीडेंट हो, 6 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग अभी भी अपने वो अपने जिंदगी से जूझ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, उनके इलाज चल समय चल रहा है। नया
0: ठीक है, तो तारापीठ की ये घटना है जहां पर 6 लोगों की जान चली गई है, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात दिमागी नक्सल पर चले घमासान की। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में दिमागी नक्सल को आइसोलेट करने की बात कही थी। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम का एक्स पर बयान आया और फिर बीजेपी ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया।
6: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
7: अपने दिमाग से नक्सलवादी विचारधारा को खाद पानी देने वालों पर जब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हमला बोला तो पलटवार करने पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम सामने आ गए। चिदंबरम ने एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदंबरम यही नहीं रुके, कुछ घंटे बाद उन्होंने एक्स पर फिर लिखा, दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक नया रूप है। अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था, ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उन्हीं अपशब्दों का एक नया रूप है। चिदंबरम के इस बयान पर बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए। दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, देश के तमाम शहरों से चिदंबरम पर चौतरफा हमला शुरू हो गया।
8: और जिनमें कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया था स्वागत की उठता थी। चिदम्बरम साहब आप देश के अप्रिय मंत्री है रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई बोके थे, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के, आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है उसी का चेहरा बने हैं पिकर के दावर।
9: गली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदम्बरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
7: वार पलटवार के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पी चिदम्बरम के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सली हैं, सिर्फ निम्नलिखित लोग ही दिमागी नक्सली हैं, माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, चिकन निक को काट कर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हुआ तो चलता रहा। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं।
10: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते।
7: बयानबाजी से साफ नजर आ रहा है कि ये विवाद अभी और गहराने वाला है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, जो दिमागी नक्सल पर दंगल जारी है, इसका अंत कहां पर होगा, क्योंकि पहले भी इस तरह की बहस छिड़ चुकी है।
11: जी नेहा, अगर हम इस सबके अंत की बात करें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जल्द इसका अंत होगा, क्योंकि लगातार बयानबाजी हो रही है। पहले प्रधानमंत्री ने इस टर्म का इस्तेमाल किया लाल किले की प्राचीर से, उसके बाद से लगातार इस पर विवाद जारी है। पी चिदम्बरम ने तो ये तक कह दिया कि मुझे गर्व है कि मैं एक दिमागी नक्सल हूं, उसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये साफ कहा कि विपक्ष को लेकर यह बात नहीं कही गई है, उन लोगों को लेकर कही गई है जो 370 का समर्थन करते हैं, भारत को नॉर्थ ईस्ट से अलग की बात करते हैं और संविधान विरोधी है, उनको दिमागी नक्सल कहा गया है। हालांकि वाद विवाद इस पूरे मामले में लगातार चल रहा है। कल रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ना सिर्फ दिमागी नक्सल की बात की बल्कि वंदे मातरम पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख अपनाया और पूरा वंदे मातरम गाने पर रोका गया, सोनिया गांधी ने बीच में ही टोक दिया, उसको लेकर भी कांग्रेस पर इस वक्त बीजेपी हमलावर है। लगभग 11 बजे के आसपास आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा होने जा रही है और संभवतः बीजेपी फिर से ना सिर्फ वंदे मातरम बल्कि जिस तरह की राजनीति पूरी हो रही है दिमागी नक्सल टर्म के आसपास, उस पर अपनी बात रख सकते हैं।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिमागी नक्सल पर जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। प्रधानमंत्री के बयान के बचाव में टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी सामने आए तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। सुनिए,
12: ये दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं एसी हॉल में सेमिनार करवाते हैं, ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, ये जो दिमागी नक्सलाइट ये जो चलाते हैं ये खुद ही हमारे देश में रहती है, बार बार देश छोड़ के विदेश भाग जाते हैं, सेमिनार करते हैं, बाहर का पैसा लेके आते हैं। एक तो हमने निकाल दिया जंगलात नक्सलाइट निकाल दिया, माओइज्म निकाल दिया, अब ये आ गया।
13: जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जेंजी जिसको बोला जा रहा है, इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं, कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी नक्सल खालिस्तानी सब बता देते हैं।
0: और अब वंदे मातरम के कथित अपमान की बात करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए देश भर में प्रदर्शन किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर हमला बोला।
14: वंदे मातरम का अपमान,
15: नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मातरम, मातरम।
16: गुजरात के सूरत में नारेबाजी और प्रदर्शन।
17: सोनिया गांधी माफी मांगे।
16: वाराणसी में कांग्रेस के दफ्तर पर पथराव। अजमेर में कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन। बेंगलुरु में भारतीय जनता युवा मोर्चा का कैंडल मार्च। वंदे मातरम के अपमान पर कोलकाता में बीजेपी का मशाल जुलूस। वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर हैं कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। 15 अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
18: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
16: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी। सफाई देने जयराम रमेश सामने आए।
19: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस।
16: कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते? इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
20: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
16: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र के वंशज उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्र चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है।
20: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
16: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आज झारखंड में छात्रों के आंदोलन की, जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों का आंदोलन 24वें दिन भी जारी है। झारखंड सरकार और छात्रों के बीच आज दोपहर 2 बजे वार्ता होगी। ये सरकार छात्रों के बीच बातचीत का चौथा दौर होगा, क्योंकि अब तक बातचीत बेनतीजा निकली। परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं, इसी को लेकर अभी भी गतिरोध जारी है। शशिभूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशिभूषण, लगातार वार्ता का दौर चल रहा है, आज भी वार्ता होनी है, सरकार मान नहीं रही है, स्टूडेंट्स अड़े हुए हैं, तो बीच का रास्ता निकालने के लिए क्या सोल्यूशन है?
2: देखिए सरकार को भी ये लग रहा है नेहा कि अगर ये जेपीएससी जेएसएससी जो रिफॉर्म मंच है अगर उसके छात्रों से या संगठन के लोगों से बात नहीं की गई तो 20 अगस्त को हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, जैसा हमने बीते 10 अगस्त को देखा था। 10 अगस्त को रांची में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था मंच ने और जो तस्वीरें वहां से हमने देखी, लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट करते रहे, उसमें छात्रों का जो हुजूम उमड़ा और जो विधानसभा तक पहुंचने में कामयाब रहा, फिर बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, तो ये सूरत फिर से ना बने 20 अगस्त को। शायद इसी वजह से सरकार बातचीत के लिए अब आगे आई है। हालांकि हमने देखा 10 अगस्त के बाद, मतलब 9 अगस्त को जो आखिरी बातचीत हुई थी सरकार से, उसके बाद कोई वार्ता हुई नहीं। कल एक ऑफर आया छात्रों के पास कि सरकार बातचीत करना चाहती है और आज 2 बजे से जो विधिक सलाहकार हैं सरकार के, हेमंत सरकार के, उनके साथ 2 बजे वार्ता शुरू होगी। इस वार्ता में भी वही कंडीशन है जो 2 कंडीशन छात्रों ने पहले से रखा हुआ है। एक ये कि जो जेएससी सीजीएल की परीक्षा है उसको रद्द किया जाए, नियुक्तियां रद्द हों, और साथ ही साथ जो सीबीआई जांच है वो कराई जाए, जो राज्य की सीआईडी जांच कर रही है उस सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है छात्र। तो 24वां दिन है आज आंदोलन का, अभी भी छात्र अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। कल हमने देखा तमाम पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आई, रांची के अलावा हर जगह हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया, राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर भी अब आंदोलनकारी छात्र निशाने पर हैं। तो उन छात्रों का ये भी कहना है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से झारखंड के छात्रों की मांग का समर्थन नहीं कर रहे विपक्षी दल, तो आज दिलचस्प होगा 2 बजे से बैठक शुरू होगी, क्या नतीजा निकलता है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच कल छात्रों ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन

0: बिना देरी छात्रों की मांगे मान ली जाए। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
1: और अब बात अखिलेश यादव की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपने अपनी समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर हमला बोला। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। अब अखिलेश यादव ने उनके उसी बयान को आधार बनाकर उन पर हमला किया। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी पलट गए, इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए और अब पहली बार अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार किया।
2: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
1: और 2022 में मुजफ्फरनगर के खतौली में जयंत चौधरी ने चवन्नी वाली बात कही थी, सुनिए उस वक्त जयंत चौधरी ने क्या कहा था।
3: ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा?
4: अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उच्च टिप्पणी की गई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। आज अखिलेश यादव जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हम पे एहसान किया है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, जब आप पूरी तरीके से हताश हो चुके थे। 2017 में आपके 47 विधायक आए थे हमसे गठबंधन करने के कारण, आप 111 पे पहुंचे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जहां आपका खाता नहीं खुलता था वहां पे आपके विधायक जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के कारण। गठबंधन एक ऐसा धर्म होता है जहां पे एक दूसरे की मदद की जाती है, परंतु आपने हमारी पार्टी के साथ साजिश करके उसको खत्म करने की कोशिश की।
1: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से सांप की मौत। सावन में सोमवार में आए थे श्रद्धालु। बिजली का तार गिरने की खबर से भगदड़। बंगाल में होटल में आग से छेक की गई जान। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर टकराव तेज। चिदम्बरम के बाद अब महबूबा मुफ्ती का तंज। खुद को बताया दिमागी नक्सल। बीजेपी बोली प्रधानमंत्री के कहने का गलत मतलब निकाला गया। वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले तेज। अमित शाह ने उठाए सवाल। कहा इस पाप की माफी नहीं कांग्रेस की सफाई। सोनिया गांधी ने सिर्फ कुर्सी लाने को कहा था। रांची में आज 2 बजे सरकार से छात्रों की वार्ता। कांग्रेस नेता बोले जिद से बात नहीं बनती। बीती रात सीएम सोरेन राहुल और तेजस्वी का फूका गया पुतला। 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का प्लान। यूजीसी नीट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द होने के बाद फिर सवालों में आया एनटीए। अंग्रेजी कॉमर्स समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला। कई गलतियों का दिया गया हवाला।

लखीसराय के अशोक धाम में बिजली का तार गिरने से मची भगदड़, हादसे में 60 श्रद्धालुओं की मौत। 60 श्रद्धालुओं की मौत से इलाके में हड़कंप, कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस कर रही है जांच। लखीसराय हादसे पर सीएम शिवराज चौधरी ने जताया शोक, घायलों के इलाज और हर संभव मदद का भरोसा। पश्चिम बंगाल की वीरभूम में स्थित तारापीठ के होटल में लगी भीषण आग, 6 की मौत, कई श्रद्धालु घायल, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मथुरा में चलती कार में लगी आग, दूध का जल उठी कार, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। सूरत की सोफा फैक्ट्री में लगी आग, 5 दमकल गाड़ियां मौके पर, कोई जनहानि नहीं। नवसारी में BMW कार में लगी आग, 4 लोग बाल बाल बचे, वीडियो हो रहा है वायरल। नोएडा के अस्पताल में गार्ड के इंजेक्शन भरने का मामला, वायरल वीडियो के बाद 2 कर्मचारी सस्पेंड। हाथरस में GT रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 3 की मौत, 4 घायल। सूरत में छुट्टी की मांग को लेकर अमरोली और करोदा में श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। चमोली में पहाड़ टूटा, सिरी रायगांव सड़क पर जबरदस्त भूस्खलन, सड़क पर गिरे बड़े

बोल्डर और मलबा। बागेश्वर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घर द्वार सोने के साथ चार सड़कें बंद, 30 गांवों का कटा संपर्क। डोडा के भलेसा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें और नाले जलमग्न, फसलों को नुकसान। उड़ीसा के केंद्रापड़ा में बाढ़ से करीब 300 छात्र फंसे, ब्रह्माणी नदी में जलस्तर खतरे के निशान से पार, कई इलाकों में घुसा पानी। मुजफ्फरनगर में बारिश बनी मुसीबत, सड़कें गलियां जलमग्न, कई फीट पानी भरने से थमी रफ्तार, घरों में कैद हुए लोग। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा, घाटों और मंदिरों में घुसा बाढ़ का पानी। पक्के घाटों का आपसी संपर्क कटा, गंगा किनारे की इमारतों में पहुंचा पानी, नाव और मोटरबोट संचालन पर पूरी तरह से रोक। बढ़ते जलस्तर से दशाश्वमेध आरती प्रभावित, आरती स्थल को चौथी बार पीछे शिफ्ट किया गया, गंगा में हाई स्पीड बोट से पेट्रोलिंग जारी। इटावा में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, सेफई रोड अंडरपास से 5 फीट पानी, अंडरपास को किया गया बंद, जनजीवन प्रभावित। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 22 में येलो अलर्ट जारी किया। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। चिदम्बरम का पीएम मोदी पर हमला, दिमागी नक्सल को बताया अर्बन नक्सल और पुराने आरोपों को नया रूप दिया। रविशंकर प्रसाद ने चिदम्बरम को घेरा, बोले दिमागी नक्सल बयान पर पीएम की बात का संदर्भ समझना चाहिए था। किरण रिजिजू ने दिमागी नक्सल की परिभाषा पर दी सफाई, माओवाद और अलगाववाद का समर्थन करने वालों पर साधा निशाना। दिमागी नक्सल को लेकर विपक्ष का पलटवार, जयराम रमेश, महबूबा मुफ्ती और संजय सिंह ने बीजेपी पर उठाए सवाल। वंदे मातरम विवाद लिया सियासी रंग, सोनिया गांधी से माफी की मांग पर बीजेपी है अड़ा। अमित शाह ने सोनिया गांधी को घेरा, बोले वंदे मातरम रोकने पर देश और बंकिम चंद से माफी मांगे। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी बेवजह मुझे राजनीतिक रंग दे रही है। वंदे मातरम विवाद पर बंगाल में घमासान, बंकिम चंद के वंशज ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत, बीजेपी युवा मोर्चा ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। वंदे मातरम विवाद पहुंचा पुलिस थाने, सोनिया राहुल के खिलाफ एफआईआर की मांग। वंदे मातरम विवाद पर प्रशांत किशोर की दो टूक, बोले गलती है तो बीजेपी केस दर्ज कराए। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरा, बोले वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का पुराना रवैया है। वंदे मातरम विवाद के बीच मिथुन चक्रवर्ती का बयान, बोले वंदे मातरम देश की जान है और जनगणमन देश की आत्मा है। केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर पलटवार, बोले आपके लिए राजनीति, हमारे लिए भावनाओं का मुद्दा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की कथित गड़बड़ी पर छात्रों का आंदोलन तेज, 20 अगस्त को सीएम आवास, घेराव का ऐलान। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद पर छात्रों का हल्ला बोल, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ निकाला गया मशाल जुलूस। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों पर छात्रों का प्रदर्शन जारी, सीएम के इस्तीफे की मांग। झारखंड में छात्रों का सरकार के खिलाफ मोर्चा, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, तेजस्वी के पुतले फूके। भर्ती परीक्षा विवाद में भूख हड़ताल पर छात्र, सरकार से रद्द परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग। छात्र आंदोलन के बीच बीजेपी का सरकार पर हमला, बाबूलाल मरांडी ने मांगे मानने की अपील की। झारखंड छात्र आंदोलन में पहुंची अभिनेत्री कुनिका सदन, बोली छात्रों को उनका हक और अवसर मिलना चाहिए। भर्ती परीक्षा विवाद पर सरकार ने छात्रों को बातचीत की बुलाया, स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बैठक। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल विवाद पर सियासत तेज, बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सरकार को घेरा। यूजीसी नीट जून 2026 में पेपर गड़बड़ियों पर बड़ा एक्शन, इंग्लिश कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा फिर से होगी। एनटी की जांच रिपोर्ट से जुड़ी कई खामियां सामने आई, सवाल दोहराने और गलतियों के बाद री एग्जाम का फैसला। यूजीसी नीट के 3 पेपर पर उठे सवाल, बड़ी संख्या में सवाल रिपीट होने और भाषा संबंधी गलतियों पर शिकायतों पर दोबारा होगी परीक्षा। एनटीए ने यूजीसी नीट की री एग्जाम की तारीखें घोषित की, 9 सितंबर को इंग्लिश कॉमर्स और 10 सितंबर को समाजशास्त्र की परीक्षा। यूजीसी नेट विवाद पर कांग्रेस का मोदी सरकार और एनटीए पर हमला, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर उठाए गंभीर सवाल। बिहार परीक्षा व्यवस्था पर तेजस्वी का पलटवार, बोले हर परीक्षा में पेपर लीक, 19 अगस्त को राजभवन मार्च। पेपर लीक और छात्रों पर गोली चलने के आरोपों पर तेजस्वी का सरकार पर निशाना, पूछा छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया। गोपालगंज में TRE-4 में सीटों की संख्या बढ़ने के संकेत, STET और रिक्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। लखनऊ में 78,000 से ज्यादा राशन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ेगा, नागपंचमी में पहलवानों का होगा सम्मान। पीएम योगी ने कहा गोरखपुर में प्रदेश की गौरवशाली खेल परंपरा को नई ऊर्जा प्रदान की जाएगी। यूपी में 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का महाअभियान की पूर्णाहुति, सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
सीएम योगी ने लिखा, युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है। आज प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हर संभव अवसर दे रही है। ऑटो यूनियन का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, वेलफेयर बोर्ड की मांग। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला, आज के हालात की अंग्रेजों के दौर से तुलना कर बोले, आज भी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने को मजबूर हैं। अखिलेश यादव की चवन्नी को रुपया बनाने वाले बयान पर अनिल कुमार का पलटवार, बोले यह किसान समाज का अपमान है। अखिलेश यादव पर आरजी मंत्री अनिल कुमार का पलटवार, बोले 2027 में किसान समाज देगा जवाब। अखिलेश यादव का विदेश नीति पर केंद्र पर निशाना, बोले परिसीमन से ज्यादा जरूरी सीमा सुरक्षा पर चर्चा है। अखिलेश का केंद्र पर चौतरफा हमला, महंगाई, E20, पेट्रोल, सीमा सुरक्षा और नक्सलवाद को लेकर सरकार से पूछे सवाल। दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बड़ा तनाव, कनौरी में किसानों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा बल तैनात। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों पर किसानों का आंदोलन तेज, डल्लेवाल बोले केंद्र से बातचीत के बिना नहीं निकलेगा समाधान। बंगाल में पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बैनर्जी की मौत से सियासी घमासान, टीएमसी कार्यालय में फंदे से लटका मिला शव। आशीष बैनर्जी की मौत पर ममता बैनर्जी ने जताया दुख, बोली आखिरी दिन में मानसिक और भावनात्मक दबाव में। आशीष बैनर्जी की मौत पर बीजेपी ने उठाए सवाल, शुभेंदु अधिकारी ने कॉल रिकॉर्ड की जांच की मांग की। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का हुआ भव्य श्रृंगार, बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान माहौल में घुली दिव्यता। बाबा विश्वनाथ दरबार में उमड़े भक्त, जलाभिषेक करने आए कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। सावन के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की भव्य सजावट। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का मेला, सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। अयोध्या में तीसरे सोमवार नागपंचमी पर नागेश्वर नाथ मंदिर में उड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने की पूजा अर्चना। सावन के महीने में वाराणसी में दिखा देशभक्ति और आध्यात्म का रंग, तिरंगे की थीम पर हुई गंगा आरती। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक पर लगाया गया सेल्फी पॉइंट, तिरंगे के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए लोग। यूपी के गुरसाहिबगंज में तिरंगे के साथ दिखा जनसैलाब, 4 किलोमीटर तक दिखी भीड़। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक और जिला उपाध्यक्ष जीतू तिवारी रहे शामिल। यूपी के कौशाम्बी में तिरंगे के साथ हथियार लहराते दिखे लोग, पुलिस के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पटना में रैपिडो ड्राइवर के खाते से 25 करोड़ का ट्रांजैक्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड को अपना खाता रैपिडो ड्राइवर दे रखा था किराए पर। राजगढ़ में पट्टे की जमीन के विवाद में एसआई ने 4 सगे भाइयों पर दागी गोली, वीडियो आया सामने, एक की मौत। नरसिंहपुर में प्रेम

0: नरसिंहपुर में प्रेम संबंध के चलते युवक की हत्या, जीजा और नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। सीधी में चार मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी, जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ पदस्थ इंस्पेक्टर गिरफ्तार। फरीदाबाद में चाइनीज मांझे ने युवक की गर्दन काटी, 11 सेंटीमीटर गहरा घाव, दिल्ली किया गया रेफर। प्रयागराज भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराए बाइक सवार कंवड़िया, हादसे में 3 की मौत। करनाल में श्रद्धालु से भरा कैंटर हाई टेंशन तार से टकराया, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शिमोगा में युवक को लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला, सिर पर वार का वीडियो वायरल। मथुरा में बेकाबू डंपर ने लोगों की भीड़ को रौंदा, 2 की मौत, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सहारनपुर में 30 फीट गड्ढा धंसा, मलबे में दबकर पिता पुत्र की मौत, रीत निकालते वक्त हुआ हादसा। रूस की राजधानी मॉस्को और आसपास के इलाकों में रविवार को यूक्रेन के बड़े पैमाने पर हमले। रूस के नियंत्रण वाले डोनेस्क में एक हफ्ते के भीतर तीसरे मॉल पर ड्रोन से हमला, गैलेक्टिका शॉपिंग सेंटर में कई धमाकों के बाद लगी भीषण आग। जंग के बीच की पहुंचे यूनेस्को प्रमुख खालिद अल एनानी, जेलेंस्की संग 11वीं सदी के मठ का किया दौरा। ईसाई धर्म गुरु पोप लियो ने वेस्ट बैंक में हिंसा खत्म करने की अपील की, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष खत्म करने के लिए मांग। 2 SU-24 लड़ाकू विमान से पायलट को लेकर कतर ईरान में बढ़ा विवाद, पायलट की तलाश में ईरान ने कतर से मांगी जांच की इजाजत। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के ड्रोन अटैक और उससे हुई तबाही के जवाब में जोरदार पलटवार किया है। कीव को रूसी फौज ने निशाना बनाया और ड्रोन हमला कर वहां के बुक मार्केट को तबाह कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की माने तो उसने यूक्रेन के 822 ड्रोन नष्ट कर दिए। मॉस्को के मेयर ने बताया कि यूक्रेन के करीब 600 ड्रोन की जानकारी मिली थी, जिनमें से एक तिहाई को मॉस्को क्षेत्र के ऊपर ही नष्ट कर दिया गया। तो ये हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूस पर यूक्रेन पर रूस का ये बड़ा हमला हुआ है। मॉस्को के करीब यह हमला किया गया जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस हमले को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि ये लंबे वक्त बाद एक बड़ा हमला। तो पहले यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, 5 रूसी नागरिकों की जान गई। यूक्रेन ने मॉस्को पर एक साथ कई ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी हमले में मॉस्को को भारी नुकसान हुआ है।
1: दहकते शोले और आसमान छूता काले धुएं का गुब्बार, ये रूस पर यूक्रेन के सबसे बड़े हमलों में से एक की गवाही दे रहे हैं। इतनी भयानक आग कि उससे हो रहे विनाश को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना बड़ा रहा होगा। रूस की राजधानी मॉस्को के कोलेडिनो में रविवार को यूक्रेन ने यह हमला किया। यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन दागे और वाइल्ड वेरिज एयर हाउस को निशाना बनाया। इस हमले में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। स्थानीय गवर्नर की माने तो यूक्रेन का हमला इस इलाके पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था। हमले के बाद आग बुझाने के लिए रूसी फायर फाइटर जूझते नजर आए। यूक्रेन हाल के हमलों में वाइल्ड बेरीज को निशाना बना रहा है। उसका आरोप है कि ये कंपनी रूस के सैन्य सामानों का प्रबंधन करती है और ये हमला रूस के आर्थिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। दावों के मुताबिक यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज के 10 सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब में से 7 को बंद करवा दिया है। सबसे ताजे हमले में कोलेडिनो इंडस्ट्रियल पार्क में मौजूद कंपनी का लॉजिस्टिक हब भी बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि ये अब क्षेत्रफल के हिसाब से वर्ल्ड बेरिज का सबसे बड़ा एयर हाउस था। इसका एरिया 2,50,000 वर्ग किलोमीटर था। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद इन शोलों ने लोगों को डरा दिया। इस हमले में रूसी ऑनलाइन रिटेल कंपनी का अरबों डॉलर का जलकर खाक होने की खबर है। दूसरी ओर रूस ने भी यूक्रेन पर पलटवार किया है। यूक्रेन पर रूस ने ड्रोन से हमले किए जिसमें कई घर तबाह हो गए। कीव का मशहूर किताबों का बाजार जल गया। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने पूरे देश में 222 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। आज तक ब्यूरो।
0: इस बीच बड़ी खबर हमास से, जहां पर नेताओं की ट्रंप के दामा जेडी कुश्नर के साथ इजिप्ट में मुलाकात हुई। पहले में हमास ने गाजा को हथियार मुक्त और सैन्य मुक्त करने के अपने वादे को दोहराया। हमास गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक सरकार को सौंपने पर सहमत हो गया। ट्रंप के शांति प्लान के तहत अगले कदम पर चर्चा करने के लिए कुश्नर इसराइल में नेतन्याहू से मिलेंगे। हमास ने गाजा को हथियार मुक्त करने पर अपना वादा दोहराया है। अब कुश्नर नेतन्याहू से बात करेंगे। जल्द यह मुलाकात बताई जा रही है कि इसराइल में होगी। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया
6: है। ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
8: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: बिजली का बिल पेड,
12: तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
13: कैसे?
12: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
13: वे।
14: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
15: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
16: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
19: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से।
20: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
21: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
19: विमल, बोलो जुबां केसरी।
22: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
23: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
22: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
24: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
25: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
26: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
27: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है लड़के सब।
22: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। आज तक
28: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
29: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
28: नहीं सर।
29: 12th किससे की हो?
28: 12th सर मेरा PCM से रहा।
29: कंपाउंड क्या होता है?
28: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
29: यही है भिगमंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
28: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। ह्यूमिलिएशन कहते
29: हैं। देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन, किस पर उठे सवाल? क्या सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के पूरे गायन पर आपत्ति जताई? वंदे मातरम के गायन पर क्यों गरमाई सियासत? स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ, लेकिन गायन के दौरान सोनिया गांधी के कुछ इशारों और नेताओं की बातचीत की तस्वीरों ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेता वंदे मातरम के पूरे गायन के दौरान गंभीर नजर नहीं आए।
1: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
0: बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने साफ किया कि वो वंदे मातरम का पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाया गया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोनिया गांधी पर लगाए जा रहे आरोपों को भी खारिज कर दिया।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कांग्रेस में कोई नहीं था।
0: दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रवैये को शर्मनाक बताया है। जश्न से शुरू हुआ वंदे मातरम का विवाद अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद 15 अगस्त को इसके घमासान की पहली सियासी किश्त भी सामने आ गई है। आज तक ब्यूरो।

बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से सात की मौत। सावन के सोमवार में आए थे श्रद्धालु। बिजली का तार गिरने की खबर से हुई भगदड़। बंगाल होटल में आग से छह की गई जान। मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर टकराव तेज। चिदम्बरम के बाद महबूबा मुफ्ती का तंज। खुद को बताया दिमागी नक्सल, बीजेपी बोली प्रधानमंत्री के कहने का गलत मतलब निकाला गया। वंदे मातरम में कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले तेज। अमित शाह ने उठाए सवाल, कहा इस पाप की माफी नहीं, कांग्रेस की सफाई। सोनिया गांधी ने सिर्फ कुर्सी लाने को कहा था। रांची में आज 2 बजे सरकार से छात्रों की वार्ता। कांग्रेस नेता बोले जिद से बात नहीं बनती। बीती रात सीएम सोरेन, राहुल और तेजस्वी का फूका गया पुतला। 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का प्लान।

0: चैनल सीएम विजय रहेंगे मौजूद, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी आगाज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: चार बड़ी खबरों की करेंगे। पहली खबर एक बार फिर हुई एनटीए की किरकिरी की, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी के बाद एनटीए ने यूजीसी एनईटी की तीन विषयों की परीक्षा फिर से कराने का फैसला किया है, जिसके लेकर एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इसके साथ बात रांची में जारी छात्रों के आंदोलन की होगी, जो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग पर अड़ चुका है। छात्रों ने सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है। इस बीच आज दोपहर 2 बजे एक बार फिर से छात्र और सरकार के बीच वार्ता होगी। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे राजस्थान सरकार ने कैसे सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत बाहरी व्यक्तियों के एंट्री पर रोक लगा दी है और इस फैसले को लेकर क्या दलील दी जा रही है। इसके साथ ही बात किसानों के दिल्ली मार्च की होगी। हरियाणा बॉर्डर पर रोके जाने के बाद किसानों ने 28 अगस्त तक खनौली बॉर्डर पर जमे रहने का ऐलान कर दिया है। तो अब नीट पेपर लीक पर विवाद पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि एनटीए फिर से परीक्षा में गड़बड़ी के चलते विवादों के घेरे में आ चुका है। इस बार मामला यूजीसी एनईटी परीक्षा से जुड़ा हुआ है। तीन विषयों के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी के चलते एजेंसी ने री एग्जाम का फैसला लिया। अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र की यूजीसी एनईटी की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। हालांकि इन तीनों विषयों के प्रश्न पत्र में तथ्य, टाइपिंग, ट्रांसलेशन और व्याकरण से जुड़ी कई गलतियां पाई गई। एनटीए के एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि केवल चैलेंज प्रक्रिया से इन खामियों को ठीक करना संभव नहीं है। ऐसे में तीनों विषयों की परीक्षाएं फिर से कराने का फैसला लिया गया है। अब अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को होगी। वहीं बाकी 84 विषयों के नतीजे तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी होंगे। तो यूजीसी एनईटी की तीन परीक्षाएं रद्द होने पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा कि मैंने ये बात कोटा, देहरादून और प्रयागराज में कही और आगे भी कहता रहूंगा कि ये अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रह गई, एक वसूली की मशीन है। आपका पैसा, आपके साल, आपका मानसिक स्वास्थ्य, सुख, शांति, आत्मविश्वास सब ले लेती है और बदले में कुछ नहीं देती, नौकरी भी नहीं देती। एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। क्या परीक्षा से पहले ये प्रश्न पत्र लीक हुए थे? मोदी सरकार की हर दूसरी एजेंसी की तरह एनटीए भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है और हर दूसरे विवादित पेपर की तरह मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं था। एनटीए के नेतृत्व को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अनमोल बाली मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, देखिए अब कोई कसर नहीं बची है एनटीए की किरकिरी होने में। किस तरीके से सरकार राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देगी, क्योंकि कई बातें तो वाकई तथ्य के तौर पर सामने आई हैं और दोबारा इस तरीके से बार बार परीक्षा देना छात्रों के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है।
1: नेहा, आप जैसे कि जानती हैं कि जो नीट यूजी एग्जाम लीक के बाद ये एनटीए के लिए सबसे बड़ी उनकी फजीहत है, क्योंकि कल देखा गया कि आंसर कीज जो एनटीए द्वारा है वो जारी की जाती है, पर तीन जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए नहीं की जाती, जिसमें विद्यार्थियों का साफ कहना था कि 2024 के पेपर से जो अंग्रेजी में देखा गया कि 67 सवाल जो थे वो रिपीट थे, साथ ही 80 के आसपास जो सवाल थे वो कॉमर्स के पेपर में रिपीट थे और सोशियोलॉजी में तो इतनी माइनर टाइपोग्राफिकल जो कंसेप्ट को लेकर, नामों को लेकर ऐसी गलतियां थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो एनटीए थी वो घिरती दिख रही थी। उसी बीच नेशनल टेस्ट एजेंसी ये फैसला लेती कि री एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद राजनीति भी देखी जा रही। इस बीच राहुल गांधी ने भी सोशियोलॉजी के पेपर पर पहले भी बड़े आरोप लगाए थे, उनका कहना था कि पेपर लीक हुआ, हालांकि एनटीए ने इस बात को माना नहीं, इस बात को खारिज कर दिया। पर अब कहीं ना कहीं देखा जाएगा इस मामले को लेकर राजनीति और गरमाएगी, जैसे कि हमने नीट यूजी पेपर में देखा था उसके बाद कैसे जो कांग्रेस थी वो आक्रामक हो गई थी, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे धरातल पर देखा गया हो, प्रोटेस्ट हुए, इस कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ और कहीं ना कहीं इस इशू को लेकर विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं नेहा नाराजगी भी है, क्योंकि बच्चे जो हैं सालों साल मेहनत करते हैं और नीट जो यूजी का एग्जाम हो, चाहे एनटीए का ये यूजीसी का एग्जाम हो, जो देखा जाता है जेआरएफ और पीएचडी एग्जामिनेशंस, पीएचडी में दाखिले के लिए जूनियर रिसर्च फेलो में जो है जाने के लिए, जेआरएफ लेने के लिए ये होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत तंग है क्योंकि बहुत बेसिक गलतियां जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा हुई है। बच्चों का ये भी कहना था कि आपने 40 से ज्यादा दिन क्यों लगा दिए, अगर आपसे गलती हुई थी आप पहले इसको मानते, आप फिर ये एग्जाम। बच्चों में ये डर है कि जो उनका एकेडमिक कैलेंडर है, जो उनका एकेडमिक सेशन है, जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, जो बच्चे जेआरएफ के जरिए जो है फाइनेंशियली सक्षम होना चाहते हैं अपनी शिक्षा के लिए, कहीं ना कहीं वो बड़े सवाल उठा रहे हैं। नेहा,
0: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो तीन परीक्षाएं रद्द हुई हैं जिसको लेकर अब एनटीए सवालों के घेरे में है और ऐसे में ये तमाम आरोप राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एनटीए के कुछ अधिकारियों की क्यों नहीं जवाबदेही इसमें तय की जाती है। और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र की, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट की क्लर्क भर्ती के लिए हुई टाइपिंग परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी और सर्वर फेल होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। उम्मीदवारों ने कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड और सर्वर में खराबी के आरोप लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। कुछ परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने के करीब 10 मिनट के भीतर वो सिस्टम से लॉग आउट हो गए, जिसे लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी संभाजीनगर में अभ्यर्थियों के बीच दिखाई दिए और परीक्षा में गड़बड़ी पर उन्होंने भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट प्रशासन ने औरंगाबाद और कल्याण के कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं की जानकारी मिलने की बात स्वीकारते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
2: और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे हैं तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है, उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया, कोई बीड से आया, कोई लातूर से आया, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे।
0: और अब बात रांची के छात्र आंदोलन की, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों का आंदोलन 24वें दिन भी जारी है। छात्र अब आर पार के मूड में है। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा, 16 अगस्त को पुतला दहन और अब 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव की चेतावनी छात्रों ने जारी कर दी। छात्रों ने साफ किया है कि पेपर रद्द और सीबीआई जांच से कम कुछ स्वीकार्य नहीं है। उधर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि छात्रों की कई मांगें मान ली गई हैं, फिर भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है।

और अब बात झारखंड में छात्रों के आंदोलन की, क्योंकि 24वें दिन भी आंदोलन जारी है। आज दोपहर 2 बजे वार्ता होगी सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की। ये चौथा दौर होगा वार्ता का, क्योंकि पहले 3 दौर फेल हो चुके हैं और अब छात्र अड़ गए हैं सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर।

0: और सीधे आपके लिए चलेंगे तमिलनाडु, जहां पर इंडिया टुडे राउंड टेबल कॉन्क्लेव चल रहा है। इसमें सीएम शिरकत कर रहे हैं, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम विजय को आप देख सकते हैं इस राउंड टेबल में शिरकत करने के लिए तमिलनाडु। एक बड़ा इवेंट इंडिया टुडे का, और इस राउंड टेबल में और इंडिया टुडे के तमिल यूट्यूब चैनल की भी आज ही लॉन्चिंग होने वाली है। सीएम विजय के भी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बड़े उपलक्ष्य पर भी सीएम तमाम बातें इस मंच पर कहेंगे और साथ ही इस राउंड टेबल में भी शिरकत करेंगे। तमिल यूट्यूब चैनल की शुरुआत आज ही होगी, सीएम द्वारा इसे शुरू किया जाएगा। क्षेत्रीय विस्तार में एक और बड़ा मकाम, चेन्नई में इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल लॉन्च होने जा रहा है। इस मौके पर तमिलनाडु के सीएम विजय वहां पर मौजूद हैं। इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी ने सीएम विजय का स्वागत अब से कुछ ही देर पहले किया है। चेन्नई में इंडिया टुडे राउंड टेबल तमिलनाडु का आगाज हो चुका है।
1: Can I request everyone to please settle down and be seated, please? First of all, Vanakkam, Honorable Chief Minister, and welcome to the India Today Tamil Nadu Roundtable. We're honored that you've chosen the India Today Group for your first major media engagement. Your government, sir, completes 100 days in office, and this roundtable that we've put together over the next few hours is an opportunity for us to kind of look back at the first 3 months. The highs, the promise, the achievements, and yes, the changes that are still required. Because a meaningful conversation about Tamil Nadu's progress must celebrate what's working, but also, sir, must ask what needs to work better. You know, 4 months ago, I was in Tamil Nadu covering the election, and I remember seeing all of the whispers about you becoming Chief Minister. But actually, Honorable Chief Minister, let me scratch that. Let me correct that. They weren't whispers. They were honestly very loud whistles in the air for you, for the TVK. And if you hear that, it's not a CSK match. It means there's political change in the air, which is what we also saw. You've, of course, changed the political history of Tamil Nadu with the mandate you received. And today, sir, we want to look ahead at your vision for Tamil Nadu, at the opportunities, challenges before one of India's leading states, because that's what Tamil Nadu honestly is, and under you, what the next 5 years should look like. So once again, Honorable Chief Minister Vijay, Vanakkam, welcome to the India Today Roundtable, sir. Can we play the inauguration video, please?
2: This is a new beginning, a new era of a real secular social justice starts now. Confident are you?

0: थैंक यू वेरी मच।
1: तो इंडिया टुडे तमिल का यूट्यूब अब लॉन्च हो चुका है, इसके लिए खुद वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद थे। और अगली खबर अब झारखंड के छात्रों की, उनके आंदोलन का 24वां दिन है। जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों के आंदोलन के 24वें दिन भी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दोपहर 2 बजे वार्ता होगी उनकी सरकार के साथ और ये चौथा दौर वार्ता का होगा। इससे पहले 3 दौर हो चुके हैं, वो फेल हो चुके हैं। बातचीत बेनतीजा रही है, अब तक छात्रों की मांगों को नहीं माना गया है। अब परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच की मांग पर छात्र अड़े हुए।
2: ये रांची में छात्रों के आंदोलन का नया तेवर है, अब गुस्सा बढ़ा है। छात्र हेमंत सोरेन को खुली चुनौती दे रहे हैं। रांची के अलबटिक्का चौक पर रविवार की शाम प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों का अल्टीमेटम है कि 18 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो वे 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
3: 20 तारीख को कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों के साथ हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और बताएंगे स्टूडेंट की पावर क्या है। 20 तारीख को बताया जाएगा, आपकी पुलिस भी हमें रोक नहीं पाएगी सर।
2: छात्र नेता कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से सरकार ने बात नहीं मानी, अब वे रास्ता बदलेंगे।
4: गांधी जी की अनुनय विनय से हमने 22 दिनों तक आंदोलन कर लिया। अब भगत सिंह के नक्शे कदम पे चलने का समय आ गया है, सोम गुरु के नक्शे कदम पे चलने का समय आ गया।
2: छात्रों के इस प्रदर्शन को लगातार समर्थन मिल रहा है। एक दिन पहले अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने स्टेडियम में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, मांगों को लेकर उनका समर्थन किया। बढ़ते समर्थन और छात्रों के गुस्से के बीच फिर से सरकार ने छात्रों को न्योता दिया है। स्टेट गेस्ट हाउस में आज दोपहर 2 बजे बातचीत तय है।
5: सलाहकारों के साथ छात्र वहां आने का हम लोग अनुरोध किए हैं, छात्र यह बात स्वीकार किया है कि हम लोग चलेंगे।
2: उधर आज 17वें दिन भी देवेंद्रनाथ महतो और अन्य छात्र नेताओं का अनशन जारी है। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
6: आने वाले पीढ़ी के छात्रों को न्याय मिले, यह मेरा मूल मकसद है।
2: बीजेपी ने एक बार फिर झारखंड सरकार से अपील की है कि बिना देरी छात्रों की मांगे मान ली जाएं। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
1: सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, लगता नहीं कि आज चौथे दौर की वार्ता का भी कुछ नतीजा निकलेगा, क्योंकि छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार भी टस से मस नहीं हो रही है।
7: नहीं, आज ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है विद्यार्थियों के तरफ से भी, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके तरफ से भी, और सरकार भी गंभीर है, इसलिए इनको इनवाइट किया है कि आप अपने विधि सलाहकार यानी लीगल कंसल्टेंट को लेकर साथ आएं और किन किन मुद्दों पे बात बन सकती है। अगर इनके लीगल कंसल्टेंट कुछ एडवाइस करते हैं कि ये ऐसे हो सकता है और उस पर अगर सरकार भी तैयार होती है तो जरूर ये कोशिश की जाएगी कि इस मामले को एड्रेस किया जाए, क्योंकि इसके बाद 18 तक का प्रोटेस्टर्स का अल्टीमेटम है, फिर 20 को वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं और 20 तारीख को जेएमएम का भी एक बड़ा कार्यक्रम है। जेएमएम ने जो एमएमडीसी एक्ट में अमेंडमेंट पास हुआ है पार्लियामेंट से, उसके खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा बनाई है, क्योंकि अब सेस जो मिनरल बियरिंग लैंड है उस पर वो राज्य नहीं लगा सकता, तो उस पर बड़ा आंदोलन जो है करने की बात जो है यहाँ पे भी हो रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे एक जो है डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाए, गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए, इस पर बातचीत हो सकती है और दोनों तरफ से ही पहले ही कुछ बहुत सारी मांगे मान ली गई है। गतिरोध जो बना हुआ वो जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने को लेकर है, सीबीआई प्रोब को लेकर है। कल भी राहुल गांधी का मैसेज जो है कुमार राजा यहाँ के महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पहुंचाई है, वो चाहते हैं कि मामला जो है सलट जाए। और बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सीआईडी ऑलरेडी एक्शन ले रही है और केंद्र के जो एजेंसीज है उस पर भी तो सवाल उठते रहे हैं, ये कहा गया है कांग्रेस के तरफ से। कांग्रेस ने अपने बकायदा पत्र में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का वहां से भी भेजा इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में लगातार जब फटाफट कार्रवाई हो रही है तो स्टूडेंट्स को
1: अनशन कर रहे हैं। छात्रों की तबियत लगातार बिगड़ रही है, देवेंद्र नाथ महतो भी अस्पताल में भर्ती है। इस बीच अनशनकारी हबीबा का एक वीडियो सामने आया।
8: मेरी तबियत बहुत ज्यादा रात से बिगड़ चुकी है, मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रही हूँ, चक्कर भी आ रहे हैं और पैर हाथ भी बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना दिन जिंदा रहूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं इस जंग को और कितने दिन तक झेल पाऊंगी, आखिर और कितने दिन लगेंगे इस जंग को जीतने में, पता नहीं। सारे अभ्यर्थियों से अपील है कि प्लीज आप हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हो जाएं, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सब आइए यहाँ।
1: रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
10: छक्का
11: सब कैशलेस हो गया
10: है।
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
14: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
5: नए पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
6: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
7: इट्स द माही वे।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
11: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माय वे।

0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
1: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माय वे।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर। पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
4: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
3: नहीं सर।
4: 12th किससे की हो?
3: 12th सर मेरा PCM से रहा।
4: कंपाउंड क्या होता है?
3: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
4: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है, यही एक मिनट।
3: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
4: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से सांप की मौत। सावन सोमवार में आए थे श्रद्धालु। बिजली का तार गिरने की खबर से हड़कंप। बंगाल में होटल में आग से 6 श्रद्धालु की गई जान।

0: नक्सल बीजेपी बोली, प्रधानमंत्री के कहने का गलत मतलब निकाला गया। वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमला तेज, अमित शाह ने उठाया इस सवाल का, इस पाप की माफी नहीं, कांग्रेस की सफाई, सोनिया गांधी ने सिर्फ कुर्सी लाने को कहा था। रांची में आज 2 बजे सरकार से छात्रों की वार्ता, कांग्रेस नेता बोले जिद से बात नहीं बनती। बीती रात सीएम सुरेन, राहुल तेजस्वी का फूका गया पुतला, 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का प्लान। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रदर्शन जुड़ी खबर के साथ, क्योंकि लखनऊ में बारिश के बीच स्कूल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं सड़क पर उतर आई हैं और सड़क जाम उन्होंने कर दी है। बारिश के बीच छात्राएं हॉस्टल से निकलकर करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए लखनऊ कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंची और धरने पर बैठ गई, जिसके चलते भारी ट्रैफिक जाम हो गया। आला अधिकारी छात्राओं को समझाकर किस तरह से जाम खुलवाया है, लेकिन छात्राएं अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं।
1: पुलिस क्या कह रही है, क्यों ले गई? पुलिस से आपने बात करी? पूरी प्रशासन ने क्या कहा?
0: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, छात्राओं की क्या मांगे हैं, किस बात को लेकर धरने पर बैठी?
2: देखिए, ये सुबह ही आज जैसे ही धरने पर बैठी है, उसके बाद सारी तरफ यातायात जो है पूरी तरह से बाधित हो गया। जयप्रकाश नारायण जो यहाँ पर सर्वोदय विद्यालय है वहां पर, वो उनकी मांगे हैं कि शिक्षकों को लेकर कमी बताई जा रही है। लगातार वो कह रहे हैं कि जो शिक्षकों की कमी है उसको लेकर पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसको लेकर कई बार उन्होंने शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई या कोई आगे नहीं बढ़ा जा रहा, जिसको लेकर वो काफी खासी नाराज थी। और इसी वजह से वो आज जो दुबग्गा स्थित जयप्रकाश नारायण स्कूल है वहां पर वो बाहर आ गई, और उसके बाद शासन यानी कह सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन को दोनों को पहुंचना पड़ा वहां पर, क्योंकि ये जैन अल्फा के जितने बच्चे हैं सारे ये स्कूल ड्रेस में थे और चाह रहे थे कि उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए, और इस वजह से ही वो लगातार, हालांकि वहां पर प्रशासन पहुंचता है और उसके बाद उनको समझाता है पूरी तरीके से और उनको आश्वासन देता है कि जो वो बात कह रही है उसको पूरी किया जाएगा, जिसके बाद ही उन्होंने अपना वो जो धरना एक प्रोटेस्ट था वो तरीके से समाप्त किया। और ये तो जरूर था कि लेकिन सारे बच्चे एक साथ जब सड़क पर आ गए, उस दौरान सारा जो रास्ता था जो कनेक्ट करता है दुबग्गा को यानी कि लखनऊ के पुराने लखनऊ से जो नए लखनऊ को जाता है, वो पूरी तरीके से चौक हो गया था, और इस वजह से भी छात्राएं एक साथ एक हाथ पकड़कर एक दूसरे के खड़ी हो गई थी। और ऐसे में चूंकि ये सभी स्कूल की थी छात्राएं और स्कूल प्रबंधन से भी बातचीत करनी थी, तो इस वजह से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी, और कहता है उनसे बात को समझाता है कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगे। और शिक्षकों की बदहाली को लेकर एक इशू था बहुत टाइम से इनका मानना है, इसी वजह से ये सभी छात्राएं एक साथ एकजुट होकर खड़ी हो गई थी। हालांकि उस दौरान कई छात्राओं को मनाया भी गया और बताया भी गया, जिसके बाद वो अपने
0: छात्राओं को मनाने की इसलिए भी कोशिश की गई क्योंकि हाईवे पर उन्होंने प्रदर्शन किया था, इस वजह से वहां पर जाम लग गया था। जहां पर प्रदर्शन चल रहा था वहां से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी।
3: राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह जयप्रकाश नारायण विद्यालय की छात्राएं सड़क पर उतर गईं। 6 बजे सड़क पर उतरी, अपनी मूलभूत सुविधाएं जो उनको नहीं मिल रही है, उनका आरोप है कि यहाँ पे शिक्षक, यहाँ पे खाना और यहाँ पे मेडिकल की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मेरी मौजूदगी इस समय उसी स्कूल के बाहर है जहाँ पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, राजकीय आश्रम पद्वित विद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ, ये समाज कल्याण द्वारा चलाया जाता है, जहां पर छात्राएं आज पहुंची। जब पारा पर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो पैदल बालागंज तक गईं, जहां पर पुलिस और यहां के अधिकारियों ने समझाया, उसके बाद इनको बसों में बैठा कर समझा कर यहां पे लाया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी, लखनऊ के समाज के अधिकारी अंजनी कुमार अंदर मौजूद हैं और बालिकाओं से बात कर रहे हैं। और बालिकाओं का आरोप जो लगाया है वो ये लगाया उन लोगों ने कि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं। आपको बता दें कि यही छात्रावास जो छात्रों का था कुछ दिन पूर्व, वहां पे मंत्री असीम अरुण भी आए थे, उन्होंने छात्रों से बात करी थी और उनकी बात सुनी थी, जिसके बाद से यहाँ की छात्राओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे पुलिस भारी बल लेके मौजूद है, यहाँ पे SDM आ चुके हैं और जिला समाज के अधिकारी अंजनी कुमार भी अंदर मौजूद हैं और छात्राओं से बात कर रहे हैं। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट आज तक।
0: और अब बात सरकारी स्कूलों को लेकर राजस्थान सरकार के एक बड़े फैसले की। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही बिना अनुमति के स्कूल परिसर के अंदर वीडियो बनाने या फोटो खींचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर एक दिन पहले चिट्ठी जारी की। सरकार का ये आदेश ऐसे समय पर आया जब 3 दिन पहले स्कूल ठीक करो अभियान के तहत कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका अलवर के एक सरकारी स्कूल पहुंच गए थे। आशुतोष ने उस समय स्कूल की जर्जर हालत और पीने के पानी को लेकर सवाल उठाए थे।
4: कितने साल हो गए आजाद हुए हमें बताओ।
0: तो शिक्षा विभाग ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ऐसा प्रतिबंध अब राजस्थान सरकार ने आदेश के माध्यम से लगाया है। जाहिर तौर पर कोई प्रदर्शन स्कूल परिसर के भीतर ना हो, इसी के मद्देनजर इस तरह का आदेश दिया गया है।
4: पूरी दुनिया में हमारा नाम हो रहा है बहुत ज्यादा।
0: किसी भी तरह का वीडियो बनाने पर और अंदर बिना इजाजत एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकेगा। आदेश के मुताबिक हर विजिटर को स्कूल में प्रवेश से पहले रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। प्रिंसिपल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना स्कूल में किसी भी तरह के फोटो खींचने, वीडियो बनाने, इंटरव्यू करने, ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी। ये नियम सिर्फ उन अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जो सरकार की तरफ से अधिकृत किए गए। उधर राजस्थान सरकार के फैसले पर कांग्रेस के हमले जारी हैं। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय अपनी नाकामी को ढकने और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली छिपाने का रास्ता खोज लिया है। शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता के बजाय स्कूल परिसर में प्रवेश, फोटो और वीडियो पर रोक और सवाल पूछने वालों पर पहरा लगा दिया है। सवाल यही है कि अगर स्कूलों में सब कुछ ठीक ठाक है तो डर कैसा है? टूटे भवन, जर्जर इमारतें, शिक्षकों की कमी, बच्चों की समस्या और सरकारी व्यवस्था की नाकामियों की तस्वीरें आने से आखिर सरकार को इतनी बेचैनी क्यों हुई? शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद कुमार, ये फैसला दरअसल ऐसे वक्त पर आया है जब जगह जगह मांगों को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से स्कूल में प्रवेश किया, वहां की हालत दिखाई, उससे सरकार डरी हुई दिख रही है।
5: नहीं नहीं यार, देखिए आंदोलन बच्चों का सुबह शुरू हो गया था। आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी के लोग गए थे और वापस उन्होंने वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग की थी। वो बच्चों का आंदोलन था, इसे किसी संगठन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, किसी संगठन को इसका श्रेय भी नहीं लेना चाहिए। वो सुबह से आंदोलन चल रहा था, वो शाम को पहुंचे थे। ये राजस्थान में पिछले 15-20 दिनों से और पिछले करीब 2-3 सालों से लगातार आज तक भी दिखा रहा है किस तरह से ये बच्चे जो हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में 64,000 स्कूलों में से 20,000 स्कूल जर्जर पड़े हुए हैं। जिस गोविंद सिंह डोटासरा की हम लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस नेता, वो कांग्रेस में शिक्षा मंत्री थे। सारे नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार में भी एक भी स्कूल नहीं बने, रातों रात ये सारे स्कूल जर्जर नहीं हो गए हैं। सरकार इनकी रही या उनकी रही, स्कूल के बिल्डिंगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1,00,000 टीचरों की कमी है नेहा स्कूलों में। आप समझिए किस तरह से किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब विपक्ष में रहते हैं तो हमला करने चले आते हैं, मगर ये जिम्मेदारी नहीं निभाए हैं, तब जाके ये स्थिति आई है कि 1,00,000 टीचर कम है, 20,000 बिल्डिंगें खराब है 64,000 में से, और जगह जगह जब आंदोलन कर रहे हैं बच्चे तो सरकार इस नाकामी को ढकने के लिए, छुपाने के लिए इस तरह का आदेश निकाल रही। इन आदेशों से कुछ नहीं होता है। जिन बच्चों को इस तरह का आंदोलन करने हैं वो इस आदेशों को समझते भी नहीं है, वो आंदोलन करेंगे ही करेंगे। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, न कि इस तरह के आदेश निकालने चाहिए। हालांकि देखिए उनका अलग कहना है, उनका कहना है कि जो बहुत सारे 20-22 साल की लड़कियां टीचर हैं उनका वीडियो बना के डाला जा रहा है, वो हमारे पास आकर कहने कि हम नौकरी छोड़ देंगे। बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, अनाधिकृत कोई भी मोबाइल लेकर घुस जा रहा है, उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है, अभिभावक फोन कर रहे हैं कि हमारी बेटी का वीडियो कैसे चल रहा है, तो उनका एक अलग तर्क है। मगर ये जो आंदोलन है ये आंदोलन सरकारी सिस्टम के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क किया है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे हादसे के सोमवार की। बिहार से बंगाल तक 2 बड़े हादसे हुए जिसमें 13 की जान चली गई। बिहार के लखीसराय में सावन की सोमवारी के मेले में भगदड़ मच गई, 7 लोग मारे गए। बंगाल के बीरभूम में तारापीठ में एक होटल में आग लग गई, 6 लोग की जान चली गई। ये 2 बड़ी खबरें हैं जिन पर बुलेटिन में बात करेंगे, जिसकी लापरवाही से ये कैसे अब तय होगा कि जिम्मेदार कौन है और क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा।

0: और शुरुआत करेंगे लखीसराय की खबर के साथ। यहां पर भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई। अशोक धाम में सोमवारी मेले के दौरान यह हादसा हुआ, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ थी, लोग लाइन में लगे थे, तभी अफवाह यह फैल गई कि बिजली का खंभा गिर गया है, करंट फैल गया है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इसी दौरान भागम भाग में एक दूसरे को कुचलते गए, भीड़ निकल गई, लेकिन 7 लोगों की इसमें जान चली गई। कई लोग घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
1: धीरे धीरे बढ़ रहा है।
2: वहाँ पे ना मतलब पॉल गिर गया था खेत में, तो उसी डर से सब भगदड़ मचा ना, उसी में ये हादसा हो गया।
3: सर सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था और लाइन में बहुत सारा लोग था, ढकेल के इधर पूरा पॉल इधर कर दिया था, पॉल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा, फिर हम दब के बेहोश हो गए, तो फिर हमको नहीं पता है कि
4: वहाँ हुआ क्या। जहाँ पर जो लोग घुसते हैं ना गेट के पास, बांस जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर ही घुस रहे थे कि बाहर से कम 100 आदमी घुसने के लिए जबरदस्ती ठेल दिए सबको, जो ठेल दिए सब गिर गई, उसी पर सब आदमी चढ़ चढ़ के अथी घुसने लगा। वहाँ कोई प्रशासन नहीं, कोई अथी था।
0: शशि भूषण में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, प्रशासन क्या जवाब दे रहा है इस हादसे पर?
5: देखिए, प्रशासन का ये कहना है कि एक अफवाह ऐसी उड़ी जिस अफवाह की वजह से ये पूरा मामला हुआ है, भगदड़ मची है और इस भगदड़ में ही जो श्रद्धालु हैं उनकी जान गई है। सरकार ने अपनी तरफ से, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शोक संवेदना जताई है और उसके बाद जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत अनुग्रह अनुदान राशि, मतलब जो मुआवजे की राशि है, उसकी घोषणा भी सरकार ने कर दी है। 4-4 लाख रुपए मुआवजा जो है वो मृतकों के आश्रितों को दिया जाएगा, ये सरकार की तरफ से घोषणा है। इस पूरे मामले की जांच कैसे कराई जाएगी इसको लेकर के भी बहुत क्लैरिटी नहीं है नेहा, लेकिन जो DM है लखीसराय के शैलेंद्र कुमार, वो ये कह रहे हैं कि सुबह तकरीबन 6:45 के आसपास एक जगह पे जहां बैरिकेड्स के जरिए श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की व्यवस्था की गई थी, वहां पर एक तार गिरा और उस तार को लेकर के ये अफवाह फैली कि उसमें करंट है। हालांकि वो कवर्ड वायर था, उसमें कोई करंट की स्थिति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो अफवाह उड़ी उसमें भगदड़ की स्थिति मची और वहीं पर जो महिला श्रद्धालु हैं उनके बीच अफरा तफरी हुई और उसमें कई महिला श्रद्धालु गिर गई भगदड़ में, उसके ऊपर दूसरी श्रद्धालु निकलते चले गए, दौड़ते चले गए और इसी वजह से लोगों की मौत हुई है या इसी पूरे घटनाक्रम में लोग घायल हुए हैं। जो अब तक जानकारी मिली है, 4 मृतकों की आइडेंटिटी जो है वो कर ली गई है। ये चारों महिला हैं, लखीसराय, मुंगेर, बढ़िया और हलसी, इन 4 जगह से ये चारों श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु ताल्लुक रखते हैं। तो आगे और भी जो मृतक होंगे उनके भी आइडेंटिटी करने की, उनकी भी पहचान करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने ये है कि चूंकि सोमवारी का दिन है, आज दिन भर वहां पर जलाभिषेक होगा, अशोक धाम में बड़ी तादाद में 3-5 लोग।
0: DM का बयान सुनिए इस हादसे पर, जिला प्रशासन क्या कुछ कह रहा है।
6: लगभग 6:45 हम लोग तो वहां पर, आप लोग देखे, 3-3:30 से हम लोग वहीं पर हैं, सब व्यवस्थित है, अप्रत्याशित भीड़ हो गई और 6:30-7 के लगभग में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया, एक तो पहले से भीड़ थी उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत में पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था। और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे, पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेटिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है, स्थिति अभी पता कर रहे हैं।
0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। लखीसराय भगदड़ में मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, DM के बयान से तो यही प्रतीत हो रहा है कि अप्रत्याशित भीड़ थी, प्रशासन उसका आकलन नहीं कर पाया, समुचित व्यवस्था का अभाव।
5: बिल्कुल अभाव। और देखिए एक बात कहनी होगी नेहा कि जैसे देवघर में आप देखिए श्रावणी मेला बहुत विशाल लगता है, वहाँ पे महीने भर श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ बिहार सरकार झारखंड सरकार दोनों सरकारें मिल करके उसके लिए पूरी SOP का पालन करती हैं, पूरी तैयारी होती है। सुल्तानगंज से चूंकि जल उठता है तो वहाँ से तैयारी होती है, और देवघर चूंकि झारखंड में है तो वहाँ भी तैयारी सरकार करती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बिहार में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, अशोक धाम या फिर ऐसे बहुत सारे शिव मंदिर हैं, गरीबनाथ मंदिर है, अशोक धाम मंदिर है या फिर बनावर, इनका SOP अभी तक तैयार नहीं है, तो इस पर काम करने की जरूरत जरूर है।
0: लौटेंगे आपके पास। बीच लखीसराय के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए।
7: बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जा भी रहा हूँ, और ये घटना मंदिर परिसर के बाहर और बिजली के तार गिरने से, और उसमें लोगों ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, उसी में भगदड़ मची है। जिलाधिकारी से संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है, एक बार हम लोग जा रहे हैं उसको देखेंगे, इसकी लापरवाही है जो भी होगा उसकी जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई है और हमने वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था के लिए प्राथमिकता भी हमने कहा कि करें, और जो दोषी होंगे उसमें कार्रवाई होगी।
0: और अब बात बीरभूम में दर्दनाक हादसे की। यहां पर एक होटल में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सावन सोमवार के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तारापीठ मंदिर पहुंचे थे। कई श्रद्धालु तारापीठ के पास एक होटल में रुके। आज सुबह जब लोग सो रहे थे तभी तकरीबन 4:30 बजे होटल में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन आग पर जब तक काबू पाया गया तब तक 7 लोगों की जान जा चुकी थी। घायलों को रामपुर हाट के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से हादसा बताया जा रहा है।
8: पहले देखना दीजिए, जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरा बिगाड़ चुका था, इसीलिए TRDA का बदनामी है, इसीलिए TRDA का तदंत होना चाहिए। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया और आग निभाने का कोई व्यवस्था नहीं है, इसको जतुगृह गृह बना दिया है, वो घुसो और मर जाओ। और मरने का जो मैंने ये जतुगृह बनाया है, पैसा लेके बनाया था TRDA ने, और इसी TRDA का खिलाफ हमारा जो बयानबाजी था इसका खिलाफ ही था। देखिए समय कितना बलवान होता है, ठीक है ना, इसको ही कहता है समय का मूल्यांकन होना चाहिए। हम देखेंगे, बात करेंगे बाद में।
0: तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, जाहिर तौर पर यह हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है, ठीक समय पर लोग निकल नहीं पाए क्योंकि वो सो रहे थे, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि क्या मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से होटल जला हुआ दिखाई दे रहा है लग रहा है कि बहुत बड़ा डैमेज है ये।
9: जी देखिए, मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। 6 लोगों की मौत सुबह दर्ज हुई थी और उसके बाद एक और शख्स की मृत्यु हुई है, कुल मिलाकर 7 लोगों की अभी तक मौत दर्ज किया गया। दरअसल ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन से ये आग लगी थी और फॉल सीलिंग होने की वजह से बहुत जल्दी आग फैलना शुरू हो गया और ऊपरी मंजिलों में भी ये आग फैलता गया, और सुबह 4 बजे लगभग सारे लोग सो रहे थे तभी अचानक एक भगदड़ की स्थिति बन जाती है। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक जो 6 लोग हैं ये बताया जा रहा है कि कुछ झुलस कर उनकी मृत्यु हुई है, कुछ लोग दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि ये साफ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा, लेकिन आज तीसरा सोमवार है श्रावण महीने का और इसलिए बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे तारापीठ, और इसी बीच ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि ये जांच चलाई जा रही है, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि जो
0: ब्रेक का उछला है। बनी रही हमारे साथ, देखते रहिए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहां पर खड़े थे वो, और धूप काफ़ी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। तो बस इतनी बात थी। उसी को एक, जिसको कहते हैं तिल को ताल बनाना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, हर चीज़ को कभी बात खड़ा करना, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी लाना। तो हकीकत ये थी कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी के लिए एक व्यवस्था करना चाह रही थी ताकि वो गिर ना जाए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सोने में निवेश करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले लोग ज्वेलरी शॉप या बैंक का रुख करते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर कुछ क्लिक करके 10 रुपए से भी गोल्ड खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड की इसी बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार का ध्यान खींचा है। ऐसे में निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजिटल गोल्ड सेक्टर के लिए नए नियमों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत डिजिटल गोल्ड के लिए अगले साल नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सकता है। इसमें निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके लिए DPMACI ने वित्त मंत्रालय, RBI और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के साथ चर्चा की है। दरअसल भारत में डिजिटल गोल्ड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग छोटी रकम से भी सोने में निवेश कर रहे हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर के लिए औपचारिक नियमों की मांग भी तेज हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 से 26 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए करीब 10 टन सोना खरीदा गया। वहीं डिजिटल गोल्ड सेक्टर में भरोसा बढ़ाने के लिए ही DPMACI का गठन किया गया है, जिससे सेफ गोल्ड, MMTC, PAMP, ऑगमॉन्ट, फोन पे और गुल्लक जैसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। युवाओं और छोटे निवेशकों के बीच इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह यही है कि बिना ज्वेलरी खरीदे भी सोने में निवेश किया जा सकता है। निवेशक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 10 या 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। ये कंपनियाँ खरीदी गई मात्रा के बराबर सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखने का दावा करती हैं और जरूरत पड़ने पर निवेशक इसे बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। दुनिया के कई देशों में डिजिटल गोल्ड के लिए नियम और निगरानी व्यवस्था पहले से मौजूद है। इस पहल के बाद भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। साफ है कि डिजिटल गोल्ड निवेश का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ऐसे में अगर नया रेगुलेटरी ढांचा लागू होता है तो इस बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 की मौत। सावन के सोमवार में आए थे श्रद्धालु। बिजली का तार गिरने की खबर से हुई भगदड़। बंगाल होटल में आग से 7 की गई जान।
1: पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर टकराव तेज। चिदम्बरम के बाद अब महबूबा मुफ्ती का तंज। खुद को बताया दिमागी नक्सल। बीजेपी बोली प्रधानमंत्री के कहने का गलत मतलब निकाला गया।
0: वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले तेज। अमित शाह ने उठाए सवाल का, इस पाप की माफी नहीं। कांग्रेस की सफाई, सोनिया गांधी ने सिर्फ कुर्सी लाने के लिए कहा था।
1: रांची में आज 2 बजे सरकार से छात्रों की वार्ता। कांग्रेस नेता बोले जिद से बात नहीं बनती। बीते रात सीएम सोरेन, राहुल और तेजस्वी गप्पू का गया पुतला। 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का प्लान।
0: इंडियन रे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडियन रे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की शतक आज तक से। सरकारी स्कूलों को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत बाहरी व्यक्तियों के एंट्री पर रोक लगी। बिना अनुमति के स्कूल परिसर के अंदर वीडियो बनाने या फोटो खींचने पर प्रतिबंध। शिक्षा निदेशक ने इससे लेकर एक चिट्ठी जारी की है। राजस्थान सरकार के फैसले पर कांग्रेस का हमला। बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय अपनी नाकामी को ढकने, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली छिपाने का रास्ता खोजा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय नाकामी छिपा रहे हैं बीजेपी सरकार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था बची ही नहीं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की कथित गड़बड़ी पर छात्रों का आंदोलन तेज। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद पर छात्रों का हल्ला बोल। अब सीएम हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों पर छात्रों का प्रदर्शन। अब तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग। झारखंड में छात्रों का सरकार के खिलाफ मोर्चा। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का पुतला फूंका गया। भर्ती परीक्षा विवाद में भूख हड़ताल पर छात्र। सरकार से परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग।
0: यूजीसी एनईटी जून 2026 में पेपर की गड़बड़ियों पर बड़ा एक्शन। इंग्लिश, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा फिर से होगी। एनटी की जांच में पेपर से जुड़ी कई खामियां सामने आई। सवाल दोहराने और गलती के बाद री एग्जाम का फैसला। यूजीसी एनईटी के 3 पेपर्स पर उठे सवाल। बड़ी संख्या में सवाल रिपीट होने और भाषा संबंधी गलतियों की शिकायतों पर दोबारा परीक्षा। एनटी ने यूजीसी री एग्जाम की तारीखें घोषित की। 9 सितंबर को इंग्लिश, कॉमर्स और 10 सितंबर को समाजशास्त्र का पेपर होगा। यूजीसी एनईटी विवाद पर कांग्रेस का मोदी सरकार और एनटीए पर हमला। परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर उठाए गंभीर सवाल। बिहार में परीक्षा व्यवस्था पर तेजस्वी का बड़ा हमला। बोले हर परीक्षा में पेपर लीक। 19 अगस्त को राजभवन मार्च। गोपालगंज में टीआरई 4 और सीटों की संख्या बढ़ने के संकेत। एसटीईटी और रिक्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। ऑटो यूनियन का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। आज वेलफेयर बोर्ड की मांग। दिल्ली में आज अफगान दूतावास में तालिबान का विक्ट्री डे समारोह। ये कार्यक्रम अगस्त 2021 में अमेरिकी और नाटो सेनाओं की वापसी के बाद काबुल पर तालिबान के दोबारा नियंत्रण की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में आज से भी WF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज। दुनिया के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगे।
1: लखनऊ में 78,000 से ज्यादा राशन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ेगा। नागपंचमी पर पहलवानों का सम्मान होगा। मुख्यमंत्री योगी ने खुशी की जाहिर। सीएम योगी ने लिखा गोरखपुर में प्रदेश की गौरवशाली खेल परंपरा को नई ऊर्जा प्रदान की जाएगी। यूपी में 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का महाअभियान का पूर्णाहुति। और मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने लिखा कि युवा शक्ति प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश यहां की सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव अवसर प्रदान कर रही है। लखनऊ में स्कूल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं सड़कों पर उतर आई। ट्रैफिक जाम होने पर आला अधिकारियों ने छात्राओं को समझा कर खुलवाया जाम। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला कि आज के हालात की अंग्रेजी दौर से तुलना कर बोले कि आज भी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने को मजबूर हैं। अखिलेश यादव के 54 करोड़ रुपए वाले बयान पर मंत्री अनिल कुमार का पलटवार, बोले कि यह किसान समाज का अपमान है। अखिलेश यादव पर आरएलडी के मंत्री अनिल कुमार का बड़ा पलटवार, बोले कि 2027 में किसान समाज जवाब दे देगा। अखिलेश यादव का विदेश नीति पर केंद्र पर निशाना, बोले परिसीमन से ज्यादा जरूरी सीमा सुरक्षा पर चर्चा। अखिलेश का केंद्र पर चौतरफा हमला, महंगाई, E20 पेट्रोल, सीमा सुरक्षा, नक्सलवाद को लेकर सरकार से सवाल पूछे।
0: लखीसराय के अशोक धाम में बिजली का तार गिरने से मचा हड़कंप, हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत। 7 की मौत से इलाके में हड़कंप, कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस कर रही है जांच। लखीसराय हादसे पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया शोक, घायलों के इलाज और हर संभव मदद के निर्देश, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। लखीसराय हादसे पर ललन सिंह का बयान, मेरी संवेदना पीड़ित परिजनों के साथ, इस दुख की घड़ी में परिजनों को भगवान शक्ति प्रदान करे। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में स्थित तारापीठ के होटल में लगी आग, 7 की मौत, कई श्रद्धालु घायल, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। इंडिया डे तमिलनाडु राउंड टेबल का आगाज, सीएम विजय ने लॉन्च किया इंडिया डे का तमिल यूट्यूब चैनल। चेन्नई में आयोजित इंडिया डे तमिलनाडु राउंड टेबल कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की, बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मंच पर, साथ में इंडिया डे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी मौजूद। मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सच को और मुखर होकर बोलने देकर दिया संदेश। इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेता, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियां होंगी शामिल।
1: प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान पर सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। पी चिदंबरम का पीएम मोदी पर हमला, दिमागी नक्सल को बताया अर्बन नक्सल और पुराने आरोपों का नया रूप। रविशंकर प्रसाद ने चिदंबरम को घेरा, बोले कि दिमागी नक्सल बयान पर पीएम की बात का संदर्भ समझना चाहिए था। किरण रिजिजू ने दिमागी नक्सल की परिभाषा पर सफाई दी, माओवाद और अलगाववाद का समर्थन करने वालों पर साधा निशाना। दिमागी नक्सल को लेकर विपक्ष का पलटवार, जयराम रमेश, महबूबा मुफ्ती, संजय सिंह ने बीजेपी पर उठाए सवाल। वंदे मातरम विवाद ने लिया सियासी रंग, सोनिया गांधी से माफी की मांग पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। अमित शाह ने सोनिया गांधी को घेरा, बोले वंदे मातरम रोकने पर देश और बंकिम चंद्र चटर्जी से माफी मांगा। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस का पलटवार, कहा कि बीजेपी बेवजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे। वंदे मातरम विवाद पर बंगाल में भी घमासान, बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशजों ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की। बेंगलुरु में भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत, बीजेपी युवा मोर्चा ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
0: वंदे मातरम विवाद पहुंचा पुलिस थाने, सोनिया राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वंदे मातरम विवाद पर प्रशांत किशोर की दो टूक, बोले गलती है तो बीजेपी केस दर्ज कराए। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरा, बोले वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का पुराना रवैया। वंदे मातरम विवाद के बीच मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान, बोले वंदे मातरम देश की जान और जनगणमन देश की आत्मा है। केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर पलटवार, बोले आपके लिए राजनीति हमारे लिए भावनाओं का मुद्दा है। दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बड़ा तनाव, कनौरी में किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग और सुरक्षा बल तैनात। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों पर किसानों का आंदोलन तेज, दल्लेवाल बोले केंद्र से बातचीत के बिना नहीं निकलेगा समाधान। बंगाल में पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बैनर्जी की मौत से सियासी घमासान, टीएमसी कार्यालय में फंदे से लटका मिला शव। आशीष बैनर्जी की मौत का मामला पर ममता बैनर्जी ने जताया दुख, बोली आखिरी दिन में मानसिक और भावनात्मक दबाव में थे। आशीष बैनर्जी की मौत पर बीजेपी ने उठाया सवाल, शुभेंदु अधिकारी ने कॉल रिकॉर्ड की जांच की मांग की।
1: चमोली में पहाड़ टूटा, सीधी राय गांव सड़क पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ, सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर्स और मलबा। बागेश्वर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घर ध्वस्त होने के साथ ही 14 सड़कें बंद, 30 गांवों का संपर्क कट गया। डोडा में भलीसा में भारी बारिश के बाद अबाढ़ जैसे हालात, सड़कें नाले जलमग्न, फसलों को भी नुकसान। ओडिशा के केंद्रापाड़ा में बाढ़ से लगभग 300 छात्र फंस गए हैं और ब्राह्मणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद ऊपर है, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। मुजफ्फरनगर में भी बारिश मुसीबत बन गई, सड़कें गलियां जलमग्न, कई फीट तक पानी भरा हुआ है, घरों में ही कैद हो गए। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब बढ़ाव है, घाटों और मंदिरों में भी बाढ़ का पानी घुसा। बाकी घाटों का आपसी संपर्क भी टूटा, गंगा किनारे की इमारतों में पहुंचा पानी, नाव और मोटर बोट संचालन पर अभी रोक। बढ़ते जलस्तर से दशाश्वमेघ आरती प्रभावित, आरती स्थल पर चौथी बार पीछे से शिफ्ट किया गया। गंगा में हाई स्पीड बोट से अब पेट्रोलिंग जारी है। इटावा में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, सेफवे रोड अंडरपास में 5 फीट तक पानी भरा, अंडरपास को किया गया बंद। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग ने, 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जबकि 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
0: सूरत की सोफा फैक्ट्री में लगी आग, 5 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। नरसारी में बीएमडब्ल्यू कार में लगी आग, 4 लोगों का बाल बाल बचाव, वीडियो हो रहा है वायरल। नोएडा के अस्पताल में गार्ड के इंजेक्शन भरने का मामला, वायरल वीडियो के बाद 2 कर्मचारी सस्पेंड। हाथरस में जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, सड़क हादसे में 3 की मौत, 4 घायल। सूरत में छुट्टी की मांग को लेकर अमरोली और कड़ोदरा में श्रमिकों किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। पटना में रैपिडो ड्राइवर के खाते से 25 करोड़ का ट्रांजैक्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार तो हुआ खुलासा, साइबर फ्रॉड के लिए खाता हो रहा था इस्तेमाल। राजगढ़ में पट्टे के जमीन के विवाद में एएसआई ने 4 सगे भाइयों पर दागी गोली, वीडियो आया सामने, 1 की मौत। नरसिंहपुर में प्रेम संबंध के चलते युवक की हत्या, जीजा और नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। सीधी में 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ पदस्थ इंस्पेक्टर गिरफ्तार। फरीदाबाद में चाइनीज मांझे ने युवक की गर्दन काटी, 11 सेंटीमीटर गहरा घाव।
1: हापुड़ में युवक के साथ की जमकर पिटाई, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेतिया में हाथ से उठाने पर उखड़ रही है सड़क की गिट्टी, ग्रामीणों ने रुकवाया निर्माण कार्य। मथुरा में चलती कार में अचानक लगी आग, धू धू कर जलती दिखाई दी कार, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई बाइक सवार कांवड़ी, हादसे में 3 की हो गई मौत। शिवमोगा में युवक पर लोहे के रॉड से बेरहमी से हमला, सिर पर वार करके ये हमला हुआ, वीडियो वायरल। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतार। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार, बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान माहौल में दिव्यता दिखी। बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़े भक्त जलाभिषेक करने आए, कांवड़ियों पर फूलों की बारिश। सावन के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में भव्य सजावट हुई, खूबसूरती से इसे सजाया गया। देवघर में भी बाबा वैद्यनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का मेला, सावन के तीसरे सोमवार पर कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक।
0: सीधे आप देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
3: पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है, और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एग्जैगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है, 13 अप्रैल 2006। और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब, और ये पी चिदंबरम साहब वो हैं, इनके लिए क्या कहा जाए, जिस यूपीए के पशुपति से लेके तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बना था, 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए, और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गईं। ये होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदंबरम साहब के शासनकाल में 5000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। 1913 सुरक्षा बलों के जवान नक्सली अभियानों में शहीद हुए। 180 जिले नक्सल प्रभावित हो गए। 92% से अधिक हथियार जो नक्सलियों के पास थे वो पुलिस के द्वारा, पुलिस के हथियार थे जो लूटे गए थे। और याद करिए 2009 में उस समय प्रमुख नक्सली नेता किशन जी ने कहा था 2030 तक दिल्ली पे हमारा कब्जा होगा, मगर आज वो 180 नक्सल प्रभावित जिले शून्य पर आ गए हैं। मगर उसके बाद भी उन 180 जिलों में भारत में सामंजस्य दिखता था और यहां पर समस्या दिख रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो दंतेवाड़ा और वो झीरम घाटी जहां पर खून की नदियां बहती थीं, चिदंबरम साहब और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आंख खोल कर देखिए और कान खोल कर सुनिए, तब आपको वह देश अच्छा लगता था। और आज गृहमंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल में यह परिस्थिति बनी है कि बस्तर में लगातार 2 साल ओलंपिक हुए हैं। ये सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हुआ बस्तर अच्छा नहीं लगता है। अभी मात्र कुछ दिन पहले नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर रायपुर में ट्राइबल एरियाज के युवकों के द्वारा हैंडलूम कपड़ों का को रैंप पे वॉक किया गया। ये ट्राइबल युवा का यानी ट्राइबल जेंजी का रचनात्मक प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता था और वो अच्छा लगता था। यह है दिमागी नक्सल जो इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस समय 1800 से अधिक बैंक की ब्रांचें खुलना उस क्षेत्र में, 1200 से अधिक एटीएम खुलना, 6000 से अधिक मोबाइल के टावर लगना ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ वो विकसित हो जाएं, 22 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध हो जाना ताकि वह युवा अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर सके। यह दृश्य जिसको खराब लगता है वो वास्तविकता में दिमागी नक्सल है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से और चिदंबरम साहब से यह भी पूछना चाहता हूं कि आप वही है ना जिसने वित्त मंत्री के रूप में कहा था कि भारत में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, और सदन के पटल पे बोला था, और आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश है। जिसकी सोच ऐसी है वो है दिमागी नक्सल। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो लोग जो कहते हैं कि संसद से समाधान नहीं निकलेगा, सड़क से समाधान निकलेगा, वो है दिमागी नक्सल। जो ये कहते हैं कि संसद में रेजिस्टेंस से चीजें तय होंगी, वो है दिमागी नक्सल। और ये यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। इसलिए हम यह भी बताना चाहते हैं कि वो कालखंड जब इस देश में इतनी विपरीत परिस्थितियां थीं और आज एक सकारात्मक वातावरण बना है ट्राइबल एरियाज में, वह जिसको सही नजर नहीं आ रहा है वो वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक दौर में जब भारत में इतने जिले प्रभावित थे वो तो अपनी जगह की बात है, उससे बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में बैठकर उनको नैतिक और बौद्धिक समर्थन दिया जाता था, वो लोग वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल हैं। जिन्हें गांधीयंस में गन नजर आती हैं, जिनको नक्सली, जिनको गांधीयंस विद गन कहते हैं, यानी कहां महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक, और कहां माओवादी जो कहते हैं पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे, उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। और इसीलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि चिदंबरम साहब हो या कांग्रेस पार्टी, ये वही लोग हैं जिनको एक विशेष प्रकार की चीज में अलग लगाव नजर आता है और दूसरे प्रकार की चीज में दुराव नजर आता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले उन लोगों को सम्मानित किया है जैसे कर्नाटक की रानी गौड़ा, जिन्होंने 1,00,000 से अधिक वृक्ष लगाए, एक अन्य कर्नाटक की महिला जिनको वृक्ष माता कहा जाता है, और याद करिए वो आई थी पद्म अवार्ड लेने नंगे पैर राष्ट्रपति भवन में, मगर ये लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर नहीं आते थे, जो लोग एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली में बैठकर और भारत चीन सीमा के ऊपर होने वाले भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने का काम करते थे, वो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर आते थे। और जो ये कहता था, जो सरकार ये कहती थी कि हमारी तो दशकों से स्थापित नीत है कि होना ही नहीं चाहिए सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है दिमागी नक्सल। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि संयोग देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था और आज नागपंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। तो मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है ये बहुत सहज और स्वाभाविक है, इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है, उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। ये है वो दिमागी नक्सल। और आज हर भारतीय को इस चीज को सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है और कान खोलकर समझने की जरूरत है, स्वतः समझ में आ जाएगा। और उन लोगों ने जब स्वयं स्वीकार कर लिया है तो हमें लगता है अब किसी प्रकार का कोई संदेह या किंतु परंतु किसी देशवासी के मन में नहीं रह गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है, ये उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है।
4: मित्रों, इस विषय से जुड़े सभी प्रश्न आमंत्रित हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे,
1: तो दिमागी नक्सल पर बीजेपी बड़ी हमलावर दिखाई दी है। और अब रुकना, छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया
6: है। ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
8: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
1: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: घंटे में सामने आ गए दिमागी नक्सली चिदंबरम पर बीजेपी का करारा हमला, कहा नागपंचमी पर दिख गया दिमाग का जहर। पीएम के बयान पर चिदंबरम ने खुद को बताया था दिमागी नक्सली।
1: वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले तेज, अमित शाह ने उठाए सवाल का, इस पाप की माफी नहीं कांग्रेस के सफाए, सोनिया गांधी ने सिर्फ कुर्सी लाने को कहा था।
0: रांची में आज 2 बजे सरकार से छात्रों की वार्ता, कांग्रेस नेता बोले जिद से बात नहीं बनती, बीती रात सीएम सोरेन, राहुल और तेजस्वी का फूका गया पुतला।
1: बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़, 7 लोगों की मौत, सावन सोम

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जो लड़ाई अभी तक अर्बन नक्सली पर टिकी थी, वो पीएम मोदी के हमले से दिमागी नक्सल पर शिफ्ट हो गई है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलियों को पहचानने और समाज में उन्हें अलग थलग करने की जरूरत बताई और एक नई जंग की यहां से शुरुआत हुई।
2: और अब इस जंग में सबसे आगे खड़े नजर आए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। चिदम्बरम ने कहा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम का यह बयान बारूद की ढेर में चिंगारी लगाने जैसा साबित हुआ और इस बयान के बाद से घमासान तेज हो गया है।
3: इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
4: मौका था 15 अगस्त पर देश के नाम संबोधन का, जगह थी लाल किले की प्राचीर। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य के लक्ष्य बताए तो नए खतरे से आगाह भी किया। पहली बार पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल के बढ़ते खतरे की तरफ देश का ध्यान खींचा। एक बार फिर सुनिए पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा।
3: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
4: जाहिर है पीएम मोदी ने अपने दिमाग से नक्सलवादी विचारधारा को खाद पानी देने वालों पर हमला बोला और इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम खुलकर सामने आए। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम यही नहीं रुके, कुछ घंटे बाद एक्स पर उन्होंने लिखा, दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक नया रूप है। अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था, ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उन्हीं अपशब्दों का एक नया रूप है। चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए। दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, देश के तमाम शहरों से चिदम्बरम पर चौतरफा हमला शुरू हो गया।
5: और जेएनयू में कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया था स्वागत की होता थी। चिदम्बरम साहब आप देश के अप्रिय मंत्री हैं, वह आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई एडवोकेट है, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा बताते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है उसी का चेहरा बने हैं पीटर चिदम्बरम।
6: उली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर जो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदम्बरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
4: वार पलटवार के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पी चिदम्बरम के बयान पर आपत्ति जताई। एक्स पर उन्होंने लिखा, भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सल हैं, सिर्फ वो लोग ही दिमागी नक्सल हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, चिकन नेक को काट कर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। रिजिजू ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया तो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 370 के समर्थन में आगे आ गईं। महबूबा ने एक्स पर लिखा, मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं।
7: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
4: पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल पर हमला कर

0: एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां आने वाले दिनों में वार पलटवार का लंबा सिलसिला दिख सकता है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और पीएम मोदी के इस हमले पर राजनीतिक वार पलटवार तेज है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
2: ये दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। ये जो दिमागी नक्सलाइट ये जो चलाते हैं ये खुद ही हमारे देश में रहती है, बार बार देश छोड़ के विदेश भाग जाते हैं, सेमिनार करते हैं, बाहर का पैसा लेके आते हैं। एक तो हमने निकाल दिया जंगलात नक्सलाइट, निकाल दिया माओइज्म, निकाल दिया, अब ये आ गया।
3: जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जेंसी जिसको बोला जा रहा है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं, कभी अर्बन नक्सल बोलते, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं।
4: ये वही लोग हैं जब एक प्रदूषण के सिलसिले में और वहां पर इंडिया गेट पर प्रदर्शन हो रहा है तो कह रहे हैं एक हिडमा मारोगे तो हर घर घर हिडमा निकलेगा। ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन जो दिमागी नक्सल, ये अर्बन नक्सल्स हैं।
5: लेकिन प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे दिमागी नक्सल जैसी कोई नई श्रेणी बनाकर, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सरकार से असहमति, सरकार की आलोचना, किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है, लेबिल लगा के नहीं दिया जाता है।
6: अब पीएम मोदी के हमले के बाद सबकी निगाहें सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पर भी टिकी हैं कि आखिर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आपको दिखाते हैं सीजेपी के छात्र नेताओं का क्या कहना है।
7: बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है ये प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द तो देश के युवा के लिए नहीं यूज करना चाहिए। दिमागी नक्सल, मतलब कि आप मान रहे हो कि ये दिमाग वाले लोग हैं। एंड मुझे लगता है ये जो आजकल आप ये कमेंट्स दे देते हो ना कि कॉकरोच है, पैरासाइट्स है, दहशतगर्द है, वायरस है, एंड अब आपने बोल दिया दिमागी नक्सल, ये सब चीजें नहीं चलते। ये पहले चलते होंगे, दूसरे जनरेशन से चलते होंगे, लेकिन जो जेंजी है, जो यंग जनरेशन, जो युवा है, इन सब चीजों में वो पढ़ता नहीं है। उसको पता है कि मुद्दे क्या है। मुद्दे आज हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, एग्जाम रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट जॉब्स, इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करें, इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। बताइए रेड फोर्ट से, मतलब कि आपको तो सबसे ज्यादा एक तरह से स्टेट्समैनशिप में आके आपको वहां पे स्पीच देना चाहिए। आप वहां पे देश के युवाओं को आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो, मतलब कि बहुत बहुत कंडेमेबल चीज है। मुझे नहीं लगता ये देश में ऐसे चीजें स्वीकार करेंगे। ये इसलिए भी हो रहा है मुझे लग रहा है क्योंकि सरकार को पता है कि देश का युवा उनसे नाराज है।
1: पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, देखिए सौरभ दास जिन युवाओं की बात कर रहे हैं उनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया ही नहीं, वो तो सिर्फ दिमागी नक्सलाइट्स को टारगेट कर रहे थे। कहीं पर भी उन्होंने यूथ को लेकर या फिर युवाओं इस तरह की सोच रखते हैं ये बात नहीं कही है।
8: जी बल्कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जरूर युवाओं को लेकर कई स्कीम्स का ऐलान किया, और जैसा आपने भी बताया कि दिमागी नक्सल को लेकर युवाओं की बात प्रधानमंत्री ने बिल्कुल भी नहीं कही। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जो दिमागी नक्सल है इसका इस्तेमाल आगे आने वाले समय में जो राजनीति होगी उसमें जरूर दिखेगा। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं कई राज्यों के, वहां पर जरूर दिमागी नक्सल शब्द की गूंज आपको सुनाई देगी, क्योंकि एक बात जो प्रधानमंत्री ने कही है उसको लेकर टीका टिप्पणी न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष विपक्ष के नेताओं से लगातार आ रहा है। जैसे ही पी चिदम्बरम ने कहा आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल, उसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बयानबाजी करते हुए साफ कहा कि विपक्ष को नहीं बल्कि उन लोगों को जो धारा 370 का समर्थन करते हैं, भारत को नॉर्थ ईस्ट से अलग कर देना चाहते हैं, साथ साथ जो संविधान के विरोधी हैं इन सबको दिमागी नक्सल कहा गया है। इससे पहले अर्बन नक्सल को लेकर भी एक बहस, लंबी बहस छिड़ी और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जरूर यह बात कही कि देश से जहां पर नक्सलिज्म खत्म हो चुका है, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो पिछले काफी समय में सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे वहां पर माओवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, उसके बाद अब दिमागी नक्सल यानी कि दिमाग में इस तरह की सोच रखने वाले जो नक्सल प्रभावित सोच वाले लोग हैं वो ज्यादा हो गए हैं। ये दरअसल उन लोगों की तरफ इशारा था जो बार बार देश विरोधी ताकतों में के साथ संलिप्त पाए जाते हैं और लगातार देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि अगर हम मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, तो हमको दिमागी नक्सल क्यों कहा जा रहा है। अब देखना ही होगा कि आगे वाले समय में इस पूरे मामले पर
6: नैरेटिव की लड़ाई, एक नैरेटिव जो है पीएम ने शुरू किया और दूसरी तरफ अब अपोजिशन इसको एक दूसरी तरीके से सेट करने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा भी तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर वंदे मातरम को पूरा गाने से रोकने का आरोप लगा है।
1: बीजेपी ने बकायदा सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देशभर में कई शहरों पर प्रदर्शन इसी को लेकर किए गए। कांग्रेस पर हमला करने वालों में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं।
6: तो ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं जहां जगह जगह बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है।
9: गुजरात के सूरत में नारेबाजी और प्रदर्शन, वाराणसी में कांग्रेस के दफ्तर पर पथराव, अजमेर में कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन, बेंगलुरु में भारतीय जनता युवा मोर्चा का कैंडल मार्च, वंदे मातरम के अपमान पर कोलकाता में बीजेपी का मशाल जुलूस। वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर हैं कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। 15 अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
10: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
9: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी। सफाई देने जयराम रमेश सामने आए।
11: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई
9: नहीं। कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते? इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
12: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
9: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र के वंशज उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्र चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है।
13: वो बहुत शर्मनाक है, ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए। हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से।
9: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। आज तक ब्यूरो।
1: इस पूरे विवाद पर हमने बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से खास बातचीत थी, सुनिए।
14: वो तो जयराम रमेश जी जो झूठ बोल रहे थे, बिल्कुल झूठ, और पता लगता था भी उनकी जो उनके लिप्स हैं और उनकी जो वाणी है उससे बिल्कुल मेल नहीं खा रहे, झूठ बोल रहे हैं। खड़गे साहब कहें आके भी क्या कह रहे थे सोनिया गांधी, और बाद में सुना है भी ये किसने कहा। और कुर्सी मंगाने का काम ये होता है, बंद करो नो चलाओ बंद, ये कुर्सी मंगाने का इशू होता है। चेयर किसी वो किसी को बुला के चेयर मंगा देते हैं, कुर्सी का इशारा। और जब वंदे मातरम चल रहे हैं आप कुर्सी का क्या काम जी। और सोनिया अगर कुर्सी मंगवानी थी तो राहुल गांधी मंगवा लेता, और बहुत थे सोनिया जी कभी कुर्सी मंगवाते। हाँ खड़गे साहब उनके लिए कुर्सी मंगाने तो मंगवा रहे हो तो माने, सोनिया गांधी जी खड़गे के लिए कुर्सी मंगवाएंगे। हमने बहुत बार देखा है जो मनमोहन सिंह जी के साथ होता रहा है। तो पर सोनिया गांधी जिस तरीके से तिलमिलाए हुए थे, जितनी देर तो जो वो चार लाइनें थी वहां तक तो वो बोल भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जिस तरीके से वो खड़े थे उस लहजे को भी चेंज किया, और जिस तरीके से वो बोल रहे थे उसे भी चेंज किया। और मेरी ख्याल से ये तो मौसम अच्छा था वहां पे, नहीं जितना उनके अंदर ये गुस्सा था कुछ भी वहां पे हो सकता था।
6: और हमारे संवाददाता राहुल गौतम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कांग्रेस की तरफ से दी जा रही दलील कि कुर्सी के लिए उन्होंने कहा था वो बीजेपी को पच नहीं रहे और वो लगातार हमलावर है।
15: देखिए लगातार हमलावर इसलिए है क्योंकि एक दलील नहीं है, तीन दलीलें हैं। क्योंकि सबसे पहले ये कहा गया कि जो कुर्सी है, कुर्सी की वजह से सोनिया गांधी ने कहा कि आप कुर्सी लेकर आइए मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। इसके अलावा जयराम रमेश ने ये भी बयान दिया कि किस प्रकार से एक मिसकम्युनिकेशन गैप था जो उस समय घटा। इसके अलावा मनोज कुमार का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे नेताओं ने हमको रोकने की कोशिश करी। तो कई दलीलें हैं जो दी जा रही हैं। जाहिर है इसकी वजह से बीजेपी हमलावर है, उनका साफ तौर पर कहना है। बल्कि कुछ ही मिनटों पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें आरोप लगाया कि जो कुछ घटा 15 अगस्त को इंदिरा भवन में कांग्रेस मुख्यालय में, वो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का कितना रिगार्ड है या कितना रिस्पेक्ट है वंदे मातरम के लिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए उस समय पर एक कम्युनिकेशन गैप हुआ, कम्युनिकेशन एरर हुआ, जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी निष्ठा है वंदे मातरम के अंदर। वंदे मातरम लगातार सभी जो कांग्रेस के सेशन होते हैं या कार्यक्रम होते हैं उनमें गाया जाता है। पहले जो दो पैरा थे वो गाए जाते थे, अब क्योंकि कानून बन गया है और तमाम जो पैराज हैं वो गाए जाते हैं। उसको भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमने उसको पूरा प्ले किया जब हमारे यहाँ पर कार्यक्रम था। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि राजनीति बहुत ज्यादा तेज है इस मामले पर। कांग्रेस पार्टी जाहिर है इसको डाउन प्ले कर रही है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उनके हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अखिलेश यादव की करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपने अपने समीकरण सेट करने में लगे हुए। इस बीच अखिलेश यादव ने बिना नाम दिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर निशाना साधा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब अखिलेश यादव ने उनके उसी बयान को आधार बनाकर उन पर हमला किया। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव आने से ठीक पहले जयंत चौधरी पलट गए, इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और अब पहली बार अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार किया है।
16: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
6: तो 2022 में मुजफ्फरनगर के खतौली में जयंत चौधरी ने चवन्नी वाली बात कही थी, सुनिए उस वक्त जयंत चौधरी ने क्या कहा था।
17: ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा?
18: अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उच्च टिप्पणी की गई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। आज अखिलेश यादव जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हम पे एहसान किया है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, जब आप पूरी तरीके से हताश हो चुके थे, 2017 में आपके 47 विधायक आए थे, हमसे गठबंधन करने के कारण आप 111 पे पहुंचे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जहां आपका खाता नहीं खुलता था, वहां पे आपके विधायक जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के कारण। गठबंधन एक ऐसा धर्म होता है जहां पे एक दूसरे की मदद की जाती है, परंतु आपने हमारी पार्टी के साथ साजिश करके उसको खत्म करने की कोशिश की।
6: तो यूपी के स्कूल को लेकर समाजवादी पार्टी के आरोपों पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने बड़ा हमला भी बोला है। कहा कि जो लोग स्कूल में परिवर्तन नहीं कर पाए वो अब आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आज लोग कह रहे हैं कि स्कूलों की वीडियो बनाएंगे, बनाओ खूब वीडियो बनाओ।
1: हमारी सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग करवाई, बालक बालिकाओं के अलग टॉयलेट बनवाए, पेयजल की व्यवस्था की, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी सब दिया, फर्नीचर दिया, हर 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग दिए, बुक्स और यूनिफॉर्म, प्रत्येक बच्चों के जूते मोजे भी दिए।
6: 2017 से पहले न तो भवन थे, भवन थे तो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक थे तो छात्र नहीं थे, और सब है तो सुविधाएं न होने से छात्र बीच में छोड़कर चले जाते थे।
19: बेसिक शिक्षा परिषद का ही आप देखें, आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई, हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं, हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।
6: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
22: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
23: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
24: सोच बदलो और बैंक भी।
25: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
26: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
25: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
27: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
28: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
29: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को, और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
30: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है लड़के सब।
25: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम
31: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
32: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
31: नहीं सर।
32: 12th किससे की हो?
31: 12th सर मेरा PCM से रहा।
32: कंपाउंड क्या होता है?
31: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
32: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
31: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
32: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना

कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

0: कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन, किस पर उठे सवाल? क्या सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के पूरे गायन पर आपत्ति जताई? वंदे मातरम के गायन पर क्यों गरमाई सियासत? स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ, लेकिन गायन के दौरान सोनिया गांधी के कुछ इशारों और नेताओं की बातचीत की तस्वीरों ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेता वंदे मातरम के पूरे गायन के दौरान गंभीर नजर नहीं आए।
1: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
0: बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने साफ किया कि वो वंदे मातरम का पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाया गया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोनिया गांधी पर लगाए जा रहे आरोपों को भी खारिज कर दिया।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
0: दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रवैये को शर्मनाक बताया है। जश्न से शुरू हुआ वंदे मातरम का विवाद अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद 15 अगस्त को इसके घमासान की पहली सियासी किश्त भी सामने आ गई है। आज तक ब्यूरो।

24 घंटे में सामने आ गए दिमागी नक्सली। चिदंबरम पर बीजेपी का ये हमला, कहा नागपंचमी पर दिख गया दिमाग का जहर। पीएम के बयान पर चिदंबरम ने खुद को बताया था दिमागी नक्सल। वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले तेज। अमित शाह ने उठाए सवाल, कहा इस पाप की माफी नहीं कांग्रेस की सफाई। सोनिया गांधी ने सिर्फ कुर्सी लाने को कहा था।

20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का प्लान। बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत। सावन सोमवार को श्रद्धालु आए थे, बिजली की तार गिरने की अफवाह से भगदड़। बंगाल में होटल में आग, 7 श्रद्धालुओं की मौत। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ। इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं बिहार के लखीसराय के रिपोर्ट से, जहां पर भगदड़ मची जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और कई लोग इसमें घायल। लखीसराय स्थित भगवान शिव के मशहूर मंदिर अशोक धाम में सावन के तीसरे सोमवार को बड़ी तादाद में शिव भक्त पहुंचे थे। एसडीएम के मुताबिक बिजली का एक खंभा गिरने से करंट की अफवाह फैल गई, जिससे भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इसी भागम भाग में एक दूसरे को कुचलते हुए भीड़ निकल गए। 7 लोगों की इसमें मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
1: लखीसराय के अशोक धाम में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ सोमवारी के दिन जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मची और इस भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा घायल हैं, जिनका इलाज लखीसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। लखीसराय जिला प्रशासन के मुताबिक सुबह 7:45 बजे हुई इस घटना के पीछे यह अफवाह बड़ी वजह रही, जिसमें बिजली का तार गिरने और उसमें करंट का प्रवाह होने की बात कही गई। अफवाह फैलने के बाद श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मची और इसी भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। सरकार ने इस पूरे मामले में जो मृतक हैं उनके आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जिला प्रशासन घायलों के इलाज में लगा हुआ है और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि वह घटना के तह तक जाने के लिए जाँच कराएगा।
0: मामले की जाँच तो होनी चाहिए, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। लखीसराय हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। जब यहाँ भक्तों की बड़ी भीड़ थी, वहां पर भगदड़ मच गई, इसमें 7 लोगों की जान गई। एक अफवाह वहां पर फैली, लेकिन नियंत्रित क्यों नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच में पीएम मोदी ने भगदड़ में जिनकी जान गई है संवेदनाएं प्रकट की हैं और पीएम मोदी ने इस पर दुख प्रकट किया है। लखीसराय से विधायक और बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि करंट की अफवाह से ही भगदड़ मची, मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
2: बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जा भी रहा हूं और ये घटना मंदिर परिसर के बाहर और बिजली के तार गिरने से और उसमें लोगों ने अफवाह उड़ाया कि करंट है उसी में भगदड़ मची है। जिलाधिकारी से संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है, एक बार हम लोग जा रहे हैं उसको देखेंगे, इसकी लापरवाही है जो भी होगा उसकी जांच होगी।
3: मैं सभी मृत परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, मृत आत्माओं के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने शरण में ले, भगवान शिव अपने शरण में ले और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और मृतक परिवारों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। मेरी पूरी संवेदना मृत परिवारों के साथ है, मृत आत्माओं की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टों में अगली रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से, जहां पर तारापीठ से बीरभूम के एक होटल में आग लगने की खबर मिली है, जहां 7 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक सावन का सोमवार है और इस मौके पर बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु तारापीठ मंदिर पहुंचे थे। कई श्रद्धालु तारापीठ के पास में एक होटल में रुके थे और आज सुबह जब लोग सो रहे थे तभी लगभग 4:30 बजे के आसपास होटल में आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, फिर आग बुझाई गई। हालांकि तब तक 7 लोगों की जान जा चुकी थी। घायल लोगों को रामपुर हाट के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह मानी जा रही है।
4: सावन महीने के तीसरे सोमवार बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे तारापीठ और इसी बीच भोर 4 बजे एक होटल में आग लगने की वजह से कुल मिलाकर 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, जो प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है पुलिस की ओर से कि रिसेप्शन डेस्क के पास एसी मशीन से यह आग लगी और उसके बाद फॉल सीलिंग होने की वजह से आग बहुत ही जल्द फैलने लगी और ऊपर के मंजिलों में भी आग फैल गई। यार सुबह 4 बजे ज्यादातर लोग सो रहे थे, इसलिए इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते आग अलग अलग कमरों में फैल गया और इसमें एक अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें कुल मिलाकर 7 लोगों की अभी तक मृत्यु दर्ज की गई है। ज्यादातर लोग दम घुटने की वजह से और कुछ लोग आग में झुलसने की वजह से उनकी मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। और दूसरे छोर पर कई लोग ऐसे हैं जो श्रद्धालु हैं, जो होटल के स्टाफ रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, वो भी काफी गंभीर रूप से घायल है। उनका इलाज इस समय अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस की ओर से तफ्तीश किया जा रहा है। जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि शायद जो फायर एक्सटिंग्विशिंग मशीन्स होते हैं, जो आग बुझाने के लिए जो साजो सामान होते हैं, वो थे, लेकिन ठीक समय पे वो काम नहीं किए। क्यों काम नहीं किए, इसको लेकर भी तफ्तीश की जा रही है।
0: 12:12 रिपोर्ट में अगले रिपोर्ट झारखंड से है, जहां लगभग 2 घंटे के बाद झारखंड सरकार और छात्रों के बीच में लगभग दोपहर 2 बजे बातचीत शुरू हो जाएगी। अब यह सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का चौथा दौर होगा। छात्र 2 मांगों पर अब अड़े हुए हैं, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की CBI जांच और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग। इससे पहले 9 अगस्त को हुई पिछले दौर की वार्ता में कोई भी समाधान नहीं निकल सका।
5: JSSC के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा के दौरान ही उन्होंने कहा था कि आंदोलन का स्वरूप बदलेगा। उसके बाद उन्होंने 18 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, या तो उनकी मांगे मानी जाए, 11वां से 13वां JPSC रद्द किया जाए, CBI प्रोव किया जाए, JSSC CGL रद्द किया जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम था उनका। और इसी के तहत 16 अगस्त को उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया। छात्रों के उग्र तेवर को देखते हुए सरकार ने एक बैठक रखी है और वहां पार्टिसिपेट करने के लिए छात्र भी तैयार हैं। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है स्टेट गेस्ट हाउस में, और कहा गया है कि विधि सलाहकार के साथ जितने भी डेलीगेट्स हैं वो पहुंचे, या डेलीगेशन जो आ रहा है विधि सलाहकार को लेकर आए, यानी एक गंभीर चर्चा हो सकती है और कानूनी अड़चन कैसे दूर की जाए और विद्यार्थियों की मांग को कैसे एड्रेस किया जाए, इस पर अब विचार किया जाएगा और सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार करेगी।
0: अब छात्रों ने सोरेन सरकार को 18 अगस्त तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों का यह अल्टीमेटम है, 18 अगस्त तक उनकी मांगे मान ली जाए, अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
6: हम लोग संवाद करेंगे, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि हमारी सारी मांगे पूरी हो, और अगर नहीं पूरी होती है तो हमारी जो आंदोलन है और भी तेज होगा। 20 अगस्त का जो है सो हमारे लोग का CM आवास घेरावा है, उसमें लाखों की जनसंख्या में छात्र आएंगे। 18 तारीख तक अल्टीमेटम है राज्य सरकार के पास, 18 तारीख तक अगर हमारी सारी मांगे मान लेती है तो बहुत अच्छा, आंदोलन को समाप्त करेंगे। अगर नहीं मानती है तो हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और इस आंदोलन को और भी धार देंगे।
0: 12:12 रिपोर्ट में अगले रिपोर्ट अब छात्रों से जुड़े हुए एक और मामले की। NTA ने फिर से परीक्षा में गड़बड़ी के चलते वो सवालों के घेरे में आ गया। NTA इस बार मामला UGC नेट परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके 3 विषयों के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी के चलते एजेंसी ने री एग्जाम का फैसला लिया, जिसमें अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की UGC नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएंगी। दरअसल इन 3 विषयों के प्रश्न पत्रों में तथ्य, टाइपिंग, ट्रांसलेशन, व्याकरण से जुड़ी हुई मल्टीपल गलतियां पाई गई। NTA के एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि केवल चैलेंज प्रक्रिया से इन खामियों को ठीक करना संभव नहीं है। ऐसे में 3 विषयों की परीक्षाएं फिर से कराने का फैसला हुआ है, वो भी तब जब इसका रिजल्ट आने ही वाला था। इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि आपको अब अचानक जब परीक्षा का रिजल्ट आना था उससे पहले याद आया कि आपको परीक्षा दोबारा करवानी है, और खामियां हुई कैसे, ये भी सवाल है।
7: नीट UG पेपर लीक के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब फिर बड़े सवालों में। कल देखा गया कि UGC की जो प्रोविजनल आंसर कीज है वो जारी की जाती है, हालांकि 3 जो विषय हैं सोशियोलॉजी, कॉमर्स और इंग्लिश की जो आंसर कीज है वो जारी नहीं की जाती। शाम को देखा जाता है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी इन 3ों के जो UGC एग्जाम थे वो रद्द कर कहता है कि इनके री एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे इन 3 विषयों के, जो सितंबर के महीने में होंगे। और इसी को लेकर देखा जा रहा है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है। विद्यार्थियों का बड़ा आरोप यह था कि इसमें बहुत से ग्रामेटिकल एरर थे, फैक्चुअल एरर थे क्वेश्चंस में, और साथ ही कई विषयों में जो क्वेश्चन देखा गया था वो रिपीट थे। खासतौर पर इंग्लिश में देखा गया कि 150 में से जो 67 सवाल थे वो 2024 के UGC एग्जामिनेशन से आए थे, और साथ ही विद्यार्थियों का यह भी कहना था कि कॉमर्स के एग्जामिनेशन में
0: एक बहुत बड़ी खबर इस समय में मिल रही है, और उज्जैन से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भगदड़ की खबर है। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ मचने की खबर मिल रही है। चिंताजनक खबर है, लेकिन ये बड़ी खबर इस समय महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ की खबर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए बड़ी भीड़ आज पहुंचे हुए हैं। आज सावन का ये सोमवार भी है और ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, उज्जैन के महाकाल परिसर की तस्वीरें। भक्तों की या बेहिसाब भीड़ है और नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए ये भक्त आप देखेंगे कि वहां भगदड़ सी मस्ती भी दिखाई दी, लेकिन पुलिसकर्मी भी वहां बैरिकेड को बड़े मजबूती से पकड़े हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आज ही एक भगदड़ भी मची बिहार में और वहां पर 7 लोगों की जान गई है। तो और अभी एक बड़ी खबर, एक अफवाह बताया जा रहा है कि चली है, अफवाह फैली उसके बाद महाकाल मंदिर में भगदड़ मची है, लेकिन भगदड़ में क्या नुकसान हुआ इस बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। रविश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ है। रविश, तस्वीरें तो आ गई है लेकिन क्या नुकसान की कोई खबर है, क्या जनहानि भी हुई है?
8: देखिए अभी राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी जनहानि की खबर अभी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि ये जो घटना हुई है ये उज्जैन के महाकाल मंदिर की तरफ जो रास्ता आता है, क्योंकि आज दरअसल उज्जैन में दो विशेष संयोग बने हैं, पहला सावन का सोमवार भी है और दूसरा आज नागपंचमी भी है। और उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है उसके ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है जो कि साल में सिर्फ एक बार खुलता है नागपंचमी पे, और इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं। तो पुलिस ने जो व्यवस्थाएं की थी, श्रद्धालुओं की जो बैरिकेडिंग की गई थी जिसके बीच में से होकर के श्रद्धालुओं को निकलना है, बताया जा रहा है कि वहां जरूरत से ज्यादा श्रद्धालु जो है मौजूद थे और ग्राउंड कंट्रोल में फिलहाल जो है वो पुलिस वहां पे असफल साबित हुई, प्रशासन असफल साबित हुआ।
0: रमेश, इस समय बताएं इस समय क्या हालात है, क्या स्थिति सामान्य हो पाई है, नियंत्रित हो पाई है या नहीं?
8: देखिए पूरा प्रशासन जो है फिलहाल मौके पे है, स्थिति पूरी तरीके से फिलहाल काबू में है। जो 13 लोग के आसपास बताए जा रहे हैं जो वहां बेहोश हुए थे उनको भीड़ से अलग निकाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल जांच की जा रही है, उनकी तबीयत पे फिलहाल नजर रखी गई है। अभी तक की राहत की खबर यह है कि कोई जनहानि की खबर नहीं आई है, लेकिन कुछ लोग इस भीड़ में अत्यधिक दबाव की वजह से, भीड़ में दबे जाने की वजह से काफी ज्यादा बेसुध हो गए थे, उन्हें फिलहाल पुलिस की टीमें प्रशासन की टीमें।
0: रमेश, क्या घायलों के बारे में कोई जानकारी है कि उनकी संख्या कितनी है? और दूसरा, जिस जगह पर ये भगदड़ मची है ये मुख्य मंदिर से कितनी दूरी पर है?
8: देखिए आपको बताएं कि ये जिस जगह पे भगदड़ हुई है ये दरअसल उज्जैन और महाकाल मंदिर और हरसिद्धि मंदिर के बीच का इलाका है। ये एक सड़क है, जब भी उज्जैन में महाकाल मंदिर में भीड़ बढ़ती है तो इस सड़क का इस्तेमाल किया जाता है, बैरिकेड के जरिए जो भीड़ होती है, जो श्रद्धालु होते हैं उनको मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। तो जहाँ पे ये हादसा हुआ है ये मंदिर परिसर से तकरीबन आप मान के चलिए 200-250 मीटर दूर की जगह है, लेकिन ये मंदिर की क्राउड कंट्रोल का जो हिस्सा है, जो इलाका है, ये उसी का हिस्सा भी है और मंदिर पर जब कभी बड़े पर्व त्योहार होते हैं तो यहीं से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है। ये उस जगह पर भगदड़ हुई है, हरसिद्धि मंदिर के पास में नीलकंठ द्वार पड़ता है, ये वहां का मामला है जहां पे फिलहाल ये भीड़ की वजह से, बैरिकेडिंग की वजह से लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर अगर आप देखें तो गिर भी रहे हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी भगदड़ में अफरा तफरी में।
0: और रमेश ने दर्शकों को बताया कि ऐसी क्या अफवाह वहां पर फैली कि लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े?
8: देखिए अभी अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही है, कोई कह रहा है कि वहां पे करंट की अफवाह फैली थी, कोई कह रहा है कि वहां पे श्रद्धालु एक दूसरे से इतनी ज्यादा दब गए थे कि वहां पे भगदड़ की अफवाह फैल गई, तो अलग अलग तरीके की बातें फिलहाल निकल के सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल प्रशासन का पूरा जो ध्यान है इस वक्त वो क्राउड मैनेजमेंट पे है, कोशिश यही हो रही है कि वहां से लोगों को किसी भी तरीके से संयमित तरीके से दर्शन कराए जाए और फिलहाल प्रशासन वहां पे लगाए कई अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया है उस बैरिकेडिंग पे जहां पे ये वो हुई है, क्योंकि तस्वीरें में अगर आप देखें तो पुलिसकर्मी और जो निजी सुरक्षा कर्मी है मंदिर के वो अपने हाथों से बैरिकेडिंग को संभाल रहे हैं, जिस बैरिकेडिंग के अंदर इतना ज्यादा दबाव आ गया है श्रद्धालुओं का कि वो बैरिकेडिंग में समा नहीं पा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसी में जो श्रद्धालु है वो दब गए और फिर यहीं से जो है बैरिकेडिंग को तोड़ करके कई श्रद्धालु निकले हैं और फिर वहां से बैरिकेडिंग को हटाया गया है।
0: रविश, चूंकि इस समय बड़ी संख्या में लोग आज तक देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि इस भगदड़ का क्या दर्शनों पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ा है या दर्शन अभी भी वहां चल रहे हैं, जलाभिषेक अभी किया जा रहा है?
8: देखिए दर्शन अभी भी जारी है, दरअसल ये जो भीड़ है ये मंदिर परिसर के अंदर नहीं थी, ये मंदिर परिसर के बाहर थी, अभी मंदिर परिसर के अंदर भी काफी लोग मौजूद है। जो अभी हमारी बात हुई प्रशासन से, सुबह से तकरीबन 5.5 लाख लोग जो है वो दर्शन कर चुके हैं महाकाल के और साथ ही में नागचंद्रेश्वर मंदिर के। आज मंदिर में दो तरफ से भीड़ आती है, सावन सोमवार की भी भीड़ है और नागचंद्रेश्वर की भी भीड़ है, तो इसी वजह से माना जा रहा है कि जो भीड़ है वो सतत दर्शन भी करते जा रही है। जिस हिस्से में ये घटना हुई है वहां पे फिलहाल लोगों को रोका गया है, बल्कि मंदिर परिसर में आने के आज कई और दूसरे रास्ते भी होते हैं, वहां से श्रद्धालुओं को नियमित तौर पर प्रवेश दिया जा रहा है।
0: ये जो लोग थे ये नाग चंद्रेश्वर मंदिर जा रहे थे, और नाग चंद्रेश्वर मंदिर की विशेषता भी बताएं कि आज वहां इतनी भीड़ क्यों जा रही थी श्रद्धालु।
8: देखिए दरअसल आज जो नाग पंचमी है और देश में एक ऐसा मंदिर है भगवान महाकाल के ऊपरी तल पर, जो महाकालेश्वर मंदिर है उसके ऊपरी तल पे नाग चंद्रेश्वर महाराज का मंदिर है। बताया जा रहा है कि बड़ी प्राचीन प्रतिमा है भगवान नाग चंद्रेश्वर की, जो कि दुनिया में इकलौती प्रतिमा है, और ये मंदिर साल में सिर्फ एक ही दिन 24 घंटे के लिए नाग पंचमी पे खुलता है, जो कि कल रात 12 बजे से लेके आज रात 12 बजे तक खुला रहेगा सिर्फ साल में एक बार। तो इस 24 घंटे में लोग बड़ी संख्या में देश भर से नाग चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन के लिए पहुंचते हैं उज्जैन। और क्योंकि आज सावन का भी सोमवार है, तो सावन के सोमवार में, और जो कि उज्जैन है वो एक महाकाल का जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी है, तो इस वजह से आज दुगुना दबाव रहता है श्रद्धालुओं का उज्जैन में।
0: लेकिन रविश, भीड़ मंदिरों में खासतौर पर महाकाल जैसे मंदिर में उस परिसर में वो तो सामान्य है, वहां तो होती ही हमेशा से बेहिसाब भीड़ है, लेकिन उस भीड़ को नियंत्रित करने वाले पुलिस वाले भी होते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं खामी या चूक हुई कि एक साथ इतनी भीड़ एक ही जगह पर एकत्रित हो गई कि पुलिस वालों की तुलना में वो ज्यादा कंट्रोल करने लगी और भीड़ जिस तरफ जा रही थी उस तरफ चीजें होती चली गई, यानी कि पुलिस का नियंत्रण जो है कमजोर था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
8: बिल्कुल, प्रशासन और पुलिस का नियंत्रण कमजोर इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे, देखिए पुलिस और प्रशासन को बखूबी मालूम था कि आज उज्जैन में बहुत भीड़ आएगी, क्योंकि आज सहयोग ऐसे बन रहे हैं कि उज्जैन में आज महाकाल की सवारी भी है, सावन का सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है, ये तीन प्रमुख संयोग है, और इसकी वजह से आज उज्जैन में जितने श्रद्धालु आने चाहिए उससे कहीं ज्यादा श्रद्धालु महाकाल मंदिर की ओर आ रहे हैं। और आप इसी वजह से पुलिस ने अपनी तरफ से अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जरूर की, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुई। और आप देखिए ये किस जगह हो रहा है, ये उस जगह हो रहा है जहाँ दो साल बाद सिंहस्थ का मेला आना है, जहाँ करोड़ों लोग आने वाले हैं उज्जैन में।
0: रविश आपके पास लौटते हैं, इस बीच में एक बड़ी खबर, रविश एक बड़ी खबर मिल रही है, मंदिर प्रबंधन ने इस बात का खंडन कर दिया कि कोई भगदड़ हुई, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक अफवाह भर है और किसी भी तरह का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है, चीजें पूरी तरह से नियंत्रित हैं, तो लोग किसी भी अफवाह में ना आए, चीजें अब नियंत्रित हैं, आप जाकर दर्शन भी कर सकते हैं, ये मंदिर प्रबंधन की तरफ से बयान आ गया है, ये हम आपको बताते हैं। मेरा लब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दिमागी नक्सल शब्द की, इसके बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है, सियासी दंगल छिड़ गया है, पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने अब दिमागी नक्सल पर गर्व होने वाले बयान जब दिया, और थोड़ी देर पहले इस पर बीजेपी की तरफ से सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के निशाना साधा, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक परिप्रेक्ष्य में दिमागी नक्सल का विषय उठाया था, लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद जो है निकलकर सामने आ गए। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है।
9: चिदंबरम साहब, और ये पी चिदंबरम साहब वो हैं, इनके लिए क्या कहा जाए, जिस यूपीए के पशुपति से लेके तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बना था, 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे, दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए, और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गईं, ये होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदंबरम साहब के शासनकाल में 5000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई।
0: विवाद की शुरुआत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के बयान से हुई थी, कांग्रेस ने दिमागी नक्सल शब्द इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई, लेकिन पी चिदंबरम का बयान आते ही हमला चिदंबरम की तरफ शिफ्ट हो गया है।
10: पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन देशवासियों से ये अपील की थी कि वो दिमागी नक्सलियों से सावधान रहें। इसके बाद पूरा विपक्ष हमलावर हुआ और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष को और जो लोग सवाल पूछते हैं उनको दिमागी नक्सली की तरह पेंट कर रहे हैं। हालांकि किरण रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ किया कि ये बयान विपक्षी नेताओं के लिए कतई नहीं था, और साथ ही साथ उन्होंने कैटेगरीज भी लिस्ट करी कि कौन कौन व्यक्ति दिमागी नक्सलियों की कैटेगरी के अंदर आता है। हालांकि पी चिदम्बरम जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि मैं हूँ एक दिमागी नक्सली, और जिसके बाद जो सियासी पारा है वो बढ़ गया है। अब बीजेपी के कई नेता पी चिदम्बरम पर हमला कर रहे हैं और उनको नक्सलियों का हेडमास्टर से लेकर नक्सलिज्म के मुद्दे को खाद पानी देने वाला व्यक्ति बता रहे हैं। कुल मिलाकर दिमागी नक्सली एक ऐसा टर्म है जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, और जाहिर है विपक्ष भी अपने हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है।
0: और अब बात वंदे मातरम के कथित अपमान विवाद की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर वंदे मातरम को पूरा गाने से रोकने का आरोप लगा है। बीजेपी ने बकायदा सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सब बस टीवी पर देखते रह गए, सोनिया गांधी ने जो किया उसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी।
11: स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान को लेकर अब राजनीतिक बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं का साफ ये कहना है कि जिस पार्टी ने 2002 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया वो कैसे माफी की मांग कर सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि 140 करोड़ देश की जनता कभी भी जो है वो सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं को माफ नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया। वहीं कांग्रेस का यह साफ कहना है कि वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं किया गया। जब वंदे मातरम पूरा गाया जा रहा था उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सोनिया गांधी ने कुर्सी की मांग की, इसलिए उसको बीच में रोका गया। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे आने वाले समय में इस पूरे मामले पर राजनीतिक बहस छिड़ती है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है।
0: 12:12 रिपोर्टर में रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी है।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: In association with
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
8: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
2: नहीं सर।
3: 12th किससे की हो?
2: 12th सर मेरा PCM से रहा।
3: कंपाउंड क्या होता है?
2: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
3: यही है भिख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
2: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
3: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।

यूपी में 78,000 से ज्यादा राशन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ा। योगी सरकार ने 90 रुपए से बढ़ाकर कमीशन 125 रुपए प्रति क्विंटल किया। सीएम योगी ने लिखा, गोरखपुर में प्रदेश की गौरवशाली खेल परंपरा को नई ऊर्जा प्रदान की जाएगी। यूपी में 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने के महाअभियान की पूर्णाहुति। सीएम योगी ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने लिखा, युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी। आज प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव अवसर पैदा कर रही है। लखनऊ में स्कूल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ सर्वोदय विद्यालय के छात्राएं सड़कों पर, ट्रैफिक जाम होने पर आला अधिकारी आए, छात्रों को समझाकर खुलवाया जाम। सीएम योगी का यूपी में स्कूली शिक्षा को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार का 2017 से पहले यूपी के स्कूलों में बिल्डिंग नहीं थी, पीने का पानी नहीं, शिक्षक नहीं, विद्यार्थी ही नहीं, और ये सब थे तो पढ़ाई नहीं थी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, दावा किया कि 10 सालों में यूपी सरकार ने 26,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद किए और उससे पहले 2 अगस्त को जेन जी की रील्स में स्कूलों की सच्चाई को लेकर बयान किया। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, आज के हालात के अंग्रेजों के दौर से तुलना कर बोले कि आज भी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ ही रहे हैं। अखिलेश यादव 54 करोड़ रुपए वाले बयान पर मंत्री अनिल कुमार का पलटवार, बोले कि ये किसान समाज का अपमान, 2027 में समाज देगा जवाब। अखिलेश को केंद्र का पर जो है उनका चौतरफा हमला, महंगाई, E20 पेट्रोल, सीमा सुरक्षा और नक्सलवाद को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। घाटों और मंदिरों में भी बाढ़ का पानी घुसा, पक्के घाटों का आपसी संपर्क भी टूटा। गंगा किनारे की इमारतों में भी पहुंचा पानी, नाव और मोटर बोट संचालन अभी उससे रोका गया। बढ़ते जलस्तर से दशाश्वमेध आरती भी प्रभावित हुई है। आरती स्थल को अब चौथी बार पीछे शिफ्ट किया गया। गंगा में हाई स्पीड बोट से निगरानी जा रही है। इटावा में भारी बारिश के बाद वाटर लॉगिंग, सफाई रोड अंडरपास में 5 फीट तक भरा पानी, बंद किया गया अंडरपास। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लखीमपुर, गोंडा और बहराइच में सीएम योगी के निर्देश पर राहत कार्य थे। इस प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई गई। नोएडा के हॉस्पिटल में गार्ड के इंजेक्शन भरने का मामला, वीडियो वायरल होने के बाद 2 कर्मचारी बर्खास्त। मथुरा में चलती कार में लगी अचानक धू धू कर आग और कड़ी मशक्कत के बाद बुझाए गए। हापुड़ में युवक के साथ की गई जमकर मारपीट, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई बाइक सवार कांवड़िए, 3 लोगों की मौत। यूपी के कौशाम्बी में तिरंगे के साथ हथियार लहराते दिखे लोग, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। प्रयागराज में 3 सोमवार और नागपंचमी पर नागवासुकी मंदिर में सुबह से भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ की पूजा। अयोध्या में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सावन के महीने में वाराणसी में दिखा देशभक्ति और आध्यात्म का रंग, तिरंगे की थीम पर गंगा आरती हुई, शामिल हुए कई लोग। गाजियाबाद के बाबा दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु और भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए लालायत दिखाई दिया।

और अब यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी ने आरक्षण की मांग शुरू कर दी है। निषाद पार्टी के नेता और यूपी में मंत्री संजय निषाद ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि आरक्षण की मांग पूरी करने में कहीं देर ना हो जाए। पार्टी के 11वें स्थापना दिवस पर संजय निषाद ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। उनको आरक्षण दिए जाने की मांग इस कोटे से की है और आरक्षण नहीं मिलने पर ये भी कहा है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं और लेके रहेंगे आरक्षण जैसे नारे संजय निषाद ने मंच से लगवाए। मजबूर आरक्षण लागू करो के नारे लगाते हुए संजय निषाद ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि चाहे तो मंत्री पद ले लो लेकिन आरक्षण दे दो। तो संजय

0: निषाद जब ये बयान दे रहे थे तो मंच पर बीजेपी के मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। संजय निषाद ने याद दिलाया कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी गंगा जमुना और घाघरा नदी के किनारे की 43 सीटें हार गई थी। अब उन्हें समझना होगा। संजय निषाद का कहना है कि राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को नोटिफिकेशन दिया केवट मल्लाह बिंद एवं मझवार को अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए, लेकिन अब तक समाज को हक ही नहीं मिला। अब संजय निषाद ने कहा कि 28 लाख सरकारी नौकरियों में 14 लाख आरक्षित है, पिछड़ों में यादव समाज के पास सर्वाधिक नौकरियां हैं, ऐसे में अन्य जातियों के साथ तो अन्याय क्यों किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, अब चुनाव भी बेहद नजदीक है, उससे पहले संजय निषाद को आरक्षण की फिर से याद आ रही है, अपनी सरकार पर दबाव एक तरीके से बना रहे, तो अब ये कौन से आरक्षण की मांग हो रही है?
1: देखिए राजीव, निश्चित तौर पर ये चाहते हैं कि जो मल्लाह समाज है, जो निषाद है, उसे अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा मिले। और लगातार कई सालों से ये एक मुहिम, ये एक आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन से उपजे हुए हैं संजय निषाद, लगातार 4 सालों से मंत्री बने हुए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि इस वक्त टाइम है चुनाव का, और उनके समाज में एक नाराजगी बढ़ रही है कि लगातार आप इसी आंदोलन से उपजे हैं और अभी तक बीजेपी सरकार के रहते हुए अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिला है। दूसरी तरफ बिहार से आए मुकेश सहनी लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं और लोगों को, मल्लाह समाज के लोगों को गंगा जल की कसम दिला रहे हैं कि इस सरकार को वोट नहीं करना है। तो उनके ऊपर एक दबाव अपने समाज का भी है, सरकार में रहते हुए इसका भी है कि वो खुद सरकार में है, लेकिन जिस मांग को लेकर आए थे आरक्षण की मांग, वो अभी तक कहीं से पूरी नहीं हो रही। तो एक तरीके का एक दबाव, एक तरीके से चुनाव के पहले संजय निषाद ने ये लगभग साफ कर दिया है कि अगर ये नहीं होगा तो कहीं देर ना हो जाए,
0: कहीं देर ना हो जाए। हमारा विषय किसी को आप समझाइए कि आरक्षण की मांग, फिर इस्तीफे की धमकी भी, ये क्या एक प्रेशर टेक्टिक है कि अब आपको हमारी बात माननी होगी, और नहीं मानेगी तो उस परिस्थिति में बीजेपी क्या करेंगे?
1: देखिए ये बहुत आसान नहीं है। ये 2016 का उन्होंने जिक्र किया कि 2016 में सरकार ने तो अपनी तरफ से भेज दिया था, तब अखिलेश यादव की सरकार थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये वादा किया और कहा कि हम देंगे, लेकिन ये जब तक सेंट्रल केंद्र सरकार नोटिफाई नहीं करे तब तक ये नहीं हो सकता है। ऐसे में ये दबाव बनाने की पूरी कोशिश है। संजय निषाद को भी लग रहा है, क्योंकि आप देखें तो 2024 में उनके बेटे भी चुनाव हारे, बहुत बुरी स्थिति में आ गए क्योंकि उनके समाज के लोगों ने सपा को वोट किया, और ये दिखाई दे रहा है इस वक्त कि अब चूंकि चुनाव सामने है और संजय निषाद के लिए ये मुश्किल हो रहा है अपने समर्थकों को समझाना कि कैसे उस आरक्षण की बात से वो मुकर जाएं, इसलिए उन्होंने लगातार दबाव बनाना शुरू किया है कि सरकार दे, नहीं तो देर हो जाएगी, हम धरने पर बैठ जाएंगे, इस्तीफा हो जाएगा, तमाम बातें वो कह रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है किसी भी प्रदेश सरकार के लिए किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना। लेकिन चूंकि इसी मुद्दे से ये उपजे हैं, इसी आंदोलन से उपज है, ऐसे में बहुत मुमकिन नहीं है, लेकिन फिलहाल एक प्रेशर तो बन ही चुका है।
0: बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक सरकार में थे, लेकिन अब चुनावों से ठीक पहले उनको आरक्षण की याद आ रही है और अपने समर्थकों के बीच में ये बयान भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, जिसे लेकर अब सियासी हमले तेज होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां लखनऊ में स्कूली जो बच्चियां हैं वो बदहाली से नाराज हैं और सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर स्कूली शिक्षा को लेकर राजनेताओं के बीच में भी बयानबाजी का दौर है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने यूपी में स्कूली शिक्षा को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में स्कूलों की बिल्डिंग नहीं, पीने का पानी नहीं, शिक्षक नहीं, विद्यार्थी नहीं, और ये सब थे तो पढ़ाई ही नहीं थी। अखिलेश यादव ने कल ही बयान दिया था कि यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। उससे पहले 2 अगस्त को अखिलेश यादव ने जेन जी के रील्स में स्कूलों की सच्चाई को लेकर भी बयान दिया था।
2: बेसिक शिक्षा परिषद का ही आप देखें, आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई, हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं, हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।
3: जो मुख्यमंत्री अपने यहां स्कूल बंद कर दे, उन्होंने 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए अपने गोरखपुर में, बताइए इससे बड़ा गोरख धंधा क्या है? कोई है गोरख धंधा इससे बड़ा कि जहां पर 500 प्राइमरी स्कूल खुद के बंद कर दिए?
2: सवाल ये 17 के पहले क्या था? 17 के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे, अगर छात्र भी है शिक्षक भी है तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे।
0: दरअसल लखनऊ के सर्वोदय विद्यालय के बच्चे सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे थे। लखनऊ के पारा इलाके में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्राएं शिक्षकों की कमी और हॉस्टल की बदहाली के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रही थी। कक्षा 12 की छात्राओं का आरोप है कि उनकी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रहे हैं, लेकिन स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे मुख्य विषयों के स्थायी शिक्षक मौजूद नहीं है। इसके अलावा हॉस्टल की बदहाली की शिकायत भी थी। ये प्रदर्शनकारी छात्राएं लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए दुबग्गा कानपुर बाईपास और बालागंज चौराहे पर पहुंच गई थी। तो पढ़ाई के बजाय बच्चियों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में अभी चुनाव थोड़ा दूर है, लेकिन अभी से सियासत में हैसियत की बात होने लगी है। अखिलेश यादव ने कभी अपने साथी रहे आरएलडी को बिना नाम लिए चौवन्नी कह दिया। पिछले विधानसभा चुनाव साथ लड़ने वाले जयंत चौधरी ने चुनावों के बाद एनडीए का दामन थाम लिया था, अब अखिलेश यादव ने उसी दगाबाजी पर वार किया है।

0: उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष दोनों ओर गठबंधन के साथी दलों को लेकर बयानबाजी जारी है। एनडीए के घटक दलों की ओर से ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद एनडीए के साथी दल आरएलडी पर बिना नाम लिए हमला बोला।
1: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 196वीं जयंती कार्यक्रम में हजरतगंज पहुंचे अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्या कहा था एक बार फिर सुनिए।
1: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: दरअसल पिछले चुनाव में अखिलेश ने जयंत चौधरी को 33 सीटें दी थीं, लेकिन चुनाव बाद जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए। समाजवादी पार्टी उसी पर तंज कस रही है।
2: अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उचित टिप्पणी की गई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि उनके पिता मुलायम सिंह को चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बनाया था। मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी थी और उसके बाद उन्हीं के पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में किस तरीके से धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, ये पूरा देश उसका गवाह है। और आज अखिलेश यादव जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हम पे एहसान किया है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, जब आप पूरी तरीके से हताश हो चुके थे, 2017 में आपके 47 विधायक आए थे, हमसे गठबंधन करने के कारण आप 111 पे पहुंचे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जहां आपका खाता नहीं खुलता था, वहां पे आपके विधायक जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के कारण।
0: दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों दावा करते हैं कि उनके कारण ही पिछले चुनाव में एक दूसरे को सीटें मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि 2022 में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, तब आरएलडी 33 सीटें लड़कर 8 जीती। जीत की दर रही 24.24% और वोट मिले 2.92%। इससे पहले 2017 में आरएलडी अकेले 171 सीटों पर लड़ चुकी थी और सिर्फ एक सीट जीती थी, जिसमें जीत की दर 0.58% रही और वोट प्रतिशत था 1.78। उससे पहले 2012 में आरएलडी और कांग्रेस साथ लड़ी थी और तब आरएलडी 46 सीटों पर लड़कर 9 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत था 2.33%। लेकिन 2024 में बीजेपी के साथ लड़कर आरएलडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 2 लोकसभा की करीब 10 विधानसभाओं में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि आरएलडी को एनडीए के पाले से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी उकसाऊ भड़काऊ बयान दे रही है।
3: आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी ने खुद से ही कहा था कि वो चोनी नहीं है जो पलट जाए, लेकिन उनको पलटने में देर नहीं लगी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को राज्यसभा ना भेज करके श्री अखिलेश यादव जी ने आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए श्री जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किया था, लेकिन वो इतने एहसान फरामोश थे कि उन्होंने उनको पाला बदलने में उनको पलटने में टाइम नहीं लगी।
0: अब अखिलेश यादव के बयान को आरएलडी चौधरी जयंत सिंह ही नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह और पूरे किसान समाज का अपमान बता रही है।
4: अब देखना यह है कि चवन्नी अठन्नी और रुपए की सियासत में यूपी के लिए आरएलडी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई कहां तक जाती है और सियासी तौर पर इन बयानों के बीच किसका नफा किसका नुकसान होता है, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: यूपी में चुनावी दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कानून व्यवस्था दोनों ही पक्षों के लिए बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष है जो प्रदेश में अपराधों की फहरिस्त गिनाता है। अब इसी तरह की घटना को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर सियासी सवाल खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने अम्बेडकर नगर में आईपीएस की बुजुर्ग मां की हत्या के मसले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो अखिलेश यादव अब सवाल खड़े कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, राज्य सरकार अपने पीठ थपथपाती है, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर की बुजुर्ग मां की हत्या कर दी जाती है, इस मामले पर समाजवादी पार्टी राज्य सरकार को घेर रहे हैं।

0: जिस सूबे में औसतन रोज 5 एनकाउंटर होते हैं, गोरखपुर से लेकर शाहजहांपुर और बांदा तक, जहां एक दिन में 3 एनकाउंटर हुए, वहीं उसी यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक आईपीएस की वृद्ध माँ के घर में घुसकर लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते। ये तस्वीर लखनऊ में तैनात आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माँ की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अम्बेडकर नगर के मालीपुर धवरुआ गांव की रहने वाली ये बुजुर्ग अपने घर में मृत पाई गई थी और इनके पहने गहने गायब थे। पुलिस को इस संदिग्ध मौत की खबर हार्ट अटैक के रूप में मिली थी।
1: 16/8/2026 को दिन में 1:13 पर रमेश चंद मिश्रा नामक व्यक्ति ने थानाध्यक्ष मालीपुर को यह सूचना दी कि ग्राम रूढ़ा धमारुआ के रहने वाले श्री आशुतोष मिश्रा जी की माता जी का सुबह 8 हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उसके पश्चात लगभग 2:30 आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी माँ की किसी ने हत्या कर दी है और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी उनके शरीर पर मौजूद नहीं है।
0: खबर है कि आईपीएस आशुतोष मिश्रा 15 अगस्त को गांव के विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और शाम को ही लखनऊ लौटे थे। उनके जाने के कुछ देर बाद शनिवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौका मुआयना से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में किसी तरह की लूटपाट या मारपीट के निशान नहीं मिले हैं।
1: का पैनल बनवाकर वीडियोग्राफी के साथ पीएम की कार्रवाई हुई है, जिसकी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ में विसरा प्रिजर्व होना आया है। हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पर स्पष्टता आ सके।
0: यूपी पुलिस के मुताबिक इस घटना में लूटपाट या हत्या की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, फिर भी इस वारदात को लेकर सियासी सवाल उठाए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अंबेडकर नगर में एक आईपीएस अधिकारी की माताजी की हत्या का दुखद समाचार आया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। हालांकि सीएम योगी ने इसी अंबेडकर नगर में पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि यूपी में अब ना तो माफिया राज है और ना ही गुंडा राज। ना दंगाई दंगे की हिम्मत कर सकते हैं और ना वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अंबेडकर नगर में आईपीएस की बुजुर्ग माँ की संदिग्ध मौत ने सियासत को मौका दे दिया है। समर श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक।
2: तो यूपी में दावों और वादों की सियासत कुछ ऐसी उलझी है कि जनता सच का लिटमस टेस्ट कर खुद ही कर दे रहे हैं। इसी बीच में आज यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78,000 से ज्यादा उचित मूल्य के राशन की दुकानों का लाभांश 90 क्विंटल से बढ़ाकर 125 क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पॉस्ट आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली भी शुरू कर दी है। सरकार का दावा है कि इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख होगी। मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर 2017 से पहले और 2017 के बाद की सियासत का फर्क भी समझाया।
3: कोटेदार शब्द से ही लोगों को एक चिड़सी होने लग गई थी। गलती आपकी नहीं थी, पाप करता था कोई, भुक्तभोगी होता था कोई। उस समय की सत्ता में जो लोग आसीन थे, नियत उनकी खराब थी, उनकी नियत में खोट था। उनके भ्रष्ट आचरण की आंच से आप चाहते हुए भी अपने आप को बचा नहीं सकते थे। और परिणाम क्या होता था, और यही स्थिति आप सभी उचित मूल्य के विक्रेताओं के सामने भी थी। मेहनत आप करते थे, अब राशन शासन नहीं भेज रहा है तो गलती आपकी क्या थी, लेकिन गाली आप खाते थे। लूट उनकी होती थी, लेकिन खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था, परेशानी आपको होती थी।
2: और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
7: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: वंदे मातरम के अपमान का हवाला देकर बीजेपी अब बौखलाई हुई है। वो कांग्रेस के दिग्गजों से माफी की मांग कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है। वाराणसी में बीजेपी के समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला। वे सभी कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए और वहां पथराव शुरू कर दिया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यालय को फूंकने की कोशिश की गई। हैरानी की बात है कि इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन मूक दर्शक बनी रही। नाराजगी और प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें कई शहरों से आई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, तमाम राज्यों में बीजेपी समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान के नेतृत्व में कोलकाता में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। एक दिन पहले चित्तौड़गढ़ पहुंचे अमित शाह ने इस मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी पर हमला बोला।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा।
0: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस में वंदे मातरम के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सफाई दे रही है, साथ ही बीजेपी पर पलटवार भी कर रही है।
2: सोनिया गांधी के मुकाबले में देशभक्त न अमित शाह है न नरेंद्र मोदी है। सोनिया गांधी ज्यादा बड़ी देशभक्त है बीजेपी के नेताओं के मुकाबले में, और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता है। वंदे मातरम जब एडॉप्ट किया गया था तब आरएसएस कहाँ थी, बीजेपी कहाँ थी, इनके वंशज कहाँ पे थे।
0: तमाम सियासत के बीच अब कई राज्यों पर सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग उठी है। पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बिहार के लखीसराय मंदिर में भगदड़ से सात की मौत। सावन के सोमवार में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। बंगाल में आग से सात श्रद्धालुओं की मौत। उज्जैन भगदड़ की खबरों का मंदिर प्रशासन ने किया खंडन। चौबीस घंटे में सामने आ गया दिमागी नक्सली चिदंबरम पर बीजेपी का करारा हमला। कहा नागपंचमी पर दिख गया दिमाग का जहर। वंदे मातरम में कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले तेज। अमित शाह ने उठाए सवाल, कहा इस पाप की माफी नहीं कांग्रेस की सफाई। सोनिया गांधी ने सिर्फ कुर्सी लाने को कहा था। रांची में आज 2 बजे सरकार से छात्रों की वार्ता। कांग्रेस नेता बोले जिद से नहीं बनती बात। बीती रात सीएम सुरेन राहुल और तेजस्वी का फूका गया पुतला। 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का प्लान। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्र विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत करें नॉन स्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

उज्जैन के महाकाल मंदिर में अफवाह के चलते मची भगदड़, कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर। साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। इसी दौरान हरसिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ने से श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। सावन की तीसरे सोमवार पर भगवान महाकाल और नागचंद्रेश्वर मंदिर के विशेष दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। करीब 5.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित तारापीठ के होटल में लगी आग, 7 की मौत, कई श्रद्धालु घायल, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लखीसराय के अशोकधाम में बिजली का तार गिरने से मचा हड़कंप, हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत। 7 श्रद्धालुओं की मौत से इलाके में हड़कंप, कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी ने बिहार के लखीसराय में भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख जताया। लखीसराय हादसे पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया शोक, घायलों के इलाज और संभव मदद का भरोसा। लखीसराय हादसे पर ललन सिंह का बयान, कहा मेरी संवेदना पीड़ित परिजनों के साथ, इस दुखी घड़ी में परिजनों को भगवान शक्ति प्रदान करे। सरकारी स्कूलों को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पर लगी रोक। बिना अनुमति के स्कूल परिसर के अंदर वीडियो बनाने या फोटो खींचने पर लगा प्रतिबंध, शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर जारी की चिट्ठी। राजस्थान सरकार के फैसले पर कांग्रेस का हमला, बीजेपी सरकार ने स्कूल के हालात सुधारने के बजाय अपनी नाकामी को ढकने और शिक्षा व्यवस्था की वधाली छिपाने का रास्ता खोजा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय नाकामी छिपा रही बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा देश में शिक्षा व्यवस्था नहीं बची। झोपड़ी में चल रहे सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल, रवींद्र सिंह भाटी ने 15 अगस्त को जारी की थी वीडियो, लिखा था आजादी के 80 साल। राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा खत। बाबूलाल मरांडी का राहुल गांधी पर हमला, पूछा ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी को गुप्त रूप से पत्र लिखना पड़ रहा है, पत्र में क्या लिखा है किसी को मालूम नहीं। बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर 2200 पदों की परीक्षा में हुई धांधली, जेएसएससी सीजीएल मामले को हिस्सेदारी का लगा आरोप, मांगा जवाब। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की कथित गड़बड़ी पर छात्रों का आंदोलन तेज, 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव का ऐलान। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद पर छात्रों का हल्ला बोल, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ निकाला गया जुलूस। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप पर छात्रों का प्रदर्शन जारी, सीएम के इस्तीफे की मांग। झारखंड में छात्रों का सरकार के खिलाफ मोर्चा, हेमंत सोरेन राहुल गांधी तेजस्वी के पुतले फूके गए। भर्ती परीक्षा विवाद में भूख हड़ताल पर छात्र सरकार से परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यूजीसी एनईटी जून 2026 में पेपर की गड़बड़ियों पर बड़ा एक्शन, इंग्लिश कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा फिर से होगी। एनटीए की जांच में पेपर जुड़ी कई खामियां सामने आई, सवाल दोहराने और गलतियों के बाद री एग्जाम का फैसला। एनटीए ने यूजीसी एनईटी के री एग्जाम की तारीखें घोषित की, 9 सितंबर को इंग्लिश कॉमर्स और 10 सितंबर को समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। यूजीसी एनईटी विवाद पर कांग्रेस का मोदी सरकार और एनटीए पर हमला, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर उठाए गंभीर सवाल। री एग्जाम को लेकर एनटीए मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन। बिहार में परीक्षा व्यवस्था पर तेजस्वी का बड़ा हमला, बोले हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, 19 अगस्त को राजभवन मार्च करेंगे। गोपालगंज में टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ने के संकेत, एसटीईटी और रिक्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। ऑटो यूनियन के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन, वेलफेयर बोर्ड की मांग। नई दिल्ली में आज से बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज, दुनिया के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगे। दिल्ली में आज अफगान दूतावास में तालिबान का विक्ट्री डे समारोह, ये कार्यक्रम काबुल पर तालिबान के दोबारा नियंत्रण की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यूपी के 78,000 से अधिक राशन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ा, सरकार ने 90 रुपए से बढ़ाकर कमीशन 125 रुपए प्रति क्विंटल किया। सीएम योगी ने लिखा गोरखपुर में प्रदेश की गौरवशाली खेल परंपरा को नई ऊर्जा प्रदान की जाएगी। यूपी में 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने के महाअभियान की पूर्णाहुति, सीएम योगी ने ट्वीट कर दी प्रदेशवासियों को बधाई। सीएम योगी ने लिखा युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है, आज प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हर संभव अवसर प्रदान कर रही है। लखनऊ में स्कूल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं सड़क पर उतरी, ट्रैफिक जाम होने पर आलाधिकारियों ने छात्राओं को समझाकर खुलवाया जाम। सीएम योगी का यूपी के स्कूली शिक्षा को लेकर अखिलेश के बयान पर पलटवार, कहा 2017 से पहले यूपी में स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं थी, पीने का पानी नहीं था। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार बड़ा हमला, आज के हालात के अंग्रेजों के दौर से तुलना कर बोले आज भी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने को मजबूर है। अखिलेश यादव के 56 करोड़ रुपया वाले बयान पर मंत्री अनिल कुमार का पलटवार, बोले यह किसान समाज का अपमान है। अखिलेश यादव पर आरडी मंत्री अनिल कुमार का पलटवार, बोले 2027 में किसान समाज देगा जवाब।
अखिलेश का केंद्र पर चौतरफा हमला, महंगाई, E20 पेट्रोल, सीमा सुरक्षा, नक्सलवाद को लेकर सरकार से पूछे सवाल। लखनऊ में निषाद पार्टी के 11वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, यूपी कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण की मांग की। संजय निषाद ने बीजेपी को दी चेतावनी, बोले आरक्षण लागू कराने में अब और देर ना हो वरना चुनाव में पड़ेगा असर। संजय निषाद ने मन से आरक्षण नहीं तो वोट नहीं और लेके रहेंगे आरक्षण जैसे नारे लगवाए, बोले चाहे तो मंत्री पद ले लें लेकिन आरक्षण दे दें। इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल का आगाज, सीएम विजय ने लॉन्च किया इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। चेन्नई में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव राउंड टेबल कार्यक्रम में सीएम विजय बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मंच पर साथ में इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया संदेश। कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेता, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियां होंगी शामिल। तमिलनाडु के भविष्य, सरकार के कामकाज पर होगी चर्चा। तमिलनाडु की आर्थिक संभावनाओं, निवेश के माहौल के साथ साथ भ्रष्टाचार, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त और स्वास्थ्य जैसी राज्य की प्रमुख नीतिगत चुनौतियों पर विचार विमर्श। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। पी चिदम्बरम का पीएम मोदी पर हमला, दिमागी नक्सल को बताया अर्बन नक्सल। रविशंकर प्रसाद ने चिदम्बरम को घेरा, बोले दिमागी नक्सल बयान पर पीएम की बात का संदर्भ समझना चाहिए था। किरण रिजिजू ने दिमागी नक्सल की परिभाषा पर दी सफाई, माओवाद और अलगाववाद का समर्थन करने वालों पर साधा निशाना। दिमागी नक्सल को लेकर विपक्ष का पलटवार, जयराम रमेश, महबूबा मुफ्ती और संजय सिंह ने बीजेपी पर उठाए सवाल। वंदे मातरम विवाद लिया सियासी रंग, सोनिया गांधी ने माफी मांग कर बीजेपी पर का कांग्रेस पर हमला। अमित शाह ने सोनिया गांधी को घेरा, बोले वंदे मातरम रोकने पर देश और बंकिम चंद से मांगे माफी। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी बेवजह मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। वंदे मातरम विवाद बंगाल में घमासान, बंकिम चंद्र के वंशज ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की। बेंगलुरु में भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत, बीजेपी युवा मोर्चा ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। चमोली में पहाड़ टूटा, सीरी राय गांव सड़क पर जबरदस्त भूस्खलन, सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर। बागेश्वर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घर ध्वस्त होने के साथ 14 सड़कें बंद, 13 गांव से कटा संपर्क। डोडा के भलेसा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें और नाले जलमग्न। उड़ीसा के केंद्रापड़ा में बाढ़ से करीब 300 छात्र फंसे, ब्रह्माणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार। मुजफ्फरनगर में बारिश बनी मुसीबत, सड़कें गलियां जलमग्न, कई फीट पानी भरने से थमी रफ्तार, घरों में कैद हुए लोग। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा। पक्के घाटों का आपसी संपर्क टूटा, गंगा किनारे की इमारतों में पहुंचा पानी, नाव और मोटरबोट संचालन पूरी तरह से रुके। दशाश्वमेध आरती प्रभावित, आरती स्थल को चौथी बार पीछे शिफ्ट किया गया, गंगा में हाई स्पीड बोट से पेट्रोलिंग जारी। इटावा में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, सेफई रोड अंडरपास से 5 फीट पानी भरा, अंडरपास को किया गया बंद। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 22 में येलो अलर्ट जारी किया। सूरत की सोफा फैक्ट्री में आग, 5 दंपति गाड़ी ने आग पर पाया काबू। नवसारी में बीएमडब्ल्यू कार में लगी आग, 4 लोगों का बाल बाल बचाव, वीडियो हो रहा है वायरल। नोएडा के अस्पताल में गार्ड के इंजेक्शन भरने का मामला, वायरल वीडियो के बाद 2 कर्मचारी सस्पेंड। कानपुर के एसडीएम के ड्राइवर के पैर में को दबाते होमगार्ड का वीडियो वायरल, जांच के दिए गए निर्देश। हिमाचल के चंबा में चौराहे पर मिला पाकिस्तानी झंडा, पुलिस ने शुरू की जांच।

पटना में रैपिडो ड्राइवर के खाते से 25 करोड़ का इंजेक्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो हुआ खुलासा। साइबर फ्रॉड को अपना खाता रैपिडो ड्राइवर को दे रखा था किराए पर। राजगढ़ में पट्टे के जमीन के विवाद में एएसआई ने 4 सगे भाइयों पर दागी गोली, वीडियो आया सामने, एक की हुई मौत। नरसिंहपुर में प्रेम संबंध के चलते युवक की हत्या, जीजा और नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। सीधी में 4 साल के मासूम से दुष्कर्म का आरोपी जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ पदस्थ इंस्पेक्टर गिरफ्तार। फरीदाबाद में चाइनीज मांझे युवक की गर्दन काटी, 11 सेंटीमीटर गहरा घाव, दिल्ली के लिए किया गया रेफर। हापुड़ युवक के साथ जमकर पिटाई, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वीडियो वायरल। बेतिया में हाथ से उठाने पर उखड़ रही सड़क की गिट्टी, ग्रामीणों ने रुकवाया निर्माण कार्य। मथुरा में चलती कार में लगी आग, दूध होकर जल उठी कार, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। प्रयागराज भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराए बाइक सवार कांवड़िया, हादसे में 3 की मौत। शिवमोगा में युवक पर लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला, सिर पर वार का वीडियो वायरल। बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा का आज से शुरुआत, एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को किया रवाना। जम्मू में 1000 से अधिक श्रद्धालु हुए रवाना, श्रद्धालु में बम बम बोले और हर हर महादेव के लगाए नारे। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 12 दिन तक चलेगी, 28 अगस्त को होगा समापन। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मंदिर के बाहर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल तैनात, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। रणवीर ने शुरू की प्रलय की शूटिंग, फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन की अहम भूमिका। मालामाल वीकली 2 का ऐलान, फिल्म में परेश रावल, रितेश देशमुख, राजपाल यादव, रवीना टंडन, परिणीति चोपड़ा, शिल्पा शिरोडकर और एल्विश यादव आएंगे नजर। इमरान हाशमी का आवरण पर 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, फिल्म ने 3 दिन में 82 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। एवान साइड में अक्षय कुमार ने सैफ अली खान की किया बर्थडे विश, लिखा जन्मदिन मुबारक हो सैफ। सनी देओल ने फार्मसारा विज्ञापन से किया इनकार, कहा मेरा जमीर नहीं मानता।

और अब खबर उज्जैन से, यहाँ के महाकाल मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में अफरातफरी या अव्यवस्था संबंधी खबरों का खंडन कर दिया है। मंदिर प्रबंधन समिति ने बयान जारी कर कहा कि मंदिर में अफरातफरी एवं अव्यवस्था संबंधी भ्रामक खबरों का मंदिर प्रबंध समिति पूर्णतः खंडन करती है। समिति के मुताबिक नागपंचमी, सावन सोमवार और भगवान श्री महाकाल की सवारी एक ही दिन होने से श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही। अब तक लगभग 6.25 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। विभिन्न मार्गों पर लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब बात झारखंड की, यहाँ की सरकार छात्रों के बीच दोपहर 2 बजे संवाद शुरू हो सकता है। ये सरकार और छात्रों के बीच संवाद का चौथा दौर होगा। छात्रों की 2 मांगे हैं, इन पर ही अडिग है। भर्ती परीक्षाओं में नियुक्तियों की सीबीआई जांच हो और जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द हो। इससे पहले 9 अगस्त को पिछले दौर की वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला था।

0: देखिए, छात्रों ने अपनी बात हम लोगों से लगातार रखी है और आज फिर वो वार्ता के लिए तैयार है। सरकार लगातार पहल कर रही थी और वार्ता होगा तो जरूर समाधान होगा। और जहां तक अन्य बातें हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि भाजपा शिखंडी है, भाजपा के जो नेता है वो शिखंडी है, वो छात्रों का आड़ लेकर झारखंड पर आर्थिक चोट करना चाहते थे, SIR के माध्यम से वोट चोरी करना चाहते हैं। इन बातों के पीछे वो यह चाहते हैं कि छात्र के असली मुद्दे कहीं गौन हो जाएं, वो हम लोग नहीं होने देंगे।
1: कि पहले भी मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है, हम लोग युवाओं के साथ है, हमारी सरकार युवाओं के साथ है और उनकी जो भी मांगे हैं जायज मांग है, सरकार विचार कर रही है। कुछ एक दो पॉइंट जो था वो थोड़ा सा लग रहा था कि माने कि नहीं माने, फिर भी सरकार पीछे हटकर आज फिर से वार्ता हो रही है। तो युवाओं के साथ हम लोग हैं और डायलॉग से ही ये वार्ता खत्म होगा। बार बार मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से नेगेटिव सेट किया जा रहा है, मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि हम लोग आपके साथ हैं,
2: हम लोग संवाद करेंगे, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि हमारी सारी मांगे पूरी हो और अगर नहीं पूरी होती है तो हमारी जो आंदोलन है और भी तेज होगा। 20 अगस्त का जो है सो हमारे लोग का CM आवास घेरा हुआ है, उसमें लाखों की जनसंख्या में छात्र आएंगे। 18 तारीख तक अल्टीमेटम है राज्य सरकार के पास, 18 तारीख तक अगर हमारी सारी मांगे मान लेती है तो बहुत अच्छा, आंदोलन को समाप्त करेंगे। अगर नहीं मानती है तो हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और इस आंदोलन को और भी धार देंगे।
3: सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, आज इस बात की कितनी गारंटी माने कि किसी निष्कर्ष पर यह वार्ता पहुंचेगी?
4: देखिए, आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है तो दोनों तरफ से इतना तो तय है कि ओपन माइंडेड होकर डिस्कशन किया जाएगा, डायलॉग किया जाएगा, सारे मोडालिटीज को जो है कैसे वो वर्कआउट कर सकते हैं उस पर बातचीत होगी और लीगल एडवाइजर को लेके आने के लिए कहा गया है डेलीगेशन को, ताकि जो तकनीकी पहलू है या फिर कानूनी पहलू है उसका समाधान कैसे होगा ये उनसे भी राय मांगी जाएगी। और यहाँ पे भी जो विधि विशेषज्ञ होंगे वो बात करेंगे और जो फिजिबल होगा उस मुद्दे पे एग्रीमेंट एक होने की संभावना जरूर है, क्योंकि आंदोलन लंबा चल रहा है तो छात्र भी चाहते हैं कि समाधान निकले। सिर्फ आंदोलन करना जो उनका मकसद नहीं है तो जाहिर तौर पे वो भी समाधान चाहते हैं, वो मांग कर रहे हैं लगातार कि 11th से 13th JPSC जो उसको कैंसिल कर दे, JSSC CGL को कैंसिल कर दे। तो यही अब उनके जो विधि विशेषज्ञ हैं या इनके इस साइड से जो विधि विशेषज्ञ होंगे वो डिस्कस करेंगे कि ये पॉसिबल है, फिजिबल है या नहीं है, मांग जो है कितना फिजिबल है उस पर बातचीत होगी। इसके अलावा जो है CBI जांच की मांग कर रही थी लगातार जो है स्टूडेंट कर रहे थे और उस पर एडमेंट थे, उस पर फर्म थे, तो उस पर जो है राहुल गांधी का भी पत्र आया, सब कुछ आया है। लेकिन एक बातें जो सामने आ रही है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है उसका बेजा इस्तेमाल का आरोप जो है केंद्र पे लगाता रहा है, तो वो पॉसिबल होगा या नहीं, कहीं गतिरोध उस पर तो नहीं बनता है, तो ये तमाम चीजों को देखना होगा और बहुत कुछ डिपेंड करेगा आज के डायलॉग पे।
3: बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड में छात्रों की मांग को लेकर राहुल गांधी ने CM हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, क्योंकि राहुल गांधी ने इसमें कहा है कि झारखंड में छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है वो शांतिपूर्वक है और भारत के युवा ही देश का भविष्य है, संकट की इस घड़ी में हमें उनके साथ एकजुटता दिखानी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, कृपया उनकी बात सुनने और इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाने की पूरी कोशिश करें। सत्यजीत मेरे सहयोगी, सत्यजीत देखिए, राहुल गांधी पर आरोप लग रहा था कि वो झारखंड में छात्रों का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब इस पत्र के जरिए उन्होंने साबित कर दिया है कि उनका समर्थन हासिल है छात्रों को।
4: जी देखिए, बिल्कुल ये सवाल प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने ही उठाया था, उनका कहना था कि वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा जो उन्होंने निकाला उसके बाद उन्होंने कहा कि आंदोलन का स्वरूप बदलेगा और आंदोलन का नेचर चेंज होगा, यानी इंटेंसिफाई किया जाएगा इस एजिटेशन को, उन्होंने ये क्लियर कहा था। उसी के तहत 16 तारीख को उनका कार्यक्रम था पुतला दहन का और उसमें बकायदा उन्होंने राहुल गांधी का भी पुतला जलाया, इसके अलावा तेजस्वी यादव का पुतला जलाया, हेमंत सोरेन को तो जलाया ही। वो इसलिए उनसे नाराज थे कि वो इस गवर्नमेंट के अलाई हैं, इंटीग्रल अलाई हैं, तो आखिर वो क्यों प्रेशर माउंट नहीं कर रहे सरकार के ऊपर कि विद्यार्थियों की बातों को सुना जाए, उनकी मांगे जो हैं वो जायज है उसको सुना जाए। और ये आरोप लगा रहे थे कि नैतिक तौर पे उन्होंने समर्थन तो दिया, लेकिन इंटरनल जो उनको उनका जो सपोर्ट होना चाहिए था वो इंटरनली नहीं मिल रहा है, यानी बॉन्डिंग जो है वो दिल से नहीं है। इस तरह की बातें जो है आरजेडी और कांग्रेस के लिए रविंदर पासवान हो या पीयूष हो, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स फोरम के, या फिर अगर न्याय मंच की हम बात करें तो देवेंद्र हो या फिर चंदन हो, ये लोग इसी तरह की बातें कह रहे थे। लेकिन अब आज डायलॉग के लिए जब बुलाया गया, 18 तारीख का इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर इनको इनकी मांगों को कंसीड नहीं किया जाता है तो आगे ये सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे, ये इन्होंने जो है चेतावनी दी थी। तो ऐसे में 17 तारीख आज है और आज सरकार डायलॉग करने जा रही थी, ये इन्विटेशन उनको भेजा गया था डेलीगेशन को कि आप डेलीगेशन में आए मिलें, और साथ ही साथ लीगल कंसल्टेंट को या फिर लीगल एडवाइजर को जरूर लेकर आए ताकि कानूनी पहलुओं पे जो पेंच फंस रहा है उसको वर्कआउट किया जा सके, कोई मोडालिटीज जो है वो निकाला जा सके, कोई फॉर्मूला जो है वो निकाला जा सके। तो आज
5: सारे हमारे जो मांगे जेएमपी ने और सरकार भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप लोग के जो भी मांग है वो जायज मांग है, इसमें कोई ये नहीं है। तो आज उम्मीद है कि माने सरकार, आज शाम में पता चलेगा, बैठक के बाद ही पता चलेगा। जी जी जी जी जी जी जी हमें बहुत उम्मीद है कि सरकार जो शुरू से हमारी बातों को अभी तक नहीं माने वो मानेगी, और आज हम लोग कुछ सकारात्मक चीजें लेके आएंगे, हमें बहुत उम्मीद है।
6: क्या लगता है कि आज फाइनल तक पहुंच जाएगी?
5: हम हर दिन ये सोच के जाते हैं कि आज फाइनल होगा, बस उन लोग हमारी मांग मान ले हमें मंजूर है, हमारे जो मांगे मुख्य मांगे वो मान ले हमें मंजूर रहेगा।
6: आपको क्या मतलब, अपना नाम बता दें?
5: कार्तिक सोरेन।
7: चाह रहे हैं बात करके आते हैं, फिर आपको अपडेट करेंगे शाम में।
6: दो राउंड की बात हुई इस बीच, क्या कहेंगे? लगता है कि इस बार फाइनल हो जाएगा?
7: देखिए हम लोग तो अपने तरफ से तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं कि कुछ मतलब इसमें बात हो जाए, सरकार जो जो भी डिमांड है स्टूडेंट्स की उसको समझ ले, उस पर एक सॉल्यूशन निकाले, जा करके कुछ पॉजिटिव आउटकम लेके आना है हम लोग को।
6: लग रहा है कि पॉजिटिव सरकार,
7: देखिए हम लोग तो शुरू से ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेकर के कि जो है बात सुनी जाएगी, आज देखते हैं।
6: अपना नाम बता
7: जी। मेरा नाम शशांक हुआ।
3: और अगली खबर छात्रों से जुड़े एक और मामले की, एनटीए के खिलाफ आज दिल्ली में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और एनटीए को भंग करने की मांग की। दरअसल एनटीए फिर से परीक्षा में गड़बड़ी के चलते सवालों के घेरे में है और इस बार मामला यूजीसी एनईटी परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके तीन विषयों के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी के चलते एजेंसी ने री एग्जाम का फैसला लिया। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इन तीनों विषयों के प्रश्न पत्रों में तथ्य, टाइपिंग, ट्रांसलेशन और व्याकरण से जुड़ी कई गलतियां पाई गई। एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि केवल चैलेंज प्रक्रिया से इन खामियों को ठीक करना संभव नहीं है, ऐसे में तीन विषयों की परीक्षाएं फिर से कराने का फैसला हुआ है। दिमागी नक्सल पर देश में जबरदस्त सियासी दंगल है। पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के दिमागी नक्सल वाले बयान पर थोड़ी देर पहले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक परिपेक्ष में दिमागी नक्सल के विषय को उठा रहे थे, लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृहमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम साहब ने खुद आकर ये कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है।
8: दिमागी नक्सली चिदम्बरम साहब, और ये पी चिदम्बरम साहब वो हैं, इनके लिए क्या कहा जाए, जिस यूपीए के पशुपति से लेके तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बना था, 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए, और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गईं, ये होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदंबरम साहब के शासनकाल में 5,000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई।
3: चिदम्बरम ने क्या कुछ कहा था, एक्सपर्टों ने लिखा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम यही नहीं रुके, कुछ घंटे बाद एक्सपर्टों ने लिखा दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलनजीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का एक ही नया रूप है। अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलनजीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था, ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उन्हीं अपशब्दों का एक नया रूप है। जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हुआ तो पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी इसमें कूद पड़ी। एक्सपर्टों ने लिखा कि मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं।
9: और जेएनयू में कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया था स्वागत की उठता थी, चिदम्बरम साहब आप देश के अपरिम मंत्री है रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई एडवोकेट है, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के, आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? तो सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है उसी का चेहरा बने हैं पीटर चिदम्बरम।
10: उली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदम्बरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
3: रुकेंगे आज से ब्रेक के लिए, फौरन हो गया आज, टिकते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: पापा
14: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
13: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
14: छक्का
13: सब कैशलेस हो गया है।
14: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ तू,
13: डिस्चार्ज हुआ यार,
14: बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
1: In association with Hind, बड़े आराम से
0: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: विमल, बोलो जुबां केसरी।
7: वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिटटक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिटटक यूट्यूब।
8: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
9: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
8: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
10: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
11: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
12: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
13: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
8: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मांगों पर विचार करें, बात नहीं बनी तो 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का प्लान। गोपाल की त्रिशा मौत मिस्ट्री में सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल की। सास गिरेबाला और पति समक्ष पर लगाई कई गंभीर धाराएं, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बिहार के लखीसराय मंदिर में भगदड़ से सांप की मौत। सावन सोमवार के जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़। बंगाल में होटल में लगी आग से 7 श्रद्धालुओं की मौत। 24 घंटे में सामने आ गए दिमागी नक्सली। चिदंबरम पर बीजेपी का करारा हमला का, नागपंचमी पर डिग गया दिमाग का जहर। इंडियन रेल ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडियन रेल का।

0: कुछ सुविधाओं का अभाव है और अब तो आवाज उठाना भी गुनाह हो गया है। बात करेंगे यूपी और राजस्थान की। यूपी की राजधानी लखनऊ में सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं राजस्थान में अब सरकार इस मोड में आ गई है कि ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। यानी राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब बाहरी व्यक्ति घुस ही नहीं पाएंगे। यानी अब अव्यवस्थाओं के वीडियो फोटोशूट लाइव स्ट्रीमिंग इत्यादि पर रोक लगा दी गई। तो आपको बता दें, लखनऊ में सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं का धैर्य अब जवाब दे चुका है। आवासीय विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के लिए छात्राओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। जेन अल्फा यानी 2012 के बाद वाली जेनरेशन, ये 13-14 साल के बच्चे हैं जिन्हें क्लासरूम में होना चाहिए, वो सड़क पर उतर आए, चक्का जाम कर रहे हैं क्योंकि स्कूल में शिक्षा नहीं है, शिक्षक नहीं है और सुविधाओं का अभाव है।
1: लखनऊ की दुबग्गा रोड, बालागंज चौराहा और सड़क को घेर कर बैठी छात्राएं, ट्रैफिक रुका, चक्का जाम हुआ और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ यूपी की राजधानी में सड़क पर उतर आया जेन अल्फा। हमारी पढ़ाई कैसे होगी? 6 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, साइंस के बच्चों की सबसे ज्यादा परेशानी है। फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है। 6 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन जिन बच्चों को किताबों में सवालों के जवाब तलाशने चाहिए, वो आज सड़क पर अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी साइंस के विद्यार्थियों की है, स्कूल में फिजिक्स और बायोलॉजी के शिक्षक नहीं है। ऐसे हालात में छात्राओं की पढ़ाई कैसे होगी? अब यूपी का समाज कल्याण विभाग ही बताए कि पढ़ाई कैसे होगी। क्या यूपी के स्कूली छात्रों के सिलेबस में ये भी शामिल हो गया है कि मूलभूत सुविधाओं, शिक्षकों और बेहतर शिक्षा के लिए पहले आंदोलन करना होगा, तभी समाधान मिलेगा। हमारी बात कई बार अधिकारियों तक पहुंचाई गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये छात्राएं लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की। इस स्कूल को यूपी का समाज कल्याण विभाग चलाता है। सोमवार की सुबह सैकड़ों छात्राएं स्कूल की बदहाली के खिलाफ सड़क पर उतर आईं। तेज बारिश के बीच छात्राएं हॉस्टल से निकली, करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चली और दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंचकर धरने पर बैठ गईं। वैसे तो स्कूली बच्चों का काम आंदोलन करना नहीं है, लेकिन आरोप है कि स्कूल की अव्यवस्था ने इन्हें क्लासरूम छोड़कर सड़क पर आने को मजबूर कर दिया। छात्राएं सड़क पर बैठी तो बालागंज चौराहा जाम हो गया। सड़क पर बड़ा सा घेरा बनाकर बच्चे बैठ गए और दुबग्गा रोड पर गाड़ियों के पहिए थम गए। कुछ ही मिनटों में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। स्कूल प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और पुलिस के अधिकारी बालागंज चौराहे पहुंचे और बच्चों को समझाने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन छात्राओं का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब उनकी समस्याएं सामने आई हैं। आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मेस में खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल है, मेडिकल सुविधाओं की कमी का भी आरोप है। छात्राओं का कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन जब समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन क्लासरूम छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ा।
2: राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह जयप्रकाश नारायण विद्यालय की छात्राएं सड़क पर उतर गईं। 6 बजे सड़क पर उतरी, अपनी मूलभूत सुविधाएं जो उनको नहीं मिल रही है। उनका आरोप है कि यहाँ पे शिक्षक, यहाँ पे खाना और यहाँ पे मेडिकल की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मेरी मौजूदगी इस समय उसी स्कूल के बाहर है जहाँ पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, राजकीय आश्रम पद्वित विद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ, ये समाज कल्याण द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पर छात्राएं आज पहुंची। जब पारा पर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो पैदल बालागंज तक गई, जहां पर पुलिस और यहां के अधिकारियों ने समझाया। उसके बाद

0: इनको बसों में बैठा कर समझा कर यहाँ पे लाया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी, लखनऊ के समाज के अधिकारी अंजनी कुमार अंदर मौजूद हैं और बालिकाओं से बात कर रहे हैं। और बालिकाओं का आरोप जो लगाया है वो ये लगाया उन लोगों ने कि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं।
1: छात्राओं का प्रदर्शन खत्म हो गया है और अधिकारी इन्हें वापस स्कूल ले आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर बोर्ड परीक्षा सिर पर है और स्कूल में जरूरी विषयों के शिक्षक ही नहीं है तो इन बच्चों की पढ़ाई की भरपाई आखिर कैसे होगी? अधिकारियों ने जल्द समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है, अब देखना होगा कि ये भरोसा सिर्फ आश्वासन बनकर रह जाता है या स्कूल की जमीन पर भी इसका असर दिखाई देता है। अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: वही उत्तर प्रदेश में सर्वोदय विद्यालय समाज कल्याण विभाग चलाता है। लखनऊ के जिस विद्यालय में छात्राएं सड़क पर उतरी हैं वहां फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर ही नहीं है। सोचिए जिन बच्चों का इस साल बोर्ड एग्जाम होना है वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। इसी 14 अगस्त को लखनऊ में जेन अल्फा के छात्रों ने प्रदर्शन किया था, तब समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण खुद छात्रों से मिले थे, लेकिन मिला क्या, सिर्फ आश्वासन।
1: लखनऊ सर्वोदय विद्यालय के छात्र यूं ही सड़कों पर नहीं उतरे, अधिकारियों से शिकायत, स्कूल प्रबंधन के सामने अर्जी और तो और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के सामने भी छात्र अपनी बात कह चुके हैं। लेकिन हासिल क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहन रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल के छात्र संभव है कि देश में जंतर मंत्र से शुरू हुए प्रदर्शन करके अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन असली वजह जंतर मंत्र नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी है। 14 अगस्त को लखनऊ में सर्वोदय विद्यालय के छात्र सड़क पर उतरे थे। मुद्दा वही था, स्कूल में शिक्षक नहीं, शुद्ध भोजन नहीं और बीमार पड़ जाओ तो मेडिकल सुविधा नहीं। 14 अगस्त को जब आंदोलन हुआ तो समाज कल्याण मंत्री खुद मौके पर पहुंच गए थे। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया।
3: यहाँ बच्चों ने बताई है वो ज्यादातर हमारी जानकारी पहले से है। सभी विद्यालयों में बहुत व्यापक सुधार हुए लेकिन और सुधार करने की गुंजाइश है, उसको हम लोग पूरा।
1: मंत्री की बात सुनकर छात्रों ने तुरंत रास्ता खोल दिया और असीम अरुण के साथ स्कूल में वापस लौट गए। स्कूल में जाकर समाज कल्याण मंत्री ने सबसे पहले स्कूल के स्टाफ की क्लास लगाई।
4: क्या हो गया? टीचर
3: है कोई यहाँ पे? पहला काम करो, सुनो, तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो, बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद मंत्री जी ने छात्रों की बात सुनी, आश्वासन दिया और चले गए। लेकिन क्या इससे स्कूल की समस्याओं का समाधान हो गया? चार दिन में शिक्षक भर्ती तो नहीं हो सकती लेकिन मेडिकल और मेस की सुविधाएं तो जरूर सुधारी जा सकती हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। आपको हम कन्नौज लेकर चलते हैं।
3: जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्टल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा दे।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जेन अल्फा है जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा, इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह को ढंक लिया। ये इनका अधिकार है लेकिन अपने अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका अपनाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए फिर समाधान।
5: हमारी कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था सर। तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे, और एक नहीं क्लास सिक्स के जूनियर से लेकर क्लास ट्वेल्व के बच्चे सभी परेशान हैं। इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सबोगेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाथ में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे शब्द। और सुबहाना ऐसा कच्चे चावल, चावल रखे हैं हम दिखाते हैं, चावल कच्चे बिल्कुल जो गले से नीचे ना होते। करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
6: कितनी देर से बंद है
5: सर? हम कल
6: 4 बजे से,
5: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
6: आप स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
5: हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें।
1: कन्नौज में तो समाधान हो गया, लेकिन लखनऊ में छात्रों को आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: सोचिए, सर्वोदय विद्यालय में फिजिक्स और बायोलॉजी के टीचर नदारद हैं। तो यूपी की हालत आपने देखी ली है, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहां पर एक के बाद एक कई जिलों में जर्जर स्कूल और चरमराई शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें आई हैं और इन तस्वीरों ने शासन को इतना परेशान कर दिया कि सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया है बल्कि समस्या बताने वाले माध्यम को ही निपटा डाला है। मतलब ये कि अब किसी भी स्कूल में कोई पत्रकार, कोई एक्टिविस्ट या कोई सामान्य जन नहीं जा सकेंगे। नो एंट्री का फरमान आ गया है, न वीडियो आएंगे, न अव्यवस्था दिखाई देगी।
1: छात्रों की ये आवाज शासन को परेशान करती है। छात्रों के ये सवाल राजस्थान के शिक्षा विभाग को चुभते हैं। अव्यवस्थाओं की पोल खोलने वाली जेन अल्फा की ये हुंकार राजस्थान शासन को असहज करती है।
7: पुलिस की गाड़ी आ चुकी है।
1: राजस्थान के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? स्कूलों में शिक्षक हैं या नहीं? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है या नहीं? बिजली, पानी, शौचालय, मिड डे मील की सुविधाएं हैं या नहीं? अब इसके वीडियो सामने नहीं आएंगे क्योंकि सरकारी सिस्टम की पोल खोलने के लिए जो वीडियो आंदोलन जिन अल्फा ने छेड़ा है, राजस्थान सरकार को वो रास नहीं आ रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश आया है उसमें लिखा है कि सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत के बाहरी शख्स एंट्री नहीं कर पाएगा। हर विजिटर को रजिस्टर में एंट्री करना अनिवार्य होगा। स्कूल के अंदर से फोटो वीडियो लाइव स्ट्रीम पर रोक लगा दी गई है।
8: क्या राजस्थान में जगह जगह हो रहे जेन अल्फा के आंदोलन से राजस्थान सरकार डर गई है? छुट्टी के दिन अति आवश्यक ऑर्डर निकाला गया जिसमें कहा गया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में यानी 64,000 सरकारी स्कूलों में कोई भी बिना अनुमति का वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर पाएगा। हालात सुधारने के बजाय हालात छिपाना कहां तक उचित है और क्या इससे जेन अल्फा का आंदोलन रुक जाएगा?
1: वैसे तो शासन से उम्मीद ये होती है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसे दुरुस्त करें, लेकिन यहां तो हालात सुधारने की बजाय सच बाहर ना आ सके इसका इंतजाम कर दिया गया है। हालांकि राजस्थान का शिक्षा विभाग इसके पीछे तर्क दे रहा है कि छात्रों और शिक्षकों की निजता और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार जिस सच्चाई को दबाना चाहती है, अब जरा उसकी वानगी भी देख लीजिए। अधिकारियों के सामने मर्दानी बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोल रही है। ये बच्चे चीख नहीं रहे हैं, बस उन अधिकारियों के कानों के सामने खड़े होकर आवाज पहुंचा रहे हैं जो एसी कमरों से अब बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।
7: पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: ये बच्चे अरवल जिले के थाना गाजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा नहीं मांग कर रहे, बस चाहते हैं कि स्कूल है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने जाने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
9: हमारे पास बैठने के लिए कक्षा भी नहीं है,
10: हमारे यहाँ 3 कप है, उनमें भी पानी के
9: पढ़ते हैं, बच्चे क्या बच्चे बारिश आए तो बैठे कैसे।
10: हमारी स्कूल को सीनियर हुए 4 साल हो गई, मात्र 5 टीचर है, जो थर्ड ग्रेड के जो बड़ी सीनियर क्लासों को पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड में बस मात्र 1 टीचर है, और जिसको भी कुछ भी होगा जो 400 रखा है और करवाओ।
11: हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, फुल हमारे जो सहपाठी है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया।
12: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, 5-6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: लेकिन बच्चे अब पूरा हिसाब चाहते हैं। इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, जहाँ बच्चे बाल बाल बच्चे हैं, जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है। राजस्थान सरकार ने अब जो फरमान जारी किया है, उसके बाद सरकारी स्कूलों के अंदर इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। रिकॉर्डिंग हुई, कोई कैमरा लेकर जबरिया घुसा तो स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: और बात बिहार की करेंगे। बिहार में तो गजब स्थिति है। छोटी सी मड़िया में पहले से 5वीं तक के स्कूल चलाए जाते हैं। जिस सब्जेक्ट के छात्र नहीं है उस सब्जेक्ट के भी टीचर मिल जाते हैं।
13: AI से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं।
14: काश वो AI आने से पहले सरकार की आई यानी आंखें खुल जाती तो दिख जाता कि झोपड़ी में एक ही जगह बिहार में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
15: ये एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी के अंदर पहली से 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं।
13: AI और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सर जमीन पर लाया, और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम किया, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए।
14: लेकिन काश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी खो जाते जहां दिख जाता कि बिहार के बच्चे अब भी जमीन पर बोरिया बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां सपना AI यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का संजोया जा रहा है।
15: पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्कूल का अपना भवन नहीं है।
13: इसलिए मैंने कहा बिहार में जनता की सरकार है, और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मॉडल स्कूल नहीं था, लोग पहले कहते थे नेटरहाट से पढ़ रहे, सैनिक स्कूल से पढ़े, देवघर में मिशन स्कूल है वहां पढ़े, और गरीब बच्चे को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने एक दिन में 551 मॉडल स्कूल खोला साथियों।
14: जो खुला हुआ है उसको कौन देखेगा सरकार? देखिए ना पश्चिमी चंपारण का ये स्कूल, जो मॉडल तो छोड़िए अब तक मॉडर्न युग में नहीं आ पाए। नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं, लगे आपको कि अरे ये सब तो होता रहता। तो देखिए ना मुख्यमंत्री जी, आज आपके AI वाले युग स्वप्न के समय में बच्चे एक गलियारे में 3-3, 4-4 क्लास एक साथ लगाकर पढ़ने के लिए मजबूर है।
16: 3 के बरामदे के नीचे एक साथ 1, 2, 3, 4-4 क्लास की कक्षाएं चल रही है।
13: बच्चा घर जाएगा उसको कौन बताएगा, क्योंकि उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं है। हम लोगों ने एक ऐप दिया है जिसको रात के 11 बजे यदि बच्चा खोलेगा तो रात के 11 बजे भी 1 मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा।
14: लेकिन एक स्कूल की इमारत तो दिला देती सरकार पहले, वरना बिहार में एक मंदिर में स्कूल चलाकर बच्चों को पढ़ाना ना पड़ता।
17: सर यहाँ क्लास यहीं चलता है, स्कूल नहीं बन
18: नहीं है इसका हाँ। भवन नहीं है, भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय यहाँ चल रहा है और ये विद्यालय आज से नहीं चल रहा है, 1962 से चल रहा है।
17: 1962 से सरकारी स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिला,
18: बिल्डिंग नहीं मिला है।
17: आप लोग कोशिश तो किए ही होंगे?
18: कोशिश किए हैं, अभी हाल ही में हमने आवेदन दिया है
17: हाँ।
18: लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
17: क्योंकि खुले में होने से दिक्कत तो होता होगा कि लोग पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होते होंगे।
18: हाँ, बहुत बहुत परेशानी होती है।
14: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, आज तक की खबरदार करते इस रिपोर्ट को आज बहुत ध्यान से देखें, वक्त निकाल कर देखें, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।
2: और इस बीच शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट की क्लर्क भर्ती के लिए भी हुई टाइपिंग परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी और सर्वर फेल होने का आरोप लगाते हुए भर्ती सड़क पर उतर आए। उम्मीदवारों ने कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड और सर्वर में खराबी के आरोप लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। कुछ परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने के करीब 10 मिनट के भीतर उस सिस्टम से लॉग आउट हो गए, जिसे लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके संभाजी नगर में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए। हाईकोर्ट प्रशासन ने औरंगाबाद और कल्याण के कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं की जानकारी मिलने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
19: स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है, उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया, कोई बीड से आया, कोई लातूर से आया, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे?
2: रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: The new BE6 Sportex.
1: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
2: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
1: नहीं सर।
2: 12th किससे की हो?
1: 12th सर मेरा PCM से रहा।
2: कंपाउंड क्या होता
1: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
2: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
1: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
2: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सरकार से बातचीत के लिए निकले रांची के आंदोलनकारी छात्र। राहुल ने लिखी सीएम सोरेन को चिट्ठी, कहा मांगों पर विचार करें, बात नहीं बनी तो 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का ऐलान। भोपाल के त्विशा मौत मिस्ट्री में सीबीआई ने फाइल की चार्जशीट। सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को पर लगाए गंभीर आरोप और धाराएं आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बिहार के लखीसराय मंदिर में भगदड़ में 7 लोगों की मौत। सावन सोमवार में जल अभिषेक के लिए पहुंची थी भक्तों की भीड़। बंगाल के होटल में भी लगी आग, 7 श्रद्धालुओं की मौत। 24 घंटे में सामने आ गए दिमागी नक्सली। चिदंबरम पर बीजेपी का करारा हमला, कहा नाग पंचमी पर दिख गया दिमाग का जहर। पीएम के बयान पर चिदंबरम ने खुद को बताया था दिमागी नक्सल। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च किया गया इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार।

0: दरअसल आज चौथे राउंड की वार्ता छात्रों के बीच और सरकार के बीच होनी है और इसी बीच कहा जा रहा है कि चौथे राउंड की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्रों ने इससे पहले ही 20 अगस्त को जो सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया हुआ है और अगर आज बातचीत नहीं बनती है तो फिर छात्र सीएम आवास का घेराव कर सकते हैं। लेकिन आज छात्रों और सरकार के बीच चौथे राउंड की बातचीत शुरू हो चुकी है। परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच को लेकर छात्र अड़े हुए हैं और इसी बीच आज चौथे राउंड की बातचीत हुई है। 9 अगस्त को तीसरे राउंड की बातचीत हुई थी जिसमें कोई निर्णय नहीं निकल पाया और आज चौथे दौर की बातचीत में छात्र और सरकार के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे। रांची में छात्रों के साथ सरकार की बातचीत शुरू हो गई है। और देखिए हम आपको बता दें कि 20 अगस्त को सीएम आवास को घेरने का ऐलान छात्रों ने पहले ही किया हुआ है और छात्रों की तरफ से कहा गया है कि दो मांगों पर लगातार छात्र अड़े हुए हैं जिसमें ना सिर्फ परीक्षा रद्द करने बल्कि सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले पर करने की बात कही जा रही है और दोनों मांगों को लेकर लगातार छात्र अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने ज्यादातर छात्रों की मांग मान ली है लेकिन फिर भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं।
1: हम लोग संवाद करेंगे लेकिन उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि हमारी सारी मांगे पूरी हो और अगर नहीं पूरी होती है तो हमारी जो आंदोलन है और भी तेज होगा। 20 अगस्त का जो है सो हमारे लोग का सीएम आवास घेरावा है उसमें लाखों की जनसंख्या में छात्र आएंगे। 18 तारीख तक अल्टीमेटम है राज्य सरकार के पास। 18 तारीख तक अगर हमारी सारी मांगे मान लेती है तो बहुत अच्छा, आंदोलन को समाप्त करेंगे। अगर नहीं मानती है तो हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और इस आंदोलन को और भी धार देंगे।
0: छात्रों के बीच और सरकार के बीच बातचीत का चौथा राउंड शुरू हो गया लेकिन उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने भी सोरेन सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो बातचीत करे और सीधे तौर पर जाके सीधा संवाद करे छात्रों के साथ और इस मसले को सुलझाए। देखिए आपको बता दें कि राहुल गांधी की चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर सोरेन सरकार से कहा है कि वो छात्रों से बात करे, उनकी मांगों को माने और मुलाकात करने से आपसी विश्वास बढ़ेगा, ये भी राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र किया है। छात्रों के प्रदर्शन शांतिपूर्ण और मांगे जायज हैं, राहुल गांधी की तरफ से यह भी कहा गया। और देखिए आपको बता दें कि चौथे राउंड की बातचीत से पहले राहुल गांधी ने भी इसको लेकर चिट्ठी लिखी है जिसमें सोरेन सरकार से छात्रों के साथ बातचीत करने और उनकी मांगों को जायज ठहराया गया है। और ये वो चिट्ठी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी सलाह है कि आप निजी तौर पर छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात करें, इससे सरकार की प्रतिबद्धता बढ़ने की में मदद मिलेगी।
2: देखिए छात्रों ने अपनी बात हम लोगों से लगातार रखी है और आज फिर वो वार्ता के लिए तैयार है। सरकार लगातार पहल कर रही थी और वार्ता होगा तो जरूर समाधान होगा। और जहां तक अन्य बातें हैं मैं यही कहना चाहूंगी कि भाजपा शिखंडी है, भाजपा के जो नेता हैं वो शिखंडी है, वो छात्रों का आड़ लेकर झारखंड पर आर्थिक चोट करना चाहते थे, SIR के माध्यम से वोट चोरी करना चाहते हैं। इन बातों के पीछे वो यह चाहते हैं कि छात्र के असली मुद्दे कहीं गौन हो जाएं, वो हम लोग नहीं होने देंगे।
3: कि पहले भी मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है हम लोग युवाओं के साथ है, हमारी सरकार युवाओं के साथ है और उनकी जो भी मांगे हैं जायज मांग है, सरकार विचार कर रही है। कुछ एक दो पॉइंट जो था वो थोड़ा सा लग रहा था कि माने कि नहीं माने, फिर भी सरकार पीछे हटकर आज फिर से वार्ता हो रही है तो युवाओं के साथ हम लोग हैं और डायलॉग से ही ये वार्ता खत्म होगा। बार बार मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से नेगेटिव सेट किया जा रहा है, मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि हम लोग आपके साथ हैं।
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यजीत भी हमारे साथ जुड़े। सत्यजीत देखिए आज जो मीटिंग हो रही है इसको लेकर क्या अपडेट है, छात्रों की तरफ से कौन कौन गया हुआ है और सरकार की तरफ से कौन कौन प्रतिनिधि है जो छात्रों के साथ बातचीत कर रहा है?
4: देखिए जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच के तरफ से 10 नाम दिए गए हैं जिसमें रविंदर पासवान, पीयूष वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा अगर न्याय मंच की बात करें तो उधर से 6 डेलीगेट्स रहेंगे। हालांकि सरकार के तरफ से जब आमंत्रण भेजा गया था तो उनको कहा गया था कि कोई लीगल एडवाइजर भी वो रखें, लीगल कंसल्टेंट को लेके आए, लेकिन किसी लीगल कंसल्टेंट का नाम उसमें नहीं है। ये इसलिए कहा गया था कि कानूनी पेज जो है उस पर डिस्कशन किया जा सके, शायद सरकार के तरफ से भी जो है लीगल एक्सपर्ट रहेंगे और उधर से वो इसीलिए चाहते थे कि क्या पॉसिबल है नहीं है। और देखिए गाड़ियों को आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब आपको बताएं कि एक एमिकेबल सोल्यूशन कैसे निकले। सीधे मांग है कि 11वें से 13वें जेपीएससी को रद्द किया जाए, जेएसएससी सीजीएल के इम्तिहान को रद्द किया जाए, सीबीआई प्रूफ करवाया जाए। तो इसको लेकर सरकार जो है इस पर डिस्कशन करेगी, डायलॉग होगा। लेकिन इस बीच लगातार जो है सरकार के तरफ से ये मैसेज लाउड एंड क्लियर देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार मांगों को लेकर गंभीर है। अब जैसे आज सीआईडी जो है वो रेड्स कंडक्ट कर रही है जेएसएससी के दफ्तर में, और 2250 कैंडिडेट जो सफल हुए थे जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहां के सचिव को लेकर लगातार स्टूडेंट जो है मुखर रहे सुधीर गुप्ता को लेकर, तो उनके भी लोकेशन पे बताया
5: गया। सत्यजीत, आप जिन खबरों के बारे में बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि आज कई जगहों के ऊपर रांची में सीआईडी की ऐसी छापेमारी हुई है। और अपने दर्शकों को बताएं कि इस छापेमारी में कहा जा रहा है कि कई जो झारखंड परीक्षा धांधली में सीआईडी की तरफ से एक्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि देखिए अब भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इसमें जांच परख कर रही है, छापेमारी की जा रही है। और इस धांधली को लेकर जो पूरा नेक्सस है, जो पूरे इसके तार है, हर जगह पर इस तरीके की छापेमारी और जेएसएससी पर ऑफिस में सीआईडी की छापेमारी भी आज की गई है। और ऑफिस में दस्तावेजों की जांच की जा रही है, सीआईडी की तरफ से कई दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। और हमारे साथ सत्यजीत भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, देखिए कई बातें हैं, हालांकि आपने भी बताया कि देखिए सीआईडी की छापेमारी जा रही है, पूरे नेक्सस को खंगाला जा रहा है, लेकिन छात्र अब भी सीबीआई मांग के ऊपर अड़े हुए हैं, लगातार परीक्षा रद्द करने को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार का इन दोनों मांगों को लेकर क्या रुख है?
4: देखिए अभी अब पैनल ऑफ मिनिस्टर के साथ उनका डिस्कशन होगा, चार मंत्री उसमें होंगे, दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव और इसके अलावा सुधीर सोनी, चमरा लिंडा, यहाँ जो बातें होंगी उस पर फाइनल कॉल मुख्यमंत्री ले सकते हैं। लेकिन इस बीच तमाम जो कानूनी पेच है उस पर डिस्कशन होगा, हर तरह के बातों पर डिस्कशन होगा कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, किस तरह से है, वो समाधान चाहती है, डायलॉग चाहती है। इस बीच राहुल गांधी का भी पत्र आया है कि वो 1-to-1 जो है प्रोटेस्टर से मिले। तो ये तमाम जो है चीजें वो एक साथ साइमल्टेनियस डेवलपमेंट इस मामले में हो रहा है। और छात्रों ने ये साफ कह दिया है कि उनकी मांगों को कंसीड नहीं किया गया, तो 18 तक का अल्टीमेटम है, फिर 20 को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। लेकिन इस बीच जो है उन्होंने ये कहा कि गांधीवादी तरीके से उन लोगों ने आंदोलन किया, अब सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के राहों पे भी चलेंगे, आंदोलन को इंटेंसिफाई किया जाएगा और एजिटेशन जो है वो और धारदार होगा। ऐसे में उन्होंने उसका उदाहरण भी पेश किया, 16 तारीख को उन्होंने पुतले जलाए राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के, क्योंकि ये लोग स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट में और ये लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इनके सपोर्ट से इंटीग्रल
5: बिल्कुल सत्यजीत, क्योंकि देखिए आक्रामक रुख अपनाते जा रहे हैं छात्र। और ये भी कहा गया कि 20 तारीख को भी जो सीएम आवास है उसका घेराव करेंगे, खासतौर पर आंदोलन कर रहे छात्रों की तरफ से इस पूरी मीटिंग से पहले क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं।
6: नहीं, वो रिफॉर्म में 95% है, बाकी जो हमारा रद्द और जांच वाला मुद्दा है उसपे नहीं हुआ है अभी सहमति, तो उसी को लेके हम लोग जा रहे हैं, देखते क्या होता है, शाम में आप लोगों को पता चल जाएगा। पॉजिटिव तो हम लोग शुरू दिन से, फर्स्ट डे से, सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि सरकार हमें मांगों को, जेन्युइन मांग है उन मानेगी जी, ये सारे हमारे जो मांगे वो जेन्युइन है और सरकार भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप लोग के जो भी मांग है वो जायज मांग है, इसमें कोई ये नहीं है, तो आज उम्मीद है कि माने सरकार, आज शाम में पता चलेगा, बैठक के बाद ही पता चलेगा।
5: और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इससे पहले भी उन्होंने नहीं गाया और उन्होंने ये भी कहा कि वो इबादत से खुदा की करते हैं। और देखिए आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि मैं किसी की वंदना या इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवाय, मैंने वंदे मातरम पहले भी नहीं गाया और अब भी नहीं गाऊंगा। देखिए एक बार फिर से इस पूरे आप कह सकते हैं विवाद को लेकर या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा।
7: बीजेपी का ये आरोप है कि सोनिया गांधी जी ने अपमान किया नेशनल एंथम का, उन्होंने उसको नेशनल सॉन्ग का उन्होंने रोकने की कोशिश करी। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए ये दर्शाता है कि आपका जो मानसिकता है वो एंटी नेशनल है।
8: देखिए बीजेपी पे बड़ा वंदे मातरम का प्यार आ रहा है आजकल, हैं छात्रों के आंदोलन से ध्यान हटाओ, वंदे मातरम पे ध्यान लगाओ। सबसे पहली बात तो सोनिया जी अगर रोकती तो वंदे मातरम का गायन ना हो रहा होता। जब वहां गायन हो गया तो ये सवाल खुद गौण हो गया, क्या पार्टी में किसी की हैसियत है सोनिया जी मना कर दे और ना हो, वो सवाल ही गौण हो गया। जहां तक 1904 से कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जा रहा है, 1904 से, इन्हें अब प्यार हुआ है वंदे मातरम से, तो नया नया प्यार है, इन्हें करने दीजिए।
5: दरअसल इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा जब 15 अगस्त को लगातार कांग्रेस मुख्यालय के अंदर वंदे मातरम को बीच में रोकने की कथित बात की गई। इसको लेकर कहा गया कि सोनिया गांधी ने बीच में ही वंदे मातरम को रोकने के लिए कहा, हालांकि इसको लेकर कांग्रेस स्पष्टीकरण दे चुके, लेकिन अब इस पर बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक हो रही है।
9: गुजरात के सूरत में नारेबाजी और प्रदर्शन, वाराणसी में कांग्रेस के दफ्तर पर पथराव, अजमेर में कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन, बेंगलुरु में भारतीय जनता युवा मोर्चा का कैंडल मार्च, वंदे मातरम के अपमान पर कोलकाता में बीजेपी का मशाल जुलूस। वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर हैं कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। 15 अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
10: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
9: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी। सफाई देने जयराम रमेश सामने आए।
11: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो बस।
9: कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते? इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
12: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
9: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र के वंशज उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्र चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है।
13: वो बहुत शर्मनाक है, ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए। हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से।
9: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। आज तक ब्यूरो।
5: और देखिए वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस अपना स्पष्टीकरण दे रही है और बीजेपी आक्रामक होती जा रही है। लेकिन इसी बीच इमरान मसूद ने कहा है कि वो ना तो वंदे मातरम पहले गाते थे और ना ही आगे गाएंगे। एक बार फिर से आपको उनका बयान, उनका स्टेटमेंट सुनाते हैं।
8: मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं? पहलवीन का या बिनी गाऊंगा, उसमें क्या नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
0: और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से प्राचीर से दिए गए दिमागी नक्सली वाले बयान को लेकर पी चिदम्बरम ने, पूर्व वित्त मंत्री ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सल हूं, लेकिन अब इसको लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक होती जा रही है।
14: इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
15: मौका था 15 अगस्त पर देश के नाम संबोधन का, जगह थी लाल किले की प्राचीर। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य के लक्ष्य बताए तो नए खतरे से आगाह भी किया। पहली बार पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल के बढ़ते खतरे की तरफ देश का ध्यान खींचा। एक बार फिर सुनिए पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा।
14: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
15: जाहिर है पीएम मोदी ने अपने दिमाग से नक्सलवादी विचारधारा को खाद पानी देने वालों पर हमला बोला और इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम खुलकर सामने आए। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम यही नहीं रुके, कुछ घंटे बाद एक्स पर उन्होंने लिखा, दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक नया रूप है। अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था, ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उन्हीं अपशब्दों का एक नया रूप है। चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए। दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, देश के तमाम शहरों से चिदम्बरम पर चौतरफा हमला शुरू हो गया।
16: और जेएनयू में कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया था स्वागत की होता थी, चिदम्बरम साहब आप पेश के अपने मंत्री है रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई मौके थे, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्य बताते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? उसी का मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है उसी का चेहरा बने हैं पिक्चर के दावर।
17: पुली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर जो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदम्बरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
15: वार पलटवार के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पी चिदम्बरम के बयान पर आपत्ति जताई। एक्स पर उन्होंने लिखा, भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सल हैं, सिर्फ वो लोग ही दिमागी नक्सल हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, चिकन नेक को काट कर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। रिजिजू ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया तो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 370 के समर्थन में आगे आ गईं। महबूबा ने एक्स पर लिखा, मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं।
18: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
15: पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल पर हमला कर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां आने वाले दिनों में वार पलटवार का लंबा सिलसिला दिख सकता है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और देखिए पी चिदम्बरम के बयान के बाद अब असम के सीएम का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि पी चिदम्बरम दिमागी नक्सली नहीं बल्कि प्योर नक्सल है।
19: जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश को देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा।
5: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। कहा जा रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर ली गई है एसआईटी द्वारा और इसे जल्दी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। सील बंद लिफाफे में इसको सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि जांच जारी रहेगी। इसमें बड़ा अपडेट आपको बता दें कि एसआईटी की जांच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने ये जांच रिपोर्ट पेश की जाए और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जांच अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों और जनहित में सुझाव देने वाले लोगों से कहा है कि वो भी जांच में किन पहलुओं में शामिल किया जाना चाहिए इस पर अपने सुझाव दे सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार है। अब कोर्ट रिपोर्ट देखने के बाद आगे की जांच और कार्रवाई को लेकर फैसला करेगा। और चलिए खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज रूम लाइव।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
2: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।
3: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
4: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
3: नहीं सर।
4: 12th किससे की हो?
3: 12th सर मेरा PCM से रहा।
4: कंपाउंड क्या होता है?
3: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
4: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
3: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
4: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: सरकार से बातचीत के लिए निकले रांची के आंदोलनकारी छात्र, राहुल ने लिखी सीएम सोरेन को चिट्ठी, कहा मांगों पर विचार करें। जेएसएससी ऑफिस पर सीआईडी की छापेमारी, सर्टिफिकेट की होगी जांच। वंदे मातरम गाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, अल्लाह के अलावा नहीं करूंगा किसी की भी इबादत। 15 अगस्त को की कांग्रेस कंट्रोवर्सी पर सोनिया गांधी पर अमित शाह ने खड़े किए थे सवाल, कहा वंदे मातरम का अपमान किया गया। चौबीस घंटे में सामने आ गए दिमागी नक्सली चिदंबरम पर बीजेपी का करारा हमला। असम के सीएम हेमंता ने कहा चिदंबरम तो प्योर नक्सल है। केजरीवाल ने खुद को बताया ब्रेन वॉश किया गया नक्सल। बिहार के लखीसराय मंदिर में भगदड़ में 7 लोगों की मौत। सावन सोमवार में जलाभिषेक के लिए थी भक्तों की भीड़, बंगाल के होटल में लगी आग, 7 श्रद्धालुओं की मौत। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च किया हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल राउंड टेबल कॉन्क्लेव की भी धमाकेदार आगाज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।

लगातार एक आईपीएस अधिकारी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की मौत हो गई थी। संदिग्ध मौत के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और अब इसमें पुलिस जांच कर रही है। दरअसल इस मामले को लेकर लगातार वार पलटवार भी हो रहा है। हालांकि इसको लेकर राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, लेकिन एफआईआर में आशुतोष मिश्रा की मां के मुंह में तौलिया होने और ऊपरी होंठ पर

तोलिया होने और ऊपर ऊपरी होठ पर चोट के निशान होने की बात कही गई थी। ऐसे में आईपीएस आशुतोष की मां की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अब तक हत्या के दावे से इनकार कर रही है, लेकिन केस लूट और हत्या की धाराओं में ही दर्ज किया गया है।

0: जिस सूबे में औसतन रोज 5 एनकाउंटर होते हैं, गोरखपुर से लेकर शाहजहांपुर और बांदा तक, जहां एक दिन में 3 एनकाउंटर हुए, वहीं उसी यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक आईपीएस की वृद्ध माँ के घर में घुसकर लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते। ये तस्वीर लखनऊ में तैनात आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माँ की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अम्बेडकर नगर के मालीपुर धवरुआ गांव की रहने वाली ये बुजुर्ग अपने घर में मृत पाई गई थी और इनके पहने गहने गायब थे। पुलिस को इस संदिग्ध मौत की खबर हार्ट अटैक के रूप में मिली थी।
1: 16/8/2026 को दिन में 1:13 पर रमेश चंद्र मिश्रा नामक व्यक्ति ने थाना अध्यक्ष मालीपुर को यह सूचना दी कि ग्राम रूढ़ा धमारुआ के रहने वाले श्री आशुतोष मिश्रा जी की माता जी का सुबह 8 हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उसके पश्चात लगभग 2:30 आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी माँ की किसी ने हत्या कर दी है और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी उनके शरीर पर मौजूद नहीं है।
0: खबर है कि आईपीएस आशुतोष मिश्रा 15 अगस्त को गांव के विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और शाम को ही लखनऊ लौटे थे। उनके जाने के कुछ देर बाद शनिवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौका मुआयना से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में किसी तरह की लूटपाट या मारपीट के निशान नहीं मिले हैं।
1: का पैनल बनवाकर वीडियोग्राफी के साथ पीएम की कार्रवाई हुई है, जिसकी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ में विसरा प्रिजर्व होना आया है। हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पर स्पष्टता आ सके।
0: यूपी पुलिस के मुताबिक इस घटना में लूटपाट या हत्या की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, फिर भी इस वारदात को लेकर सियासी सवाल उठाए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अंबेडकर नगर में एक आईपीएस अधिकारी की माताजी की हत्या का दुखद समाचार आया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। हालांकि सीएम योगी ने इसी अंबेडकर नगर में पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि यूपी में अब ना तो माफिया राज है और ना ही गुंडा राज। ना दंगाई दंगे की हिम्मत कर सकते हैं और ना वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अंबेडकर नगर में आईपीएस की बुजुर्ग माँ की संदिग्ध मौत ने सियासत को मौका दे दिया है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक।
2: और आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध मौत के मामले पर अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर राजनीतिक पहलू भी सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करी और कई पहलुओं पर इसको लेकर जांच भी की जा रही है। इस मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है और सारी की सारी धाराएं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है उसमें हत्या और लूटपाट की बात या उसमें धाराएं उसमें शामिल की गई है। लेकिन अब भी इसको लेकर पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अभी कई पहलुओं पर जांच हो रही है और ये भी देखा जा रहा है कि ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से या किसी दूसरे कारणों की वजह से ये मौत नहीं हुई है। लेकिन अब इसको लेकर इस मामले पर लगातार संक्षेप इस पे वार पलटवार या फिर आप कह सकते हैं कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही है। यूपी में आईपीएस अधिकारी मां की संदिग्ध मौत पर का मामला अब गर्माता जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, ये पूरे मामले पर अब लगातार देखिए राजनीतिक पहलू तो लिया जा रहा है, लेकिन अभी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता लग पाया है कि आखिरकार ये हत्या ये मौत जो हुई वो कैसे हुई, किस परिस्थितियों में हुई, क्या इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन पुलिस की तरफ से दिया गया है?
3: देखिए, इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का कि अंबेडकर नगर पुलिस शुरू से इस मामले को बता रही थी कि जो बुजुर्ग महिला है आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माँ, उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन एफआईआर हत्या की धाराओं में दर्ज होती है। जो आईपीएस आशुतोष मिश्रा ने एफआईआर दर्ज कराई उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि उनकी माँ के जो मुंह से खून निकल रहा था, मुंह में तौलिया ठूंसी गई थी का मतलब जबरी उनके मुंह में तौलिया डाली गई थी। ये सीधे से हत्या की तरफ इशारा कर रहा था और एफआईआर भी हत्या में हुई। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के बताने की तरफ है कि ये हार्ट अटैक है, जेवरात जरूर चोरी हुए हैं लेकिन ये हार्ट अटैक है। एफआईआर हत्या की धाराओं में दर्ज है। आशुतोष मिश्रा भी हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कह रही है कि कोई चोट के निशान नहीं है। वो एफआईआर में भी

0: चोट के निशान का जिक्र है कि उनके जो ऊपरी होठ है उस पर चोट के निशान बनाए दिखाए गए हैं, खून निकल रहा है मुंह से, मुंह में तौलिया ठूसी गई, तमाम चीजें हैं जो अंबेडकर नगर पुलिस और एफआईआर के बीच विरोधाभास खड़े करते हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो पुलिस का कहना है कि हमने विस्तरा प्रिजर्व करने के लिए रख दिया है और पुलिस टीमें जो जेवरात चोरी की बात है उसकी तलाश में लग गई हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल संतोष, लगातार देखिए बात यही कही जा रही है कि सारी परिस्थितियां सारी चीजें तभी क्लियर हो पाएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आज सावन का सोमवार है लेकिन कई जगहों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बाद हाहाकार मच गया, हड़कंप मचा हुआ है।

0: आज सावन का सोमवार है, इसी वजह से हजारों लाखों की संख्या में लगातार शिव भक्त अपने भगवान की आराधना के लिए, उन्हें जल अभिषेक कराने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। और भारी भीड़ के चलते दो जगहों पर ऐसी खबरें मिली है जिसमें लखीसराय और बीरभूम के अंदर भारी भगदड़ की खबरें भी सामने आई है। दो जगहों से लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि लखीसराय में जहां पर श्रद्धालु अपने जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे, वहीं उसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि शायद करंट फैल गया है, करंट का खंभा गिर गया है, और खंभा गिरने के बाद या फिर करंट फैलने की आशंकाओं के चलते, अफवाहों के चलते लोगों में भगदड़ मच गई। और ऐसी ही एक खबर हम आपको बीरभूम से भी दिखाएंगे जहां पर श्रद्धालु जो थे एक होटल में रुके हुए थे और तड़के सुबह 4:30 बजे आग लग गई जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले हम लखीसराय की बात करते हैं, आपको बताते हैं पूरी खबर। दरअसल आपको बताएं कि लखीसराय के अंदर श्रद्धालु जब लगातार लाइन में लगे हुए थे, उसी समय किसी ने यह चिल्लाना शुरू कर दिया, यह अफवाह फैला दी कि वहां पर खंभा गिरने की वजह से वहां पर करंट फैल गया, जिससे वहां के लोगों में भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग वहां पर चीख पुकार करके भागने लगे और इसी भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है, कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं।
1: सावन सोमवार का मौका था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर में जल अर्पण के लिए पहुंचे थे, लंबी लंबी कतार लगी थी। मंदिर के भीतर भी भक्तों की भारी भीड़ थी और इसी अफरा तफरी के माहौल में लखीसराय के अशोक धाम में भगदड़ मची और देखते ही देखते हादसे में कई लोगों की जान चली गई।
2: ये कहना है कि एक अफवाह ऐसी उड़ी जिस अफवाह की वजह से ये पूरा मामला हुआ है, भगदड़ मची है और इस भगदड़ में ही जो श्रद्धालु हैं उनकी जान गई है। सरकार ने अपनी तरफ से, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शोक संवेदना जताई है और उसके बाद जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत अनुग्रह अनुदान राशि, मतलब जो मुआवजे की राशि है, उसकी घोषणा भी सरकार ने कर दी है। 4-4 लाख रुपए मुआवजा जो है वो मृतकों के आश्रितों को दिया जाएगा, ये सरकार की तरफ से घोषणा है। इस पूरे मामले की जांच कैसे कराई जाएगी इसको लेकर के भी बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो डीएम है लखीसराय के शैलेंद्र कुमार, वो ये कह रहे हैं कि सुबह तकरीबन 7:45 बजे के आसपास एक जगह पे जहां बैरिकेड्स के जरिए श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की व्यवस्था की गई थी, वहां पर एक तार गिरा और उस तार को लेकर के ये अफवाह फैली कि उसमें करंट है। हालांकि वो कवर्ड वायर था, उसमें कोई करंट की स्थिति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो अफवाह उड़ी उसमें भगदड़ की स्थिति मची और वहीं पर जो महिला श्रद्धालु हैं उनके बीच अफरा तफरी हुई और उसमें कई महिला श्रद्धालु गिर गई भगदड़ में, उसके ऊपर दूसरी श्रद्धालु निकलते चले गए, दौड़ते चले गए।
1: चश्मदीदों की माने तो मंदिर परिसर में बिजली का तार गिरने की अफवाह फैली, लोग दहशत में आए और इस बीच भारी भीड़ के चलते बैरिकेडिंग टूट गई और लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान मंदिर आए कई श्रद्धालु भगदड़ की चपेट में आ गए।
3: सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था और लाइन में बहुत सारा लोग था, ढकेल के इधर पूरा पोल इधर कर दिया था, पोल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा, फिर हम दब के बेहोश हो गए तो फिर हमको नहीं पता है
4: वहाँ हुआ क्या। जहाँ पर जो लोग घुसते हैं ना गेट के पास है, बांस जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर घुस रहे थे कि बाहर से कम 100 आदमी घुसने के लिए जबरदस्ती ठेल दिए हैं सबको, जो ठेल दिए सब गिर गई, उसी पर सब आदमी चढ़ चढ़ के अथी घुसने लगा, वहाँ कोई प्रशासन नहीं कोई अथी।
1: हादसा बेहद दर्दनाक था, सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को फौरन ही लखीसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
5: अप्रत्याशित भीड़ हो गई और 6:30-7 बजे के लगभग में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया, एक तो पहले से भीड़ थी उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत में पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था। और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे, पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेटिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए।
1: सीएम सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच का आदेश दिया है, साथ ही भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवार को 4,00,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन जांच के आदेश के बीच लखीसराय हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि बद इंतजामी के चलते लोगों की जान गई।
6: जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था में काफी कमी रही है। आप देख रहे होंगे जो वीडियो विजुअल आ रहा है कि बांस जो बैरिकेटिंग किया हुआ है वो सरा हुआ बांस मतलब पब्लिक के अति से कोई लाठी से नहीं मारा गया है, बांस फटा हुआ दिखाई दे रहा है जो वीडियो में आ रहा है। तो इस तरह का काम मंदिर परिसर में घटना स्थल के घटना होने के बाद वरीय पदाधिकारी का पहुंचना, इसका मतलब कि राज्य सरकार ने कोई एसओपी जारी नहीं किया।
7: ये घटना मंदिर परिसर के बाहर और बिजली के तार गिरने से, और उसमें लोगों ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, उसी में भगदड़ मची है। जिलाधिकारी से, संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है, एक बार हम लोग जा रहे हैं उसको देखेंगे, इसकी लापरवाही है जो भी होगा उसकी जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई है और हमें वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था के लिए प्राथमिकता भी हमने कहा कि करें और जो दोषी होंगे उसकी कार्रवाई।
1: विपक्ष इस हादसे पर प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था में कमी का आरोप लगा रहा है और सरकार पर हमला तेज होता जा रहा है। शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अगली खबर बीरभूम से। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। दरअसल श्रद्धालु करीबन जो तारापीठ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और वहीं पर पास में मौजूद एक होटल में रुके हुए थे। सुबह 4:30 बजे दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया और आग इतनी फैल गई कि 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि अभी जो कई घायल है उनको पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई। बता दें कि ये सभी जो श्रद्धालु हैं वो दरअसल तारापीठ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और वहीं पर पास में मौजूद एक होटल में रुके हुए थे।
8: होटल में आग धधकी और देखते ही देखते बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुआ हादसा कई लोगों की मौत की वजह बन गया। बिल्डिंग को बाहर से देखकर भले ही ये अंदाजा ना लगे कि यह हादसा कितना बड़ा है, किस तरह आग धधकी, लेकिन होटल के अंदर की तस्वीरें इस दर्दनाक हादसे की कहानी खुद बयान कर रही हैं।
9: मिलाकर 7 लोगों की अभी तक मौत दर्ज किया गया। दरअसल ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन से ये आग लगी थी और फॉल्स सीलिंग होने की वजह से बहुत जल्दी आग फैलना शुरू हो गया और ऊपरी मंजिलों में भी ये आग फैलता गया। और सुबह 4 बजे लगभग सारे लोग सो रहे थे, तभी अचानक एक भगदड़ की स्थिति बन जाती है। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक जो 6 लोग हैं, ये बताया जा रहा है कि कुछ झुलसकर उनकी मृत्यु हुई है, कुछ लोग दम घुटने के वजह से उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि ये साफ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा, लेकिन आज तीसरा सोमवार है श्रावण महीने का और इसलिए बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे तारापीठ और इसी बीच ये दुर्घटना हुई।
8: ये हादसा तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास मौजूद एक होटल में हुआ। बताया जा रहा है कि मंदिर में दर्शन के लिए बाहर से आए श्रद्धालु होटल में रुके थे, तभी तड़के वहां आग लग गई जिसने कई कमरों को अपनी चपेट में ले लिया।
10: सुबह में 5 बजे के आसपास खबर आई तारापीठ थाने में कि विदेशनी लॉज में आग लग गई है। बाहर से जो आप देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग में ये तो कांच के गिलास और दरवाजे के साथ बंद थी, तो बाहर की तरफ से धुआं और आग की लपटें नहीं देखी जा रही थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम स्पॉट पे आई। आने के बाद 22 लोगों को यहाँ से लैडर लगा करके जिंदा बचाया गया और 11 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। जो 11 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है उनमें से 2 आदमी सुस्त हैं, एक का ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया है, दूसरा और एक जो पेशेंट है उनको वो भी सुस्त है, स्टेबल है, उनको एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उनके रिक्वेस्ट पे पुलिस की असिस्टेंस से भेजा गया है। बाकी 2 जन चिकित्साधीन हैं और दुख की बात है कि 7 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं।
8: बताया जा रहा है कि सावन का सोमवार होने की वजह से होटल तीर्थयात्रियों से पूरी तरह भरा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि आग उस समय शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी जब कई लोग सो रहे थे। हालांकि आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है और इसकी जांच की जा रही है।
11: पहले देखना दीजिए, जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरा बिगाड़ चुका था, इसीलिए TRDA का बदनामी है, इसीलिए TRDA का तदंत होना चाहिए। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया और आग निभाने का कोई व्यवस्था नहीं है, इसको जतुगृह बना दिया है। वो घुसो और मर जाओ, और मरने का जो मैंने ये जतुगृह बनाया है, पैसा लेके बनाया था TRDA ने, और इसी TRDA का खिलाफ हमारा जो बयानबाजी था इसका खिलाफ ही था। देखिए समय कितना बलवान होता है, ठीक है ना, इसको ही कहता है समय का मूल्यांकन होना चाहिए। हम देखेंगे, बात करेंगे बाद में।
8: वीरभूम में हुए हादसे में 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाके के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होटल मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और हादसे की जांच जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करते हैं मॉनसून की मार की। दरअसल मॉनसून के मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर पहाड़ी इलाकों के अंदर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसी ही कुछ तस्वीरें, लगातार खौफनाक तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से भी आई है, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश के बाद जो सड़क पर, चमोली की एक सड़क पर इस तरीके से पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गिरा। कहा जा रहा है कि वहां पर इस समय जब ये हादसा हुआ, ये सीरी राय गांव सड़क मार्ग पर हुआ, दोपहर अचानक जोरदार भूस्खलन शुरू हुआ और देखते ही देखते पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से, बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गिरने, ऐसा लगा कि मानो पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गिरा हो। लेकिन गनीमत यह रही कि जिस वक्त ये पूरे पहाड़ चट्टान नीचे आकर गिरी, उस समय वहां पर सड़क पर कोई आवाजाही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों के अंदर ये खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हो या परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ रहा हो। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर नदियां उफान पर, और कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं और उनकी खबरें भी मिल रही। आपको इसके लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
12: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टानें चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिम्बी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहां कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये। ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। एक और तस्वीर देखिए, ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
1: चलिए न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज सावन का तीसरा सोमवार है, इसी वजह से शिव भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ। शिव भक्त सुबह से ही लगातार लंबी लाइनों में खड़े होकर अपना जल अभिषेक कराने की तैयारियां कर रहे हैं। चाहे वो वाराणसी हो या फिर उज्जैन, हर मंदिर को इस खास मौके पर सजाया गया है।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

निकले राज्य के आंदोलनकारी छात्र। राहुल ने सीएम सोरेन को लिखी चिट्ठी, कहा मांगों पर विचार करें। जेएसएससी ऑफिस पर सीआईडी का छापा, सर्टिफिकेट की होगी जांच। वंदे मातरम गाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, अल्लाह के अलावा नहीं करूंगा किसी की इबादत। 15 अगस्त की कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सोनिया पर शाह के सवाल, कहा वंदे मातरम का तो अपमान हुआ। 24 घंटे में सामने आ गए दिमागी नक्सली चिदंबरम पर बीजेपी का हमला। असम के सीएम हेमंत ने कहा कि चिदंबरम प्योर नक्सल है। महबूबा और केजरीवाल ने भी खुद को बताया दिमागी नक्सल। बिहार के लखीसराय मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत। सावन के सोमवार में जलाभिषेक के लिए लगी थी भक्तों की भीड़। बंगाल में होटल में आग, 7 श्रद्धालुओं की मौत। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।

नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों और सीएम सोरेन सरकार के बीच में चौथे दौर की वार्ता और रिफॉर्म मंच की ओर से कुल 10 छात्र शामिल हुए हैं। सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है। राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडे का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, पूछा कैसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी जी को गुप्त रूप से पत्र लिखना पड़ रहा है। पत्र में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता है। बाबूलाल मरांडे ने राहुल गांधी पर 2200 पदों पर धांधली हुई है, ये बात कही। जेएससी सीजीएल मामले में हिस्सेदारी का भी सीधा आरोप है। झारखंड में सीजीएल परीक्षा मामले में सीआईडी जांच भी तेज। रांची में जेएससी कार्यालय पर छापेमारी, सचिव से हो रही है पूछताछ। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की कथित गड़बड़ी पर छात्रों का आंदोलन तेज। 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव का ऐलान। जेपीएससी जेएससी परीक्षा विवाद पर छात्रों का हल्ला बोल, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ निकाला गया मशाल जुलूस। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों पर छात्रों का प्रदर्शन जारी, सीएम के इस्तीफे की सीधी मांग। झारखंड में छात्रों का सरकार के खिलाफ मोर्चा, हेमंत सोरेन राहुल गांधी तेजस्वी का पुतला दहन किया गया। भर्ती परीक्षा विवाद में भूख हड़ताल पर छात्र, सरकार से परीक्षा रद्द करने सीबीआई जांच की मांग। यह मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर सियासी संग्राम, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। पी चिदम्बरम का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, दिमागी नक्सल को बताया अर्बन नक्सल और पुराने आरोपों का ही नया आरोप। हिमंता बिस्वा शर्मा का पी चिदम्बरम पर हमला, कहा कि वो तो खुद ही नक्सल है, प्योर नक्सल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाँ, मैं भी दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर गर्व है। दिमागी नक्सल वाले टिप्पणी पर स्वामी रामदेव का बयान, कहा कि कुछ लोग बौद्धिक अराजकता फैलाना चाहते हैं। इमरान मसूद का बीजेपी पर पलटवार, कहा कि पीएम मोदी को दिमागी नक्सली ढूंढने कहीं नहीं जाना है, वो बस अपने इर्द गिर्द देख ले, वहीं पर सब मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। झोपड़ी में चल रहे सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल, रविंद्र सिंह भाटी ने 15 अगस्त को जारी किया था वीडियो, लिखा आजादी के 80 साल। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला, टूटी छतों, शिक्षकों की कमी को लेकर घेरा। सरकारी स्कूलों को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पर रोक। बिना अनुमति के स्कूल परिसर के भीतर वीडियो बनाने, फोटो खींचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर चिट्ठी जारी कर दी। राजस्थान सरकार के फैसले पर कांग्रेस का हमला, बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय अपनी नाकामी ढकने और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली छिपाने का रास्ता खोजा। गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया बयान, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय बीजेपी अपनी नाकामी छिपा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था तो बची ही नहीं है। यूजीसी नेट जून 2026 में पेपर में गड़बड़ियों पर बड़ा एक्शन, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र की परीक्षा फिर से करवाई जाएगी। एनटीए की जांच में पेपर से जुड़ी हुई खामियां सामने आई, सवाल दोहराने और गलतियों के बाद री एग्जाम का फैसला। एनटीए ने यूजीसी नेट री एग्जाम की तारीखें घोषित की है, 9 सितंबर को इंग्लिश कॉमर्स और 10 सितंबर को समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। यूजीसी नेट विवाद पर कांग्रेस का मोदी सरकार और एनटीए पर हमला, परीक्षा व्यवस्था जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल। यूजीसी नेट री एग्जाम को लेकर एनटीए मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने एनटीए को भंग करने, अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग की। बिहार में परीक्षा व्यवस्था पर अब तेजस्वी कामला बोले कि हर परीक्षा में पेपर लीक, 19 अगस्त को राजभवन मार्च करेंगे। गोपालगंज में TRE4 में सीटों की संख्या बढ़ने के संकेत हैं, SCET और रिक्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान। ऑटो यूनियन का जंतर मंतर पर प्रदर्शन आज, वेलफेयर बोर्ड की मांग। नई दिल्ली में आज BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज, दुनिया के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगे। दिल्ली में आज अफगान दूतावास में तालिबान का विक्ट्री डे समारोह, यह कार्यक्रम काबुल पर तालिबान के दोबारा नियंत्रण की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। यूपी में 78,000 से ज्यादा के राशन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ा, योगी सरकार ने 90 रुपए से बढ़ाकर कमीशन 125 रुपए प्रति क्विंटल किया है। सीएम योगी ने लिखा कि गोरखपुर प्रदेश की गौरवशाली खेल परंपरा को नई ऊर्जा प्रदान की जाएगी।
यूपी में 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने के महाभियान संपन्न हुआ। सीएम योगी ने किया ट्वीट, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने लिखा कि युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी, आज प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव अवसर प्रदान कर रही है। लखनऊ में स्कूल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं सड़कों पर, ट्रैफिक जाम होने पर आला अधिकारी पहुंचे, छात्राओं को समझाया, खुलवाया जाम। सीएम योगी का यूपी में स्कूली शिक्षा को लेकर अखिलेश के बयान पर पलटवार का 2017 से पहले यूपी में स्कूल की बिल्डिंग नहीं, पीने का पानी नहीं, शिक्षक नहीं, विद्यार्थी नहीं, अगर सब थे भी तो पढ़ाई ही नहीं थी। अखिलेश ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, यूपी सरकार ने 26,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद किए, 2 अगस्त को जेन जी रील्स में स्कूलों की सच्चाई को लेकर एक बयान दिया। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला, कि आज के हालात की अंग्रेजों के दौर से तुलना भी की, कि आज भी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मजबूर हैं। अखिलेश यादव की 54 करोड़ रुपया वाले बयान पर मंत्री अनिल कुमार का पलटवार, बोले ये किसान समाज का अपमान, 2027 में किसान समाज जवाब दे देगा। अखिलेश का केंद्र पर चौतरफा हमला, महंगाई, E20 पेट्रोल, सीमा सुरक्षा, नक्सलवाद को लेकर केंद्र सरकार से सवाल। वंदे मातरम विवाद ने लिया सियासी रंग, सोनिया गांधी से माफी की मांग पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। अमित शाह ने सोनिया गांधी को घेरा, बोले कि वंदे मातरम रोकने पर देश और बंकिम चंद्र चैटर्जी से माफी मांगे। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी बेवजह मुद्दों को राजनीतिक रंग दे रही। वंदे मातरम विवाद पर बंगाल में भी घमासान, बंकिम चंद्र चैटर्जी के वंशज ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत, बीजेपी युवा मोर्चा ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में निषाद पार्टी के 11वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण देने की मांग की। संजय निषाद ने बीजेपी को चेतावनी दी, बोले कि आरक्षण लागू कराने में अब और देर ना हो वरना चुनाव में इसका असर पड़ेगा। संजय निषाद ने मंच से आरक्षण नहीं तो वोट नहीं और लेकर रहेंगे आरक्षण जैसे नारे लगवाए, बोले कि चाहे तो मंत्री पद ले लो, आरक्षण दे दो। भोपाल में ट्विशा मौत मिस्ट्री में सीबीआई ने फाइल की चार्जशीट, सास गिरी माला और पति समर्थ पर लगाई गई कई गंभीर धाराएं, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच कर रहे एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट अपनी तैयार की, सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट की जाएगी पेश। लखीसराय के अशोक धाम में बिजली का तार गिरने से मची हड़कंप, हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायल। पीएम मोदी ने बिहार के लखीसराय में भगदड़ में हुई मौतों पर जताया दुख। लखीसराय हादसे पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख, घायलों के इलाज, हर संभव मदद का भरोसा, 4-4 लाख का मुआवजे का ऐलान। लखीसराय हादसे पर ललन सिंह ने दिया बयान, कहा कि मेरी संवेदना पीड़ित परिवार वालों के साथ है, जो दुख की घड़ी में हम परिवार वालों को के साथ है और भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करे। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में स्थित तारापीठ के होटल में लगी आग, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायल, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल का आगाज, सीएम विजय ने लॉन्च किया इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। चेन्नई में आयोजित इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल कार्यक्रम में सीएम विजय बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मंच पर साथ में इंडिया टुडे ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कालीपुरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक संदेश भी दिया। कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेता, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और मनोरंजन क्षेत्र के हस्तियां भी होंगी शामिल। तमिलनाडु के भविष्य और सरकार के कामकाज पर चर्चा। तमिलनाडु के आर्थिक संभावना और निवेश के माहौल के साथ साथ भ्रष्टाचार, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त एवं स्वास्थ्य जैसी राज्य की प्रमुख नीतिगत चुनौतियों पर विचार विमर्श। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बढ़ रही है, घाटों और मंदिरों में भी बाढ़ का पानी घुसा। पक्के घाटों का आपसी संपर्क टूटा, गंगा किनारे इमारतों में भी पानी पहुंचा, नाव मोटरबोट का इस्तेमाल फिलहाल उस पर रोक। बढ़ते जलस्तर से दशाश्वमेध आरती, प्रभावित आरती स्थल को चौथी बार पीछे किया गया शिफ्ट, गंगा में हाई स्पीड बोट से पेट्रोलिंग जारी। इटावा में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, सेफई रोड अंडरपास में 5 फीट तक भरा पानी, बंद किया गया अंडरपास, जनजीवन प्रभावित।

एक बहुत बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी टीम कौन सी होगी, कौन कौन उसमें सदस्य होंगे, इसके संबंध में बहुत बड़ी खबर है और उनकी टीम का ऐलान हो गया। वसुंधरा राजे, राम माधव, इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको दे दें, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है और ये बड़ी अनाउंसमेंट है। ये वो प्रमुख नाम है जो इस समय सामने आ रहे हैं। इस टीम को लेकर कई तरह के कयास चल रहे थे और अब ये बड़ी अनाउंसमेंट हो गई है। इसमें विनोद तावड़े हैं, सुनील बंसल जैसे नेता भी शामिल हैं जिनको नितिन नवीन की इस टीम में जगह मिली है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने टीम का अपनी ऐलान कर दिया है और इसमें ये प्रमुख नाम है जो हम आपको इस समय बता रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद ये आज का दिन चुना गया। इसमें स्मृति ईरानी को बहुत इंपॉर्टेंट अब राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया गया है, ये उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बड़ी खबर, विनोद तावड़े भी इसमें है, सुनील बंसल भी है जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का यह ऐलान हो गया है और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे खासतौर पर बीजेपी में कि बीजेपी में नितिन नवीन की नई टीम में कौन कौन शामिल हो गया। तो उस पर से अब पर्दा उठ गया है, उस पर अब पिक्चर जो है क्लियर हो गई है। इसमें स्मृति ईरानी, इसमें कई और नाम भी है, विनोद तावड़े हैं, सुनील बंसल हैं और इसमें यूपी से भी कुछ इंटरेस्टिंग नाम, यूपी में भी चुनाव है और पार्टी में वसुंधरा राजे हैं, राम माधव हैं, इनको भी नितिन नवीन की टीम में मौका मिला है। पीयूष गोयल हैं जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी टीम बनती है, तो उनके इस नई टीम का ऐलान हुआ है और जो नाम है वो हम आपको बता रहे हैं जैसे जैसे वो नाम सामने आ रहे हैं। तो इसमें स्मृति ईरानी को मौका मिला है, विनोद तावड़े हैं, सुनील बंसल हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, स्मृति ईरानी हमने आपको बताया। तो ये कुछ नाम है जो उनकी टीम में शामिल है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यूं तो कुछ स्टेट्स में इलेक्शन भी हुए जहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन अब साल 2027 में कई स्टेट्स में चुनाव है। तो उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की एक नई टीम और इस नई टीम में ये जो नाम है जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये वो लिस्ट है जो इस समय आप देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में ये वो प्रमुख नाम है।

0: हिमांशु भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए. हिमांशु, इस लिस्ट के बारे में बताइए, इसमें शामिल नामों के बारे में बताइए, किस किस को किस किस का एक तरीके से प्रमोशन हुआ, किस पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया है, क्या क्या जिम्मेदारी किसे किसे मिली?
1: देखिए, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राम माधव को जो है वो उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो बीच में महासचिव थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव में उनकी वापसी हुई थी संघ से और एक बार फिर से उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी. उनके साथ साथ पूर्व में केंद्र मंत्री रही स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी दी गई है, महासचिव के रूप में उनको जो है वो दिया गया. सुनील बंसल और विनोद तावड़े वो महामंत्री रहेंगे. साथ में अगर आप देखें तो हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश के बस्ती से आते हैं, पूर्व में महासचिव सचिव रहे पार्टी के, युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे दो बार, उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है जनरल सेक्रेटरी के रूप में. सतीश पूनिया राजस्थान में जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी. त्रिपुरा के अंदर बिप्लव देव मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी के रूप में पार्टी महासचिव बनाया गया है. अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सभी राज्यों का एक तरीके से समावेश जो है किया गया है. आप सभी प्रतिनिधियों को देखें जिनका रिप्रेजेंटेशन है, तो कहीं ना कहीं सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व इस पूरे उसमें दिखाई देता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि अमित मालविया जो सोशल मीडिया इंचार्ज थे उनको हटाया गया है, उनकी जगह नए सोशल मीडिया इंचार्ज हैं, उनको लाया गया छत्तीसगढ़ से. अनिल बलूनी बहुत लंबे समय से जो है वो मीडिया सेल के संयोजक हैं, उनको ये जिम्मेदारी है. पिछली बार उनके साथ संजय मयूख थे जो बिहार से थे सह प्रभारी, लेकिन इस बार कुछ दायित्व बदला है. प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव जो ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन थे उनको अब जो है सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. उनके साथ साथ जो है अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे जो है वो प्रीति गांधी को ये जिम्मेदारी है. अरुण यादव जो है हरियाणा से आते हैं, एक कंट्रोवर्शियल बयान उनकी तरफ से हुआ था, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है. कई महासचिव हैं, तदेश सिंह स्वदेश जो है वो युवा मोर्चा में थे, जब नितिन नवीन पार्टी के युवा मोर्चा में महामंत्री थे तो स्वदेश जो है उस वक्त जो है कार्यालय मंत्री थे. तो कहीं ना कहीं कुछ पुराने लोगों को बर्दस्त किया गया है और तमाम अगर आप देखेंगे तो एक तरीके की नई टीम नई युवा जोश के साथ लाने की कोशिश की गई है. और यही कारण है कि इस टीम को काफी लंबे समय से इसको लेकर विचार मंथन चल रहा था पार्टी के अंदर भी और साथ ही साथ संघ के साथ. और उसके बाद ये 8 महीने बाद जो है नितिन नवीन की नई टीम आई है. इस नई टीम के अंदर जो है चाहे वो पंजाब का रिप्रेजेंटेशन हो, बंगाल का हो, तमाम मनोज तिग्गा क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से आते हैं उनको जो है जगह मिली है पार्टी की नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में. तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो इस बार देखने को मिल रहा है.
0: जो कुछ बड़े नाम भी आप बता रहे हैं जैसे अनिल बलूनी भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको इस बार इसमें जगह नहीं मिली है, तो उनका क्या भविष्य है, उनको क्या मिलेगा अभी आगे जाके बीजेपी में?
1: देखिए, अनिल बलूनी क्योंकि पहले भी मीडिया सेल संयोजक थे, इस बार भी मीडिया सेल के संयोजक थे. और अगर आप देखें तो अमित मालवीय जो सोशल मीडिया देखते थे वो अब सोशल मीडिया नहीं देखेंगे. उनके बाद जो है छत्तीसगढ़ से एक नए महिला को लाया गया है जो सोशल मीडिया देखेंगे. उनके साथ साथ अरुण यादव हैं और जो है प्रीति गांधी है महाराष्ट्र से, वो सोशल मीडिया देखेंगे. और इसके साथ अगर आप देखें तो पीयूष गोयल उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया पार्टी के ट्रेजरर, वो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं. उनके साथ साथ जो है वो एक सह कोषाध्यक्ष भी है. और तरुण चुग जो पहले पार्टी के महासचिव थे इस बार वो कार्यालय प्रभारी है. महेंद्र पांडे पहले भी कार्यालय मंत्री थे, इस बार भी कार्यालय मंत्री है. अगर आप देखें तो विनोद तावड़े, सुनील बंसल इनको महासचिव रखा गया. उसके अलावा जो है बाकी चेंजेस किए गए. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2024 का लोकसभा चुनाव हारी थी और उनको आप जो है संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है महासचिव के तौर पर. और वो तेज तरार नेता है, जिस तरीके से वो पार्टी को डिफेंड करती है वो हम सब जानते हैं, पार्टी के पक्ष को रखती है. और जब उन्होंने साथ में मिलकर जो है वो मोर्चा खोला और विपक्ष को जवाब दिया है. आप देखिए इसके अंदर रेखा वर्मा है, वैजयंत पांडा है, वर्तमान में सांसद है, पहले भी उपाध्यक्ष थे, इस बार भी है. रेखा वर्मा इस बार भी उपाध्यक्ष.
0: दुष्यंत गौतम जिनको लेकर खास अब उत्तराखंड में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्या उनका उनका नाम है?
1: नहीं, देखिए उनको महासचिव से हटाया गया है, उनको जो है महासचिव से हटा दिया गया है. उनकी
0: ठीक है आपके पास? जी जी जी जी हिमांशु.
1: और देखिए जिस तरीके की कंट्रोवर्सी दुष्यंत गौतम के साथ आई थी पार्टी में, उसको लेकर उन्होंने जो जो भी अपना पक्ष रखना था रखा था, आप पार्टी उनसे संतुष्ट थी नहीं थी, या पार्टी में उनके महासचिव के तौर पर जो उनका कार्यकाल रहा उसकी परफॉर्मेंस से खुश थे नहीं थे, वो उस पार्टी की उम्मीदों पर उतने खरे उतरे नहीं उतरे, लेकिन इतना जरूर है कि अब वो पार्टी के महासचिव नहीं है। तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि पार्टी कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस और जो विवाद जिन विवादों से वो जुड़े रहे वो एक बड़ा कारण होगा कि जब वो महामंत्री नहीं बनाए गए।
0: अमित मालवीय का हटाया जाना, क्या हाल के समय में खासतौर सोशल मीडिया पर जो इतना कुछ हुआ, अमित क्या ये सब रहा जो अमित मालवीय के खिलाफ गया है अभी?
1: देखिए अमित मालवीय क्योंकि बहुत लंबे समय से सोशल मीडिया देख रहे थे, 2014 में भी वो सोशल मीडिया टीम में थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ी और जीती, उसके बाद लगातार जो है वो पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज रहे, और आप देखिए 2014 के बाद से लगातार वो पार्टी का सोशल मीडिया तो देख ही रहे थे, और उसके बाद इतने लंबे जिम्मेदारी के बाद उनको जो है पदमुक्त किया गया है, तो पार्टी ने उनके बारे में कुछ जरूर सोचा होगा, क्योंकि वर्तमान में वो अभी इस नई टीम के आने से पहले तक वो पश्चिम बंगाल में जो है वो पार्टी के सह प्रभारी थे।
0: कुछ और नाम भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, तीरथ सिंह रावत को भी और त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम है उत्तराखंड से, वहां भी चुनाव है अगले साल।
1: देखिए बिल्कुल बिल्कुल चुनाव भी है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको भी एडजस्टमेंट किया गया, उत्तराखंड में चुनाव है और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है उत्तराखंड में, तो इसलिए उनको भी पार्टी के अंदर जो है वो एक सम्मानजनक पद जो है वो दिया गया है, और ये पार्टी का एक नियम भी है पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है ज्यादातर जो है पार्टी वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर एडजस्ट करती है, ऐसा पहले भी हुआ है।
0: बिल्कुल आप हिमांशु बढ़े, एक बार हम लिस्ट भी जल्दी से बताए थे कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जिनको बनाया गया उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया है, इसमें तीरथ सिंह रावत है, राम माधव का नाम इसमें है, इसमें वैजयंत जय पांडा है, इसमें डी पुरंदेश्वरी है, रेखा वर्मा है, इसके साथ साथ वर्षा बेन नरेंद्र भाई दोषी है, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार है जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, मनप्रीत सिंह बादल है पंजाब से, इसमें लाल सिंह आर्या है जो कि मध्य प्रदेश से है, प्रोफेसर एम नागराजा है जो कि कर्नाटक से आते हैं, प्रोफेसर तारिक मंसूर है जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, इसके साथ साथ डॉक्टर मधुचंद्राकर भी हैं जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं, इसके साथ साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो उसमें बीएल संतोष का नाम है, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो शिव प्रकाश जो कि मुंबई से आते हैं महाराष्ट्र से, और सौदान सिंह जो कि चंडीगढ़ से हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरीज की बात करें तो इसमें विनोद तावड़े हैं महाराष्ट्र से आते हैं, सुनील बंसल है दिल्ली से हैं, बिप्लव कुमार देव त्रिपुरा से हैं, स्मृति ईरानी का नाम है, चुनाव यूपी से इस बार हार गई थी लेकिन उनको जो है नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, डॉक्टर सतीश पुनिया है, गजेंद्र पटेल है, हरीश द्विवेदी है, संजय भाटिया है, नेशनल सेक्रेटरीज की भी लिस्ट बड़ी लंबी है, इसमें कविता पाटेदार है, के सुरेंद्रन है, डॉक्टर भोला सिंह है, डॉक्टर प्रदीप वर्मा है, जगदीश ईश्वर भाई पटेल है, डॉक्टर संदीप पाठक है, ट्रेजर पीयूष गोयल है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है, किस किस का पत्ता कटा है, किस किस को मौका मिला है, इन सब के मायने क्या है, हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Neemaya, let's go.

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: पापा
5: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का
6: सब कैशलेस हो गया
5: है। ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ। तू
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
11: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
10: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with Hind, बड़े आराम से
3: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी।
5: 19 years की थी तब मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो मैंने जिम में क्रश बनाया था।
6: उसी से रिलेशनशिप था क्या?
5: यही मोटिवेशन था मेरा जिम जाने का कि
6: जब जिम जाओ आशी तो वहाँ वर्कआउट करो, वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं करना है।
5: मैं 19 साल की थी ना, फिर जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने जिम भी छोड़ दिया था। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिर्फ जॉब ही करूँ, मेडिकल स्टूडेंट थी तो डॉक्टर नहीं तो टीचर ऐसा। She was like, कैमरा के आगे क्या कर रही हो, क्या है ये, टाइम पास ही रहना चाहिए, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है वो। फिर जब मॉम ने देखा कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसमें तो।
6: You lost your mom also.
5: I lost my dad when I was in second standard, and then I lost her. तो मेरी शादी नहीं देख पाएंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान। स्मृति ईरानी, सुनील बंसल, विनोद तावड़े समेत 8 बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव। पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी। सरकार से बातचीत के लिए निकले रांची के आंदोलनकारी छात्र। राहुल ने लिखी सोरेन को चिट्ठी, कहा मांगों पर विचार करें। जेएसएससी ऑफिस पर सीआईडी का छापा, सर्टिफिकेट की होगी जांच। वंदे मातरम गाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, अल्लाह के अलावा नहीं करूंगा किसी की इबादत। 15 अगस्त की कंट्रोवर्सी के बाद सोनिया पर अमित शाह के सवाल, कहा वंदे मातरम का हुआ अपमान। 24 घंटे में सामने आ गए दिमागी नक्सल। चिदंबरम पर बीजेपी का करारा हमला। असम के सीएम हेमंता ने कहा चिदंबरम प्योर नक्सल हैं। महबूबा और केजरीवाल ने भी खुद को कहा दिमागी नक्सल। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी, सुनील बंसल, विनोद तावड़े समेत 8 लोगों को राष्ट्रीय महासचिव।

0: बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की जो तैयारी थी वहां अभी इस समय उसकी घोषणा आपसे कुछ देर पहले हो गई है और इसमें कुछ बदलाव जरूर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाले नितिन नवीन को अभी 7-8 महीने हुए और उनकी टीम का अब ऐलान हुआ है। तो इस नई टीम में महामंत्री बनाए गए हैं, इस नई टीम में कुछ लोगों को रिपीट किया गया है, नए लोगों को शामिल किया गया है और वो पूरी की पूरी टीम यहां पर अगर हम पीयूष हमारे दोनों संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अगर हम विधानसभा चुनावों को आने वाले देखें और उसके बाद लोकसभा चुनाव, उसके मद्देनजर इस टीम में आपको क्या बदलाव दिया दिखा, किसे ड्रॉप किया गया, किसे जगह मिली?
1: देखिए अगर आपको लगे कि ड्रॉप बहुत से लोगों को किया गया है, लेकिन वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष थी हैं, तीरथ सिंह रावत उनको उत्तराखंड से जिम्मेदारी दी गई है, राम माधव पहले वो अमित शाह की टीम में जनरल सेक्रेटरी होते थे लेकिन जब जेपी नड्डा की टीम बनी तो संघ में वापस गए, लेकिन उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के जब विधानसभा चुनाव हुए उनको जो है वहां सह प्रभारी बनाया गया, कश्मीर का उनको प्रभार दिया गया था जम्मू कश्मीर चुनाव में, उनको लाया गया। आंध्र प्रदेश की जो है पुरंदेश्वरी वो वहां की प्रदेश अध्यक्ष आ चुकी
0: है, नाम गायब है।
1: आप देखिए बैजंत पांडा,
0: कोई खास कारण?
1: देखिए अमित मालवीय क्योंकि पहले पूरा एक आईटी सेल होता था, देखिए खास कारण क्योंकि पार्टी ने कुछ चीजों पे विचार किया है, अब आईटी सेल की जगह जो है वो सोशल मीडिया सेल जो है वो बनाया है, दीपक मस्के है छत्तीसगढ़ से उनको लाए हैं, अरुण यादव जो है उनके सह प्रभारी के तौर पर हरियाणा से है, आलोक भट्ट है उत्तराखंड से, प्रीति गांधी है जो है महाराष्ट्र से है, तो एक नई लोगों को भी जो है मौका दिया गया और अमित मालवीय अभी तक पश्चिम बंगाल के जो है वो सह प्रभारी थे इस टीम में, अब जो नई टीम बनेगी उसमें संगठनात्मक जब प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा होगी तो देखना है कि क्या अमित मालवीय जो है वहां सह प्रभारी रहेंगे या वहां से भी उनकी छुट्टी होगी, लेकिन इतना जरूर है बहुत लंबे समय से जो है अमित मालवीय जो है वो आईटी सेल का काम देख रहे थे, पहले उन्होंने सह संयोजक के तौर पर अरविंद गुप्ता के साथ काम देखा था, उसके बाद वो लगातार संयोजक रहे और लगभग 8 साल से ज्यादा का समय जो है वो संयोजक के तौर पर रहे। अनिल बलूनी 2017 से जो है वो पार्टी के मीडिया सेल को देख रहे हैं और अभी एक बार फिर से उनको यह जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी के मीडिया सेल का उनको प्रमुख बनाया गया, लेकिन उनके जो सहयोगी के तौर पर संजय मयूख थे उनकी छुट्टी हुई है इस टीम से, उनकी जगह जो है आप देखिए तो आशीष अग्रवाल है, मध्य प्रदेश में मीडिया प्रभारी थे उनको रखा गया है, उनके साथ साथ जो है सिद्धार्थ यादव हरियाणा से है पार्टी के प्रवक्ता थे उनको लाया गया है, प्रदीप भंडारी पत्रकार थे वो पार्टी के प्रवक्ता थे उनको सह प्रभारी के तौर पर जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। आप देखिए पार्टी के महासचिवों की लिस्ट देखिए, सिर्फ विनोद तावड़े और सुनील बंसल जो पूर्व में महामंत्री थे उनको लाया गया, उनके अलावा अगर आप देखें स्मृति ईरानी वो एक नया चेहरा है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है, उनको पार्टी ने जो है इस बार महासचिव बनाया है। विप्लव देव
0: लेकिन इससे पहले जो है त्रिपुरा के मुख्य रहे हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष में एक मुसलमान का नाम आ रहा है प्रोफेसर तारिक मंसूर, आप
1: देखिए देखिए बिल्कुल ये एक पार्टी में हमेशा रहता है एक अल्पसंख्यक मोर्चा रहता है और राष्ट्रीय टीम में भी जो है मुस्लिम समाज को जो है वो जगह दी जाती है, इससे पहले जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनको भी जो है जगह दी गई थी, तो कहीं ना कहीं और एक कुटी जो है केरल से आते थे उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, इस बार नया चेहरा जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है उनको जगह दी गई है, लेकिन एक चीज आप देखिए कि बैजंत पांडा पहले भी उपाध्यक्ष थे इस बार भी उपाध्यक्ष हैं, डी पुरंदेश्वरी महासचिव रह चुकी है आंध्र प्रदेश की जो है वो प्रदेश अध्यक्ष थी उनको जगह दी गई है, गजेंद्र पटेल एक नया चेहरा जो है मध्य प्रदेश से लाया गया है महामंत्री के तौर पर, विप्लव देव का मैंने आपको बताया, उनके साथ साथ सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा के जो है प्रभारी थे सह प्रभारी थे चुनाव में विधानसभा में, उनके अलावा अगर आप देखें तो कई ऐसे बदलाव जो है वो हरीश द्विवेदी उनको अभी वर्तमान में जो है हाल फिलहाल ही उनको राजस्थान के लोकल बॉडी इलेक्शन का जो है वो प्रभारी बनाया गया था, वो सचिव थे आसाम के प्रभारी रहे हैं,
0: बिहार में सह प्रभारी के तौर पर, एक सेकंड हम पीयूष से छोटा सा रिएक्शन ले लें, आप पीयूष किस तरह को आप देखते हैं, किस तरह से सीम को आप देखते हैं और स्मृति ईरानी का महामंत्री बनना, इसे हम कैसे देखें पीयूष?
2: जी देखिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्मृति ईरानी पिछले काफी लंबे समय से इनएक्टिव थी, वो केंद्रीय मंत्री

0: तो रही, लेकिन उसके बाद कुछ कुछ राज्यों के चुनावों में जरूर वो प्रचार करती हुई नजर आई थी, लेकिन पूरी तरह से पार्टी गतिविधियों से थोड़ा उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया था, लेकिन अब वो आपको बहुत सक्रिय दिखाई देंगे। आगे आने वाले समय में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब, बल्कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो इस टीम के जिम्मे होगा। इसी के साथ साथ 2029 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये टीम कहीं ना कहीं बहुत प्रबल, नई और ऊर्जावान टीम इसमें निकल के आ रही है। उसका कारण ये क्योंकि इसमें विप्लव देव जैसे चेहरों को शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ मीडिया में भी, मीडिया संयोजक की लिस्ट में भी लोगों को बदला गया है। अरुण सिंह जो एक बड़े चेहरे थे, उनको फिलहाल यहाँ पे उनका नाम नहीं है, उनको हटा दिया गया, उनकी छुट्टी हो गई है। उनकी जगह जो है तरुण चुग और महेंद्रनाथ पांडे जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। संबित पात्रा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको नॉर्थ ईस्ट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इसी के साथ साथ कई बड़े नाम इस लिस्ट में निकल के आए हैं सईद, क्योंकि बीजेपी की टीम का इंतजार पिछले काफी लंबे समय से हो रहा था। 7 महीने हो चुके थे और अब तक का इस टीम का ऐलान नहीं हो पा रहा था। पिछले कुछ दिनों में लगातार मंथन किया पार्टी ने। मॉनसून सत्र के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने इनमें से कुछ लोगों के साथ मुलाकातें भी की थी और आज ये जो
1: एक मुलाकात की, बड़ी खबर आ गई, एक बयान आ गया नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई दी है नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और उनका बयान यहाँ पर आ गया है, ये खबर आती है। जी पीयूष, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज।
0: जी बिल्कुल सईद, मैं आपको ये बता रहा था कि पिछले 7 महीने में लगातार बैठकों का दौर चला है और इन बैठकों के दौर में मंथन हुआ है। सूत्रों ने यह दावा किया था कि लगभग हर राज्य से दो दो नामों को मांगा गया था इस सूची में से। जिन दो नामों को मांगा गया उनमें से एक नाम जो है वो इस सूची के अंदर फाइनल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवा मोर्चा में बदलाव किया गया। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में युवाओं को लेकर जिस तरह का आंदोलन हुआ, जेंजी आंदोलन हुआ, और देश भर में हम युवाओं का आंदोलन देख रहे हैं, उसमें मोर्चे को लेकर बदलाव कर दिया गया था। जिसमें सूर्य की जगह अब हिमांग जोशी जो गुजरात के वडोदरा से सांसद हैं, वो फिलहाल गुजरात के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, उनको फिलहाल अब नेशनल रिस्पांसिबिलिटी मिल गई है। इसी के साथ साथ वनिती श्रीनिवासन जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह एक नया चेहरा निकल के सामने आ गया, जो ये बता रहे हैं कि पार्टी किस तरह से पूरे नए बदलाव के साथ आगे बढ़ना चाह रही है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल जो पहले से ही महामंत्री थे, वो उनको रिपीट किया गया, लेकिन इनके साथ साथ विप्लव देव, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया वो बड़े चेहरे हैं, अभी राज्यसभा सांसद बने थे, गजेंद्र पटेल नए चेहरा, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया, इन सभी को दोबारा से जिम्मेदारी दी गई है। संजय भाटिया वही हैं जिनकी जगह पर मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव आया, तब जब लोकसभा चुनाव लड़ने की बात है हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, तब मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और संजय
1: विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं जबरदस्त, क्या इस टीम में आपको वो नजर आता है कि चुनाव के मद्देनजर ध्यान में रखा गया हो?
2: देखिए हरीश द्विवेदी, क्योंकि उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मैंने पहले भी बताया, बिहार के सह प्रभारी थे, उसके बाद असम के प्रभारी के तौर पर वो काम कर रहे हैं और अभी उनको ताजा जिम्मेदारी है। राजस्थान में जो पंचायत इलेक्शन है उसका इंचार्ज बनाया गया है, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। उससे पहले वहां से राधा मोहन दास अग्रवाल जो है वो पार्टी के महासचिव होते थे, अब हरीश द्विवेदी हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक तरीके से दायरा बढ़ा गया और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो एक पार्टी का मुस्लिम चेहरा है तारिक मंसूर, उनको भी उत्तर प्रदेश से लाया गया। इससे पहले जो उपराष्ट्रपति उपाध्यक्ष थे पार्टी के, वो थे कुटी जो केरल से आते थे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वहां से उनको जगह मिली है। उत्तर प्रदेश की रेखा वर्मा पहले भी उपाध्यक्ष थी, इस बार भी उनको उपाध्यक्ष रखा गया। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी को जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो इस बार जो दो जनरल सेक्रेटरी हैं वो उत्तर प्रदेश से है, तो एक आठ अगर जनरल सेक्रेटरी है तो दो उत्तर प्रदेश से होना एक बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उनको मद्देनजर रखते हुए ही किया गया है। और तमाम अगर आप देखें उसमें सेक्रेटरीज को भी जो पार्टी के सचिव हैं उनमें देखें तो उत्तर प्रदेश से जो है भोला सिंह दलित चेहरा है, बुलंदशहर से जो है वो चुनाव जीत कर आते हैं, 3 बार के सांसद रह चुके हैं,
1: एक संगीता यादव,
2: डॉक्टर संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी से आए थे संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी से आए उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अगर आप देखें इसके अलावा तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको उत्तर प्रदेश को जगह दी गई है। तो पार्टी ने इस चीज को बड़ा ध्यान रखते हुए एक कैलकुलेटिव मूव किया है कि पार्टी की जो नई टीम बनी है उसमें उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में वहां से लोकसभा सीटें आती हैं। और विधानसभा के चुनाव हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जो है वो चुनौतीपूर्ण भी रहने वाले हैं कि दो बार भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बना चुकी है और इस बार 2027 में जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के बहुत से चेहरों को जो है वो नई राष्ट्रीय टीम के अंदर जगह दी गई है।
1: हिमांशु विष्णुदत्त शर्मा वीडी शर्मा अध्यक्ष भी रहे हैं और उनको जगह मिली एक बार फिर से।
2: बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं
1: जी,
2: उनको जगह मिली है लेकिन सबको उम्मीद थी कि शायद वो जनरल सेक्रेटरी बने पार्टी के, क्योंकि अगर आप देखें तो एक जब पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज कर रही थी तो उस खोज में बीडी शर्मा विप्लव देव बिल्कुल स्मृति ईरानी विकास जो है विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं तमाम ऐसे लोगों पे विचार किया गया था। तो इस बार बीडी शर्मा को यहाँ जगह मिली है लेकिन महासचिव बनाया जाना था जो शायद नहीं बने। संबित पात्रा पार्टी के चेहरे रहे हैं मीडिया के अंदर प्रवक्ता हैं और कई लंबे समय से पिछले 5 सालों से जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के जो है कोऑर्डिनेटर हैं यानी कन्वेनर के तौर पे उन्होंने काम कर रहे थे। इस बार उनके साथ जो सह प्रभारी बनाए गए वो राजीव बब्बर हैं दिल्ली से हैं। दिल्ली में उनके पिताजी जो है 3 बार विधायक रहे और 2 बार राजीव बब्बर ने भी वहां से अपनी किस्मत अजमाई थी, दोनों बार चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन राष्ट्रीय टीम में उनको जगह मिली है। ऋतुराज सिन्हा पटना से आते हैं, एक बड़ा चेहरा है और उनके पिता भी जो है राज्यसभा के सांसद रहे हैं, उनको भी राष्ट्रीय टीम के अंदर जगह मिली। तो एक तरीके से कई क्षेत्रीय जातिगत सामाजिक समीकरणों को राजनीतिक लिहाज से देखते हुए जो है जगह दी गई है उसमें प्रदेशों के अनुसार भी और लीडरशिप को जो है किस तरीके से एक यंग लीडरशिप को एक युवा नेतृत्व को कैसे आगे लाया जाए उसका सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है इस नई टीम के अंदर।
1: पीयूष ये उम्मीद भी आप और हम कर रहे थे, ये बात चर्चा भी चल रही थी कि जेन ज़ी आंदोलन को देखते हुए इस टीम में कहीं ना कहीं कुछ प्रतिनिधित्व होगा, ऐसा आपको दिखाई दिया?
0: जी बिल्कुल, सबसे बड़ा बदलाव तो युवा मोर्चा के अंदर ही है। तेजस्वी सूर्या को हटाकर हिमांग जोशी को रखा गया लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर ये है हमको दर्शकों को बतानी चाहिए कि जितने भी मोर्चे हैं उन सभी मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं सबके सब मोर्चों के अध्यक्षों को बदल दिया गया है। हिमांग जोशी जो है वो अब बन गए युवा मोर्चा अध्यक्ष, इससे पहले तेजस्वी सूर्या थे। रूप कुमार चौधरी बन गई है महिला अध्यक्ष, इससे पहले वनती श्रीनिवासन जो है वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। ओबीसी मोर्चा में बदलाव हुआ है, किसान मोर्चा में भी बदलाव हुआ है और लगभग सभी माइनॉरिटी में जमाल सिद्दीकी थे वहां पर अब कुमार बासित अली आ गए। एवरेज एज की अगर हम बात करें तो पहले यह कहा जा रहा था, सूत्रों से यह दावा किया जा रहा था कि एवरेज एज इस टीम की होगी लगभग 45 से 50 तक की, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं जिनकी उम्र 50 से 60 तक के बीच में भी है। विप्लव देव हो गए लगभग 56 साल के हैं, जय पांडा की भी अच्छी खासी उम्र है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी यह युवा टीम है, ये मिक्स है, ये ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड दोनों का मिक्स है और सभी को प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया है, सभी राज्यों के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। साथ साथ बड़े बदलाव भी किए गए हैं जैसा हमने दर्शकों को बताया कि सभी मोर्चा सही है। दरअसल इन मोर्चों को जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाती है जब भी कोई कार्यक्रम होता है कि आप चुनाव में अपना काम करिए, साथ साथ पार्टी के जो इश्यूज है वो लोगों तक लेके जाए, उन सभी मोर्चों के अध्यक्षों को बदल दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ तरुण चुग को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो आप सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज है अरुण सिंह की यहाँ पर छुट्टी हो गई है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है सैयद की पीयूष गोयल जो है वो अब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होंगे,
1: लेकिन अब क्या मंत्री रहेंगे?
0: रास्ता दिखाता है हमको कहीं ना कहीं, इस चीज का इंडिकेशन है कि वही बिल्कुल पार्टी के अंदर ये संविधान है, पार्टी का संविधान है कि एक नेता के पास 2 पद नहीं हो सकते। आपको याद होगा कि लंबे समय तक जरूर जेपी नड्डा के पास स्वास्थ्य मंत्रालय रहा, वो अध्यक्ष भी बने रहे लेकिन उस वक्त मांग जरूर पार्टी के भीतर से उठ रही थी कि नया अध्यक्ष लाया जाए और हमने देखा कैसे नितिन नवीन नए अध्यक्ष बन गए। तो पीयूष गोयल जो अब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बन चुके हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, जरूर ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि कैबिनेट रिशफल जल्द होने वाला है। और जब कैबिनेट रिशफल होगा तो उसमें इसी तरह का आपको मिक्स एंड मैच दिखेगा, जिसमें ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड दोनों को एक साथ पार्टी लेकर नए चेहरों को भी जगह दे सकती है। और संभवतः इसमें जैसे पीयूष गोयल को मंत्री जो थे वहां से उठाकर संगठन में लाया गया है, हो सकता है कि जो लोग पहले संगठन में थे, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, जिनको हटा दिया गया, उनको मंत्री का पद भी दिया जाए। तो एक रीशफल की जो बात हम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। साथ साथ इसमें नए जो उपाध्यक्ष आए वो भी चौंकाने वाले नाम है, जिसमें बिप्लव देव, स्मृति ईरानी, साथ साथ इसमें आपको मनोज टिग्गा का नाम दिख रहा है। एक बड़ी बात संदीप पाठक का सैयद, जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, अभी कुछ महीनों पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन की छह के छह सांसदों ने। क्यास ये लगाया जा रहा था कि राघव चड्ढा को हो सकता है कि इस लिस्ट में जगह मिले, लेकिन राघव चड्ढा की जगह संदीप पाठक को इसमें जगह मिली है। आने वाले चुनाव में पंजाब एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, वहां से मनप्रीत बादल को जगह दी है, जो बादल परिवार से आते हैं। तो एक मैच सभी राज्यों से नाम लिए गए और उसके बाद एक नई लिस्ट नितिन नवीन की आ गई।
1: हिमांशु, एक और बहुत संगठन का महत्वपूर्ण नाम, एक शक्तिशाली नाम और संगठन और शासन में अपनी बहुत जबरदस्त पैठ पकड़ रखने वाला नाम, जिन्हें इस बार फिर से संगठन में लिया गया है, वो है बीएल संतोष। कैसे अपनी महत्ता को बनाए रखा है बीएल संतोष?
2: देखिए बीएल संतोष क्योंकि एक तो संघ से आते हैं, प्रचारक हैं, और संघ की तरफ से जो है उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है संगठन का पद, और वो लगातार जो है वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री जो है अमित शाह के जब उनका टेन्योर था तब उन्होंने सह संगठन मंत्री के तौर पे काम किया। जेपी नड्डा जब अध्यक्ष बने तो उनकी टीम में जो है कुछ समय के लिए रामलाल जो है संगठन मंत्री रहे, उसके बाद बीएल संतोष ने ये पदभार जो है संभाला। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जेपी नड्डा लगभग जो है वो 6 साल के करीब जो है वो अध्यक्ष रहे, और उसी पूरे कार्यकाल में बीएल संतोष रहे। इस बार बीएल संतोष फिर से संगठन महामंत्री हैं और उनके साथ साथ शिव प्रकाश वो ज्वाइंट यानी सह संगठन महामंत्री हैं, उनके साथ साथ जो है स्वदान सिंह लंबे समय से जो है वो संगठन मंत्री रहे हैं, लेकिन पहले उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था पार्टी का, इस बार फिर से उनको सह संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वो छत्तीसगढ़ से आते हैं, लेकिन एक चीज को आपको सही समझना होगा, पीयूष गोयल क्योंकि कोषाध्यक्ष हैं, पीयूष गोयल जो है वो पहले भी अमित शाह की टीम में भी जो है कोषाध्यक्ष रहते हुए मंत्री रहे हैं और लंबे समय तक रहे थे। तो ये पार्टी में होता है, कई बार ऐसे ट्रांजिशन होते हैं कि पार्टी को कोई जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए होता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं पीयूष गोयल उसमें बिल्कुल फिट बैठते थे। क्योंकि पीयूष गोयल जो है अगर आप देखें तो जब नितिन गडकरी बनकर आए थे अध्यक्ष, तब से जो है वो कोषाध्यक्ष थे, और वो जिम्मेदारी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की 2016 तक निभाई साथ में, और समय समय पर उन्होंने भले ही जो है कोषाध्यक्ष के तौर पर पार्टी का काम ना देखा हो, लेकिन जब भी कोई जरूरत पड़ती थी तो पार्टी के जो खर्च का हिसाब है उसको जरूर देखते रहे।
1: अच्छा हिमांशु, ये बताइए कि क्या आपको इस लिस्ट को देखने के बाद
2: ऐसे में पीयूष गोयल को अब मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो, हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, थोड़ा सा कह पाना थोड़ा मुश्किल,
1: जल्दबाजी कोई बात नहीं, लेकिन संभावनाओं पर ही हम विचार कर रहे हैं पीयूष और आपसे। लेकिन ये बताइए हिमांशु कि क्या आपको लगा कि जो एक्सपेक्टेड लिस्ट या नाम चल रहे थे वही आए हैं, या ऐसा ऐसा कोई चौंकाने वाला नाम या ऐसा कोई निर्णय अमित मालवीय को छोड़ के कुछ और दिखाई दे रहा है?
2: नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन कई नाम ऐसे थे जो चर्चाओं में चल ही रहे थे, और ये भी था कि कई नाम जो हैं वो हटाए जा सकते हैं, जिनमें राधामोहन दास अग्रवाल थे, दुष्यंत गौतम थे, क्योंकि एक विवाद उनके साथ जुड़ा रहा और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही शायद पार्टी उनसे खुश नहीं थी। और अगर आप देखें तो कई और महासचिव थे जिनको जिम्मेदारी मिल सकती थी, अरुण सिंह लंबे समय जो है वो गृहमंत्री अमित शाह जब 2014 में अध्यक्ष बने थे तो उस बीच में उनको जो है राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था, और वो जेपी नड्डा की टीम के रहते रहते महामंत्री रहे, और नितिन नवीन के ये जो 8 महीने का कार्यकाल रहा है जिसमें नई टीम की घोषणा नहीं हुई उसमें भी महामंत्री रहे। तो अरुण सिंह ने एक लंबे समय तक जो है पार्टी का महासचिव का कार्यभार देखा है। तो ऐसे कई चीजें जो है पार्टी एक्सपेरिमेंट समय समय पे करती है। जब गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्ष बनकर आए थे तो सरकार के अंदर जो है पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता चले गए थे, सरकार के अंदर मंत्री बने थे और नए चेहरों को जो है मौका दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे 2014 में तो उनकी टीम के अंदर, और फिर जेपी नड्डा जब अध्यक्ष बने 2020 में तो उनकी टीम के अंदर भी जो है नए एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, नए यूथ को लाती है और पुराने चेहरों और नए यूथ के एक जो है समन्वय बैठाने की कोशिश करती है कि एक्सपीरियंस भी हो और न्यू कमर्स भी हो, एक दूसरे के साथ मिल बैठकर अगर काम करते हैं तो सीखने का मौका मिलता है। और यही भारतीय जनता पार्टी शायद लंबे समय से करती रही है कि अटल आडवाणी की जो जोड़ी थी उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए जिसमें कई बड़े नेता जो है वो तैयार हुए, वो राज्य स्तर पर भी थे जिसमें शिवराज सिंह चौहान हो, वेंकैया नायडू हो, अनंत कुमार थे, अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज थी, प्रमोद महाजन थे, गोपीनाथ मुंडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये ऐसे तमाम चेहरे थे, कल्याण सिंह, ये वो चेहरे थे जो एक सेकंड लीडरशिप के तौर पे पार्टी के अंदर खड़े हुए थे। और फिर जो है अगर आप देखें उसके बाद थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन जो है वो आई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बहुत भली भांति जानती है, समझती है और इसीलिए नए चेहरों को जो है वो पार्टी की नई टीम में लाकर जगह दी है। स्वदेश सिंह पार्टी के युवा मोर्चा में जो है वो पार्टी कार्यालय मंत्री थे जब नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री थे, इस बार उनको जो है पार्टी के अंदर एक बड़ा दायित्व दिया गया है, सचिव बनाया गया पार्टी का। तो इस तरीके की चीजों को अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जगह मिली है। आप देखिए मीडिया सेल को ही अगर आप देखें तो अनिल बलूनी जो है 2017 से लगातार जो है वो मीडिया सेल के प्रमुख है, लेकिन उनकी टीम में कई बदलाव जो है होते दिखे। संजय मयूख को हटाया गया तो आशीष अग्रवाल को लाया गया मध्य प्रदेश से, दिल्ली में उनके सहयोगी थे प्रदीप भंडारी उनको सह प्रभारी बनाया गया, सिद्धार्थ यादव उनको जो है सह प्रभारी मीडिया सेल का संयोजक बनाया गया। सिद्धार्थ यादव जो है उनकी माता जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी थी, सुधा यादव, तो एक तरीके से सिद्धार्थ जो है आप पार्टी के सह संयोजक हैं मीडिया सेल के। आप महिला मोर्चा में देखिए नए बदलाव हैं। उत्तर प्रदेश के अगर आप देखें तो ओबीसी मोर्चा का जो अध्यक्ष है वो खुद जो है पार्टी के अंदर वहां से लाया गया, उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए। आप देखिए दिल्ली के अंदर जो है जयप्रकाश पार्टी के वहां महामंत्री थे, इस बार उनको पार्टी का सचिव बनाया गया, उनका नाम चल रहा था पार्टी अध्यक्ष के दिल्ली के तौर पर, तो उनको यहां एडजस्ट किया गया। तो पार्टी ने कई, और वो गुर्जर समाज से आते हैं, तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा है पार्टी ने। और पार्टी की हमेशा कोशिश रहती है कि जातिगत राजनीतिक सामाजिक समीकरणों को साधते हुए जो है वो अपनी नई टीम बनाए और ये संदेश दे जिसमें सभी राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व जो है वो उस राष्ट्रीय टीम में दिखना चाहिए। और जो दिख रहा है जैसा अभी पीयूष भी बता रहे थे कि मनदीप बादल जो है मनप्रीत बादल उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। मनप्रीत बादल जो है वो अकाली दल में थे, अकाली दल से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से जो है वो भारतीय जनता पार्टी आए और अब पार्टी के उपाध्यक्ष हैं क्योंकि पंजाब में चुनाव है। तो इस तरीके से चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए कई निर्णय जो है वो किए गए हैं, कई लोगों को एडजस्ट किया गया है।
1: बहुत धन्यवाद हिमांशु। पीयूष मिश्रा और हिमांशु मिश्रा हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए वहां से 8 लोगों को शामिल किया गया है, कुछ को ड्रॉप किया गया, कुछ नए चेहरों की एंट्री। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का,
6: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
5: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
7: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
8: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है,
9: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
10: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है लड़के सबको।
5: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
1: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
0: नहीं सर।
1: 12th किससे की हो?
0: 12th सर मेरा PCM से रहा।
1: कंपाउंड क्या होता है?
0: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
1: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
0: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
1: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कंसल विनोद तावड़े समेत 8 लोग बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी। सरकार से बातचीत के लिए निकले रांची में आंदोलनकारी छात्र, राहुल गांधी ने लिखी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी, कहा मांगों पर विचार करें। जीएसएससी ऑफिस पर सीआईडी का छापा, सर्टिफिकेट की होगी जांच।

0: वंदे मातरम पर रार, कांग्रेस बीजेपी में आर पार।
1: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
0: दिमागी नक्सल पर भी छिड़ा दंगल। बीजेपी का आरोप, बीच में रुकवाया राष्ट्रगीत। राहुल के कथित ऑडियो से नया बवाल।
2: हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं, हमारे सेवा दल गाता है।
3: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया।
4: 1904 से कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जा रहा है। 1904 से इन्हें अब प्यार हुआ है वंदे मातरम से।
0: सफाई में कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान। दिल्ली पुलिस में सोनिया राहुल के खिलाफ शिकायत से वहां घमासान। एफआईआर की मांग, नए कानून में 3 साल सजा का प्रावधान।
5: नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय एक नया रण छिड़ा हुआ है। ये जो रण छिड़ा है ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दिमागी नक्सल से लेकर 150वें वर्ष में वंदे मातरम क्या कांग्रेस ने पूरा गाना गाने से रोका? सोनिया गांधी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक और शिकायत दर्ज की गई है, शिकायत कर दी गई है। शिकायत 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को कथित तौर पर बीच में रोके जाने की कोशिश के खिलाफ यह शिकायत की गई है। इस शिकायत में मांग की गई है कि पुलिस राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम कानून 2026 के लागू होने और उसकी कानूनी स्थिति का पता लगाए और उसके बाद कांग्रेस के इन दो बड़े नेताओं पर यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कथित व्यवहार की निष्पक्ष और तय समय में जांच करे। यह शिकायत कल यानी 16 अगस्त को दिल्ली पुलिस के संबंधित थाने के SHO के पास वकील कुणाल विनायक और शुभ शर्मा ने दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने वहां मौजूद कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसे इशारे किए, कुछ ऐसी बातचीत की जिससे शिकायतकर्ता के अनुसार ये संकेत उन्हें लगता है ऐसा मिला कि लोगों को वंदे मातरम गाए जाने पर आपत्ति जताई। इसमें आरोपों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से प्रसारित कुछ वीडियो फुटेज और मीडिया रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है। शिकायत में एक कथित वीडियो फुटेज का भी जिक्र है जिसमें आरोप यह लगाया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रगीत गाए जाने के दौरान कुछ इस तरह के शब्द कहे कि हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। शिकायत के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कथित इशारों और व्यवहार के पीछे असल प्रकृति, मंशा और मकसद की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा कराई जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि नए कानून की धारा 3 में उस व्यक्ति के लिए 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है जो जानबूझकर राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत को गाने से रोकता है या ऐसे गायन में सभा में बाधा डालता है। शिकायत में मुख्य रूप से यह मांग की गई है कि कानूनी स्थिति की जांच करने के बाद लागू होने वाले कानूनों के तहत FIR दर्ज किया जाए और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी के कथित आचरण की निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से जांच की जाए। इसमें कानून के अनुसार जिम्मेदार पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनन उचित कार्रवाई करने और शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में पुलिस से जानकारी देने की मांग की गई है। सबसे पहले शिकायतकर्ता शुभम का हम आपको वो भी बयान सुनवाते हैं। शुभम सुप्रीम कोर्ट में वकील भी है, सुनिए।
6: हो चुका था, इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका था और अब ये इन्फोर्सेबल है और वंदे मातरम को अब वही शक्ति है जो हमारे नेशनल एंथम को है। तो अब ये कानून उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है और हर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे कानून के अंदर भी कहा गया है, एनी पर्सन हु इंटेंशनली प्रिवेंट्स द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग और कॉजेस डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली एंगेज इन सच सिंगिंग शेल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और बोथ। तो ये एनी पर्सन सर, वो सोनिया गांधी जी के लिए भी एप्लीकेबल है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी एप्लीकेबल है और हर भारतीय के लिए एप्लीकेबल है। और इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी की बात भी बाद में आती है, पहले बात आती है कि आपके अंदर एक सम्मान होना चाहिए। आप एक बहुत बड़े पद पर हैं, आप एक बहुत बड़ी पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं, आपका हर एक एक्शन कितने हजारों करोड़ों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अगर आप वंदे मातरम का खुलेआम ऐसे विरोध करेंगे, ऐसे जेस्चर करेंगे जिसको रोकने का प्रयास करेंगी, तो वो तो सर देश सहन नहीं कर पाएगा।
5: और इस बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इमरान मसूद ने कहा है कि मैंने वंदे मातरम पहले भी नहीं गाया था और अब भी नहीं गाऊंगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवाय मैं किसी की वंदना या इबादत नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो वंदे मातरम का सम्मान करेंगे और उसके गायन के दौरान खड़े हो जाएंगे। सुनिए कांग्रेस के मुख्यालय पर हुए विवाद के बीच उन्होंने क्या कहा।
7: भैया आप पढ़ो ना, मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना। मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं?
8: तो आप वंदे मातरम नहीं गाए?
7: नहीं, मैंने पहले भी गाई, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
5: अच्छा, अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। ये वीडियो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के दफ्तर में झंडा फहराने के दौरान गाए जा रहे वंदे मातरम का है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम बीच में ही रोकने को कहा। कांग्रेस इस बात से इनकार कर चुकी है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी को पूरा वंदे मातरम गाने पर आपत्ति थी। बीजेपी का यह भी आरोप है कि राहुल गांधी ने भी वंदे मातरम को बीच में रोकने के लिए इशारा किया। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि यह राष्ट्रगीत का अपमान है। कांग्रेस नेता सावधान मुद्रा में नहीं थे, वो हिलते डुलते आपस में बातचीत कर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज इस घटना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला, सुनिए।
9: जिसको संपूर्ण वंदे मातरम गाते समय जो लोग असहज हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, बतियाने लगते हैं, हाथ पांव झटकने लगते हैं, वो लोग वही हैं जिनको उन चीजों में बड़ा सहजता महसूस होती है कि कोई कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सर तन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है।
5: और एक के बाद एक वार पलटवार चल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की सफाई यह है कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी लाने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो काफी देर से खड़े थे और थक गए थे। लेकिन बीजेपी ने एक और वीडियो जारी, इस सफाई को खारिज किया। बीजेपी ने जो दूसरा वीडियो जारी किया उसमें यह दावा किया कि राहुल गांधी ये कहते, बीजेपी के मुताबिक ये कहते सुने जा रहे हैं कि हमें गाने की जरूरत नहीं, हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, ये वंदे मातरम का हमारा वर्जन है, या कथित तौर पर इस तरह की शब्दावली का उपयोग। ये वीडियो बीजेपी ने सबटाइटल्स के साथ पोस्ट किया और दावा किया कि राहुल गांधी का ऑडियो कैमरा माइक में बकायदा कैद हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के इन दावों को सिरे से खारिज किया और कहा वीडियो क्लिप या तो फेक है या फिर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है और दरअसल ये साजिश है असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ये उसकी चाल है। लेकिन इस विवाद को खुद कांग्रेस अलग अलग बयान देकर पिछले 2 दिनों से तूल दे रही है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कैसे कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि दरअसल सोनिया गांधी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी, लेकिन ससाराम से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार ने माना कि राष्ट्रगीत रुकवाने की कोशिश तो हुई, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस नहीं रुकी और उन्होंने रोकने के बावजूद पूरा गाना गाया। जो अलग अलग बयान आ रहे हैं हम आपको वो भी सुनवाते हैं।
10: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
11: बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया। जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
5: तो सुना आपने, कह रहे हैं कि कोई नेता रोकना चाह रही थी लेकिन उसके बावजूद हमने पूरा गाना गाया। कांग्रेस अपनी ही सफाई में विरोधाभास में घिर रही है। इस विवाद की जड़ें दरअसल केवल इन्हीं बयानों तक सीमित नहीं है बल्कि ये हाल में संसद में पास हुए नए सख्त कानून से जुड़ी है जिसके तहत राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के सम्मान दर्जा दिया गया है और इसमें रुकावट डालने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। आखिर क्या है 15 अगस्त की घटना का पूरा सच? क्या कहता है 2026 का नया कानून और किस आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर FIR की मांग के लिए बार बार शिकायतें अलग अलग जगह की जा रही हैं? आइए अब हम आपको विस्तार से परत दर परत इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अब बड़े स्क्रीन पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अब हम आपको यहां पर यह दिखा रहे हैं कि 15 अगस्त 2026 को कांग्रेस के मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान कुछ इशारों पर विवाद शुरू हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए 15 अगस्त की घटना है, क्या है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत रोकने की कोशिश की, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी ने कुछ तस्वीरें भी यहां पर साझा की हैं, वीडियो जारी किए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रगीत को बीच में रोकने की कोशिश की। कांग्रेस का कहना है सोनिया गांधी केवल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही थी। यह विवाद तब हुआ जब पिछले मॉनसून सत्र में संसद में राष्ट्र सम्मान के अपमान की रोकथाम के लिए एक नया कानून लाया गया और पास किया गया। पुराने कानून में राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान को जो सम्मान का दर्जा मिला हुआ है उसके अपमान की जो सजा थी, अब धारा 3 में परिवर्तन किया गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी अब वही दर्जा दिया गया है। धारा 3 में जो बदलाव था उसमें वंदे मातरम को शामिल किया गया है। जानबूझकर वंदे मातरम या गायन को रोकने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और ये गृह मंत्रालय का निर्देश है कि औपचारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम सिर्फ पहले 2 नहीं सभी 6 छंद गाए जाएंगे। अगर किसी कार्यक्रम में दोनों का आयोजन है तो पहले राष्ट्रगान होगा और फिर राष्ट्रगीत का गायन होगा। गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रगीत के दौरान उसे सम्मान देते हुए जो सावधान मुद्रा में खड़े रहना है अनिवार्य, यही दर्जा अब वंदे मातरम को भी दिया गया है। अच्छा, जैसे ही कांग्रेस हेडक्वार्टर में यह घटना घटी और ये जो तस्वीरें वायरल हुई जिसमें सोनिया गांधी, जैसा आप उस तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ इशारा करती नजर आ रही हैं, वैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के नेतृत्व पर जोरदार हमला बोल दिया और इतिहास का जिक्र भी किया। सुनिए,
12: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता।
5: इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार किया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस से बिल्कुल पहले सुरक्षा एजेंसियों का एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन हुआ है। 14 राज्यों में एक साथ बड़ी कार्रवाई की गई और 253 लोग हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल ये जो शहजाद भट्टी नेटवर्क है SBN, इसके बारे में मैं आपको अभी विस्तार से बताता हूं। ये जो शख्स है जिसकी तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ISI का समर्थित एक बहुत बड़ा चेहरा SBN यानी शहजाद भट्टी नेटवर्क, इसके खिलाफ 80 से ज्यादा FIR है। अब खबर यह है कि 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं। 12 अगस्त को रियल टाइम इंटेलिजेंस के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया। उत्तर प्रदेश में 62, हरियाणा में 52 और दिल्ली में 51 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा पंजाब में 44, राजस्थान में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और एक के बाद एक रियल टाइम ऑपरेशंस इंटेलिजेंस आई क्वेश्चनिंग चल रही थी और मॉड्यूल्स का पता चल रहा था और एक के बाद एक देश भर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। महाराष्ट्र में 8, उत्तराखंड में 5 लोगों पर कार्रवाई की गई है। यही नहीं, IED इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी बारूदी सुरंग, ग्रेनेड, पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये जो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है इसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी POF की मार्किंग भी है। जासूसी के लिए इस्तेमाल किए गए CCTV कैमरे भी बरामद हुए हैं। ग्रेनेड, ID, पेट्रोल बम, टारगेटेड किलिंग से जुड़ा था ये नेटवर्क। और ताजा जानकारी के लिए जितेंद्र सिंह मेरे सहयोगी गृह मंत्रालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, विस्तार से बताइए, शहजाद भट्टी नेटवर्क जिस तरह से एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया, किस तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया?
13: बिल्कुल, शहजाद भट्टी नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार जो है अलग अलग राज्यों की जो पुलिस और इसके साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा ये एक्शन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ISI समर्थित ये शहजाद भट्टी जो नेटवर्क है ये स्वतंत्रता दिवस के पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का इसका प्लान था और ये पूरा ऑपरेशन जो है वो स्वतंत्रता दिवस के पहले जो है सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो बरामदगी हुई है जिसमें पिस्तौल, ग्रेनेड, इसके साथ साथ तमाम जो है हथियार बरामद हुए हैं वो अलग अलग राज्यों में इसमें जब ऑपरेशन चल रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस का उस दौरान इसको बरामद किया गया है। सबसे बड़ी जानकारी जो इसमें निकल करके आ रही है कि 14 राज्यों में ये पूरा ऑपरेशन किया गया और उस दौरान जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने कई जगहों पर CCTV फुटेज को भी उन्होंने मार्क किया और वहां पर देखा कि किस तरीके से इसके जरिए जो है ISI समर्थित जो ये शहजाद भट्टी नेटवर्क है वो लगातार सर्विलांस भी कर रहा था और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर उसके द्वारा नजर रखी जा रही थी। यही नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ग्रेनेड बरामद किए हैं उसमें पाकिस्तान मार्का लगा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान जो है सीधे तौर पर इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है और सुरक्षा बलों ने इसका खुलासा किया है।
5: जो नए CCTV कैमरों का इस्तेमाल ये जो शहजाद भट्टी नेटवर्क कर रहा था जितेंद्र, रेलवे स्टेशन पर, रेलवे ट्रैक पर, मिलिट्री स्टेशन के आसपास, कि ये रियल टाइम पाकिस्तान को बता रहे थे कि कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, कौन कौन सी गाड़ियां निकल रही हैं, कौन सा मिलिट्री कॉन्वॉय निकल रहा है, कहां जा रहा है, ये तो बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों को दे रहे थे CCTV कैमरा और उस चिप के जरिए।
13: बिल्कुल, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है और इसी वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से इस पर नजर रख रही थी। और जो CCTV कैमरा बरामद हुए हैं उसमें जानकारी ये मिली है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है उनको मिल रहा था मोबाइल।
5: जी जितेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, ये बड़ी बात इस समय अमित शाह गृहमंत्री ने भी ये की है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक आईएसआई बैक टेरर ग्रुप को शहजाद भट्टी नेटवर्क को स्वतंत्रता दिवस से बिल्कुल पहले डिस्ट्रॉय किया है। अच्छा एक और महत्वपूर्ण खबर, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सलियों को पहचानने और समाज में उन्हें अलग थलग करने की जरूरत बताई, तो एक नई जंग की शुरुआत हो गई और इस जंग में सबसे आगे खड़े नजर आए पूर्व गृह और वित्त मंत्री कांग्रेस सरकार में पी चिदंबरम। चिदंबरम ने कहा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। आखिर एक पूर्व गृह मंत्री, खासतौर पर उस गृह मंत्री ने जिसने नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की थी और जिनको नक्सलवाद को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी दी गई थी, हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए। उन्हीं के शासनकाल में दो बहुत बड़े हमले हुए, एक चिंतलनार ताड़मेतला के जंगलों में जहां 75 सीआरपीएफ के लोग मारे गए और 2013 में जहां छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मारे गए। बीजेपी सरकार ने अगर नक्सलवाद का खात्मा करने का प्रयास किया, उसे खत्म किया, तो वो कह रहे हैं कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और बीजेपी पूरी कांग्रेस पार्टी को इस पर क्यों घेर रही है, देखिए ये रिपोर्ट।
1: इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
14: मौका था 15 अगस्त पर देश के नाम संबोधन का, जगह थी लाल किले की प्राचीर। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य के लक्ष्य बताए तो नए खतरे से आगाह भी किया। पहली बार पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल के बढ़ते खतरे की तरफ देश का ध्यान खींचा। एक बार फिर सुनिए पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा।
1: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
14: जाहिर है पीएम मोदी ने अपने दिमाग से नक्सलवादी विचारधारा को खाद पानी देने वालों पर हमला बोला और इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम खुलकर सामने आए। चिदंबरम ने एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदंबरम यही नहीं रुके, कुछ घंटे बाद एक्स पर उन्होंने लिखा, दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक नया रूप है। अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था, ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उन्हीं अपशब्दों का एक नया रूप है। चिदंबरम के इस बयान पर बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए। दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, देश के तमाम शहरों से चिदंबरम पर चौतरफा हमला शुरू हो गया।
15: और जेएनयू में कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया था स्वागत की उत्ता थी। चिदंबरम साहब आप देश के अप्रिय मंत्री हैं, रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई एडवोकेट है, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा बताते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है, उसी का चेहरा बने हैं पीटर चिदंबरम।
16: पुली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर जो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
14: वार पलटवार के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पी चिदंबरम के बयान पर आपत्ति जताई। एक्स पर उन्होंने लिखा, भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सल हैं, सिर्फ वो लोग ही दिमागी नक्सल हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं। चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। रिजिजू ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया तो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 370 के समर्थन में आगे आ गईं। महबूबा ने एक्स पर लिखा, मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं। मैं एक दिमागी नक्सल हूं।
17: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
14: पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल पर हमला कर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां आने वाले दिनों में वार पलटवार का लंबा सिलसिला दिख सकता है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
5: तो हथियारों के साथ जो नक्सल थे उन पर तो 31 मार्च 2026 को गृह मंत्रालय और गृह मंत्री की अध्यक्षता में विजय पाली गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है दिमागी नक्सलों का, और ये संभवतः एक लंबी लड़ाई है जिस पर लगातार रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

यानी सुनील बंसल, विनोद तावड़े समेत 8 लोग बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव। पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम को दी बधाई। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी ने चला बड़ा दांव। नितिन नवीन की टीम में उत्तर प्रदेश को मिला बड़ा हिस्सा। 8 चेहरों को मिली केंद्रीय संगठन में जगह। राजस्थान गुजरात से 4-4 चेहरे। सरकार से बातचीत के लिए रांची के आंदोलनकारी निकले। राहुल गांधी ने लिखी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी, कहा मांगों पर विचार करें। जेएसएससी ऑफिस पर सीआईडी का छापा, सर्टिफिकेट्स की होगी जांच। वंदे मातरम गाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, अल्लाह के अलावा नहीं करूंगा किसी की इबादत। 15 अगस्त की कंट्रोवर्सी के बाद सोनिया गांधी पर अमित शाह के सवाल, कहा वंदे मातरम का अपमान क्यों हुआ। मोदी सरकार का बड़ा प्रहार, 14 राज्यों में आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क ध्वस्त, 200 से ज्यादा गिरफ्तार। गृहमंत्री अमित शाह बोले, सीमा पार आतंक पर जीरो टॉलरेंस।

फिर आमने सामने अमेरिका और ईरान। हुर्मुज में फिर भयंकर घमासान। कोरियाई देशों के बीच फंस गए ट्रंप। हथियारों की होड़ तेज करना चाहते हैं ट्रंप। महंगाई से अमेरिका परेशान, ट्रंप का मुश्किल इम्तिहान। इतनी तेजी से क्यों बदल रही है अमेरिका की कूटनीति, सैन्य नीति और अर्थनीति? आखिर क्यों हर दूसरे दिन बदल रहे हैं ट्रंप के दोस्त और दुश्मन?

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि। मैं हूं गौरव सावंत। रणभूमि में इस समय हम बात करेंगे उस युद्ध भूमि की और युद्ध भूमि के उन पहलुओं की जो साफ साफ ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि जून में अमेरिका और ईरान के बीच जो एमओयू है उसकी मियाद, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हुई थी, जो अंडरटेकिंग दी गई उसकी मियाद आज खत्म हो रही है। यानी दो महीने के दौरान दोनों देशों के बीच जो डील होने की उम्मीद थी उस पर कोई सहमति नहीं बनती नजर आ रही है, बल्कि युद्ध विराम के दौरान एक दूसरे के ठिकानों पर जबरदस्त हमले जरूर होते गए। इस बीच ईरान ने तो अब ऐलान कर दिया है कि युद्ध ईरान जीत गया और अमेरिका हार गया। इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आपको शो में और तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बयान इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा है। दो दिन पहले ही उन्होंने कहा कि होर्मुज को जल्द ही अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान भी कर दिया। अब उन्होंने मक्का समझौते की तारीफ कर दी है जिसमें आर्थिक मायने भी कई निकाले जा रहे हैं और सामरिक भी। सतही तौर पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का यह जो बयान है ये संभवतः इस क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने वाला लगता है, लेकिन मुस्लिम देशों का ये जो गठबंधन है और खासतौर पर तीन सुन्नी मुस्लिम देशों का जो गठबंधन है, आने वाले दिनों में क्या इससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिलेगा, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। हम आपको कई दिलचस्प आंकड़े भी दिखाएंगे और उनकी मदद से हथियारों की इस होड़ के बारे में कि अमेरिका अपने हथियार और बेचना चाहता है इसके बारे में बताएंगे। इधर कुर्दिस्तान के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि ईरान ने ड्रोन के जरिए उनके दफ्तर पर हमला कर दिया है और बहुत नुकसान कुर्दिस्तान में उनके दफ्तर में पहुंचा है। सोचिए, एक प्रधानमंत्री के दफ्तर पर हमला हो रहा है कुर्दिस्तान में। लेकिन सबसे पहले आपको पाकिस्तान की एक हकीकत और जो पाकिस्तान की जमीनी स्थिति जो बयां करती है वो खबर दिखाते हैं। उस पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में भीख मांगकर अपना काम चला रहा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या फिर खाड़ी के देश, कर्ज के नीचे दबे पाकिस्तान ने अब उन भिखारियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है जो पाकिस्तान से निकलकर अलग अलग देशों में भीख मांगकर अपना गुजारा चलाते हैं। जी हाँ, सऊदी अरब में पाकिस्तानी दूतावास ने एक वीडियो संदेश में उमरा यात्रियों और सऊदी अरब आने वाले कामगारों से कहा है कि वो भीख मांगने या इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल न हो। सोचिए, पाकिस्तान का दूतावास कह रहा है कि भाई पाकिस्तानियों भीख मत मांगना सऊदी अरब में। दूतावास ने साफ किया है कि सऊदी अरब में भीख मांगना कानूनी अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर सऊदी अधिकारियों की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूतावास के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से भीख मांगने पर गिरफ्तारी हो सकती है, देश से निकाले जा सकते हैं और भविष्य में सऊदी अरब में दोबारा प्रवेश पर स्थायी रोक जैसी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए पाकिस्तानी सऊदी अरब में जाकर भीख ना मांगे। सऊदी गृह मंत्रालय भी भीख मांगने को लेकर प्रतिबंधित उसको भीख मांगने को कर चुका है और विदेशी नागरिकों को सजा पूरी होने के बाद देश से बाहर भेजे जाने की बात औपचारिक तौर पर कर चुका है। चलिए एक बार आपको यह एडवाइजरी पहले हम सुना भी देते हैं कि क्या कहा जा रहा है पाकिस्तानियों को उन्हीं की सरकार द्वारा कि भीख न मांगे।
1: पाकिस्तान से आने वाले तमाम उमरा जायरीन और वर्कर्स से अहम गुजारिश, सऊदी अरब में भीख मांगना या इस तरह की किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस होना कानूनन जुर्म है। खिलाफवर्जी की सूरत में सऊदी इदारों की जानिब से गिरफ्तारी, मुल्कबदरी और सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी समेत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर हरमैन में अपनी जानिब से व्हील चेयर सर्विस फराहम करना, बाल

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर। मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
2: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
1: नहीं सर।
2: 12th किससे की हो?
1: 12th सर मेरा PCM से रहा।
2: कंपाउंड क्या होता
1: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
2: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
1: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
2: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है, उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया है, कोई बीड से आया है, कोई लातूर से आया है, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे?

नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल, विनोद तावड़े समेत 8 लोग बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव। पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी, पीएम मोदी ने दी बधाई।

0: यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला बड़ा दांव। नितिन नवीन की टीम में उत्तर प्रदेश को मिला बड़ा हिस्सा। 8 चेहरों को मिली केंद्रीय संगठन में जगह। राजस्थान गुजरात से 4-4 चेहरे। सरकार से बातचीत के लिए निकले रांची के आंदोलनकारी छात्र। राहुल ने लिखी सीएम सोरेन को चिट्ठी, कहा मांगों पर विचार करें। जेएसएससी ऑफिस पर सीआईडी का छापा, सर्टिफिकेट की होंगी जांच। वंदे मातरम गाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, अल्लाह के अलावा नहीं करूंगा किसी की इबादत। 15 अगस्त की कंट्रोवर्सी के बाद सोनिया पर शाह के सवाल, कहा वंदे मातरम का अपमान हुआ। मोदी सरकार का बड़ा प्रहार, 14 राज्यों में आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क ध्वस्त, 200 से ज्यादा गिरफ्तार। गृहमंत्री अमित शाह बोले, सीमा पार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल पीएम मोदी के भाषण को लेकर चल रही राजनीति पर है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए दिमागी नक्सल वर्ग से सावधान रहने की नसीहत दी थी। पीएम ने खासकर युवा पीढ़ी को ऐसे वर्ग से बचने की और बचाने की बात कही थी। इसे लेकर पहले जो जेंजी आंदोलन का चेहरा बने सीजेपी ने ऐतराज जताया और फिर अचानक पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताकर गर्व जताया। दरअसल कॉकरोच की कामयाबी ने राजनीतिक दलों को अलर्ट पर रख दिया है, लिहाजा महबूबा मुफ्ती से केजरीवाल तक सब ने खुद को दिमागी नक्सल घोषित करना शुरू कर दिया है। दिमागी नक्सली का असली नाम के अलग अलग तरह से सोशल मीडिया पर पेज भी बनाए जा रहे हैं। सत्ता विरोधी दलों और विचारधाराओं के अंदर दिमागी नक्सल बनने का एक ट्रेंड चल रहा है। उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए भी राष्ट्र के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कराने और भारत के संविधान में भरोसा नहीं रखने वाली विचारधारा का साथ दिया और अब फिर से उसी विचारधारा के समर्थन में खड़ी हो रही है। कांग्रेस माइनस बाकी विपक्ष पीएम मोदी के बयान का किस लिए विरोध कर रही है? इसलिए विरोध कर रही है कि पीएम ने वाजिब हक की मांग कर रहे नौजवानों को नक्सली और आतंकवादी क्यों कहा है? हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भारत के संविधान में भरोसा नहीं रखता, जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 का समर्थन करता है, जो चिकन नेक काटकर देश के टुकड़े करना चाहता है, दिमागी नक्सल वही है। तो फिलहाल सरकार की इस क्राइटेरिया पर सिर्फ एक राजनीतिक दल खरा उतरा है, क्योंकि वो है पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने 370 का विरोध किया है, लेकिन बाकी के विपक्षी दल खुद को क्यों दिमागी नक्सल साबित करने पर तुले हैं? इसी की पड़ताल में आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों से यह चर्चा होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
2: दिमागी नक्सल
3: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कही, लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी।
2: दिमागी नक्सली।
1: माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। हर माँ बाप को लग रहा है कि
3: पीएम मोदी का इतना कहना था कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था और उनकी प्रतिक्रिया तीखी हैरतअंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। चिदंबरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही तो कभी विपक्ष को अरबन नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। रही सही कसर पीएम के बयान के अगले हिस्से में की गई टिप्पणी ने पूरी कर दी थी, जिसमें विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल का कनेक्शन युवाओं से जोड़ दिया।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
3: दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के सौरव दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदंबरम से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
4: 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकल कर सामने आ गया।
5: प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की कि संविधान को ना मानने वाले, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीची कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
4: चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके।
3: लाल किले से दिमागी नक्सली का जिक्र करने के पीछे सरकार एक तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की कामयाबी का जिक्र करना चाहती थी तो दूसरी तरफ शहरों कस्बों में पैठ बना चुकी वामपंथी विचारधारा के खतरे को अंडरलाइन कर रही थी, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2004 में वामपंथी उग्रवाद के अर्बन पर्सपेक्टिव आवर वर्क इन अर्बन एरियाज और 2013 की स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम से दो खुफिया दस्तावेज में जो खुलासे हुए थे वो संवैधानिक हिंदुस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ब्लूप्रिंट थे। इन दस्तावेज में तीन प्लान था। पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना, दूसरा था सभी शोषित पीड़ितों को एकजुट करना और तीसरा था पीएलजीए और पीएलए के सशस्त्र विद्रोह में मदद के लिए गुप्त लोगों की घुसपैठ कराना। हालांकि पिछले 20 साल में भारत से सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन इत्तफाक है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सियासी मुद्दे वंचितों, शोषितों और युवाओं के समसामयिक मुद्दों से मेल खाते हैं और इनका समर्थन करने वालों पर सियासी हमले होते हैं। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि दिमागी नक्सली सिर्फ वही हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन की बुनियाद जिस तरह पड़ी और अप्रत्याशित रूप से हुकूमत पर जनता का दबाव बना, उसमें सरकार के दिमाग की बत्ती ने खतरे का अलार्म बजाया है कि बिना किसी राजनीतिक बुनियाद और समर्थन के अगर एक आंदोलन मंत्री के इस्तीफे को मजबूर कर सकता है तो इसके पीछे की ताकत मामूली नहीं। और सरकार को आशंका है कि वर्षों से रोडमैप बनाकर काम कर रही वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ऐसे आंदोलनों के पीछे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: तो अर्बन नक्सल से अब दिमागी नक्सल, एक नया डिबेट शुरू हो चुका है। अर्बन नक्सल टर्म तो कांग्रेस के जमाने में भी इस्तेमाल किया गया था, उन सरकारों ने भी अर्बन नक्सल पर काम करने की कोशिश की थी, कार्रवाई करने की कोशिश की थी। लेकिन अब अर्बन नक्सल से जब दिमागी नक्सल की बात होती है तब कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की परिभाषा में जो दिमागी नक्सल है उसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल है। तो आखिरकार कौन है ये दिमागी नक्सल और क्यों विपक्षी पार्टियां अपने आप को दिमागी नक्सल कहने की कोशिश कर रही है, तमाम चर्चा होंगी। हमारे साथ प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस के तरफ से इस पे अपनी भूमिका रखेंगे, सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। सीजेपी ने सबसे पहले इस स्टेटमेंट पर एतराज जताया था, विनीत जिंदल पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है और लॉयर भी है, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या पीएम मोदी का दिमागी नक्सल वाला बयान जंतर मंतर के आंदोलन पर था? क्योंकि सीजेपी कह रही है कि ये विद्यार्थियों को टारगेट करने की कोशिश है और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को इन दिमागी नक्सलों से सावधान रहना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या खुद को दिमागी नक्सल बताने वाले नेता संविधान और अखंडता में भरोसा नहीं रखते? क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले को संविधान पर भरोसा और अखंडता में भरोसा के नाम से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो यह सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या सीजेपी के आंदोलन का सियासी मुनाफा कमाने के लिए नेता खुद को दिमागी नक्सल घोषित कर रहे हैं? तीन सवाल है। शुरुआत अतुल लोंडे पाटिल आप ही से करनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहल की है पी चिदंबरम, एक तरीके से होड़ लगी आप विपक्षी दलों में अभी कि हम सभी लोग दिमागी नक्सल है, जबकि आपको याद होगा कि जिस स्टेट से आप आते हैं उस महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल नाम की इस जो टर्मिनोलॉजी है उसका इजाद महाराष्ट्र के भीतर हुआ था। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार के समय ही अर्बन नक्सल पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और आज की स्थिति में पी चिदंबरम आकर आगे कहते हैं कि वो भी दिमागी नक्सल है और उसके बाद होड़ लग गई है, केजरीवाल कह रहे हैं और बाकी विपक्षी नेता भी कहने लगे, क्यों अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं?
6: ऐसा है कि इस देश में 2014 के बाद सरकार से सवाल पूछने वालों को या तो आंदोलनजीवी कहा जाता है, या तो देशद्रोही कहा जाता है, या तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, या तो अर्बन नक्सल कहा जाता है। और कल नया कुछ था नहीं, लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री विदेश नीति पर नहीं बोलते, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में बात नहीं करते। चाबहार क्यों गया, मुंडेल क्यों गया, मुंडेल अभी बांग्लादेश ने जो हमें 2015 में देने का वायदा किया था वो चाइना को दे दिया, चाइना चारों तरफ से घेर रहा है, तो विदेश नीति के बारे में बात नहीं करते। लेकिन उन्होंने जिस तरह से विभेद की राजनीति पहले से की है, ये विभेद की राजनीति का नतीजा है। और देखिए फिर एक्सप्लेनेशन देते थे, क्या कह गए, जिनका संविधान में भरोसा नहीं है वो लोग जो है वो दिमागी नक्सल है। तो पहले दिमागी नक्सल तो आरएसएस है, आरएसएस से उत्पन्न हुई बीजेपी जो है उसे भी दिमागी नक्सल कहना पड़ेगा। फिर खुद ही की तरफ चारों नहीं पांचों दसों उंगलियां खुद ही की तरफ हो गई, क्योंकि सबसे पहले इस देश में संविधान का और अखंडता का विरोध अगर किसी ने किया था तो वो बीजेपी ने किया था, आरएसएस ने किया था, उसी से उत्पन्न हुई बीजेपी और बीजेपी की वो मातृसंस्था है। तो ये एक्सप्लेनेशन देने की बात अलग है। मुझे एक बात बताइए, जब जनगणना, जातिगत जनगणना मांगी गई थी अर्बन नक्सल उन लोगों को किसने कहा था? इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। सवाल खड़े किए गए, जब किसान खड़े हो गए तो आंदोलनजीवी कहा गया, उनकी बात मान ली गई, लेकिन फिर बाद में धोखा हुआ, एमएसपी का क्या हुआ पता नहीं। अभी भी जातिगत जनगणना की बात की, फिर उन्होंने उनको अर्बन नक्सल कहा, फिर बात मान ली जातिगत जनगणना कराऊंगा, फिर से धोखा कर दिया, नहीं करा रहा है। तो जो खिलाफ में बात करेगा ये टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं सीध कर पाए, झूठ था ये। और अभी भी जो छात्रों ने आंदोलन किया था वो आंदोलन में मयंक नाम के आदमी को घुसा कर, ये उसका नाम है अभिजीत अय्यर मित्रा, उसने खुद एक्सेप्ट किया एक्स पे ये कि हाँ मैंने ये मयंक को वहां भेजा था और उसने टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है वो एक ऐसा कहा और उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं छात्र, ये कहा गया।
0: अतुल लोंडे पाटिल,
6: स्वाति भोसले, सुनो
0: जिस टर्म का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया हुआ है लाल किले से, उसका डेफिनेशन किरण रिजिजू दे रहे हैं और आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। मैं आपको जरा एक बार वो डेफिनेशन बताता हूँ, आप मुझे बताइए क्या बताइएगा कि पी चिदंबरम इस पे कहां बैठते हैं, क्योंकि पी चिदंबरम खुद ही कह रहे हैं कि वो खुद दिमागी नक्सल है, इसके लिए वो डेफिनेशन आपके सामने रखते हैं। तीन पैरामीटर रखे हुए हैं उस डेफिनेशन के लिए, जरा वो ग्राफिक्स में चलाइएगा। पहला कौन है दिमागी नक्सल? जो माओवादियों का समर्थन करता है, भारतीय संविधान को नहीं मानता है, जिसका जिक्र आपने भी किया। दूसरा, अलगाववादियों के साथ जो खड़ा होता है, यानी जो सेपरेटिस्ट है उनके साथ खड़ा होता है और अनुच्छेद 370 का समर्थन करता है, 370 हटाने का विरोध करता है, वो अर्बन नक्सल है या दिमागी नक्सल हम कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को, जो चिकन नेक है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ने वाला एक छोटा सा हिस्सा, उसे अलग काटने के लिए चिकन नेक काटना चाहते हैं, वो दिमागी नक्सल है। ये डेफिनेशन सरकार की तरफ से रखा गया है। अब किरण रिजिजू कह रहे हैं इसके लिए मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं, क्योंकि वो मंत्री है इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार की तरफ से ये डेफिनेशन रखा गया है, उसमें पी चिदंबरम कहां बैठते हैं?
6: नहीं नहीं, ऐसा है कि वैसे तो इनके नितिन नवीन से लेकर कंगना से लेकर वो एक मदन मोहन कोई है वहां के उनके बौद्धिक प्रमुख जो ज्ञान देते हैं कि किस तरह से सोचना चाहिए, उन्होंने कहा था कि गोली मार दूंगा और जो बच्चिया है वहां की जो आंदोलन कर रही है वो सामूहिक बलात्कार में आनंद लेती है, फिर बाद में अपने आप को किनारा कर देना, फिर किसी मिनिस्टर का अपने हिसाब से सारी चीजें करने का, क्या मुझे बताओ आंदोलनजीवी नहीं कहा था देश के प्रधानमंत्री ने, जातिगत जनगणना मांगने वाले को अर्बन नक्सल नहीं कहा था, और यही उन्होंने जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने मान लिया कि ये नक्सलिज्म के खिलाफ सबसे बड़ा बलिदान तो कांग्रेस ने दिया है, उसके खिलाफ सबसे बड़ा अभियान भी कांग्रेस ने चलाया 2012 से लेकर, उसके पहले भी अभियान चलते रहे हैं, सवाल उसका नहीं है। एक बात समझ लो आप, जो सवाल खड़े करेगा इस सरकार पर, वो सरकार जो है उसे या तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहेगी, उसको या तो देशद्रोही कहेगी। अब मुझे एक बात बताओ, यशवंत शिंदे हमारे महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया नांदेड़ के कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि मैं 25 साल तक प्रचारक था और बॉम्ब बनाना मालेगांव हो गया, नासिक हो गया, हैदराबाद, यहाँ के जो बॉम्ब स्पोर्ट है वो आरएसएस ने किए, इंद्रेश कुमार का उन्होंने नाम लिया और वहां मैंने वो सीखा है, मैंने सब किया है, मैं जम्मू कश्मीर में 25 साल तक प्रचारक था, ये उसने कहा है। और आज भी वो कह रहा है कि इनके ऊपर बैन लगाओ, इसका जवाब दे आरएसएस।
0: आपकी सरकार थी तब, वो उस केस का क्या हुआ था वो भी हमने देखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा था, तीन पैरामीटर्स दिए हुए हैं किरण रिजिजू ने, जल्दी से उसका जवाब दीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जी आपका जो भी उनको कहना है वो कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। कहां बैठते हैं दिमागी नक्सल में, कहां बैठते हैं यहां पर पी चिदम्बरम,
6: जब अर्बन नक्सल
0: के टर्म का इस्तेमाल जो है वो पी चिदम्बरम खुद ही कर चुके हैं।
6: सुनो ना, हम
0: तो आप कहते हैं तब अर्बन नक्सल, बीजेपी कहती है तब वो विरोधियों के बारे में कह रही है, ये कैसे हो सकता है ना, ये कुछ एक ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होनी चाहिए।
6: नहीं, ऐसा है साहिल जी, आप घुमाओ मत बात को। कब कांग्रेस के कौन से नेता ने भी विपक्षियों को कहा इस तरह की बातें, कब किसान के आंदोलन का कांग्रेस ने ऐसा किया, आंदोलन हुए नहीं है। कब जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को, ओबीसी की मांग करने वालों को अर्बन नक्सल कहा, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश का बीजेपी जो सत्ता में है वो हर वो बात विपक्ष के लिए कहता है जो नहीं कहनी चाहिए, और फिर आप हमसे सवाल पूछ रहे।
0: तो जो तीन पैरामीटर दिए हुए हैं उसमें से आप किसी को भी समर्थन नहीं करते, आप 370 हटाने का समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है 370 हटाने का, अलगाववादियों के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी है, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने वाला जो चिकन नेक है उसको काटना नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी, सही कह रहे हैं ना आप, मैं सही मान रहा हूं ना इस बात को।
6: सवाल सुनो ना, सवाल क्या होना चाहिए, बराबर है, सवाल क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ, सवाल ये होना चाहिए कि लाल किले के प्राचीर से जब अरुणाचल में चाइनीज घुस चुके हैं, वहां के एसोसिएशन ऑफ विलेजेस ने कहा है ना, ट्राइब ने कहा है, तो उसके बारे में जो है ना, ये सवाल होना चाहिए कि लोग
0: ये तीन पैरामीटर्स में तो आप नहीं है, तो आप अपने आप को क्यों दिमागी नक्सल कह रहे हैं?
6: नहीं,
0: भाई जो ये तीन पैरामीटर में है वो अपने आप को कहे दिमागी नक्सल, आप क्यों अपने आप को कह रहे
6: हैं? पश्चात बुद्धि है साहिल, ये पश्चात बुद्धि है, उन्होंने विपक्षियों को कहा, जो सवाल खड़ा करेंगे उनको ही कहा, बाद में पश्चात बुद्धि है, अपने आप को बचाने के लिए कहा है,
0: पश्चात बुद्धि
6: है, आपको बचाने के लिए कहा है।
0: जब आप पर टीका होने लग गई, टिप्पणी होने लग गई, जब विद्यार्थियों का नाम उससे जोड़ा जाने लगा, तब पश्चात बुद्धि है, कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है।
6: नहीं,
7: देखिए कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद को संरक्षण देने का कार्य किया, 13 अप्रैल 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे थे कि नक्सलवाद इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन उनके कार्यकाल में 2004 से लेकर 2014 के बीच 5000 निर्दोषों का रक्त बहाने का काम जिस नक्सलवाद ने किया, उस नक्सलवाद का समर्थन करने वाले सबसे अधिक कांग्रेसियों की हत्या नक्सलवाद में हुई, और उस हत्याकांड के बाद एक विश्वविद्यालय में उस हत्याकांड पर उत्सव मनाया गया, तो ऐसे उत्सव मनाने को अगर हम दिमागी नक्सल कह दें तो कांग्रेस को पीड़ा क्यों होती भाई? क्या कारण है कांग्रेस को पीड़ित होने का? अनुच्छेद 370 के संशोधन का विरोध करने वाले और कश्मीर को पाकिस्तान का अंग मांगने वालों को अगर हम अर्बन नक्सल कह दें तो बाकी कांग्रेस को पीड़ा होने की क्या आवश्यकता है? पाकिस्तान चिल्लाए कांग्रेस क्यों चिल्लाने लगती है? ये सवाल तो आएगा ना, ये सवाल पूछा जाए तो किसी को क्या आपत्ति है? किशन जी जो नक्सलवादियों का नेता हुआ करता था, उसने कहा था कि 2030 तक हम जो है भारत में दिल्ली को भी नक्सलियों का कब्जा हम कराकर मानेंगे, और उसके बाद भी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में नक्सलवाद को समर्थन करने वालों को भरा गया था। इसके बाद अगर हम दिमागी नक्सल की बात कर दें तो पीड़ा क्यों होने लगती है भाई? क्या कारण है पीड़ा? अभी आप जो है नक्सलवादी हत्याकांड करें, 180 जिलों पे नक्सलवाद, 2014 तक 180 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, उन 180 जिलों से नक्सलवाद को साफ कर दिया गया, उसके बाद अगर कोई पीड़ा प्रकट करे तो अगर हम उसको दिमागी नक्सल कह दें तो क्यों भाई आपको चिढ़ने की क्या आवश्यकता है? श्रीमान पी चिदम्बरम
0: शुक्ला जी, जरा दो इंसिडेंट्स बता दीजिएगा,
7: खिलाफ जब
0: आपकी बात सही है और इस बारे में सरकार की तारीफ जितनी करे उतनी कम होगी, कि
7: मेरी बात पूरी हो जाए
0: मुझे सवाल पूछने दीजिए,
7: मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप प्रश्न करेंगे।
0: आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए, मैं उसी में काउंटर सवाल पूछ लेता हूं आपको, मैं सरकार की तारीफ भी नहीं करूं क्या प्रेम शुक्ला जी? तो बता दीजिएगा, नहीं करता हूं, आप बोलिए। नहीं तो मैं तारीफ कर रहा था सरकार की, वो भी नहीं करने दे रहे आप मुझे, याद रखिएगा उसका नहीं, प्रेम शुक्ला जी ने मुझे रोक दिया है, मैं सरकार की तारीफ करने वाला था,
7: कर लीजिए रोक लीजिए पहले, यही कर
0: प्रेम शुक्ला जी, नहीं नहीं आप बोल लीजिए अभी, चलिए मैं छोड़ देता हूँ
7: पहले,
0: नहीं बोल लीजिए अभी, आप छोड़ दीजिए, आपने मुझे रोक दिया, आप छोड़ दीजिए, आप बोलिए चलिए आपकी बात खत्म कर लीजिए
7: जी। तो जो लगा हाँ लगातार जो लोग जो हैं नक्सलवाद के हिंसक तांडव पर जो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, ऐसे लोगों को अगर हम दिमागी नक्सल कह दें तो पी चिदम्बरम को चिढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसको सबसे घातक कह रहे थे, उनको उन्हीं का गृह मंत्री कहता है कि गांधीयन विद गन्स, गांधीयन गांधीवाद की कल्पना, बंदूकधारी गांधीवाद की संकल्पना जो करे अगर उसको नक्सलवाद का दिमागी नक्सल कह दें तो पीड़ा होने की आवश्यकता क्या है, ये मेरा छोटा सा प्रश्न है।
0: ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये था, मैं एक बार आपने रोक दिया फिर भी मैं तारीफ कर ही देता हूँ, नक्सलवाद जो सशस्त्र नक्सलवाद है, जो रक्तरंजित नक्सलवाद है उसको खत्म किया, इसके लिए सरकार की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि उसके वजह से एक विकास की धारा वहां पर रोक रही थी और उसके लिए कांग्रेस सरकार भी वहां पर काम कर रही थी कई लोगों के खिलाफ कांग्रेस के समय पे भी। और आप ये बात सुधांशु त्रिवेदी सही कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था, खुद शिवराज पाटिल ने इस बात का जिक्र किया था कि नक्सलवाद रेड टेरर ये सबसे बड़ी चुनौती है आज की स्थिति में, देश के भीतर जो आतंकवाद पनप रहा है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती रेड टेरर, ये इस बात का जिक्र पहले भी हो चुका है। लेकिन मुझे आपसे इस बात को समझना है कि इस नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, जिन्होंने वहां पर रक्तरंजित इतिहास रचा था, उनको खत्म करने के लिए किस विपक्षी दल के नेता ने आपके खिलाफ यहां पर बात करने की कोशिश की, अगर कुछ इंसिडेंट्स होंगे तो बताइए ताकि अतुल लोंडे पाटिल उसका जवाब दे सके, और इस बात का भी मुझे जवाब चाहिए क्योंकि इस पूरे बातचीत को विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आज आप इस टेलीविजन चैनल पर इस बात का जिक्र करेंगे कि किसी भी तरीके से विपक्षियों पर टिप्पणी नहीं है, यह टिप्पणी उन लोगों के खिलाफ है जो देश के खिलाफ काम करते हैं, यह बात साफ कर दीजिएगा जो किरण रिजिजू करना चाह रहे हैं।
7: हम साफ तौर पर देश के खिलाफ बात करने वालों के बात ही बात कर रहे हैं, लेकिन जिन जो अफजल गुरु को फांसी की सजा दी जाती है उसके बाद जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, और अफजल गुरु की फांसी जो है सर्वोच्च न्यायालय देती है, उस फांसी को कन्फर्म जो है कार्यपालिका राष्ट्रपति करते हैं जो दया याचिका से इनकार करते हैं, उसके बाद इस देश का गृहमंत्री ही कहता है कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत था, तत्कालीन गृहमंत्री कहता है, तो उसको क्या कहा जाए? न्यायपालिका और कार्यपालिका जिसको साफ तौर पर दया याचिका भी इसकी अस्वीकार होती है उसके लिए अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं ये नारा लगाने वालों को क्या कहा जाए? उनकी प्रशंसा की जाए जो कहते हैं कि हम जो है चिकन नेक तोड़ देंगे और उसके बाद शर्जिल इमाम का
0: कौन कहता है? जो लोग नाम बताइए ना, विपक्ष में से कौन कहता है?
7: गलियारे में नहीं है,
0: नहीं तो कौन कहता है?
7: अरे भाई तमाम लोग हैं, एक हो तो बताओ,
0: जयराम रमेश कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, सीजेपी के नेता कहते हैं, कौन कहता है? नाम लीजिए और उन पर कार्रवाई करिए ना।
7: सपोर्ट किया था अफजल, मैं तो पी चिदम्बरम ने
0: अफजल गुरु को फांसी कब हुई थी?
7: ये तो पी चिदम्बरम का बयान है,
0: कब हुई थी अफजल गुरु को फांसी?
7: अफजल गुरु को
0: किस समय पे अफजल गुरु को फांसी हुई थी?
7: और उसके बाद वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकाल में फांसी हुई और उसको ही कहा कि गलत हुई, उसी को पी चिदम्बरम ने कहा गलत हुई, पी चिदम्बरम का बयान है बाकायदा कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत था, ये पी चिदम्बरम का
0: बड़ी दिलचस्प बात है प्रेम शुक्ला जी,
7: जबकि
0: आज 370 के समर्थन में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है वो पीडीपी है, जिनके साथ आप सरकार बना चुके हैं वहां पर जम्मू कश्मीर में, आपको याद होगा पीडीपी सबसे पहले जो तीन पैरामीटर है उसमें एक पैरामीटर तो पीडीपी पूरा कर रही है, किसने फैसला लिया था ये सरकार बनाने का?
7: जेल भी हमने भेजा,
0: वो तो अलगाववादियों का समर्थन कर रहा था, फिर
7: उसको जेल बनाने
0: का, किसी ने सरकार बनाने का फैसला लिया पीडीपी के साथ में, वो तो समर्थन कर रहा था इस पूरे मामले का, वो भी दिमागी नक्सल घुसा हुआ है आपकी पार्टी के भीतर जो पीडीपी के साथ सरकार बनाता है, ये अगर किसी ने सवाल पूछा तो क्या गलत होगा भाई? बड़ी रैंडम व्याख्या कर देते हैं, पूरा जेनरिक व्याख्या कर देते हैं तो उसमें सभी लोग आ जाएंगे।
7: उत्तर दे देता हूँ ना,
6: जवाब देना है
7: सर, जी जी फैसला सुना रहा, मैं उत्तर दे देता हूँ, उसको सरकार भी हमने बनाया और सरकार हटाया भी, उसको जेल में बंद करके अनुच्छेद 370 का संशोधन किया, सरकार तो उसके साथ कांग्रेस ने भी बनाई थी, कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 का संशोधन क्यों नहीं कर दिया? किसने रोका था? और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 के दशक में इस देश की संसद में कह रहे थे कि धारा अनुच्छेद 370 जो है ये तात्कालिक है, टेम्पररी है। तो टेम्पररी थी 1950 के दशक में और 2014 तक आप उसमें संशोधन नहीं कर सके। किसने रोका था आपको, ये भी बताइए।
0: अतुल लोंडे पाटिल जवाब दीजिए,
7: उत्तर दीजिए।
0: आप
7: कांग्रेस के प्रवक्ता,
0: आप टोपी अपने आप पहना रहे हैं अपने आप को, कांग्रेस पार्टी वो तो कह रहे हैं आपके लिए तो बोला ही नहीं है, आप जबरदस्ती अपने आप को लगवा रहे हैं दिमागी नक्सल का टैग, आपके बारे में तो बोल ही नहीं रहे, वो तो उनके एक जमाने के सहयोगी पीडीपी के बारे में बोल रहे हैं।
6: पैदल दिमागी जो है वो ये बात नहीं भूल गए कि जब शपथ ग्रहण हो रहा था तब मुफ्ती मोहम्मद ने कहा था कि पाकिस्तान को धन्यवाद कहा था, उसके बाद भी इनकी सरकार चल रही थी, तो ये हमें ना सिखाए। ये पुलवामा में 250 मैंने बीच में बोला नहीं, साहिल इन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने शांति से सुना, मैं बीच में बोला नहीं।
7: ठीक है, मैं ऐसे शब्दों का
0: नहीं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं अतुल लोंडे पाटिल, देखिए क्या है, जरा एक दायरा बनाए रखते हैं हम लोग, एक दूसरे के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो प्रेम शुक्ला जी कम नहीं है और फिर जो शुरू हो जाएगा वो सिर्फ वायरलिटी के लिए होता रहेगा।
6: ये इन्होंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया,
0: ये सब चीज छोड़ दीजिए,
6: मुद्दे पर इन्होंने क्यों ऐसा एक्सेप्ट कर लिया,
0: छोड़िए ना अतुल लोंडे, इसी में टाइम चला जाएगा, बाकी लोग बैठे हुए, प्लीज
6: बात सुनो। पुलवामा में 250 किलो आरडीएक्स आया, सत्यपाल जी ने कुछ जो है ऑब्जेक्शन उठाए, उसका इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, वो अभी तक पता नहीं किसने लाया और किसने मार डाला। पहलगाम में मेरी 32 बहनें जो है विधवा हो गई, अभी तक पता नहीं किसने वो हमला किया। याकूब मेमन को इन्होंने छोड़ दिया, हमने जबजल गुरु को वहीं गाड़ा, कसाब को वहीं गाड़ा यरवड़ा में, वहां फांसी देके फांसी हमने दिए है, और इन्होंने याकूब मेमन को फांसी देके दे दिया बाहर दफनाओ और उसका बनने दो एक स्मारक, हिंदू मुसलमान होते रहेगा, जबकि ये प्रोटोकॉल है कि किसी भी टेररिज्म के इसमें जो अरेस्ट होता है उसको जो खांसी होती है तो उसको वही गाड़ दिया जाता है, लेकिन इन्होंने ये तोड़ा क्योंकि इनके लिए राजनीति अहम है, इसकी देश अहम नहीं है। ISI को किसने बुलाया था पठानकोट में, किसने बुलाया था, कौन बिना बुलाया, आज तक कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल में कभी गए नहीं, जबकि पहले वहां की थी। सुनो अभी NCTC की बात नहीं की मैंने, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाया था 2012 में पी चिदम्बरम साहब ने, उसको सबसे पहले विरोध करने वाले कौन थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के। ये नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर को इन्होंने इतना विरोध किया कि वो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो काम नहीं कर पाया। सुनो, 94,000 का माउंटेन कॉप्स बनाया था पूरे पहाड़ों की रक्षा करने के लिए, ये सत्ता में आए उसके लिए प्रोविजन भी कर दिया था 65,000 करोड़ का, ये इनकी सत्ता आई और उन्होंने माउंटेन कॉर्प्स को जो है वो निरस्त कर दिया। मेरे पास कितने हैं, यानी इन्होंने जो काम किए हैं, एक तो अभी जो है मांस का टुकड़ा गाय का जो है वो डालने वाली है RSS की भोसले निकली लड़की, उसको पुलिस ने पकड़ा है, तो ये हिंदू मुसलमान
0: खत्म करने का श्रेय तो अमित शाह ले रहे हैं ना, आज की स्थिति में 10 साल में नक्सली इलाके तो खत्म कर दिए, जीरो हो गए नक्सली इलाके, ये बात का श्रेय भी तो लेंगे ना वो।
6: देखो साहिल जोशी जी, उन्होंने अच्छा काम किया है, श्रेय लेने में हमें तकलीफ नहीं है। साहिल, अगर अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है, नक्सलिज्म खत्म किया है, तो उसका श्रेय लेने में हर्ज नहीं है, हम भी उनको श्रेय देंगे, लेकिन जो गलत काम हुआ है वो हम उठाएंगे तो हम आंदोलनजीवी हो जाएंगे, हम अर्बन नक्सल हो जाएंगे। मैंने उदाहरण के साथ दिया, क्या किसानों को नहीं कहा, क्या जिन्होंने जनगणना OBC जनगणना की मांग की उनको नहीं कहा। इस देश के प्रधानमंत्री है ना, खेल जाते हैं, बाइनरी में खेलते हैं, ये सामने दुश्मन खड़ा कर दो, हिंदू मुसलमान करो, आंदोलनजीवी करो, अर्बन नक्सल करो। अभी इन्होंने कहा कि छात्रों के इसमें 2873 ऐसे गंभीर आरोप के जो आरोपी जो थे वो शामिल थे।
0: छोटी सी सीमा रेखा होती है
6: साहिल, एक भी अरेस्ट
0: विरोध की और विरोध करने वालों के तरफ सरकार के रवैये की, वो सीमा रेखा लांघने के बाद कोई नक्सलवादी बन जाता है तो कभी इस बात का भी जिक्र होने लगता है कि सरकार कहीं ओवरस्टेप तो नहीं कर रही है पर्सनल लिबर्टी पर, और जो विरोध करना चाहते हैं उनको एक अलग नजरिए से तो नहीं देख रही है। इसीलिए आशुतोष, यहां पर एक चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि जो अर्बन पर्सपेक्टिव है नक्सलिज्म को लेकर, किस तरीके से नक्सलिस्ट, हाँ जी प्रेम शुक्ला जी आपके पास भी आऊंगा मैं, उसमें 3 चीजें लिखी गई थी कि किस तरीके से हम तैयार करेंगे। पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, महिलाएं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना, नंबर एक। दूसरा था सभी शोषित और पीड़ितों को एकजुट करना और इन सभी को मिलाकर फिर सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार करना। इस पे तीसरा हिस्सा नक्सलवादी बना देते हैं, लेकिन पहले दो जो हिस्से हैं वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वालों को भी कहा जा सकता है। तो ये कहां से ये डिबेट एक बार फिर शुरू हो चुकी है आज की स्थिति में, पहले ये थिन लाइन बड़ी क्लियर थी, लेकिन आज एक बार फिर वो मिक्स कैसे हो गया, एक दूसरे में जुड़ता कैसे है आज की स्थिति में? सत्ता का विरोध नक्सली कैसे हो गया?
8: साहिल एक बात देखो, इस चीज को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि मानी जाएगी वो है नक्सलवाद का खात्मा। मतलब इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये बड़ी उपलब्धि है उनकी, निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है, और ये एक अच्छी चीज हुई देश के अंदर कि कम से कम नक्सलिज्म को जिस तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही थी उस पर अंकुश लगा है, और अब उससे जुड़ना अपने आप एक अपराध है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, नक्सलिज्म से जो लड़ाई है वो आज से नहीं बल्कि पिछले 40-50 साल से लगातार चल रही है। एक जमाने में उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जाती थी, चारू मजुमदार जोड़ने की कोशिश की जाती थी, और उसको लेकर एक तरीके से क्रांति की बात की जाती थी। अब कम से कम वो माहौल पूरी तरीके से खत्म है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इसमें कुछ सरकारें, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नाकाम रही, बीजेपी भी नाकाम रही, ऐसा है नहीं। अगर आप देखेंगे कि आतंकवाद पे जो सबसे पहला नक्सलिज्म पे सबसे बड़ा क्रैकडाउन जो किया गया था वो दरअसल वाईएसआर रेड्डी के आंध्र प्रदेश पे क्रैकडाउन हुआ था, जब उन्होंने ग्रेहाउंड बनाया और उन्होंने इस कदर वहां पे अटैक किया कि वहां से नक्सली भाग के छत्तीसगढ़ के इलाके में चले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां लंबे समय तक थे, करीब 15 साल तक थी, और उस वक्त उनको जिस तरीके से टैकल करना चाहिए था उस तरीके से वो टैकल नहीं कर पाए। 2013 में जब वहां पे महेंद्र कर्मा और तमाम बड़े नंद कुमार पटेल जैसे कांग्रेस की एक पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, उस वक्त वहां बीजेपी की सरकार थी। लेकिन जो दबाव था वो दबाव धीरे धीरे नक्सलिज्म के ऊपर पड़ रहा था, और भारतीय जनता पार्टी ने आके, खासतौर पर अमित शाह ने आने के बाद जिस तरीके से प्रेशर बनाया, जिस तरीके से सिंगल माइंडेड परस्यूट के साथ परस्यू किया, उसमें आतंक इस नक्सलवाद को खत्म करने में काफी मदद मिली है। मेरा जो स्पष्ट तौर पर कहना है कि आपने जो नक्सलवाद के ऊपर जो उपलब्धि हासिल को अच्छी बात है, बड़ी बात, इतिहास आपको याद रखेगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप तो जंगलों से निकल के शहर में आ गए हैं और ये दिमागी नक्सल हो गए हैं, तब फिर आप अपनी ही उपलब्धि को नकारने का काम कर रहे हैं। भाई अगर जंगल से निकलकर अगर नक्सल अगर शहरों में चले आए हैं तो फिर आपका वो दावा बेकार हो गया जो आप जो नक्सलवाद को खत्म करने की बात करते हैं। तो ये विरोधाभास है, बात ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें असहमति के बंधुओं को दबाना है या फिर हमको विपक्ष पर हमले करने हैं, इस मानसिकता की वजह से मुझे लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया, फौरन प्रधानमंत्री के उस बयान का स्पष्टीकरण दे दिया ताकि जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा था वो कंफ्यूजन खत्म हुआ, अन्यथा ये विरोधाभास बना रहता कि जंगलों में तो नक्सलवाद खत्म हो गया लेकिन शहरों में नक्सलवाद नए सिरे से पनप गया है और अब शहरों के अंदर नक्सली दिखाई पड़ने लगे, ये मतलब था दिमागी नक्सलवाद का। अच्छा हुआ रिजिजू साहब ने आके कम से कम क्लैरिफिकेशन दिया है।
0: नहीं, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन पूरी तरीके से पहुंच पाया ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये टर्म बड़ा जेनेरिक टर्म है और हर कोई अपने अपने तरीके से इस पूरे टर्म को देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसमें बुद्धिजीवी भी आते हैं, लेखक भी आते हैं, युवा वर्ग के वो लोग भी आते हैं जो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी पॉलिसियों को कहीं ना कहीं चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके दबाव में कई जगह पर सिर्फ केंद्र सरकार नहीं तो राज्य सरकारों को भी अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं। यह एक बड़ा सुविधाजनक हो गया है किसी भी सरकार के लिए अगर किसी आंदोलन को बदनाम करना है तो, इसलिए भी इस पर सवाल उठना वाजिब कहीं ना कहीं लगता है। विनीत जिंदल जी, यह बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भी इस पूरे मामले को लेकर हमने एक आरटीआई भी फाइल किया था कि भाई सरकार के तरफ से हमें अधिकृत तौर पर बताया जाए कि अर्बन नक्सल टर्म किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, कानून के भीतर अर्बन नक्सल की टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन क्या किया गया है। महाराष्ट्र के भीतर एक जन सुरक्षा कानून पारित किया गया है महाराष्ट्र विधानसभा में, उसमें भी अल्ट्रा लेफ्ट ये कहकर उसका जिक्र किया गया, लेकिन अर्बन नक्सल का कोई भी डेफिनेशन कानून के भीतर यहां पर नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे में इस टर्म का जेनेरिक इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से और खास करके लाल किले से, उसका क्या असर लोगों तक जा सकता है, क्या लगता है आपको विनिजित?
9: देखिए साहिल भाई, मुझे लगता है कि शायद विपक्ष जो अभी जो सब चीजें चल रही हैं उसको समझ ये आता है देखने के बाद, शायद विपक्ष जो है बहुत एग्रेसिवली चाहता है सरकार को काउंटर करना, और जब काउंटर करने की बात आती है तो वो सीमाएं लांघ कर अपने आप को नक्सली, दिमागी नक्सली या इस तरीके की बातें करना शुरू कर देता है, जो मुझे लगता है कि गलत है। अगर नक्सलवाद के टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं तो उससे ही साफ हो जाता है कि आप अगर नक्सलवाद की बात करते हैं, अपने आप को नक्सली कहने की कोशिश करते हैं, दिमागी नक्सल की बात करते हैं, तो वो आप किस टर्मिनोलॉजी को रेफर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष अपने आप को इस टर्मिनोलॉजी के साथ आगे रख रहा है तो मुझे लगता है वो गलत है। आप अर्बन नक्सल की बात करें, आप दिमागी नक्सल की बात करें, इस तरीके की बात करें, मुझे लगता है कि टर्मिनोलॉजी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, समय के साथ चीजें बदली, चीजों के साथ टर्मिनोलॉजी बदली, चाहे वो कानून की किताब में आई या नहीं आई, लेकिन लोगों का माइंडसेट क्या है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं।

0: में आपको समझ आ जाएगा देख के कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सीपीजे का जो आंदोलन हुआ वो नक्सलवादी है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा विपक्ष वाले
1: विनीत
0: बोल रहे हैं
1: जिंदल जी,
0: नक्सलवादी है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये
1: सीजेपी
0: कहा।
1: हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ दास थोड़ा थोड़ा थोड़ा लेट हो गए, लेकिन उनके पास जाने से पहले विनीत जिंदल जी एक बात में समझना बहुत जरूरी है आज की स्थिति में। नक्सलवाद जो पनपा था 1960 में बंगाल के भीतर नक्सलबारी में, वो शोषितों की आवाज को बंदूक के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। दो अलग अलग रास्ते लोग चुनते हैं, एक वो रास्ता होता है जो सड़क पर उतर कर आंदोलन करते हैं और सरकार को डेमोक्रेटिक मीन से सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुद्दों को आप सुलझाइए वरना हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। दूसरा रास्ता जो गलत चुना था, जो हिंसा का रास्ता था, उस बात को नक्सलवाद को करार दिया गया और उसके खिलाफ तमाम सरकारें हमेशा काम करती रही और पुलिसिया बल का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया। लेकिन खतरा यह यहां पर यह लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने इस पूरे मामले में, किसी भी सरकार ने, सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टी के सरकार में इसके कानूनन मायने कोई बनाए नहीं है और इसीलिए वो लोग जो कामकाजी वर्ग है, विद्यार्थी है, बुद्धिजीवी है, महिलाएं हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, वो अगर आंदोलन पर उतर आए तो उन्हें इस टर्मिनोलॉजी के बहाने अगर उन पर कार्रवाई होती है तो उसका खतरा भी कहीं ना कहीं रहता है। इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष के मन में यह सवाल उठता है, क्या यह लाजमी है, क्या आपको लगता है कि यह सही होगा? और उसके बाद सौरभ दास के पास भी चलेंगे।
0: साहिल भाई मुझे आप एक बात बताइए कि अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है तो उसकी आज्ञा प्रदान की गई या नहीं की गई, क्या उसको रोका गया? लेकिन अगर आप संसद के अंदर बिना परमिशन के घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको कौन घुसने देगा भाई, ये गलत है। और आप अगर रोका गया आपको तो आप ये कहें कि हमें इस तरीके से रोका गया, अत्याचार हो गया, हमें जाने नहीं दिया गया। भाई संसद है, आप कैसे अंदर घुस जाएंगे? तो इस तरीके की चीजों को मुझे लगता है कि रोकने के बाद अगर आप ये कहें कि अरे प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला कि कुछ लोग हैं जो नक्सलवादी सोच रखते हैं और ये तो हमें रेफरेंस दे दिया, देश के पूर्व गृह मंत्री अगर इस तरीके की बात आके सोशल मीडिया पे कहते हैं और अपने आप को प्राउड फील करते हैं ये कहते हुए कि मैं तो नक्सलवादी सोच का आदमी हूं, तो मुझे लगता है बहुत गलत मैसेज है। मुझे लगता है कि संभलना चाहिए और राजनीति
2: भाई, मुझे
0: करने
2: एक्सप्लेन
0: की
2: करना इस बात को।
0: बिल्कुल बिल्कुल करने की बात है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के साथ राजनीति करनी चाहिए। और जब इतना
1: सौरभ
0: सेंसिटिव टाइम
1: दास, क्यों आपको लगा कि
0: है
1: आपके
0: देश का
1: लिए इसका
0: युवा,
1: इस्तेमाल किया जा रहा है? कहीं भी सीजेपी का इस्तेमाल के नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया था, यह कहा गया था कि आप लोग जरा इस सोच से संभल के रहिएगा।
0: बिल्कुल
1: तमाम युवा वर्ग को प्रधानमंत्री चेतावनी दे रहे थे, इशारा दे रहे थे या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनसे दूर रहिएगा सर, जो ये अलगाववादी सोच है, तो
0: मैं
1: आपको क्यों
0: इसीलिए कह
1: लगा
0: रहा
1: कि
0: हूं।
1: आपको कहा जा रहा है?
3: देखिए जो भी साहिल जी,
1: सौरभ दास
3: जो भी दिमागी लोग हैं, दिमागी लोगों को पता है कि इशारा किस तरफ था। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वो सारे बच्चे जो वहां आए थे, स्टूडेंट्स जो आए थे, क्या वो नक्सल्स हैं? अगर नक्सल्स है तो फिर हमारी सारी मांगे क्यों पूरी की गई, मतलब क्यों उसको एक्सेप्ट किया गया, क्यों रेजिग्नेशन हुआ?
1: बट बीजेपी तो कह रही है कि आपको कहा ही नहीं, आपको
3: नहीं,
1: कहा ही नहीं,
3: इसको
1: उन्होंने
3: डॉग
1: तो पूरा
3: विस्लिंग
1: डेफिनेशन
3: बोलते
1: दिया
3: हैं।
1: हुआ है।
3: दिमागी लोगों को पता है कि इसको डॉग विस्लिंग बोलते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट में, कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये तो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था, जो एक स्टेट्समैन के स्टेट्समैनशिप नैतिकता में उनको वहां पे स्पीच देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे एक पॉलिटिकल स्पीच दिया एंड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया देश के युवाओं के खिलाफ, क्योंकि देश के युवा अभी रोड पे उतरे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऐसे विफल सिस्टम के खिलाफ। तो उनका आप कंसर्न्स ना सुन के उनको एक आप टर्म दे रहे हो, उनको आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो एंड आप उनके बात अगर मान रहे हो, अल्टीमेटली मानना
1: तो
3: पड़ता है क्योंकि प्रोटेस्ट
1: आपने डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। बड़ा दिलचस्प शब्द है ये, डॉग विस्लिंग। ये शब्द का इस्तेमाल कई बार विदेशों में किया जाता है, आप डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा डिकोड करिए आप इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट, जो भाषण उनका लाल किले से हुआ है, उसे आप इस मायने में क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं? जरा डिकोड करिए, उसके बाद जिंदल विनीत जिंदल हमारे साथ में, वो उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दास
3: देखिए इस चीज पे तो हमें ज्यादा डिबेट करना ही नहीं चाहिए। कोई भी लॉजिकल इंसान, रैशनल इंसान जो है, पढ़ा लिखा युवा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये कहां से बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, उसको एनआरकी बोला जा रहा है। उन्होंने ये भी तो बोला था ना अपने स्टेटमेंट में कि एनआरकी की तरफ ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात ये है कि इशारा पूरा ये सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके तरफ हो रहा है। देखिए मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आप अगर ये प्रोटेस्ट के वजह से आप बात मान रहे हो, अगर आप रेजिग्नेशन करवा रहे हो अपने मिनिस्टर की, तो आप विफल हो ना। आप प्राइम मिनिस्टर फिर नक्सलों के बातों में आ रही है, उनको फिर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये सब टर्म्स

0: करके आप लोगों को डरा धमका नहीं सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। साहिल, आप रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे हो, स्टैंडर्ड्स हाई करिए। आप पॉलिसी के बारे में बात करिए, गवर्नेंस के बारे में बात करिए, बहुत सारे इश्यूज है। मैं अभी 3 स्कूलों का स्कूल ऑडिट करके आ रहा हूँ एंड सारे स्कूल्स खराब है दिल्ली में। तो आप बताइए,
1: उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में है? उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार कुछ लोगों को है? उड़ता हुआ तीर ले सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने? किसी छात्र आंदोलन को कहीं से भी दिमागी नक्सल नहीं कहा है? दिमागी नक्सल बिल्कुल नहीं कहा, दूर दूर तक नहीं कहा है। लेकिन अगर कोई उड़ता हुआ तीर लेना चाहे तो वो स्वच्छंद है। उड़ता हुआ तीर लेने के लिए कुछ लोग स्वच्छंद हैं, वो स्वतंत्रता से आगे स्वच्छंदता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को, किसी छात्र आंदोलन को, लेकिन बात जब जब कहीं नक्सलवादियों ने के द्वारा संहार हो और उसके बाद अगर किसी विश्वविद्यालय में उत्सव मनाया जाए तो ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा जाएगा। अब उसको सीजेपी के लोग कोई और टर्मिनोलॉजी देना चाहें, उसको डॉग व्हिसल कहना चाहें तो कह सकते हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि हम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान में हम जो है कोई जिसके लिए नहीं कहा जा रहा है वह भी अपने लिए मान ले तो उसको मानने का अधिकार हम दे देते हैं। लेकिन हमने किसी छात्र आंदोलन को, अभी झारखंड में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, कौन कह रहा है उसको कि ये नक्सल आंदोलन है? किसी ने नहीं कहा दिमागी नक्सल है, वो कोई कह ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं कह सकता। और जो सीजेपी ने जो आंदोलन किया जंतर मंतर पे उसको किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर वहां उमर खालिद के लिए नारे लगे तो जो नारे लगा रहे थे उनको अर्बन नक्सल कहते हैं।
0: आप एक बार दिखाइए जरा, कोई वीडियो है तो दिखाइए
1: जो आपके आंदोलन के चेहरे थे।
0: आप
1: हाँ है, वीडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे, भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे। सौरभ दास जी में वीडियो भेजने को
0: दिखाइए ना,
1: मैं वीडियो भेजने को तैयार हूँ।
0: टीवी में वीडियो
1: अभी तत्काल मेरे पास नहीं है, लेकिन भेजूंगा, एकदम आपको भेज
0: देता,
1: एकदम टीवी पे भेजूंगा। आप डिबेट रख लीजिए, समय निर्धारित कर दीजिए, मैं डिबेट दिखाऊंगा। वीडियो मैं वीडियो दिखाऊंगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा, समय निर्धारित करें। सही
0: दिखाइए आप,
1: समय निर्धारित करें, कहा गया है और वहां से नारे लगे पत्थर, 100 से अधिक लोग घायल हुए पुलिसकर्मी, 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए उस पर पत्थर किसने चलाया? 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए उस पर पत्थर आपने चलाया? आपने पत्थर चलाया क्या? हाँ दिखाऊंगा मैं वीडियो,
2: ठीक है,
1: मैं वीडियो भेज दूंगा।
2: जरा एक और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सौरभ भाई, प्रेम शुक्ला, ये वीडियो वाले डिबेट हम किसी और दिन कर लेंगे। सौरभ एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन। एक जरा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। मैं ये मानकर चलता हूँ कि जब प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण करते हैं तब उस वक्त जो घटनाएं इस देश में हो रही होगी उसका जिक्र किसी ना किसी तरीके से उनकी उनके भाषण में आती है। जैसे पिछले साल उन्होंने भाषण किया था तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर का उसमें जिक्र किया गया था और उसके बाद साथ साथ आतंकवाद का भी जिक्र हुआ था। इस साल जब वो लाल किले से भाषण कर रहे थे तब युवाओं के लिए AI ट्रेनिंग की उन्होंने बात की और उसके साथ साथ युवाओं को चेताने की कोशिश की कि दिमागी नक्सलों से दूर रहिएगा। तो प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए सवाल उठता है कि आज अचानक अगर प्रधानमंत्री युवाओं को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिमागी नक्सलों से दूर रहिए तो उसका सीधा संदर्भ यह झारखंड का आंदोलन, जो छात्रों का आंदोलन था, जो युवाओं का आंदोलन था, जंतर मंतर का आंदोलन जिनके साथ में सरकार ने भी एंगेज किया, उस आंदोलन से भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा, उसका संदर्भ वहां पर देखा जाएगा और इसीलिए यह सवाल उठता है प्रेम शुक्ला
1: जी। जंतर, नहीं नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जंतर मंतर के आंदोलन पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले कौन थे? वो कौन सीजेपी के कार्यकर्ता थे? वो ये कहना चाह रहे हैं सौरभ दास? सौरभ दास ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वहां पत्रकारों पर जो हमला किया वो सीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो छात्र थे? ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। ये अगर जिम्मेदारी वहां पत्रकारों का लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग हुई, RAF की लॉब, RAF के कर्मचारियों की मॉब लिंचिंग, बिल्कुल बिल्कुल। ये अब ये देखिए अर्बन नक्सल की भाषा यही होती है कि इनके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण दीजिए, बीजेपी RSS का प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए प्रमाण, अभी प्रमाण दीजिए,
2: अभी प्रमाण दीजिए।
1: अगर आप सच्चे आदमी तो अभी प्रमाण दीजिए, अभी प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए। अर्बन नक्सल होना यही है, झूठ बोलना, झूठ बोलना यही अर्बन नक्सल का प्रमाण, यही यही प्रमाण है। आप RSS और बीजेपी का आप एक्सपोज है, आप एक्सपोज है। RSS बीजेपी का प्रमाण दीजिए। अगर आप में हिम्मत हो तो इसी चैनल पर अभी आरएसएस बीजेपी के किस व्यक्ति
0: ने पत्र हमारे हाथ
1: उसका नाम बताइए, फोटो दीजिए, प्रमाण दीजिए, साहिल जोशी से प्रमाण
0: हमारे हाथ दे दीजिए।
1: हाँ मैं प्रमाण दूंगा, मैं प्रमाण दूंगा, तो फिर अब फिर हाँ मैं दूंगा, मैं उमर खालिद वाला प्रमाण देने को तैयार हूँ, आप भी प्रमाण लेकर जाएंगे,
0: ये यहाँ पर आप कह के जाएंगे,
1: मैं आपको उमर खालिद
2: का प्रमाण देने को इंतजार कर रहे हैं,
1: मैं प्रमाण आपके हाथ में क्यों दे दें, आपको
2: सामाजिक
1: तत्व को दे देंगे। कौन
2: शुक्ला जी, देखिए अभी पुलिस इस बात की पूरी जांच कर रही है, और जो असामाजिक तत्व उस दिन जंतर मंतर के भीतर घुसे हुए थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, उन सब का क्या होता है, कितने लोगों को पकड़ा जाता है, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो असामाजिक तत्व थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सौरभ आता हूं आपके पास, लेकिन आशुतोष एक बार फिर अब आज की स्थिति में जब आशुतोष आज की स्थिति में जब छात्र आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को यह बताने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि ऐसे तत्वों से सावधान रहिए, तो वैसे में जब पी चिदम्बरम उसमें घुस जाते हैं और कहते हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं, तो यह आंदोलन से जो फायदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने पास तो नहीं खींचना चाहती, जो उड़ता तीर की बात कहीं ना कहीं प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे, सीजेपी कहती है तो बात अलग है क्योंकि उनका तो आंदोलन हुआ था।
3: अब देखिए उड़ता तीर पे तो खैर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे, कि मैं तो पहली बार ये देख रहा हूं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद उन्हीं के मंत्री को उस पर सफाई देने की जरूरत पड़ रही। रेयरली ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के बयान को स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़े। ये साफ है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका उसका कुछ अलग तरीके से अर्थ निकल रहा था, और मैं एग्जैक्टली प्रधानमंत्री का वो कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं, एग्जैक्ट टेक्स्ट, उसका अर्थ क्या है आप देखिए। ये दिमागी नक्सल हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं, इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को अलग करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना होगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी मान रहे थे कि युवा इस वक्त देश की मुख्य धारा में नहीं है। अरे अगर युवा देश की मुख्य धारा में नहीं है तो इस समाज का कोई भी हिस्सा देश की मुख्य धारा में नहीं है। तो जब आप इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तब आपको स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं वो आंदोलनकारियों को और काकरोचों को वो दरअसल नक्सल या दिमागी नक्सल बताने की कोशिश कर रहे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वहां पे नारे लग रहे थे टुकड़े टुकड़े होंगे तो ये तो बड़ी कमजोर सरकार है।
2: चिदंबरम क्या कह रहे हैं लोगों के सामने, इसका पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं, और चिदंबरम क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं उसका।
3: नहीं नहीं मुझे लगता है मुझे लगता है कि चिदंबरम ने पूरी तरीके से सरकार को चुनौती दी और मजबूर किया कि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आए। आप इस तरीके से किसी को भी, किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को आप नक्सल नहीं घोषित कर सकते। यह सरकार की तरफ से बहुत गलत
2: प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए,
3: चिदंबरम ने चुनौती देकर उसको बदलवाने का काम
4: किया। साहिल मुझे एक इंपॉर्टेंट बात रखनी
2: है, प्रेम
1: बिल्कुल किसी पढ़े लिखे को नहीं कहा जा रहा है, किसी पढ़े लिखे को नहीं कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने जो है स्वयं को पढ़ा लिखा और बाकी सबको अनपढ़ मानने का निर्णय ले लिया है, कुछ लोगों ने यह तय कर लिया है कि सिर्फ हम ही पढ़े लिखे हैं। भाई इस देश में डॉक्टर एपीजे
2: अब्दुल कलाम साहब है क्या, उसमें
1: भी पढ़े लिखे थे जो लोग आज जो है, आज
0: मुझे तो लगता है जो बीजेपी में लोग बैठे वही सर्टिफिकेट,
1: मैं उनकी डिग्री नहीं जानता इसलिए उन पर मैं कोई बात नहीं,
0: पढ़ा लिखा कौन एजुकेटेड,
1: मैं उनकी डिग्री मैंने नहीं देखी है इसलिए पढ़े लिखे कि नहीं पढ़े लिखे इस पर मैं कोई टिप्पणी करना जो है आवश्यक नहीं समझता।
2: ठीक है, चलिए सरकार के तरफ से क्लैरिफिकेशन आया और उम्मीद हम इस बात की ही रखेंगे आज की स्थिति में, क्योंकि ये डिबेट लंबा चलेगा, अब कई और लोग आगे आएंगे और कहेंगे हम दिमागी नक्सल है, लेकिन उम्मीद सिर्फ इस बात की रहेगी कि जो लेजिटिमेट प्रोटेस्ट सड़क पर होगा किसी बात को लेकर, किसी पॉलिसी को लेकर, उन्हें इन टर्मिनोलॉजी के जरिए बदनाम करने की कोशिश तो कम से कम नहीं होगी, फिर भले वो सरकार किसी की भी। इसी उम्मीद के साथ एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
6: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Papa.
1: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
4: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी.
2: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का.
3: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे.
2: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है. वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए.
4: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है.
5: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है.
6: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को. और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
7: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है.
2: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं. जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक.
8: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
9: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
8: नहीं सर.
9: ट्वेल्थ किससे की हो?
8: ट्वेल्थ सर मेरा पीसीएम से रहा.
9: कंपाउंड क्या होता है?
8: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर.
9: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी. तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही. एक मिनट,
8: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है. इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं.
9: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना.

0: और जेएनयू में कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया था स्वागत की होता थी। चिदम्बरम साहब आप देश के अग्रणी मंत्री हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई एडवोकेट है, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के, आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। उसी का मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है उसी का चेहरा बने हैं पिक्चर के दावर।
1: पुली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर जो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदम्बरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन दिमागी नक्सल को लेकर, इस डिप्टी को लेकर चर्चा इसके बाद भी शायद जारी रहेगी, क्योंकि विपक्षी एक कहने पर आमादा है कि दिमागी नक्सल दरअसल उन्हें कहा जा रहा है, जबकि सरकार एक बार फिर सफाई देने की कोशिश कर रही है कि वो लोग जो अलगाववादी ताकतों को सपोर्ट करते हैं उन्हीं को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। लेकिन क्या इस टर्मिनोलॉजी के जरिए सड़क पर आंदोलन करने वालों पर सवाल उठाए जाएंगे, ये असली सवाल अभी भी कायम रहता है। इस बात को लेकर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अब लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, जुड़ेंगे अंजना ओम कश्यप के साथ हल्ला बोल में, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल सहित 8 नेता बने राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा, पीएम मोदी ने दी बधाई। यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चला बड़ा दांव, नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व, 8 चेहरे शामिल, राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड में सरकार से अब तक नहीं हुई आंदोलनकारी छात्रों की बात, राहुल गांधी ने सोरेन को लिखी चिट्ठी, कहा मांगों पर करे विचार, जेएसएससी ऑफिस पर सीआईडी का छापा। वंदे मातरम पर नहीं थम रहा विवाद, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता, 15 अगस्त की घटना पर अमित शाह ने सोनिया गांधी को घेरा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: टीचर्स नहीं है मेरे पास, खुद अच्छी खराब होता है। मैं इसी में लड़के
1: हम लोग ऑनलाइन नहीं हो पा रहा कंटिन्यूअसली।

0: अंजना ओम कश्यप, एक के बाद एक शिक्षा व्यवस्था का तमाम छात्रों के सामने फेल हो जाना अपने आप में आज शिक्षा व्यवस्था पर इस देश में बहुत बड़ा सवाल है। अनेकों ऐसे राज्य हैं जहां पर हाथ डाल दीजिए आपको छात्र सड़कों पर नजर आएंगे। और सोचिए ना, जिस एनटीए की चर्चा हुई थी वो नेशनल, अगर आप टेस्टिंग एजेंसी की ही बात कर ले तो एक बार फिर से वो फेल हो गई है। परीक्षा में इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द करने की स्थिति आ गई, अनेकों इसमें गड़बड़ियां पाई गई है प्रश्न पत्रों में। सवाल है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी से एनटीए ने कोई सबक क्यों नहीं लिया था। और इन्हीं परिस्थितियों में देश के छात्रों का गुस्सा उफान पर है। जेंजी के बाद जेन अल्फा भी टीचर्स की कमी, कभी मिड डे मील का झोल, कभी स्कूल तक पहुंचने वाली टूटी सड़कों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड में सोचिए कितने दिन हो गए इन बच्चों को। झारखंड की तस्वीरें एक बार दिखाइए, किसी का दिल इन पर नहीं पसीज रहा है। झारखंड में धरना दे रहे छात्रों से सरकार की आज एक और राउंड की बातचीत हो रही है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि छात्रों से खुद जाकर मिले। योगी आदित्यनाथ 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के स्कूलों का हाल गिना रहे हैं। सवाल है कि छात्रों पर देश की राजनीति सिर्फ सिलेक्टिव प्रतिक्रियाएं क्यों दे रही है। अगर झारखंड में आज बच्चे आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जिनमें से कई बच्चे बच्चियां अनशन पर है, खाना नहीं खाया इतने दिन से, कोई उनकी सुध लेने के लिए क्यों नहीं पहुंच रहा है। छात्रों पर तेरा मेरा शिक्षा व्यवस्था में गजब अंधेरा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जिन्हें क्लासरूम में हिंदी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों का सबक पढ़ना है, उन्हें यूं सड़क पर उतरकर शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का सबक सिखाना पड़ रहा है। ये लखनऊ का वो जैन अल्फा है जिन्होंने अपने जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में शिक्षकों की कमी और मेस के घटिया खाने के खिलाफ चक्का जाम कर दिया। इसी स्कूल के बच्चों ने 14 अगस्त को भी ऐसा प्रदर्शन किया था। तब यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण उन्हें समझाने आए थे, लेकिन आज फिर स्कूल के बच्चों का धैर्य जवाब दे गया और प्रशासन को उन्हें समझाने बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। बीते कुछ दिनों में देश भर में कई जगहों पर स्कूलों की बदहाली, शिक्षकों की कमी और मिड डे मील में भ्रष्टाचार, टूटी सड़कों से स्कूल में पहुंचने में होने वाली दिक्कतों के मामलों पर जैन अल्फा का आक्रोश सामने आया है।
1: तुम लोग में आज खाने में कीड़ा निकला था, खाना फेंक दिए? आज के पहले भी निकला था क्या? ये तीसरी बार है मतलब?
0: 15 अगस्त को बाड़मेर में झोपड़ी में चल रहे सरकारी स्कूल का वीडियो निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी रिलीज किया था। इस बीच राजस्थान के स्कूलों में बिना इजाजत प्रवेश और फोटो वीडियो पर रोक के सरकार के फैसले पर विवाद हो गया है।
2: कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जिससे उस विद्यालय का कोई संबंध नहीं है, वो बिना अनुमति के विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और नियमों में प्रावधान भी है कि नाबालिग बच्चों का बिना अनुमति के न फोटोग्राफी न वगैरह कुछ नहीं किया जा सकता है।
3: देखिए, सरकार डर चुकी है। जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा का नंबर आ गया है और अल्फा ने जो पूरा जो अभी आपने 4-5 स्कूलों के अंदर विरोध किया है, उसी से सरकार इतना डर गई कि आपने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया। आपको मीडिया अंदर नहीं जा पाएगी। सबसे बड़ा डर इन लोगों के मीडिया के है।
0: वैसे शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा पर जब अब जैन जी के बाद जैन अल्फा का भी विरोध सामने आ गया है, तो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। यूजीसी नेट की परीक्षा के 3 विषयों, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की फिर से टेस्ट की नौबत ने एनएसयूआई को विरोध का मौका दे दिया। जून में हुई यूजीसी नेट की परीक्षा में तीनों विषयों के प्रश्नों में गड़बड़ी के चलते उन्हें रद्द करने का फैसला लिया गया।
4: जब पूरा देश का युवा, पूरा देश के

0: पक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे कि छात्रों के ऊपर अत्याचार वायलेंस क्यों हुआ, सदन में आइए, पार्लियामेंट में आइए और ये बात रखिए। लेकिन चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागकर एक मिनट के लिए भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि पार्लियामेंट में आए। तो वो लोग जो खुद अपने काम के लिए या अपने लिए अकाउंटेबल नहीं है, उनसे हम ये अपेक्षा कैसे करें कि देश के एजुकेशन सिस्टम को वो अकाउंटेबल बना देंगे? साथियों, ये इनके बस का नहीं है।
1: इस बीच जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा के घोटालों की सीबीआई जांच की मांग के लिए झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी है, तब सोरेन सरकार ने आंदोलन करने वाले छात्रों के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से एक और राउंड की बातचीत की।
2: शिबू सुरन दिशम गुरु, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जिनको पढ़ करके जान करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन कभी कभी ये सोच के अफसोस भी होता है कि जिस झारखंड राज्य की परिकल्पना उन्होंने की थी वो शायद आज वो झारखंड नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ही नक्शे कदम पे चले।
1: जबकि राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर सोरेन को प्रदर्शनकारी छात्रों से खुद मिलने की सलाह दी है। वैसे इस चिट्ठी में शिक्षा संस्थानों पर आरएसएस के कथित कब्जे के राहुल के आरोपों का जिक्र पहले ही पैराग्राफ में है। शिक्षा व्यवस्था पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आज जवाब योगी आदित्यनाथ का भी आया। उन्होंने 2017 के पहले यूपी के स्कूलों की दुर्दशा का आरोप लगाया।
3: हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है। 17 के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे।
4: जिन लोगों ने कर नहीं पाए आज वे आरोप प्रत्यारोप करते हैं।
1: राजनीति की लड़ाई जेएन जी और जेएन अल्फा के नाम पर शुरू हो गई है। इसी बीच बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ है। नई टीम में कई युवा चेहरों को जगह दी गई है। मोदी सरकार में पहली शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। आज तक ब्यूरो, तो क्या नई टीम के जरिए जेंजी को साधने की कोशिश होगी या पार्टी और भी आक्रामक अंदाज में दिखेगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसी के साथ छात्रों की समस्या सबसे बड़ी, जिस पर आज हम हल्ला बोल करने वाले हैं। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, अमित जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन इससे पहले कि मैं सुधांशु जी से पहला सवाल करूं, खबर ये आ रही है कि एनटीए के जो अधिकारी हैं उनकी बैठक इस वक्त चल रही है शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ। शिक्षा मंत्री की एनटीए के अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। सिस्टम में कैसे सुधार किया जाए, एनटीए ने इस बारे में जानकारी दी है शिक्षा मंत्री को। नई टीम की घोषणा भी हो गई है सुधांशु त्रिवेदी जी। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग उसमें दिख रहे हैं, जिससे ऐसा दिखता है कि एक आक्रामक तरीके से बीजेपी आगे बढ़ेगी और जो आपने ये दिमागी नक्सली और कई सारी चीजों पर फोकस किया है उसको आगे ले जाएंगे। लेकिन एनटीए परीक्षा कब से ठीक से करा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। झारखंड में आज भी बच्चे बैठे हुए हैं, लखनऊ में बच्चे सड़कों पर हैं, राजस्थान से लेकर तमाम जगहों पर।
5: देखिए, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो विषय है, अगर आप इसको देखें, तीन डायमेंशन है। एक तो है एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो राज्यों के अंदर की स्थिति है प्राइमरी स्कूलों से इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सुविधाओं को लेकर, जिनको लेकर कई जगहों पे बच्चे इस विषय को लेकर आंदोलित हैं कि मूलभूत सुविधाएं वहां पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी। दूसरा वाला विषय है कि हायर एजुकेशन में जो परीक्षा की व्यवस्था है और जो नया स्वरूप आया है उसके अंदर पूरी तरीके से पारदर्शी और जिसे कहते हैं अप्रोप्रिएट व्यवस्था हो सके, वो एक चीज है। तो ये दो अलग अलग, तीसरी चीजें हैं, छात्रों की जब पास आउट हो जाते हैं और उसके बाद जब वो नौकरी के लिए जाते हैं और नौकरी के लिए जो परीक्षाएं हो रही वो उनके लिए बहुत ही अहम होती हैं, क्योंकि जो प्रवेश परीक्षा उसमें तो उनके पास फिर मौका हो सकता है कि इस वर्ष नहीं आए तो अगले वर्ष ट्राई कर सकते हैं। पर नौकरी वाले में कई एक छात्रों का समूह तो ऐसा होता है जिसके लिए वो अंतिम मौका होता है, इसके बाद अब

0: से जीवन में वो मौका ही नहीं मिलना है, और यहां पर उनका पूरा जीवन अब एंट्रेंस एग्जाम में तो होता है चलो भाई इस सब्जेक्ट में नहीं होंगे, दूसरे में कर लेंगे, दूसरा प्रकार की लाइन में जाकर कैरियर बना सकते हैं, पर नौकरी में तो ये तीनों प्रकार से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति से अलग हटकर अगर ईमानदारी से हम लोग इस पर प्रयास करें तो बिल्कुल सही हो सकता है। मगर जब प्रयास ही ये होगा कि पहले हम कोटा जाएंगे उड़कर, फिर प्रयागराज जाएंगे और वहां से उड़ते हुए पुणे जाने का प्रयास करेंगे, पर ज्योग्राफिकली बीच में रांची है उसमें कुछ हम सुनाई नहीं पड़ेगा हमें, केजरीवाल जी जबकि पंजाब में हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा कि साहब पेपर लीक हुआ है और साबित हो जाएगा कि पंजाब विधानसभा में झूठ बोला था, उसके बाद केजरीवाल जी मुंह में दही जमा के बैठ जाएंगे। और रांची को लेकर राहुल गांधी जी कान में तेल डाल के बैठ जाएंगे, तो फिर लगता है कि ये ईमानदारी नहीं है, यहां के ऊपर विशुद्ध राजनीति है। तो इसलिए मेरा मानना है अगर छात्र हितों की बात करनी, जैसे रांची के छात्रों ने कहा भाई कोई राजनीतिक हम मंच नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार का राजनीतिक बयान नहीं देंगे, राजनीतिक नारेबाजी नहीं करेंगे, हम विशुद्ध छात्र हितों की बात करते हैं। तो अब यहां पर यह भी सवाल है कि ये तीनों जो मैंने बातें बताई, ये तीन डायमेंशन, उसके साथ ये भी है कि कौन ईमानदारी से गैर राजनीतिक होकर छात्र हितों की बात कर रहा है और कौन सी सरकार संवेदनशीलता के साथ संवाद के साथ उसका समाधान कर रही है, और कौन छात्र हितों के मंच का राजनीतिक दुरुपयोग करते हुए उसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हुए अनेक प्रकार के अवांछित तत्वों को उसमें स्थापित करके कहीं ना कहीं से अराजकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा। तो मुझे लगता है देश के सामने इस रूप में देखा जाए तो पिक्चर एकदम स्पष्ट हो जाती है।
1: चलिए ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि तेरा और मेरा शिक्षा व्यवस्था में भी ये हो गया है, रांची का मतलब ब्लैकआउट है, एक चिट्ठी लिख देने से क्या होगा, ये तो वैसा ही हो गया ना आलोक शर्मा जी, कि प्रधानमंत्री एक चिट्ठी लिखे, सुनिए ना सर सवाल पूरा हो जाए, प्रधानमंत्री एक चिट्ठी लिखे कि भाई शिक्षा मंत्री जी ये बेहतर होगा कि आप जाकर बात कर लें। अरे भाई आप सरकार है वहां पर, आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, इंसानियत की और बच्चों की बात हो रही थी, उम्मे हबीबा छात्रा है ना झारखंड की, 5 अगस्त से वो आमरण अनशन पर है, बकारो के कासमार की रहने वाली है, 7वीं 11वीं 14वीं जेपीएससी परीक्षा में अपियर हो चुकी है, एक बार उनको सुनिए वो क्या कह रही है, इंग्लिश में एमए है, बीएड क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अनशन की वजह से 7 किलो वजन घट गया है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए कुछ भी बोल पाना, वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा।
2: देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि जिस दिन से रांची में आंदोलन हुआ है पहले दिन से ही सरकार प्रयासरत है, जिस तरह से 3-4 चीजें उनकी मांग थी उन्होंने स्वयं कहा कि ज्यादातर हमारी मांगे मान ली गई, तमाम लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला गया, जो कंपनी वहां पर काम कर रही थी उसके तमाम लोग आज जेल में, जीपीएससी का जो चेयरमैन है और जो एग्जाम कंट्रोलर है वो भी जेल में, तो दोनों जगह की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। हम वहां पर प्रयासरत हैं, आज भी मंत्रिमंडल मिल रहा है, सीबीआई की जांच की उन्होंने मांग की, बीजेपी के समय से सीबीआई की जांच चल रही थी, वो आज जांच आज तक पूरी नहीं हुई, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, सीबीआई का क्या रिकॉर्ड रहा है नीट के पेपर में 2024 के और 26 के में, ये पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि जो मांग जायज है उनकी वो तमाम मांगी गई है, उसके अलावा भी जो मांगे हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है, जो एग्जाम कोर्ट की निगरानी में हुए हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता था। अब मैं आज के मुद्दे पर आता हूं, जो आज तक ने बहुत इंपॉर्टेंट विषय लिया है, जिन लोगों ने व्यापम घोटाला किया और प्रभु राम के घर में डकैती डाली, जिन लोगों ने 1,00,000 स्कूल बंद कर दिए, जिन लोगों ने GDP का 4.6% से एजुकेशन का बजट घटा के 2.6 कर दिया, जिन लोगों ने 152 पेपर लीक होने के बाद भी मुंह नहीं खोला, मिड डे मील में नमक से एक रिपोर्टर ने उत्तर प्रदेश में कई साल पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी उसको जेल में डाल दिया गया था, आज स्कूल में प्रवेश बंद कर दिया गया है, एनटीए एक एनजीओ है जिसमें आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग भर्ती हैं, उसको कभी भी किसी भी सूरत में ये लोग कभी नहीं करेंगे कि इसको भंग कर दें, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस इन तमाम एजुकेशन के घोटालों में शामिल है। मैं आज तक पे बोल रहा हूं ये बात, मैं 2024 में भी पेटिशनर था, 26 में भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर हूं, इसमें एनटीए शामिल है, इसमें सीबीआई शामिल है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के विनीत जोशी के क्या वहां पर क्या रोल है उसकी जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी कंपनी है इनोवेटिव व्यू, हमने तो वहां पर TDPL को जेल में डाला ना, आज तक सीबीआई इनोवेटिव व्यू कंपनी के दरवाजे तक क्यों नहीं गई, वो प्रॉक्सी कंपनी किसकी है जिसके पास बायोमेट्रिक का और तमाम चीजों का सीक्रेसी का पूरा जिम्मा है, वो कंपनी किस तरह से ग्रो कर गई है, एनटीए का कैसे प्रॉफिट बढ़ा है, अगर इन दोनों का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो पता चल जाएगा बीजेपी और आरएसएस के लोगों को क्या क्या मिला है। सुसाइड रेट, एजुकेशन सिस्टम पर बात हो रही है अंजना जी, सुसाइड रेट एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं 43% 2014 से 2024 तक, 25 के अभी नहीं आए हैं, 43% सुसाइड बढ़ गया। आज 22 बच्चों ने सुसाइड किया, किस पर, नीट के एग्जाम पर, एक बीजेपी का चिड़ी बच्चा कहीं किसी बच्चे के घर पर नहीं गया। गटर जनरेशन आपने बोला, जिन बच्चों को आपने जो वहां पर वो कर रहे थे, एक कंट्रोलिंग बॉडी आपने नहीं बनाई, हमने तमाम कंट्रोलिंग बॉडी बनाई, सीबीएसई से लेकर यूपीएससी से लेकर
1: आलोक जी, आलोक जी सुनिए ना, आप ही को पूरा करना है, आप ही को सुना रहे हैं क्योंकि उस वक्त सुना नहीं पाए थे। इस बच्चे की जो आवाज है सुनिए ना, आप कल्पना कीजिए कि जंतर मंतर में बिजली या फिर जो भी वहां पर बैठे हुए थे बच्चे, जनरेटर के साथ रांची में वो काट दिया गया, लाइट ऑफ करके उनको पीटा गया, उस पर गुस्सा ही नहीं दिखता। मतलब एक बार सुनिए तो ये लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए इस बच्चे की बात सुनिए।
3: एक झारखंडी बेटी झारखंडी मुख्यमंत्री से अपील करती है, क्योंकि शिबु सोरेन दिसम गुरु, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जिनको पढ़ करके जान करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन कभी कभी ये सोच के अफसोस भी होता है कि जिस झारखंड राज्य की परिकल्पना उन्होंने की थी वो शायद आज वो झारखंड नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ही नक्शे कदम पे चले।
1: ये बच्ची तो पॉलिटिकल नहीं होती है ना आलोक जी, थोड़ा इसको भी रिस्पॉन्ड कीजिए।
2: हाँ। देखिए मेरी मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी का भी इस बार यूपीएससी में बहुत बॉर्डर पर नहीं हो पाया, मुझे पता है बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं और फिर नहीं होता है। झारखंड बना था और झारखंड की भी परिकल्पना थी, ऐसी ही परिकल्पना उत्तराखंड की भी थी। उत्तराखंड पेपर लीक का एपी सेंटर है, आज तक कितने पेपर आउट हुए हैं, ना सुधांशु भाई को पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है। जिस दिन बिल पास हुआ दो पेपर आउट हुए थे यहां पर टेक्निकल बोर्ड के। हम बच्ची की संवेदना के साथ हैं, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए ये मैं बिल्कुल मानता हूं, और अगर कहीं पर भी कोई चीज होती है सबसे पहला व्यक्ति मैं रहूंगा जो माफी मांगूंगा। लेकिन मैंने इतनी इतनी बड़ी बातें कही, 1,00,000 स्कूल बंद करवाने वाला प्रधानमंत्री अगर उनका प्रवक्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, जेएनयू और जामिया में लाठियां भांजने वाले वो कोमल शर्मा कहाँ है आज तक किसी को नहीं पता है। आरएसएस के और बीजेपी के गुंडे यूनिवर्सिटियों में घुसकर जिस तरह से लाठियां भांजते हैं वो पूरे देश ने देखा है। अभी सुधांशु भाई ने कहा अवांछित तत्व, मैं पूछना चाहता हूं 2900 के करीब आपने अवांछित तत्व जो है वो आइडेंटिफाई किए थे जंतर मंतर पर, और 939 का कहा था इस सीरियस ऑफेंस वाले हैं, आज तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुई, आज तक एक भी बच्चा उसमें से या जो भी था उसमें अवांछित तत्व तथा कथित उसको अभी तक आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया, क्या केवल ये सब चीजें टीवी डिबेट्स के लिए हैं? मैं पूछना चाहता हूं सीबीएसई में आज तक कौन कौन डायरेक्टर रहे, विनीत जोशी ही सीबीएसई में इतने लंबे समय तक क्यों रहे, क्यों, क्या कारण था उनका?
1: ठीक है सुधांशु जी, एक रिस्पॉन्स उसके बाद सत्यप्रकाश, अब हो गया सर, आलोक जी हो गया, अब आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं उनका नाम, आपने दो बार बोल लिया प्रभु, आलोक जी खत्म कीजिए।
2: बार बार कह रहा हूं कि इन लोगों के यहां तक आज तक सीबीआई की जांच क्यों नहीं पहुंची,
1: ठीक है
2: इनोवेटिव पर
1: सुधांशु जी, सुधांशु जी जवाब दीजिए। और उस वक्त खबर यह आई कि 47 अधिकारियों के खिलाफ एनटीए में एक्शन लिया गया है, कौन है वो अधिकारी, कहां है, क्या व्यवस्था बदली गई, जो लोग टॉप पर है वो क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है?
0: देखिए शुद्ध भ्रामक और बकवास कैसे की जा सकती है कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा दिख रहा है। 1,00,000 स्कूल बंद हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 1,00,000 स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो 1,00,000 स्कूल ही नहीं होंगे, कुछ भी आकर यहां झोंकना शुरू कर देना, बताओ ना राज्यवार सूची कि पिछले 12 सालों में इस राज्य के इतने बंद हुए, और आप कह रहे हैं 152 पेपर लीक हुए, उसमें राजस्थान के 19 हैं कि नहीं, किस राज्य के कितने पेपर लीक हुए बोलो, कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना। 1,00,000 स्कूल नहीं है भारत सरकार के, और कह रहा है 1,00,000 स्कूल बंद हो गए, अरे राज्यों के बंद हुए, और प्राथमिक शिक्षा बाय एंड लार्ज स्टेट का सब्जेक्ट है, मगर आकर यहां बोलना शुरू कर देना। और रही बात आरएसएस के तथाकथित गुंडों का कब्जा, तो भाई साहब आपके जमाने में देश के जाने माने नामी गिरामी विश्वविद्यालय में स्थिति यह थी कि जब 2010 में दंतेवाड़ा में हमारे 76 सैनिक शहीद हुए थे नक्सली हमले में, तो पटाखे छोड़े गए थे, मिठाई बांटिया गई थी, और क्यों नहीं बोला था कोई? वो कौन थे? अरे वो तो सेकुलर इंटेलेक्चुअल और लेफ्टी

0: फेडरलिस्ट और सेक्युलरिस्ट, अरे वो तो देश की आन बान शान थे। इसलिए किस समय किसका क्या किस ढंग का कब्जा था सारे लोगों को पता है। इसलिए जब बात करिए फैक्चुअल बात करिए, ये नहीं कि वहां से फीड किया गया 1,00,000 स्कूल आप बोलने लगे। स्कूल जो होते हैं वो राज्यों। अब मैं सिर्फ एक पॉइंट और कहना चाहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं अगर ईमानदारी से बात करनी है तो रांची में तो छात्र सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच करवा दो, फिर देखिए क्या बकवास बोले। बीजेपी के टाइम में जांच शुरू हुई थी, अभी तक नहीं। भाई बीजेपी की सरकार गए हुए 7 साल से ऊपर हो गए झारखंड में, उस 7 साल में आपकी सरकार ने क्या किया है, क्या फॉलोअप किया है, क्या फैक्ट दिलवाए हैं, क्या एविडेंस दिलवाए हैं, ये बताइए। और ये तो बड़े भाई हैं वहां पर। और मैं फिर कहना चाहता हूं रांची के वो छात्र जिनका एक वीडियो नहीं है पुलिस को दौड़ाते हुए, एक वीडियो नहीं है पुलिस के लहूलुहान करते हुए, एक वीडियो नहीं है पत्थरबाजी करते हुए, एक वीडियो नहीं है गाली गलौज करते हुए, एक वीडियो नहीं है रीलबाजी करते हुए, मगर और उनकी बिजली काट कर पिटाई कर दी जाती है, कोई किसी के फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पर जबकि सामने दिख रहा था कि जंतर मंतर में बहुत से किरदार घुस गए थे छात्रों के बीच में, और वो क्या क्या आपत्तिजनक अपशब्द बाजा रहे, वो क्या ना बोलेंगे, इनके तो नेता ही बोलते हैं। अब न रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में कितना विध्वंसात्मक काम कर रहे थे, कितना हास्यास्पद काम कर रहे थे, वो पूरे देश ने देखा है। इसलिए जब आप उपदेश दें तो विचार करके उपदेश दें।
1: ठीक है सत्य प्रकाश,
0: बताइएगा साहब 1,00,000 स्कूल का जब बताइए,
1: अरे एनटीए एग्जाम कैसे कराएगा सर, ये भी तो बताइए। सुधांशु जी खुद ही एनटीए ने कैंसिल किया ना, बोला कि भाई हमने क्वेश्चन पेपर में शब्द ही गलत प्रिंट किया हुआ था। सुधांशु जी आप सोच रहे कितना ट्रॉमा, कितना मेहनत लगती है कि एग्जाम, आप तो खुद ही जानते हैं, एग्जाम देता है बच्चा फिर कैंसिल हो फिर पढ़िए एग्जाम के लिए।
0: हाँ वो बता रहा हूं। देखिए वहां पर एक टेक्निकल इशू ये आया कि पहले के जमाने में सिर्फ दो ही भाषाओं में होता था, हिंदी और इंग्लिश, अब 13 भाषाओं में होता है। उसमें ये पाया गया कि कुछ भाषा में अनुवाद में वो शब्द एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी आप इक्वलिटी से जांच कर पाएंगे। अगर आपको जरा सा भी लगा कि इस प्रश्न का अमुक भाषा में ट्रांसलेशन का दूसरा प्रभाव है, इसलिए वो छात्रों के हित में निर्णय लिया एनटीए ने, तो चूंकि आज 13 भाषाओं में ट्रांसलेशन करना और एकदम सटीक ताकि ये कहीं से भी उसमें कंफ्यूजन न रहे, वो एक व्यवस्था का कारण। इनकी तरह थोड़ी कि सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में होते थे, हम लोग जब थे तो अंग्रेजी में होते थे, हमारे में अंग्रेजी में क्वालिफाई करो तो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री में होता
1: है, तो 13 भाषा में होना है सर, तो उसकी वजह से हिंदी और इंग्लिश क्यों खराब हो जाएगा? नहीं नहीं सुधांशु जी 13 भाषा में होना है इसलिए हिंदी और इंग्लिश कैसे गड़बड़ हो जाएगा? अब आप हिंदी इंग्लिश तो फिक्स्ड है,
0: नहीं किसी भी विषय का जो विषय का ट्रांसलेशन होता है और जो क्वेश्चन होते हैं, अगर ये लगे कि इस शब्द का कोई और मीनिंग भी हो सकता है तो ये बेटर है कि उसको रोक दिया जाए, बजाय इसके कि उसके दो मीनिंग निकले और फिर दो मीनिंग के बाद दोनों लोग कहें हमारे हिसाब से ये उत्तर सही था और हमारे हिसाब से वो उत्तर सही था। साहित्य में भी कई बार इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो यहां पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, वो छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।
1: ठीक आलोक जी छोटा सा जवाब एकदम, और जरूर बताइएगा कि कब आप लोग जा रहे हैं रांची।
2: अंजना जी
1: दबाव तो बनाइए मुख्यमंत्री पर कि जल्दी से बात खत्म कराएं, अनशन खत्म कराएं।
2: अंजना जी अभी सुधांशु भाई ने सरासर झूठ बोला, 2 महीने लग गए एनटीए को पेपर का पता करने में कि हिंदी और अंग्रेजी में गड़बड़ है, 2 महीने लग गए। जब बच्चों ने तूफान मचाया तब उसका यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल किया गया।
1: तो बच्चे तो तूफान झारखंड में भी मचा रहे हैं, क्यों नहीं रद्द कर देते हैं? कोर्ट में जाके पिटीशन डालिए ना, अरे कोर्ट में पिटीशन डालिए ना सर, कोर्ट में पिटीशन डालिए ना। हाँ सब जगह का होना चाहिए,
2: उत्तराखंड का भी निकलेगा।
1: हाँ ठीक है झारखंड का कराइए ना सर, बच्चे सब अनशन पे हैं।
2: बिल्कुल कराएंगे।
1: कैसे कराइएगा, कब कराइएगा? 24 दिन हो गए,
2: आज भी बैठक चल रही है ना अंजना जी। आप मुझे केवल बताइए सीबीआई चिल्ला रहे हैं, 2024 में सीबीआई ने 48 लोगों को अरेस्ट किया, सबको कैसे छोड़ दिया? यही डायरेक्टर सीबीआई के 2024 में थे और यही डायरेक्टर एक्सटेंशन देकर आज बैठे हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी जीरो है। नीट के पेपर में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लिख कर दिया है कि पेपर आउट नहीं हुआ, ये अकाउंटेबिलिटी है एनटीए की।
1: सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ,
3: नहीं उन्होंने कहा है, आलोक जी ने कहा है कि झारखंड और एनटीए की तुलना नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। झारखंड में क्या है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? इनकी जिंदगी थोड़ा करीब से देखो, इनका चेहरा तुम्हें रुला देगा। आपके आंख में आंसू नहीं, शर्म नहीं, हया नहीं, आपकी सरकार वहां, राहुल गांधी इतने बड़े नेता, देश के विपक्ष के नेता, राजद सरकार में, वहां क्या है पता है? जांच होगी

0: सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में, तो जो मुंसिफ बन बैठा है वो जेल में होगा। क्यों वहां सीटें बेची गई है? प्लीज सर, हाथ जोड़ते हैं आपके, आप बड़े ज्ञानी हैं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं कूदता फांदता, आपके बीच में कूदता फांदता नहीं, मेरी आदत नहीं है सर, प्लीज, ये आपके बीच में कूदता फांदता नहीं, ये कूदने फांदने की जो बीमारी आपको लगी है इसका थोड़ा कुछ इलाज कराइए आलोक जी, ये मत करिए, ये काम मत करिए, ये काम, मैं इस देश का नागरिक हूँ, क्या हूँ ये आपका विषय नहीं है, ये आपका विषय नहीं है। आपके अगर मैं कुछ बोलूं तो आपको मिर्ची लग रही है, मेरे तर्कों का जवाब नहीं हो तो बताइएगा। अरे चुप रहिए पहले आप, मैं कौन हूं इसका, ये आपका विषय नहीं है, ये आपका विषय होना भी नहीं चाहिए। मेरे तर्कों का जवाब होगा अगर दम तो दीजिएगा, नहीं होगा तो मत दीजिएगा। आपसे मैंने जवाब मांगा भी नहीं, आप जवाब देने के काबिल भी नहीं है। मैं चाहता नहीं आपसे उलझना व्यक्तिगत रूप में, मिस्टर आलोक शर्मा बहुत आदर हो गया, मैं नहीं चाहता आपसे व्यक्तिगत उलझना,
1: फसल मत बनाए,
0: नहीं वो फसल मत बनाए,
1: ठीक है
0: मिस्टर आलोक शर्मा, मैं नहीं चाहता,
1: शर्मा जी
0: मेरे तर्कों का अगर हिम्मत होना जवाब देना, बकवास नहीं करना चाहता मैं
1: टॉपिक पे, टॉपिक
0: ये क्या तरीका है?
1: हाँ ठीक है, वो
0: मैंने क्या कहा कि मुंसिफ ही वहां कातिल है, खयानते किसका सचिव था, कौन था? 10 तारीख को जब लाठी चार्ज करते हैं तो वहां के सचिव को आप गिरफ्तार करते हैं, कितनी देर करते हैं? मतलब छात्र भूखे हैं, लाठी चार्ज हो गया तब चलो इसको गिरफ्तार कर लेते, सीआईडी जांच कर रही है। एनटीए का जो दोष है 2017 नवंबर में बना उसका ये महादोष है, मैं यहां से कहता हूं, जिस एनटीए को प्रूफ रीडर नहीं है उसको शर्मसार होना चाहिए देश के सामने, और सामने आकर माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरह नहीं चलेगा, किसकी भी सरकार हो, मेरी उसकी उसकी, ये नहीं चलेगा। एक प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते, स्पैरो को स्पैरोज नहीं लिख सकते, प्रूफ रीडर नहीं है एनटीए के पास, हायर कर लो, हम ही से करा लो, हम सारे क्वेश्चन को प्रूफ रीडिंग कर देंगे, बहुत अच्छा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत सब है मेरी। ये माफी मांगनी पड़ेगी एनटीए को, देश के बच्चों से, यूजीसी में जो अपीयर हुए थे लोग उनसे। ऐसे नहीं चल सकता देश, बहानों से देश नहीं चलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला गलत टाइप हो जाए वो व्यक्ति जेल चला जाएगा या उसका बेल नहीं होगा, ये नहीं चल सकता। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं एनटीए की तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने भी नेट की परीक्षा, जेआरएफ की परीक्षा दी, हमें मालूम है कि क्या वहशत और दहशत और समय लगता है, हमें गुस्सा है इस बात का। मैं किसी भी पार्टी में हूं वो एक अलग मसला है, मैं कोई भी देश का, लेकिन छात्रों के साथ कोई अन्याय इस देश में किसी भी सरकार के सामने नहीं होनी चाहिए।
1: सुधांशु जी, यही से आगे ले जा रहे हैं, एक सेकंड जल्दी बोलिए,
0: मैं इतर बोलना चाहता हूं, लेकिन राहुल गांधी कर क्या रहे, मैं तो तैयार हूं, ये आलोक शर्मा क्या कर रहे, बकवास। मैं ये शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं आलोक शर्मा के खिलाफ, व्यक्तिगत हमला से बचिए। मानदंड है नैतिकता का, एनटीए 10 साल में धीरे धीरे बड़ा हुआ है, उससे बहुत सारी गलतियां हुई, ये देश भी जानता है, सरकारें भी जानती हैं। उसके सब लोगों को हटाया गया, 50 लोगों को हटाया गया एनटीए से, सरकार का मैं स्वागत करता हूं, सरकार मुस्तैद है, सरकार ने सीट नहीं बेची आलोक शर्मा, झारखंड की तरह। और एनटीए जब नहीं था इस देश में 25 और 50 लाखों में मेडिकल की प्राइवेट सीटें बेची जाती थी, आपकी वो सरकार रही है जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा शांत रहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि नहीं नहीं नहीं, नीट मत लाओ, एक साथ मेडिकल का परीक्षा मत कराओ, वन नेशन वन मेडिकल एग्जामिनेशन मत कराओ। आपकी सरकार तो बोल रही है जिसने खटे हुए आईएम अहमदाबाद की फीस को बढ़ाने की जरूरत करी, मुझे वो भी याद है। आप राजनीति में नए होंगे, जुम्मा जुम्मा चार रोड से, मैं इस देश की राजनीति का एक एक व्यवस्था मुझे याद है कांग्रेस का, इसलिए आप कहिएगा कि आपके मुख पे कालिक नहीं होती है, ये कहना गलत होगा, अन्याय होगा। आप लोग वो लोग हैं जो देश में सीटों के बेचने पर चुपचाप तालियां बजाया करते थे, ये तो मुरली मनोहर जोशी साहब शिक्षा मंत्री बने,
1: ठीक है,
0: जिन्होंने इस देश में एक परीक्षा की पहली बार वकालत करी, और आज आप कह रहे 1 लाख स्कूल बंद हो रहे हैं, 732 आपने बनाई थी यूनिवर्सिटी, या 1250 है आप नहीं बना के गए, 50,000 मेडिकल में लड़के पढ़ते थे लड़के लड़कियां, आज 1,32,000 पास हो रहे हैं, ये दिखता नहीं आपको क्या?
1: ठीक है, सुधांशु जी, इससे पहले कि मैं अमित जमाई के पास जाऊं, हो गया मिश्रा जी, हो गया,
0: क्या बात कर रहे हैं
1: सुधांशु जी,
0: बेशर्मी से रोना रोइए आप,
1: शिक्षा मंत्री
0: प्लीज आलोक शर्मा, मेरा यहाँ से विनम्र निवेदन है, व्यक्तिगत हमला मत करिएगा, मैं व्यक्तिगत सुधांशु जी आप नहीं बचेंगे फिर,
1: सुधांशु जी शिक्षा मंत्री तक का इस्तीफा हो गया, जो एनटीए इन लीक्स के लिए जिम्मेदार है, जिसका ये काम था, अपना काम उन्होंने ओवरलुक नहीं ठीक से किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। अगर अभिषेक सिंह डायरेक्टर जनरल है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी चेयरपर्सन है, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, मतलब एग्जाम होगा, एग्जाम या तो लीक होगा या फिर क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक्स होंगे, फिर एग्जाम कैंसिल, कैंसिल के बाद री एग्जाम, ये चलता रहेगा। क्या आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कितनी गंभीर बीमारी हो गई है ये?
2: आप बताता हूं, देखिए बहुत शांति से सुनने की जरूरत है। पहली बात, एनटीए में कार्रवाई हो रही है, 47 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। अब कार्रवाई की डे टू डे की विवेचना चाहिए तो कोई व्यक्ति जाकर जांच एजेंसी से उसका डिटेल ले ले, क्योंकि उसका कोई डे टू डे टेलीकास्ट नहीं होता है कि आज ये कार्रवाई हुई उस स्कोर की तरह। अब मैं दूसरा बताना चाहता हूं, जो कुछ केंद्र में हो रहा है और झारखंड में जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर आपने कहा कि पेपर लीक हुआ या पेपर सेटर ने पेपर आउट कर दिया, जिससे जो एक समानता का अवसर था सबके सामने, वो अवसर प्रभावित हो गया। झारखंड में तो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी पे आरोप है कि उसने पैसे लेकर अपने लोगों को अपॉइंट कर दिया। तो जो सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि मुंसिफी मुजरिम हो गया, यानी आप तो ये कह रहे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ही पूरी तरीके से करप्ट है, और वो एग्जाम लीक करना तो अलग बात है, वो तो एग्जाम सेटिंग है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लीक लापरवाही है, सेटिंग अपराध है। कोई पैसा लेके सेटिंग कर रहा है वो सरासर अपराध है, उसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। और लीक में, ट्रांसलेशन में आप लापरवाही कह सकते हैं, और जो कहते हैं टाइपो एरर में समस्या हो सकती है, आलोक जी, तो इस देश में तो बड़ी भयानक एक टाइपो एरर हुई थी जब सोनिया गांधी जी ने अपने हलफनामे में लिखा था कि उनके पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और जब सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया था कि भाई कैम्ब्रिज की डिग्री दिखाओ, तो कांग्रेस प्रवक्ता ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नहीं, वो कैम्ब्रिज स्ट्रीट के ऊपर एक स्कूल था, उससे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था, और ये ऑन रिकॉर्ड बोला है, संसद में रिकॉर्ड है कि टाइपोग्राफिक एरर थी, वो गलती से हमने कैम्ब्रिज स्ट्रीट के स्कूल को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लिख दिया, रहे उसमें तो सदस्यता चली जानी चाहिए थी। मगर देखिए कैसे टाइपो एरर के ऊपर चुप्पी साधने वाले लोग क्या गुर्रा गुर्रा के यहां पे बोलना शुरू करते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, सेटिंग अपराध है और लीक लापरवाही है, दोनों की कैसे तुलना कर सकते हैं आप?
1: टाइपो पर एनटीए ने एग्जाम खुद ही कैंसिल किया है सुधांशु जी, ये कांग्रेस ने थोड़ी किया है।
3: वो कह रहे कि टाइपो एरर को एक्सेप्ट करते हैं, इन लोगों ने जानबूझकर सीटें बेची हैं।
0: टाइपो एरर का मैंने इतना बड़ा उदाहरण दिया,
1: हम समझ रहे हैं, पर कंपैरिजन से ये कैसे ठीक हो जाएगा?
3: रिवीजन नहीं करना, उसको ठीक करना। जैसे वो कह रहे 50 लोगों को हटाया गया,
1: सोनिया जी पर बोला तो दो लाइन का रिस्पांस दीजिए, अमित जी की बारी, अमित जी को आधा घंटा हो गया, सबको सुन रहे हैं खाली।
4: अंजना जी, बच्चों से करोड़ों रुपए लेकर एनटीए मुनाफा कमा रहा है, अपराध ये है।
3: कुछ भी
4: और उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग माल खा रहे हैं, अपराध ये है, उसकी फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए। मैं अपनी बात पर स्टैंड करूंगा।
1: और वहाँ टीडीपीएल आराम से अकेले काम कर रही थी। ठीक है आलोक जी, आलोक जी, ठीक है आलोक जी, आलोक जी, टीडीपीएल को जो आप बार बार बताते हैं, टीडीपीएल को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया, हटा दिया, एक्शन ले लिया, टीडीपीएल अपने आप काम कर रही थी, वहां पर किसी की मिलीभगत नहीं थी झारखंड में, वहां पर किसकी जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है?
4: अंजना जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी ना, 90 दिन में फैसला देगी ना, यहाँ पर कौन सी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है? नीट में जरा मुझे
1: बच्चों को समझाइए, जाके बच्चों को समझाइए। अमित जी,
0: यहाँ तो संसद में कानून बना दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट का,
1: अमित जी
4: कोर्ट कहाँ है?
1: लखनऊ में भी आज जैन अल्फा निकला है, तस्वीरें दिखाइए एक बार, लखनऊ की बच्चियां निकली है और वो अपने लिए मांग कर रहे हैं।
0: अमित जमाई को भी नहीं बोलने दे रहे हैं।
1: अमित जमाई जी,
5: अंजना जी, आपके किसी भी सवाल का सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक भी जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, पूरे देखिए लखनऊ में ये जो आज जैन अल्फा, जो छोटे बच्चों का ये जो आंदोलन खड़ा हुआ, इसके पीछे कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि दो चीजें सबसे ज्यादा देश में हो रही हैं। सबसे बड़ी ये है कि बेरोजगारी का संकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस देश में पूरा पैदा किया गया, इससे युवाओं में निराशा है। छात्र ये समझ रहे हैं कि हमारे माँ बाप मेहनत मशक्कत करके हमें पढ़ा रहे हैं, हम एग्जाम देंगे, पर्चा लीक हो जाएगा। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं ऑपरेशन कायाकल्प। जब अभी पिछले दिनों माननीय अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों के हालात बताया और बताया कि कितने हजार स्कूल बंद किए गए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। ये देखिए आप, ये 25 मई का ये चिट्ठी है, बीएसए जौनपुर है, इसको जो नगर शिक्षा अधिकारी है वो ये लिख रहे हैं कि जौनपुर के शहर में 5 प्राथमिक विद्यालय गायब हो गए, बिल्डिंग गायब हो गई, शायद किराए पे चल रहे थे। उन्होंने कहा कि बगैर आदेश के इन स्कूलों को क्यों गायब किया गया और वो बच्चे कहां गए? बीएसए जवाब देने को तैयार नहीं है। यहां पे ये बात माननीय अखिलेश जी की सही स्थापित होती है कि स्कूल धीरे धीरे सरकारी बंद किए जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भाई मालिक का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा, हमारा

देश में ऐसा सपना होना चाहिए कि वन नेशन की बात कर रहे हो, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? क्यों हमारे 80% आबादी के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो स्कूलों की हालत बनाई है, विश्व गुरु बनाएंगे, अरे स्कूल में देश के विश्वविद्यालयों में 60% टीचर नहीं है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जो टीचर्स की भर्तियां हैं, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं

0: नेस्त नाबूद करवा दूंगा। सबसे बड़ी केंद्रीय स्तर पर जो एजेंसी है एजुटेस्ट एजुकेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके मालिक के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी सब्जी खा रहे हैं, उनके साथ नाश्ता कर रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उनके साथ लौकी और पराठे की सब्जी खा रहे हैं। जिस आदमी को अहमदाबाद बेस्ड ये प्रिंटिंग कंपनी जो है, ये प्रिंटिंग जो प्रेस है, इसको जेल में जाना चाहिए, सुधांशु जी की पार्टी ने उसको अमेरिका भगवा दिया। इसी प्रिंटिंग प्रेस को नीतीश जी ने, इसका जो बेटा है विनीत आर्या को जेल भेजा था, नीतीश जी ने जेल भेजा था। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा जी कहेंगे ऑल इज वेल इन बिहार और वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। तो नीतीश जी प्रिंटिंग प्रेस को जेल भेजते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको अमेरिका भेजाती है। तो बच्चों में, छात्रों में जो अविश्वास सरकार के खिलाफ है कि आप जब प्रिंटिंग प्रेस पे कार्रवाई नहीं करोगे, क्योंकि जो पर्चे लीक हो रहे हैं अंजना मैम, वो प्रिंटिंग प्रेस से हो रहे हैं, उनके गोडाउन से हो रहे हैं। एनटीए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन क्या एनटीए को बचाने का काम नहीं किया गया? सारे बड़े अधिकारी जो आरएसएस से आए एनटीए में, उस बैकग्राउंड से आए सारे, जो इतिहास, इनका जो इतिहास विभाग है आरएसएस का, जो वहां से सारे शिक्षक आए, वही तो जिम्मेदार हैं। क्या उन्हें जेल भेजा गया? तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने बतौर मुख्यमंत्री 12 विश्वविद्यालय बनाए सपा सरकार में,
1: पूरा कर लीजिए,
0: क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की प्रणाली एक हो, वन नेशन वन एजुकेशन? इस पे जरूर सुधांशु जी के मैं जवाब चाहूंगा।
1: ठीक है, लेकिन अमित जी एक सवाल आपसे भी है, झारखंड के बच्चे भी पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल जी तो जंतर मंतर तक गई, आप लोग उनकी सुध लेने क्यों नहीं जा रहे? रांची कितनी दूर है लखनऊ से?
0: मैं आपसे सीधे ये कहना चाहता हूं कि जो देश का केंद्रीय विषय था, केंद्रीय विषय पूरे मुल्क के जो बच्चे इकट्ठे हुए, वो दिल्ली में इकट्ठे हुए, आदरणीय डिंपल जी हों या आदरणीय अखिलेश जी हों, झारखंड के बच्चों के साथ हमारी सॉलिडरिटी ही नहीं है। हम तो हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे कि आप सीधे बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का लाइफस्टाइल फॉलो करिए। जब वो मुख्यमंत्री थे अंजना मैम, उनको मालूम होता था कि विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है।
1: खबर आ रही है दिल्ली में होगी परिचय बैठक, बताया जा रहा है कि जो नई टीम बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उस नई टीम की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी, 13 उपाध्यक्ष 8 महामंत्री भी, और माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी का बड़ा कमबैक हुआ है क्योंकि वो एक तरह से महामंत्री बनाई गई हैं इस बार, पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं देश में, और आक्रामक अंदाज में बोलने के लिए वो जानी जाती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी एक नई टीम के साथ, एक नई फौज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना चाह रही है। आप उनकी बात पर याद कर रहे थे, उसके बाद समझाऊंगी सुधांशु जी।
2: उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव,
1: वो कह रहे हैं हमारी सॉलिडारिटी है,
2: ऐसी सॉलिडारिटी चाहिए नहीं जहां छात्रों को न्याय नहीं मिल पाए। ये खानापूर्ति कर रहे हैं आप लोग, खानापूर्ति क्यों कर रहे हैं कि वहां आपके समर्थन की सरकार है तो थोड़ा कुछ बोल दो। देखिए, अन्याय करिएगा उसका जवाब प्रकृति का अपना सिद्धांत है वो देगा, लेकिन
0: जी, मैंने
2: एक सवाल है कि क्या अखिलेश यादव जी के काल में
0: जेल डाला था?
2: आप लोगों ने तो मदरसा घोटाला तक किया है, मैं बोलना नहीं चाहता था, 2013 में शिक्षा के नाम पर, और उच्चतर शिक्षा में एक ही वर्ग के तमाम लोगों को अपॉइंट करते गए। छोड़िए आज बहस का विषय, विषय ये है कि क्या देश के छात्रों को दो मुद्दों पर न्याय मिलेगा। तो मैं कमिटमेंट करता हूं कि केंद्र की सरकार एनटीए को ठीक करने, परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमिटेड है। उसने लॉ भी पास किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात करी है। कुछ एरर आज जो प्रकाश में आया है वो शर्मसार करता है, और उसको भी ठीक करेगी। प्रूफ रीडिंग के कारण परीक्षा कैंसिल ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आप ये कमिटमेंट देंगे कि झारखंड के छात्रों की जो मांग है, जो शामिल है सीट नौकरी के बेचने को लेकर के, किसके इशारे पे बेच रहा था, कौन है शिक्षा मंत्री वहां का, गृह मंत्री कौन है वहां का, सीआईडी से जांच करा रहे हैं? जैसे लालू जी चारा घोटाला जब हुआ तो सीआईडी को जांच दे दिए थे, वैसे ही आप लोग जांच करा रहे हैं। आप जांच कराइए निष्पक्ष संस्था से, अगर आप इसके लिए तैयार हैं, राहुल जी, अखिलेश जी, डिंपल जी, जितने जी हैं, तो फिर मैं आपका पीठ थपथपाऊंगा और आपको सलाम करूंगा साहब कि आपने छात्रों के मुद्दे पर दिल से काम किया, राजनीति के वशीभूत काम नहीं किया। लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आपने वो जो चिट्ठी लिखी है ना, प्रेम पत्र, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, राहुल जी चिट्ठी लिखते हैं अपने ही मुख्यमंत्री को, जो मंत्री सरकार में शामिल आपके चार चार वहां, ये किसको बता रहे हैं? कल कहेंगे राहुल जी खड़गे जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, सोनिया जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। बेवकूफ मत समझिए छात्रों को, और उनका रोते हुए बच्चों को नहीं देखा आपने, बिलखते हुए आंसू का असर नहीं पड़ता आप पर? अरे वो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं
1: आलोक जी,
2: वन वन आदिवासी है, वनवासी
1: की जो जो मांगती, भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, धर्मेंद्र प्रधान

0: इस्तीफा हुआ ऐसे में आलोक जी क्यों नहीं वहां पर आप लोग मानते हैं, मतलब क्यों ऐसे डिफेंड कर रहे हैं? और सवाल यही है कि ऐसा थोड़ी है कि एजेंसी अपने आइसोलेशन में काम कर रही थी, बच्चे वहां नौकरी का रेड कार्ड दिखा रहे हैं आलोक जी।
1: अंजना जी हम डिफेंड नहीं कर रहे, हमने तो तमाम लोगों को 22 लोगों को जेल में डाल रखा है। अगर हम डिफेंड कर रहे होते तो 22 लोगों को जेल में डालते क्या?
2: सचिव
1: मैं तो कह रहा हूँ एंटी चार्ज के दिन एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा,
2: आप रुक गए थे क्या?
1: एनटीए के दो चेयरमैन और दो डीजी को, दो डीजी और दो चेयरमैन को आप अरेस्ट कर लो।
2: अरे गिरफ्तार तो मुख्यमंत्री हो जाए, जांच तो सही से करा लो।
0: खबर इस वक्त आ रही है अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, 14 साल के बच्चों को भी उम्मीद नहीं है जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था। यूपी में कोई शिक्षा मंत्री है क्या, ये अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। सुधांशु जी इसका सीधा जवाब दीजिए।
3: अभी अमित जमाई भी बोल रहे थे तो मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए हमारी सरकार में पर्चे के द्वारा सिलेक्शन होता है और यह आरोप लगा कि भाई पर्चा लीक हो गया, मगर अंजना जी इनकी सरकारों में पर्चे के द्वारा सिलेक्शन नहीं होता था, पर्ची के द्वारा सिलेक्शन होता था और वो पर्ची कभी लिखी नहीं होती थी। वो तो पर्ची जिसके नाम की कटती थी उसी को बस अंदर पता रहता था। और अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सारी की सारी प्रतिभा 4-5 जिलों के बमुश्किल 100 परिवारों के बच्चों में सारी प्रतिभा आ जाती थी, वही सेलेक्ट होते थे, इंटरव्यू के नंबर बढ़ा दिए जाते थे। एक एक विशेष प्रकार के छात्रों को 95, 96, 97% नंबर मिलते थे और इसके बाद भी बाकी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं तो उन्हें इंटरव्यू में 35 और 40% नंबर दे दिए जाते थे। और अचानक जब सरकारें बदल जाती थी, चाहे बसपा की सरकार रही हो या हमारी, तो सारी प्रतिभा लुप्त हो जाती थी। तो सबको पता है और जो जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उस जमाने में सबको पता है हमारी सरकार ने आके क्या किया है, योगी जी की सरकार ने आके। अब इंटरव्यू बोर्ड पहले से डिसाइड नहीं होता है, सेम डे एक पैनल होता है उसमें से कौन किस इंटरव्यू बोर्ड में जाएगा उसी दिन पता चलता है। कोई स्कोप नहीं है कि कोई कैंडिडेट पहले से पता लगा के सेटिंग कर सके और सारे इंटरव्यूज की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। ये जो अपने मन से वो पर्ची आती थी और कर दिए जाते थे, तो पर्चा और पर्ची का अंतर है सिलेक्शन में। ये देश हरियाणा में इनकी सरकार पर्ची से अपॉइंट करती थी, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार पर्ची से अपॉइंट करती थी, ये सारे देश को पता है। इसलिए पर्ची वाले पर्चा लीक होने के ऊपर इतना हो हल्ला मचाते हुए उचित प्रतीत नहीं होता।
0: अमित जमई जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स।
2: मैं उम्मीद करता था अंजना जी कि आज कम से कम सुधांशु त्रिवेदी भाई लखनऊ में ही पले बड़े हैं, उन बच्चों के बारे में दो शब्द बोल देंगे कि हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, न्याय करिए। लेकिन सुधांशु जी ने आज लखनऊ से नाता अपना तोड़ लिया। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में 12 विश्वविद्यालय बनाए, आज वो रन कर रहे हैं, बच्चों के ख्वाब वहां से पूरे हो रहे हैं और आपने बच्चों को निराशा दिया। जैन अल्फा, वो जैन अल्फा जब मोदी जी आए तो 10 साल के थे, आज वो 22 साल के हो गए हैं। 22 साल में उन्होंने नेहरू जी को नहीं देखा है, डॉक्टर लोहिया को नहीं देखा है, आपको देखा है। वो आपको देख रहे हैं कि आप उनके सबसे बड़े भविष्य के दुश्मन हैं। आप उनको स्कूल नहीं देना चाहते हैं, आप उन्हें स्वास्थ्य नहीं देना चाहते हैं, आप उन्हें शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो देहरादून और मायो है, सब है। लेकिन इस देश की 80% आबादी का जो भविष्य, जो बच्चे हैं, तो सुधांशु जी आज वो खून सड़क पर आ गया है, आपको सामना करना पड़ेगा, ईमानदारी से सामना करना पड़ेगा। कहिए लखनऊ होने के नाते कि हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि सारे बच्चों को बुलाइए, अब बेसिक जो बीएसए है यहां लखनऊ का उसको टांग दीजिए, जेल भेजना, जो भी करना है कर दीजिए, कि हमारे बच्चे ये परेशान क्यों हैं। ये बच्चे बीजेपी के, समाजवादी के, कांग्रेस के नहीं हैं, ये बच्चे हमारे देश के। सुधांशु जी आपके जैसे हैं, हमारे जैसे हैं, कल ये भी सुधांशु त्रिवेदी बन सकते हैं, लेकिन आप उनका भविष्य अंधकार में डाल रहे
0: हैं। चैलेंज कर रहे हैं लखनऊ के लिए,
2: कुछ कह दीजिए आज।
3: हाँ मैं बता रहा हूँ, कहिए आप मुख्यमंत्री जी को कहने की जरूरत सुनिए। मुख्यमंत्री जी, हाँ अब मैं बोल दूं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहने की जरूरत नहीं है, वो सतर्क, सजग और संवेदनशील होकर सभी छात्रों के विषय में स्वयं बात कर रहे हैं। आप क्या ऐसे होते होंगे मुख्यमंत्री कि उनके पिताजी को भी कहने की जरूरत पड़ती थी कि बताएं मुख्यमंत्री जी ये काम हो पाएगा कि नहीं, बताएं मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन कब हो पाएगा। इसलिए आपका वो अपना अनुभव है, मगर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया अमीक भाई। ये 5 जिलों के 100 परिवारों में ही सारी प्रतिभा राज्यों की परीक्षाओं में अचानक आ जाती है और जाते ही वो प्रतिभा लुप्त हो जाती है, क्या यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है कि प्रतिभा कितनी, प्रतियोगिता कितनी पारदर्शी होती थी? जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, मैं भी आपको चैलेंज कर कहता हूं, बताइए पुलिस की नौकरी में किसी ने कहा हो कि उसने पैसा दे के या क्षेत्र विशेष का होने के नाते या जाति विशेष का होने के नाते या परिवार विशेष का होने के नाते या मजहब विशेष का होने के नाते उसे कोई भी लाभ मिला हो आज 11.5 वर्षों में? आप बता दीजिए, लाखों लोग नियुक्त हुए, आज 11.5 वर्षों में 1150 दिखा दीजिए ऐसे।
2: मैंने आपसे कहा सुधांशु भाई कि 12 विश्वविद्यालय तो सिर्फ माननीय अखिलेश जी के बनाए हुए हैं, नेताजी का तो जोड़ लीजिए तो।
3: अच्छा, कौन कौन से बारह विश्वविद्यालय
2: काम किया था?
3: वो एक मोहम्मद अली जौहर को छोड़ गए,
2: ये काम किया था? नहीं, मैं आपको लिस्ट बता देता हूं, मैं आपको लिस्ट बताऊं,
0: बोले बोले
2: मुझे समय, मैं लिस्ट बताऊं आपको।
0: पढ़ाई पढ़ाई
2: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विद्यालय सरकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया आपके विश्वविद्यालय,
3: अरे भैया वो तो गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज था,
2: अरे हारकोट बटकर प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कितना गिनाऊं मैं आपको? दो विश्वविद्यालय,
3: अरे हारकोट बटकर अंग्रेजों के जमाने से है भाई,
2: दो विश्वविद्यालय का नाम आपके मुख्यमंत्री नहीं बता सकते
3: भाई,
2: जो विश्वविद्यालय हैं
3: यूपी का गवर्नर था, ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है
2: साहब,
3: और इन्होंने
2: विश्वविद्यालय बनाया, नाम
4: बना था मुलायम सिंह जी ने बनाया था, उसका अद्भुत चेहरा क्या था, बदल दीजिए, आजम खान जब तक इस धरती पे जिंदा रहेंगे उसके वाइस चांसलर रहेंगे, ऐसा तो आप लोग शिक्षा नीति बनाते हैं साहब, और ये कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी का कब्जा हो गया है। सुनिए, प्लानिंग कमीशन जो बनाते थे ना, वो मोंटेक सिंह लगातार, पता नहीं मैं तो बचपन से देखता था, यही है प्लानिंग कमीशन में।
0: लेकिन सुधांशु जी, इस शो का अंत का टाइम आ गया, इतना ही कहेंगे, एक बार दिखा दीजिए जो ये तीसरी बात है कि ये तीसरा जो हमारा ग्राफिक्स है, रिज्जा को पुज्जा लिखा हुआ था, पार्सन्स को पार्सो लिखा था एनटीए के एग्जाम में, घुरिये को घुनिये लिखा था, एआर देसाई को एके देसाई लिखा था, ये जो आपने बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को रखा है उनको बोलिए एक प्रूफ रीडर रख ले, बच्चों की जिंदगी आसान हो जाएगी, ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती है बार बार री एग्जाम के लिए। आप सभी का धन्यवाद, आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर रहिएगा हमारे साथ, शिक्षा में सुधार के लिए जेन जी और जेन अल्फा की अगस्त क्रांति दिखाएंगे, इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया, और आखिर में आपको बताएंगे कि जंगल से तो नक्सल का सफाया हो गया लेकिन ये नक्सल कुछ नेताओं के दिमाग में कैसे आ गया, देखते रहिए आज।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: EU
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: Nehemiah, let's go.

0: The new BE6 Sportec.
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
2: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: बिजली का बिल पेड
5: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
6: कैसे?
5: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
6: इतना माही वे।
7: पापा।
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
8: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. Sarah Sanitary Wear, it's your moment of Sarah.
3: पैसे ज्यादा कभी थे नहीं, लेकिन फिर भी पैसे की भूख इतनी थी. न्यूज़पेपर डिलीवरी करता था, फिर कुछ दुकानों में सफाई करता था, फिर दुकान में सेल्समैन बना. कॉलेज के सालों में एक बेटिंग शॉप में कैशियर था.
4: पर क्या इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट टेस्ट मैच. बहुत लंबी सोच चाहिए, बहुत ही लंबी अवधि में ही पैसा बनता है.
3: मुझे दुनिया में हर चीज चैलेंज करने में बहुत मजा आता है. राइट,
4: कॉफी कैन इन्वेस्टिंग.
3: हाँ जी,
4: इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे आपकी क्या मंशा थी?
3: इंडिया छोटा सा मार्केट है, दुनिया का 3%. सो मुझे लगा यार विदेश में निवेश तो सोचना चाहिए. एआई का प्रहार शुरू हो चुका है.
4: तो क्या मिडिल क्लास गरीबी की ओर जा रहा है, भारतीय मिडिल क्लास?
3: इस प्रकार का टेक्नोलॉजी घातक है दुनिया भर के मिडिल क्लास के लिए.
5: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.
6: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
7: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
6: नहीं सर.
7: 12th किससे की हो?
6: 12th सर मेरा PCM से रहा.
7: कंपाउंड क्या होता है?
6: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर.
7: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी. तुम पूछ रहे थे ना, यही एक मिनट.
6: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को. इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं.
7: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना.

स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है, उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया, कोई बीड से आया, कोई लातूर से आया, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे?

नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिनभर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एनटीए फिर से परीक्षा में गड़बड़ी के चलते सवालों के घेरे में। इस बार मामला यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके 3 विषयों के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी के चलते एजेंसी ने री एग्जाम का फैसला लिया।

0: तो शाम के 7 बजे के इस खास शो में दिनभर की तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एनटीए में परीक्षा में गड़बड़ी के चलते सवालों के घेरे में ये एजेंसी है। इस बार मामला यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़ा हुआ है।
1: वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर रहे कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राजस्थान में अमित शाह ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोला, तो आज दिन की शुरुआत ही बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद से की है।
2: ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सरतन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है।
3: तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है।
4: सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जेन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है।
5: पहले से वंदे मातरम का अपमान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, सब चीज का, राष्ट्रीय प्रतीक, अदालत, सबका कांग्रेस बार बार अपमान किया है केवल राजनीतिक हित के कारण।
1: हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी, इसलिए पलटवार की कोशिश शुरू हुई।
6: हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है।
1: इमरान मसूद तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका धर्म वंदे मातरम पढ़ने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे।
6: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा।
1: कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते, इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
7: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है।
1: तो वंदे मातरम पर विवाद थमने के बजाय गहराता जा रहा है। आज तक ब्यौरा।
0: और अब बात झारखंड में जारी छात्र आंदोलन की करेंगे, जिसमें रांची में छात्रों का धरना प्रदर्शन 24वें दिन जारी था और आज सरकार से मुलाकात लगभग 2 बजे तय थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। सरकार से अब तक छात्रों की मुलाकात ही नहीं हुई है, जिमाने आज की बातचीत शुरू होने से पहले ही विफल हो गई। शुरू हुई नहीं क्योंकि कई घंटों से आंदोलनकारी छात्र कर रहे हैं अपना आंदोलन और आज सरकार ने छात्रों की मीटिंग के लिए भी बुलाया था, लेकिन खुद सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा।

0: चौथे राउंड की ये वार्ता होनी थी, तीन राउंड की वार्ता अब तक फेल हो चुकी है और खुद राहुल गांधी सरकार से पत्र के माध्यम से गुहार लगा चुके हैं कि सीएम को स्वयं मिलना चाहिए आंदोलनकारियों से। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यजीत, मुलाकात क्यों नहीं हुई आज?
1: बार बार सरकार दे रही है कि वो छात्रों के लिए कमिटेड है। कांग्रेस भी यही कह रही है कि वो छात्रों के लिए सीरियस है। राहुल गांधी ने एक पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री को सलाह दिया है कि इस इशू को सॉर्ट आउट करें, अगर पॉसिबल है तो मिले वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे डायरेक्ट जाकर मिले या उनको बुलाकर मिले और उनके जो डिमांड्स हैं उसको कंसीड करें और वो लेजिटिमेट है, ये वर्ड भी उनके चिट्ठी में लिखा हुआ है, यानी वैध है उनका। तो ये बार बार कहा जा रहा है और ये शेड्यूल नहीं था। कैबिनेट की मीटिंग जो है तमाम मंत्रियों को बुलाया जाना, ये बिल्कुल शेड्यूल में नहीं था। शेड्यूल ये था कि यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में प्रोटेस्टर्स को बुलाया गया था वार्ता के लिए अपने विधि सलाहकार के साथ, यानी लीगल कंसल्टेंट के साथ, लीगल एडवाइजर के साथ। लेकिन जब वो आधे रास्ते पहुंच चुके थे तो उनको वापस भेजा गया और उनको कहा गया कि आपको जब बताया जाएगा आगे तब आप वापस आइएगा मिलने के लिए, तब तक आप वहीं रहें जो आंदोलन स्थल है आपका, यानी जयपाल सिंह स्टेडियम में रहिए। और इस बीच अचानक से एक मीटिंग जो है वो कन्वीन की जाती है, तमाम मंत्रियों को बुलाया जाता है, यानी कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा वो कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा। और प्रोजेक्ट भवन के बाहर वैसे कैंडिडेट्स की भीड़ हो गई है जिनका सिलेक्शन सीजीएल के थ्रू हुआ था। 2250 कैंडिडेट जो है वो लाइन से खड़े हैं, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट वहां खड़े हैं। अब उनको ये भय हो रहा है कि कहीं ये इम्तिहान जिस तरह से प्रेशर माउंट किया गया है इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा कि सीजीएल में भारी पैमाने पे धांधली हुई थी, जेपीएससी में धांधली हुई थी, तो 14 जेपीएससी जो है उसमें तो अभी मेंस एग्जाम हुआ ही नहीं था, प्रीलिम्स ही हुआ था, तो यहाँ तो किसी की नौकरी नहीं लगी है। लेकिन जिनकी नौकरी लग चुकी है उनको ये जरूर चिंता सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार पूरे एग्जाम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया समान जानकारी के लिए आपका। और अब बात लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण की, जिसमें प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलियों को पहचानने और समाज में उन्हें अलग थलग करने की जरूरत बताई थी। इससे एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। इस जंग में सबसे आगे खड़े नजर आए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। चिदम्बरम ने कहा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और महबूबा मुफ्ती भी इसी से मिलता जुलता बयान दे चुके हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि दिमागी नक्सल वाले लोग खुद ही सामने आ गए।
2: लाल किले से पीएम मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कही। लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी, दिमागी नक्सल। पीएम मोदी का इतना बयान कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था और उनकी प्रतिक्रिया तीखी। हैरत अंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के समूल नाश की बुनियाद रखी। चिदम्बरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही तो कभी विपक्ष को अर्बन नक्सल, आंदोलनजीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। दरअसल पीएम के बयान के बाद सीजेपी के सौरभ दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदम्बरम से लेकर पीडीपी की महबूबा और आपके केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
3: मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है।
4: जब चिदंबरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है।
2: अब कांग्रेस कह रही है कि पीएम के आसपास जो लोग हैं वही देश के लिए खतरा है।
5: समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीची कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
2: वार पलटवार के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पी चिदम्बरम के बयान पर आपत्ति जताई। भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल पर हमला कर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां आने वाले दिनों में वार पलटवार का लंबा सिलसिला दिख सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में भी चुनाव थोड़ा दूर है लेकिन अभी से सियासत तेज है। अखिलेश यादव ने कभी अपने साथी रहे आरएलडी को बिना नाम लिए चवन्नी कह दिया। पिछला विधानसभा चुनाव साथ लड़ने वाले जयंत चौधरी ने चुनाव के बाद एनडीए का दामन थाम लिया था, अब अखिलेश ने उसी दगाबाजी पर वार किया।
6: मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा?
7: हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
8: यूपी में 27 की सियासी चर्चा रुपया और चवन्नी पर चकर घिन्नी बन गई है। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी का बगैर नाम लिए जोरदार निशाना साधा।
7: कहाँ कहाँ से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
8: दरअसल पिछले चुनाव में अखिलेश ने जयंत चौधरी को 33 सीटें दी थी लेकिन चुनाव के बाद जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए। अखिलेश उसी पर तंज कस रहे थे, अब आरएलडी पलटवार कर रही है।
9: माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उचित टिप्पणी की गई है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि उनके पिता मुलायम सिंह को चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बनाया था। मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी थी और उसके बाद उन्हीं के पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में किस तरीके से धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, ये पूरा देश उसका गवाह है।
8: दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों दावा करते हैं कि उनके कारण ही पिछले चुनाव में एक दूसरे को सीटें मिली थी लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़कर आरएलडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और दो लोकसभा की करीब 10 विधानसभाओं में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि आरएलडी को एनडीए के पाले से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी भड़काऊ बयान दे रही है।
10: जयंत चौधरी जी ने खुद से ही कहा था कि वो चोनी नहीं है वो जो पलट जाए, लेकिन उनको पलटने में देर नहीं लगी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को राज्यसभा ना भेज करके श्री अखिलेश यादव जी ने आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए श्री जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किया था, लेकिन वो इतने एहसान फरामोश थे कि उन्होंने उनको पाला बदलने में उनको पलटने में टाइम नहीं लगा।
8: अब अखिलेश यादव के बयान को आरएलडी चौधरी जयंत सिंह ही नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह और पूरे किसान समाज का अपमान बता रही है।
11: अब देखना यह है कि चवन्नी अठन्नी और रुपए की सियासत में यूपी के लिए आरएलडी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई कहां तक जाती है और सियासी तौर पर इन बयानों के बीच किसका नफा किसका नुकसान होता है ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी ने आरक्षण की मांग तेज कर दी है। निषाद पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री संजय निषाद ने सरकार को चेतावनी दी है कि आरक्षण की मांग पूरी करने में कहीं देर ना हो जाए। संजय निषाद की इस चेतावनी के पीछे मंशा क्या है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
12: यूपी में 27 के संग्राम की शुरुआत अभी नहीं हुई है मगर समीकरण साधने की कोशिशें जरूर शुरू हो गई हैं। सीटों के लिए दबाव की राजनीति तेज हो गई है। यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है। संजय निषाद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए अगर उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। दरअसल संजय निषाद की मांग है कि निषाद समाज और उससे जुड़ी उपजातियों जैसे केवट मल्ला बिंद मझवार और अन्य मछुआरा जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। इसी वादे को लेकर वो पिछले चुनाव में उतरे थे लेकिन अब तक उनका ये चुनावी वादा पूरा नहीं हो पाया है। अब वो आने वाले चुनाव की तैयारी इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। उधर यूपी के सीएम भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। आज यूपी में सीएम योगी ने 78,000 से अधिक उचित मूल्य की राशन दुकानों का लाभांश 90 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर 125 रुपए क्विंटल कर दिया। इसके अलावा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली भी शुरू की है। सीएम योगी ने इस मौके पर 2017 से पहले और 2017 के बाद की सियासत का फर्क समझाया।
13: उस समय की सत्ता में जो लोग आसीन थे, नियत उनकी खराब थी, उनकी नियत में खोट था। उनके भ्रष्ट आचरण की आंच से आप चाहते हुए भी अपने आप को बचा नहीं सकते थे, और परिणाम क्या होता था?
12: जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, यूपी में सियासी लोग अपनी अपनी तैयारियों को और धार देंगे। आज तक ब्यूरो।
0: तो एनटीए की परीक्षा में फिर से गड़बड़ियों के चलते ये संस्था सवालों के घेरे में आ गई है। आपको बता दें, इस बार मामला यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके तीन विषयों के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी के चलते एजेंसी ने री एग्जाम का फैसला लिया है। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। दरअसल इन तीनों विषयों के प्रश्न पत्रों में तथ्य, टाइपिंग, ट्रांसलेशन और व्याकरण से जुड़ी कई गलतियां पाई गई हैं। एनटीए के एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि केवल चैलेंज प्रक्रिया से इन खामियों को ठीक करना संभव नहीं है। ऐसे में तीनों विषयों की परीक्षाएं फिर से कराने का फैसला किया गया।
14: आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
15: क्या बड़ी मांगे हैं आपकी?
14: हमारी यही मांग है कि एनटीए को बैन करिए। ये एक भ्रष्टाचारी एजेंसी है, ये कामयाब नहीं है पेपर कराने के अंदर, ये जिम्मेदार नहीं है। शिक्षा मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। इस देश का विद्यार्थी रुकने वाला नहीं है,
15: आगे भी धरना प्रदर्शन,
14: हमारा लगातार धरना जारी है।
0: बात बिहार के लखीसराय की, यहाँ पर भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई। लखीसराय स्थित भगवान शिव के मशहूर मंदिर अशोक धाम में सावन के तीसरे सोमवार में बड़ी तादाद में शिव भक्त जुटे। एसडीएम के मुताबिक बिजली का एक खंभा गिरने से करंट की अफवाह फैल गई, जिससे भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे और इसी भागम भाग में एक दूसरे को कुचलते गए। 7 लोगों की जान चली गई, कई घायल।
8: लखीसराय में भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर अशोक धाम में भोले के भक्तों का तांता लगा था। सावन का सोमवार था और हर भक्त भोलेनाथ को जलाभिषेक की इच्छा लिए पहुंचा था। अचानक भक्तों के बीच भगदड़ मची, कोई किसी की पीठ को पायदान बनाकर भागा, कोई किसी को धक्का देकर निकला, कोई किसी को कुचलते हुए दौड़ा। पल भर में आस्था के मेले में मौत ने तांडव कर दिया।
16: जो लोग घुसते हैं ना गेट के पास, बांस जहां लगा हुआ है वहां पर ही घुस रहे थे, कि बाहर से कम 100 आदमी घुसने के लिए जबरदस्ती ठेल दिए हैं सबको, जो ठेल दिए सब गिर गई, उसी पर सब आदमी चढ़ चढ़ के अथी घुसने लगा। वहां कोई प्रशासन नहीं, कोई अथी था, कोई देखभाल नहीं।
17: 225 औरत गिर गई एक दूसरा पे, उसी में दब के बहुत लोग बेहोश हो गए। हम भी बेहोश हो गए थे।
8: सवाल ये है कि भगदड़ मची क्यों? डीएम कहते हैं कि बिजली का एक खंभा गिरा था।
18: पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ पड़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए।
8: कई लोगों की मौत हुई, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की।
19: जांच हो रही है और मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा कर ही दी कि सबको 4-4 लाख रुपए।
8: बिहार की सरकार कह रही है कि हादसे की पड़ताल की जा रही है और जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
20: संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है, एक बार हम लोग जा रहे हैं, उसको देखेंगे, किसकी लापरवाही है, जो भी होगा उसकी जांच होगी।
21: और मृतक परिवारों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। मेरी पूरी संवेदना मृत परिवारों के साथ है।
8: सवाल ये नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है कि हादसा हुआ ही क्यों। लखीसराय से विनोद कुमार के साथ शशिभूषण, पटना आज तक।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में आयोजित इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। हाल ही में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे कर चुके सीएम विजय ने इस दौरान सच को और मुखर होकर बोलने देख के संदेश के साथ इंडिया टुडे तमिल यूट्यूब चैनल का आधिकारिक उद्घाटन भी किया। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के भविष्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों और सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियां एक मंच को साझा करती दिखी।
1: लेट ट्रूथ स्पीक लाउडर फॉर एवरी जर्नलिस्ट एन एक्सट्रीमली रीअश्योरिंग मैसेज। थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हुज टेकन टाइम आउट ऑफ हिज शेड्यूल टू जॉइन अस हियर एट द इंडिया टुडे राउंड टेबल। पॉलिटिकल चेंज इन द एयर व्हिच इज व्हाट वी आल्सो सॉ।
3: This is a new beginning, a new era.

0: अरबाज शेयर बाजार की कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार पांचवें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स 281 अंक टूटकर 77,728 और निफ्टी 78 अंक की गिरावट के साथ 24,288 पर बंद हुआ है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव के चलते निवेशकों में सतर्कता बनी हुई है और शेयर बाजार पर इसी का दबाव देखा गया है। शेयर बाजार में गिरावट के साथ रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे कमजोर होकर 95.61 के स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत में देरी के चलते रुपए पर दबाव रहा है। हालांकि डॉलर में कमजोरी से रुपए की गिरावट कुछ सीमित रही। वहीं सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा। सोना 1,703 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,54,066 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी 2,531 रुपए बढ़कर 2,36,373 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। और अब बात क्रिकेट की। गोल टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही भारत को पहली पारी में 178 रन की बढ़त मिल गई है। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए। खराब रोशनी के चलते दिन का खेल समय से पहले ही खत्म कर दिया गया।
1: कॉल में बजेगा टीम इंडिया का डंका। शुरुआती झटकों से उबर गया श्रीलंका। पहली पारी में भारत को मिली 178 रन की बढ़त। ये पारी की दूसरी गेंद थी जब मोहम्मद सिराज ने खाता खुलने से पहले ही ओपनर निशान फर्नांडो को चलता कर दिया था। फिर 90 रन होते होते श्रीलंका के पांच बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। एक बार तो लगा कि जल्दी ही श्रीलंका का बोरिया बिस्तर बंद जाएगा, लेकिन इस साझेदारी ने शुरुआती झटकों से श्रीलंका को उबार दिया।
2: Likes to go in front of square on the leg side, Dinusha.
1: एक छोर पर सोनल दिनुशा थे तो दूसरे छोर पर डिकवेला रन बना रहे थे। डिकवेला ने 80 रनों की पारी खेली जबकि सोनल ने शानदार शतक जमाया।
2: That's the 100. That is indeed the 100. And that's he fixed the mid-wicket area.
1: रविंद्र जडेजा ने शतक दिए। सोनल को पवेलियन की राह दिखाई। जडेजा ने पहली पारी में 3 शिकार किए। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट भी पूरे कर लिए। इसके बाद श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई और भारत को मिल गई 178 रन की बढ़त। आज तक ब्यूरो।
0: वक्त एक ब्रेक का हौसला बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। In association with
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप,

0: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
3: इतना माही वे।
4: पापा।
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का,
3: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
2: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए,
4: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
5: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है,
6: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को, और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
7: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
2: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। आज तक
8: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
9: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
8: नहीं सर।
9: 12th किससे की हो?
8: 12th सर मेरा PCM से रहा।
9: कंपाउंड क्या होता है?
8: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर,
9: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
8: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
9: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: सोनिया जी ने जिस प्रकार से व्यवहार किया और जो वीडियो के फुटेज आ रहे हैं वो ये वंदे मातरम के प्रति असम्मान को दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है उस मानसिकता में राष्ट्रवाद बहुत एक तरीके से जो राष्ट्रवाद के प्रतीक है उसके प्रति उनको लेकर एक विशेष प्रकार का एक द्वेष भाव है, ये नहीं होना चाहिए। और देश के कानून का, देश के राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रगान का सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने
1: खड़गे जी के मंच को गंगा जल से उत्तराखंड के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धोया है, गंगा जल से। दलित बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको, देश का आदिवासी बर्दाश्त नहीं होता, मुसलमान तो खैर नफरत ही है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको।
2: तो लगातार क्या लेवल
1: बना राहुल गांधी जी के कई वीडियो आपको दिखा दूंगा जिसमें खड़गे जी के लिए कुर्सी खींच रहे हैं या उठा रहे हैं, और मोदी जी का वीडियो भी दिखा दूंगा, नितिन नवीन का हाथ पीछे करके खींच दिया। आ गई समझ में? हमें ना सम्मान दिखाएं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राष्ट्रीय महासचिव पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा। 22 को होगी पहली मीटिंग, पीएम मोदी ने दी बधाई। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला बड़ा दांव, नितिन नवीन की टीम को मिला बंपर प्रतिनिधित्व। 8 चेहरे शामिल, राजस्थान और गुजरात से भी 4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड में सरकार से अब तक नहीं हुई आंदोलनकारी छात्रों की बात, राहुल गांधी ने सोरेन को लिखी चिट्ठी, कहा मांगों पर करें विचार। जेएसएससी ऑफिस पर सीआईडी की छापेमारी। एनटीए को लेकर शिक्षा मंत्री ने की मीटिंग, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव रहे मौजूद। प्रहलाद जोशी ने परीक्षा प्रक्रिया की ऑडिट और सुधारात्मक कदमों की मांगी रिपोर्ट। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 7 के इंतजार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में युवाओं का जोश है तो अनुभवी चेहरे भी हैं। नितिन नवीन की टीम में क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया है और सबसे खास बात यह है कि बीजेपी की नवीन टीम में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत चुनावी राज्यों का विशेष ध्यान रखा गया है। अब इस टीम पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने की है, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की टीम को अपना कौशल और दमखम दिखाना होगा।
3: बीजेपी आला कमान ने 20 जनवरी 2026 को जब युवा चेहरे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया तो संगठन के बाकी नेता भी हैरान रह गए थे, क्योंकि तब तक वो बिहार की राजनीति तक ही सीमित थे। उस समय उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थी। तभी बीजेपी थिंक टैंक ने युवा नेतृत्व को पार्टी की कमान सौंपने का सियासी संदेश दे दिया था। जनवरी से इस बात का इंतजार था कि जब उनकी टीम बनेगी तो उसमें किन किन चेहरों को जगह मिलेगी, लेकिन करीब 7 के लंबे इंतजार के बाद आज नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। नितिन नवीन की टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव बनाए गए हैं। उनकी टीम में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के साथ महिलाओं की भागीदारी पर फोकस किया गया है। खास बात यह है कि इसमें उन राज्यों को विशेष तरजीह दी गई है जहां इस साल या अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी टीम की तैयारी की है। टीम में यूपी के 6 पदाधिकारी हैं, वहीं राजस्थान से 3, दिल्ली से 6, महाराष्ट्र से 4, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बंगाल, केरल और बिहार से 2 चेहरों को जगह दी गई है।
4: सबसे बड़ा बदलाव तो युवा मोर्चा के अंदर ही है, तेजस्वी सूर्या को हटाकर हिमांग जोशी को रखा गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर ये है, हमको दर्शकों को बतानी चाहिए कि जितने भी मोर्चे हैं उन सभी मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं सबके सब मोर्चों के अध्यक्षों को बदल दिया गया है। हिमांग जोशी जो है वो अब बन गए युवा मोर्चा अध्यक्ष, इससे पहले तेजस्वी सूर्या थे। रूप कुमार चौधरी बन गई है महिला अध्यक्ष, इससे पहले वनती श्रीनिवासन जो है वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। ओबीसी मोर्चा में बदलाव हुआ है, किसान मोर्चा में भी बदलाव हुआ है और लगभग सभी माइनॉरिटी मोर्चे में जमाल सिद्दीकी थे, वहां पर अब कुमार बासित अली आ गए। एवरेज एज की अगर हम बात करें तो पहले ये कहा जा रहा था, सूत्रों से यह दावा किया जा रहा था कि एवरेज एज इस टीम की होगी लगभग 45 से 50 तक की, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं जिनकी उम्र 50 से 60 तक के बीच में भी है। विप्लव देव हो गए लगभग 56 साल के हैं, जय पांडा की भी अच्छी खासी उम्र है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी ये युवा टीम है, ये मिक्स है, ये ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड दोनों का मिक्स है और सभी को प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया है।
3: अब देखिए नितिन नवीन की टीम में किन किन महासचिवों को जगह दी गई है। इनमें सबसे खास नाम स्मृति ईरानी का है जो अमेठी से 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद से साइडलाइन बताई जा रही थी। उसके बाद स्मृति ईरानी ने वापस से टीवी सीरियल में काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से उनके सियासी कद में काफी इजाफा हुआ है। वहीं उनके अलावा पार्टी ने यूपी के बस्ती से दो बार सांसद रहे हरीश द्विवेदी को भी महासचिव की जिम्मेदारी दी है, जिसका सीधा संदेश है बीजेपी की नज़र 2027 में होने वाले यूपी चुनाव पर है। नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महासचिवों में विनोद तावड़े महाराष्ट्र से, सुनील बंसल दिल्ली से, बिप्लव देव त्रिपुरा से, स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश, सतीश पुनिया राजस्थान, गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश और संजय भाटिया हरियाणा।
4: देखिए हरीश द्विवेदी क्योंकि उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मैंने पहले भी बताया, बिहार के सह प्रभारी थे, उसके बाद असम के प्रभारी के तौर पर वो काम कर रहे हैं और अभी उनको ताजा

0: कुटी जो केरल से आते थे, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वहां से उनको जगह मिली है। उत्तर प्रदेश की रेखा वर्मा पहले भी उपाध्यक्ष थी, इस बार भी उनको उपाध्यक्ष रखा गया। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी को जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, तो इस बार जो दो जनरल सेक्रेटरी हैं वो उत्तर प्रदेश से है। तो एक आठ अगर जनरल सेक्रेटरी है तो दो उत्तर प्रदेश से होना एक बड़ी बात है।
1: वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा सांसद बने पंजाब के तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। तरुण चुग इलेक्शन स्टेट पंजाब से आते हैं। उनके अलावा पंजाब से मनप्रीत बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।
0: मनप्रीत बादल, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। मनप्रीत बादल जो है वो अकाली दल में थे, अकाली दल से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से जो है वो भारतीय जनता पार्टी आए और अब पार्टी के उपाध्यक्ष है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है। तो इस तरीके से चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए कई निर्णय जो है वो किए गए हैं, कई लोगों को एडजस्ट किया गया।
1: इधर वरिष्ठ नेता और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र से आने वाले पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि महाराष्ट्र से ही आने वाले विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उनका कद भी बढ़ाया गया है।
0: पीयूष गोयल जो है वो पहले भी अमित शाह की टीम में भी जो है कोषाध्यक्ष रहते हुए मंत्री रहे हैं और लंबे समय तक रहे थे। तो ये पार्टी में होता है, कई बार ऐसे ट्रांजिशन होते हैं कि पार्टी को कोई जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए होता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं पीयूष गोयल उसमें बिल्कुल फिट बैठते थे। क्योंकि पीयूष गोयल जो है अगर आप देखें तो जब नितिन गडकरी बनकर आए थे अध्यक्ष, तब से जो है वो कोषाध्यक्ष थे और वो जिम्मेदारी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की 2016 तक निभाई साथ में, और समय समय पर उन्होंने भले ही जो है कोषाध्यक्ष के तौर पर पार्टी का काम ना देखा हो, लेकिन जब भी कोई जरूरत पड़ती थी तो पार्टी के जो खर्च का हिसाब है उसको जरूर देखते रहे।
1: अब नितिन नवीन की नई टीम पर आने वाले विधानसभा चुनावों में भगवा परचम फहराने की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि मोदी शाह की बीजेपी में परफॉर्मेंस ही वो कसौटी है जिससे किसी नेता का सियासी कद बढ़ाया या घटाया जाता है।
0: नितिन नवीन की नई टीम में जातिगत, सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ उन राज्यों को ज्यादा तरजीह दी गई है जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात जैसे राज्य हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में अनिल बलूनी मीडिया संयोजक हैं और मीडिया प्रभारी के पद पर पहले ही की तरह बने हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और आशीष अग्रवाल के साथ सिद्धार्थ यादव को नई टीम में मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि देश भर में अपने सोशल मीडिया संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बीजेपी ने यह बदलाव किया है। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आईटी सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अमित मालवीय 2015 से आईटी सेल के प्रमुख थे, उनकी जगह दीपक महस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और राम माधव समेत कुल 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा भी शामिल है।
0: ये तय है कि 2029 का लोकसभा चुनाव नितिन नवीन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनकी टीम के कंधों पर 2029 के लोकसभा चुनाव, आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ साथ संगठन में विस्तार और मजबूत करने के साथ साथ अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।
1: लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं। हालांकि अनिल बलूनी पार्टी के मीडिया संयोजक और मीडिया इंचार्ज के पद पर बने रहेंगे, वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को नई टीम में मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि देश भर में अपने सोशल मीडिया संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बीजेपी ने ये बदलाव किया है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं ने जगह बनाई है।

0: जिसमें स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश, वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान, डी पुरंदेश्वरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आंध्र प्रदेश, रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, वर्षा बेन दोषी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुजरात, डॉक्टर भारती पवार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महाराष्ट्र, डॉक्टर मधुचंद्र कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पश्चिम बंगाल, कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री मध्य प्रदेश, फांगनोन कोन्यक राष्ट्रीय मंत्री नागालैंड, संगीता यादव राष्ट्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष छत्तीसगढ़, प्रीति गांधी सोशल मीडिया सह संयोजक महाराष्ट्र।
1: लगभग 7 महीने के इंतजार के बाद नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। इसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया है। पहले क्यास ये लगाए जा रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं को इस टीम में जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ साथ अमित मालवीय जैसे बड़े चेहरों को ड्रॉप कर दिया गया है, जो ये दर्शाता है कि पार्टी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। दीपक मस्के के नेतृत्व में लगभग 4 और को कन्वीनर की एक नई टीम बनाई गई है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान की जगह पीयूष गोयल को ट्रेजरर के रूप में नितिन नवीन की टीम में जगह दी गई है। इसी के साथ साथ लगभग 1 दर्जन महिलाओं को बीजेपी की इस नई टीम में जगह दी गई है, जो ये साफ दर्शाती है कि पार्टी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर खासा सीरियस है।
0: बीजेपी ने नई टीम के गठन में युवा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी ध्यान रखा है कि देश के सभी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसीलिए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पार्टी ने हर संभव कोशिश की है कि किसी राज्य या तबके को यह शिकायत न रहे कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं रहा। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: नितिन नवीन की टीम में भी उपाध्यक्ष पद पर वसुंधरा राजे, बैजन पांडा, तारिक मंसूर, रेखा वर्मा बरकरार रहे हैं, जबकि सरोज पांडे, डीके अरुणा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का उपाध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई है। हालांकि कुछ नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें मोदी कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है, लेकिन यूपी से 2 मुस्लिम नेता नितिन नवीन की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे।
0: इस बार नितिन नवीन की टीम में बीजेपी ने 2 मुस्लिम चेहरों को जगह दी है, और संयोग है या सियासी प्रयोग, क्योंकि दोनों ही चेहरे उत्तर प्रदेश से हैं। इनमें यूपी से आने वाले तारिक मंसूर को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी से जिन 8 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, उसमें 3 ओबीसी, 1 ब्राह्मण, 1 पारसी, 2 मुस्लिम और 1 दलित को जगह मिली है। अगर नितिन नवीन की टीम की औसत उम्र की बात करें तो जैसे युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वैसे ही उनकी टीम भी काफी युवा है। हालांकि इसमें अनुभवी चेहरे भी शामिल हैं। नितिन नवीन की टीम के 6 पदाधिकारी 40 साल से कम उम्र के हैं, जबकि 15 सदस्य 40 से 49 साल की उम्र के हैं और 21 सदस्य 50 से 59 साल के बीच में हैं। एबीवीपी से अपने सफर की शुरुआत करने वाले विनोद तावड़े को उनके कुशल सांगठनिक क्षमता की वजह से फिर से महामंत्री बनाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने वाले सुनील बंसल को दोबारा महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
2: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस नई टीम की पहली बैठक 22 अगस्त को होनी है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं नितिन नवीन करेंगे। नई टीम की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी। तमाम नामों से अब आप रूबरू हो चुके हैं, यही इस नई टीम का हिस्सा है और ये सभी इस बैठक में शिरकत करेंगे। दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये परिचय बैठक बताई जा रही है। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, क्या डिटेल्स मिल रही है इस मीटिंग की?
3: देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट इस मीटिंग के साथ क्या होगा, आगे की जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से चालू हो जाएगी। 22 अगस्त को ये बैठक है, इस बैठक के बाद आपको एक ब्लूप्रिंट भी नजर आएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, ये जो नई टीम है, इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। एक आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना है, भारतीय जनता पार्टी को ब्लूप्रिंट तैयार करना है, क्योंकि देखिए 2 बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, पंजाब जहां की भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार उनके पास एक अच्छा मौका है, और दूसरा उत्तर प्रदेश जहां उन्हें इस बार लगता है कि समाजवादी पार्टी उनको फाइट दे सकती है। हमने देखा कि कितनी आक्रामक और कितनी आक्रोश बढ़ी समाजवादी पार्टी इस बार सामने नजर आई थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जरूरत जो है वो है ब्लूप्रिंट की, और आपको जो 2 चेहरे अब नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में।
2: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर छात्रों को आज एक सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मिलना था, लेकिन अब ये मुलाकात दरअसल राज्यपाल से हो रही है। छात्र आंदोलन पर बीजेपी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मिले हैं। छात्र आंदोलन पर झारखंड के राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है। वक्त इस वजह से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: I wake up wearing someone else again.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
3: इतना माही वे।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
2: मौका था 15 अगस्त पर देश के नाम संबोधन का, जगह थी लाल किले की प्राचीर। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य के लक्ष्य बताए तो नए खतरे से आगाह भी किया। पहली बार पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल के बढ़ते खतरे की तरफ देश का ध्यान खींचा। एक बार फिर सुनिए पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा।
1: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
2: जाहिर है पीएम मोदी ने अपने दिमाग से नक्सलवादी विचारधारा को खाद पानी देने वालों पर हमला बोला और इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम खुलकर सामने आए। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम यही नहीं रुके, कुछ घंटे बाद एक्स पर उन्होंने लिखा, दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक नया रूप है। अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था, ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उन्हीं अपशब्दों का एक नया रूप है। चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए। दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, देश के तमाम शहरों से चिदम्बरम पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। वार पलटवार के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पी चिदम्बरम के बयान पर आपत्ति जताई। एक्स पर उन्होंने लिखा, भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सल हैं। सिर्फ वो लोग ही दिमागी नक्सल हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, चिकन नेक को काट कर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। रिजिजू ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया तो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 370 के समर्थन में आगे आ गईं। महबूबा ने एक्स पर लिखा, मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं।
3: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल पर हमला कर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां आने वाले दिनों में वार पलटवार का लंबा सिलसिला दिख सकता है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: वक्त एक ब्रेक का उजला है, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स टंकी मतलब
1: प्रेजेंटेड बाय
3: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान। स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव। पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा। 22 को होगी पहली मीटिंग। पीएम मोदी ने दी बधाई। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला बड़ा दांव। नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व। 8 चेहरे शामिल। राजस्थान गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड में सरकार से अब तक नहीं हुई छात्रों की बात। राहुल ने सोरेन को लिखी चिट्ठी, कहा मांगों पर करें विचार। जेएसएससी ऑफिस पर सीआईडी का छापा। एनटीए को लेकर शिक्षा मंत्री ने की मीटिंग। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव रहे मौजूद। प्रहलाद जोशी ने परीक्षा प्रक्रिया की ऑडिट और सुधारात्मक कदमों पर मांगी रिपोर्ट। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच। In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। सबसे पहले हम आपको उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बताएंगे जो कि अब छात्रों के लिए एक तरीके से नेशनल टेंशन एजेंसी बन गई है। 13 अलग अलग तरह की परीक्षाएं एनटीए के जिम्मे होती हैं, लेकिन इन्हीं में से जो यूजीसी की परीक्षा है उसका जून में जो दो उसके पेपर कराए गए थे उन्हें रद्द करके अब सितंबर में दोबारा कराया जाएगा। और उसका कारण क्या है? कारण ये कि उनमें पूछे गए अधिकांश सवाल पहले भी एक परीक्षा में पूछे गए थे।
1: शिक्षा मंत्रालय ही बताता है कि यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले केवल 6% उम्मीदवारों को ही असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। उसमें भी अगर यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा के 3 विषय में दोबारा इम्तिहान करने की नौबत आती है तो फिर खबरदार करना जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद एक बार फिर अपनी कुव्यवस्था से चर्चा में आई 9 साल पुरानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फिर से टेस्ट लेने वाली कम टेंशन देने वाली एजेंसी बनकर सामने आ रही है, जिसके बाद एनडीए के दफ्तर के बाहर दिल्ली के कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। एनटीए ने एक बार फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून तक आयोजित की थी। अब रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका खामियाजा आदित्य, सिमरन जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप कहेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 अधिकारी तक नीट पेपर लीक में आंदोलन के बाद सरकार ने बदले, वो एनटीए भांग खाकर पेपर नहीं सेट करा रहा बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी है। कैसे, ये अब समझिएगा। यूजीसी नेट जून 2026 में इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहरा दिए गए। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम तक समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थी, समाजशास्त्रियों और अवधारणाओं का नाम गलत लिखा था, अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था, कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ भी लीक होने का दावा किया गया, हालांकि एनडीए ने लीक के आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था, 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया गया था। एनटीए कहता है कि अब इन्हीं सब की वजह से 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे, लेकिन 2 महीने तक सन्नाटा खींचे रहे एनटीए को लेकर युवा नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि ये सब तो उनके साथ ठगी है।
2: कितनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
3: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था, हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज की टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, PYQs रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर। मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि JRF हो जाएगा इस बारी इस अटेम्प्ट में, अब वो एग्जाम स्क्रैप कर दिया है। अब वो होप जो थी वो मर चुकी है। अब 24 दिन में मैं क्या ही कर लूंगा, कितना ही रिपीट कर लूंगा, क्योंकि 2 महीने का गैप तो ऑलरेडी आ चुका है।
4: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है। अभी नेक्स्ट मंथ में बहुत सारी स्टेट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, तो जिन बच्चों का नहीं हुआ या फिर जो इस एग्जाम का वेट कर रहे थे, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कैसे एग्जाम देंगे।
1: अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि वो पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे। लेकिन इतने सबसे क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई हो पाएगी? चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके पीएचडी छात्र करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करते हैं, उस परीक्षा के पेपर तक में ना अनुवाद सही था, ना व्याकरण, यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में 2 महीने एनटीए को क्यों लग गए, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर धो दिया जा रहा है।
4: मैंने काफी क्लोजली स्टूडेंट से बात करी थी, क्योंकि हम लोगों को स्टूडेंट्स पूरा पूरा पेपर बता देते हैं। पेपर में 67 टू 70 क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हुए थे, मतलब ऑप्शंस भी ऊपर नीचे नहीं करे थे। उस चीज पे पहले भी आवाज उठाई गई थी कि रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए आगे से, कि ये पेपर की क्वालिटी डिटोरियरेट होती है तो आपका कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चला जाता है, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इम्पैक्ट होते हैं अनरीजनेबली। बट यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहां पे पेपर लीक हुआ है, जहां पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया, आपने कोई ऐसी चीज, कोई नोटिस नहीं निकाला कि हाँ हम कंसिडर कर रहे हैं, ये कमेटी ये रिकमेंडेशन शायद देगी। कमेटी के बारे में भी 16 अगस्त को बताया जा रहा है, उसी दिन नोटिस आता है, आंसर की आ जाती है, 84 सब्जेक्ट्स की आंसर की आएगी, बट इन 3 की नहीं दे रहे हैं। कमेटी अब बैठी है, डिस्कस कर रही है, आप 40 दिन से क्या कर रहे हैं?
1: एनटीए कहता है कि यूजीसी नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था। एनटीए कहता है कि कई शिकायत मिलने के बाद एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने पेपर में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई। सवाल है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बनाया जा रहा है? कहीं पहले कोई देखने वाला नहीं होता है?
5: जो पेपर नक्सल है उसको खत्म करना चाहिए, अगर देश के बारे में मोदी जी कुछ समझते हैं, सोचते हैं। 2 महीनों बाद एनटीए को अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उन्होंने गलती की और 3 पेपर्स में इतनी मिस्टेक थी कि वो पेपर फिर से करवाने पड़ेंगे, ये एनटीए ने बताया है।
1: इसी के बाद सोमवार को एनटीए के दफ्तर के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे, मांग रखते हैं कि अब एनडीए को बंद कर देना चाहिए।
6: कांग्रेस का आरोप था कि जो सोशियोलॉजी का पेपर है वो लीक हुआ, और वही विद्यार्थियों का ये भी कहना था कि सोशियोलॉजी में ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन कंसेप्ट के एरर हैं। वहीं साथ ही अंग्रेजी के पेपर में देखा गया कि 150 में से जो तकरीबन 67 सवाल हैं वो 2024 के यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन था इंग्लिश का, उससे रिपीट किए गए। और साथ ही कॉमर्स के विद्यार्थियों का भी एनटीए पर बड़ा आरोप था कि जो 80 सवाल हैं वो रिपीट कराए गए। इसी को देखते हुए जो 3 विषयों के एग्जामिनेशन थे यूजीसी नेट के, उनको रद्द करा दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई का हल्ला बोल यहां पर एनटीए मुख्यालय के बाहर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तस्वीरों में जारी है, जहां आप देख सकते हैं बैन एनटीए की तख्तियां लेकर यहां पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए।
1: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर ये तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और दूसरे सीनियर अफसरों के साथ बैठक की है। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद एनटीए की तरफ से उठाए गए कदमों, खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनटीए में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट के 3 पेपर ही ढंग से ये लोग नहीं बना पा रहे हैं।
7: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है।
1: राहुल गांधी ने यूजीसी नेट के 3 पेपर दोबारा कराने के फैसले पर एनटीए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गलती एनटीए की है, सजा छात्रों को भुगतनी पड़ रही है।
7: एनटीए को बंद करना पड़ेगा, एनटीए को बैन करिए, ये एक भ्रष्टाचारी एजेंसी है, ये कामयाब नहीं है।
1: लेफ्ट के छात्र विंग ने भी एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है, जिन्हें बस में भरकर हिरासत में लेकर हटा दिया गया। अब इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि एनटीए के वो लोग कौन है जिनकी वजह से यूजीसी नेट में 3-3 सब्जेक्ट का ऐसा पेपर बना जिसमें गलतियों की भरमार थी। जवाबदेही किसकी थी, उसे फिर हटाया जाएगा या फिर लीपापोती ही चलेगी? अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।
8: तो जेन जी जो है वो परेशान है परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक होने को लेकर, तो जेन अल्फा परेशान है स्कूलों में सुविधाओं को लेकर। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस पीढ़ी को और जिन बच्चों को स्कूलों में पढ़ना चाहिए वो मजबूर हो चुके हैं सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। ये खबर जो आ रही है ये वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों से आती है, लेकिन जो हम रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मध्य प्रदेश के धार की ये रिपोर्ट है।
1: बारिश की ठंडक भी जेन अल्फा के उबलते गुस्से की तपिश कम नहीं कर पा रहे। जेन अल्फा शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर लगातार खबरदार करने सड़क पर उतर रहे हैं। लखनऊ में एक बार फिर ये छात्र उतरे, जहां एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर धरना देने बैठी ये छात्राएं इस बार जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की हैं, जिन्होंने बालागंज चौराहे पर रास्ता जाम किया, प्रशासन के आश्वासन के बाद ही जो खत्म हुआ। तेज बारिश के बीच 100 से ज्यादा छात्राएं हॉस्टल से निकलकर करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंची और धरना देने बैठ गईं। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में लंबे समय से टीचर की कमी है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्राओं ने मेस में मिलने वाले घटिया खाने और बीमार पड़ने पर सही समय पर इलाज नहीं मिलने की शिकायत भी की। जब कई बार शिकायत के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इन छात्राओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रदर्शन की खबर लगते ही समाज कल्याण अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनमें प्रमुख सचिव अनुराग यादव शामिल रहे। उन्होंने छात्राओं की समस्याएं सुनी, समाधान का वादा किया। अफसरों के समझाने पर फिलहाल ये धरना खत्म हुआ।
9: जो हमारी वार्डन है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, और स्कूल की टाइमिंग हमारे हिसाब से होनी चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, और कुछ और अपनी समस्याएं बता रही है। इनको लेकर ये बच्चे इधर आई हुई थी, इनकी समस्याओं को सुना गया है, और ये अभी हम लोग विद्यालय में बैठ के इनके जो प्रमुख मांगे हैं उनके बारे में करके और कार्रवाई करेंगे।
10: असीम अरुण जो मंत्री हैं समाज कल्याण, वो कुछ दिन पहले भी गए थे, जिनसे छात्राओं ने ये कहा था कि ये अध्यापकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि अगर हम बात करें तो शासन के मुताबिक इस पूरे मामले पर शासन ने पुराने जो टीचर हैं उनको ही कंटिन्यू करने की बात कही है, लेकिन शासन स्तर पर नए टीचरों को भर्ती करने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर ये कोर्ट में है।
1: लखनऊ की ये छात्राएं अधिकारियों से शिकायत, स्कूल प्रबंधन के सामने अर्जी और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के सामने अपनी बात रखने के बाद प्रदर्शन को मजबूर हुए, क्योंकि मंत्री की बातों से भी कुछ बदलता नहीं दिखा। 14 तारीख को लखनऊ में जेन अल्फा के प्रदर्शन की तस्वीरें खूब वायरल हैं, जहां मंत्री असीम अरुण लखनऊ से कन्नौज जाते वक्त जाम में फंस गए, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों को देख उनके पास पैदल ही पहुंच गए। पहले सड़क पर उन्होंने छात्रों से बात की और फिर सभी को स्कूल के अंदर ले जाकर समस्या सुनने चले। लखनऊ की तरह मध्य प्रदेश के धार जिले में भी छात्राएं अव्यवस्था को लेकर सड़क पर उतर आई। धार के निसरपुर की माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की 40 छात्राएं रात में खिड़की से कूदकर हॉस्टल की अव्यवस्थाओं को लेकर थाने पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यहां 50 बेड की क्षमता वाले हॉस्टल में 140 छात्राओं को रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, साथ ही उन्हें दिया जाने वाला खाना भी अच्छा नहीं होता। रात के अंधेरे में छात्राओं के इस प्रदर्शन के भनक लगते ही तहसीलदार समेत SDOP मौके पर पहुंचे और छात्राओं की समस्या सुनी गई।
11: हमको उसके लिए हमारा भवन चाहिए, और मतलब खाने पीने की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है, और हॉस्टल में मतलब 50 लड़कियों का रहने का है, और मतलब 140 लड़कियाँ रहती वहाँ पर रह नहीं पाती है।
12: लेकिन बेटा ऐसे रात में अचानक से 10:30 बजे खिड़की से कूद कर भाग के आना कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी।
11: लेकिन हमको मतलब निकलने में गेट से बाहर नहीं होने देते, लेकिन हम इसलिए हमने खिड़की का मतलब एक वो तार है ना, वो तोड़ के आए हम।
1: देश में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक शिक्षा में सुधार को लेकर सड़कों पर है। देश में इस वक्त जेन अल्फा अचानक कहीं भी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसने शिक्षा में आमूलचूल बदलाव को लेकर उनकी बेचैनी से सरकारों को खबरदार किया है, और अब गेंद हर सरकार के पाले में है कि वो कैसे इन छात्रों की मांगों को सुनती है।
8: लखनऊ में जिस मुद्दे पर छात्राओं ने सड़क जाम किया है, वो मुद्दा कितना गंभीर है, हम आपको अब ये समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 109 जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय हैं, इनमें 4753 पद स्वीकृत हैं, इसमें से एक तिहाई से ज्यादा पद खाली हैं। प्रवक्ता के 431 और सहायक अध्यापक के 409 पद खाली हैं। इस तरह से शिक्षकों की 839 वैकेंसीज हैं। पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, लाइब्रेरियन, बाबू, नर्स, मेस हेल्पर सारे पद खाली पड़े हैं। और ये जो दिक्कत है, ये जो मुश्किल है, वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह की तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाते हैं, जिससे जैन अल्फा खबरदार कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि धरना प्रदर्शन में जैन अल्फा का रुतबा देश देख रहा है। वक्त ही कुछ ऐसा है कि किसी भी राज्य की सरकार हो, जैन अल्फा को सब साधने में लगे हैं। अक्सर संवेदनहीन बर्ताव के आरोपी प्रशासनिक अफसर भी जैन अल्फा की बातें ध्यान से सुन रहे हैं, समाधान का भरोसा दे रहे हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में जनजाति गर्ल हॉस्टल की करीब 50 छात्राएं पैदल चलकर शिकायत करने गई, लेकिन कलेक्टर ने बातचीत के बाद उन्हें सरकारी गाड़ियों से सुरक्षित हॉस्टल भेजा। सभी छात्राएं खाने में कीड़े मिलने से लेकर साफ सफाई, रहने की व्यवस्था तक में गड़बड़ी के कई गंभीर आरोपों की शिकायत करने जिला मुख्यालय पहुंची थी। वार्डन के बर्ताव को लेकर भी छात्राएं नाराज दिखी थी, जिनकी शिकायतों को घंटे भर तक कलेक्टर ने सुना। एसडीएम, तहसीलदार, शिक्षा विभाग के एडीपीसी को बुलाकर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए, जांच कमेटी भी बना दी। सब ठीक करने के वादे के साथ छात्राओं को वापस हॉस्टल भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि साफ सुथरे खाने और बुनियादी चीजों की मांग को लेकर छात्राओं को कलेक्टरेट पहुंचने की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ी? अच्छी बात है कि अधिकारी बात सुन रहे हैं, समाधान का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सीधा सा सवाल यह हो जा रहा है जो राजस्थान में एक कार्रवाई के बाद उठ रहा है, वो ये कि वहां पर स्कूलों में पहुंचने के बाद फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगा दी गई। अब क्या इससे हालात सुधरेंगे या फिर कदम उठाने से?
13: शरद कुमार आज तक संवाददाता, जयपुर के महात्मा गांधी स्कूल में दाखिल होते हैं, क्यों और कैसे का जवाब कुछ देर में आपको हम देंगे। आप ये रिपोर्ट देखते रहे। जैसे ही आज तक का कैमरा जयपुर के महात्मा गांधी स्कूल यानी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की क्लास की तरफ बढ़ता है, आज तक के कैमरे के आगे एक हाथ आता है और आवाज सुनिए।
14: आप ऑफिस में क्या अभी इस बार क्या है? डायरेक्टर सर के आदेश है, माननीय डायरेक्टर सर के, आप पधारिए, ऑफिस में पधारिए बिना ये इनका वेकेंट पीरियड है। आप इधर आइए सर, आप इधर है, प्लीज प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे।
15: क्या आदेश है?
14: आइए सर,
15: क्या आदेश है?
14: अभी बिना अनुमति के अभी सभी की बैन कर रखा है, अभी है ना, मीडिया पर्सन बैन है, प्लीज आप रिक्वेस्ट है सर, आइए सर, आइए।
13: जी हाँ, सच यही है, संवाददाता शरद कुमार को स्कूल में रिपोर्ट करते से रोकने के पीछे अब आदेश की कॉपी देखिए, जिसमें लिखा गया है कि प्रिंसिपल और संस्था प्रधान की अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल वो शासकीय अधिकारी अपवाद होंगे जो आधिकारिक दायित्व पूरा करने को अधिकृत होंगे। फिर चौथा पॉइंट देखिए, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि प्रिंसिपल की इजाजत के बिना स्कूल टीचर स्टूडेंट की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती। छठे पॉइंट में ये तक लिखा गया कि बिना इजाजत स्कूल में किसी ने फोटो वीडियो बनाया तो प्रिंसिपल पुलिस को बुलाकर कानूनी कार्रवाई करें। अब समझिए ये आदेश क्यों देना पड़ा, क्योंकि ये जैन अल्फा ही हैं जिन्होंने इसी जयपुर में अपनी मौन क्रांति से सत्ता के कान खोले। जब दिव्यांगों के सरकारी विद्यालय में साफ शौचालय से लेकर साफ पानी तक न मिलने पर प्रदर्शन होने लगा, तो आज तक ने ये सच कैमरे पर सबको दिखाया।
15: देख सकते हैं पानी टपक रहा है, किस तरह से छतों से यहाँ पर पानी टपकता है, बाहर भी देख सकते हैं आप किस तरह की स्थिति, अभी भी आपको पानी टपकता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। और इस तरह से कभी भी इन्हें डर सताते रहता है कि ये छत नीचे आ सकती है। क्लासरूम है दिव्यांग बच्चों का, जहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये टेबल और कुर्सियां हैं जिस पर ये बैठते हैं, जंग लगे हुए, इस तरह से दीवारें झड़ रही है, छतों से पपड़ियां नीचे गिरते रहती हैं सिर पर जो पढ़ने बैठते हैं।
13: क्या इसीलिए अब सरकार राजस्थान में आदेश देकर मीडिया को स्कूलों का सच दिखाने से रोकना चाहती है ताकि स्कूलों की दुर्दशा बाहर ना पता चले? आज तक ने सीधे इसका जवाब मदन दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री से पूछा।
16: किसी को कोई रोक नहीं है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा विद्यालय परिवार का, शिक्षा विभाग का होता है। कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जिससे उस विद्यालय का कोई संबंध नहीं है, वो बिना अनुमति के विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और नियमों में प्रावधान भी है कि नाबालिग बच्चों का बिना अनुमति के न फोटोग्राफी न वगैरह कुछ वो कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि माँ बाप बड़ी हमारे को सुरक्षा के साथ संभाल के जाते हैं। यदि कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार विद्यालय होता है, इसलिए ये जिम्मेदारी हमको वहन करनी है और इसलिए अनुमति लेकर जा सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि नहीं जा सकते हैं, अनुमति लेकर के जा सकते हैं, यदि आवश्यक हुआ तो हमारा संस्था प्रधान उसकी अनुमति देगा।
13: बच्चों की निजता और सुरक्षा का दावा करके मीडिया का बिना नाम लिए स्कूल में बिना इजाजत प्रवेश का फैसला देने वाली सरकार के शिक्षा मंत्री क्या इस सच से मुंह नहीं छिपाना चाहते जो बाड़मेर के बॉर्डर के पास वाले स्कूल में दिखता है, जहां आजादी का उत्सव मनाने निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचते हैं। वीडियो जारी करके दिखाया जाता है कि कैसे झोपड़ी में यहां सरकारी स्कूल चल रहा है। क्या राजस्थान सरकार अलवर में पिछले हफ्ते चले छात्रों के प्रदर्शन से घबराई, जहां स्कूलों की दुर्दशा की वजह से बच्चे धरना देकर प्रदर्शन करते हैं और सवाल अफसरों से पूछते हैं जो बहुत चुभते हैं? दावा है कि नहीं, बच्चों की उठती आवाज से सरकारी सच सबके सामने ना आ जाए इसलिए आदेश निकल गया कि कोई स्कूल में बिना इजाजत ना आए, ना वीडियो बनाए, ना फोटोग्राफी करे।
17: क्या राजस्थान में जगह जगह हो रहे जैन अल्फा के आंदोलन से राजस्थान सरकार डर गई है? छुट्टी के दिन अति आवश्यक ऑर्डर निकाला गया जिसमें कहा गया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में, यानी 64,000 सरकारी स्कूलों में कोई भी बिना अनुमति का वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर पाएगा। हालात सुधारने के बजाय हालात छिपाना कहां तक उचित है और क्या इससे जैन अल्फा का आंदोलन रुक जाएगा?
13: जयपुर के जिस स्कूल में आज तक को कैमरा लेकर पहुंचने पर प्रिंसिपल अब रोकते हैं, वहां के बच्चों ने ही कॉल करके कहा कि सच दिखा दीजिए, फिर बिना शैक्षिक माहौल को खराब किए, बिना किसी की निजता में दखल दिए आज तक संवाददाता ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है।
17: ये जयपुर का बगरू का स्कूल है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर छत अब गिरी तब गिरी हो रखी है, रस्सियों से यहां बेंच लगाकर रोका हुआ है कोई छात्र इधर न जाए। आप पीछे देख सकते हैं जूते चप्पल खुले हुए हैं, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये चारों क्लासरूम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यहीं पर यहां पर पढ़ाई हो रहा है, प्रिंसिपल रूम भी यही है। ये स्थिति है, देख सकते हैं कि आप कमरों की क्या स्थिति है यहां पर। और इनका कहना है कि आज आदेश आया है और आदेश के तहत यहाँ पर आप शूट नहीं कर सकते हैं। और कमरों में आप जाके देखिए, कमरों में सारी जो आपको ये पट्टियां दिखाई दे रही हैं, ये पट्टियां आपको किस तरह से झड़ रही हैं आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। यही नहीं, यहाँ बाहर आप अगर आएंगे तो बाहर भी कमोबेश यही स्थिति है, अलग अलग जगहों से दरारें पड़ी हुई है, किसी भी वक्त ये गिर सकता है, इस तरह की हालत है। फिर भी इन हालातों में यहाँ पर स्कूल चलाया जा रहा है जबकि सरकार ने साफ आदेश दे रखे हैं कि किसी भी क्षतिग्रस्त स्कूल में इस तरह से क्लास नहीं चलाई जा सकती है। अब ये देखिए प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने ये देखिए किस तरह से पूरा प्लास्टर गिर चुका है और यहाँ पर पट्टियां नजर आ रही हैं।
14: हमारे पास आदेश आया हुआ है सर, आप प्लीज आप इसको अभी बंद कर दीजिए, अभी रुक लीजिए सर। मैं अभी इसके बारे में अभी नहीं कहना चाहता, कुछ नहीं कह सकता हूँ सर, प्लीज आप अभी
17: आपने ऊपर अधिकारियों को बताया,
14: बिल्कुल बिल्कुल दे रखा है सर, और आप प्लीज अभी आप इसको बंद कर दीजिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट है सर।
17: खतरा है ना स्कूल में,
14: प्लीज रिक्वेस्ट है,
17: खतरा है कि नहीं स्कूल में आप बताइए। किसने आदेश दिया आपको कि यहाँ पर शूट नहीं कर सकते? तो ये स्थिति है यहाँ पर स्कूलों की। मुझे लग रहा है कि कैमरा रोकने के बजाय अच्छा होता जब सरकार इस तरह के स्कूलों की सुध लेती है और यहाँ पर मरम्मत कार्य किया जाता।
1: जयपुर की ये हालत है तो दूर दराज का सोचिए। लेकिन सच ये भी कि गहलोत राज के दौरान एक भी स्कूल को दुरुस्त करने पर ध्यान नहीं दिया गया, लिहाजा राज्य के 64,000 स्कूलों में 20,000 स्कूल जर्जर हालत में है। पहली बार भजन लाल सरकार ने इनकी मरम्मत के लिए 12,500 करोड़ का बजट दिया है, लेकिन स्कूल तैयार होने में करीब 1 साल लगेगा। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
8: झारखंड में छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उसका 24वां दिन रहा। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर सीबीआई जांच की मांग छात्रों की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन सरकार और छात्रों के बीच बात बनती हुई दिख नहीं रही है। इस सब के बीच जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है और उनका सब्र भी टूटता जा रहा है।
18: गांधी जी की अनुनय विनय से हमने 22 दिनों तक आंदोलन कर लिया, अब भगत सिंह के नक्शे कदम पे चलने का समय आ गया है।
1: रांची में आंदोलन के 24 दिनों बाद छात्रों का हौसला भले बरकरार हो लेकिन धैर्य अब सरकार की चुप्पी की वजह से टूटता दिख रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द ही सोरेन सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राहुल गांधी की तरफ से भी जिस तरह मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर छात्रों की मांगों पर विचार करने की बात कही गई है, चिट्ठी में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सोरेन को सलाह दी है कि वो प्रदर्शनकारियों से खुद मिलकर इसका समाधान खोजे। राहुल ने अपनी चिट्ठी में रांची में आंदोलनकारी छात्रों की मांग को जायज बताया है।
19: आंदोलन के 24वें दिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की नींद टूटी, और ये नींद टूटी नहीं है, ये छात्रों के आंदोलन ने और पूरे देशव्यापी प्रदर्शन ने उनके होश उड़ा दिए हैं। वो बैकफुट पर आ गए, तब जाकर उन्होंने एक पत्र लिखा है 24वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि छात्रों की जो जायज मांगे हैं उसको मानिए।
20: छात्रों ने अपनी बात हम लोगों से लगातार रखी है और आज फिर वो वार्ता के लिए तैयार है। सरकार लगातार पहल कर रही थी और वार्ता होगा तो जरूर समाधान होगा। और जहां तक अन्य बातें हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि भाजपा शिखंडी है, भाजपा के जो नेता है वो शिखंडी है, वो छात्रों का आड़ लेकर झारखंड पर आर्थिक चोट करना चाहते थे।
21: जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा के दौरान ही उन्होंने कहा था कि आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, उसके बाद उन्होंने 18 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, या तो उनकी मांगे मानी जाए, 11वां से 13वां जेपीएससी रद्द किया जाए, सीबीआई प्रोब किया जाए, जेएसएससी सीजीएल रद्द किया जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम था उनका और इसी के तहत 16 अगस्त को उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया। उनका कहना था कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है, कांग्रेस भी एक तरह से विद्यार्थियों को नैतिक समर्थन की बात तो करता है लेकिन अंदर से समर्थन नहीं दे रहा है।
1: छात्र नेताओं का साफ कहना है कि जेएसएससी सीजीएल जैसी बड़ी परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े और पेपर लीक के मामलों में लीपा पोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार भले ही 90 दिन के भीतर जांच पूरी करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट का हवाला देती हो, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक विवादित परीक्षाएं रद्द नहीं होती, पूरी प्रणाली को साफ सुथरा नहीं किया जाता, उनका ये आंदोलन किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
8: अब उत्तर प्रदेश में लटकी उस भर्ती से हम खबरदार करते हैं जो 2023 में जिसे भर जाना चाहिए था, लेकिन आज तक स्थिति जस की तस है। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री ने विश्वास तक दिलाया था कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारियों की।
22: आज तक नहीं इनका मुद्दा उठाया, इन्हें 21 दिनों का आश्वासन मिला लेकिन 21 दिन से ज्यादा हो गए, नतीजा नहीं आया। इनका एग्जाम पिछले वर्ष के अप्रैल महीने में हुआ, यानी कि 1 साल लगभग 3 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक आयोग रिजल्ट जारी नहीं कर पाया है। नतीजा क्या है? पहले आवास, फिर आयोग के दफ्तर और अब यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं।
23: आश्वासन मिला है कि जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा आपको, और जहाँ तक उम्मीद है कि इसी हफ्ते आ जाएगा। इसके लिए सचिव जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि मतलब इस हफ्ते रिजल्ट आ जाएगा हमारा।
22: ठीक है, तो 21 दिन आप लोग आए थे यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी के यहाँ, हम लोगों ने आपका मुद्दा उस वक्त उठाया था, 21 दिनों की बात कही गई थी, तब से आपने कुछ बदला है?
0: जी अभी के हिसाब से जो मिल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि इसी सप्ताह हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। सचिव जी ने बोला है कि 2 से 4 दिनों का मुझे समय दे दीजिए, हम आप लोगों के लिए ही कार्यरत हैं। हम जो ऑफिस वर्क होता है उसके अतिरिक्त भी हम समय लेके काम कर रहे हैं आपके रिजल्ट पे, तो 3 से 4 दिन का समय मांगा है।
2: आप लोग क्या क्या बोल कर रहे हैं
3: सर? यही है कि अभी जब अंदर बुलाए थे सचिव जी 2-3 लोगों को, तो वो बोले हैं कि 2-3 दिन के अंदर परिणाम हम जारी कर देंगे और आप लोग अब निश्चिंत होकर जाइए, हो सकता है कि आप पहुंचे जब तक घर, आपका परिणाम जारी कर दिया जाए।
2: आज तक इस मुद्दे को प्रखरता से day 1 से उठा रहा है, जब से ये भर्ती आई है इनके मुद्दे उठा रहा है। आज भी देखें तो लखनऊ में बारिश हो रही है और इस बारिश में छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये बताएं आप लोग कहाँ कहाँ से आए?
4: सर मैं बाराबंकी से आया हूँ।
2: आप कहाँ से
24: आए? मैं तो
2: आप कहाँ से आए?
4: हरदोई से।
2: आप?
4: हम भी हरदोई से आए हुए हैं।
2: घर से क्या बोल के निकलते हैं?
4: घर से यही बोल के निकले थे कि रिजल्ट के लिए जा रहे हैं, तो घर वाले भी यही कहते हैं कितनी बार जाओगे, कब तक आएगा रिजल्ट? तो सर अब कहा कि लास्ट बार जा रहे हैं, अगर इस बार आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ाई छोड़ देंगे।
2: पढ़ाई छोड़ देंगे
4: सर? क्या करेंगे, पैसा ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से पढ़ेंगे सर? इतनी कंडीशन ही खराब हो चुकी है, अभी तक लखनऊ में पढ़ते थे, अब यहाँ से भी चले गए, घर रुपए मिल नहीं रहे घर से, तो घर वापस जाना पड़ा, गाँव में रहते हैं सर, क्या करें? नहीं होगा तो सर पढ़ाई तो भी छोड़नी ही पड़ेगी, पैसे कहाँ से लाएंगे?
2: घर वालों ने क्या कहा?
4: घर वालों ने कहा ये तुम्हारा लास्ट था, इस बार में देख लेते हैं, अगर अब नहीं आएगा तो फिर खेती करो, बस हो गया जो भी होना था।
2: मतलब VPO विलेज पंचायत ऑफिसर का सपना देखने वाला खेती करेगा?
4: अब सर क्या करें, जब 3-4 साल इंतजार करते रहे, अगर सर अभी भी उम्मीद नहीं जगी तो सर क्या करेंगे बताओ।
8: आजकल देश भर के शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में जो दर्शनार्थी है वो पहुंच रहे हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर में बताया जा रहा है कि 12 बजे दोपहर तक ही 6 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भी 2 लाख के करीब लोग पहुंचे थे। ये खबर आई कि नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बनी, हालांकि प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है।
1: उज्जैन के महाकाल परिसर में ये पुलिस वाले एक अस्थायी पुल पर कूदकर इसकी मजबूती की जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शनों की तैयारी के तहत पुलिस वालों को पुल पर कुदाया गया, उसी के दर्शन के दौरान ये तस्वीर भी दिखती है। भारी भीड़ से बैरिकेडिंग पर दबाव बढ़ने लगा और सुरक्षा कर्मी से संभालने में लगे रहे। भारी दबाव की वजह से बैरिकेडिंग टूटती भी दिखी, लोग भी नीचे गिरते देखे गए। महाकाल मंदिर में सोमवार को लाखों की भीड़ आना पहले से तय थी। इसकी 3 वजह थी, पहली सावन का सोमवार, दूसरा नाग पंचमी और सावन सोमवार को निकलने वाली महाकाल की सवारी। लेकिन महाकाल में रात के 12 बजते ही हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। आधी रात को ही भक्तों ने महाकाल मंदिर के तीसरे तल पर बने नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शनों के लिए लाइन लगानी शुरू कर दी। नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल भर में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर खुलता है, इसलिए इस मंदिर में दर्शन का खास महत्व है।
25: नागपंचमी के पावन पर्व पर ये महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब बात हम उज्जैन की करते हैं, क्योंकि उज्जैनी के इस पावन धरा पर भगवान महाकालेश्वर का जो प्रमुख मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अप्रतिम और बड़ी दुर्लभ वो विग्रह है, जहाँ पर एकमात्र विग्रह है जहाँ पर सर्प सैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार है। ऐसा विग्रह अन्यत्र कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है।
1: नागचंद्रेश्वर मंदिर को लेकर भक्तों में जोश देखा गया, जबकि किसी भी भक्त को 1 या 2 सेकंड ही दर्शनों के लिए मिलते दिखे। इसके बावजूद भक्त हर मुसीबत खुशी खुशी झेलते दिखे।
26: ये एक साल में एक ही बार खुलता है ये पट, और मैंने आज नागेश्वर जी का दर्शन कर लिया है। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और सब बहुत अच्छे से, उनका मैनेजमेंट सब है मंदिर का, शासन का बहुत अच्छे से सब है। मैं मुंबई से आया हूं।
1: महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। सबसे पहले बेसमेंट में महाकाल मंदिर है, ग्राउंड फ्लोर पर एक और शिवलिंग है, थर्ड फ्लोर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हर साल अस्थायी पुल बनाया जाता है, जिसके ऊपर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु चढ़कर दर्शन करते हैं। नाग पंचमी में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई, जिसमें से श्रद्धालुओं को निकाला जा रहा था, लेकिन भीड़ ज्यादा होने से ये तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ श्रद्धालुओं ने जख्मी होने की बात कही।
5: ग्वालियर से आए हैं, दर्शन के लिए आए थे, परेशान हो गए हैं, पानी भी नहीं पिया, बच्ची बोल भी नहीं रही है, उसके दांत टूट गया है।
6: कैसे टूटा?
5: भगदड़ हो रही थी, उसको चक्कर आया, उस वजह से वो बैरिंग पे गिर गया।
7: ठीक, अस्पताल में कोई मरीज नहीं है, लेकिन मैं अपने आंखों से देखने आया हूँ कि अपने एक पेशेंट जो मेरे दोस्त का बालक है, वो खुद महाकाल के एम्बुलेंस से आया है और पांव फ्रैक्चर हो गया, उसका अस्पताल में भर्ती है।
1: हालांकि मंदिर प्रशासन ने किसी भी तरह की अफरा तफरी से इनकार किया और दावा किया कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है।
9: कुछ मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक खबरें जो हैं प्रसारित की गई हैं, इसके संबंध में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई अफरा तफरी या इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगम रूप से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं।
1: दोपहर 12 बजे तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन किए, वहीं 2 लाख से अधिक श्रद्धालु महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे। रविश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
8: बिहार के लखीसराय के अशोक धाम में आज भगदड़ मच गई, 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई। अफवाह फैल गई थी कि बिजली का तार वहां पर टूट गया है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में भी होटल में आग लगने के कारण 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई।
10: रेलवे गुमटी के नियंत्रण कक्ष में खोज रही है बबली देवी।
12: हाँ, हम भी बेहोश हो गए थे, उनको पकड़ करके हमको सारे नदी लोग लाई, तब पानी उनी छीटे, पानी के तब हो सारे बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण हुआ।

0: बिहार का लखीसराय जिसकी प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से श्रद्धालुओं की जान चली गई। सवाल है कि श्रद्धालुओं की इस तरह बेमौत मारे जाने का जिम्मेदार कौन है?
1: कि जो श्रद्धालुओं का पूजा का जो सामान होता है वो यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं किस तरीके से थैला है, जो पूजा का सामान है, बेलपत्र है, सब यहाँ पर है। और ये बांस देख सकते हैं, जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर टूटी हुई है। ये कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर साफ दर्शाता है। बार बार ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे सोमवारी बढ़ेगी, तीसरी सोमवारी ये है, और ये पहले से आशंका जाहिर की जा रही थी कि भीड़ का दबाव यहाँ पर बढ़ेगा, उस हिसाब से यहाँ पर प्रशासनिक तैयारी पूरी नहीं की गई थी।
0: सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए जहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना तय, बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन पुख्ता इंतजाम नहीं कर सका।
1: सामने ये देखिए अशोक धाम स्टेशन है, और जैसे ही ट्रेन वहां पर रुकी अचानक से भीड़ का दबाव यहां पर बढ़ा, और देख सकते हैं ये बैरिकेटिंग यहां पर प्रशासन की तरफ से की गई थी, इस पर दबाव पड़ने के बाद बैरिकेटिंग यहां पर टूटी है।
0: चश्मदीदों का कहना है कि भगदड़ के वक्त मंदिर परिसर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु थे जो जलाभिषेक के लिए कतार में लगे हुए थे। इसी दौरान बिजली का तार गिरने की अफवाह फैली। अफवाह इस तरह फैलती गई कि लोग घबराकर भागने लगे और भगदड़ मच गई। सबसे ज्यादा महिलाएं भगदड़ की चपेट में आई, क्योंकि जब अफरा तफरी मची और भारी भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो लोग खुद को बचाने के लिए भागते नजर आए और मंदिर आए श्रद्धालु भगदड़ की चपेट में आते गए।
2: सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था, और लाइन में बहुत सारा लोग था, ढकेल के इधर पूरा पॉल इधर कर दिया था, पॉल गिर गया था, और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा, फिर हम दब के बेहोश हो गए, तो फिर हमको नहीं पता है कि
3: वहाँ हुआ क्या। जहाँ पर जो लोग घुसते हैं ना गेट के पास, बांस जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर घुस रहे थे कि बाहर से कम 100 आदमी घुसने के लिए जबरदस्ती ठेल दिए हैं सबको, जो ठेल दिए सब गिर गई, उसी पर सब आदमी चढ़ चढ़ के अथी घुसने लगा।
0: जैसे ही मंदिर में भगदड़ की खबर लगी, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को फौरन लखीसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
4: लगभग 7:45 हम लोग तो वहां पर, आप लोग देखे 3:30 से हम लोग वहीं पर हैं, सब व्यवस्थित है, अप्रत्याशित भीड़ हो गई, और 6:30-7 के लगभग में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया, एक तो पहले से भीड़ थी उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत में पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच का आदेश दिया है, साथ ही भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवार को 4,00,000 रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों?
5: कम से कम उधर से लाइन आ रही थी, और एकाएक लाइन आने के कारण वहाँ पे जो गड्ढा है साइड में, उधर बूढ़ी पूरा बूढ़ी गिर गया, तो हम लोग उधर कुछ लोगों को उधर किए निकाल रहे थे, तो फिर निकालने में ज़्यादा ही टाइम लग गया था, और हाथ से खींच रहे थे लोग, स्लिप कर रहा था लोग, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, और उस वजह से बहुत लोग मतलब उसमें वो कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ लोग किसी का वो फट गया था, किसी का नाक से ब्लड आ रहा था, किसी कान से ब्लड आ रहा था, सर यहीं उस हुआ था।
0: तो यहीं पर भगदड़ की स्थिति,
5: हाँ यहीं पर हुआ था, उधर से अचानक भीड़ आई और उधर जाकर गिर गई, ये बांस वहां तक थी, बांस उधर चल गया।
0: प्रशासन का कहना है कि उसने सावन का तीसरा सोमवार होने की वजह से मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम किए। प्रशासन की टीम भी सुबह 3:30 ही मंदिर परिसर में पहुंची, लेकिन 2 ट्रेनों के रुकने से भारी भीड़ मंदिर परिसर तक आ गई, जबकि पहले से मंदिर में भारी भीड़ मौजूद थी। इसी दौरान अफवाह फैली और दुखद हादसा हुआ।
4: तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था, और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे, पता चला कि एक साइड में, खेत के साइड में भीड़ बढ़ने से बैरिकेटिंग थोड़ा सा टूटा, और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए।
0: बिहार सरकार की तरफ से इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए, और तब तक सियासत शुरू हो गई। आरजेडी आरोप लगाती है कि बद इंतजामी ने श्रद्धालुओं की जान ली।
6: और अब आपको आज की राजनीतिक बहस से खबरदार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल लोगों से सावधान रहने की बात कही थी। इसके बाद पहले सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जवाब आया, फिर पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल कहा, इसके बाद तो महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल सब खुद को दिमागी नक्सल बताने लगे।

0: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
1: दिमागी नक्सली।
2: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कही, लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी।
0: दिमागी नक्सली। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
2: पीएम मोदी का इतना कहना था कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था, और उनकी प्रतिक्रिया तीखी हैरतअंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। चिदम्बरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही, तो कभी विपक्ष को अरबन नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। रही सही कसर पीएम के बयान के अगले हिस्से में की गई टिप्पणी ने पूरी कर दी थी, जिसमें विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल का कनेक्शन युवाओं से जोड़ दिया। दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के सौरव दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की, तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदम्बरम से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
3: 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया।
4: प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की कि संविधान को ना मानने वाले, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीची कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
3: कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदम्बरम साहब।
2: लाल किले से दिमागी नक्सली का जिक्र करने के पीछे सरकार एक तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की कामयाबी का जिक्र करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ शहरों कस्बों में पैठ बना चुकी वामपंथी विचारधारा के खतरे को अंडरलाइन कर रही थी, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2004 में वामपंथी उग्रवाद के अर्बन पर्सपेक्टिव आवर वर्क इन अर्बन एरियाज और 2013 की स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम से दो खुफिया दस्तावेज में जो खुलासे हुए थे वो संवैधानिक हिंदुस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ब्लूप्रिंट थे। इन दस्तावेज में तीन प्लान था। पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना, दूसरा था सभी शोषित पीड़ितों को एकजुट करना, और तीसरा था पीएलजीए और पीएलए के सशस्त्र विद्रोह में मदद के लिए गुप्त लोगों की घुसपैठ कराना। हालांकि पिछले 20 साल में भारत से सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन इत्तफाक है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सियासी मुद्दे वंचितों, शोषितों और युवाओं के समसामयिक मुद्दों से मेल खाते हैं, और इनका समर्थन करने वालों पर सियासी हमले होते हैं। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि दिमागी नक्सली सिर्फ वही हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन की बुनियाद जिस तरह पड़ी और अप्रत्याशित रूप से हुकूमत पर जनता का दबाव बना, उसमें सरकार के दिमाग की बत्ती ने खतरे का अलार्म बजाया है कि बिना किसी राजनीतिक बुनियाद और समर्थन के अगर एक आंदोलन मंत्री के इस्तीफे को मजबूर कर सकता है तो इसके पीछे की ताकत मामूली नहीं, और सरकार को आशंका है कि वर्षों से रोडमैप बनाकर काम कर रही वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ऐसे आंदोलनों के पीछे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।
5: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर गया।
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
1: Hey Maya, let's go.

0: The new BE6 Sportage.
1: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
2: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
1: क्रॉसबॉन सुपर स्ट्रॉन्ग।
2: सुपर स्ट्रॉन्ग
1: और मॉइस्चर प्रूफ।
3: वारंटी
1: 15 साल की।
2: कदम
1: सर प्लीज
2: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
4: क्रॉसबॉन HDMR मैक्स फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
5: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: EU
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
10: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
11: इट्स द माही वे।
12: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
13: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
14: पापा
15: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
16: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
15: छक्का?
16: सब कैशलेस हो गया
15: है। हाँ ला भाई मेरा बैट।
16: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
15: चार्ज हुआ यार।
17: बैट किसका है?
18: टाटा AIG है तो भरोसा है।
19: अरे इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर गया।
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: In association with
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरीवेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: आगे आगे उधर उधर करेक्ट करेक्ट
1: मिल गया।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

लखनऊ की दुबग्गा रोड, पालागंज चौराहा और सड़क को घेर कर बैठी छात्राएं, ट्रैफिक रुका, चक्का जाम हुआ और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ यूपी की राजधानी में सड़क पर उतर आया जैन अल्फा। हमारी पढ़ाई कैसे होगी? 6 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, साइंस के बच्चों की सबसे ज्यादा परेशानी है। फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है। 6 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन जिन बच्चों को किताबों में सवालों के जवाब तलाशने चाहिए, वो आज सड़क पर अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी साइंस के विद्यार्थियों की है, स्कूल में फिजिक्स और बायोलॉजी के शिक्षक नहीं है। ऐसे हालात में छात्राओं की पढ़ाई कैसे होगी? अब यूपी का समाज कल्याण विभाग ही बताए कि पढ़ाई कैसे होगी। क्या यूपी के स्कूली छात्रों के सिलेबस में ये भी शामिल हो गया है कि मूलभूत सुविधाओं, शिक्षकों और बेहतर शिक्षा के लिए पहले आंदोलन करना होगा, तभी समाधान मिलेगा। हमारी बात कई बार अधिकारियों तक पहुंचाई गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये छात्राएं लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की। इस स्कूल को यूपी का समाज कल्याण विभाग चलाता है। सोमवार की सुबह सैकड़ों छात्राएं स्कूल की बदहाली के खिलाफ सड़क पर उतर आईं। तेज बारिश के बीच छात्राएं हॉस्टल से निकली, करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चली और दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंचकर धरने पर बैठ गईं। वैसे तो स्कूली बच्चों का काम आंदोलन करना नहीं, लेकिन आरोप है कि स्कूल की अव्यवस्था ने इन्हें क्लासरूम छोड़कर सड़क पर आने को मजबूर कर दिया। छात्राएं सड़क पर बैठी तो पालागंज चौराहा जाम हो गया। सड़क पर बड़ा सा घेरा बनाकर बच्चे बैठ गए और दुबग्गा रोड पर गाड़ियों के पहिए थम गए। कुछ ही मिनटों में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। स्कूल प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और पुलिस के अधिकारी बालागंज चौराहे पहुंचे और बच्चों को समझाने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन छात्राओं का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब उनकी समस्याएं सामने आई है। आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मेस में खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल है, मेडिकल सुविधाओं की कमी का भी आरोप है। छात्राओं का कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन जब समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन क्लासरूम छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ा। छात्राओं का प्रदर्शन खत्म हो गया है और अधिकारी इन्हें वापस स्कूल ले आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है। अगर बोर्ड परीक्षा सिर पर है और स्कूल में जरूरी विषयों के शिक्षक ही नहीं है, तो इन बच्चों की पढ़ाई की भरपाई आखिर कैसे होगी? अधिकारियों ने जल्द समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि ये भरोसा सिर्फ आश्वासन बनकर रह जाता है या स्कूल की जमीन पर भी इसका असर दिखाई देता है। अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको वो नई अगस्त क्रांति दिखाएंगे जो देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर उतरकर जेन जी और जेन अल्फा ने छेड़ दी है। जंतर मंतर से लेकर रांची, लखनऊ से लेकर जयपुर और धार, इन तमाम जगहों तक आज देश के हर कोने से आवाज आ रही है। इसके पीछे वजह है भविष्य के साथ खिलवाड़ और सिस्टम की गहरी नाकामी। एक तरफ एनटीए की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही, नीट विवाद के बाद इतना बड़ा बवाल हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन अब यूजीसी नेट के परीक्षा पत्रों में ऐसी हास्यास्पद और शर्मनाक गलतियां सामने आई हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर में शब्द ही पलट दिए गए थे और इसकी वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और खामियाजा छात्रों को दोबारा परीक्षा देकर भुगतना पड़ेगा। एक एग्जाम के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करते हैं हमारे बच्चे। एग्जाम कैंसिल, ये बहुत आसान है इनके लिए कह देना कि हम री एग्जाम करेंगे, लेकिन इसका अर्थ उन बच्चों की जिंदगी पर क्या होता है? वही मानसिक दबाव, वही मेहनत, वही पढ़ाई फिर से जुट जाना। दूसरी तरफ झारखंड, जहां जेपीएससी और जेएसएससी की धांधलियों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा उफान पर है। गुस्सा छोड़िए, वो तो नम्र भाव से खाना पीना त्याग कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर कह रहे हैं कि मान जाइए हुजूर, मान जाइए सरकार, पेपर रद्द कीजिए, नौकरियों की जो रेट लिस्ट चढ़ती है, जो धांधलियां होती हैं उसको खत्म कीजिए, सीबीआई से जांच कराइए, अपनी ही गलतियां अपनी ही सीआईडी से जांच कराने का ड्रामा क्यों कर रहे हैं, बस यही कह रहे हैं ये बच्चे। दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में सिस्टम की जो खामी है, शिक्षकों की कमी है, घटिया खाने के विरोध में छात्र स्कूल से निकलकर सड़कों थानों तक पहुंच रहे, यानी अब देश की नई पीढ़ी सिस्टम के आगे झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने ठाना है कि सिस्टम को झुकना होगा, इस सिस्टम को बदलना होगा। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में जानबूझकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान हुआ, या फिर ये प्रोटोकॉल की चूक थी या कंफ्यूजन का नतीजा था। तो आज हम आपको बताएंगे द इनसाइड स्टोरी कि आखिर कैसे वंदे मातरम का पूरा गीत वहां पर बजा और क्या वाकई उसको लेकर नाराजगी थी और क्या कंफ्यूजन कहां पर था। बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में रुकावट डाली और राष्ट्रगीत का अपमान हुआ, वहीं कांग्रेस इसे गलतफहमी बता रही है। वो कह रही है कुर्सी मांगी जा रही थी, क्या वाकई ये कोई जानबूझकर किया गया काम था या फिर इनसाइड स्टोरी कुछ और है। आज आपको वंदे मातरम को लेकर नए निर्देश और कानूनी प्रावधान भी सरल भाषा में बताएंगे कि आखिर क्यों वंदे मातरम का पूरा गीत जब जब तिरंगा फहराया जाता है तब तब जन गण मन के पहले नहीं गाया जाएगा, तो कानूनन क्या हो सकता है ताकि अब कम से कम राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर किसी तरह का भ्रम किसी में ना रहे। और आखिर में आपको पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती दिखाएंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए बाकायदा भीख मत मांगो वाली चेतावनी जारी की है। पिछले कुछ समय में हजारों पाकिस्तानी भिखारियों को सऊदी से डिपोर्ट किया जा चुका है। उमरा और जियारत के नाम पर सऊदी जाने वाले तमाम पाकिस्तानी वहां ऐसे अनेकों थे जो भीख मांगना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से सऊदी अरब परेशान था। लेकिन आज सबसे पहले जरूरी यह है कि हम देश के उस जनरेशन की बात करें जो शिक्षा व्यवस्था, जो पूरे सिस्टम एक सुधारना चाहती है, वो बेहतर बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो हर दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन अफसोस, इन सब के बावजूद सिस्टम में कोई सुधार होता दिख तो नहीं रहा है। जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था के पूरे सिस्टम में सुधार लाने के लिए एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। 20 जून से शुरू हुआ यह धरना पूरे 36 दिनों तक चला। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद जाकर यह खत्म हुआ था। इस दौरान 20 जुलाई को तो प्रदर्शनकारी छात्रों को लाठियां तक खानी पड़ी थी, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय के आगे पूरा सिस्टम झुका। आखिरकार कुछ एक्शन होता नजर आया। धरना प्रदर्शन का मकसद था शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नीट पेपर लीक जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई, पेपर कैंसिल हुआ, री एग्जाम हुआ और उसके बाद से यहां तक कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक लिया गया। लेकिन आप सोचिए, नीट पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने से क्या सब कुछ बदल गया? देश की संसद में संशोधन लाकर एंटी पेपर लीक कानून को सख्त बनाया गया, क्या चीजें बदली? देश के शिक्षा मंत्री को पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ा, क्या कुछ बदला? सिर्फ यही नहीं, इस परीक्षा को आयोजित करने वाली संस्था एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 लोगों को हटा दिया गया, कुछ बदला? इसके अलावा परीक्षा के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने की बात कही गई, पूरे परीक्षा सिस्टम को बदलने की बात की गई। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की, लेकिन इस कवायद का असर कितना हुआ? क्योंकि एनटीए में कोई सुधार हुआ नहीं है। एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली एक और परीक्षा में भयंकर खामियां सामने आई, जिसके बाद खुद ही एनटीए को उन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। खबर है कि यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षाएं अब दोबारा आयोजित होगी। मतलब बच्चों, एक बार तो एग्जाम दिया, पढ़ा आपने, हमने पेपर में चेक नहीं किया था, कुछ गलत गलत शब्द लिख दिए थे, कैंसिल एग्जाम, अब फिर से तैयारी कीजिए। इसके परीक्षा पत्र में कई तरह की खामियां थी, इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, परीक्षाएं अब दोबारा होंगी क्योंकि इनके परीक्षा पत्र में लिखे गए तथ्य गलत थे, टाइपिंग एरर्स, ट्रांसलेशन में खामियां थी, कई सवालों में ग्रामेटिकल एरर्स थे, समाजशास्त्र के परीक्षा पत्र में तो विद्वानों के नाम ही गलत लिख दिए गए थे, जैसे अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज रिट्जर की जगह पुत्जर लिखा हुआ था, भारतीय समाजशास्त्री गोविंद सदाशिव घुरे की जगह घुने लिखा था। इन परीक्षा पत्रों में सवाल भी साफ साफ नहीं पूछे गए थे, और तो और कुछ सवाल तो परीक्षा पत्र में दो दो बार पूछ लिए गए थे, कमाल है। इन तीनों विषयों की परीक्षाएं जून में ही हो चुकी है, इंग्लिश की परीक्षा 25 जून, कॉमर्स की परीक्षा 24 जून, सोशियोलॉजी की परीक्षा 30 जून। अब इन परीक्षाओं के बाद छात्रों ने इसके परीक्षा पत्र में खामियों की शिकायतें की थी, जिसके बाद अब उन्हें दोबारा आयोजित करवाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स और पीएचडी की पात्रता के लिए की जाती है। अब आप सोचिए कि जिस संस्था के 47 अधिकारियों को परीक्षा आयोजित करवाने में हुई लापरवाही की वजह से जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उस संस्था की एक और परीक्षा में लापरवाही बरती गई और अब डैमेज कंट्रोल के नाम पर दोबारा से परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। 22 जून से 30 जून में आयोजित हुई यूजीसी नेट के कुल 87 विषयों की परीक्षा में इस बार 7,96,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जिन 3 परीक्षाओं को रद्द किया गया है उनमें 1,57,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे, और अब इन सभी को एनटीए की लापरवाही का खामियाजा दोबारा परीक्षा देकर चुकाना होगा। अंग्रेजी और कॉमर्स, इनकी परीक्षा 9 सितंबर को, समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित होनी है। आप इसका अर्थ समझ रहे हैं, मतलब गलती करे एनटीए, खामियाजा भुगते बच्चे। कितना गुस्सा इन बच्चों में भरता है, वो भी इस उम्र में जब उनको लगता है कि चलो इतनी मेहनत के बाद एग्जाम खत्म हुआ, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा मानसिक तनाव से बच सकते हैं, तो अब फिर अगले महीने तक लगे रहिए। अब एनटीए का कहना है कि छात्रों से दोबारा परीक्षा के नाम पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी, बड़ी मेहरबानी, और ये कहते हुए वो नहीं सोच रहे हैं कि उनकी लापरवाहियों की वजह से परीक्षार्थी बार बार फीस क्यों चुकाएगा, दोबारा परीक्षा के लिए वो किस आधार पर अतिरिक्त फीस मांगेंगे। गलती आपकी, भरे कोई और, मानसिक तनाव झेले, फिर से मेहनत करे और फीस भी दे, और फीस नहीं ले रहे तो बड़ा एहसान। साल 2017 में एनटीए को यह सोचकर बनाया गया था कि यह संस्था देश की जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, उनको ट्रांसपेरेंट बनाएगी, पारदर्शी इस हद तक बनाएगी कि कोई खामियां नहीं होंगी, बड़े स्मूथ तरीके से एग्जाम्स होगा, प्रतिभावान बच्चे आगे बढ़ेंगे, बड़े अच्छे से एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करेगी, आयोजित करवाएगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एनटीए की ज्यादातर परीक्षाओं में गड़बड़ियां ही होती दिख रही हैं। पिछले 2 वर्षों के अंदर ही एनटीए की लापरवाही से 9 परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई। ये नहीं कहा जा सकता कि 9 में गड़बड़ियां हुई, लेकिन हमने इतने सारे ठीक से भी तो कराए। आपकी ये जिम्मेदारी है कि हर परीक्षा शत प्रतिशत सही हो, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। साल 2024 में 5 परीक्षाओं में खामियां, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाई गई थी, नीट यूजी की परीक्षाओं में बहुत सी गड़बड़ियां, स्थानीय स्तर पर पेपर लीक हुए, पेपर सही से नहीं बांटे गए, पेपर लीक के आरोप लगे, फिर कुछ परीक्षा केंद्रों पर दोबारा से परीक्षाएं की गई। ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा भी तय समय पर नहीं हुई और तकनीकी समस्या बताकर इसे आगे के लिए टाल दिया गया। सीयूईटी यूजी की परीक्षा, गड़बड़ियों के आरोपों की वजह से परिणाम जारी करने में देरी हुई। नीट पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तारीख भी पेपर लीक की खबरों के बीच पोस्टपोन कर दिया गया। इन गलतियों के बावजूद एनटीए ने सीख नहीं ली है और अगले साल फिर यही हाल था। जेई मेन्स 25 में आई है। जेई मेन्स की परीक्षाओं के दो सेंटर्स पर तकनीकी समस्या आ गई थी। एक सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया जिसमें 114 परीक्षार्थी परेशान हुए। बाद में इनके लिए तारीख दी गई, न्यू डेट। इसी तरह से सीयूईटी यूजी की परीक्षा में भी तकनीकी समस्याएं आई थी जिससे कई परीक्षार्थी बहुत परेशान हुए। तब साल 2026 आई है, एनटीए ने नीट यूजी के पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षाएं करवाई, फिर अब यूजीसी नेट के तीन विषयों की परीक्षाएं दोबारा होंगी। सवाल यह है कि अब वक्त आ गया है कि अहम परीक्षाओं को आयोजित करवाने वाली इस संस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव हो। या तो इसे रद्द करिए, नई संस्था बनाइए, ऐसे लोगों को डालिए, जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दी जाए जिनकी जवाबदेही हो। अहम परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियां जो हो रही हैं परीक्षा आयोजन के पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती हैं। और हद तो यह है कि गलतियों के बावजूद एनटीए सीखने को तैयार नहीं है।
1: मैंने एग्जाम दिया, मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जेआरएफ हो जाएगा इस बार इस अटेम्प्ट में, अब वो एग्जाम स्क्रैप कर दिया है। अब वो होप जो थी वो मर चुकी है। अब 24 दिन में मैं क्या ही कर लूंगा।
2: हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है। अभी नेक्स्ट मंथ में बहुत सारी स्टेट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, तो जिन बच्चों का नहीं हुआ या फिर जो इस एग्जाम का वेट कर रहे थे तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कैसे एग्जाम देंगे।
3: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। ये लोग हम लोग को ट्रांसपेरेंसी स्टार्टिंग से नहीं दे रहे थे, अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रहे थे। इस टाइम पे भी इस पर्टिकुलर ग्रेवियंस फॉर्म में हम लोग यही चीजें लिख कर लाए हैं कि आप लोग अगर करा रहे हो री एग्जाम तो अकाउंटेबिलिटी लो, आप हमें कॉम्पेंसेट करो, आप लोग पीएचडी एडमिशन की गारंटी लो कि स्टूडेंट्स इम्पैक्ट नहीं होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज में इनका मौका नहीं जाएगा।
0: जंतर मंतर पर हुए जेंजी आंदोलन को राहुल गांधी का पूरा समर्थन मिला था। उन पर हुए लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी ने खुद पीएम आवास के बाहर हंगामा वो प्रोटेस्ट करने भी पहुंचे थे। लेकिन पिछले काफी समय से राहुल गांधी से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ चल रहे जेंजी पर सवाल पूछे गए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली, नौकरियों का बाकायदा रेट लिस्ट, 24 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सैकड़ों प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हैं। 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च करने के प्रयास में वो पुलिस की लाठियां खा चुके हैं। रात के अंधेरे में जब विधानसभा के बाहर थे तो बिजली काट कर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन इन सब के बावजूद इन छात्रों को लेकर अभी तक राहुल गांधी या झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या वहां पर जाकर छात्रों से खुद संवाद करने की कोशिशों की बात आई है या सीधा संवाद की, अभी तक नहीं आई है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने पहली बार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अब चिट्ठी लिखी है, अपील की है कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करें। ये चिट्ठी आपके सामने है। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को चिट्ठी में लिखा है कि छात्रों की मांगों और उसके लिए हो रहे धरना प्रदर्शन का वो समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से अपील की है कि वो व्यक्तिगत तौर पर प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले, उनके शिकायतों का समाधान करें। राहुल गांधी की यह चिट्ठी छात्रों के गुस्से का नतीजा हो सकती है। दरअसल जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को राहुल गांधी का खुला समर्थन था, लेकिन झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन में अभी तक उन्होंने खुलकर अपने विचार नहीं रखे थे। यही वजह है कि झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का पुतला दहन करके अपना गुस्सा जाहिर किया। और यह गुस्सा यूं ही नहीं है, दरअसल धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की सेहत बढ़ते दिन के साथ खराब होती जा रही है। देवेंद्रनाथ महतो समेत 5 छात्र इन लोगों को भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनमें से 3 की हालत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवेंद्रनाथ महतो, उनकी भी स्थिति ऐसी है, वो आईसीयू में है। धरना स्थल पर मौजूद भूख हड़ताल करने वाले प्रदर्शनकारियों की रेगुलर मेडिकल जांच हो रही है, लेकिन छात्र भूख हड़ताल खत्म करने पर राजी नहीं है। सोचिए, हमारे भी घरों में बच्चा है, कोई बच्चा क्या एक दिन पूरा भूखा रह लेगा आपके घर में? बहुत मुश्किल है ना। सोचिए, कई दिनों तक ये बच्चे भूखे सो रहे हैं, जग रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना छोड़ दिया इन्होंने। और इनकी समस्याओं के लिए किसी के पास टाइम नहीं है कि जो भी ये मांग रहे हो उसका एक हल निकाल। कोई चांद सितारा तो मांग नहीं रहे हैं, ये ना किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं, ये बस कह रहे हैं कि एग्जाम को आप रद्द कीजिए और सीबीआई की जांच कराइए, क्योंकि सीआईडी केंद्र राज्य सरकार के अधीन है, वो अपने ही सरकार की क्या जांच करेंगे। अब जिन छात्रों की तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाना पड़ा, उनमें से एक छात्रा उम्मे हबीबा का वीडियो अन्य प्रदर्शनकारियों को गुस्से से भर रहा है। देखिए,
4: मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना दिन जिंदा रहूंगी, मुझे नहीं पता कि मैं इस जंग को और कितने दिन तक झेल पाऊंगी, आखिर और कितने दिन लगेंगे इस जंग को जीतने में, पता नहीं। आप सारे देशवासियों से, झारखंड वासियों से, सारे अभ्यर्थियों से अपील है कि प्लीज आप हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हो जाएं, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सब आइए यहाँ।
5: ये भी एक छोड़ा था आंध्र के राहुल जी ने हमसे वार्ता किए और जिस तौर पर बात किए, लेकिन वो केवल धोखा था। उन्होंने बोला कि छात्रों के साथ लाठियां जब चलाई, उन्होंने निंदा किया चेतन सरकार का, लेकिन वो निंदा दिल से नहीं था, और निंदा जो तो ऊपर मंच कर रहे थे, और इससे हमको प्रतीत होता है कि फिर चाहे चेयरमैन हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर छात्रों के साथ खेल कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, हम सभी पढ़े लिखे छात्र हैं, आपकी राजनीति का आपके षड्यंत्र में हम लोग नहीं।
0: छात्रों की बिगड़ती सेहत, मांगों से मुंह फेर कर बैठी झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो बार बार ये कहते हैं कि हमारे अधिकारी बात कर तो रहे हैं, हमने मंत्रियों का एक समूह बना तो दिया है, लेकिन इतने दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही है, इतने दिनों से हल नहीं हो पा रहा है। और आपने सुना उस बच्ची को क्या कह रही है, सिर्फ साथ मांग रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीएम का घेराव करने की अब बात की है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 20 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन का घेराव करने का ऐलान किया है। एक बार फिर जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग करवाने की बात है। कुल मिलाकर देखिए, सीएम आवास का घेराव अगर ये बच्चे करते हैं तो इसी वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। इससे पहले विधानसभा तक गए थे, वहां पर आपने देखा इन नुकीली तारों का पूरा वहां पर एक लगभग दीवार बना दी गई थी। अब छात्र आंदोलनकारियों के गुस्से की एक वजह देवेंद्र नाथ महतो के साथ हुई बदसलूकी भी। एक तो वो बच्ची का वीडियो जो आपने देखा, ये वायरल हो रहा है और लोगों को बड़ा दुख लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ 15 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा मार्च का ऐलान किया। अब देवेंद्र नाथ महतो इस तिरंगा मार्च में शामिल होना चाहते थे, लेकिन देखिए सुरक्षा बलों ने करने नहीं दिया उन्हें ऐसा। इस दौरान सुरक्षा बलों और भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो के बीच जबरदस्त झड़प हुई, उनके साथ बदसलूकी हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सरकार की उदासीनता और छात्रों की बिगड़ती सेहत से झारखंड का माहौल इस वक्त आप समझिए काफी उफान पर है, काफी दहक रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
6: आपका जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं हो,
7: जो जी जान देने के लिए तैयार है
6: कि हम मर भी जाएंगे।
7: 15 दिन से भूखे प्यासे हैं, सदर अस्पताल में बैठे हैं,
6: इसके बावजूद जो है कि हमको रोका जा रहा है, झंडा फहराने से रोका जा रहा है। ये क्या यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है।
8: कहना चाहूंगे
2: कि माननीय राहुल गांधी जी चिट्ठी लिखने से क्या होगा बताइए, अगर सच में आप स्टूडेंट के छात्र के हित में तो आप खुल के सपोर्ट कीजिए ना, खुल के रांची या प्रयागराज दिल्ली जाकर सपोर्ट कीजिए, तो रांची आने में क्या है सर, आधे घंटे के रास्ते है, रांची क्यों नहीं आ रहा बताइए, अगर आपके यहाँ आपकी सरकार है यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ केस हुआ या आप अपने आपने कांग्रेस आपकी गठबंधन की सरकार है, आप अपने गठबंधन की सरकार को संभाल नहीं पा रहे सर बताइए।
8: राहुल गांधी जो कि लगातार कांग्रेस के लिए छात्रों का समर्थन तो दिखा रहे हैं लेकिन झारखंड की कांग्रेस छात्रों के सवाल उठा रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आरजेडी के जो तेजस्वी प्रताप जो सुप्रीमो हैं उनका पुतला दहन किया गया है।
9: राहुल गांधी जब दिल्ली में नीट का मामला आया था सर, स्टेज पर चढ़ के खूब चल रहे थे, खूब बात कर रहे थे सर वहाँ से, इसका मतलब तो यही है सर कि आप अगर यहाँ नहीं बोल रहे हैं तो आप अपना सत्ता का रोटी सिर्फ सेक रहे थे सर हमारे भविष्य के साथ।
10: हेमंत जी का पुतला फूका जा रहा है, राहुल जी का पुतला फूका जा रहा है, तेजस्वी जी का पुतला फूका जा रहा है, क्यों? क्योंकि छात्रों हम सभी छात्रों का आक्रोश है कि हमारा जो मांग था वो मांग पूरा नहीं हो पा रहा है, जो रद्द रिफॉर्म सीबीआई जांच का था, सीबीआई जांच से माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों हट रहे हैं?
11: मैं छिला लिया हूँ, शोक अदा कर रहा हूँ हमारे बड़े भाई राहुल और हेमंत जी के इस स्वागत में और ये उनके शोक की थोक परिवार मैं सदस्य हो गया हूँ।
2: पुतला इसलिए दहन किया जा रहा है कि वो छात्रों की मांग नहीं सुन रहे हैं और इतने दिनों तक जो हमारे छात्र इतनी बारिश में दिक्कत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा है।
0: देश में इस वक्त परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर ही हंगामा चल रहा है और कुछ राज्य ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ के हालात देश के लोगों के सामने आए, कम से कम राजस्थान सरकार के एक नोटिफिकेशन से तो यही संदेश आ रहा है। तो झारखंड के बाद पहुंचे राजस्थान जहां की भजनलाल सरकार ने स्कूल्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इस गाइडलाइन में कहा गया है कि अब से राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल का कोई भी फोटो या वीडियो नहीं बनाएगा, तो हुजूर ने फरमान जारी किया है। गाइडलाइन में लिखा है कि सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री फोटो वीडियो बनाना प्रतिबंधित होगा, इसके लिए प्रिंसिपल से लिखित अनुमति लेनी होगी। ये भी नियम बना दिया गया कि बाहर से आने वाला व्यक्ति क्लासरूम लैब लाइब्रेरी हॉस्टल छात्रों से जुड़े दूसरे हिस्सों में नहीं जाएगा। छात्रों और शिक्षकों की फोटो वीडियो इंटरव्यू ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी लिखित अनुमति लेनी होगी। सरकारी अधिकारियों को छूट दी गई है। राजस्थान सरकार का कहना है कि नियमों का मकसद बच्चों की सुरक्षा उनकी निजता को बनाए रखना है, लेकिन आरोप है कि इसकी आड़ में वो अपनी खामियां छिपा रहे हैं। आरोप है कि इनकी इसकी आड़ में वो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी पर्देदारी कर रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों की बदहाली, कहीं पर उल्टे पंखे और जो गंदगी जो हालत आप देख रहे हैं, इस सबको छिपाने के लिए ये गाइडलाइंस लेकर आई है सरकार, ताकि स्कूलों के अंदर फैली अव्यवस्था खामियां किसी के सामने ना आ पाए। सरकारों को ये भी मालूम है कि जब कोई व्यक्ति लिखित अनुमति लेने की बात करेगा तो इस बीच खामियों को छिपाने का वक्त मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का गाइडलाइन कामयाब कैसे होगा जब राजस्थान के जैन अल्फा खुद ही सरकारी स्कूलों की जो अव्यवस्था है उसका भंडाफोड़ करेंगे। अभी हाल ही में अलवर के जोधावास गांव सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में स्कूली छात्र अधिकारियों के सामने धरना प्रदर्शन करके मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। स्कूल की हालत देखिए, स्कूल के सामने प्रदर्शन हो रहा है जिस उसकी इमारत काफी जर्जर है। देखिए, छात्रों की शिकायत थी कि स्कूल में केवल दो कमरे हैं, बारिश में इनकी छत टपकती है, इसके अलावा स्कूल में ना पूरे शिक्षक है, ना खेल का मैदान है, ना शौचालय है। गुस्से में इन छात्रों ने अधिकारियों से पूछ लिया था कि अगर उनके बच्चे यहां पढ़ते तो क्या यही सुविधा देते वो उनको। सुनिए,

0: सालों गए थे कलेक्टर को, मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
1: सही बात।
0: अगर आपके पंच होते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या?
2: और अब बाड़मेर का ये स्कूल देखिए, स्कूल की इमारत के नाम पर एक झोपड़ा है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग के लिए तस्वीरें शर्मनाक हैं। 2022 में ये स्कूल शुरू हुआ था, एक शिक्षक है, करीब 25 बच्चे और झोपड़ी है। सरकारी स्कूलों का सच छिपाने वाली गाइडलाइंस के बजाय अगर सरकार कह रही है कि भाई वीडियो मत बनाओ, देखिए।

0: दिखाते हैं प्रतापगढ़ का तिरपाल वाला स्कूल। प्रतापगढ़ की तस्वीरें चला दीजिए। ये तिरपाल में देखिए इस तरह से स्कूल चल रहा है। क्या ये तमाम मंत्री, ये बड़े बड़े अधिकारी, ये मुख्यमंत्री अपने बच्चों को ऐसे तिरपाल वाले स्कूल में भेजेंगे? तो अब प्रतापगढ़ के स्कूल की हालत देखिए, जहां पर ये छोटे बच्चे इस तरह से पढ़ने को मजबूर है। यहां के बाद आपको लिए चलते हैं जयपुर। जयपुर में महात्मा गांधी स्कूल, जर्जर इमारत है इसकी। डर के मारे कहते हैं बच्चे कि छत कभी भी गिर सकती है। हालत यह है कि बच्चों को क्लासरूम के बजाय बरामदे में पढ़ाया जा रहा है। और तो और जब हमारी टीम पहुंची तो सरकारी गाइडलाइंस का हवाला देकर कहा गया कि नहीं नहीं, वीडियो नहीं बनाना है। देखिए
1: इधर आइए सर, आप इधर आइए प्लीज। हाँ। प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे।
2: आप क्या क्या आदेश है?
3: आइए सर।
2: क्या आदेश है?
1: अभी बिना अनुमति के अभी सभी की बैन कर रखा है, अभी है ना, मीडिया पर्सन बैन है। प्लीज सर।

0: इस बात से शायद ही कोई नेता मंत्री छात्र इनकार करेगा कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, प्रति छात्रा छात्र शिक्षकों की संख्या अच्छी हो, अच्छे क्लासरूम हो, मैदान हो, खाना पीना अच्छा हो, लाइब्रेरी हो, लैब हो, शौचालय साफ हो। लेकिन अक्सर ये बातें ख्याली पुलाव हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कई रिपोर्ट्स आती हैं जहां स्कूल्स का बुरा हाल है। इसका ऐलान जेन अल्फा जो है वो खुद सड़कों पर उतर कर कर रहा है। तो लखनऊ की ये तस्वीर देखिए, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, छात्राओं ने स्कूल की बदहाली और व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर जाम लगाया। तेज बारिश के बीच करीब 100 से ज्यादा छात्र लगे रहे, डटे रहे और उन्होंने स्कूल की हालत के खिलाफ नारेबाजी की। छात्राओं की शिकायत है कि स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई नहीं हो पा रही। देखिए, इधर कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने भी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव की शिकायत लेकर धरना दिया है। छात्रों ने खुद को एक क्लासरूम में बंद कर लिया, फिर अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें रखी। कई घंटे तक समझाने बुझाने के बाद ही ये छात्र शांत हुए और निकलने को तैयार हुए। फिर मध्य प्रदेश का धार, सरकारी बोर्डिंग स्कूल के हालात इतने खराब है कि कल रात 40 स्कूली छात्राएं खिड़की से कूदकर स्कूल की शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इन छात्राओं की शिकायत है कि 50 बेड के हॉस्टल में 140 छात्राओं को मजबूर कर दिया गया रहने के लिए। इससे पहले हमने आपको दिखाया था ना गढ़चिरौली का, महाराष्ट्र का, यहां पर बेड नहीं था, बच्चियां जमीन पर सोने को मजबूर थी, सांप ने काटा, 3 की मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान का मामला इस समय देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस मुख्यालय से जो वीडियो सामने आया उसे लेकर बीजेपी जानबूझकर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस इसे अपनी सफाई और पुराने इतिहास के जरिए डिफेंड करने में जुटी है। अब यह विवाद कानूनी कार्रवाई और FIR तक पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा में कहा और जनसभा के ही दौरान कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को वंदे मातरम रोकने को कहा। गृहमंत्री ने आरोप लगाया, सीधा आरोप, कि 15 अगस्त को कांग्रेस ने वंदे मातरम के अपमान का पाप किया है।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
0: अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। ये विवाद कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित किए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम का है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। ये वीडियो कांग्रेस और राहुल गांधी के आधिकारिक YouTube चैनल्स पर भी उपलब्ध है। पहले आप वो हिस्सा देखिए वीडियो का। हालांकि हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन जो हिस्से पर विवाद हो रहा है वो देखिए।

0: कार्यक्रम के दौरान जब वंदे मातरम का गायन चल रहा था, तभी मंच पर एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई। वंदे मातरम के बीच में ही सोनिया गांधी कुछ कहती नजर आईं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से कुछ बात करते नजर आए और इसके साथ ही राहुल गांधी ने पास खड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता से कुछ कहा, जिसके बाद उस कार्यकर्ता ने खड़गे से बात की। सोनिया गांधी भी उस कार्यकर्ता से बातचीत करती हुई दिखाई दी। इस पूरी बातचीत के दौरान वो कार्यकर्ता अपने स्थान पर आगे पीछे चलता रहा, जबकि बैकग्राउंड में वंदे मातरम का गायन लगातार जारी रहा। अब बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन में रुकावट डाली, राष्ट्रगीत का अपमान किया। बीजेपी ने एक दूसरा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि राहुल गांधी वंदे मातरम के किसी खास वर्जन को लेकर चर्चा कर रहे थे। देखिए, जो तस्वीरों में दिख रहा है, बीजेपी जो आरोप लगा रही है और कांग्रेस जो सफाई दे रही है, इससे इतर आपको इस पूरे विवाद के पीछे की कहानी बताते हैं, इनसाइड स्टोरी। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी सामने रखी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई, क्या ये जानबूझकर किया गया या फिर कहानी कुछ और है। तो सुनिए, जो जानकारी हमारी सहयोगी मौसमी सिंह को सूत्रों से मिली, आजादी के दिन हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रोटोकॉल की कमी के चलते उनको असहज होना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत के गायन और उसके नियमों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेताओं को पहले से इस बात की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दूसरे नेता नाराज बताए जा रहे हैं। अब कांग्रेस के ही सोर्सेस जो है वो बता रहे हैं कि कार्यक्रम में जो कुछ भी हुआ वो मुख्य रूप से प्रोटोकॉल, जिम्मेदार अधिकारियों के बीच खराब तालमेल और आपसी बातचीत की कमी का नतीजा था। कार्यक्रम से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय के बीच इस बात पर चर्चा भी हुई थी कि राष्ट्रगीत पूरा गाया जाना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर पहले ही नियम पास हो चुका है। हालांकि ये महत्वपूर्ण जानकारी पार्टी के तीन सबसे बड़े नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक नहीं पहुंचाई गई, जिससे वो कार्यक्रम के दौरान इस बात से पूरी तरह अनजान बताए गए। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम की रिहर्सल के बाद भी बड़ी चूक हो गई। कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले इसकी रिहर्सल भी की गई, लेकिन कार्यक्रम के क्रम में हुए बदलावों की सही जानकारी बड़े नेताओं को समय पर नहीं दी गई थी। इंदिरा भवन में ऐसे कार्यक्रमों के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी मनीष चतरथ की है। जब यह विवाद हुआ तब भी मनीष चतरथ बैकग्राउंड में ही नजर आ रहे थे। पार्टी मामलों की देखरेख करने वाले कोषाध्यक्ष अजय माकन राहुल गांधी के पास खड़े थे, लेकिन संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल उस दिन केरलम में मौजूद थे, वो दिल्ली में नहीं थे। जब सोनिया गांधी ने इशारा किया कि वंदे मातरम का तीसरा पद भी गाया जा रहा है, तब सेवा दल की तरफ से ये गाया जाता है और सेवा दल के जो पूर्व अध्यक्ष लालजी देसाई के बीच इस दौरान बातचीत होती हुई देखी गई। इसी कंफ्यूजन की वजह से सोनिया गांधी के इशारे के बाद पार्टी के भीतर और बाहर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोगों का मानना है कि अगर इस मामले पर पहले शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा हो जाती तो इस तरह की एक अजीब स्थिति जो है वो नहीं पैदा होती और गैर जरूरी विवाद भी नहीं होता। कांग्रेस नेताओं ने सफाई दी कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र और लगातार काफी देर तक खड़े रहने की वजह से उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कुर्सी की मांग सोनिया गांधी कर रही थी। अब बीजेपी ने सफाई को खारिज करते हुए कहा है कि अगर कुर्सी मंगाई गई थी तो क्यों मंच पर कोई कुर्सी नहीं लाई गई। इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराने के बाद करीब 25 मिनट तक लंबा भाषण दिया। उससे पहले वो वंदे मातरम के बाद हुए झंडा गान के दौरान भी खड़े रहे, लेकिन इस दौरान कोई कुर्सी नहीं लगाई गई।
1: वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं था, बल्कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहाँ पर खड़े थे वो, और धूप काफ़ी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी।
2: बड़ी खबर, खबर इस वक्त आ रही है आपको बता दें झारखंड से, क्योंकि बच्चों की जो एक बड़ी मांग थी कि TGPL की तरफ से जितने भी एग्जाम्स कराए गए थे उन सभी एग्जाम्स को रद्द करा दिया जाए। इस पर अभी तक की मिली जानकारी के बताया जा रहा है कि ये बात मान ली गई है, यानी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इन अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो छात्र वहां पर अब जश्न भी मना रहे हैं। आइए आपको बताते हैं झारखंड से छात्र आंदोलन पर ये सबसे बड़ी खबर। JSSC CGL की परीक्षाएं रद्द करने का जो आदेश दे दिया गया है उसकी वजह से छात्रों में खुशी है। TDPL के जरिए हुई परीक्षाएं और भर्तियां रद्द की गई हैं। और आइए आपको सुना देते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हमने जितने भी एग्जाम TDPL की तरफ से कराए गए थे, जिस एजेंसी को बैन किया गया है, जिसको चलाने वाले लोग इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उसके द्वारा कराए गए सभी एग्जाम हम रद्द कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा है हेमंत सोरेन ने और साथ ही देखिए छात्रों की जश्न मनाती तस्वीरें।
3: मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता, वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था, जैसे रिफॉर्म्स की बात थी ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में

0: और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। डीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
1: जो ये बात है, वार्ता हुई, लंबी बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि सीजीएल एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पे हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा,
2: 11-13
1: हाँ सब होगा। मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम टीडीपीएल ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा।
2: तो क्या अभी जश्न मनाने के लिए आप लोग जाएंगे?
1: हो गया, अब बच्चों का जो मांग था पूरा हो गया, अब वापस होना
2: मिलने जाएंगे।
1: अब चलिए ये सब बात, चलिए हो गया, चलिए हो गया, चलिए हाँ हाँ चलिए चल जाए।
3: सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे उस पर?
1: देखिए, हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है थोड़ा 19-20 होता है। हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सीजीएल एग्जाम में है जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा, मान लिया। टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे।
2: तो छात्रों के पास कौन सा यार, ये कौन सा समझ नहीं आ रहा एक बार।
4: तो बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ऐलान किया कि टीडीपीएल ने जितने एग्जाम्स कराए हैं वो सब रद्द किए जाएंगे। फिर इसी बात की पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को भी आप सुन रहे थे, सत्यजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। बच्चों की प्रमुख मांगों में ये शामिल था कि जो एग्जाम्स टीडीपीएल ने कराए थे उन एग्जाम्स को रद्द किया जाए। ये एक बड़ी मांग अब सरकार आखिरकार जाकर मानी है, भूख प्यास से बिलखिन बच्चों को देखते हुए। तो एक क्या अब इसके बाद समझौते की सूरत बनेगी सत्यजीत, या सीबीआई जांच की मांग पर भी स्टूडेंट्स अभी बैठे रहेंगे, क्या समझ में आ रहा है?
5: देखिए, बड़ी मांग उनकी पूरी हो गई है। जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल करना चाहते थे, कैंसिल करवाने के लिए लगातार भूख हड़ताल पे बैठे थे। जेपीएससी के एग्जाम्स जो है वो 14th प्रीलिम्स को वो रद्द करवाना चाहते थे, ये दोनों मांग मान ली गई है। टीडीपीएल द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाएं या फिर जिसका रिजल्ट उसने पब्लिकेशन किया है उसको जो है रद्द करवाने की मांग थी उनकी, वो भी मान ली गई है। और 2014 से लेकर अब तक जितने इम्तिहान आयोजित किए गए हैं उसका सीआईडी जांच होगा, तो ये मांगे मान ली गई है। और अब जो है कहीं ना कहीं उनकी जो है ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अब जो 2250 वैसे लोग जिनका जो है जिनका रिक्रूटमेंट हुआ था जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से, वो अभी मंत्रालय के बाहर खड़े हैं, जमकर हंगामा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि डबल बेंच के आदेश से उनकी नियुक्ति हुई थी, जेएसएससी सीजीएल के कैंसिल होने से अब उनकी नौकरियां जो है वो बिल्कुल चली गई है। तो जाहिर तौर पे अब देखना होगा, ये कन्फ्रंटेशन की स्थिति होगी, सक्सेसफुल कैंडिडेट वर्सेस वैसे लोग।
4: इसका आंदोलन तो ये है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब ये बात मान लेने के बाद जिनकी नियुक्तियां हुई थी, अगर वो मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं वो इस वक्त खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं, तो एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी।
5: उन्होंने मानव श्रृंखला उन्होंने बनाया हुआ है, और जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से निकलता है वो नारेबाजी करते हैं, और अभी भी वो खड़े हैं। और कई मीडिया चैनल से भी उनकी नाराजगी है कि जिस तरह से लगातार वैसे स्टूडेंट्स जो जिन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार है इम्तिहान में, और उसको लेकर वो लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे, जिसको प्रमुखता से जगह दी है अलग अलग चैनल्स ने, उसको लेकर भी उनकी नाराजगी साफ दिख रही थी कि एक तरफा दिखाया गया और जो है बातें उनकी नहीं सुनी गई। जबकि उनको कोर्ट ने ये कहा था कि जो उनके खिलाफ जो आरोप

0: वो सब्सटेंशिएट नहीं हुए हैं। ये लाइन उन्होंने पढ़ के सुनाया है और इसको लेकर नाराजगी, और अभी उनकी नाराजगी दिख रही, जाहिर तौर पर स्वाभाविक भी है। अगर एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका असर ये होगा कि उनकी नौकरियां जो है वो अब दांव पे लग गई है। अगर एग्जाम ही कैंसिल हो गया, यानी कि अब उनकी नौकरी जाना तय माना जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस कि उनको अब लीगल कोर्स ना लें और उसके अलावा जो है कुछ रिस्पाइट जो है फिर से कोर्ट से ना मिले, तो ये अब देखना होगा। जो आपने कहा कि कन्फ्रंटेशन की स्थिति है, टकराहट की स्थिति है, सक्सेसफुल कैंडिडेट वर्सेज अनसक्सेसफुल जो जिन्होंने अभ्यर्थी थे यानी जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, तो दोनों के बीच इस तरह की स्थिति अब उभर कर सामने आई है।
1: अब ऐसे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, और क्या छात्र जो है जो अलग जगह से उनके सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं, तो क्या सीबीआई जांच वाली मांग को छात्र छोड़ देंगे?
0: देखिए, ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। अब वो हो सकता है कि छात्र जो है वो इस बात को कंसीड कर लें कि सीआईडी जांच हो रही है, सीआईडी जो है लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, रेड कंडक्ट किया है, आज भी एक गिरफ्तारी हुई है, अजीता भट्टाचार्य जो जेपीएससी की सदस्य थी उनके पीए को गिरफ्तार किया गया है, फिर 2014 से तमाम एग्जाम्स को जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा सीआईडी के द्वारा। लेकिन जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल का उनका मेजर डिमांड था वो मान लिया गया है, उसी के लिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उसमें गड़बड़ियां थी, उसके लेकर सीबीआई जांच, जब उस एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया है, तो अब ऐसा लगता है कि छात्र जो है वो कहीं ना कहीं वो भी अब टर्म्स एंड कंडीशन पे आएंगे, टर्म्स पे आएंगे और सरकार के साथ उनका डायलॉग होगा, और अब ये जो लगातार एजिटेशन पिछले 24 दिनों से चला आ रहा था वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा, लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा। अंजना
1: पहले तो देखिए सरकार ने एग्जाम कैंसिल कर दिए है, क्या इस पर और अनुरोध रहेगा, क्योंकि हम बच्चों की हालत, आपकी हालत सबकी देख रहे हैं, आप लोगों की हालत इतनी खराब है, कम से कम आप अनशन को तो तोड़ने का वक्त आ गया, क्या माने?
2: जी बिल्कुल अंजना मैम, सबसे पहले तो जिस प्रोटेस्ट को आप लोग शुरुआत से पूरा देश और दुनिया तक पहुंचाए और हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी छात्र, अभिभावक, मीडिया, पुलिस प्रशासन, तो जो भी गणमान्य लोग इस प्रोटेस्ट में सहयोग किए, सबको मेरी ओर से धन्यवाद है, आभार है, और विशेष रूप से झारखंड सरकार को जो 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से मिले और 21 जुलाई से जांच शुरू हुई और लगातार जांच के माध्यम से ही करप्शन दुनिया के सामने परत दर परत निकलते गई, इसलिए झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद। लेकिन अनशन तो अब तोड़ूंगा, लेकिन संघर्ष मेरा जो है एक और जारी रहेगा। मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं, क्योंकि मैं कई बार अपने आंखों से कई एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है, यही सीजीएल जो आज रद्द हुई 29 जनवरी 2024 को भी मैंने रद्द कराया था आंदोलन स्थल से ही जेएसएससी कार्यालय के समक्ष, लेकिन वही सीजीएल रद्द होने के बाद दोबारा हुई तो फिर विफल हुआ। तो मैं कई एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है, कई एग्जाम पर सीआईडी जांच होते हुए देखा है, सीबीआई जांच होते हुए देखा है, बस गिने चुने स्टूडेंट को ही न्याय मिल पाता है इस समय। लेकिन मैं एक ऐसा सिस्टम चाहता हूं जो सरकार मुझे गारंटी दे कि आने वाले समय पर और दोबारा पेपर लीक ना हो, सरकार मुझे गारंटी दे ऐसा सिस्टम बना करके कि आने वाले दिनों पर ना धांधली हो, ना सर्विस से नौकरी हो, ना ही पेपर लीक हो, और ऐसा सिस्टम और ऐसा कानून बने। और अगर इस सिस्टम बनने के बावजूद अगर कोई हिम्मत करता है पेपर लीक करने का, तो छात्र और पेपर लीक करने वाले दोनों का आजीवन कारावास हो, और ये झारखंड का एजुकेशन सिस्टम पूरे भारत के लिए और दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो, इसके लिए मैं आगे संघर्ष को अपना जारी रखूंगा।
1: आपका मकसद भी बहुत बड़ा है, लेकिन इतने दिनों से अनशन कर रहे हैं, अनशन तो खत्म कर लीजिए।
2: जी अनशन को आज मैं करूंगा, अनशन को जरूर खत्म करूंगा, लेकिन संघर्ष मेरा रिफॉर्म तक जारी रहेगी, और एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम गारंटी चाहिए कि और पेपर लीक ना हो, क्योंकि और बहुत देश में पेपर लीक नहीं होता है। देखिए पेपर लीक फिर हुआ है अभी कुछ पीएचडी का एग्जाम पर अभी दिल्ली के अंतर्मंत्र में भी कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शायद हमको ऐसा भी कुछ खबर आई थी। तो ये पेपर लीक पूरा मैंने एकदम जड़ से खत्म होना चाहिए। दोबारा और पेपर लीक को लेकर के और कोई माँ का बच्चा को मेरा जैसा कुर्बानी देना ना पड़े। जो बच्चा अभी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहे हैं, जो सत्तों आठवीं में पढ़ रहे हैं या मैट्रिक इंटर में पढ़ रहे हैं, जो बच्चा आने वाला दिन पर प्रतियोगी परीक्षा को फेस करेंगे, वो बच्चा को कुर्बानी देना ना पड़े, ऐसा सिस्टम बहुत जरूरी है। हेलो,
3: जांच कराए, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट को सिर्फ एक अवसर मिलता है, उसका भी समय वापस नहीं आता है। लेकिन मेरा इच्छा है जो अभी पहला दूसरा क्लास में है, जो अभी सातवां आठवां मैट्रिक इंटर में जो है, वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी उनको ये कुर्बानी ना देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे, ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। इसके लिए हम सरकार को सहयोग करेंगे और सरकार इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे, निश्चित तौर पर एक ऐसा रिफॉर्म सिस्टम लेकर के आएंगे जो जुगो जुग तक आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी तक पेपर लीक और धांधली कभी नहीं होगा।
4: बरसों की उपलब्धि आप मानते हैं?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
3: आश्चर्यजनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
2: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
3: सुपर स्ट्रॉन्ग
2: और मॉइस्चर प्रूफ।
4: वारंटी
2: 15 साल की।
3: कदम
2: सर प्लीज
3: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
5: क्रॉसबॉन्ड HDMR मैक्स। फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
6: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
8: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
9: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।

जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: और जेएनयू में कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया था स्वागत की होता थी। चिदम्बरम साहब, आप देश के अग्रणी मंत्री हैं, रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई एडवोकेट हैं, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? तो सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है, उसी का चेहरा बने हैं पीटर चिदम्बरम।
4: पुली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदम्बरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग, और ये उसके हेडमास्टर हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
3: मौका था 15 अगस्त पर देश के नाम संबोधन का, जगह थी लाल किले की प्राचीर। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य के लक्ष्य बताए तो नए खतरे से आगाह भी किया। पहली बार पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल के बढ़ते खतरे की तरफ देश का ध्यान खींचा। एक बार फिर सुनिए पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा।
2: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
3: जाहिर है पीएम मोदी ने अपने दिमाग से नक्सलवादी विचारधारा को खाद पानी देने वालों पर हमला बोला और इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम खुलकर सामने आए। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम यही नहीं रुके, कुछ घंटे बाद एक्स पर उन्होंने लिखा, दिमागी नक्सल शब्द बीजेपी के पुराने आरोपों जैसे अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक नया रूप है। अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था, ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उन्हीं अपशब्दों का एक नया रूप है। चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए। दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, देश के तमाम शहरों से चिदम्बरम पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। वार पलटवार के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पी चिदम्बरम के बयान पर आपत्ति जताई। एक्स पर उन्होंने लिखा, भारत के सम्मानित पूर्व गृह मंत्री का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता दिमागी नक्सल हैं। सिर्फ वो लोग ही दिमागी नक्सल हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों का साथ देते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, चिकन नेक को काट कर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। रिजिजू ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया तो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 370 के समर्थन में आगे आ गईं। महबूबा ने एक्स पर लिखा, मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं।
4: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
3: पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल पर हमला कर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां आने वाले दिनों में वार पलटवार का लंबा सिलसिला दिख सकता है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।

0: आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार, TDPL के द्वारा कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द, छात्रों में खुशी की लहर। आज तक से बोले देवेंद्र महतो, तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष। आज तक की खबर का तेजी से हुआ असर, खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा, 22 को होगी पहली मीटिंग, पीएम मोदी ने दी बधाई। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला बड़ा दांव, नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व, 8 चेहरे शामिल, राजस्थान गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। तो आज दस्तक की शुरुआत इस समय की एक सबसे बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। जी हां, रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज कैबिनेट ने JSSC CGL परीक्षा को भी रद्द करने का निर्णय कर लिया है। इसके अलावा 2014 से हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी, एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद वो कमेटी ये तय करेगी, हर परीक्षा की जांच होगी और ये बड़ी जीत छात्रों की। यहां पर छात्रों ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से जैसे ही आश्वासन आया, छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि मैं अनशन तो तोड़ दूंगा लेकिन हमारा ये संघर्ष जो है वो लगातार जारी रहेगा। बड़ी खबर इस समय की यही है, झारखंड में पिछले 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा निर्णय किया। सरकार ने TDPL के द्वारा कराई गई JSSC CGL समेत सभी परीक्षाओं उनके रिजल्ट्स को रद्द किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2014 से लेकर TDPL के माध्यम से कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच कराने की भी घोषणा की है। इसके अलावा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थी पिछले 24 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे थे। छात्रों की मांगों को लेकर सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ था। सरकार के निर्णय की जानकारी मिलते ही स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। छात्रों ने एक दूसरे की मिठाई खिलाकर निर्णय का स्वागत किया। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे उनके संघर्ष को अब जीत प्राप्त हुई है। छात्र नेता क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं।
1: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
2: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सब
1: देखिए, अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे।
2: कितना संतुष्ट है अभी तक?
1: अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में है। हम क्या करें कि हम CBI जांच, CID जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए।
3: CDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
4: वार्ता हुई, लंबी बात बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि CGL एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पे हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि CGL का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा।
5: 11 to 13
4: हाँ सब होगा, मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम TDPL ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा। देखिए हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है थोड़ा 19-20 होता है। हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि CGL एग्जाम है जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा। मान लिया TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे।
0: आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता शशि भूषण के पास लिए चलते हैं। शशि, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों की सभी मांगों को मान लिया है 24 दिन बाद, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार छात्रों के आगे झुकने पर मजबूर हुई?
6: सही जी, सबको मालूम है कि JPSC और JSCC रिफॉर्म्स को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ था आज वो 24वां दिन है, और 24वें दिन अगर सरकार झुकी है तो एक कदम पीछे कहीं ना कहीं जो रिफॉर्म मंच है वो भी आया है। रिफॉर्म मंच और सरकार के बीच जो बातचीत अटकी पड़ी थी वो दो सवालों पे थी। एक तो ये कि जो CGL JSCC के अंदर जो CGL की परीक्षा होती है, कंबाइंड लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है झारखंड के अंदर में, उस परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही थी। और दूसरा ये कि इस पूरे प्रकरण की CBI जांच की मांग जो है वो छात्र कर रहे थे। तो आप इसको इस तरह से भी देखिए कि एक तरफ अगर छात्र संगठन या छात्रों के नेता देवेंद्र महतो ये कह रहे हैं कि संघर्ष जारी रहेगा और वो अनशन खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और नोटिफिकेशन का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब उस CBI जी
0: बिल्कुल यही बात जो आप कह रहे थे, अब क्या छात्र आंदोलन खत्म माने सब अभी रात को ही घर जाना शुरू कर देंगे, सुबह तक सब साफ?
6: देखिए होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन एक बात जरूर देवेंद्र महतो ने कही है कि वो नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार करेंगे। मतलब ये कि सरकार को एक नोटिफाई तो करना होगा ना कि उसने 2014 के बाद से जो भी परीक्षाएं हुई CGL की उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करने, उसको कैंसिल करने का आदेश जो सरकार वो नोटिफाई करेगी।
0: वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये तो आगे की बात हुई शशि, यहां पर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अभी जो देवेंद्र महतो की बात हमने सुनवाई कुछ ही क्षणों पहले आपसे बात करने से पहले, उसमें वो धन्यवाद कर रहे हैं हेमंत सोरेन का, उसमें वो कह रहे हैं कि सारी बातें हमारी मांग ली गई हैं और हम संतुष्ट हैं। तो इससे तो यही लगता है कि अभी फिलहाल ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म, नोटिफिकेशन में टाइम लगेगा, आगे आएगा।
6: बिल्कुल वो मान रहे हैं कि अब जो मांगे उनकी थी वो मांगे सरकार ने मान ली है, लेकिन मैं वही बात कर रहा था सही जी कि CBI जांच एक प्रमुख मांग थी, लेकिन आज देवेंद्र महतो के स्टैंड में भी बदलाव आया। देवेंद्र महतो ने जो बयान दिया उसमें, पूरे बयान को आप सुनिए, उसमें वो कह रहे हैं कि CID की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, बड़ी मछलियों तक सरकार पहुंच रही है। मतलब अब छात्र संगठनों ने या फिर जो रिफॉर्म मंच है उसने भी ये मान लिया था कि सरकार, हेमंत सरकार जो है वो CBI जांच की अनुशंसा नहीं करेगी। यही वजह है कि एक कदम पीछे जो छात्र संगठन है, रिफॉर्म मंच है, वो आया है, CBI जांच की मांग से वो पीछे हटा, वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जो बातचीत और लबोलबाव हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार इस बात के लिए तैयार है कि TDPL एजेंसी की तरफ से जो भी परीक्षाएं कराई गई उन परीक्षाओं को निरस्त किया जाए, लेकिन सरकार की मुश्किलें अब आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो CGL के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज में लोग पदों पर काम कर रहे हैं, अब उनके नौकरी पर संकट आएगा, वो सेवा में है, तो वहां पर
0: यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे शशि, यही हम पूछना चाह रहे थे कि भाई जो 14 से लेकर अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं तो वो तो नौकरी ज्वाइन कर ली होगी, काम करना शुरू कर दिया होगा, अगर उनकी जांच हुई, अगर मान लीजिए वहां कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर तो कैसे संभलेगा ये?
6: देखिए मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में तो जाना है सही जी, आप इसको इंकार नहीं कर सकते इस संभावना को, क्योंकि जो सेवा में हैं और राज्यकर्मी के तौर पे जो कई सालों से नौकरी कर रहे हैं CGL के तहत जिनकी बहाली हुई, वो अपनी नौकरी जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो सरकार से लड़ाई नहीं लड़ेंगे या अपनी नियुक्ति बनाए रखने के लिए न्यायालय का रुख नहीं करेंगे, तो वो चीज आगे होनी है, तो वहां भी एक कंफ्लिक्ट दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि सीआईडी की जो जांच सरकार चाहती थी और जो बीजेपी आरोप लगा रही थी कि हेमंत सोरेन सीबीआई जांच की अनुशंसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ताकि उनके जो करीबी लोग हैं, जैसे बहुत सारे जो जेएमएम के नेता हैं, उनके करीबी लोगों को जेएससीसी और जेपीएससी में जगह मिली हुई थी, तो उन नेताओं तक सीबीआई की पहुंच हो सकती है। सीबीआई जब इंट्रोगेट करेगी तो एक पॉलिटिकल प्रेशर होगा सीबीआई की वजह से सरकार के ऊपर, तो शायद इस वजह से हेमंत सोरेन परहेज कर रहे थे कि सीबीआई जांच न हो। और वहां देखिए सरकार सफल होती रही है। अभी जो हेमंत सोरेन ने घोषणा की, इसके पहले प्रोजेक्ट भवन जो है रांची का, वहां पर घंटों मीटिंग उन्होंने की है। एक 3 सदस्यीय जो मंत्रियों की कमेटी थी, जिसमें सुदीप सोनू थे, जिसमें संजय यादव थे, जिसमें दीपिका सिंह पांडे सिंह थी, ये तमाम लोग जो छात्रों से अलग अलग 3 दौर की बातचीत कर चुके थे, इन मंत्रियों के अलावा तमाम मंत्रियों के साथ रिव्यू हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये फैसला बहुत आसान था। और सबसे बड़ी बात, कल रात में जो एक लेटर लिखा कल शाम में राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को, जो लेटर आज वायरल भी हुआ, सामने भी आया, खुद रिफॉर्म मंच ने उस लेटर को शेयर किया, उसके बाद भी दबाव था। तो गठबंधन की सरकार में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। जी
0: शशि, थोड़ा सा समय कम था, क्षमा आपको, हमने बीच में रुका है। शशि भूषण हमारे संवाददाता, छात्रों में खुशी की लहर जो आप देख रहे हैं वो यही है, हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की बात मान ली है। और आइए अब हम आपको दिखाएं कि कैसे एक बार फिर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए फेल हो गई। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और खुद एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं, और इतने भी एनटीए से परीक्षाएं ही नहीं संभल रही। जी हाँ, नीट पेपर के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आ गई, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी और दोबारा परीक्षाएं कराने का ऐलान किया। तो आइए हम आपको दिखाएं कि आखिर क्यों बार बार एनटीए हो रही है फेल, क्यों एनटीए सही ढंग से परीक्षाएं करवाने में नाकाम सिद्ध हो रही है।
5: तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया।
7: तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा।
5: आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, एनटीए को बंद करना पड़ेगा।
8: 24 में नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, 2026 में नीट का फिर से पेपर लीक होता है।
9: एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ किस बेसिस पे कर रहे हो।
10: एनटीए फिर हो गया फेल, अब की बार यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी। एनटीए के खिलाफ फिर फूटा गुस्सा, एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम हो रही है एजेंसी? एनटीए पर फिर उठे सवाल। एनटीए पर पिछली परीक्षा के सवाल, नई परीक्षा में रिपीट करने के आरोप।
11: एनटीए को बैन करवा के रहे हैं, एनटीए को बैन करो।
10: क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही? आखिर खोट कहाँ है? ये तस्वीरें दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुख्यालय की हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
10: एनटीए के पुराने दाग अभी धुले भी नहीं है कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो रहा है। जी हाँ, नीट पेपर लीक, उसके चलते 21 छात्रों के सुसाइड के खिलाफ जंतर मंतर पर पूरे 36 दिन कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में आंदोलन चला। छात्रों ने लाठियां खाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन रुकता है। और अब भी नीट यूजी पेपर लीक मामले में इस समय सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अगस्त 2026 से ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालती सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर एक बार एनटीए फेल हो गया है। जी हां, एनटीए ने फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका खामियाजा आदित्य सिमरत जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप पूछेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 से ज्यादा अधिकारी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद बदले गए, वो एनटीए सिर्फ भांग खाकर पेपर नहीं सेट कर रहा, बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कैसे, सुनिए। यूजीसी नेट जून 2026 को इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थी। समाजशास्त्रियों और अवधारणाओं का गलत नाम लिखा था। अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था। कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ प्रसारित होने का दावा भी किया गया था। हालांकि एनटीए ने लीक के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था। 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। एनटीए कहता है कि इन सब की वजह से अब 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे, लेकिन 2 महीने तक सन्नाटा खींचे रहे एनटीए को लेकर युवा नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ये ठगी है।
12: इतनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं, और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
9: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट 2 महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। मैम यहाँ पे बहुत बार आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम। सो वी वर होपिंग कि आंसर की आएगी, बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज कि टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, PYQs रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
13: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
10: अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे, लेकिन इतने सब से क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई होगी? चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके छात्र पीएचडी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करेंगे, उस परीक्षा के पेपर में न अनुवाद सही है न व्याकरण। यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में 2 महीने का वक्त क्यों लग गया, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है।
14: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। आपने प्रोविजनल आंसर के लिए जो 1 हफ्ते में आती है उसके लिए आपने 30 दिन और लिए हैं। 30 दिन के बाद आपने फिर कमेटी बिठाई है, 4 घंटे में आप डिसीजन ले रहे हो इतने मेजर एग्जामिनेशन का।
10: एनटीए कहता है कि यूजीसी नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था, एनटीए ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बाद एक समिति बनाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बन जा रहा है? इन गलतियों को पहले देखने वाला कोई नहीं था।
15: ये गलती जानने के बाद, मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने एनटीए को लग गए, तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हों जो एनटीए ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स, या जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा, ऐसी और भी गलतियां होंगी।
10: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर ये तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद एनटीए की तरफ से उठाए गए कदमों, खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनटीए में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट के 3 पेपर भी एनटीए ढंग से क्यों नहीं बना पाया। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
0: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ईरानी फरमान, अमेरिकी सैनिकों पर इनाम। आप देखते रहिए दस्तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।

0: बिजली का बिल पेड,
1: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इतना माही वे।
3: पापा।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
11: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
12: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टाने चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिम्बी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंड स्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये। ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। एक और तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
1: देखिए 3 दौर की वार्ता हुई। सरकार के प्रशासन की तरफ से ये बात आती रही कि आप संख्या कम कर दीजिए। जब संख्या कम करने पे भी बात आई तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के साथ बैठक करवा देते हैं, तो सीएम के साथ बैठक की बात आई। हमारा ये निवेदन है कि जो हमारे सीएम साहब बैठक करने की बात कर रहे हैं, धन्यवाद, लेकिन वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि जो आदमी बैठक उससे हो जो इस मामले का हल निकालने के सक्षम। यहीं पे मतलब प्रोग्राम है जो हमारा, वो रेगुलर जारी है।
2: जो किसान नेता डिटेन किए गए थे उन पर
1: वो सबके सब मतलब उन्होंने रिहा कर दिए।
2: तो बाकी रणनीति क्या रहेगी?
1: देखिए आगे के बारे में हमारे सभी साथी यहाँ है, बैठकें होती रहेंगी, बैठकों में क्या निकलता वो निकलेगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर ईरान और अमेरिका की। जी हाँ, ईरान की सेना ने ऐलान किया कि अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने वालों को इनाम दिया जाएगा। ईरानी सेना ने यह भी कहा कि अगर ये काम कोई महिला करती है तो इनाम की राशि दोगुनी कर दी जाएगी। हम आपको ये बता दें कि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ओमान पर बमबारी की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान हॉर्मुज में ईरान के जहाजों की नाकाबंदी में रुकावट डालता है तो बम गिरा देंगे। आइए हम आपको दिखाएं कि आखिर ये युद्ध कहां तक जाएगा।

0: ईरान का ऐलान, अमेरिकी सैनिकों को मारो और $30,000 पाओ। मुश्तबा का नया प्लान, अमेरिकी सैनिकों पर कहर बरपाएगा ईरान। हुर्मुज पर ट्रंप की धमकी, ईरान की लंबी लड़ाई वाली तैयारी। ईरान की फौज में फेरबदल के पीछे मुश्तबा की असली रणनीति क्या है? ट्रंप ने ओमान पर बमबारी की धमकी दी, ईरान ने कमर कस ली। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान पर बमबारी की बात कहकर पूरी दुनिया को चौंकाया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी सैनिकों को मारो और $30,000 ले जाओ। ईरानी सेना ने यह भी कहा है कि अगर कोई महिला अमेरिकी सैनिकों को मारती है तो इनाम की रकम दोगुनी यानी $60,000 कर दी जाएगी। इस ऐलान ने इस बात को लेकर ध्यान खींचा है कि क्या अमेरिका का ईरान में जमीनी हमले का कोई सीक्रेट प्लान है, जिसके लिए हाफी ने देश को यह संदेश दिया है।
1: हर किसी, हर रजमंदे अजीजी एक अमरीकाई रो بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران. ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل $30,000 است، حدود 5 میلیون.
0: ایران کی سرکاری سماچار ایجنسی ایرنا کی ایک رپورٹ کے انوسار دیش کے سینہ پرمک امیر ہاتمی نے کہا ہے کہ امریکی سینکوں پر ایران گھوشت کرنے کی یہ یوجنا وتیہ سہایتا میں بھاگ لینے کے لیے بڑی سنکھیا میں آئے انوروھوں کے بعد تیار کی گئی۔ ہاتمی نے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی کہ امریکی سینکوں کو مارنے یا پکڑنے کا کام کہاں یا کب ہونے کی سمبھاونا ہے۔ ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब 17 जून को हस्ताक्षरित अमेरिका ईरान के इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के तहत 60 दिन की समय सीमा नजदीक आ रही है। इस समझौते के तहत ईरान और अमेरिका 28 फरवरी से 40 दिनों तक चली लड़ाई के बाद एक अस्थायी युद्ध विराम और स्थायी समाधान के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए थे, लेकिन इस समझौते के बावजूद दोनों देशों में पूरी तरह से युद्ध विराम कभी नहीं हो पाया और न ही बातचीत में कोई प्रगति हुई। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान पर बमबारी की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ओमान हुर्मुज जलडब्रू बंध में ईरान के जहाजों की नाकेबंदी में रुकावट डालता है तो वो बम गिरा देंगे। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ओमान रुकावट डालता है तो हम उन पर जबरदस्त बमबारी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि नाकेबंदी से ईरान पर दबाव बन रहा है और उनके पास इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने साफ किया कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों ही देश लंबी लड़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं? और हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई ने ईरान की सेना और IRGC में जो बड़ा फेरबदल किया उसकी वजह यही है। मेजर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। ये गुरिल्ला युद्ध और कुछ फोर्स के पुराने अनुभवों के साथ ईरान के सबसे घातक रणनीतिकार माने जाते हैं। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को चीफ ऑफ स्टाफ आर्म्ड फोर्सेस बनाया गया है। यह ईरान की पारंपरिक सेना और IRGC के संयुक्त ऑपरेशंस के बीच पूर्ण सैन्य तालमेल बिठाने में माहिर हैं। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी अब आर्म्ड फोर्सेस यानी ईरान की सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं। सेना की ग्राउंड फोर्सेस के प्रमुख के रूप में इन्होंने जमीनी सीमाओं की अभेद सुरक्षा और आधुनिक युद्ध तकनीकों को मजबूत किया है। रियर एडमिरल अली

0: ये बेहद आक्रामक है। हुसैन तायब अब बसीज फोर्स के मुखिया हैं। वो IRGC की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख होने के नाते इनके आंतरिक सुरक्षा और जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने का अचूक अनुभव रखते हैं। मेजर जनरल मुस्तफा इजादी, डिप्टी कमांडर इन चीफ IRGC, ईरान इराक युद्ध के इस अनुभवी जनरल के पास साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणालियों को लीड करने का आधुनिक अनुभव है। ईरान के साथ युद्ध अमेरिकी सेना के लिए एक महंगा ऑपरेशन साबित हो रहा है। ईरान के साथ जंग ने अमेरिकी सेना को कम से कम 45 महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन का नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध शुरू होने से पहले उसके कुल 185 रीपर ड्रोन थे। ये संख्या अमेरिकी ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। इस ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिकी सेंट्रल कमांड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अहम शिपिंग रूट के आसपास बड़े पैमाने पर कर रही है। MQ-9 रीपर एक महंगा अमेरिकी ड्रोन है जिसका इस्तेमाल निगरानी और टारगेटेड हमलों के लिए किया जाता है। खास बात है कि भारत ने भी अमेरिका से ये ड्रोन खरीदे हैं। अखबार ने दावा किया कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कुल खोए रीपर ड्रोन की कीमत $1.3 अरब से ज्यादा हो सकती है। इसके सेंसर और हथियारों के आधार पर हर एयरक्राफ्ट की कीमत $3 करोड़ से $5 करोड़ के बीच हो सकती है। ये खुलासा उस वक्त हुआ है जब ट्रंप दावा कर रहे थे कि अमेरिकी सेना ईरान को घुटनों के बल ले आई है। ना तो अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ने की ताकत ईरान के पास बची है और न ही IRGC अब युद्ध लड़ने के लायक बची है। हर कोई हमारी नौसैनिक घेराबंदी को स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई यही है कि ईरान ने अमेरिकी कार्रवाइयों का जवाब देने की अपनी क्षमता खो दी है। उनके पास न तो नौसेना है न ही वायुसेना। उनके बचे हुए सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा है। IRGC बर्बाद हो चुकी है और भाग रही है। उनकी लीडरशिप की स्थिति भी बहुत अनिश्चित है। ट्रंप के इस बयान पर ईरानी सेना ने सीधा पलटवार किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ुल्फ़गारी ने कहा है कि हॉर्मुज पहले की तरह ही पूरी तरह से ईरान के प्रबंधन और नियंत्रण में है। ईरान के सशस्त्र बलों की अनुमति और निगरानी के बिना कोई भी वाणिज्यिक जहाज या तेल टैंकर हॉर्मुज से सुरक्षित रूप से गुजर नहीं पाया है और न ही गुजर पाएगा। ईरान के सशस्त्र बल क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और किसी भी प्रकार और स्तर के खतरे का पहले से कहीं अधिक बलपूर्वक जवाब देंगे। अमेरिका ईरान युद्ध लगभग 6 महीनों से चल रहा है और इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। शांति वार्ता रुकी हुई है और बीच बीच में झड़पें भी जारी हैं। इससे हॉर्मुज से तेल और अन्य जरूरी सामानों की आवाजाही ठप पड़ी हुई है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता लंबे समय से ठंडे बस्ते में है। 2 महीने पहले पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच शांति समझौते के MOU पर साइन हुए थे। हालांकि बाद में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर शांति समझौते की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया और MOU को खारिज कर दिया। इसके बाद ये दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास के इलाकों में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, जहाजों, पेट्रोलियम डिपो और दूसरे रणनीतिक अड्डों को निशाना बनाया है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए मक्का एग्रीमेंट। हम आपको ये बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते की तारीफ की तो पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट और उस पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन भरे शब्दों की मैं दिल से तारीफ करता हूं। अपने सहयोगी देश सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान न सिर्फ अपने देशों की बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। आइए आपको दिखाएं पाकिस्तान वाला ये मक्का समझौता क्या है और क्यों ट्रंप इसकी तारीफ कर रहे हैं।
0: मक्का समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी क्यों जाहिर की? पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच मक्का समझौता क्या है? तीन देशों की गुटबंदी से किसको फायदा? मक्का समझौते से क्या होगा? मक्का समझौते को ट्रंप की हरी झंडी, भारत कैसे देख रहा है?

0: ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे अमेरिका के कदमों में पड़ा पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का स्वागत किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर समझौते को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। इससे पता चलता है कि मिडिल ईस्ट के देश एक साथ आ रहे हैं और ज्यादा असरदार तरीके से अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। इन तीनों देशों के बेहतरीन नेतृत्व को बधाई, ये एक बड़ा साहसी और अहम कदम है। आपको बता दें कि मक्का समझौता सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है। इस पर 7 अगस्त 2026 को मक्का में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत ये प्रावधान किया गया है कि यदि इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी कोई सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये समझौता पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो के अनुच्छेद 5 की तरह काम करता है, जिसमें सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान है। अब सवाल ये है कि इस समझौते को ट्रंप की तरफ से हरी झंडी मिलना क्या भारत के लिए कोई चिंता वाली बात है? विशेषज्ञों का मानना है कि मक्का रक्षा समझौते को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलना भारत के लिए हाल में बड़ी चिंता की बात नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का मुख्य आधार ये रहा है कि अमेरिका को अन्य देशों के आंतरिक संघर्षों या महंगे विदेशी युद्धों में उलझने से बचना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि विदेशी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के बजाय अन्य देशों को अपनी रक्षा और स्थिरता की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। 7 अगस्त को मक्का में हुए रक्षा समझौते के 10 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आने से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। डील में शामिल तुर्की नेटो का सदस्य है, वहीं पाकिस्तान और सऊदी लंबे समय से अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे हैं। शुरू में इस समझौते को सीधे सीधे ईरान के साथ युद्ध से जोड़ा गया, लेकिन जल्द ही तुर्की ने साफ कर दिया कि ये किसी एक देश के खिलाफ नहीं है और हमला होने की सूरत में मदद तभी की जाएगी जब पीड़ित देश की तरफ से इसकी मांग की जाएगी। कहने को तो ट्रंप ने कह दिया है कि इससे मध्य पूर्व में देश अपनी सुरक्षा आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जानते वो भी है कि जितने ज्यादा गुट उतने ज्यादा युद्ध और जितने ज्यादा युद्ध उतना ज्यादा हथियारों की खपत। वैसे भी पूरी दुनिया में हथियारों के बाजार पर सबसे ज्यादा कब्जा अमेरिका का ही है। जब पाकिस्तान मक्का समझौते पर ट्रंप की तारीफों से खुश हो रहा है, अब आपको पाकिस्तान की सच्चाई को बयां करती एक खबर दिखाते हैं। उस पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में पैसे मांग मांग कर काम चला रहा है, फिर वो चाहे वर्ल्ड बैंक हो या फिर खाड़ी देश। कर्ज के नीचे दबे पाकिस्तान ने अब उन भिखारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है जो उनके देश से बाहर जाकर भीख मांगने का काम करते हैं।
1: पाकिस्तान से आने वाले तमाम उम्रा जायरीन और वर्कर्स से अहम गुजारिश, सऊदी अरब में भीख मांगना या इस तरह की किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस होना कानूनन जुर्म है। खिलाफ वर्जी की सूरत में सऊदी इदारों की जानिब से गिरफ्तारी, मुल्क बदरी और सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी समेत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
0: सऊदी अरब में पाकिस्तानी दूतावास ने एक वीडियो संदेश में उम्रा यात्रियों और सऊदी अरब आने वाले कामगारों से कहा है कि वो भीख मांगने या इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो। दूतावास ने साफ किया कि सऊदी अरब में भीख मांगना कानूनन अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर सऊदी अधिकारियों की ओर से कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
1: खासतौर पर हरमैन में अपनी जानिब से व्हीलचेयर सर्विस फराहम करना, बाल काटना या हजामत की खिदमत देना, लोगों में खैरात या माली इमदाद तकसीम करना, रकम का लेन देन और उधार करना सऊदी कवानीन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ममनू है।
0: दूतावास के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से भीख मांगने पर गिरफ्तारी, देश से निकाले जाने और भविष्य में सऊदी अरब में दोबारा प्रवेश पर स्थायी रोक जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूरी तरह सावधान रहें। सऊदी गृह मंत्रालय भी भीख मांगने को हर रूप में प्रतिबंधित बता चुका है।
1: एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी के तौर पर सऊदी कवानीन की पाबंदी करें और गैर कानूनी सरगर्मियों से मुकम्मल इज्तनाब करें। आपकी जानिब से कानून की पासदारी पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस बरकरार रखने में निहायत अहम।
0: और विदेशी नागरिकों को सजा पूरी होने के बाद देश से बाहर भेजे जाने की बात कह चुका है आज तक ब्यूरो।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है, उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया, कोई बीड से आया, कोई लातूर से आया, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे?

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: लखनऊ की दुबग्गा रोड, पालागंज चौराहा और सड़क को घेर कर बैठी छात्राएं, ट्रैफिक रुका, चक्का जाम हुआ और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ यूपी की राजधानी में सड़क पर उतर आया जैन अल्फा। हमारी पढ़ाई कैसे होगी? 6 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन स्कूल में शिक्षक ही नहीं, साइंस के बच्चों की सबसे ज्यादा परेशानी है। फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है। 6 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन जिन बच्चों को किताबों में सवालों के जवाब तलाशने चाहिए, वो आज सड़क पर अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी साइंस के विद्यार्थियों की है, स्कूल में फिजिक्स और बायोलॉजी के शिक्षक नहीं है। ऐसे हालात में छात्राओं की पढ़ाई कैसे होगी? अब यूपी का समाज कल्याण विभाग ही बताए कि पढ़ाई कैसे होगी। क्या यूपी के स्कूली छात्रों के सिलेबस में ये भी शामिल हो गया है कि मूलभूत सुविधाओं, शिक्षकों और बेहतर शिक्षा के लिए पहले आंदोलन करना होगा, तभी समाधान मिलेगा। हमारी बात कई बार अधिकारियों तक पहुंचाई गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये छात्राएं लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की। इस स्कूल को यूपी का समाज कल्याण विभाग चलाता है। सोमवार की सुबह सैकड़ों छात्राएं स्कूल की बदहाली के खिलाफ सड़क पर उतर आईं। तेज बारिश के बीच छात्राएं हॉस्टल से निकली, करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चली और दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंचकर धरने पर बैठ गईं। वैसे तो स्कूली बच्चों का काम आंदोलन करना नहीं, लेकिन आरोप है कि स्कूल की अव्यवस्था ने इन्हें क्लासरूम छोड़कर सड़क पर आने को मजबूर कर दिया। छात्राएं सड़क पर बैठी तो पालागंज चौराहा जाम हो गया। सड़क पर बड़ा सा घेरा बनाकर बच्चे बैठ गए और दुबग्गा रोड पर गाड़ियों के पहिए थम गए। कुछ ही मिनटों में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। स्कूल प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और पुलिस के अधिकारी बालागंज चौराहे पहुंचे और बच्चों को समझाने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन छात्राओं का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब उनकी समस्याएं सामने आई है। आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मेस में खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल है, मेडिकल सुविधाओं की कमी का भी आरोप है। छात्राओं का कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन जब समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन क्लासरूम छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ा। छात्राओं का प्रदर्शन खत्म हो गया है और अधिकारी इन्हें वापस स्कूल ले आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है। अगर बोर्ड परीक्षा सिर पर है और स्कूल में जरूरी विषयों के शिक्षक ही नहीं है, तो इन बच्चों की पढ़ाई की भरपाई आखिर कैसे होगी? अधिकारियों ने जल्द समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि ये भरोसा सिर्फ आश्वासन बनकर रह जाता है या स्कूल की जमीन पर भी इसका असर दिखाई देता है। अंकित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

के आगे झुकी सोरेन सरकार। TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द, छात्रों में खुशी की लहर। आज तक से बोले देवेंद्र, मैं तो तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष। आज तक की खबर से तेजी के साथ हुआ उसका असर, खबर दिखाए जाने के बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नवीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने हैं राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा, 22 को होगी पहली मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला बड़ा दांव, नितिन नवीन की टीम में मिली बंपर प्रतिनिधित्व, 8 चेहरे शामिल, राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ट्विशा का कत्ल नहीं हुआ था बल्कि उसे मरने के लिए मजबूर किया गया था, यानी उसे खुदकुशी के लिए उकसाया गया था। और ये काम किया था ट्विशा की जद रही सास और वकील पति ने। यह खुलासा सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में किया है। सीबीआई ने यह चार्जशीट सोमवार को भोपाल की एक अदालत में दाखिल की। इस चार्जशीट में जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें उम्र कैद तक की सजा है। कभी आपने सोचा है जब किसी का कत्ल होता है, किसी की संदिग्ध मौत होती है या कोई खुदकुशी करता है, जब मामला पुलिस के पास पहुंचता है, जब एफआईआर दर्ज होती है, फिर जब अदालत में चार्जशीट दाखिल होती है, तो उसे एक कत्ल, उसे एक संदिग्ध मौत या एक खुदकुशी के लिए सीधे सीधे कानून की एक धारा लगाने की बजाय एक साथ कई धाराएं क्यों लगाई जाती है? अब जैसे भोपाल की ट्विशा और उसकी मौत तो याद होगी आपको। ससुराल के अंदर फंदे से झूलती लाश मिली थी ट्विशा की। पहले भोपाल पुलिस ने जांच की, फिर केस सीबीआई के पास पहुंचा। सामने आरोपी के तौर पर एक तो पति था ही, दूसरी एक खास सास थी। खास इसलिए क्योंकि सास खुद कभी जज थी। अब जज रही उन्हीं सास गिरिबाला सिंह और उनके बेटे और ट्विशा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ सीबीआई ने भोपाल की एक अदालत में मां बेटे के नाम आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर दी। ट्विशा की एक मौत के लिए चार्जशीट में कानून की कुल 5 धाराएं लगाई गई हैं। भारतीय न्यायिक संहिता यानी बीएनएस की धारा 80(2) यानी डाउरी डेथ, सजा 7 साल से लेकर उम्र कैद तक। बीएनएस की धारा 108 यानी किसी को खुदकुशी के लिए उकसाने या खुदकुशी में मदद करने का जुर्म, सजा 10 साल। बीएनएस की धारा 85 पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी पर जुल्म, अधिकतम सजा 3 साल। बीएनएस की धारा 3(5) 1 अपराध में 1 से ज्यादा लोगों का शामिल होना, सभी सजाओं में बराबर हिस्सेदारी। बीएनएस की धारा 3 और 4 यानी दहेज मांगना। 636 पन्नों की चार्जशीट में कभी जज रही सास और उनके बेटे को जिन धाराओं में लपेटा गया है, उस हिसाब से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा बनती है। पर क्या माँ बेटे के हिस्से ये सजा आएगी, ये आगे बताऊंगा। पहले इस चार्जशीट की सबसे खास बात जान लीजिए। इस चार्जशीट की 2 धाराएं यानी बीएनएस की धारा 80(2) और 108 ये बता रही कि ट्विशा ने खुदकुशी जरूर की, लेकिन उसे खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया और ये काम इन्हीं माँ बेटे ने किया। यानी ये चार्जशीट आने वाले वक्त में कभी जज रही सास और उसके बेटे के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली।
1: क्या फाइंडिंग्स है सीबीआई की चार्जशीट में जो सामने आई है?
2: आज सीबीआई द्वारा जो चालान पेश करा गया दोनों आरोपियों के अगेंस्ट, उसमें डाउरी डेथ, अबेटमेंट टू सुसाइड और जो फिजिकल मेंटल क्रुएलिटी और इसी के साथ साथ दहेज के संबंध में जो लगातार

0: मांग करी जा रही थी इन धाराओं में, चाहे बीएनएस का हो चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, उन धाराओं के अंतर्गत दोनों आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद सीबीआई ने आज चालान पेश करा।
1: अच्छा, जो एक अभी तक धारणा थी परिवार का, जो आरोप था कि ये हत्या है, आज सीबीआई ने इसे क्या माना है अपनी चार्जशीट के जरिए? क्या इसे हत्या माना है या आत्महत्या?
0: सर, जो जिन सेक्शंस में दोनों आरोपियों को फाइनल रिपोर्ट जमा करी गई है वो मर्डर के संबंध में तो नहीं है, वो सुसाइड के संबंध में ही है। वही सारी धाराएं सीबीआई ने लगाई हैं, परंतु अभी हम जो फर्स्ट पीएम सेकंड पीएम जो रिपोर्ट आई है और भी जो कोरैबोरेटिव एविडेंसेस जमा करें सीबीआई द्वारा, उसका हम अवलोकन करेंगे। और अगर लगता है किसी एस्पेक्ट पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोई चीज, कोई इन्वेस्टिगेशन छूट गया है, अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, तो उसके संबंध में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का जो विक्टिम की फैमिली का राइट है उसको हम एक्सरसाइज करेंगे।
1: हमने अभी बात की थी उनके परिवार के लोगों से, तो उनकी माँ हो या पिता हो या भाई हो, उनका कहना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको वो बार बार उठा रहे थे पिछले कई समय से, लेकिन वो आज की चार्जशीट में कहीं दिखी नहीं उन्हें। मसलन कॉल्ट रिकॉर्ड्स की बात हो या फिर सेकंड पोस्टमार्टम की बात हो, ऐसी तमाम चीजें, तो इसको आपको क्या लगता है कि आप आगे इसमें क्या कदम हो सकता है परिवार का?
0: सर, इसमें हमारे पास तो है ही राइट कि हम प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करें संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में, परंतु सीबीआई द्वारा भी फर्दर ऐसा नहीं है कि मामले को क्लोज कर दिया गया और फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट से मांग करी है। उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने माना है कि अभी भी कई ऐसे और भी अन्य आरोपी हो सकते हैं जो इस पूरे क्राइम में, चाहे क्राइम के समय या उसके बाद जिन्होंने मदद करी, अगर वो लीगली किसी तरीके से उनके द्वारा कोई क्राइम करा गया है तो उनके संबंध में भी विवेचना अभी अपूर्ण है, जारी है। 90 डेज के अंदर जो टाइम था उन्होंने दोनों आरोपियों के संबंध में जो साक्ष्य थे वो आज जमा करें, परंतु फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहे वो डाउरी का हो, चाहे वो और आरोपियों की संदिग्ध भूमिका हो, चाहे वो डीवीआर हो, उनके कॉल रिकॉर्ड हो, इन सब के संबंध में परमिशन वो मजिस्ट्रेट से मांग रहे हैं कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास अभी राइट क्लोज ना करा जाए फाइनल रिपोर्ट का, और वो अगर अलाउ करा जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें वो कवर कर सकते हैं।
2: दरअसल शुरुआत में ट्रिशा की मौत को कत्ल बताया जा रहा था, घर वालों ने भी यही इल्जाम लगाए थे, फिर भोपाल पुलिस ने भी अपनी लापरवाही के चलते ट्रिशा की मौत की वजह को लेकर केस और खराब कर दिया। इन्हीं सब के बीच जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट एक तरफ ट्रिशा की मौत को खुदकुशी भी बता रही थी और दूसरी तरफ जिस्म पर जख्मों के निशान भी दिखा रही थी। इसी उलझन को दूर करने के लिए दो चीजें हुई, एक ट्रिशा की मौत के केस से भोपाल पुलिस बाहर हो गई और सीबीआई अंदर आ गई। अब ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होता है एम्स के एक्सपर्ट्स डॉक्टरों के पैनल के जरिए। कत्ल और खुदकुशी के बीच का राज अब इसी दूसरी रिपोर्ट पर आकर ठहर जाती है। एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट भोपाल में कोर्ट को सौंप दी और इसी के साथ ये सच सामने आया कि ट्रिशा को मारा नहीं गया था बल्कि उसने खुदकुशी की थी। अब डॉक्टरों की इस रिपोर्ट के बाद सीबीआई को ये पता करना था कि ट्रिशा ने खुदकुशी क्यों की, क्या उसे खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया, अगर हाँ तो क्यों। तो सीबीआई ने इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अपनी जांच शुरू की और फिर जांच खत्म होते ही सारी कहानी चार्जशीट में लिख डाली। हालांकि 636 पन्नों की पूरी चार्जशीट अभी सामने नहीं आई, लेकिन चार्जशीट में जो अहम बातें हैं उनका खुलासा हो चुका है। सीबीआई के मुताबिक शादी के बाद से ही जज रही सास गिरिबाला सिंह और वकील बेटा समर्थ सिंह लगातार ट्रिशा पर जुल्म ढाते थे, कभी दहेज के लिए, कभी औलाद के लिए, कभी उसकी पर्सनल लाइफ के लिए, तो कभी करियर को लेकर। इन्हीं सब चीजों से तंग आकर 12 मई की रात ट्रिशा ने भोपाल के अपने इसी ससुराल में, इसी छत पर, ठीक इसी जगह फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।
3: हत्या है, मैं हत्या है, ये तो पूरी तरह से हत्या है, सोची समझी चाल है। देखो, हमारा आने का था, मेरी बेटी भी 8 तारीख को आने का था, उसको भी मना कर दिया। तब उसे बोला कि आप आओ, मेरे को आने नहीं दे रहे, आप आओ। तब उसे बोला है मम्मी आप लेने आ जाओ, मुझे ये आने नहीं दे रहे। 8 तारीख को वो खुद आ रही थी, फिर हम आ रहे 13 तारीख, हमने भी टिकट कराई, वो हमारी कैंसिल करा दी। आप भी सोचो, ये हमें हर एक जगह से रोका गया है आने से।
1: आज जब सीबीआई ने
3: 15 तारीख को जब भी उसे टिकट निकाल ली तो 12 तारीख को उसके साथ में ये हो गया।
1: आज जो सीबीआई ने चार्जशीट दी इसमें फिर आप क्या कहेंगी मैम, आपकी बेटी को उन्होंने सुसाइड करा दिया?
3: नहीं, सुसाइड नहीं है, मैं दिल बोल रहा हूँ, नहीं है सुसाइड, है ही नहीं सुसाइड।
1: आपको अभी भी लगता है ट्रिशा आपके पास मोबाइल?
3: हाँ जी, मेरे साथ ही, मेरी हिम्मत बनी हुई है, मेरी बेटी
4: अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या लगता है सीबीआई भी अभी सुसाइड बता रही है?

0: सुसाइड है ही नहीं, हम आगे जाएंगे और भी आगे जाएंगे। मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाऊं मैं पूरी तरह से, मगर मैं अपनी बेटी को न्याय दिलवाऊंगी। अपनी बेटी को न्याय दिलवाऊंगी मैं अपनी, जो मैंने 30-32 साल से रखी है मेरे अपने साथ में, 5 महीने में इन्होंने ऐसा कर दिया उस लड़की को। मेरे को नहीं पता था, मैं शादी नहीं करती। मैं
1: इसमें जो है धाराएं लगाई गई है, इसमें क्रुएलिटी है, इसमें फोर्स टू अबॉर्शन है इसके अंदर, और टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है इसके।
2: डाउरी डेथ भी लगाई है सर?
1: डाउरी डेथ है।
3: तो आपको क्या लगता है कि जिन धाराओं पे आप सेटिस्फाइज हैं?
1: जी जी, धाराएं अच्छी लगाई है, धाराएं तो अच्छी लगाई है, पर ये बड़ी मतलब ये डिपेंड करता है कि एविडेंस सर और ट्रायल पर डिपेंड करता है, इनको प्रूव करना है।
2: पोस्टमार्टम की जो सेकेंड पोस्टमार्टम हुआ था उसकी कोई जिक्र को डिटेल इसमें है?
1: नहीं नहीं, अभी डिटेल तो है, अभी हमारे हाथ नहीं आई है, वो बहुत हजार पन्ने की डिटेल है, उसको हम पढ़ के आगे देख करके ही कुछ कमेंट कर पाएंगे।
3: आप लोगों को लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है?
1: जी जी, वही उसी का बोल रहा हूँ। अभी पीएम डिटेल रिपोर्ट अभी ना तो पहले पीएम की आई है हमारे पास, न सेकंड पीएम की आई है, अभी दोनों पीएम डिटेल रिपोर्ट पढ़ी जाएगी, उसके बाद हम एनालिसिस करके आगे फर्दर।
4: सीबीआई की तरफ से कोर्ट में दायर चार्जशीट के बाद अब अदालत ये तय करेगी कि क्या सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और उसके बेटे के खिलाफ जो धाराएं लगाई वो सब सही, और क्या कुछ ऐसी भी धाराएं बनती हैं जो सीबीआई ने नहीं लगाई और जिन्हें लगानी चाहिए। चार्जशीट पढ़ने के बाद अब अदालत ये तय करेगी कि किन किन धाराओं में माँ बेटे के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने हैं। एक बार चार्ज फ्रेम होने के बाद अदालत में ट्रायल शुरू हो जाएगा। हालांकि चार्ज फ्रेम होने के साथ ही अब गिरिबाला सिंह और उसका बेटा ये कहते हुए आसानी से जमानत की अर्जी लगा सकते हैं कि अब चूंकि चार्जशीट दाखिल हो गई है लिहाजा वो केस पर ज्यादा असर नहीं डाल सकते, इसीलिए उन्हें जमानत दे दी जाए। बहुत मुमकिन है दोनों जल्द ही जमानत पर बाहर भी आ जाए। अब बात उन धाराओं की जिसपे सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और उसके बेटे को लपेटा है। 5 में से बाकी 4 धाराएं छोड़ी, सिर्फ खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा पर बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने देश की आजादी की 80 साल पूरे कर लिए। इन 80 सालों में हमारे इसी देश में आज तक किसी भी एक शख्स को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में देश की किसी भी अदालत ने कभी सजा नहीं दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के दौरान ये टिप्पणी की थी कि जब तक खुदकुशी करने वाले का खुदकुशी करते वक्त सीधे आरोपी से संपर्क न हो, खुदकुशी में वो सीधे उस वक्त उसकी मदद न कर रहा, उसे कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। मसलन अगर पति पत्नी के बीच सुबह झगड़ा हुआ और पत्नी ने शाम को खुदकुशी की, तो इसके लिए पति कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। अब ऐसी सूरत में आप समझ सकते हैं कि पुलिस छोड़िए सीबीआई भी खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में कभी किसी को सजा क्यों नहीं दिला पाए। यही पुराना इतिहास ये इशारा कर रहा है कि ट्रिशा केस में भी चार्जशीट का हश्र क्या होगा। अब आइए आपको बताता हूँ कि ट्रिशा की पूरी कहानी है क्या, ट्रिशा की मौत कैसे हुई, मौत पर सवाल क्यों खड़े हुए, और जज रही सास और वकील रहे पति ने ट्रिशा पर क्यों जुल्म उठाए थे। इस सीसीटीवी कैमरे की घड़ी और तारीख दोनों गलत है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल सही है। ये तस्वीर असल में 12 मई की रात 10 बजे के आसपास की है। ये ट्रिशा है, इस घर की बहू। ट्रिशा के हाथ में काले रंग का एक हेडफोन है, वही हेडफोन हाथ में लिए ट्रिशा इस वक्त सीढ़ी के रास्ते छत पर जा रही है। जिंदा रहते ये ट्रिशा की आखिरी तस्वीर थी। इसके करीब घंटे भर बाद ट्रिशा की लाश इसी छत पर, शायद इसी जगह इलास्टिक की रस्सी से लटकी मिली। शायद इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रस्सी से लटके होने की बात सिर्फ 2 लोगों ने कही थी, एक ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और दूसरी जज रही ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह। इसके अलावा इस मामले का कोई और चश्मदीद नहीं है, और ये दोनों चश्मदीद इसी ट्रिशा की मौत के आरोपी हैं। छत पर जाते हुए ट्रिशा की ये तस्वीर पूरे देश ने देखी। ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने सीसीटीवी की ये तस्वीर खुद ही मीडिया को दी। अब जाहिर है तब केस की जांच कर रही भोपाल पुलिस ने भी शर्तिया ये तस्वीर देखी होगी, और इस तस्वीर में ट्रिशा के हाथ में ये हेडफोन भी देखा होगा। अब हेडफोन में कोई राज हो या इस केस पर कोई रोशनी डाल सके कहा नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि आखिरी वक्त में ये हेडफोन ट्रिशा के पास था, लिहाजा ये केस प्रॉपर्टी होने के साथ साथ एक अहम सबूत भी है। जाहिर है ऐसी केस प्रॉपर्टी या सबूत जो मौके वारदात यानी क्राइम सीन पर हो उसे अनाड़ी पुलिस वाले भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन अब जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने और देखने के बाद आप भी कहेंगे कि अच्छा हुआ ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया, भोपाल पुलिस से ना हो पाता। ये भोपाल के कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज उसी ट्रिशा केस की प्रॉपर्टी सीजर मेमो यानी संपत्ति जब्ती पत्र है। अमूमन किसी भी केस में पुलिस क्राइम सीन पीड़ित आरोपी या चश्मदीदों से जो भी सामान बरामद करती है बाकायदा लिखित में उसकी एंट्री होती है। आगे चलकर यही चीजें कोर्ट में पेश भी की जाती है। ट्रिशा केस में भोपाल पुलिस ने किस इंतहा तक लापरवाही बरती उसका जीता जागता सबूत ये प्रॉपर्टी सीजर मेमो है। इस मेमो की तारीख पर गौर कीजिएगा, इस पर तारीख लिखी है 23 मई 2026। वक्त के कॉलम में आगे 20:41 यानी रात के 8:41 लिखे हैं। इसी प्रॉपर्टी सीजर मेमो में दो चीजें जब्त या बरामद किए जाने का जिक्र है। इसमें जिस दूसरी चीज को जब्त या बरामद करने का जिक्र है जानते हैं वो क्या है? वही हेडफोन जो 12 मई की रात छत पर जाते वक्त ट्विशा के हाथ में आखिरी बार दिखा था। अब जरा सोचिए, ट्विशा की मौत 12 मई की रात को हुई। भोपाल पुलिस ने दावा किया था कि ट्विशा की मौत की खबर मिलते ही पुलिस टीम उसी रात ट्विशा के घर पहुंच गई, क्राइम सीन का मुआयना किया, सारी तफ्तीश अच्छे से की। पर उसी भोपाल पुलिस का ये प्रॉपर्टी सीजर मेमो ये बता रहा है कि ट्विशा की मौत को लेकर पुलिस ने किस लापरवाही और बेपरवाह अंदाज में जांच की थी। 12 मई को हुई ट्विशा की मौत के पूरे 11 दिन बाद पुलिस को याद आया और तब कहीं जाकर 23 मई को इस हेडफोन को जब्त किया गया। हालांकि भोपाल पुलिस की मासूमियत पर भी तरस आता है। सीजर मेमो में वो ये भी लिख डालते हैं कि सोनी कंपनी का ब्लैक कलर हेडफोन मृतिका यानी ट्विशा अपने साथ लेकर ऊपर छत पर गई थी। इतना ही नहीं, इसी मेमो में इस बात का भी जिक्र है कि ट्विशा की मौत के 11 दिन बाद ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से एक फोन भी जब्त किया गया, गोल्डन पिंक कलर के इस मोबाइल से, हालांकि सिम गायब था। पर ये तो सिर्फ बानगी है। भोपाल पुलिस के इसी प्रॉपर्टी सीजर मेमो में एक चीज तो ऐसी लिखी है जिस पर कोर्ट में मुकदमे के पहले ही दिन कोई भी वकील इनकी धज्जियां उड़ाते। अमूमन पुलिस क्राइम सीन से जब भी कोई चीज उठाती या जब्त करती है तो प्रॉपर्टी सीजर मेमो में बाकायदा उस पुलिस वाले का नाम जिसने इसे जब्त किया या जिसने जब्त करवाया उसका नाम और इससे जुड़े चश्मदीदों के नाम लिखे जाते हैं। अब भोपाल पुलिस का कमाल देखिए, भोपाल पुलिस को ट्विशा की मौत की खबर पहली बार 13 मई की रात 12:05 पर मिलती है, यानी ट्विशा की मौत के पूरे 2 घंटे बाद। खबर मिलते ही पुलिस की टीम भोपाल के एम्स अस्पताल जहां ट्विशा की लाश रखी थी और फिर ट्विशा के घर जाती है। खुद भोपाल पुलिस ने दावा किया था कि खबर मिलते ही पुलिस के साथ साथ एफएसएल की टीम भी न सिर्फ मौके पर पहुंची बल्कि छत पर भी गई जहां ट्विशा की मौत हुई थी। अब जरा भोपाल पुलिस के इस दावे की सच्चाई देखिए, ये भोपाल पुलिस के उसी कटारा हिल्स थाने में दर्ज प्रॉपर्टी सीजर मेमो है। इस मेमो में लिखा है कि 13 मई की सुबह 9:40 पर मकान के छत पर शेड के नीचे से फांसी लगाने में इस्तेमाल इलास्टिक की लगभग 1 इंच चौड़ी काली रंग की पट्टी जिसकी लंबाई 99 सेंटीमीटर 2 इंच लगभग, जिसकी दूसरी पट्टी करीब 51 इंच की गोल पहिए में बंधी थी जब्त। लेकिन इस सीजर मेमो में कहीं ये नहीं लिखा है कि किसकी निशानदेही पर या किसकी गवाही पर इसे जब्त किया गया। इस प्रॉपर्टी सीजर मेमो के कॉलम नंबर 6 यानी साक्षीगण वाले कॉलम में किसी का भी नाम नहीं है, बल्कि ये जो R1689 या इसके आगे जो भी नाम लिखे ये सब भोपाल पुलिस के नाम है। अगर गिरिबाला सिंह या समर सिंह के कहने पर प्लास्टिक की रस्सी जब्त नहीं की गई और पुलिस वाले ने अपनी मर्जी से इसे जब्त किया तो सवाल ये है कि उन्हें कैसे पता कि मरते वक्त ट्विशा के गले में इलास्टिक की यही रस्सी थी, क्योंकि समर सिंह और गिरबाला सिंह ने तो पुलिस को खबर करने से पहले ही लाश नीचे उतार ली थी, गले का फंदा भी खोल दिया था। इस सीजर मेमो से ये साफ हो गया कि ट्विशा की मौत के लगभग 12 घंटे बाद पुलिस ने पहली बार वहां से कुछ जब्त किया था। इन सबसे कीमती 12 घंटों में क्राइम सीन को सील तक नहीं किया गया, यानी कोई भी क्राइम सीन को आसानी से अपने हिसाब

से बदल सकता था, सबूत गायब कर सकता था, निशान मिटा सकता था। यह गिरिबाला सिंह का घर है और यह उसी घर के छत की तस्वीर है जिस छत पर 12 मई की रात ट्रिशा की मौत हुई थी। इस छत और यहाँ रखे सामान को देखकर ये साफ पता चलता है कि इस जगह को एक जिम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। तस्वीर में आपको जमीन पर ट्रिशा की चप्पल भी पड़ी दिखाई देगी, लेकिन इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि इसमें इलास्टिक का वो फंदा भी नजर आ रहा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसी फंदे से ट्रिशा ने खुदकुशी की थी। छत से नीचे रबड़ जैसे दिखने वाले रिंग के दो टायर आपको लटके हुए नजर आ रहे होंगे। इन दोनों ही रिंग के साथ इलास्टिक की दो रस्सियां भी अब भी लटकी हुई है। बाईं तरफ की रस्सी बिल्कुल सीधी है और लगभग जमीन से टकरा रही है, लेकिन दाहिनी तरफ की इलास्टिक की रस्सी सीधी नहीं बल्कि उसका एक सिरा छोटा और एक सिरा बड़ा है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि दाहिनी तरफ वाले रिंग से ही लटकती इलास्टिक की रस्सी का फंदा बना होगा। तस्वीर में छत पर या यूं कहें कि इस क्राइम सीन पर दो लोग भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर से ये भी साफ है कि ये तस्वीर रात के अंधेरे की नहीं बल्कि दिन के उजाले की है। अब रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिशा की मौत रात 10 से 10:30 बजे के दरमियान हुई, पर कमाल देखिए, रात को पुलिस छत पर इस क्राइम सीन पर पहुंची। जाहिर है पूछताछ में पुलिस को ये बताया गया होगा कि किस फंदे से ट्रिशा को घरवालों ने उतारा था, लेकिन पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, 12 घंटे निकल गए, फिर भी पुलिस को ये ख्याल ही नहीं आया कि जिस फंदे से ट्रिशा की मौत हुई है उस पर लिगेचर मार्क के अलावा उंगलियों के निशान और दूसरे कई सबूत हो सकते हैं। उसे अपने कब्जे में लेना चाहिए, पर पुलिस ऐसा करती नहीं। ट्रिशा की मौत के बाद 13 मई को कहीं जाकर पुलिस फंदे नुमा इस सबूत को अपने साथ ले जाती है। क्या ये अनजाने में हुई भोपाल पुलिस की गलती थी या जज रही गिरिबाला सिंह का खौफ? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। ट्रिशा की मौत कत्ल थी या खुदकुशी, इसे लेकर शुरू में तमाम सवाल उठे थे। खास तौर पर क्राइम सीन को लेकर भोपाल पुलिस ने जिस तरह लापरवाही बरती और फिर जज रही सास गिरिबाला सिंह को जिस तरह अग्रिम जमानत दे दी गई, उससे शक और भी बढ़ गया। यही वजह है कि बाद में सीबीआई को इस केस में डमी ट्रायल तक करना पड़ा। ये एक पुतला है, इसे आप डमी भी कह सकते हैं। ये डमी कुल 3 टुकड़ों में है और हर टुकड़ा कार से निकाले जाने के बाद एक एक शख्स इसे उठाकर अपने साथ ले जा रहा है उसी घर में जिस घर में ट्रिशा की 12 मई को मौत हुई थी। पुतले के 3 टुकड़ों में पहला सिर और धड़ है, उसके पीछे जो शख्स है उसके हाथ में दोनों हाथ है और उसके पीछे जो शख्स है उसके पास इस पुतले के दोनों पैर। यह वजन तोलने वाला मशीन है, इसे वेइंग मशीन भी कहते हैं। जब पुतले के 3 टुकड़े आपस में मिला लिए जाएंगे तब उस पुतले का वजन लिया जाएगा इसी वेइंग मशीन से। पुतले का वजन ठीक उतना ही होना चाहिए जितना ट्रिशा का वजन था। यह वजन घटाने या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला वेट प्लेट्स है। इसमें हर तरह के वेट प्लेट्स हैं, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो। अगर पुतले का वजन कम ज्यादा होगा तो इसी वेट प्लेट से उसके वेट को पूरा 80 किलो किया जाएगा। तो माँ बेटे यानी गिरिबाला सिंह और समर सिंह घर के अंदर पहुंच चुके हैं। डमी यानी पुतला, वेइंग मशीन, वेट प्लेट्स, ये सब भी घर के अंदर पहुंचाए जा चुके हैं। सीबीआई की टीम, खासकर फॉरेंसिक टीम भी अब घर के अंदर जा चुकी है।

घर के अंदर दाखिल होने के बाद पुतला समेत सारा साजो सामान सीबीआई की टीम, फॉरेंसिक टीम, अब सभी पूर्व जज साहिबा ग्रिवाला सिंह के घर के इसी छत पर इकट्ठा हो चुके हैं। सीबीआई की टीम के बीच बस आपको ये दो चेहरे अलग नजर आएंगे, और ये दो चेहरे हैं ट्विशा के पति समर्थ सिंह और ट्विशा की सास ग्रिवाला सिंह के। अब सवाल ये है कि सीबीआई की इस टीम के बीच छत पर इस वक्त समर सिंह और ग्रिवाला सिंह क्या कर रहे हैं? तो बस यूं समझ लीजिए कि जिस रिक्रिएशन या डमी ट्रायल के लिए सीबीआई की टीम यहां पहुंची है, वो समर सिंह और ग्रिवाला सिंह के बिना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि समर सिंह और ग्रिवाला सिंह वो पहले दो शख्स

0: जिसने अपनी बीवी और बहू को 12 मई की रात इसी छत पर ठीक इसी जगह फंदे से लटका देखा था। वो समर सिंह और गिरबाला सिंह ही थे जो ये बता सकते थे कि फंदा कैसे कसा था, गांठ गर्दन के किस तरफ थी, पैर जमीन से कितना ऊपर या नीचे था, फंदे और गांठ के बीच चेहरे का रुख क्या था। समर्थ सिंह अगर पहला चश्मदीद था तो दूसरी चश्मदीद थी समर्थ की माँ यानी ट्विशा की सास गिरबाला सिंह, क्योंकि वो गिरबाला सिंह ही थी जिसने 12 मई की रात ट्विशा के गले का फंदा खोला था। पर पहले समर्थ सिंह की बारी थी क्योंकि छत पर सबसे पहले वही गया था। अब छत पर ट्रायल शुरू होता है। सबसे पहले सीबीआई और फॉरेंसिक टीम टायर जैसी उसे रिंग पर इलास्टिक का ठीक वैसा ही एक बेल्ट बांधती है। बेल्ट कसा जा चुका था, क्राइम सीन पर समर्थ मौजूद है। सीबीआई की टीम बाकायदा बेल्ट का फंदा बनाने के बाद उस फंदे की गांठ या रस्सी की हाइट सब कुछ उसी के हिसाब से रिक्रिएट कर रही थी। जब समर सिंह ने फंदे के बारे में अपनी फाइनल राय दे दी, उसी के बाद ट्रायल का पहला फेज पूरा हो गया। अब बारी सबसे अहम ट्रायल की थी। थोड़ी देर पहले जिस पुतले या डमी को आपने 3 टुकड़ों में देखा था, अब वो तैयार हो चुका था। सभी टुकड़ों को जोड़कर बाकायदा उसे ट्विशा के वजन और हाइट के बराबर बनाकर उस पुतले को काले रंग की वेस्ट पहनाई गई। अब इस डमी को छत पर लगे उसी रिंग से लटकते इलास्टिक के बेल्ट के फंदे से गले को कसना था। शायद ट्विशा के गले में जो फंदा कसा था उसकी गांठ बाई तरफ थी, क्योंकि सीबीआई की टीम ने भी समर्थ से पूछकर डमी के गले में गांठ बाई तरफ ही कसी थी। अब फंदा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जिस जगह और जैसे ट्विशा की लाश पहली बार फंदे से झूलते हुए माँ बेटे ने देखी थी, उसी हिसाब से डमी को लटकाया गया। पूर्व जज साहिबा गिरबाला सिंह और उसके बेटे समर सिंह से बातचीत के बाद अब आखिरी ट्रायल पूरा करना था। ये ट्रायल ये था कि अब ट्विशा फंदे से झूल चुकी है। थोड़ी देर बाद उसका पति समर्थ और सास गिरबाला सिंह छत पर आती है और पहली बार दोनों ट्विशा को फंदे से झूलते हुए देखती, जैसा कि दोनों ने सीबीआई को अपने बयान में कहा था। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार। TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द। छात्रों में खुशी की लहर आज तक से, बोले देवेंद्र महतो। तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष। सोनम वांगचुक से बात की। आज तक की खबर से तेजी से हुआ असर। खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान। स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने नए राष्ट्रीय महासचिव। पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा। 22 को होगी पहली मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला बड़ा दांव। नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व। 8 चेहरे शामिल। राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: दिल्ली दौरे में फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री बनने पर अटकलों पर लगाया विराम, बोले महाराष्ट्र में था, हूं और रहूंगा। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए आज खत्म हुई 100 दिन की मियाद, अब मराठी नहीं बोलने वालों पर कार्रवाई की तैयारियां, यूनियंस ने दी कोर्ट और हड़ताल के लिए कोर्ट जाने की चेतावनी। 2 लाख गैर मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स पर कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ, सरकार बोली पहले नोटिस पे लाइसेंस और बैज रद्द करने की प्रक्रिया। ओबीसी आंदोलनकारी नवनाथ बाघमारे के मराठा युवतियों पर विवादित बयान के बाद बवाल, जालना में केस दर्ज, मराठा क्रांति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। मुंबई में एमएमआरडीए भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल, कुछ अभ्यर्थियों के 200 में से 200 अंकों को लेकर उठी पारदर्शिता की मांग। नांदेड़ में युवक ने सुसाइड की कोशिश से पहले लगाया व्हाट्सएप स्टेटस, पत्नी का बीजेपी तहसील अध्यक्ष समेत 3 पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप। मुंबई में इनकम टैक्स ऑफिस में भीषण आग लगी, चर्च गेट के पास हड़कंप मचा, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर। कोल्हापुर में बस के नीचे कुचले मैकेनिक की मौत हुई, बस ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। उमरा में कावड़ यात्रा के बीच रितेश राणे की एंट्री, बोले मैं उमरा में दाखिल हो गया हूं, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व पर दिया बयान। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, श्रावण सोमवार पर उमड़े भक्त नागपंचमी पर खास तैयारी। अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को महाराष्ट्र एफडीए ने विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर नोटिस भेजा। बैन पान मसाले के सरोगेट एड को लेकर 15 दिन में जवाब मांगा, 10 लाख रुपए तक जुर्माने का खतरा। दिल्ली एयरपोर्ट में सालाना यात्री की क्षमता 10 करोड़ 60 लाख से बढ़ाकर 12 करोड़ 50 लाख करने की तैयारियां। नए मास्टर प्लान में 2030 तक पूरा होने वाले फेज में टर्मिनल 3 पर बनेगा नया पेयर। भारतीयों समेत विदेशी छात्रों की घटती हुई संख्या से परेशान यूके यूनिवर्सिटीज ने खोला डिस्काउंट का पिटारा, तमाम यूनिवर्सिटी में मिल रही है करीब 8 लाख रुपए तक की छूट। मिडिल ईस्ट संकट से सबक लेकर सरकार ने पहली बार तय किया एलपीजी प्रोडक्शन के टारगेट, 21 कंपनियों को रोजाना 63,810 टन गैस बनाने का लक्ष्य। रणवीर ने शुरू की प्रलय की शूटिंग, फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन की अहम भूमिका। मालामाल वीकली 2 का ऐलान किया गया, फिल्म में परेश रावल, रितेश देशमुख, राजपाल यादव, रवीना टंडन, परिणीति चोपड़ा, शिल्पा शिरोडकर और एल्विश यादव नजर आएंगे। इमरान हाशमी की आवारापन 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, फिल्म ने 82 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। एवान स्टाइल में अक्षय कुमार ने सैफ अली खान को बदेविश किया, लिखा जन्मदिन मुबारक हो सैफ। सनी देओल ने पान मसाला विज्ञापनों से इनकार किया, कहा मेरा जमीर नहीं मानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने विमल इलायची के विज्ञापनों को लेकर बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर शिकंजा कसा है। एफडीए ने तीनों अभिनेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर लिखित में जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया है।
2: बॉलीवुड के बादशाह की बढ़ने वाली है मुश्किलें।

0: सिनेमा के सिंघम को भी करना होगा सवालों का सामना। टाइगर श्रॉफ अब स्टंट नहीं सवालों के जवाब देंगे। जी हां, शाहरुख खान जिनकी अदाकारी की दुनिया दीवानी है, अजय देवगन जिनके एक डायलॉग पर पब्लिक तालियां पीटती है, और टाइगर श्रॉफ जिनके स्टंट लोगों को दीवाना बना देते हैं, ये तीनों मुश्किल में, और उस मुश्किल की वजह है विमल इलायची का ये प्रचार। तो जुबा केसरी बोलने वाले अब एफडीए के सामने बोलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची के विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। एफडीए ने 11 अगस्त को तीनों को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब और स्पष्टीकरण मांगा है। शाहरुख खान को बांद्रा स्थित उनके घर मन्नत, अजय देवगन को जुहू स्थित आवास, टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस LLP के पते पर नोटिस भेजा गया है। एफडीए का कहना है कि विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं कि इससे विमल ब्रांड का प्रचार होता दिखता है। चूंकि विमल ब्रांड पान मसाला से भी जुड़ा है, इसलिए एफडीए को शक है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाले का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एफडीए ने इस मामले में FSS एक्ट 2006 की धारा 24 और 53 को लागू किया। धारा 24 भ्रामक और धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी। धारा 53 में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला पर 2012 से रोक है। ये रोक हर साल बढ़ाई जाती है। अभी की रोक 13 जुलाई 2026 से एक साल के लिए लागू है। इसके तहत पान मसाला बनाने, रखने, लाने ले जाने और बेचने पर रोक है। इसीलिए अब सियासी जमात भी अभिनेताओं पर सवाल उठा रही है।
1: देखिए, शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, ये प्रतिभाशाली कलाकार हैं और उनके कला का हम सम्मान करते हैं, पर वे किसी एडवर्टाइजमेंट करने के पहले शाहरुख खान ने अजय देवगन ने ये सोचना चाहिए कि किस चीज का आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ऐसे कौन सी पैसे की आपको कमी है, आपको फॉलो करने वाले करोड़ों करोड़ों युवा हैं, क्या दोनों चाहते हो गुटखे की लत उनको लग जाए? इस बात का समर्थन कभी नहीं हो सकता। यदि उनको इस देश के प्रति प्रेम है, आदर है, सम्मान है युवाओं के प्रति, तो उन्होंने इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को सामने से ही ठुकरा देना चाहिए और यह भारत पूरी तरह से नशा मुक्त हो इस आंदोलन में उन्होंने सड़कों पर उतरना चाहिए, युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, अपेक्षा है।
2: हमारी लगातार कोशिश रही है कि लोगों को सुरक्षित रखें, खासतौर से पान मसाला और गुटखा से। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, तुकाराम मुंडे जी और एफडीए की टीम को भी मिले हैं, और ये टारगेटिंग नहीं है ऑफ सेलिब्रिटीज, लेकिन रोल मॉडल्स को भी सोचना चाहिए कि जब वो कोई गुटखा और ऐसे पदार्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, तो समाज में ये सही एक मैसेजिंग नहीं जाता है।
0: अब देखना होगा कि 15 दिन की इस मोहलत के भीतर तीनों बॉलीवुड सुपरस्टार्स एफडीए के इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं और क्या वो नियमों का पालन करते हुए इस कैंपेन से पूरी तरह से अलग होते हैं या नहीं।
3: महाराष्ट्र में तंबाकू और पान मसाला 2012 से बैन है और विमल इलायची की ये एड इसी तरह के प्रोडक्शन को या कंजम्पशन को प्रोत्साहन देती है। इस तरह की बात शोकॉज नोटिस में कहा गई है, वो शोकॉज नोटिस जो बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भेजा गया है। 15 दिन का समय दिया गया है उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए। इस नोटिस में लिखा गया है कि ये नोटिस एक फाइनल वार्निंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका विमल इलायची के साथ है उससे दर्शाए विमल इलायची ये सच में प्रोडक्ट है, ये बताए कहां कहां ये एडवर्टाइजमेंट चली है और क्यों आपके ऊपर एक्शन ना लिया जाए। आपको बता दें, फूड सेफ्टी एक्ट का जो सेक्शन है उसके मुताबिक 10 लाख रुपए तक का जुर्माना अगर किसी बैंड प्रोडक्ट को आप खरीदने के लिए प्रोत्साहन देते हैं तो उस पर लग सकता है। अब देखना यह होगा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का इस पूरे मामले पर क्या कहना होता है, लीगल नोटिस में किस तरह की सफाई दी जाती है। मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
4: महाराष्ट्र में गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी सीखने के लिए दी गई 100 दिन की जो मोहलत थी, जो समय था, वो खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में परिवहन विभाग के मुताबिक जो ड्राइवर मराठी नहीं बोल पाएंगे उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

0: हैं कि रिक्शा और टैक्सी यूनियंस ने चेतावनी दी है कि अगर एक भी लाइसेंस रद्द किया गया तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऑटो टैक्सी यूनियन सरकार से मराठी सीखने के लिए 100 और दिन की मांग कर रहे हैं।
1: महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी भाषा पर

0: पर सियासी रण तेज हो गया है। ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए मराठी सीखने वाली 100 दिन की डेडलाइन खत्म हो गई। अब परिवहन विभाग ने मराठी भाषा नहीं बोलने वाले चालकों का लाइसेंस और परमिट रद्द करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे राज्य में करीब 2,00,000 गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया। उन्हें इसके लिए 100 दिन दिए गए थे। सरकार ने मराठी भाषा सिखाने के लिए कोचिंग क्लास और वर्कशॉप भी आयोजित की थी, लेकिन बीजेपी ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता हाजी अराफात शेख ने कहा कि सरकार किसी भी ड्राइवर का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जोर जबरदस्ती की तो यूनियन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
1: तमाम महाराष्ट्र के रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को कहने के लिए आया हूँ, कोई डरने की बात नहीं। जिस तरीके से आप रिक्शा चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, मुंबई के लोगों की सेवा कर रहे हो, स्टूडेंट्स की, बच्चों की, अस्पताल की जो सेवा कर रहे, बिल्कुल करते रहो। किसी का भी परमिट रद्द नहीं होगा, किसी के लाइसेंस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मराठी महासंघ के लोगों ने हर एक लोगों को 1,00,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी, ऐसा प्रताप सरनाईक जी का कहना है। तो मैं प्रताप सरनाईक जी से कहूंगा कि आपने 100 दिन की मोहलत हम लोगों को, रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को दी थी, और 100 दिन की मोहलत दो, क्योंकि उसका कारण यह है, क्योंकि 100 दिन के अंदर आपने सिर्फ 40 दिन ही ट्रेनिंग हुई, 60 दिन कभी स्कूल नहीं मिला, कहीं बालवाड़ी नहीं मिली, कहीं क्लासेस नहीं मिली, कहीं हॉल नहीं मिला, कहीं बारिश के कारण 100 दिन कंप्लीट नहीं हुए। मैं आपसे, सरकार से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि उन रिक्शा चालक और टैक्सी चालक जो अमराठी है, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, उनके लिए और 100 दिन का मोहलत दीजिए।
0: दूसरी ओर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि सरकार ने ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए पर्याप्त 100 दिन का समय दिया था, लेकिन 19 अगस्त को ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसके बाद सख्ती से नियम लागू करने का अभियान शुरू होगा। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हर टैक्सी और ऑटो चलाने वाले लोगों को सामान्य बातचीत के स्तर की मराठी आना जरूरी होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। फिर भी भाषा न सीखने पर लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित होगा और दोबारा उल्लंघन करने पर लाइसेंस और परमिट स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
2: तो उनके लिए कानून है, मराठी सरकार ने 1989 का जो कानून था उसमें बदलाव किया है। जो मराठी लोग हैं उनको सिखाने के लिए हमने 105 दिन का एक कार्यक्रम भी रखा था। आज वो समारोह उसका हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उदय सामंत जी के माध्यम से आज कर रहे हैं। जो सीखे 101,65,000 लोग, उनके ऊपर तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने सीखने की कोशिश की। फिर भी प्रमाण पत्र भी अगर तुम्हारे पास होगा तो प्रमाण पत्र देखते हुए हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं आपको मराठी आती है। हमको उनके साथ, हमारे आरटीओ के अधिकारियों को मराठी में संवाद करना ही पड़ेगा। अगर प्रमाण पत्र मिला तो मैं मराठी सीख गया, ऐसे अगर किसी की समझ होगी तो वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने ये तय किया है कि हमारे आरटीओ के लोग आपके साथ संवाद करेंगे, आपको वो जो जितनी मराठी है उतनी मराठी प्रवासियों के साथ संवाद करने लायक आती है क्या ये देखेंगे। अगर आती रहेगी तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं आती रहेगी तो कानूनी कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी।
0: सरकार का दावा है कि अब तक करीब 1,65,000 ड्राइवरों को मराठी दक्षता प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, लेकिन विपक्ष किंतु परंतु के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है।
3: मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले जो पर प्रांतीय हैं, वो सबसे पहले तो मुंबई कर ही अपने आप को मानते हैं, मराठी मानुस ही मानते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में मराठी भाषा उतनी अच्छे से नहीं बोल पाते। लेकिन अब सीख रहे हैं, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि जो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो मराठी भाषा सीखें, बोलें, पढ़ें, लिखें। बहुत सारे लोग हैं जो सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, उन्हें थोड़ा समय मिल जाए। और कई लोग तो ऐसे भी मिल रहे हैं जो डर के मारे भी सीख रहे हैं कि कोई भाई हमें मारे पीटे ना, कोई हमारे साथ हिंसा ना करे। तो सीखने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ उन्हें थोड़ा समय देने की जरूरत है।
0: हालांकि कुछ ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने इस नियम को सही बताया, जबकि कुछ उत्तर और दक्षिण भारतीय टैक्सी चालक बोले उन्हें अभी मराठी सीखने में और वक्त लगेगा।
4: के लाइसेंसेस और परमिट भी रद्द हो सकते हैं। कुछ संगठनाएं सामने आ रही है, कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त बढ़ाकर भी देना चाहिए, लेकिन क्या लगता है मराठी बोलता ये थे?
5: हमको तो आता है।
4: क्या आता है? काम चलाने के लिए आप बोल पाते?
5: समझ लेता हूँ भाई, जैसा मराठी लोग जैसे कोई आके पैसेंजर

0: कुठे जायचं? हमकुप मला जायचं आहे. टॅक्सी खाली आहे का? तर मी म्हणणार हो खाली आहे.
1: लेकिन इस शक्ति के बारे में क्या?
0: शक्ति तो तुम सरासर बोल रहे हो ना कि जबरदस्ती है, जबरदस्ती है. अरे कितने तो हैं, बता रहे बताए आपने ना कितने हैं. शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो मराठी क्या बोलेंगे?
1: मराठी मध्ये बोलू का तुमच्याशी? कसा काय, बरा आहे काय?
2: बरा बरा, हमको आता ही नहीं, हम तो पढ़ा नहीं हूँ.
1: अच्छा,
2: मैं तो औठा छाप हूँ. भगाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? और ये लोग बहुत गलत कर रहा है, लोग बहुत गलत कर रहे हैं. हम तो गाली से ही बात करता हूँ. अभी बोलो, 60 साल का हो गया, मेरे को नाम लिखना बोल रहा है, पढ़ने का तो मैं क्या पढ़ेंगे? हम तो औठा छाप है देखो.
1: नहीं, लेकिन दिक्कत आती है कभी मराठी नहीं बोल पाते आप पैसेंजर के साथ?
2: थोड़ा बहुत अभी तो वही मैं भी समझ लेता हूँ, थोड़ा बोल लेता. इकड़े कहाँ किधर जाने का है वो सब एक क्या अपना भाषा आ जाता है.
3: मराठी सीखने के लिए और मोहलत को लेकर सरकार कह रही है कि हालात देखकर सरकार अतिरिक्त समय देने के विकल्प पर विचार कर सकती है. लेकिन फडणवीस सरकार के मुताबिक सरकार का मकसद जबरदस्ती नियम थोपना नहीं है, बल्कि ऑटो टैक्सी चलाने वालों को सकारात्मक रूप से मराठी सीखने का मौका देना है, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी के लिए भी जरूरी है.
1: महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी शक्ति के नियम की डेडलाइन 17 अगस्त कर खत्म होने जा रही है और 18 अगस्त से अब परिवहन विभाग के अधिकारी एक स्पेशल ड्राइव लेकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन चालकों ने मराठी भाषा सीखी है. लेकिन बोलचाल की मराठी भाषा सीखने के लिए जो समय दिया गया था वो और बढ़ाया जाए, ऐसी मांग सरकार में ही शामिल कुछ संगठन करते नजर आ रहे हैं. अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस मांग को मंजूर करेगी या फिर सख्ती से ये नियम लागू करेगी. कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक.
4: 7 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है और इस टीम में युवाओं का जोश है तो अनुभवी चेहरे भी हैं. नितिन नवीन की टीम में क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सीआईटी सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है. अमित मालवीय 2015 से आईटी सेल के प्रमुख थे, उनकी जगह दीपक महस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है.
5: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया.
6: नितिन नवीन ने खुद के लिए चुनी हुई नई टीम में जो 8 जनरल सेक्रेटरीज है उसमें से 2 नाम बरकरार है. एक है सुनील बंसल और दूसरा विनोद तावड़े. तावड़े जो महाराष्ट्र के एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, कभी एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, 2019 के बाद नया दिल्ली तक पहुंची और फिर दिल्ली में पैर जमाया, अमित शाह के साथ तगड़ी बनी और उसके बाद बिहार चुनाव से पहले स्ट्रैटेजी हो या फिर प्रभारी हो सभी काम खूबी से संभाले और अमित शाह के साथ नजदीकियां बढ़ी. अब तावड़े भी इस पूरे संगठन में शामिल है. उसके बाद सुनील बंसल जो है राजस्थान से आते हैं. 2014 में जब अमित शाह खुद यूपी के प्रभारी थे तभी उनके साथ स्ट्रैटेजी प्लानिंग की और अभी 2026 में पश्चिम बंगाल में भी इसी स्ट्रैटेजी उनके काम आई. उसके बाद अब फिर से कायम रहेंगे और अमित शाह हो या फिर बाकी के मंत्री हो, जहां जहां चुनाव होंगे वहां उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आएगी. बाकी 6 में से हम देखें तो स्मृति ईरानी हो जो पहले मंत्री रह चुकी है, उनके साथ भारती पवार का नाम है. भारती पवार भी हेल्थ मिनिस्ट्री संभाली हुई है. भारती पवार तो महाराष्ट्र के उत्तर महाराष्ट्र यानी कि नासिक के ऊपर जो दिंडोरी चुनाव क्षेत्र है वहां से आती है, ट्राइबल चुनाव क्षेत्र है, तो ट्राइबल्स के साथ ही जो आने वाली पीढ़ी है और महिला है उनको साथ में लेके चलने के लिए बीजेपी की ये नई टीम काम करेगी.
5: संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है. लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है. उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है. अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं.
7: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्राण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी।
8: यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे?
7: देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
5: मैस्के की सहायता सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को नियुक्त किया गया, लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिए। इसके चलते आम यूजर्स को उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखने बंद हो गए। हालांकि नए कन्वीनर दीपक मैस्के और को कन्वीनर अरुण यादव के एक्स अकाउंट्स सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रीति गांधी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं और @Mrs. Gandhi हैंडल से पोस्ट करती आई हैं। उनकी पहचान बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए रही है। वो बीजेपी महिला मोर्चा के सोशल मीडिया से जुड़े काम में भी सक्रिय रही हैं। फिलहाल प्रीति गांधी या आलोक भट्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनके एक्स अकाउंट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे, इसलिए इसकी वजह को लेकर कोई पक्की बात कहना सही नहीं होगा। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुराने पोस्ट की समीक्षा एक संभावित वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहले किए गए किसी निजी बयान को पार्टी की आधिकारिक राय समझे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में पुराने कंटेंट की जांच के दौरान अकाउंट की पहुंच सीमित करना एक तरीका हो सकता है। नई भूमिका के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का संदेश भी अधिक व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत होती है। निजी पोस्ट और पार्टी के आधिकारिक रूप के बीच अंतर साफ रहे, इसके लिए भी अकाउंट की सार्वजनिक पहुंच बदली जा सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के तुरंत बाद इन अकाउंट्स में बदलाव हुआ। इसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई में सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा और उसके नतीजों को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है, क्योंकि मामला है मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA की भर्ती परीक्षा का। MMRDA ने कुल 235 रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसमें इंजीनियरिंग से जुड़े करीब 150 पद बताए जा रहे हैं और अब परीक्षा का प्रोविजनल रिजल्ट सामने आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं MMRDA ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
9: महाराष्ट्र में जितने भी एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे सभी में बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम चल रहा है, ये हम मतलब पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं। पहले यहाँ पर पुणे महानगर पालिका का जो PMC JEE का जो पेपर हुआ था उसमें जो ऑनलाइन स्क्रीन होती है एग्जाम के टाइम जो स्क्रीन होती है उसके फोटो लेकर बाहर भेजे हुए थे और उससे पेपर पूरा मैनेज करा गया था। और अभी उसके पहले ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण MJPCA और महाट्रांसको असिस्टेंट इंजीनियर ये सभी भर्तियाँ और दो दिन पहले ही लगा हुआ MMRDA असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिजल्ट है उसमें तो इन्होंने पूरी धांधली मचा रखी है। इन्होंने क्या किया है कि जो जिन स्टूडेंट्स को एक एक मार्क था पहले 7-7.5 ऐसे मार्क्स थे उन सभी को पूरे स्टेट में ये स्टूडेंट्स टॉपर आए। सिविल इंजीनियरिंग के पूरे इतिहास में 200 मार्क्स आज तक किसी को मिले नहीं थे महाराष्ट्र में, लेकिन इस भर्ती में MMRDA के मिले हुए।
10: मुंबई में MMRDA की एग्जाम्स हुई थी, अब उनका प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो बाहर आ चुका है, लेकिन इस रिजल्ट पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं शिंदे जी, जिन्होंने सवाल उठाए हैं, जिनके मन में कुछ डाउट्स हैं कि हो सकता है इस परीक्षा में, इस रिजल्ट में जो प्रोविजनल रिजल्ट आया है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। क्या ये गड़बड़ी है, क्यों उनको ऐसा लगता है, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, आपने एक सवाल उठाया है कि जो प्रोविजनल लिस्ट MMRDA की आई है जिसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
11: देखो, 14 अगस्त को MMRDA का इंजीनियरिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद में 2 घंटे में एक ये डॉक्यूमेंट है बच्चों ने बनाया जो सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिन पे घूम रहा है। 200 मार्क का पेपर था और उसमें से 190 से ज्यादा जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं उनके नाम दिए हैं, उनके मार्क्स दिए हैं और पिछले करीब 1 साल में पुणे महानगर पालिका, सिडको या मुंबई महानगर पालिका, इनकी जो एग्जाम्स हुई उस एग्जाम्स के लिए भी ये बच्चे बैठे थे
12: जिनको अभी 190 के ऊपर मार्क्स मिले हैं, और इस चार्ट में उसका कंपैरिजन भी दिया है उन्होंने। तो अगर हम देखेंगे ये चार्ट जो है, जो पिछले दो दिन से घूम रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, इसका हम सिंपल एनालिसिस करें कोई लेमैन आके, तो भी कुछ दिखता है। और उसका ऑब्जर्वेशन हमने जब स्टडी किया तभी जो रिजल्ट आता है वो बहुत गंभीर है। पहली चीज, मतलब पहले तीन जो लोग हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन के बाद में 200 मार्क्स मिले हैं, अभी आप बताइए, ये इंजीनियरिंग का एग्जाम है, इसमें आईआईटी के बच्चे बैठे हुए थे, उनको कितने मार्क्स मिले मालूम है? 165। और इंजीनियरिंग की टफ एग्जाम होती है, उसमें 200 मार्क मिलना, ये पहला सवाल है। दूसरा, जो पहले टॉप तीन लोग हैं वो एक ही सेंटर के हैं, उनका जो रोल नंबर दिया है एमएमआरडी के हिसाब से वो इस चार्ट में दिया है। बाद में चौथा पांचवा छठवा जो है वो एक ही सेंटर के है। बाद में सातवां आठवां नौवां जो है वो एक सेंटर का है। दसवां ग्यारहवां बारहवां तेरहवां जो है वो एक ही सेंटर से है। चौदह और पंद्रहवां और सोलहवां जो है वो भी एक ही सेंटर के है। सत्रह अठारह उन्नीस वो भी एक सेंटर के है। मतलब ये जो पैटर्न दिख रहा है, तो एक ही सेंटर्स के ऐसे तीन तीन चार चार लोग है जिनका सिलेक्शन हुआ है, विच इज एबनॉर्मल साइंटिफिकली ऑल्सो, टेक्निकली ऑल्सो, लॉजिकली ऑल्सो।
10: एमएमआरडी की हुई परीक्षा और उसकी पद्धति पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जो छात्र पास हुए हैं उनमें से ज्यादातर छात्र जो पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए थे उसमें सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के आसपास के नंबर लेकर आए थे। अब सवाल यही उठ रहा है कि कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं छात्रों को एमएमआरडी की हुई एग्जाम में 200 में से 200 अंक मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी की जांच की मांग को सरकार मानती है या नहीं, और एमएमआरडीए इसमें क्या कदम उठाती है। कैमरामैन मंदार चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का,
15: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
14: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए,
16: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
17: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है,
18: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को, और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
19: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है इस लड़की सब।
14: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोग केंद्र के साथ, मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, छात्रों के आंदोलन के सामने सरकार झुक गई है, उनकी शर्तों को मान लिया गया है। लगातार इतने लंबे समय से चला रहा आंदोलन अब समापन की तरफ है, और आपको बता दें कि आज तक से बातचीत करते हुए देवेंद्रनाथ महतो की तरफ से भी कहा गया है कि वो बहुत ही जल्द अपना अनशन खत्म करेंगे, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। किस तरीके से जश्न मनाया गया इस ऐलान के बाद, जरा तस्वीरें देखिए। टीडीपीएल के तहत कराई गई तमाम जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द करने का आश्वासन दे दिया गया है सोरेन सरकार की तरफ से, और आज तक से देवेंद्र महतो ने साफ कहा है कि अनशन वो जल्द ही तोड़ेंगे, लेकिन उनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। इस खबर के बाद किस तरीके से तमाम छात्रों में जोश और जुनून नजर आया, किस तरीके से जश्न उन तमाम छात्रों ने मनाया है जो लगातार इस आंदोलन में डटे हुए थे और सरकार से इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सोरेन सरकार के ऐलान के बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से बात भी की।
20: आपका मार्गदर्शन से, आपसे जो मोटिवेट होकर के झारखंड के छात्रों का आपका आशीर्वाद से हम लोग लड़े, और आज भूख हड़ताल के 16वें दिन और आंदोलन के 23वें दिन हमारे डिमांड पूरी कर ली है सरकार, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं और आपसे हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं।
21: देवेंद्र भाई फोटो तो पीछे,
22: ये तस्वीर है, देख सकते हैं सोनम वांगचुक जो है इन तस्वीरों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। अरे बात तस्वीरें हैं,
23: देवेंद्र जी
0: देवेंद्र जी आपकी निष्ठा को सलाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और झारखंड की सरकार और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हम बहुत चिंतित थे आपके बारे में, मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने आपको आपके बारे में आज ही उन्हें लगाया हमारे लोगों को कि पता करें क्या समर्थन की आवश्यकता है और मुझे ये खुशखबरी मिली। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी मेहनत आपकी निष्ठा काम आई रंग लाई। तो इस बारे में मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूं और झारखंड की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को खासकर। तो ऐसे ही हम सब जो भी कमी पेशी है उसको ठीक करते रहे, जनता और सरकार मिलके, यही मेरी आशा और शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आवाज
20: जी। ये आपका आशीर्वाद से हम लोग का आवाज और हम लोग का लड़ाई को बहुत बल मिला सर, आपसे बहुत ताकत मिला हम लोग को और हम लोग आपका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह चाहते हैं। और इस लड़ाई में आज भले 16 दिन से हम भूखे हैं और पूरे छात्र झारखंड का जश्न मना रहे हैं। बहुत बड़ी
4: तो छात्रों में खुशी की लहर है और देवेंद्रनाथ महतो की तरफ से कहा गया है कि अनशन वो जल्दी खत्म करेंगे लेकिन उनका जो संघर्ष है वो छात्रों के लिए इसी तरह जारी रहेगा। इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार, TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द, छात्रों में खुशी की लहर आज तक से बोले देवेंद्र महतो, तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष, सोनम वांगचुक से की बात। आज तक की खबर से तेजी से हुआ असर, खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा, 22 को होगी पहली मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला है बड़ा दाव, नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व, 8 चेहरे शामिल, राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।

उत्तराखंड में जेएसएससी और सीजीएल समेत टीडीपीएल से सभी परीक्षाएं भर्तियां रद्द हुई। 2014 से अब तक परीक्षाओं की होगी सीआईडी जांच। सीएम हेमंत सोरेन बोले 2014 से अब तक सभी गड़बड़ियों की जांच होगी व्यापक। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा सरकार गंभीर है, पूरी पारदर्शिता से सुधार होगा। अमिताभ कौशल संभालेंगे रिफॉर्म्स की कमान। देवेंद्र महतो बोले जल्द खत्म करूंगा अपना अनशन आंदोलन को लेकर दिया बड़ा संकेत। जेएसएससी और सीजीएल रद्द होने के बाद छात्रों में जश्न, सरकार के फैसले का स्वागत, आंदोलनकारियों के चेहरों पर नजर आई खुशी। एक और जश्न तो वहीं, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद सफल अभ्यर्थियों का हंगामा, मंत्रालय के बाहर जमकर प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के पद संभालने के 209 दिन के बाद आज 65 सदस्यों का कार्यकारिणी में हुआ, टीम में 13 उपाध्यक्ष हैं, 8 महासचिव हैं, 16 सचिव और 28 सदस्य शामिल हुए। नितिन नवीन की नई टीम में राम माधव को उपाध्यक्ष और स्मृति ईरानी को महासचिव बनाकर लाया गया है वापस। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय को पद से हटाया गया, दीपक मस्के संभालेंगे उनकी जगह। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी रहेंगे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी पद पर कायम। 55 साल की औसत उम्र वाली नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को जगह मिली है। उत्तर प्रदेश से 2 मुस्लिम चेहरों तारिक मंसूर और बासित अली को दिया गया है जगह। नितिन नवीन की नई टीम में सुनील बंसल बने हैं राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा। बीजेपी में अनिल बलूनी का जलवा बरकरार है, फिर बनाए गए राष्ट्रीय मीडिया संयोजक। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख बने दीपक महस्के, बोले सोशल मीडिया के जरिए चुनाव जीतना और जनता की सेवा करना हमारी प्राथमिकता। बीजेपी के नए आईटी सेल के चीफ दीपक महस्के का विपक्ष पर निशाना, बोले प्रोपेगेंडा माहौल बना सकता है लेकिन सच लंबे समय तक छुप नहीं सकता। बीजेपी की नई टीम के ऐलान के बाद अब 22 अगस्त को नितिन नवीन की नई टीम की मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। एनटीए में बड़े सुधार की तैयारी, 50 से ज्यादा कर्मचारी हटाए गए, साइबर सिक्योरिटी समेत 10 नए प्रोफेशनल्स पोस्ट पर भर्ती। यूजीसी नीट रीटेस्ट पर एनटीए के सुधारात्मक कदम, बिना अतिरिक्त फीसों की परीक्षा, क्वालिफाइंग सीटों में नहीं होगी कटौती।

0: 90 दिन में कार्रवाई आगे फिर आप लोग
1: आंदोलन तो यार लोग है ना, मैं आया हूँ
0: नब्बे दिन सीआईडी जांच के लिए लेना चाहते हैं हम, आपको कोई भी बोल सकते हैं, आप नहीं जा सकते। अभी रद्द हुआ है जो गलती कहीं त्रुटि रहा एग्जामिनेशन में, उसको सुधारने का एक मौका सरकार को मिलना चाहिए। बात सुनिए, आइए अगर गड़बड़ियों में शिकायत होगी तो आप लोग फिर अनशन कर सकते
2: हैं। आप लोग जनता कहिएगा हम लोग आपके साथ,
0: ठीक है? आप बात
3: सुनिए, अरे हम चल जाए आपके पीछे, जो समझ में आ रहा है
4: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिफारिश चाहता हूँ, मैं और
0: बहुत बड़ा कदम उठाया गया
2: और आप लोग के लिए इतना बड़ा
4: नहीं सर, अभी हम सीबीआई जांच की सिफारिश सब कुछ चाहिए।
1: सरकार ने बहुत कुछ
5: कर दिया।
1: अरे भाई आप पीछे हटो ना यार,
4: चलिए
6: अभी का अस्पताल की तस्वीर है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अनशन पिछले 21 दिनों से जो अनशन पे यहाँ पे बैठे हुए थे, आज मंत्री महोदय ने आज यहाँ पर खुद आए हैं, दो मंत्री आए हैं, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे आए हैं, जो कि आप देख तस्वीर से सीधे देख रहे होंगे, दोनों को जो है जूस पिला के अनशन तोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद ही जो आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम विधायक और मंत्री जो गठबंधन की सरकार है वो तमाम आज प्रोजेक्ट भवन पहुंचे, वही प्रोजेक्ट भवन में वहां पर जो है जो निर्णय लिया गया, जिसमें से जेपीएससी 14वीं जेपीएससी है उसे रद्द कर दी गई, तो वहीं पर जो है सीजीएल एग्जाम जो हुआ था उसे भी रद्द कर दिया गया। हालांकि छात्र जो है काफी जश्न मना रहे थे यहाँ पे, जो रांची का जो जंतर मंतर जो जयपाल सिंह स्टेडियम बना हुआ था वो स्टेडियम जो है आज खुशी से लहराते हुए दिखा। आप ये भी आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो है फिलहाल मंत्री महोदय जो है दीपिका पांडे और इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, वो लगातार जो है यहाँ पे देवेंद्र महतो जो कि ये आंदोलन का जो शुरुआत देवेंद्र महतो किए थे, आज यहाँ पर जो है देवेंद्र महतो को उन्हें झुलाने के लिए उनको जो है जो अनशन तोड़वाने के लिए जो है यहाँ पे मंत्री यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे लगातार जो है उनसे बातें कर रहे हैं मंत्री हैं और माननीय मंत्री महोदय हैं। ये तस्वीर सीधे रांची के सदर अस्पताल की है, जो लगभग जो है यहाँ पर छात्र जो है उत्साह दिख रहे थे, फिर इनकी मांगे पूरी कर ली गई है। कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिए गए। जब झारखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी शाम में 4 बजे, उसके बाद जो है तमाम आला अधिकारी और तमाम विधायक मंत्री हैं यहाँ पे मौजूद थे, और उसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि 14वीं जेपीएससी है वो एग्जाम जो है उसे कैंसिल किया जाएगा और रद्द किया जाएगा, और वहीं पर सीरियल का एग्जाम जो लिया गया है उसे भी जो है रद्द किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर रांची के सदर अस्पताल में 2 मंत्री माननीय मंत्री यहाँ पहुंचे हैं, एक इरफान अंसारी हैं, दीपिका पांडे हैं, जो लाइव तस्वीर आपको ये यहाँ से देख रहे हैं वो उनकी बातें को बातें सुन रहे हैं। और ये एक चीज और आपको ये बता दे कि जो अंतम पर हबीबा बैठी हुई थी उन्होंने ये कहा, वो भी अपनी मांगे रखी है कि सभी जगह महिलाओं पे 33% जो आरक्षण है वो झारखंड में भी 33% आरक्षण होना चाहिए। अब ये उन्होंने ये कहा कि आज जल्द से जल्द जो है अनशन अगर हम तोड़ रहे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द जो आने वाले दिनों में जो कैलेंडर है नौकरी के जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जो है वो निकाला जाए ताकि जो है और युवाओं को रोजगार मिला जाए। ये सीधी तस्वीर रांची के सदर अस्पताल से आप देख रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो देख रहे होंगे कि रांची के सदर अस्पताल से माननीय मंत्री महोदय और देवेंद्र माथुर से उनसे लगातार बात चल रही है, और ये बात करके उन्हें अपनी मांगों को सुना जा रहा है। और उन्होंने देवेंद्र माथुर ये भी कह रहे थे कि जो पूरे मामले की चौधरी जेपीसी के जो मामले है उनको सीबीआई जांच के लिए ये लोग मांग कर रहे थे। फिलहाल सरकार अड़ी रही और उसके बाद सरकार ने ये कहा कि सीआईडी जांच हमने अनुमोदित कर दिया है, सीआईडी जांच के लिए आगे पूरा सीआईडी जांच करेगी। लेकिन इसके बाद भी सीबीआई जांच के लिए छात्र लगातार अड़े रहे। हालांकि सीबीआई जांच के लिए अभी सरकार जो है वो कहीं से पुष्टि नहीं की है कि सीबीआई जांच आगे देंगे अभी, लेकिन पहली प्रश्नता ये है कि जो अंतम कर रहे छात्र लगभग आज 23 दिन हो गए हैं, 23 दिन के बाद से आज सदर अस्पताल में इनकी जो अधिकतर मांगे हैं वो सरकार मान ली है। ये सीधी तस्वीर रांची के सदर अस्पताल से दिखाया देख रहे हैं। जो कि लगातार जो ये आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया था, और उसके सबसे पहले देवेंद्र महतो ने यहाँ आपको बता दें कि रांची के मोराबादी मैदान से बापू वाटिका से ये आंदोलन चालू हुआ था। उनके साथ लगभग 5 छात्र ही बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने ये आंदोलन जो है रेगुलर चालू रखा, और देखते देखते आंदोलन इतना भव्य रूप ले लिया कि उसके बाद वहाँ आंदोलनकारियों को वहाँ से शिफ्ट करा के रांची के जो जयपाल सिंह स्टेडियम है वहाँ पे इनको लाया गया था। उसके बाद जो है लगातार पानी धूप में छात्र जो है ऐसे ही रहते थे। जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें टेंट टॉयलेट तमाम जो व्यवस्थाएं होती है उन्हें वो पूरा मुहैया कराई गई।
5: और हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि झारखंड में आंदोलनरत छात्रों ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, धरना प्रदर्शन कर दिया है, खत्म कर दिया है। 24 दिन तक ये सारे के सारे छात्र अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे। अब से कुछ देर पहले आज देर रात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की, और उसके बाद झारखंड सरकार के 2 मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे दोनों पहुंचे। उन लोगों ने छात्रों को जूस पिलाया, ये अनशन समाप्त कर दिया। महतो जो देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के नेता थे जो अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, महतो ने अपनी पूरी खुशी प्रसन्नता व्यक्त की और ये कहा कि हाँ हम संतुष्ट हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आकाश कुमार हमारे संवाददाता इस समय सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दीपिका पांडे और इरफान अंसारी जब पहुंचे वहां पर तो किस तरह से उन्होंने जूस पिलाकर छात्रों के अनशन को खत्म करवाया है, और क्या उस समय वहां देवेंद्रनाथ महतो भी थे, उन्हें भी जूस पिलाकर उनका भी अनशन खत्म करवाया गया है? आकाश
6: जी देखिए आवाज आ रही है। अभी फिलहाल जो है रांची का जो सदर अस्पताल है वहाँ पे झारखंड के 2 मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे यहाँ पे पहुंचे हैं। अनशन पे बैठे जो छात्र थे उन्हें जूस पिलाया गया, और साथ ही जूस पीने से पहले जो छात्र हबीबा थी जो अनशन पर बैठी थी उन्होंने ये कहा, पहले अपनी मांगों को रखी, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो जितने भी छात्र 10 तारीख को जो विधानसभा का घेराव था उसमें जिसके ऊपर FIR हुए हैं तो उनको खत्म किया जाए, उनके FIR को खत्म किया जाए। दूसरी मांगे ये थी कि महिलाओं को झारखंड में 33% का आरक्षण मिले, दूसरे राज्यों में मिलता है हमारे झारखंड में नहीं मिलता है, ये मांगे थी। और तीसरी मांगे ये थी कि उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द जो झारखंड में जो नौकरी बहालियां का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि जितने बेरोजगार छात्र हैं वो उनको नौकरी मिल पाए। तो वहीं आप देवेंद्र महतो
7: जो मैं आप रोक रहा हूँ आकाश, बात ये थी कि ये खबर भी आ रही थी कि छात्र चाहते हैं कि पहले सरकार नोटिफिकेशन जारी करे और नोटिफिकेशन आने के बाद वो अपना ये धरना प्रदर्शन खत्म करें। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? वो देवेंद्रनाथ महतो जो 23 दिन पूरे हो गए थे, 24वां दिन कंप्लीट हुआ, अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने आकर सीधे हेमंत सोरेन की तारीफ की, उन्होंने कहा जो CBI जांच की मांग थी वो मांग को दरकिनार कर दिया, वो अलग कर दिया और ये कहा कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं सरकार के इस निर्णय से। आखिर ऐसे क्या हुआ, कैसे फैसला हुआ आकाश कि सरकार की इतनी बुरी तरह से पीछे लगे हुए, मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने की तारीख तय कर दी थी, क्या हुआ जो ये निर्णय हो पाया?
6: जी देखिए, अभी भी माननीय मंत्री लोग जो है उन्हें मनाने के लिए यहाँ पर है, बैठे हुए हैं, भले उनको जूस पिलाया गया तो ये उन्हें ये भी कहा गया कि हमारी जो मांगे थे वो लगभग जो है पूरी कर ली गई है। तो ये कहा गया कि CBI जांच की मांगे, सरकार ये उनको भरोसा दिलाई कि CID जांच जो है वो हम अपने स्तर से करवा रहे हैं, हमें एक मौका दीजिए, मौका दे के देखिए आगे जो है अगर त्रुटियां दिखेगी तो अनशन जो है वो हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, हम भी झारखंड के हैं तो आगे के अगर अनशन होगा तो आप हमारे पास आइएगा, हम अपनी बातों को रखिएगा। तो ये कहकर जो है विधायक सॉरी दोनों जो मंत्री हैं वो यहाँ पर उनको जूस पिला रहे हैं फिलहाल। लेकिन अभी तो है कि देवेंद्र नाथ महतो जो है वो उनसे दोनों मंत्री जो है बैठ के रूबरू हो रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनसे कुछ पूछ रहे हैं या देवेंद्र महतो जो है उनको कुछ बता रहे हैं कि पूरे जो जो 10 तारीख की जो घटना हुई थी विधानसभा के घेराव के समय में उन वैसे छात्र जिनपे FIR किए गए हैं उन्हें सबसे पहले जो है उनके FIR जो है रद्द कर दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए, ये हो गया। दूसरी बात वो भी देवेंद्र नाथ महतो ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि
2: सब उसी से डिग्री लेकर अंदर को प्रेम कर लेता है, यूनिवर्सिटी है राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी को प्रमुख है, महिला परीक्षा क्या माध्यमिक चार्ज हो गया है
8: मंत्री से बात करिए, हेलो
7: यहाँ पर 24 दिनों से झारखंड का पूरा बैकग्राउंड बता दें इन बच्चों का, इन आंदोलनरत छात्रों का, झारखंड में पिछले 24 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्णय लेके खत्म करवा दिया है। सरकार ने DDPL के द्वारा कराई गई JSSC CGL समेत सभी परीक्षाओं और उनके रिजल्ट को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2014 से अब तक TDPL के माध्यम से कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच कराने की भी घोषणा कर दी है। इसके लिए एक रिटायर्ड
9: आगे बढ़ गया। अरे जाए वो नहीं, आप अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जाकर के बच्चे दिल्ली चल जाएंगे, संविधान को
10: बहुत बढ़िया
11: कर रहे हैं। और भी कुछ
12: हम पटाखा सब
5: और हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने जूस पीकर अपना अनशन, अपना आंदोलन खत्म कर दिया है और झारखंड सरकार के मंत्री, दो मंत्री दीपिका पांडे और इरफान अंसारी इन छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, यह खबर तो आ गई है। इन छात्रों की सभी मांगों को सरकार ने मांग लिया है और सीबीआई जांच की मांग को दरकिनार करते हुए, आगे रखते हुए यहाँ छात्र जो हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। लेकिन एक मांग अलग हुई, देवेंद्रनाथ महतो ने अपना अनशन तोड़ दिया है। और जब ये फैसला आया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब ये निर्णय लिया कि हम आंदोलन कर रहे छात्रों की सभी मांगों को मान लेंगे, तो उसके बाद उन्होंने जमकर तारीफ की। ये कहा कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और जब सरकार ने अगर हमारी सारी मांगे मान ही ली हैं तो फिर अब इस आंदोलन के चलते रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा है देवेंद्रनाथ महतो ने कि हमारा ये आंदोलन खत्म हो रहा है, हमारा ये अनशन खत्म हो रहा है, लेकिन हमारा संघर्ष खत्म नहीं हो रहा, हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा और हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। लेकिन सरकार ने लगभग लगभग सभी मांगे यहाँ पर मान ली हैं। JSSC, CGL समेत सभी परीक्षाओं और उनके रिजल्ट को सरकार ने रद्द कर दिया है। इसके अलावा TDPL के माध्यम से कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच करने का आदेश भी हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से दिया गया है। ये दो बड़े निर्णय हैं और छात्रों की दो मांग यही थी, सबसे ज्यादा छात्र इन्हीं दो मांगों पर अड़े हुए थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे भविष्य का सवाल है, इन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, अनियमितताएं हुई हैं और इसके कारण हम अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई बातचीत नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार से बातचीत हुई कुछ दिनों पहले, आंदोलनकारी छात्र सरकार के बीच बातचीत हुई, दो राउंड की बातचीत हुई। पहले राउंड में छात्रों ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, दूसरे राउंड के बाद कहा कि नहीं, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक कोई बातचीत सरकार से नहीं होगी। फिर से बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन एक और धमकी छात्रों की तरफ से आई थी और वो धमकी ये थी कि अगर 18 तारीख तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 20 तारीख को हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का घर का घेराव करेंगे। राहुल गांधी का पुतला और हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने की खबर भी सीधे तौर पर आ गई थी। छात्रों ने यह भी ऐलान कर दिया था, दबाव छात्र न सिर्फ JMM की सरकार बल्कि सहयोगी कांग्रेस पर भी बना रहे थे। राहुल गांधी का पुतला फूंकने की बात जैसे ही छात्रों ने की, उसके बाद ये आंदोलन और तेजी पकड़ रहा था। अब जब ये सारी की सारी मांगे मान ली गई हैं और हेमंत सोरेन सरकार ने इन छात्रों की सभी मांगों को मान लिया है, तो उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो गया है और छात्रों को इस समय लेकिन हलचल चल रही है और हलचल इसलिए भी चल रही है क्योंकि झारखंड सरकार के दो मंत्री जूस पिलाने के बाद, छात्रों के इस अनशन को खत्म करने के बाद भी आंदोलन स्थल पर मौजूद हैं और TDPL के माध्यम से कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच कराने की घोषणा भी हेमंत सोरेन कर चुके हैं। एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, सभी परीक्षाओं में जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं या पाई गई है जिसका आरोप छात्र लगा रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं में पिछले 24 दिनों से जो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन चल रहा था वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सरकार के निर्णय की जानकारी मिलते ही स्टेडियम में मौजूद प्रदर्शनकारी छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई, अभ्यर्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, निर्णय का स्वागत किया। छात्रों का कहना है कि लंबे संघर्ष के बाद उनकी मांगे मानी गई हैं और ये छात्र जो हैं अब बातचीत भी कर रहे हैं। झारखंड सरकार के दो मंत्री आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज तक पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि झारखंड सरकार के दो मंत्री जो हैं वो छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं और छात्रों से आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से कमेटी गठित की जाएगी, वो कौन रिटायर्ड जज होंगे, क्या किस तरह से नोटिफिकेशन आएगा। सरकार का नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये तय होगा कि सरकार ने कमेटी गठित की है, सरकार जांच कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्योंकि सभी परीक्षाओं को, भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, छात्रों की सारी बातें मान ली हैं, छात्रों में खुशी की लहर तो है। जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, देवेंद्रनाथ महतो छात्र नेता जो अनशन पर बैठे हुए थे उनसे भी बात आज तक ने बात की, उन्होंने भी ये कहा कि हाँ हम हेमंत सोरेन के इस निर्णय से संतुष्ट हैं और इस निर्णय से संतुष्ट होने के बाद हम अपना आंदोलन तो खत्म कर रहे हैं लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार ने हमारी मांगों को माना है लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, छात्रों के साथ कोई और अन्याय ना हो। छात्र मेहनत करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग करते हैं, बरसों की मेहनत के बाद वो सरकारी नौकरी की अपेक्षा करते हैं लेकिन अगर उन्हें वहां भी धोखा मिलता है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसीलिए छात्रों ने ये आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन
10: सो डिमांड लेटर में जितनी भी एग्जाम है आप सभी एग्जाम को जो रद्द करने का आश्वासन दिए है उन तमाम एग्जाम में माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करवा दीजिए, ये हम तमाम छात्रों का ये डिमांड है। और ये यकीन मानिए आप जिस तरह साहसिक कदम उठाए हैं, ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, अगर आप सीबीआई जांच करवाते हैं हम तमाम छात्र आपके साथ हैं और यकीन मानिए सीबीआई जांच के द्वारा आप जो जिस मकसद से इस एग्जाम को तमाम एग्जाम को रद्द किए हैं अगर सीबीआई जांच होती है वो मकसद आपको दिखेगा और झारखंड एक नई दिशा की ओर जाएगी। हम आपके तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से इस ऐतिहासिक जो हम लोग का जो सो फैसला आज आया है इसके लिए हम तमाम मीडिया बंधु को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप सभी मीडिया बंधु ने जिस तरह पिछले 24 दिनों से हमारे साथ जो है सो मुझे लगा ही नहीं हम लोग को कि आप लोग जो है कि मीडिया के जैसा काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप लोग जो है हमारे बड़े भाई के जैसा काम कर रहे हैं, बड़े भाई के जैसा हमारी आवाज को आप लोगों ने जो पूरे देश में जन जन तक पहुंचाने का काम किए इसके लिए आप तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार और दिल से सैल्यूट है आप लोग का। हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को, तमाम छात्र नौजवान को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच पर भरोसा जताया और पिछले 24 दिनों से हमारे साथ हमारे कोर कमेटी हमारे वर्किंग कमेटी के साथ आप लोगों ने संघर्ष में जो है 24 दिनों से साथ दिए इसके लिए हम तमाम झारखंड के छात्र नौजवान को बहुत बहुत हुल जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस सिज्जल की लड़ाई को पिछले 2 साल से बिल्कुल सड़कों से लेकर के न्यायालय तक ले जाने में अपनी अहम योगदान निभाने वाले हमारे बीच उपस्थित आदरणीय कुणाल सर जी को जिन्होंने इस सीजीएल की लड़ाई को बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के जैसा इन्होंने लड़ने का काम किया है। बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी मजबूरियां आई, उन तमाम मजबूरियों को झेलते हुए उन्हें तमाम मजबूरियों को बर्दाश्त करते हुए हम तमाम छात्रों के साथ इस लड़ाई में जिस तरह इन्होंने लीडरशिप का जो पहचान दिए है इसके लिए हम जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से आदरणीय कुणाल सर को दिल से सैल्यूट और आभार प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय प्रकाश सर को जो इस जेएसएससी सीजीएल का बुनियाद बोने का काम किए हैं, बीज बोने का काम किए हैं, पीआईएल कर्ता के रूप में जो जिन्होंने इस जेएसएससी सीजीएल को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। हम जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत जोहार प्रकट करता हूँ। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय
5: धन्यवाद सरकार को, मीडिया को, सभी को, छात्र नेताओं की तरफ से। इस छात्र नेता को आपने सुना, इसने कहा कि हम सरकार का भी धन्यवाद देते हैं, हमारी सारी मांगों को माना है, और अगर सीबीआई की जांच की बात भी सरकार मांग लेती है और करवा देती है तो आप देखिएगा कि झारखंड किस तरह से आगे बढ़ता है। और बड़ी खबर इसी इस समय की यही है, अनशन तुड़वा ने पहुंचे दो मंत्री दीपिका पांडे और इरफान अंसारी, दोनों ने छात्रों से बातचीत की है, छात्रों को समझाया है और उसके बाद अनशन को तुड़वाया है, अनशन तोड़ दिया है छात्रों ने। धन्यवाद। ये देखिए देवेंद्रनाथ महतो को समझाते हुए झारखंड सरकार के दोनों मंत्री यहाँ पर, ये दोनों मंत्री इन छात्रों को समझा रहे हैं। उधर छात्र जूस पी रहे हैं, जूस पीने के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। अनशन तोड़ने के बाद अभी कुछ देर पहले जब हमने एक छात्र नेता की आपको बात सुन रहे तो उस छात्र नेता ने न सिर्फ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को धन्यवाद दिया बल्कि मीडिया को भी धन्यवाद दिया। ये कहा कि हमारी आवाज उठाने के लिए

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको वो नई अगस्त क्रांति दिखाएंगे जो देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर उतर कर जेन जी और जेन अल्फा ने छेड़ दी है। जंतर मंतर से लेकर रांची, लखनऊ से लेकर जयपुर और धार, इन तमाम जगहों तक आज देश के हर कोने से आवाज आ रही है। इसके पीछे वजह है भविष्य के साथ खिलवाड़ और सिस्टम की गहरी नाकामी। एक तरफ एनटीए की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही, नीट विवाद के बाद इतना बड़ा बवाल हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन अब यूजीसी नेट के परीक्षा पत्रों में ऐसी हास्यास्पद और शर्मनाक गलतियां सामने आई हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर में शब्द ही पलट दिए गए थे और इसकी वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और खामियाजा छात्रों को दोबारा परीक्षा देकर भुगतना पड़ेगा। एक एग्जाम के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करते हैं हमारे बच्चे। एग्जाम कैंसिल, ये बहुत आसान है इनके लिए कह देना कि हम री एग्जाम करेंगे, लेकिन इसका अर्थ उन बच्चों की जिंदगी पर क्या होता है? वही मानसिक दबाव, वही मेहनत, वही पढ़ाई फिर से जुट जाना। दूसरी तरफ झारखंड, जहां जेपीएससी और जेएसएससी के धांधलियों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा उफान पर है। गुस्सा छोड़िए, वो तो नम्र भाव से खाना पीना त्याग कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर कह रहे हैं कि मान जाइए हुजूर, मान जाइए सरकार, पेपर रद्द कीजिए, नौकरियों की जो रेट लिस्ट चढ़ती है, जो धांधलियां होती हैं उसको खत्म कीजिए, सीबीआई से जांच कराइए, अपनी ही गलतियां अपनी ही सीआईडी से जांच कराने का ड्रामा क्यों कर रहे हैं, बस यही कह रहे हैं ये बच्चे। दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में सिस्टम की जो खामी है, शिक्षकों की कमी है, घटिया खाने के विरोध में छात्र स्कूल से निकलकर सड़कों थानों तक पहुंच रहे हैं। यानी अब देश की नई पीढ़ी सिस्टम के आगे झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने ठाना है कि सिस्टम को झुकना होगा, इस सिस्टम को बदलना होगा। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में जानबूझकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान हुआ, या फिर ये प्रोटोकॉल की चूक थी या कंफ्यूजन का नतीजा था। तो आज हम आपको बताएंगे द इनसाइड स्टोरी कि आखिर कैसे वंदे मातरम का पूरा गीत वहां पर बजा और क्या वाकई उसको लेकर नाराजगी थी और क्या कंफ्यूजन कहां पर था। बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में रुकावट डाली और राष्ट्रगीत का अपमान हुआ, वहीं कांग्रेस इसे गलतफहमी बता रही है। वो कह रही है कुर्सी मांगी जा रही थी। क्या वाकई ये कोई जानबूझकर किया गया काम था या फिर इनसाइड स्टोरी कुछ और है? आज आपको वंदे मातरम को लेकर नए निर्देश और कानूनी प्रावधान भी सरल भाषा में बताएंगे कि आखिर क्यों वंदे मातरम का पूरा गीत जब जब तिरंगा फहराया जाता है तब तब जन गण मन के पहले नहीं गाया जाएगा, तो कानूनन क्या हो सकता है ताकि अब कम से कम राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर किसी तरह का भ्रम किसी में ना रहे। और आखिर में आपको पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती दिखाएंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए बाकायदा भीख मत मांगो वाली चेतावनी जारी की है। पिछले कुछ समय में हजारों पाकिस्तानी भिखारियों को सऊदी से डिपोर्ट किया जा चुका है। उमरा और जियारत के नाम पर सऊदी जाने वाले तमाम पाकिस्तानी वहां ऐसे अनेकों थे जो भीख मांगना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से सऊदी अरब परेशान था। लेकिन आज सबसे पहले जरूरी यह है कि हम देश के उस जनरेशन की बात करें जो शिक्षा व्यवस्था, जो पूरे सिस्टम एक सुधारना चाहती है, वो बेहतर बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो हर दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन अफसोस, इन सब के बावजूद सिस्टम में कोई सुधार होता दिख तो नहीं रहा है। जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था के पूरे सिस्टम में सुधार लाने के लिए एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। 20 जून से शुरू हुआ यह धरना पूरे 36 दिनों तक चला। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद जाकर यह खत्म हुआ था। इस दौरान 20 जुलाई को तो प्रदर्शनकारी छात्रों को लाठियां तक खानी पड़ी थी, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय के आगे पूरा सिस्टम झुका। आखिरकार कुछ एक्शन होता नजर आया। धरना प्रदर्शन का मकसद था शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नीट पेपर लीक जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई, पेपर कैंसिल हुआ, री एग्जाम हुआ और उसके बाद से यहां तक कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक लिया गया। लेकिन आप सोचिए, नीट पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने से क्या सब कुछ बदल गया? देश की संसद में संशोधन लाकर एंटी पेपर लीक कानून को सख्त बनाया गया, क्या चीजें बदली?
देश के शिक्षा मंत्री को पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ा, क्या कुछ बदला? सिर्फ यही नहीं, इस परीक्षा को आयोजित करने वाली संस्था एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 लोगों को हटा दिया गया, कुछ बदला? इसके अलावा परीक्षा के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने की बात कही गई, पूरे परीक्षा सिस्टम को बदलने की बात की गई। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की, लेकिन इस कवायद का असर कितना हुआ? क्योंकि एनटीए में कोई सुधार हुआ नहीं है। एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली एक और परीक्षा में भयंकर खामियां सामने आई, जिसके बाद खुद ही एनटीए को उन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। खबर है कि यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षाएं अब दोबारा आयोजित होगी। मतलब बच्चों, एक बार तो एग्जाम दिया, पढ़ा आपने, हमने पेपर में चेक नहीं किया था, कुछ गलत गलत शब्द लिख दिए थे, कैंसिल एग्जाम, अब फिर से तैयारी कीजिए। इसके परीक्षा पत्र में कई तरह की खामियां थी, इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, परीक्षाएं अब दोबारा होंगी क्योंकि इनके परीक्षा पत्र में लिखे गए तथ्य गलत थे, टाइपिंग एरर्स, ट्रांसलेशन में खामियां थी, कई सवालों में ग्रामेटिकल एरर्स थे, समाजशास्त्र के परीक्षा पत्र में तो विद्वानों के नाम ही गलत लिख दिए गए थे, जैसे अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज रिट्जर की जगह पुत्जर लिखा हुआ था,

0: नहीं पूछे गए थे, और तो और कुछ सवाल तो परीक्षा पत्र में दो दो बार पूछ लिए गए थे। कमाल है, इन तीनों विषयों की परीक्षाएं जून में ही हो चुकी है। इंग्लिश की परीक्षा 25 जून, कॉमर्स की परीक्षा 24 जून, सोशियोलॉजी की परीक्षा 30 जून। अब इन परीक्षाओं के बाद छात्रों ने इसके परीक्षा पत्र में खामियों की शिकायतें की थी, जिसके बाद अब उन्हें दोबारा आयोजित करवाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स और पीएचडी की पात्रता के लिए की जाती है। अब आप सोचें कि जिस संस्था के 47 अधिकारियों को परीक्षा आयोजित करवाने में हुई लापरवाही की वजह से जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उस संस्था की एक और परीक्षा में लापरवाही बरती गई और अब डैमेज कंट्रोल के नाम पर दोबारा से परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। 22 जून से 30 जून में आयोजित हुई यूजीसी नेट के कुल 87 विषयों की परीक्षा में इस बार 7,96,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जिन तीन परीक्षाओं को रद्द किया गया है उनमें 1,57,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे, और अब इन सभी को एनटीए की लापरवाही का खामियाजा दोबारा परीक्षा देकर चुकाना होगा। अंग्रेजी और कॉमर्स, इनकी परीक्षा 9 सितंबर को, समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित होनी है। आप इसका अर्थ समझ रहे हैं, मतलब गलती करे एनटीए, खामियाजा भुगते बच्चे। कितना गुस्सा इन बच्चों में भरता है, वो भी इस उम्र में जब उनको लगता है कि चलो इतनी मेहनत के बाद एग्जाम खत्म हुआ, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा मानसिक तनाव से बच सकते हैं, तो अब फिर अगले महीने तक लगे रहिए। अब एनटीए का कहना है कि छात्रों से दोबारा परीक्षा के नाम पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी, बड़ी मेहरबानी, और ये कहते हुए वो नहीं सोच रहे हैं कि उनकी लापरवाहियों की वजह से परीक्षार्थी बार बार फीस क्यों चुकाएगा। दोबारा परीक्षा के लिए वो किस आधार पर अतिरिक्त फीस मांगेंगे? गलती आपकी, भरे कोई और, मानसिक तनाव झेले, फिर से मेहनत करे और फीस भी दे, और फीस नहीं ले रहे तो बड़ा एहसान। साल 2017 में एनटीए को यह सोचकर बनाया गया था कि यह संस्था देश की जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, उनको ट्रांसपेरेंट बनाएगी, पारदर्शी इस हद तक बनाएगी कि कोई खामियां नहीं होंगी, बड़े स्मूथ तरीके से एग्जाम्स होगा, प्रतिभावान बच्चे आगे बढ़ेंगे, बड़े अच्छे से एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करेगी, आयोजित करवाएगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एनटीए की ज्यादातर परीक्षाओं में गड़बड़ियां ही होती दिख रही हैं। पिछले 2 वर्षों के अंदर ही एनटीए की लापरवाही से 9 परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई। ये नहीं कहा जा सकता कि 9 में गड़बड़ियां हुई, लेकिन हमने इतने सारे ठीक से भी तो कराए। आपकी ये जिम्मेदारी है कि हर परीक्षा शत प्रतिशत सही हो, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। साल 2024 में 5 परीक्षाओं में खामियां, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाई गई थी, नीट यूजी की परीक्षाओं में बहुत सी गड़बड़ियां, स्थानीय स्तर पर पेपर लीक हुए, पेपर सही से नहीं बांटे गए, पेपर लीक के आरोप लगे, फिर कुछ परीक्षा केंद्रों पर दोबारा से परीक्षाएं की गई। ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा भी तय समय पर नहीं हुई और तकनीकी समस्या बताकर इसे आगे के लिए टाल दिया गया। CUET यूजी की परीक्षा, गड़बड़ियों के आरोपों की वजह से परिणाम जारी करने में देरी हुई। नीट PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तारीख भी पेपर लीक की खबरों के बीच पोस्टपोन कर दिया गया। इन गलतियों के बावजूद एनटीए ने सीख नहीं ली है और अगले साल फिर यही हाल था। जेई मेन्स 25 में आई है, जेई मेन्स की परीक्षाओं के 2 सेंटर्स पर तकनीकी समस्या आ गई थी। एक सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया जिसमें 114 परीक्षार्थी परेशान हुए, बाद में इनके लिए तारीख दी गई, न्यू डेट। इसी तरह से CUET यूजी की परीक्षा में भी तकनीकी समस्याएं आई थी जिससे कई परीक्षार्थी बहुत परेशान हुए। तब साल 2026 आई है, एनटीए ने नीट यूजी के पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षाएं करवाई, फिर अब यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षाएं दोबारा होंगी। सवाल यह है कि अब वक्त आ गया है कि अहम परीक्षाओं को आयोजित करवाने वाली इस संस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव हो। या तो इसे रद्द करिए, नई संस्था बनाइए, ऐसे लोगों को डालिए, जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दी जाए जिनकी जवाबदेही हो। अहम परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियां जो हो रही हैं, परीक्षा आयोजन के पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है, और हद तो यह है कि गलतियों के बावजूद एनटीए सीखने को तैयार नहीं है।
1: मैंने एग्जाम दिया, मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि JRF हो जाएगा इस बार इस अटेम्प्ट में, अब वो एग्जाम स्क्रैप कर दिया है, अब वो होप जो थी वो मर चुकी है, अब 24 दिन में मैं क्या ही कर लूंगा।
2: हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें, तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें

0: 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है। अभी नेक्स्ट मंथ में बहुत सारी स्टेट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, तो जिन बच्चों का नहीं हुआ या फिर जो इस एग्जाम का वेट कर रहे थे, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कैसे एग्जाम देंगे?
1: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। ये लोग हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी स्टार्टिंग से नहीं दे रहे थे, अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रहे थे। इस टाइम पे भी इस पर्टिकुलर ग्रेवियंस फॉर्म में हम लोग यही चीजें लिख कर लाए हैं कि आप लोग अगर करा रहे हो री एग्जाम, अकाउंटेबिलिटी लो, आप हमें कॉम्पेंसेट करो, आप लोग पीएचडी एडमिशन की गारंटी लो कि स्टूडेंट्स इम्पैक्ट नहीं होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज में इनका मौका नहीं जाएगा।
2: जंतर मंतर पर हुए जेन ज़ी आंदोलन को राहुल गांधी का पूरा समर्थन मिला था। उन पर हुए लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी ने खुद पीएम आवास के बाहर हंगामा वो प्रोटेस्ट करने भी पहुंचे थे। लेकिन पिछले काफी समय से राहुल गांधी से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ चल रहे जेन ज़ी पर सवाल पूछे गए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली, नौकरियों का बाकायदा रेट लिस्ट, 24 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सैकड़ों प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हैं। 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च करने के प्रयास में वो पुलिस की लाठियां खा चुके हैं। रात के अंधेरे में जब विधानसभा के बाहर थे तो बिजली काट कर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन इन सब के बावजूद इन छात्रों को लेकर अभी तक राहुल गांधी या झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या वहां पर जाकर छात्रों से खुद संवाद करने की कोशिशों की बात आई है या सीधा संवाद की, अभी तक नहीं आई है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने पहली बार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अब चिट्ठी लिखी है, अपील की है कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करें। ये चिट्ठी आपके सामने है। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को चिट्ठी में लिखा है कि छात्रों की मांगों और उसके लिए हो रहे धरना प्रदर्शन का वो समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से अपील की है कि वो व्यक्तिगत तौर पर प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले, उनके शिकायतों का समाधान करें। राहुल गांधी की यह चिट्ठी छात्रों के गुस्से का नतीजा हो सकती है। दरअसल जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को राहुल गांधी का खुला समर्थन था, लेकिन झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन में अभी तक उन्होंने खुलकर अपने विचार नहीं रखे थे। यही वजह है कि झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का पुतला दहन करके अपना गुस्सा जाहिर किया। और यह गुस्सा यूं ही नहीं है, दरअसल धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की सेहत बढ़ते दिन के साथ खराब होती जा रही है। देवेंद्रनाथ महतो समेत 5 छात्र इन लोगों को भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनमें से 3 की हालत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवेंद्रनाथ महतो, उनकी भी स्थिति ऐसी है, वो आईसीयू में है। धरना स्थल पर मौजूद भूख हड़ताल करने वाले प्रदर्शनकारियों की रेगुलर मेडिकल जांच हो रही है, लेकिन छात्र भूख हड़ताल खत्म करने पर राजी नहीं है। सोचिए, हमारे भी घरों में बच्चा है, कोई बच्चा क्या एक दिन पूरा भूखा रह लेगा आपके घर में? बहुत मुश्किल है ना। सोचिए, कई दिनों तक ये बच्चे भूखे सो रहे हैं, जग रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना छोड़ दिया इन्होंने, और इनकी समस्याओं के लिए किसी के पास टाइम नहीं है कि जो भी ये मांग रहे हो उसका एक हल निकाल। कोई चांद सितारा तो मांग नहीं रहे हैं ये, ना किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं, ये बस कह रहे हैं कि एग्जाम को आप रद्द कीजिए और सीबीआई की जांच कराइए, क्योंकि सीआईडी केंद्र राज्य सरकार के अधीन है, वो अपने ही सरकार की क्या जांच करेंगे। अब जिन छात्रों की तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाना पड़ा, उनमें से एक छात्रा उम्मे हबीबा का वीडियो अन्य प्रदर्शनकारियों को गुस्से से भर रहा है। देखिए,
3: मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना दिन जिंदा रहूंगी, मुझे नहीं पता कि मैं इस जंग को और कितने दिन तक झेल पाऊंगी, आखिर और कितने दिन लगेंगे इस जंग को जीतने में, पता नहीं। आप सारे देशवासियों से, झारखंड वासियों से, सारे अभ्यर्थियों से अपील है कि प्लीज आप हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हो जाएं, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सब आइए यहाँ।
4: राहुल जी ने हमसे वार्ता किए और जिस तौर पर बात किए, लेकिन वो केवल धोखा था। उन्होंने बोला कि छात्रों के साथ लाठियां जब चलाई, उन्होंने निंदा किया चेतन सरकार का, लेकिन वो निंदा दिल से नहीं था, और निंदा जो उसको ऊपर मंच कर रहे थे, और इससे हमको प्रतीत होता है कि फिर चाहे वो जेल में हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर छात्रों के साथ खेल कर रही है। लेकिन मैं बता दूं, हम सभी पढ़े लिखे छात्र हैं, आपकी राजनीति का आपके संयंत्र में हम लोग नहीं।
2: छात्रों की बिगड़ती सेहत मांगों से मुंह फेर कर बैठी झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो बार बार ये कहते हैं कि हमारे अधिकारी बात कर तो रहे हैं, हमने मंत्रियों का एक समूह बना तो दिया है, लेकिन इतने दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही है, इतने दिनों से हल नहीं हो पा रहा है। और आपने सुना उस बच्ची को क्या कह रही है, सिर्फ साथ मांग रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीएम का घेराव करने की अब बात की है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 20 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन का घेराव करने का ऐलान किया है। एक बार फिर JSSC JPSC की परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग करवाने की बात है। कुल मिलाकर देखिए, सीएम आवास का घेराव अगर ये बच्चे करते हैं तो इसी वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। इससे पहले विधानसभा तक गए थे, वहां पर आपने देखा इन नुकीली तारों का पूरा वहां पर एक लगभग दीवार बना दी गई थी। अब छात्र आंदोलनकारियों के गुस्से की एक वजह देवेंद्र नाथ महतो के साथ हुई बदसलूकी भी। एक तो वो बच्ची का वीडियो जो आपने देखा, ये वायरल हो रहा है और लोगों को बड़ा दुख लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ 15 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा मार्च का ऐलान किया। अब देवेंद्र नाथ महतो इस तिरंगा मार्च में शामिल होना चाहते थे, लेकिन देखिए सुरक्षा बलों ने करने नहीं दिया उन्हें ऐसा। इस दौरान सुरक्षा बलों और भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो के बीच जबरदस्त झड़प हुई, उनके साथ बदसलूकी हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सरकार की उदासीनता और छात्रों की बिगड़ती सेहत से झारखंड का माहौल इस वक्त आप समझिए काफी उफान पर है, काफी दहक रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
5: आपका जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं हो,
6: जो जी जान देने के लिए तैयार है
5: कि हम मर भी जाएंगे।
6: 15 दिन से भूखे प्यासे हैं, सदर अस्पताल में बैठे हैं,
7: हम बोल रहे ना नहीं ले जाएंगे, बोल रहे ना।
5: इसके बावजूद जो है कि हमको रोका जा रहा है, झंडा फहराने से रोका जा रहा है। ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है?
8: कि माननीय राहुल गांधी जी चिट्ठी लिखने से क्या होगा बताइए? अगर सच में आप स्टूडेंट के छात्र के हित में, आप खुल के सपोर्ट कीजिए ना, खुल के रांची या प्रयागराज दिल्ली जाकर सपोर्ट कीजिए। तो रांची आने में क्या है सर, आधे घंटे के रास्ते है, रांची क्यों नहीं आ रहा बताइए? अगर आपके यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, केस हुआ, या आप अपने आपने कांग्रेस आपकी गठबंधन की सरकार, आप अपने गठबंधन की सरकार को संभाल नहीं पा रहे सर, बताइए?
9: राहुल गांधी जो कि लगातार कांग्रेस के लिए छात्रों का समर्थन तो दिखा रहे हैं, लेकिन झारखंड की कांग्रेस छात्रों के ही सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और RJD के जो तेजस्वी प्रताप जो सुप्रीमो हैं, उनका पुतला दहन किया गया है।
10: राहुल गांधी जब दिल्ली में नीट का मामला आया था सर, स्टेज पे चढ़ के खूब चल रहे थे, खूब बात कर रहे थे सर वहाँ से, इसका मतलब तो यही है सर कि आप अगर यहाँ नहीं बोल रहे हैं तो आप अपना सत्ता का रोटी सिर्फ सेक रहे थे सर हमारे भविष्य के साथ।
11: हेमंत जी का पुतला फूका जा रहा है, राहुल जी का पुतला फूका जा रहा है, तेजस्वी जी का पुतला फूका जा रहा है, क्यों? क्योंकि छात्रों, हम सभी छात्रों का आक्रोश है कि हमारा जो मांग था वो मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। जो रद्द रिफॉर्म CBI जांच का था, CBI जांच से माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों हट रहे हैं?
12: मैं छिला लिया हूँ, शोक अदा कर रहा हूँ हमारे बड़े भाई राहुल और हेमंत जी के स्वागत में, और ये उनके शोक की थोक परिवार में सदस्य हो गया हूँ।
8: पुतला इसलिए दहन किया जा रहा है कि वो छात्रों की मांग नहीं सुन रहे हैं, और इतने दिनों तक जो हमारे छात्र इतनी बारिश में दिक्कत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा है।
13: आइए आपको बताते हैं झारखंड से छात्र आंदोलन पर ये सबसे बड़ी खबर। JSSC CGL की परीक्षाएं रद्द करने का जो आदेश दे दिया गया है उसकी वजह से छात्रों में खुशी है। CDPL के जरिए हुई परीक्षाएं और भर्तियां रद्द की गई हैं। और आइए आपको सुना देते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हमने जितने भी एग्जाम TDPL की तरफ से कराए गए थे, जिस एजेंसी को बैन किया गया है, जिसको चलाने वाले लोग इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उसके द्वारा कराए गए सभी एग्जाम हम रद्द कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा है हेमंत सोरेन ने और साथ ही देखिए छात्रों की जश्न मनाती तस्वीरें।
14: मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता, वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था, जैसे रिफॉर्म्स की बात थी ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए इसका पहले से ही SOP बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो SOP का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
15: जो ये बात है वार्ता हुई, लंबी बात बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि CGL एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पे हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि CGL का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा,
16: 11-13
15: हाँ सब होगा। मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम TDPL ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा।
16: अभी जश्न मनाने के लिए आप लोग जाएंगे?
15: जब हो गया, अब बच्चों का जो मांग था पूरा हो गया, अब वापस होना
16: मिलने जाएंगे।
15: अब चलिए ये सब बात चलिए, हो गया चलिए, हो गया चलिए चलिए, हाँ हाँ चलिए चलो जाएं।
16: सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे इस पर?
15: देखिए हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है थोड़ा 19-20 होता है। हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने बात को रखा, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि CGL एग्जाम है जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा, मान लिया। TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे।
16: तो छात्रों से बात कौन था यार, ये कौन था, समझ नहीं आ रहा एक बार।
13: तो बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ऐलान किया कि TDPL ने जितने एग्जाम्स कराए हैं वो सब रद्द किए जाएंगे। फिर इसी बात की पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को भी आप सुन रहे थे, सत्यजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। बच्चों की प्रमुख मांगों में ये शामिल था कि जो एग्जाम्स TDPL ने कराए थे उन एग्जाम्स को रद्द किया जाए, ये एक बड़ी मांग अब सरकार आखिरकार जाकर मानी है, भूख प्यास से बिलख इन बच्चों को देखते हुए। तो एक क्या अब इसके बाद समझौते की सूरत बनेगी सत्यजीत, या CBI जांच की मांग पर भी स्टूडेंट्स अभी बैठे रहेंगे, क्या समझ में आ रहा है?
17: देखिए बड़ी मांग उनकी पूरी हो गई है, JSSC CGL को कैंसिल करना चाहते थे, कैंसिल करवाने के लिए लगातार भूख हड़ताल पे बैठे थे। JPSC के एग्जाम्स जो है वो 14th प्रीलिम्स को वो रद्द करवाना चाहते थे, ये दोनों मांग मान ली गई है। TDPL द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाएं या फिर जिसका रिजल्ट उसने पब्लिकेशन किया है उसको उसको जो है रद्द करवाने की मांग थी उनकी, वो भी मांग ली मान ली गई है। और 2014 से लेकर अब तक जितने इम्तिहान आयोजित किए गए हैं उसका सीआईडी जांच होगा, तो ये मांगे मान ली गई है। और अब जो है कहीं ना कहीं उनकी जो है ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अब जो 2250 वैसे लोग जिनका जो है जिनका रिक्रूटमेंट हुआ था जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से, वो अभी मंत्रालय के बाहर खड़े हैं, जमकर हंगामा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि डबल बेंच के आदेश से उनकी नियुक्ति हुई थी, जेएसएससी सीजीएल के कैंसिल होने से अब उनकी नौकरियां जो है वो बिल्कुल चली गई है। तो जाहिर तौर पे अब देखना होगा ये कन्फ्रंटेशन की स्थिति होगी, सक्सेसफुल कैंडिडेट वर्सेस वैसे लोग।
18: इसका आंदोलन तो ये है कि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। अब ये बात मान लेने के बाद जिनकी नियुक्तियां हुई थी, अगर वो मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं वो इस वक्त खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं, तो एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी।
17: उन्होंने मानव श्रृंखला उन्होंने बनाया हुआ है, और जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से निकलता है वो नारेबाजी करते हैं, और अभी भी वो खड़े हैं। और कई मीडिया चैनल से भी उनकी नाराजगी है कि जिस तरह से लगातार वैसे स्टूडेंट्स जो जिन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार है इम्तिहान में और उसको लेकर वो लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे, जिसको प्रमुखता से जगह दी है अलग अलग चैनल्स ने, उसको लेकर भी उनकी नाराजगी साफ दिख रही थी कि एक तरफा दिखाया गया और जो है बातें उनकी नहीं सुनी गई। जबकि उनको कोर्ट ने ये कहा था कि जो उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो सब्सटेंशिएट नहीं हुए हैं, ये लाइन उन्होंने पढ़ के सुनाया है और इसको लेकर नाराजगी, और अभी उनकी नाराजगी दिख रही। जाहिर तौर पर स्वाभाविक भी है, अगर इसको एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका असर ये होगा कि उनकी नौकरियां जो है वो अब दांव पे लग गई है। अगर एग्जाम ही कैंसिल हो गया यानी कि अब उनकी नौकरी जाना तय माना जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस कि उनको अब लीगल कोर्स ना लें और उसके अलावा जो है कुछ रिस्पाइट जो है फिर से कोर्ट से ना मिले। तो ये अब देखना होगा, जो आपने कहा कि कन्फ्रंटेशन की स्थिति है, टकराहट की स्थिति है, सक्सेसफुल कैंडिडेट वर्सेज अनसक्सेसफुल जो जिन्होंने अभ्यर्थी थे यानी जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, तो दोनों के बीच इस तरह की स्थिति अब उभर कर सामने आई है।
18: अब ऐसे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, और क्या छात्र जो है जो अलग जगह से उनके सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं, तो क्या सीबीआई जांच वाली मांग को छात्र छोड़ देंगे?
17: देखिए ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, अब वो हो सकता है कि छात्र जो है वो इस बात को कंसीड कर लें कि सीआईडी जांच हो रही है, सीआईडी जो है लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, रेड कंडक्ट किया है, आज भी एक गिरफ्तारी हुई है, अजीता भट्टाचार्य जो जेपीएससी की सदस्य थी उनके पीए को गिरफ्तार किया गया है, फिर 2014 से तमाम एग्जाम्स को जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा सीआईडी के द्वारा। लेकिन जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल का उनका मेजर डिमांड था वो मान लिया गया है, उसी के लिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उसमें गड़बड़ियां थी उसके लेकर सीबीआई जांच, जब उस एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया है तो अब ऐसा लगता है कि छात्र जो है वो कहीं ना कहीं वो भी अब टर्म्स एंड कंडीशन पे आएंगे, टर्म्स पे आएंगे और सरकार के साथ उनका डायलॉग होगा, और अब ये जो लगातार एजिटेशन पिछले 24 दिनों से चला आ रहा था वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा, लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा। अंजना
18: पहले तो देखिए सरकार ने एग्जाम कैंसिल कर दिए है क्या इस पर, और अनुरोध रहेगा क्योंकि हम बच्चों की हालत आपकी हालत सबकी देख रहे हैं, आप लोगों की हालत इतनी खराब है, कम से कम आप अनशन को तो तोड़ने का वक्त आ गया, क्या माने?
19: जी बिल्कुल अंजना मैम, सबसे पहले तो जिस प्रोटेस्ट को आप लोग शुरुआत से पूरा देश और दुनिया तक पहुंचाए और हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी छात्र अभिभावक मीडिया पुलिस प्रशासन तो जो भी गणमान्य लोग इस प्रोटेस्ट में सहयोग किए सबको मेरी ओर से धन्यवाद है, आभार है, और विशेष रूप से झारखंड सरकार को जो 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से मिले और 21 जुलाई से जांच शुरू हुई और लगातार जांच के माध्यम से ही करप्शन दुनिया के सामने परत दर परत निकलते गई, इसलिए झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद। लेकिन अनशन तो अब तोड़ूंगा, लेकिन संघर्ष मेरा जो है एक और जारी रहेगा। मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ, क्योंकि मैं कई बार अपने आंखों से कई एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है। यही सीजीएल जो आज रद्द हुई, 29 जनवरी 2024 को भी मैंने रद्द कराया था आंदोलन स्थल से ही, जैसे कि कार्यालय के समक्ष, लेकिन वही सीजीएल रद्द होने के बाद दोबारा हुई तो फिर पेपर लीक हुआ। तो मैं कई एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है, कई एग्जाम पर सीआईडी जांच होते हुए देखा है, सीबीआई जांच होते हुए देखा है, बस गिने चुने स्टूडेंट को ही न्याय मिल पाता है इस समय। लेकिन मैं एक ऐसा सिस्टम चाहता हूँ जो सरकार मुझे गारंटी दे कि आने वाले समय पर और दोबारा पेपर लीक ना हो। सरकार मुझे गारंटी दे ऐसा सिस्टम बना करके कि आने वाले दिनों पर ना धांधली हो, ना सर्विस से नौकरी हो, ना ही पेपर लीक हो। और ऐसा सिस्टम और ऐसा कानून बने, और अगर इस सिस्टम बनने के बावजूद अगर कोई हिम्मत करता है पेपर लीक करने का, तो छात्र और पेपर लीक करने वाले दोनों का आजीवन कारावास हो, और ये झारखंड का एजुकेशन सिस्टम पूरे भारत के लिए और दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो। इसके लिए मैं आगे संघर्ष को अपना जारी रखूंगा।
13: है आपका मकसद भी बहुत बड़ा है, लेकिन इतने दिनों से अनशन कर रहे हैं, अनशन तो खत्म कर लीजिए।
19: जी, अनशन को आज मैं करूंगा, अनशन को जरूर खत्म करूंगा, लेकिन संघर्ष मेरा रिफॉर्म तक जारी रहेगी। और एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम गारंटी चाहिए कि और पेपर लीक ना हो, क्योंकि और बहुत देश में पेपर लीक नहीं होता है। देखिए, पेपर लीक फिर हुआ है अभी कुछ पीएचडी का एग्जाम पर, अभी दिल्ली जंतर मंतर में भी कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शायद हमको ऐसा भी कुछ खबर आई थी। तो ये पेपर लीक पूरा मैंने एकदम जड़ से खत्म होना चाहिए। दोबारा और पेपर लीक को लेकर के और कोई माँ का बच्चा को मेरा जैसा कुर्बानी देना ना पड़े। जो बच्चा अभी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहे हैं, जो सत्रह पढ़ रहे हैं या मैट्रिक इंटर में पढ़ रहे हैं, जो बच्चा आने वाला दिन पर प्रतियोगी परीक्षा को फेस करेंगे, वो बच्चा को कुर्बानी देना ना पड़े, ऐसा सिस्टम बहुत जरूरी है। हेलो,
20: आईडी जांच कराए, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट को सिर्फ एक अवसर मिलता है, उसका भी समय वापस नहीं आता है। लेकिन मेरा इच्छा है जो अभी पहला दूसरा क्लास में है, जो अभी सातवां आठवां मैट्रिक इंटर में जो है, वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी, उनको ये कुर्बानी ना देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे, ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है।
2: देश में इस वक्त परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर ही हंगामा चल रहा है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ के हालात देश के लोगों के सामने आए। कम से कम राजस्थान सरकार के एक नोटिफिकेशन से तो यही संदेश आ रहा है। तो झारखंड के बाद पहुंचे राजस्थान, जहां की भजन लाल सरकार ने स्कूल्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इस गाइडलाइन में कहा गया है कि अब से राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल का कोई भी फोटो या वीडियो नहीं बनाएगा। तो हुजूर ने फरमान जारी किया है। गाइडलाइन में लिखा है कि सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री, फोटो, वीडियो बनाना प्रतिबंधित होगा। इसके लिए प्रिंसिपल से लिखित अनुमति लेनी होगी। ये भी नियम बना दिया गया कि बाहर से आने वाला व्यक्ति क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, छात्रों से जुड़े दूसरे हिस्सों में नहीं जाएगा। छात्रों और शिक्षकों की फोटो, वीडियो, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी लिखित अनुमति लेनी होगी। सरकारी अधिकारियों को छूट दी गई है। राजस्थान सरकार का कहना है कि नियमों का मकसद बच्चों की सुरक्षा, उनकी निजता को बनाए रखना है, लेकिन आरोप है कि इसकी आड़ में वो अपनी खामियां छिपा रहे हैं। आरोप है कि इसकी आड़ में वो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी पर्देदारी कर रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों की बदहाली, कहीं पर उल्टे पंखे और जो गंदगी, जो हालत आप देख रहे हैं, इस सबको छिपाने के लिए ये गाइडलाइंस लेकर आई है सरकार, ताकि स्कूलों के अंदर फैली अव्यवस्था, खामियां किसी के सामने ना आ पाए। सरकारों को भी ये भी मालूम है कि जब कोई व्यक्ति लिखित अनुमति लेने की बात करेगा तो इस बीच खामियों को छिपाने का वक्त मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का गाइडलाइन कामयाब कैसे होगा जब राजस्थान के जैन अल्फा खुद ही सरकारी स्कूलों की जो अव्यवस्था है उसका भंडाफोड़ करेंगे। अभी हाल ही में अलवर के जोधावास गांव सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में स्कूली छात्र अधिकारियों के सामने धरना प्रदर्शन करके मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। स्कूल की हालत देखिए, स्कूल के सामने प्रदर्शन हो रहा है जिस उसकी इमारत काफी जर्जर है। देखिए छात्रों की शिकायत थी कि स्कूल में केवल दो कमरे हैं, बारिश में इनकी छत टपकती है, इसके अलावा स्कूल में ना पूरे शिक्षक है, ना खेल का मैदान है, ना शौचालय है। गुस्से में इन छात्रों ने अधिकारियों से पूछ लिया था कि अगर उनके बच्चे यहां पढ़ते तो क्या यही सुविधा देते वो उनको। सुनिए।

0: चार साल हो गए खाते हुए। कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
1: सही बात।
0: अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या?
2: सारी चीज ऊपर दबाव डालती हूँ। हमारी सहपाठी है जो उधर से नदी क्रॉस करके आते हैं। हमारे यहाँ तीन कप है, उनमें भी पानी के पक्का है। बच्चे क्या बच्चे बारिश आए तो बैठे कैसे?
3: भी खाली है, प्रिंसिपल सी अब प्रिंसिपल सीटें भी खाली है। खेल मैदान जिस मैदान में बच्चे
4: और अब बाड़मेर का ये स्कूल देखिए। स्कूल की इमारत के नाम पर एक झोपड़ा है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग के लिए तस्वीरें शर्मनाक हैं। 2022 में ये स्कूल शुरू हुआ था। एक शिक्षक है, करीब 25 बच्चे और झोपड़ी है। सरकारी स्कूलों का सच छिपाने वाली गाइडलाइंस के बजाय अगर सरकार कह रही है कि भाई वीडियो मत बनाओ। देखिए,

0: जाते हैं प्रतापगढ़ का तिरपाल वाला स्कूल। प्रतापगढ़ की तस्वीरें चला दीजिए। ये तिरपाल में देखिए इस तरह से स्कूल चल रहा है। क्या ये तमाम मंत्री, ये बड़े बड़े अधिकारी, ये मुख्यमंत्री अपने बच्चों को ऐसे तिरपाल वाले स्कूल में भेजेंगे? तो अब प्रतापगढ़ के स्कूल की हालत देखिए, जहां पर ये छोटे बच्चे इस तरह से पढ़ने को मजबूर है। यहां के बाद आपको लिए चलते हैं जयपुर। जयपुर में महात्मा गांधी स्कूल, जर्जर इमारत है इसकी। डर के मारे कहते हैं बच्चे की छत कभी भी गिर सकती है। हालत यह है कि बच्चों को क्लासरूम के बजाय बरामदे में पढ़ाया जा रहा है। और तो और जब हमारी टीम पहुंची तो सरकारी गाइडलाइंस का हवाला देकर कहा गया कि नहीं नहीं, वीडियो नहीं बनाना है। देखिए,
1: इधर आइए सर, आप इधर आइए प्लीज। हाँ। प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे।
2: क्या क्या आदेश है?
3: आइए सर।
2: क्या आदेश है?
1: अभी बिना अनुमति के अभी सभी की बैन कर रखा है, अभी है ना, मीडिया पर्सन बैन है। प्लीज सर।

0: इस बात से शायद ही कोई नेता मंत्री छात्र इनकार करेगा कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, प्रति छात्रा छात्र शिक्षकों की संख्या अच्छी हो, अच्छे क्लासरूम हो, मैदान हो, खाना पीना अच्छा हो, लाइब्रेरी हो, लैब हो, शौचालय साफ हो। लेकिन अक्सर ये बातें ख्याली पुलाव हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कई रिपोर्ट्स आती हैं जहां स्कूल्स का बुरा हाल है। इसका ऐलान जेन अल्फा जो है वो खुद सड़कों पर उतर कर कर रहा है। तो लखनऊ की ये तस्वीर देखिए, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, छात्राओं ने स्कूल की बदहाली और व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर जाम लगाया। तेज बारिश के बीच करीब 100 से ज्यादा छात्र लगे रहे, डटे रहे और उन्होंने स्कूल की हालत के खिलाफ नारेबाजी की। छात्राओं की शिकायत है कि स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई नहीं हो पा रही। देखिए, इधर कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने भी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव की शिकायत लेकर धरना दिया है। छात्रों ने खुद को एक क्लासरूम में बंद कर लिया, फिर अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें रखी। कई घंटे तक समझाने बुझाने के बाद ही ये छात्र शांत हुए और निकलने को तैयार हुए। फिर मध्य प्रदेश का धार, सरकारी बोर्डिंग स्कूल के हालात इतने खराब है कि कल रात 40 स्कूली छात्राएं खिड़की से कूदकर स्कूल की शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इन छात्राओं की शिकायत है कि 50 बेड के हॉस्टल में 140 छात्राओं को मजबूर कर दिया गया रहने के लिए। इससे पहले हमने आपको दिखाया था ना गढ़चिरौली का, महाराष्ट्र का, यहां पर बेड नहीं था, बच्चियां जमीन पर सोने को मजबूर थी, सांप ने काटा, 3 की मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान का मामला इस समय देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस मुख्यालय से जो वीडियो सामने आया उसे लेकर बीजेपी जानबूझकर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस इसे अपनी सफाई और पुराने इतिहास के जरिए डिफेंड करने में जुटी है। अब यह विवाद कानूनी कार्रवाई और FIR तक पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा में कहा और जनसभा के ही दौरान कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को वंदे मातरम रोकने को कहा। गृहमंत्री ने आरोप लगाया, सीधा आरोप, कि 15 अगस्त को कांग्रेस ने वंदे मातरम के अपमान का पाप किया है।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
0: अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। ये विवाद कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित किए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम का है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। ये वीडियो कांग्रेस और राहुल गांधी के आधिकारिक YouTube चैनल्स पर भी उपलब्ध है। पहले वो हिस्सा देखिए वीडियो का। हालांकि हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन जो हिस्से पर विवाद हो रहा है वो देखिए।

कार्यक्रम के दौरान जब वंदे मातरम का गायन चल रहा था, तभी मंच पर एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई। वंदे मातरम के बीच में ही सोनिया गांधी कुछ कहती नजर आईं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से कुछ बात करते नजर आए और इसके साथ ही राहुल गांधी ने पास खड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता से कुछ कहा, जिसके बाद उस कार्यकर्ता ने खड़गे से बात की। सोनिया गांधी भी उस कार्यकर्ता से बातचीत करती हुई दिखाई दी। इस पूरी बातचीत के दौरान वो कार्यकर्ता अपने स्थान पर आगे पीछे चलता रहा, जबकि बैकग्राउंड में वंदे मातरम का गायन लगातार जारी रहा। अब बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन में रुकावट डाली, राष्ट्रगीत का अपमान किया। बीजेपी ने एक दूसरा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि राहुल गांधी वंदे मातरम के किसी खास वर्जन को लेकर चर्चा कर रहे थे। देखिए, जो तस्वीरों में दिख रहा है, बीजेपी जो आरोप लगा रही है और कांग्रेस जो सफाई दे रही है, इससे इतर आपको इस पूरे विवाद के पीछे की कहानी बताते हैं, इनसाइड स्टोरी। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी सामने रखी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई, क्या ये जानबूझकर किया गया या फिर कहानी कुछ और है। तो सुनिए, जो जानकारी हमारी सहयोगी मौसमी सिंह को सूत्रों से मिली, आजादी के दिन हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रोटोकॉल की कमी के चलते उनको असहज होना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत के गायन और उसके नियमों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेताओं को पहले से इस बात की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दूसरे नेता नाराज बताए जा रहे हैं। अब कांग्रेस के ही सोर्सेस जो है वो बता रहे हैं कि कार्यक्रम में जो कुछ भी हुआ वो मुख्य रूप से प्रोटोकॉल, जिम्मेदार अधिकारियों के बीच खराब तालमेल और आपसी बातचीत की कमी का नतीजा था। कार्यक्रम से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय के बीच इस बात पर चर्चा भी हुई थी कि राष्ट्रगीत पूरा गाया जाना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर पहले ही नियम पास हो चुका है। हालांकि ये महत्वपूर्ण जानकारी पार्टी के तीन सबसे बड़े नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक नहीं पहुंचाई गई, जिससे वो कार्यक्रम के दौरान इस बात से पूरी तरह अनजान बताए गए। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम की रिहर्सल के बाद भी बड़ी चूक हो गई। कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले इसकी रिहर्सल भी की गई, लेकिन कार्यक्रम के क्रम में हुए बदलावों की सही जानकारी बड़े नेताओं को समय पर नहीं दी गई थी। इंदिरा भवन में ऐसे कार्यक्रमों के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी मनीष चतरत की है। जब यह विवाद हुआ तब भी मनीष चतरत बैकग्राउंड में ही नजर आ रहे थे। पार्टी मामलों की देखरेख करने वाले कोषाध्यक्ष अजय माकन राहुल गांधी के पास खड़े थे, लेकिन संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल उस दिन केरलम में मौजूद थे, वो दिल्ली में नहीं थे। जब सोनिया गांधी ने इशारा किया कि वंदे मातरम का तीसरा पद भी गाया जा रहा है, तब सेवा दल की तरफ से ये गाया जाता है। सेवा दल के जो पूर्व अध्यक्ष लालजी देसाई के बीच इस दौरान बातचीत होती हुई देखी गई। इसी कंफ्यूजन की वजह से सोनिया गांधी के इशारे के बाद पार्टी के भीतर और बाहर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोगों का मानना है कि अगर इस मामले पर पहले शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा हो जाती तो इस तरह की एक अजीब स्थिति जो है वो नहीं पैदा होती और गैर जरूरी विवाद भी नहीं होता। कांग्रेस नेताओं ने सफाई दी कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र और लगातार काफी देर तक खड़े रहने की वजह से उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कुर्सी की मांग सोनिया गांधी कर रही थी। अब बीजेपी ने सफाई को खारिज करते हुए कहा है कि अगर कुर्सी मंगाई गई थी तो क्यों मंच पर कोई कुर्सी नहीं लाई गई। इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराने के बाद करीब 25 मिनट तक लंबा भाषण दिया। उससे पहले वो वंदे मातरम के बाद हुए झंडा गान के दौरान भी खड़े रहे, लेकिन इस दौरान कोई कुर्सी नहीं लगाई गई। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मौका ओटीपी की तरह आता है, वक्त पर इस्तेमाल ना किया तो इनवैलिड हो जाता है। नमस्कार।

0: रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि कैबिनेट ने जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 2014 में हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी की लहर है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने यह कहा कि वो आंदोलन तोड़ देंगे, लेकिन संघर्ष उनका ऐसे ही जारी रहेगा।
1: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
2: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था उसका,
1: देखिए अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे।
2: कितना संतुष्ट है अभी तक घोषणा?
1: अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए।
3: बीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
4: वार्ता हुई, लंबी बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि सीजीएल एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पर हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा,
5: 11-13
4: हाँ सब होगा। मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम टीडीपीएल ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा। देखिए हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है थोड़ा 19-20 होता है। हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने बात को रखा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सीजीएल एग्जाम में है जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा, मान लिया। टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे।
0: नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और खुद एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। इतने भी एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल पा रही हैं। नीट पेपर लीक के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा से परीक्षा कराने का ऐलान किया गया है।
6: तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया,
7: तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा।
6: आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, एनटीए को बंद करना पड़ेगा।
8: 24 में नीट का पेपर लीक होता है
5: उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, 2026 में नीट का फिर से पेपर लीक होता है।
8: एकदम से आप दो महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ किस बेसिस पे कर रहे हो।
9: एनटीए फिर हो गया फेल, अब की बार यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी। एनटीए के खिलाफ फिर फूटा गुस्सा, एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम हो रही है एजेंसी? एनटीए पर फिर उठे सवाल। एनटीए पर पिछली परीक्षा के सवाल, नई परीक्षा में रिपीट करने के आरोप।
10: एनटीए को बैन करो।
9: क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही? आखिर खोट कहाँ है? ये तस्वीरें दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुख्यालय की हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
6: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
9: एनटीए के पुराने दाग अभी धुले भी नहीं है कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो रहा है। जी हाँ, नीट पेपर लीक, उसके चलते 21 छात्रों के सुसाइड के खिलाफ जंतर मंतर पर पूरे 36 दिन कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में आंदोलन चला। छात्रों ने लाठियां खाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन रुकता है। और अब भी नीट यूजी पेपर लीक मामले में इस समय सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अगस्त 2026 से ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालती सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर एक बार एनटीए फेल हो गया है। जी हाँ, एनटीए ने फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका खामियाजा आदित्य सिमरन जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप पूछेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 से ज्यादा अधिकारी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद बदले गए, वो एनटीए सिर्फ भांग खाकर पेपर नहीं सेट कर रहा, बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कैसे, सुनिए। यूजीसी नेट जून 2026 को इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थी, समाजशास्त्रियों और अवधारणाओं का गलत नाम लिखा था, अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था, कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ प्रसारित होने का दावा भी किया गया था, हालांकि एनटीए ने लीक के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था, 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। एनटीए कहता है कि इन सब की वजह से अब 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे। लेकिन 2 महीने तक सन्नाटा खींचे रहे एनटीए को लेकर युवा नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ये ठगी है।
11: कितनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं, और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
8: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट दो महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। मैम यहाँ पे बहुत बार आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम। सो वी आर होपिंग कि आंसर की आएगी, बट एकदम से आप दो महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज कि टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
10: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर वन भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
9: अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे, लेकिन इतने सबसे क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई होगी। चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके छात्र पीएचडी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करेंगे, उस परीक्षा के पेपर में न अनुवाद सही है न व्याकरण। यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में दो महीने का वक्त क्यों लग गया, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है।
11: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। आपने प्रोविजनल आंसर के लिए जो एक हफ्ते में आती है उसके लिए आपने 30 दिन और लिए हैं। 30 दिन के बाद आपने फिर कमेटी बिठाई है, 4 घंटे में आप डिसीजन ले रहे हो इतने मेजर एग्जामिनेशन का।
9: एनटीए कहता है कि यूजीसी नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था। एनटीए ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बाद एक समिति बनाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बन जा रहा है? इन गलतियों को पहले देखने वाला कोई नहीं था।
12: ये गलती जानने के बाद, मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने एनटीए को लग गए। तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हों जो एनटीए ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स, या जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा, ऐसी और भी गलतियां होंगी।
9: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर ये तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद एनटीए की तरफ से उठाए गए कदमों, खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनटीए में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट के 3 पेपर भी एनटीए ढंग से क्यों नहीं बना पाया। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आईटी सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अमित मालवीय 2015 से आईटी सेल के प्रमुख थे, उनकी जगह दीपक महस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
13: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं।
14: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी।
15: यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे?
14: देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
13: मैस्के की सहायता सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को नियुक्त किया गया, लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिए। इसके चलते आम यूजर्स को उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखने बंद हो गए। हालांकि नए कन्वीनर दीपक मैस्के और को कन्वीनर अरुण यादव के एक्स अकाउंट्स सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रीति गांधी लंबे समय से सोशल

0: फिलहाल प्रीति गांधी या आलोक भट्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनके एक्स अकाउंट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे, इसलिए इसकी वजह को लेकर कोई पक्की बात कहना सही नहीं होगा। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुराने पोस्ट की समीक्षा एक संभावित वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहले किए गए किसी निजी बयान को पार्टी की आधिकारिक राय समझे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में पुराने कंटेंट की जांच के दौरान अकाउंट की पहुंच सीमित करना एक तरीका हो सकता है। नई भूमिका के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का संदेश भी अधिक व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत होती है। निजी पोस्ट और पार्टी के आधिकारिक रूप के बीच अंतर साफ रहे, इसके लिए भी अकाउंट की सार्वजनिक पहुंच बदली जा सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के तुरंत बाद इन अकाउंट्स में बदलाव हुआ। इसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए दिमागी नक्सल वर्ग से सावधान रहने की नसीहत दी थी। पीएम ने खास तौर से युवा पीढ़ी को ऐसे वर्ग से बचाने की बात कही थी। इसे लेकर पहले तो जेंजी आंदोलन का चेहरा बने सीजेपी ने एतराज जताया और उसके बाद फिर अचानक पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताकर गर्व किया।
2: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
3: दिमागी नक्सली।
4: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कही, लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी।
3: दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सली,
5: दिमागी नक्सली,
6: दिमागी नक्सल,
7: दिमागी नक्सल,
5: दिमागी नक्सल।
2: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
4: पीएम मोदी का इतना कहना था कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था और उनकी प्रतिक्रिया तीखी हैरतअंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। चिदम्बरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही तो कभी विपक्ष को अरब नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। रही सही कसर पीएम के बयान के अगले हिस्से में की गई टिप्पणी ने पूरी कर दी थी, जिसमें विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल का कनेक्शन युवाओं से जोड़ दिया।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
4: दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के सौरव दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदम्बरम से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
8: 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकल कर सामने आ गया।
9: प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की कि संविधान को ना मानने वाले, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीचे कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
8: चिदम्बरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, उसको कहने में अतिशयोक्ति

0: नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है।
1: लाल किले से दिमागी नक्सली का जिक्र करने के पीछे सरकार एक तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की कामयाबी का जिक्र करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ शहरों कस्बों में पैठ बना चुकी वामपंथी विचारधारा के खतरे को अंडरलाइन कर रही थी, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2004 में वामपंथी उग्रवाद के अर्बन पर्सपेक्टिव आवर वर्क इन अर्बन एरियाज और 2013 की स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम से दो खुफिया दस्तावेज में जो खुलासे हुए थे वो संवैधानिक हिंदुस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ब्लूप्रिंट थे। इन दस्तावेज में तीन प्लान था। पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना, दूसरा था सभी शोषित पीड़ितों को एकजुट करना और तीसरा था PLGA और PLA के सशस्त्र विद्रोह में मदद के लिए गुप्त लोगों की घुसपैठ कराना। हालांकि पिछले 20 साल में भारत से सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन इत्तफाक है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सियासी मुद्दे वंचितों, शोषितों और युवाओं के समसामयिक मुद्दों से मेल खाते हैं और इनका समर्थन करने वालों पर सियासी हमले होते हैं। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि दिमागी नक्सली सिर्फ वही हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में CJP के आंदोलन की बुनियाद जिस तरह पड़ी और अप्रत्याशित रूप से हुकूमत पर जनता का दबाव बना, उसमें सरकार के दिमाग की बत्ती ने खतरे का अलार्म बजाया है कि बिना किसी राजनीतिक बुनियाद और समर्थन के अगर एक आंदोलन मंत्री के इस्तीफे को मजबूर कर सकता है तो इसके पीछे की ताकत मामूली नहीं। और सरकार को आशंका है कि वर्षों से रोडमैप बनाकर काम कर रही वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ऐसे आंदोलनों के पीछे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।
2: 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ कर दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
3: वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर रहे कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राजस्थान में अमित शाह ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोला, तो आज दिन की शुरुआत ही बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद से की है।
0: ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सरतन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है।
4: तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है।
5: सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जैन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है।
6: पहले से वंदे मातरम का अपमान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, सब चीज का, राष्ट्रीय प्रतीक, अदालत, सबका कांग्रेस बार बार अपमान किया है केवल राजनीतिक हित के कारण।
3: हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी, इसलिए पलटवार की कोशिश शुरू हुई।
7: हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है।
3: इमरान मसूद तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका धर्म वंदे मातरम पढ़ने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे।
7: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा।
3: कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते, इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
8: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है।
3: तो वंदे मातरम पर विवाद थमने के बजाय गहराता जा रहा है। आज तक ब्यौरा।
2: ईरान की सेना ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने वालों को इनाम दिया जाएगा। ईरानी सेना ने यह भी कहा है कि अगर ये काम कोई महिला करती है तो इनाम की राशि हो जाएगी दोगुनी। आपको बता दें, किसी बीच ट्रंप ने भी ओमान पर बमबारी की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर ओमान हॉर्मुज में ईरान के जहाजों की नाकेबंदी में रुकावट डालता है तो वो बॉम्ब गिराएंगे।

0: ईरान का ऐलान, अमेरिकी सैनिकों को मारो और $30,000 पाओ। मुश्तबा का नया प्लान, अमेरिकी सैनिकों पर कहर बरपाएगा ईरान। हुर्मुज पर ट्रंप की धमकी, ईरान की लंबी लड़ाई वाली तैयारी। ईरान की फौज में फेरबदल के पीछे मुश्तबा की असली रणनीति क्या है? ट्रंप ने ओमान पर बमबारी की धमकी दी, ईरान ने कमर कस ली। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान पर बमबारी की बात कहकर पूरी दुनिया को चौंकाया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी सैनिकों को मारो और $30,000 ले जाओ। ईरानी सेना ने यह भी कहा है कि अगर कोई महिला अमेरिकी सैनिकों को मारती है तो इनाम की रकम दोगुनी यानी $60,000 कर दी जाएगी। इस ऐलान ने इस बात को लेकर ध्यान खींचा है कि क्या अमेरिका का ईरान में जमीनी हमले का कोई सीक्रेट प्लान है, जिसके लिए हाफी ने देश को यह संदेश दिया है।
1: हर किसी, हर रजमंदे अजीजी एक अमरीकाई रो بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل $30,000 است، حدود 5 میلیون.
0: ایران کی سرکاری سماچار ایجنسی ایرنا کی ایک رپورٹ کے انوسار دیش کے سینا پرمکھ امیر ہاتمی نے کہا ہے کہ امریکی سینکوں پر ایران گھوشت کرنے کی یہ یوجنا وتیہ سہایتا میں بھاگ لینے کے لیے بڑی سنکھیا میں آئے انوروھوں کے بعد تیار کی گئی۔ ہاتمی نے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی کہ امریکی سینکوں کو مارنے یا پکڑنے کا کام کہاں یا کب ہونے کی سمبھاونا ہے۔ ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब 17 जून को हस्ताक्षरित अमेरिका ईरान के इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के तहत 60 दिन की समय सीमा नजदीक आ रही है। इस समझौते के तहत ईरान और अमेरिका 28 फरवरी से 40 दिनों तक चली लड़ाई के बाद एक अस्थायी युद्ध विराम और स्थायी समाधान के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए थे, लेकिन इस समझौते के बावजूद दोनों देशों में पूरी तरह से युद्ध विराम कभी नहीं हो पाया और न ही बातचीत में कोई प्रगति हुई। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान पर बमबारी की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ओमान हुर्मुज जलडब्रू बंध में ईरान के जहाजों की नाकेबंदी में रुकावट डालता है तो वो बम गिरा देंगे। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ओमान रुकावट डालता है तो हम उन पर जबरदस्त बमबारी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि नाकेबंदी से ईरान पर दबाव बन रहा है और उनके पास इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने साफ किया कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों ही देश लंबी लड़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं? और हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने ईरान की सेना और IRGC में जो बड़ा फेरबदल किया उसकी वजह यही है। मेजर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। ये गुरिल्ला युद्ध और कुछ स्पोर्ट्स के पुराने अनुभवों के साथ ईरान के सबसे घातक रणनीतिकार माने जाते हैं। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को चीफ ऑफ स्टाफ आर्म्ड फोर्सेस बनाया गया है। ये ईरान की पारंपरिक सेना और IRGC के संयुक्त ऑपरेशंस के बीच पूर्ण सैन्य तालमेल बिठाने में माहिर हैं। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी अब आर्म्ड फोर्सेस यानी ईरान की सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं। सेना की ग्राउंड फोर्सेस के प्रमुख के रूप में इन्होंने जमीनी सीमाओं की अभेद सुरक्षा और आधुनिक युद्ध तकनीकों को मजबूत किया है। रियर एडमिरल अली अजमाई अब कमांडर IRGC नौसेना है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्ध पोतों को रोकने के लिए एसिमेट्रिक नेवल वॉरफेयर और फास्ट अटैक बोट्स के संचालन में ये बेहद आक्रामक है। हुसैन तायब अब बसीज फोर्स के मुखिया हैं। वो IRGC की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख होने के नाते इनके आंतरिक सुरक्षा और जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने का अचूक अनुभव रखते हैं। मेजर जनरल मुस्तफा इजादी, डिप्टी कमांडर इन चीफ IRGC, ईरान इराक युद्ध के इस अनुभवी जनरल के पास साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणालियों को लीड करने का आधुनिक अनुभव है। ईरान के साथ युद्ध अमेरिकी सेना के लिए एक महंगा ऑपरेशन साबित हो रहा है। ईरान के साथ जंग ने अमेरिकी सेना को कम से कम 45 महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन का नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध शुरू होने से पहले उसके कुल 185 रीपर ड्रोन थे। ये संख्या अमेरिकी ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। इस ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिकी सेंट्रल कमांड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अहम शिपिंग रूट के आसपास बड़े पैमाने पर कर रही है। MQ-9 रीपर एक महंगा अमेरिकी ड्रोन है जिसका इस्तेमाल निगरानी और टारगेटेड हमलों के लिए किया जाता है। खास बात है कि भारत ने भी अमेरिका से ये ड्रोन खरीदे हैं। अखबार ने दावा किया कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कुल खोए रीपर ड्रोन की कीमत $1.3 अरब से ज्यादा हो सकती है। इसके सेंसर और हथियारों के आधार पर हर एयरक्राफ्ट की कीमत $3 करोड़ से $5 करोड़ के बीच हो सकती है। ये खुलासा उस वक्त हुआ है जब ट्रंप दावा कर रहे थे कि अमेरिकी सेना ईरान को घुटनों के बल ले आई है। ना तो अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ने की ताकत ईरान के पास बची है और न ही IRGC अब युद्ध लड़ने के लायक बची है। हर कोई हमारी नौसैनिक घेराबंदी को स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई यही है कि ईरान ने अमेरिकी कार्रवाइयों का जवाब देने की अपनी क्षमता खो दी है। उनके पास ना तो नौसेना है ना ही वायुसेना। उनके बचे हुए सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा है। IRGC बर्बाद हो चुकी है और भाग रही है। उनकी लीडरशिप की स्थिति भी बहुत अनिश्चित है। ट्रंप के इस बयान पर ईरानी सेना ने सीधा पलटवार किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा है कि हॉर्मुज पहले की तरह ही पूरी तरह से ईरान के प्रबंधन और नियंत्रण में है। ईरान के सशस्त्र बलों की अनुमति और निगरानी के बिना कोई भी वाणिज्यिक जहाज या तेल टैंकर हॉर्मुज से सुरक्षित रूप से गुजर नहीं पाया है और न ही गुजर पाएगा। ईरान के सशस्त्र बल क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और किसी भी प्रकार और स्तर के खतरे का पहले से कहीं अधिक बलपूर्वक जवाब देंगे। अमेरिका ईरान युद्ध लगभग 6 महीनों से चल रहा है और इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। शांति वार्ता रुकी हुई है और बीच बीच में झड़पें भी जारी हैं। इससे हॉर्मुज से तेल और अन्य जरूरी सामानों की आवाजाही ठप पड़ी हुई है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता लंबे समय से ठंडे बस्ते में है। 2 महीने पहले पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच शांति समझौते के MOU पर साइन हुए थे। हालांकि बाद में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर शांति समझौते की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया और MOU को खारिज कर दिया। इसके बाद ये दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास के इलाकों में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, जहाजों, पेट्रोलियम डिपो और दूसरे रणनीतिक अड्डों को निशाना बनाया है। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार, TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द, छात्रों में खुशी की लहर, आज तक से बोले देवेंद्र महतो, तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष, सोनम वांगचुक से की बात। आज तक की खबर से तेजी से हुआ असर, खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा, 22 को होगी पहली मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला है बड़ा दाव, नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व, 8 चेहरे शामिल, राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि कैबिनेट ने JSSC और CGL परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 2014 में हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी की लहर है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने यह कहा कि वो आंदोलन तोड़ देंगे, लेकिन संघर्ष उनका ऐसे ही जारी रहेगा।
1: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जाँच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
2: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था,
1: देखिए अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे।
2: कितना संतुष्ट है अभी तक?
1: अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम CBI जांच, CID जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए।
3: DPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
4: वार्ता हुई, लंबी बात बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि CGL एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पर हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि CGL का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा,
5: 11-13
4: हाँ सब होगा। मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम TDPL ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा। देखिए हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है थोड़ा 19-20 होता है। हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सीजीएल एग्जाम में है जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा, मान लिया टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे।
0: नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और खुद एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। इतने भी एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल पा रही हैं। नीट पेपर लीक के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा से परीक्षा कराने का ऐलान किया गया है।
5: तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया,
6: तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा।
5: आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, एनटीए को बंद करना पड़ेगा।
7: 24 में नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, 2026 में नीट का फिर से पेपर लीक होता है।
8: एकदम से आप दो महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ किस बेसिस पे कर रहे हो।
9: एनटीए फिर हो गया फेल, अब की बार यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी। एनटीए के खिलाफ फिर फूटा गुस्सा, एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम हो रही है एजेंसी? एनटीए पर फिर उठे सवाल। एनटीए पर पिछली परीक्षा के सवाल, नई परीक्षा में रिपीट करने के आरोप।
10: एनटीए को बैन करवा के रहेंगे,
11: एनटीए को बैन करो।
9: क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही? आखिर खोट कहाँ है? ये तस्वीरें दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुख्यालय की हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
9: एनटीए के पुराने दाग अभी धुले भी नहीं है कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो रहा है। जी हाँ, नीट पेपर लीक, उसके चलते 21 छात्रों के सुसाइड के खिलाफ जंतर मंतर पर पूरे 36 दिन कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में आंदोलन चला। छात्रों ने लाठियां खाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन रुकता है। और अब भी नीट यूजी पेपर लीक मामले में इस समय सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अगस्त 2026 से ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालती सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर एक बार एनटीए फेल हो गया है। जी हां, एनटीए ने फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका खामियाजा आदित्य सिमरन जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप पूछेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 से ज्यादा अधिकारी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद बदले गए, वो एनटीए सिर्फ भांग खाकर पेपर नहीं सेट कर रहा बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कैसे, सुनिए। यूजीसी नेट जून 2026 को इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थी, समाजशास्त्रियों और अवधारणाओं का गलत नाम लिखा था, अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था, कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ प्रसारित होने का दावा भी किया गया था, हालांकि एनटीए ने लीक के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था, 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। एनटीए कहता है कि इन सब की वजह से अब 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे। लेकिन 2 महीने तक सन्नाटा खींचे रहे एनटीए को लेकर युवा नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ये ठगी है
11: कि इतनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
8: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट 2 महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पॉन्स मिला। मैम यहाँ पे बहुत बार आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम। सो वी वर होपिंग कि आंसर की आएगी, बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज कि टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
12: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
9: अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे, लेकिन इतने सब से क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई होगी? चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके छात्र पीएचडी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करेंगे, उस परीक्षा के पेपर में न अनुवाद सही है न व्याकरण। यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में 2 महीने का वक्त क्यों लग गया, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है।
13: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। आपने प्रोविजनल आंसर के लिए जो 1 हफ्ते में आती है उसके लिए आपने 30 दिन और लिए हैं। 30 दिन के बाद आपने फिर कमेटी बिठाई है, 4 घंटे में आप डिसीजन ले रहे हो इतने मेजर एग्जामिनेशन का।
9: एनटीए कहता है कि यूजीसी नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था। एनटीए ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बाद एक समिति बनाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बन जा रहा है? इन गलतियों को पहले देखने वाला कोई नहीं था।
14: ये गलती जानने के बाद, मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने एनटीए को लग गए, तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हों जो एनटीए ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स, या जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा, ऐसी और भी गलतियां होंगी।
9: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर ये तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद एनटीए की तरफ से उठाए गए कदमों, खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनटीए में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट के 3 पेपर भी एनटीए ढंग से क्यों नहीं बना पाया। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आईटी सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अमित मालवीय 2015 से आईटी सेल के प्रमुख थे, उनकी जगह दीपक महस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
15: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं।
16: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्राण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी।
17: यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे?
16: देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
15: महस्के की सहायता सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को नियुक्त किया गया। लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिए। इसके चलते आम यूजर्स को उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखने बंद हो गए। हालांकि नए कन्वीनर दीपक महस्के और को कन्वीनर अरुण यादव के एक्स अकाउंट्स सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रीति गांधी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं और @Mrs. Gandhi हैंडल से पोस्ट करती आई हैं। उनकी पहचान बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए रही है। वो बीजेपी महिला मोर्चा के सोशल मीडिया से जुड़े काम में भी सक्रिय रही हैं। फिलहाल प्रीति गांधी या आलोक भट्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनके एक्स अकाउंट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे, इसलिए इसकी वजह को लेकर कोई पक्की बात कहना सही नहीं होगा। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुराने पोस्ट की समीक्षा एक संभावित वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहले किए गए किसी निजी बयान को पार्टी की आधिकारिक राय समझे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में पुराने कंटेंट की जांच के दौरान अकाउंट की पहुंच सीमित करना एक तरीका हो सकता है। नई भूमिका के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का संदेश भी अधिक व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत होती है। निजी पोस्ट और पार्टी के आधिकारिक रूप के बीच अंतर साफ रहे, इसके लिए भी अकाउंट की सार्वजनिक पहुंच बदली जा सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के तुरंत बाद इन अकाउंट्स में बदलाव हुआ। इसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए दिमागी नक्सल वर्ग से सावधान रहने की नसीहत दी थी। पीएम ने खास तौर से युवा पीढ़ी को ऐसे वर्ग से बचाने की बात कही थी। इसे लेकर पहले तो जेंजी आंदोलन का चेहरा बने सीजेपी ने एतराज जताया और उसके बाद फिर अचानक पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताकर गर्व किया।
18: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
19: दिमागी नक्सली।
20: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कही, लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी।
18: दिमागी नक्सली। बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
20: पीएम मोदी का इतना कहना था कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था और उनकी प्रतिक्रिया तीखी हैरतअंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। चिदम्बरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही तो कभी विपक्ष को अरब नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। रही सही कसर पीएम के बयान के अगले हिस्से में की गई टिप्पणी ने पूरी कर दी थी, जिसमें विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल का कनेक्शन युवाओं से जोड़ दिया।
18: मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
20: दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के सौरव दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की, तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदंबरम से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
19: 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकल कर सामने आ गया।
21: प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की कि संविधान को ना मानने वाले, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीची कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
19: चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है।
20: लाल किले से दिमागी नक्सली का जिक्र करने के पीछे सरकार एक तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की कामयाबी का जिक्र करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ शहरों कस्बों में पैठ बना चुकी वामपंथी विचारधारा के खतरे को अंडरलाइन कर रही थी, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2004 में वामपंथी उग्रवाद के अर्बन पर्सपेक्टिव आवर वर्क इन अर्बन एरियाज और 2013 की स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम से दो खुफिया दस्तावेज में जो खुलासे हुए थे वो संवैधानिक हिंदुस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ब्लूप्रिंट थे। इन दस्तावेज में तीन प्लान था। पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना, दूसरा था सभी शोषित पीड़ितों को एकजुट करना और तीसरा था पीएलजीए और पीएलए के सशस्त्र विद्रोह में मदद के लिए गुप्त लोगों की घुसपैठ कराना। हालांकि पिछले 20 साल में भारत से सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन इत्तफाक है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सियासी मुद्दे वंचितों, शोषितों और युवाओं के समसामयिक मुद्दों से मेल खाते हैं और इनका समर्थन करने वालों पर सियासी हमले होते हैं। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि दिमागी नक्सली सिर्फ वही हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन की बुनियाद जिस तरह पड़ी और अप्रत्याशित रूप से हुकूमत पर जनता का दबाव बना, उसमें सरकार के दिमाग की बत्ती ने खतरे का अलार्म बजाया है कि बिना किसी राजनीतिक बुनियाद और समर्थन के अगर एक आंदोलन मंत्री के इस्तीफे को मजबूर कर सकता है तो इसके पीछे की ताकत मामूली नहीं। और सरकार को आशंका है कि वर्षों से रोडमैप बनाकर काम कर रही वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ऐसे आंदोलनों के पीछे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ कर दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
22: वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर रहे कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राजस्थान में अमित शाह ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोला। तो आज दिन की शुरुआत ही बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद से की है।
1: ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सरतन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है।
2: तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है।
3: सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जैन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है।
23: पहले से वंदे मातरम का अपमान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, सब चीज का, राष्ट्रीय प्रतीक, अदालत, सबका कांग्रेस बार बार अपमान किया है केवल राजनीतिक हित के कारण।
22: हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी, इसलिए पलटवार की कोशिश शुरू हुई।
24: हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है।
22: इमरान मसूद तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका धर्म वंदे मातरम पढ़ने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे।
24: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा।
22: कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते, इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
25: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है।
22: तो वंदे मातरम पर विवाद थमने के बजाय गहराता जा रहा है। आज तक ब्यौरा।
0: यूपी में अभी चुनाव थोड़ी दूर है, लेकिन अभी से सियासत में हैसियत की बात होने लगी है। अखिलेश यादव ने कभी अपने साथी रहे आरएलडी को बिना नाम लिए चवन्नी कह दिया है। पिछला विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद जयंत चौधरी ने चुनावों के बाद एनडीए का दामन थाम लिया था, अब अखिलेश ने उसी दगाबाजी पर वार किया है।
26: मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा?
27: हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले।
28: यूपी में 27 की सियासी चर्चा रुपया और चवन्नी पर चकर घिन्नी बन गई है। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी का बगैर नाम लिए जोरदार निशाना साधा।
27: अरे कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
28: दरअसल पिछले चुनाव में अखिलेश ने जयंत चौधरी को 33 सीटें दी थी, लेकिन चुनाव के बाद जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए, अखिलेश उसी पर तंज कस रहे थे, अब आरएलडी पलटवार कर रही है।
29: माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की ओछी टिप्पणी की गई है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि उनके पिता मुलायम सिंह को चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बनाया था। मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी थी और उसके बाद उन्हीं के पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में किस तरीके से धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, ये पूरा देश उसका गवाह।
28: दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों दावा करते हैं कि उनके कारण ही पिछले चुनाव में एक दूसरे को सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़कर आरएलडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और दो लोकसभा की करीब 10 विधानसभाओं में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि आरएलडी को एनडीए के पाले से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी भड़काऊ बयान दे रही है।
30: जयंत चौधरी जी ने खुद से ही कहा था कि वो चोनी नहीं है जो पलट जाए, लेकिन उनको पलटने में देर नहीं लगी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को राज्यसभा ना भेज करके श्री अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए श्री जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किया था, लेकिन वो इतने एहसान फरामोश थे कि उन्होंने उनको पाला बदलने में, उनको पलटने में टाइम नहीं लगा।
28: अब अखिलेश यादव के बयान को आरएलडी चौधरी जयंत सिंह ही नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह और पूरे किसान समाज का अपमान बता रही है।
31: अब देखना यह है
4: कि चवन्नी अठन्नी और रुपए की सियासत में यूपी के लिए आरएलडी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई कहां तक जाती है और सियासी तौर पर इन बयानों के बीच किसका नफा किसका नुकसान होता है, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार, TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द, छात्रों में खुशी की लहर, आज तक से बोले देवेंद्र महतो, तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष, सोनम वांगचुक से की बात। आज तक की खबर से तेजी से हुआ असर, खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नवीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा, 22 को होगी पहली मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला है बड़ा दाव, नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व, 8 चेहरे शामिल, राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि कैबिनेट ने JSSC और CGL परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 2014 में हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी की लहर है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने यह कहा कि वो आंदोलन तोड़ देंगे, लेकिन संघर्ष उनका ऐसे ही जारी रहेगा।
1: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
2: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सर,
1: देखिए अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे।
2: कितना संतुष्ट है अभी तक घोषणा?
1: अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम CBI जांच, CID जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए।
3: DPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या TDPL के जितनी भी गतिविधियां यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
4: वार्ता हुई, लंबी बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि CGL एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पे हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि CGL का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा,
5: 11-13
4: हाँ सब होगा, मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम TDPL ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा। देखिए हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है थोड़ा 19-20 होता है। हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सीजीएल एग्जाम में है, जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा। मान लिया टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे।
0: नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और खुद एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। इतने भी एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल पा रही हैं। नीट पेपर लीक के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा से परीक्षा कराने का ऐलान किया गया है।
5: तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया।
6: तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा।
5: आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा।
7: 24 में नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, 2026 में नीट का फिर से पेपर लीक होता है।
8: एकदम से आप दो महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ किस बेसिस पे कर रहे हो।
9: एनटीए फिर हो गया फेल, अब की बार यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी। एनटीए के खिलाफ फिर फूटा गुस्सा, एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम हो रही है एजेंसी? एनटीए पर फिर उठे सवाल। एनटीए पर पिछली परीक्षा के सवाल नई परीक्षा में रिपीट करने के आरोप।
10: एनटीए को बैन करवा के रहेंगे,
11: एनटीए को बैन करो।
9: क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही? आखिर खोट कहाँ है? ये तस्वीरें दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुख्यालय की हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
9: एनटीए के पुराने दाग अभी धुले भी नहीं है कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो रहा है। जी हां, नीट पेपर लीक, उसके चलते 21 छात्रों के सुसाइड के खिलाफ जंतर मंतर पर पूरे 36 दिन कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में आंदोलन चला। छात्रों ने लाठियां खाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन रुकता है। और अब भी नीट यूजी पेपर लीक मामले में इस समय सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अगस्त 2026 से ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालती सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर एक बार एनटीए फेल हो गया है। जी हां, एनटीए ने फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स

0: जिसका खामियाजा आदित्य सिमरत जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप पूछेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 से ज्यादा अधिकारी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद बदले गए, वो एनटीए सिर्फ भांग खाकर पेपर नहीं सेट कर रहा, बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कैसे, सुनिए। यूजीसी नेट जून 2026 को इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थी, समाज शास्त्रियों और अवधारणाओं का गलत नाम लिखा था, अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था, कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ प्रसारित होने का दावा भी किया गया था, हालांकि एनटीए ने लीक के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था, 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। एनटीए कहता है कि इन सब की वजह से अब 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे। लेकिन 2 महीने तक सन्नाटा खींचे रहे एनटीए को लेकर युवा नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ये ठगी है।
1: कितनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं, और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
2: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट 2 महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। मैम यहाँ पे बहुत बार ही आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम। सो वी वर होपिंग कि आंसर की आएगी, बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज की टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, PYQs रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
3: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
0: अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे, लेकिन इतने सब से क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई होगी। चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके छात्र PhD करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करेंगे, उस परीक्षा के पेपर में न अनुवाद सही है न व्याकरण। यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में 2 महीने का वक्त क्यों लग गया, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है।
4: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। आपने प्रोविजनल आंसर के लिए जो 1 हफ्ते में आती है उसके लिए आपने 30 दिन और लिए हैं। 30 दिन के बाद आपने फिर कमेटी बिठाई है, 4 घंटे में आप डिसीजन ले रहे हो इतने मेजर एग्जामिनेशन का।
0: एनटीए कहता है कि यूजीसी नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था। एनटीए ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बाद एक समिति बनाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बन जा रहा है? इन गलतियों को पहले देखने वाला कोई नहीं था।
5: ये गलती जानने के बाद, मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने एनटीए को लग गए, तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हों जो एनटीए ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स, या जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा, ऐसी और भी गलतियां होंगी।
0: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर ये तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद

0: एनटीए की तरफ से उठाए गए कदमों खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनटीए में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट के 3 पेपर भी एनटीए ढंग से क्यों नहीं बना पाया। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
1: बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आईटी सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अमित मालवीय 2015 से आईटी सेल के प्रमुख थे, उनकी जगह दीपक महस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं।
3: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी।
4: यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे?
3: देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
2: महस्के की सहायता सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को नियुक्त किया गया। लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिए। इसके चलते आम यूजर्स को उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखने बंद हो गए। हालांकि नए कन्वीनर दीपक महस्के और को कन्वीनर अरुण यादव के एक्स अकाउंट्स सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रीति गांधी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं और @MrsGandhi हैंडल से पोस्ट करती आई हैं। उनकी पहचान बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए रही है। वो बीजेपी महिला मोर्चा के सोशल मीडिया से जुड़े काम में भी सक्रिय रही हैं। फिलहाल प्रीति गांधी या आलोक भट्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनके एक्स अकाउंट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे, इसलिए इसकी वजह को लेकर कोई पक्की बात कहना सही नहीं होगा। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुराने पोस्ट की समीक्षा एक संभावित वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहले किए गए किसी निजी बयान को पार्टी की आधिकारिक राय समझे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में पुराने कंटेंट की जांच के दौरान अकाउंट की पहुंच सीमित करना एक तरीका हो सकता है। नई भूमिका के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का संदेश भी अधिक व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत होती है। निजी पोस्ट और पार्टी के आधिकारिक रूप के बीच अंतर साफ रहे, इसके लिए भी अकाउंट की सार्वजनिक पहुंच बदली जा सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के तुरंत बाद इन अकाउंट्स में बदलाव हुआ। इसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए दिमागी नक्सल वर्ग से सावधान रहने की नसीहत दी थी। पीएम ने खास तौर से युवा पीढ़ी को ऐसे वर्ग से बचाने की बात कही थी। इसे लेकर पहले तो जेंजी आंदोलन का चेहरा बने सीजेपी ने एतराज जताया और उसके बाद फिर अचानक पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताकर गर्व किया।
5: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
6: दिमागी नक्सली।
7: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कही, लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी।
6: दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सली,
8: दिमागी नक्सली,
9: दिमागी नक्सल,
10: दिमागी नक्सल,
11: दिमागी नक्सल।
5: बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
7: पीएम मोदी का इतना कहना था कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था और उनकी प्रतिक्रिया तीखी हैरतअंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। चिदम्बरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही तो कभी विपक्ष को अरब नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। रही सही कसर पीएम के बयान के अगले हिस्से में की गई टिप्पणी ने पूरी कर दी थी जिसमें विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल का कनेक्शन युवाओं से जोड़ दिया।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
7: दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के सौरव दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदम्बरम से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
8: 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकल कर सामने आ गया।
9: प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की कि संविधान को ना मानने वाले, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीचे कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
8: चिदम्बरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है।
7: लाल किले से दिमागी नक्सली का जिक्र करने के पीछे सरकार एक तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की कामयाबी का जिक्र करना चाहती थी तो दूसरी तरफ शहरों कस्बों में पैठ बना चुकी वामपंथी विचारधारा के खतरे को अंडरलाइन कर रही थी क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2004 में वामपंथी उग्रवाद के अर्बन पर्सपेक्टिव आवर वर्क इन अर्बन एरियाज और 2013 की स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम से दो खुफिया दस्तावेज में जो खुलासे हुए थे वो संवैधानिक हिंदुस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ब्लूप्रिंट थे। इन दस्तावेज में 3 प्लान था। पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना, दूसरा था सभी शोषित पीड़ितों को एकजुट करना और तीसरा था पीएलजी और पीएलए के सशस्त्र विद्रोह में मदद के लिए गुप्त लोगों की घुसपैठ कराना। हालांकि पिछले 20 साल में भारत से सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद धीरे धीरे खत्म हो चुका है लेकिन इत्तफाक है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सियासी मुद्दे वंचितों, शोषितों और युवाओं के समसामयिक मुद्दों से मेल खाते हैं और इनका समर्थन करने वालों पर सियासी हमले होते हैं। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि दिमागी नक्सली सिर्फ वही हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन की बुनियाद जिस तरह पड़ी और अप्रत्याशित रूप से हुकूमत पर जनता का दबाव बना उसमें सरकार के दिमाग की बत्ती ने खतरे का अलार्म बजाया है कि बिना किसी राजनीतिक बुनियाद और समर्थन के अगर एक आंदोलन मंत्री के इस्तीफे को मजबूर कर सकता है तो इसके पीछे की ताकत मामूली नहीं। और सरकार को आशंका है कि वर्षों से रोडमैप बनाकर काम कर रही वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ऐसे आंदोलनों के पीछे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।
1: यूपी में अभी चुनाव थोड़ी दूर है लेकिन अभी से सियासत में हैसियत की बात होने लगी है। अखिलेश यादव ने कभी अपने साथी रहे आरएलडी को बिना नाम लिए चवन्नी कह दिया है। पिछला विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद जयंत चौधरी ने चुनावों के बाद एनडीए का दामन थाम लिया था। अब अखिलेश ने उसी दगाबाजी पर वार किया है।
11: मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा?
12: हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले।
13: यूपी में 27 की सियासी चर्चा रुपया और चवन्नी पर चकर घिन्नी बन गई है। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी का बगैर नाम लिए जोरदार निशाना साधा।
12: अरे कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले? हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
13: दरअसल पिछले चुनाव में अखिलेश ने जयंत चौधरी को 33 सीटें दी थी लेकिन चुनाव के बाद जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए। अखिलेश उसी पर तंज कस रहे थे, अब आरएलडी पलटवार कर रही है।
14: माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की ओछी टिप्पणी की गई है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि उनके पिता मुलायम सिंह को चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बनाया था। मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी थी और उसके बाद उन्हीं के पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में किस तरीके से धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी ये पूरा देश उसका गवाह है।
13: दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों दावा करते हैं कि उनके कारण ही पिछले चुनाव में एक दूसरे को सीटें मिली थी लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़कर आरएलडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और दो लोकसभा की करीब 10 विधानसभाओं में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि आरएलडी को एनडीए के पाले से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी भड़काऊ बयान दे रही है।
15: जयंत चौधरी जी ने खुद से ही कहा था कि वो चोनी नहीं है जो पलट जाए लेकिन उनको पलटने में देर नहीं लगी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को राज्यसभा ना भेज करके श्री अखिलेश यादव जी ने आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए श्री जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किया था लेकिन वो इतने एहसान फरामोश थे कि उन्होंने उनको पाला बदलने में उनको पलटने में टाइम नहीं लगा।
13: अब अखिलेश यादव के बयान को आरएलडी चौधरी जयंत सिंह ही नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह और पूरे किसान समाज का अपमान बता रही है।
16: अब देखना यह है कि चवन्नी अठन्नी और रुपए की सियासत में यूपी के लिए आरएलडी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई कहां तक जाती है और सियासी तौर पर इन बयानों के बीच किसका नफा किसका नुकसान होता है ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी ने अब आरक्षण की मांग शुरू कर दी है। निषाद पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री संजय निषाद ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि आरक्षण की मांग पूरी करने में कहीं देर न हो जाए। संजय निषाद की इस चेतावनी के पीछे मंशा क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है।
0: यूपी में 27 के संग्राम की शुरुआत अभी नहीं हुई है मगर समीकरण साधने की कोशिशें जरूर शुरू हो गई हैं। सीटों के लिए दबाव की राजनीति तेज हो गई है। यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है। संजय निषाद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए अगर उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। दरअसल संजय निषाद की मांग है कि निषाद समाज और उससे जुड़ी उपजातियों जैसे केवट मल्लाह बिंद मझवार और अन्य मछुआरा जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। इसी वादे को लेकर वो पिछले चुनाव में उतरे थे लेकिन अब तक उनका ये चुनावी वादा पूरा नहीं हो पाया है। अब वो आने वाले चुनाव की तैयारी इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। उधर यूपी के सीएम भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। आज यूपी में सीएम योगी ने 78,000 से अधिक उचित मूल्य की राशन दुकानों का लाभांश 90 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर 125 रुपए क्विंटल कर दिया। इसके अलावा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली भी शुरू की है। सीएम योगी ने इस मौके पर 2017 से पहले और 2017 के बाद की सियासत का फर्क समझाया।
17: उस समय की सत्ता में जो लोग आसीन थे, नियत उनकी खराब थी, उनकी नियत में खोट था। उनके भ्रष्ट आचरण की आंच से आप चाहते हुए भी अपने आप को बचा नहीं सकते थे, और परिणाम क्या होता था?
0: जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, यूपी में सियासी लोग अपनी अपनी तैयारियों को और धार देंगे। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार। TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द। छात्रों में खुशी की लहर। आज तक से बोले देवेंद्र महतो, तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष। सोनम वांगचुक से की बात। आज तक की खबर से तेजी से हुआ असर। खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नवीन की नई टीम का ऐलान। स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव। पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा। 22 को होगी पहली मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला है बड़ा दाव। नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व। 8 चेहरे शामिल। राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि कैबिनेट ने JSSC और CGL परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 2014 में हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी की लहर है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने यह कहा कि वो आंदोलन तोड़ देंगे, लेकिन संघर्ष उनका ऐसे ही जारी रहेगा।
1: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
2: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सब
1: देखिए, अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे।
2: कितना संतुष्ट है अभी तक घोषणा?
1: अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम CBI जांच, CID जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए।
3: DPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
4: वार्ता हुई, लंबी बात बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि CGL एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पे हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि CGL का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा।
5: 11-13
4: आज सब होगा, मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम TDPL ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा। देखिए, हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है थोड़ा 19-20 होता है। हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सीजीएल एग्जाम में है, जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा। मान लिया टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे।
0: नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और खुद एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। इतने भी एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल पा रही हैं। नीट पेपर लीक के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा से परीक्षा कराने का ऐलान किया गया है।
5: तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा।
6: 24 में नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, 2026 में नीट का फिर से पेपर लीक होता है।
7: एकदम से आप दो महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ किस बेसिस पे कर रहे हो।
8: एनटीए फिर हो गया फेल, अब की बार यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी। एनटीए के खिलाफ फिर फूटा गुस्सा, एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम हो रही है एजेंसी? एनटीए पर फिर उठे सवाल। एनटीए पर पिछली परीक्षा के सवाल, नई परीक्षा में रिपीट करने के आरोप।
9: एनटीए को बैन करवा के
10: एनटीए को बैन करो।
8: क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही? आखिर खोट कहाँ है? ये तस्वीरें दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुख्यालय की हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
8: एनटीए के पुराने दाग अभी धुले भी नहीं हैं कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो रहा है। जी हाँ, नीट पेपर लीक, उसके चलते 21 छात्रों के सुसाइड के खिलाफ जंतर मंतर पर पूरे 36 दिन कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में आंदोलन चला। छात्रों ने लाठियां खाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन रुकता है। और अब भी नीट यूजी पेपर लीक मामले में इस समय सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अगस्त 2026 से ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालती सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर एक बार एनटीए फेल हो गया है। जी हां, एनटीए ने फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका खामियाजा आदित्य सिमरत जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप पूछेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 से ज्यादा अधिकारी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद बदले गए, वो एनटीए सिर्फ भांग खाकर पेपर नहीं सेट कर रहा, बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कैसे, सुनिए। यूजीसी नेट जून 2026 को इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थी, समाजशास्त्रियों और अवधारणाओं का गलत नाम लिखा था, अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था, कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ प्रसारित होने का दावा भी किया गया था, हालांकि एनटीए ने लीक के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था, 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। एनटीए कहता है कि इन सब की वजह से अब 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे। लेकिन 2 महीने तक सन्नाटा खींचे रहे एनटीए को लेकर युवा नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ये ठगी है
10: कि इतनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं, और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
7: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट 2 महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। मैम यहाँ पे बहुत बार आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम। सो वी वर होपिंग कि आंसर की आएगी, बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज कि टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, PYQs रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
11: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
8: अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे, लेकिन इतने सब से क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई होगी। चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके छात्र PhD करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करेंगे, उस परीक्षा के पेपर में न अनुवाद सही है न व्याकरण। यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में 2 महीने का वक्त क्यों लग गया, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है।
12: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। आपने प्रोविजनल आंसर के लिए जो 1 हफ्ते में आती है उसके लिए आपने 30 दिन और लिए हैं। 30 दिन के बाद आपने फिर कमेटी बिठाई है, 4 घंटे में आप डिसीजन ले रहे हो इतने मेजर एग्जामिनेशन का।
8: एनटीए कहता है कि UGC नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था। एनटीए ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बाद एक समिति बनाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बन जा रहा है? इन गलतियों को पहले देखने वाला कोई नहीं था।
13: ये गलती जानने के बाद, मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने एनटीए को लग गए, तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हों जो एनटीए ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स, या जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा, ऐसी और भी गलतियां होंगी।
8: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर ये तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद एनटीए की तरफ से उठाए गए कदमों, खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनटीए में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट के 3 पेपर भी एनटीए ढंग से क्यों नहीं बना पाया। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आईटी सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अमित मालवीय 2015 से आईटी सेल के प्रमुख थे, उनकी जगह दीपक महस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
14: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं।
15: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी।
16: यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे?
15: देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
14: महस्के की सहायता सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को नियुक्त किया गया। लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिए। इसके चलते आम यूजर्स को उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखने बंद हो गए। हालांकि नए कन्वीनर दीपक महस्के और को कन्वीनर अरुण यादव के एक्स अकाउंट्स सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रीति गांधी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं और @Mrs. Gandhi हैंडल से पोस्ट करती आई हैं। उनकी पहचान बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए रही है। वो बीजेपी महिला मोर्चा के सोशल मीडिया से जुड़े काम में भी सक्रिय रही हैं। फिलहाल प्रीति गांधी या आलोक भट्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनके एक्स अकाउंट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे, इसलिए इसकी वजह को लेकर कोई पक्की बात कहना सही नहीं होगा। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुराने पोस्ट की समीक्षा एक संभावित वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहले किए गए किसी निजी बयान को पार्टी की आधिकारिक राय समझे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में पुराने कंटेंट की जांच के दौरान अकाउंट की पहुंच सीमित करना एक तरीका हो सकता है। नई भूमिका के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का संदेश भी अधिक व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत होती है। निजी पोस्ट और पार्टी के आधिकारिक रूप के बीच अंतर साफ रहे, इसके लिए भी अकाउंट की सार्वजनिक पहुंच बदली जा सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के तुरंत बाद इन अकाउंट्स में बदलाव हुआ। इसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए दिमागी नक्सल वर्ग से सावधान रहने की नसीहत दी थी। पीएम ने खास तौर से युवा पीढ़ी को ऐसे वर्ग से बचाने की बात कही थी। इसे लेकर पहले तो जेंजी आंदोलन का चेहरा बने सीजेपी ने एतराज जताया और उसके बाद फिर अचानक पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताकर गर्व किया।
17: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
18: दिमागी नक्सली।
19: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कही, लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी।
18: दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सली,
20: दिमागी नक्सली,
21: दिमागी नक्सल,
18: दिमागी नक्सल,
20: दिमागी नक्सल।
17: बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
19: पीएम मोदी का इतना कहना था कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था और उनकी प्रतिक्रिया तीखी हैरतअंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। चिदम्बरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही तो कभी विपक्ष को अरब नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। रही सही कसर पीएम के बयान के अगले हिस्से में की गई टिप्पणी ने पूरी कर दी थी, जिसमें विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल का कनेक्शन युवाओं से जोड़ दिया।
17: मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
19: दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के सौरव दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की, तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदंबरम से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
2: 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकल कर सामने आ गया।
21: प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की कि संविधान को ना मानने वाले, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीचे कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
2: चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है।
19: लाल किले से दिमागी नक्सली का जिक्र करने के पीछे सरकार एक तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की कामयाबी का जिक्र करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ शहरों कस्बों में पैठ बना चुकी वामपंथी विचारधारा के खतरे को अंडरलाइन कर रही थी, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2004 में वामपंथी उग्रवाद के अर्बन पर्सपेक्टिव आवर वर्क इन अर्बन एरियाज और 2013 की स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम से दो खुफिया दस्तावेज में जो खुलासे हुए थे वो संवैधानिक हिंदुस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ब्लूप्रिंट थे। इन दस्तावेज में 3 प्लान था। पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना, दूसरा था सभी शोषित पीड़ितों को एकजुट करना और तीसरा था PLG और PLA के सशस्त्र विद्रोह में मदद के लिए गुप्त लोगों की घुसपैठ कराना। हालांकि पिछले 20 साल में भारत से सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन इत्तफाक है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सियासी मुद्दे वंचितों, शोषितों और युवाओं के समसामयिक मुद्दों से मेल खाते हैं और इनका समर्थन करने वालों पर सियासी हमले होते हैं। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि दिमागी नक्सली सिर्फ वही हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन की बुनियाद जिस तरह पड़ी और अप्रत्याशित रूप से हुकूमत पर जनता का दबाव बना, उसमें सरकार के दिमाग की बत्ती ने खतरे का अलार्म बजाया है कि बिना किसी राजनीतिक बुनियाद और समर्थन के अगर एक आंदोलन मंत्री के इस्तीफे को मजबूर कर सकता है तो इसके पीछे की ताकत मामूली नहीं। और सरकार को आशंका है कि वर्षों से रोडमैप बनाकर काम कर रही वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ऐसे आंदोलनों के पीछे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द। छात्रों में खुशी की लहर आज तक से बोले देवेंद्र महतो, तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष। सोनम वांगचुक से की बात। आज तक की खबर से तेजी से हुआ असर। खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान। स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव। पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा। 22 को होगी पहली मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला है बड़ा दाव। नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व। 8 चेहरे शामिल। राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि कैबिनेट ने जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 2014 में हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी की लहर है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने यह कहा कि वो आंदोलन तोड़ देंगे, लेकिन संघर्ष उनका ऐसे ही जारी रहेगा।
1: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहां तक पहुंचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
2: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था
1: देखिए, अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है, हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे।
2: कितना संतुष्ट है अभी तक घोषणा?
1: अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में है। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए।
3: डीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
4: वार्ता हुई, लंबी बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि सीजीएल एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पर हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा, 11-13 सब होगा। मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम टीडीपीएल ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा। देखिए, हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है थोड़ा 19-20 होता है। हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सीजीएल एग्जाम में है जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा मान लिया। टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे।
0: 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ कर दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
5: वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर रहे कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राजस्थान में अमित शाह ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोला, तो आज दिन की शुरुआत ही बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद से की है।
6: ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सरतन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है।
7: तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है।
8: सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जैन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है।
9: पहले से वंदे मातरम का अपमान राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, सब चीज का, राष्ट्रीय प्रतीक, अदालत, सबका कांग्रेस बार बार अपमान किया है केवल राजनीतिक हित के कारण।
5: हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी, इसलिए पलटवार की कोशिश शुरू हुई।
10: हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है।
5: इमरान मसूद तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका धर्म वंदे मातरम पढ़ने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे।
10: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा।
5: कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते, इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
11: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है।
5: तो वंदे मातरम पर विवाद थमने के बजाय गहराता जा रहा है। आज तक ब्यौरा।
0: यूपी में अभी चुनाव थोड़ी दूर है, लेकिन अभी से सियासत में हैसियत की बात होने लगी है। अखिलेश यादव ने कभी अपने साथी रहे आरएलडी को बिना नाम लिए चवन्नी कह दिया है। पिछला विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद जयंत चौधरी ने चुनावों के बाद एनडीए का दामन थाम लिया था, अब अखिलेश ने उसी दगाबाजी पर वार किया है।
12: मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा?
13: हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चलेगी।
14: यूपी में 27 की सियासी चर्चा रुपया और चवन्नी पर चकर घिन्नी बन गई है। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी का बगैर नाम लिए जोरदार निशाना साधा।
13: यार कहां-कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
14: दरअसल पिछले चुनाव में अखिलेश ने जयंत चौधरी को 33 सीटें दी थी, लेकिन चुनाव के बाद जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए। अखिलेश उसी पर तंज कस रहे थे, अब आरएलडी पलटवार कर रही है।
15: माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उच्च टिप्पणी की गई है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि उनके पिता मुलायम सिंह को चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बनाया था। मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी थी और उसके बाद उन्हीं के पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में किस तरीके से धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, ये पूरा देश उसका गवाह है।
14: दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों दावा करते हैं कि उनके कारण ही पिछले चुनाव में एक दूसरे को सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़कर आरएलडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और दो लोकसभा की करीब 10 विधानसभाओं में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि आरएलडी को एनडीए के पाले से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी भड़काऊ बयान दे रही है।
16: जयंत चौधरी जी ने खुद से ही कहा था कि वो चोनी नहीं है जो पलट जाए, लेकिन उनको पलटने में देर नहीं लगी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को राज्यसभा ना भेज करके श्री अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए श्री जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किया था, लेकिन वो इतने एहसान फरामोश थे कि उन्होंने उनको पाला बदलने में, उनको पलटने में टाइम नहीं लगा।
14: अब अखिलेश यादव के बयान को आरएलडी चौधरी जयंत सिंह ही नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह और पूरे किसान समाज का अपमान बता रही है।
7: अब देखना यह है कि चवन्नी अठन्नी और रुपए की सियासत में यूपी के लिए आरएलडी बनाम समाजवादी पार्टी की यह लड़ाई कहां तक जाती है और सियासी तौर पर इन बयानों के बीच किसका नफा किसका नुकसान होता है, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी ने अब आरक्षण की मांग शुरू कर दी है। निषाद पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री संजय निषाद ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि आरक्षण की मांग पूरी करने में कहीं देर न हो जाए। संजय निषाद की इस चेतावनी के पीछे मंशा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
17: यूपी में 27 के संग्राम की शुरुआत अभी नहीं हुई है, मगर समीकरण साधने की कोशिशें जरूर शुरू हो गई हैं। सीटों के लिए दबाव की राजनीति तेज हो गई है। यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है। संजय निषाद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए अगर उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। दरअसल संजय निषाद की मांग है कि निषाद समाज और उससे जुड़ी उपजातियों जैसे केवट, मल्ला, बिंद, मझवार और अन्य मछुआरा जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। इसी वादे को लेकर वो पिछले चुनाव में उतरे थे, लेकिन अब तक उनका ये चुनावी वादा पूरा नहीं हो पाया है। अब वो आने वाले चुनाव की तैयारी इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। उधर यूपी के सीएम भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। आज यूपी में सीएम योगी ने 78,000 से अधिक उचित मूल्य की राशन दुकानों का लाभांश 90 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर 125 रुपए क्विंटल कर दिया। इसके अलावा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली भी शुरू की है। सीएम योगी ने इस मौके पर 2017 से पहले और 2017 के बाद की सियासत का फर्क समझाया।
18: उस समय की सत्ता में जो लोग आसीन थे, नियत उनकी खराब थी, उनकी नियत में खोट था। उनके भ्रष्ट आचरण की आंच से आप

0: आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार, TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द, छात्रों में खुशी की लहर, आज तक से बोले देवेंद्र महतो, तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष, सोनम वांगचुक से की बात। आज तक की खबर से तेजी से हुआ असर, खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नवीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा, 22 को होगी पहली मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला है बड़ा दाव, नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व, 8 चेहरे शामिल, राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और खुद एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। इतने भी एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल पा रही हैं। नीट पेपर लीक के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा से परीक्षा कराने का ऐलान किया गया है।
1: तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया,
2: तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा।
1: आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, एनटीए को बंद करना पड़ेगा।
3: 24 में नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, 2026 में नीट का फिर से पेपर लीक होता है।
4: एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ किस बेसिस पे कर रहे हो।
5: एनटीए फिर हो गया फेल, अब की बार यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी। एनटीए के खिलाफ फिर फूटा गुस्सा, एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम हो रही है एजेंसी? एनटीए पर फिर उठे सवाल। एनटीए पर पिछली परीक्षा के सवाल, नई परीक्षा में रिपीट करने के आरोप।
6: एनटीए को बैन करवा के रहेंगे,
7: एनटीए को बैन करो।
5: क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही? आखिर खोट कहाँ है? ये तस्वीरें दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुख्यालय की हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
1: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
5: एनटीए के पुराने दाग अभी धुले भी नहीं है कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो रहा है। जी हाँ, नीट पेपर लीक, उसके चलते 21 छात्रों के सुसाइड के खिलाफ जंतर मंतर पर पूरे 36 दिन कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में आंदोलन चला। छात्रों ने लाठियां खाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन रुकता है। और अब भी नीट यूजी पेपर लीक मामले में इस समय सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान

0: ले लिया है। अगस्त 2026 से ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालती सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर एक बार एनटीए फेल हो गया है। जी हां, एनटीए ने फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका खामियाजा आदित्य सिमरत जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप पूछेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 से ज्यादा अधिकारी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद बदले गए, वो एनटीए सिर्फ भांग खाकर पेपर नहीं सेट कर रहा, बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कैसे, सुनिए। यूजीसी नेट जून 2026 को इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थीं। समाजशास्त्रियों और अवधारणाओं का गलत नाम लिखा था। अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था। कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ प्रसारित होने का दावा भी किया गया था, हालांकि एनटीए ने लीक के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था। 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। एनटीए कहता है कि इन सब की वजह से अब 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे, लेकिन 2 महीने तक सन्नाटा खींचे रहे एनटीए को लेकर युवा नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ये ठगी है।
1: कि इतनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं, और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
2: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट 2 महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। मैम यहाँ पे बहुत बार ही आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम। सो वी वर होपिंग कि आंसर की आएगी, बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज की टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, PYQs रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
3: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
0: अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे, लेकिन इतने सब से क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई होगी? चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके छात्र पीएचडी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करेंगे, उस परीक्षा के पेपर में न अनुवाद सही है न व्याकरण। यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में 2 महीने का वक्त क्यों लग गया, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है।
4: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। आपने प्रोविजनल आंसर के लिए जो 1 हफ्ते में आती है उसके लिए आपने 30 दिन और लिए हैं। 30 दिन के बाद आपने फिर कमेटी बिठाई है, 4 घंटे में आप डिसीजन ले रहे हो इतने मेजर एग्जामिनेशन का।
0: एनटीए कहता है कि यूजीसी नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था। एनटीए ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बाद एक समिति बनाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाईं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बन जा रहा है? इन गलतियों को पहले देखने वाला कोई नहीं था।
5: ये गलती जानने के बाद, मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने एनटीए को लग गए, तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हो जो एनटीए ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स, या जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा, ऐसी और भी गलतियां होंगी।
0: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर ये तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद एनटीए की तरफ से उठाए गए कदमों, खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनटीए में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट के 3 पेपर भी एनटीए ढंग से क्यों नहीं बना पाया। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आईटी सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अमित मालवीय 2015 से आईटी सेल के प्रमुख थे, उनकी जगह दीपक महस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
7: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं।
8: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी।
9: यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे?
8: देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
7: महस्के की सहायता सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को नियुक्त किया गया। लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिए। इसके चलते आम यूजर्स को उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखने बंद हो गए। हालांकि नए कन्वीनर दीपक महस्के और को कन्वीनर अरुण यादव के एक्स अकाउंट्स सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रीति गांधी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं और @Mrs. Gandhi हैंडल से पोस्ट करती आई हैं। उनकी पहचान बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए रही है। वो बीजेपी महिला मोर्चा के सोशल मीडिया से जुड़े काम में भी सक्रिय रही हैं। फिलहाल प्रीति गांधी या आलोक भट्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनके एक्स अकाउंट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे, इसलिए इसकी वजह को लेकर कोई पक्की बात कहना सही नहीं होगा। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुराने पोस्ट की समीक्षा एक संभावित वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहले किए गए किसी निजी बयान को पार्टी की आधिकारिक राय समझे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में पुराने कंटेंट की जांच के दौरान अकाउंट की पहुंच सीमित करना एक तरीका हो सकता है। नई भूमिका के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का संदेश भी अधिक व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत होती है। निजी पोस्ट और पार्टी के आधिकारिक रूप के बीच अंतर साफ रहे, इसके लिए भी अकाउंट की सार्वजनिक पहुंच बदली जा सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के तुरंत बाद इन अकाउंट्स में बदलाव हुआ। इसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए दिमागी नक्सल वर्ग से सावधान रहने की नसीहत दी थी। पीएम ने खास तौर से युवा पीढ़ी को ऐसे वर्ग से बचाने की बात कही थी। इसे लेकर पहले तो जेंजी आंदोलन का चेहरा बने सीजेपी ने एतराज जताया और उसके बाद फिर अचानक पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताकर गर्व किया।
10: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
11: दिमागी नक्सली।
12: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कही, लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी।
11: दिमागी नक्सली।
10: बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
12: पीएम मोदी का इतना कहना था कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था, और उनकी प्रतिक्रिया तीखी हैरतअंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। चिदम्बरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही, तो कभी विपक्ष को अरबन नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। रही सही कसर पीएम के बयान के अगले हिस्से में की गई टिप्पणी ने पूरी कर दी थी, जिसमें विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल का कनेक्शन युवाओं से जोड़ दिया।
10: मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
12: दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के सौरव दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की, तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदम्बरम से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
13: 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया।
14: प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की कि संविधान को ना मानने वाले, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीचे कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
13: चिदम्बरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है।
12: लाल किले से दिमागी नक्सली का जिक्र करने के पीछे सरकार एक तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की कामयाबी का जिक्र करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ शहरों कस्बों में पैठ बना चुकी वामपंथी विचारधारा के खतरे को अंडरलाइन कर रही थी, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2004 में वामपंथी उग्रवाद के अर्बन पर्सपेक्टिव आवर वर्क इन अर्बन एरियाज और 2013 की स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम से दो खुफिया दस्तावेज में जो खुलासे हुए थे वो संवैधानिक हिंदुस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ब्लूप्रिंट थे। इन दस्तावेज में तीन प्लान था। पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना, दूसरा था सभी शोषित पीड़ितों को एकजुट करना और तीसरा था PLG और PLA के सशस्त्र विद्रोह में मदद के लिए गुप्त लोगों की घुसपैठ कराना। हालांकि पिछले 20 साल में भारत से सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन इत्तफाक है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सियासी मुद्दे वंचितों, शोषितों और युवाओं के समसामयिक मुद्दों से मेल खाते हैं और इनका समर्थन करने वालों पर सियासी हमले होते हैं। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि दिमागी नक्सली सिर्फ वही हैं जो माओवादियों का समर्थन करते और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन की बुनियाद जिस तरह पड़ी और अप्रत्याशित रूप से हुकूमत पर जनता का दबाव बना, उसमें सरकार के दिमाग की बत्ती ने खतरे का अलार्म बजाया है कि बिना किसी राजनीतिक बुनियाद और समर्थन के अगर एक आंदोलन मंत्री के इस्तीफे को मजबूर कर सकता है तो इसके पीछे की ताकत मामूली नहीं। और सरकार को आशंका है कि वर्षों से रोडमैप बनाकर काम कर रही वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ऐसे आंदोलनों के पीछे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।
6: 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ कर दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
15: वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर रहे कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राजस्थान में अमित शाह ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोला, तो आज दिन की शुरुआत ही बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद से की है।
16: ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सर तन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है।
17: तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है।
18: सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जैन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है।
19: पहले से वंदे मातरम का अपमान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, सब चीज का, राष्ट्रीय प्रतीक, अदालत, सबका कांग्रेस बार बार अपमान किया है केवल राजनीतिक हित के कारण।
15: हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी, इसलिए पलटवार की कोशिश शुरू हुई।
20: हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है।
15: इमरान मसूद तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका धर्म वंदे मातरम पढ़ने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे।
20: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा।
15: कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते, इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
21: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है।
15: तो वंदे मातरम पर विवाद थमने के बजाय गहराता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: यूपी में अभी चुनाव थोड़ी दूर है, लेकिन अभी से सियासत में हैसियत की बात होने लगी है। अखिलेश यादव ने कभी अपने साथी रहे आरएलडी को बिना नाम लिए चवन्नी कह दिया है। पिछला विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद जयंत चौधरी ने चुनावों के बाद एनडीए का दामन थाम लिया था, अब अखिलेश ने उसी दगाबाजी पर वार किया है।
22: मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा?
23: हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
24: यूपी में 27 की सियासी चर्चा रुपया और चवन्नी पर चकर घिन्नी बन गई है। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी का बगैर नाम लिए जोरदार निशाना साधा।
23: कहाँ कहाँ से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
24: दरअसल पिछले चुनाव में अखिलेश ने जयंत चौधरी को 33 सीटें दी थी, लेकिन चुनाव के बाद जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए। अखिलेश उसी पर तंज कस रहे थे, अब आरएलडी पलटवार कर रही है।
1: माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उचित टिप्पणी की गई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि उनके पिता मुलायम सिंह को चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बनाया था। मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी थी और उसके बाद उन्हीं के पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में किस तरीके से धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, ये पूरा देश उसका गवाह।
24: दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों दावा करते हैं कि उनके कारण ही पिछले चुनाव में एक दूसरे को सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़कर आरएलडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और दो लोकसभा की करीब 10 विधानसभाओं में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि आरएलडी को एनडीए के पाले से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी भड़काऊ बयान दे रही है।
2: जयंत चौधरी जी ने खुद से ही कहा था कि वो चोनी नहीं है जो पलट जाए, लेकिन उनको पलटने में देर नहीं लगी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को राज्यसभा ना भेज करके श्री अखिलेश यादव जी ने आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए श्री जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किया था, लेकिन वो इतने एहसान फरामोश थे कि उन्होंने उनको पाला बदलने में उनको पलटने में टाइम नहीं लगा।
24: अब अखिलेश यादव के बयान को आरएलडी चौधरी जयंत सिंह ही नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह और पूरे किसान समाज का अपमान बता रही है।
3: अब देखना यह है कि 54, 58 और रुपए की सियासत में यूपी के लिए आरएलडी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई कहां तक जाती है और सियासी तौर पर इन बयानों के बीच किसका नफा किसका नुकसान होता है, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द। छात्रों में खुशी की लहर, आज तक से बोले देवेंद्र महतो, तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष। सोनम वांगचुक से की बात। आज तक की खबर से तेजी से हुआ असर। खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नवीन की नई टीम का ऐलान। स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव। पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा। 22 को होगी पहली मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला है बड़ा दाव। नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व। 8 चेहरे शामिल। राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि कैबिनेट ने जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 2014 में हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी की लहर है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने यह कहा कि वो आंदोलन तोड़ देंगे, लेकिन संघर्ष उनका ऐसे ही जारी रहेगा।
1: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
2: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सर,
1: देखिए अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे।
2: कितना संतुष्ट है अभी तक घोषणा?
1: अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए।
3: डीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और खुद एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। इतने भी एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल पा रही हैं। नीट पेपर लीक के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा से परीक्षा कराने का ऐलान किया गया है।
4: तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा।
5: 24 में नीट का पेपर लीक होता है उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, 2026 में नीट का फिर से पेपर लीक होता है।
6: एकदम से आप दो महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ किस बेसिस पे कर रहे हो।
7: एनटीए फिर हो गया फेल, अब की बार यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी। एनटीए के खिलाफ फिर फूटा गुस्सा, एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम हो रही है एजेंसी? एनटीए पर फिर उठे सवाल। एनटीए पर पिछली परीक्षा के सवाल, नई परीक्षा में रिपीट करने के आरोप। क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही? आखिर खोट कहाँ है? ये तस्वीरें दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुख्यालय की हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
4: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
7: एनटीए के पुराने दाग अभी धुले भी नहीं है कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो रहा है। जी हाँ, नीट पेपर लीक, उसके चलते 21 छात्रों के सुसाइड के खिलाफ जंतर मंतर पर पूरे 36 दिन कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में आंदोलन चला। छात्रों ने लाठियां खाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन रुकता है। और अब भी नीट यूजी पेपर लीक मामले में इस समय सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अगस्त 2026 से ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालती सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर एक बार एनटीए फेल हो गया है। जी हाँ, एनटीए ने फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका खामियाजा आदित्य सिमरन जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप पूछेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 से ज्यादा अधिकारी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद बदले गए, वो एनटीए सिर्फ भांग खाकर पेपर नहीं सेट कर रहा, बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कैसे, सुनिए। यूजीसी नेट जून 2026 को इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थीं। समाजशास्त्रियों और अवधारणाओं का गलत नाम लिखा था। अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था। कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ प्रसारित होने का दावा भी किया गया था, हालांकि एनटीए ने लीक के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था। 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। एनटीए कहता है कि इन सब की वजह से अब 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे। लेकिन 2 महीने तक सन्नाटा खींचे रहे एनटीए को लेकर युवा नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ये ठगी है।
8: कितनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं, और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
6: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट दो महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। मैम यहाँ पे बहुत बार आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम। सो वी आर होपिंग कि आंसर की आएगी, बट एकदम से आप दो महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज कि टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
9: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर वन भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
7: अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे, लेकिन इतने सब से क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई होगी। चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके छात्र पीएचडी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करेंगे, उस परीक्षा के पेपर में न अनुवाद सही है न व्याकरण। यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में दो महीने का वक्त क्यों लग गया, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है।
10: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। आपने प्रोविजनल आंसर के लिए जो एक हफ्ते में आती है उसके लिए आपने 30 दिन और लिए हैं। 30 दिन के बाद आपने फिर कमेटी बिठाई है, 4 घंटे में आप डिसीजन ले रहे हो इतने मेजर एग्जामिनेशन का।
7: एनटीए कहता है कि यूजीसी नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था। एनटीए ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बाद एक समिति बनाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बन जा रहा है? इन गलतियों को पहले देखने वाला कोई नहीं था।
11: ये गलती जानने के बाद, मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने एनटीए को लग गए। तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हों जो एनटीए ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स, या जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा, ऐसी और भी गलतियां होंगी।
7: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर ये तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद एनटीए की तरफ से उठाए गए कदमों, खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनटीए में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट के 3 पेपर भी एनटीए ढंग से क्यों नहीं बना पाया। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आईटी सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अमित मालवीय 2015 से आईटी सेल के प्रमुख थे, उनकी जगह दीपक महस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
12: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं।
13: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी।
14: यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान करेंगे?
13: देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
12: मैस्के की सहायता सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को नियुक्त किया गया, लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिए। इसके चलते आम यूजर्स को उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखने बंद हो गए। हालांकि नए कन्वीनर दीपक मैस्के और को कन्वीनर अरुण यादव के एक्स अकाउंट्स सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रीति गांधी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं और @Mrs. Gandhi हैंडल से पोस्ट करती आई हैं। उनकी पहचान बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए रही है। वो बीजेपी महिला मोर्चा के सोशल मीडिया से जुड़े काम में भी सक्रिय रही हैं। फिलहाल प्रीति गांधी या आलोक भट्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनके एक्स अकाउंट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे, इसलिए इसकी वजह को लेकर कोई पक्की बात कहना सही नहीं होगा। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुराने पोस्ट की समीक्षा एक संभावित वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहले किए गए किसी निजी बयान को पार्टी की आधिकारिक राय समझे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में पुराने कंटेंट की जांच के दौरान अकाउंट की पहुंच सीमित करना एक तरीका हो सकता है। नई भूमिका के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का संदेश भी अधिक व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत होती है। निजी पोस्ट और पार्टी के आधिकारिक रूप के बीच अंतर साफ रहे, इसके लिए भी अकाउंट की सार्वजनिक पहुंच बदली जा सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के तुरंत बाद इन अकाउंट्स में बदलाव हुआ। इसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए दिमागी नक्सल वर्ग से सावधान रहने की नसीहत दी थी। पीएम ने खास तौर से युवा पीढ़ी को ऐसे वर्ग से बचाने की बात कही थी। इसे लेकर पहले तो जेंजी आंदोलन का चेहरा बने सीजेपी ने एतराज जताया और उसके बाद फिर अचानक पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताकर गर्व किया।
15: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
16: दिमागी नक्सली।
17: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कही, लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी।
15: दिमागी नक्सली। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
17: पीएम मोदी का इतना कहना था कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था और उनकी प्रतिक्रिया तीखी हैरतअंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। चिदम्बरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही तो कभी विपक्ष को अरब नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। रही सही कसर पीएम के बयान के अगले हिस्से में की गई टिप्पणी ने पूरी कर दी थी, जिसमें विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल का कनेक्शन युवाओं से जोड़ दिया।
15: मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
17: दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के सौरव दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की, तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदंबरम से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
16: 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकल कर सामने आ गया।
18: प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की कि संविधान को ना मानने वाले, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीची कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
16: चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है।
17: लाल किले से दिमागी नक्सली का जिक्र करने के पीछे सरकार एक तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की कामयाबी का जिक्र करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ शहरों कस्बों में पैठ बना चुकी वामपंथी विचारधारा के खतरे को अंडरलाइन कर रही थी, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2004 में वामपंथी उग्रवाद के अर्बन पर्सपेक्टिव आवर वर्क इन अर्बन एरियाज और 2013 की स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम से दो खुफिया दस्तावेज में जो खुलासे हुए थे वो संवैधानिक हिंदुस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ब्लूप्रिंट थे। इन दस्तावेज में तीन प्लान था। पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना, दूसरा था सभी शोषित पीड़ितों को एकजुट करना और तीसरा था पीएलजीए और पीएलए के सशस्त्र विद्रोह में मदद के लिए गुप्त लोगों की घुसपैठ कराना। हालांकि पिछले 20 साल में भारत से सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन इत्तफाक है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सियासी मुद्दे वंचितों, शोषितों और युवाओं के समसामयिक मुद्दों से मेल खाते हैं और इनका समर्थन करने वालों पर सियासी हमले होते हैं। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि दिमागी नक्सली सिर्फ वही हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन की बुनियाद जिस तरह पड़ी और अप्रत्याशित रूप से हुकूमत पर जनता का दबाव बना, उसमें सरकार के दिमाग की बत्ती ने खतरे का अलार्म बजाया है कि बिना किसी राजनीतिक बुनियाद और समर्थन के अगर एक आंदोलन मंत्री के इस्तीफे को मजबूर कर सकता है तो इसके पीछे की ताकत मामूली नहीं। और सरकार को आशंका है कि वर्षों से रोडमैप बनाकर काम कर रही वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ऐसे आंदोलनों के पीछे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ कर दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
19: वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर रहे कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राजस्थान में अमित शाह ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोला, तो आज दिन की शुरुआत ही बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद से की है।
16: ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सरतन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है।
20: तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है।
21: सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जैन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है।
22: पहले से वंदे मातरम का अपमान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, सब चीज का, राष्ट्रीय प्रतीक, अदालत, सबका कांग्रेस बार बार अपमान किया है केवल राजनीतिक हित के कारण।
19: हमला तीज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी, इसलिए पलटवार की कोशिश शुरू हुई।
1: हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना बढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है।
19: इमरान मसूद तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका धर्म वंदे मातरम पढ़ने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे।
1: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा।
19: कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते, इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
2: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है।
19: तो वंदे मातरम पर विवाद थमने के बजाय गहराता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में अभी चुनाव थोड़ी दूर है लेकिन अभी से सियासत में हैसियत की बात होने लगी है। अखिलेश यादव ने कभी अपने साथी रहे आरएलडी को बिना नाम लिए चवन्नी कह दिया है। पिछला विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद जयंत चौधरी ने चुनावों के बाद एनडीए का दामन थाम लिया था, अब अखिलेश ने उसी दगाबाजी पर वार किया है।
3: मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा?
23: हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले।
24: यूपी में 27 की सियासी चर्चा रुपया और चवन्नी पर चकर घिन्नी बन गई है। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी का बगैर नाम लिए जोरदार निशाना साधा।
23: अरे कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
24: दरअसल पिछले चुनाव में अखिलेश ने जयंत चौधरी को 33 सीटें दी थी लेकिन चुनाव के बाद जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए। अखिलेश उसी पर तंज कस रहे थे, अब आरएलडी पलटवार कर रही है।
25: माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उच्च टिप्पणी की गई है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि उनके पिता मुलायम सिंह को चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बनाया था। मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी थी और उसके बाद उन्हीं के पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में किस तरीके से धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, ये पूरा देश उसका गवाह।
24: दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों दावा करते हैं कि उनके कारण ही पिछले चुनाव में एक दूसरे को सीटें मिली थी लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़कर आरएलडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और दो लोकसभा की करीब 10 विधानसभाओं में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि आरएलडी को एनडीए के पाले से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी भड़काऊ बयान दे रही है।
26: जयंत चौधरी जी ने खुद से ही कहा था कि वो चोनी नहीं है जो पलट जाए, लेकिन उनको पलटने में देर नहीं लगी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को राज्यसभा ना भेज करके श्री अखिलेश यादव जी ने आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए श्री जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किया था लेकिन वो इतने एहसान फरामोश थे कि उन्होंने उनको पाला बदलने में उनको पलटने में टाइम नहीं लगा।
24: अब अखिलेश यादव के बयान को आरएलडी चौधरी जयंत सिंह ही नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह और पूरे किसान समाज का अपमान बता रही है।
27: अब देखना यह है कि चवन्नी अठन्नी और रुपए की सियासत में यूपी के लिए आरएलडी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई कहां तक जाती है और सियासी तौर पर इन बयानों के बीच किसका नफा किसका नुकसान होता है ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार। TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द। छात्रों में खुशी की लहर। आज तक से बोले देवेंद्र महतो, तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष। सोनम वांगचुक से की बात। आज तक की खबर से तेजी से हुआ असर। खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नवीन की नई टीम का ऐलान। स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव। पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा। 22 को होगी पहली मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला है बड़ा दाव। नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व। 8 चेहरे शामिल। राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि कैबिनेट ने JSSC और CGL परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 2014 में हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी की लहर है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने यह कहा कि वो आंदोलन तोड़ देंगे, लेकिन संघर्ष उनका ऐसे ही जारी रहेगा।
1: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
2: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था, उस

0: हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही कम मैंने पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है, हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे।
1: कितना संतुष्ट है अभी तक घोषणा?
0: अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में है। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए।
2: सीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
3: नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और खुद एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। इतने भी एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल पा रही हैं। नीट पेपर लीक के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा से परीक्षा कराने का ऐलान किया गया है।
4: तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया,
5: जो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा।
4: आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा।
6: 24 में नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, 2026 में नीट का फिर से पेपर लीक होता है।
7: एकदम से आप दो महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ किस बेसिस पे कर रहे हो।
8: एनटीए फिर हो गया फेल, अब की बार यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी। एनटीए के खिलाफ फिर फूटा गुस्सा, एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम हो रही है एजेंसी? एनटीए पर फिर उठे सवाल। एनटीए पर पिछली परीक्षा के सवाल, नई परीक्षा में रिपीट करने के आरोप।
9: एनटीए को बैन करवा के रहेंगे,
10: एनटीए को बैन करो।
8: क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही? आखिर खोट कहाँ है? ये तस्वीरें दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुख्यालय की हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
4: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
8: एनटीए के पुराने दाग अभी धुले भी नहीं है कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो रहा है। जी हाँ, नीट पेपर लीक, उसके चलते 21 छात्रों के सुसाइड के खिलाफ जंतर मंतर पर पूरे 36 दिन कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में आंदोलन चला। छात्रों ने लाठियां खाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन रुकता है। और अब भी नीट यूजी पेपर लीक मामले में इस समय सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अगस्त 2026 से ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालती सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर एक बार एनटीए फेल हो गया है। जी हाँ, एनटीए ने फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के

0: ये 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका खामियाजा आदित्य सिमरन जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप पूछेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 से ज्यादा अधिकारी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद बदले गए, वो एनटीए सिर्फ भांग खाकर पेपर नहीं सेट कर रहा, बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कैसे, सुनिए। यूजीसी नेट जून 2026 को इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थीं। समाजशास्त्रियों और अवधारणाओं का गलत नाम लिखा था। अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था। कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ प्रसारित होने का दावा भी किया गया था, हालांकि एनटीए ने लीक के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था। 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। एनटीए कहता है कि इन सब की वजह से अब 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे। लेकिन 2 महीने तक सन्नाटा खींचे रहे एनटीए को लेकर युवा नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ये ठगी है।
1: कितनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं, और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
2: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट 2 महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। मैम यहाँ पे बहुत बार ही आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम। सो वी वर होपिंग कि आंसर की आएगी, बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज की टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, PYQs रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
3: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
0: अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे। लेकिन इतने सब से क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई होगी? चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके छात्र PhD करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करेंगे, उस परीक्षा के पेपर में न अनुवाद सही है न व्याकरण। यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में 2 महीने का वक्त क्यों लग गया, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है।
4: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। आपने प्रोविजनल आंसर के लिए जो 1 हफ्ते में आती है उसके लिए आपने 30 दिन और लिए हैं। 30 दिन के बाद आपने फिर कमेटी बिठाई है, 4 घंटे में आप डिसीजन ले रहे हो इतने मेजर एग्जामिनेशन का।
0: एनटीए कहता है कि यूजीसी नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था। एनटीए ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बाद एक समिति बनाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बन जा रहा है? इन गलतियों को पहले देखने वाला कोई नहीं था।
5: ये गलती जानने के बाद, मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने एनटीए को लग गए, तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हो जो एनटीए ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा, ऐसी और भी गलतियां होंगी।
0: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर ये तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद एनटीए की तरफ से उठाए गए कदमों, खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनटीए में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट के 3 पेपर भी एनटीए ढंग से क्यों नहीं बना पाया। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आईटी सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अमित मालवीय 2015 से आईटी सेल के प्रमुख थे, उनकी जगह दीपक महस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
7: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं।
8: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेंगे। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी।
9: यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे?
8: देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
7: महस्के की सहायता सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को नियुक्त किया गया। लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिए। इसके चलते आम यूजर्स को उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखने बंद हो गए। हालांकि नए कन्वीनर दीपक महस्के और को कन्वीनर अरुण यादव के एक्स अकाउंट्स सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रीति गांधी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं और @Mrs. Gandhi हैंडल से पोस्ट करती आई हैं। उनकी पहचान बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए रही है। वो बीजेपी महिला मोर्चा के सोशल मीडिया से जुड़े काम में भी सक्रिय रही हैं। फिलहाल प्रीति गांधी या आलोक भट्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनके एक्स अकाउंट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे, इसलिए इसकी वजह को लेकर कोई पक्की बात कहना सही नहीं होगा। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुराने पोस्ट की समीक्षा एक संभावित वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहले किए गए किसी निजी बयान को पार्टी की आधिकारिक राय समझे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में पुराने कंटेंट की जांच के दौरान अकाउंट की पहुंच सीमित करना एक तरीका हो सकता है। नई भूमिका के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का संदेश भी अधिक व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत होती है। निजी पोस्ट और पार्टी के आधिकारिक रूप के बीच अंतर साफ रहे, इसके लिए भी अकाउंट की सार्वजनिक पहुंच बदली जा सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के तुरंत बाद इन अकाउंट्स में बदलाव हुआ। इसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए दिमागी नक्सल वर्ग से सावधान रहने की नसीहत दी थी। पीएम ने खास तौर से युवा पीढ़ी को ऐसे वर्ग से बचाने की बात कही थी। इसे लेकर पहले तो जेंजी आंदोलन का चेहरा बने सीजेपी ने एतराज जताया और उसके बाद फिर अचानक पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताकर गर्व किया।
10: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है।
11: दिमागी नक्सली।
12: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई कामयाबियां
11: नई चुनौतियां और नए लक्ष्य पर तमाम बातें कहीं, लेकिन मुल्क के सियासी हालात ऐसे कि सियासत दो लफ्ज ले उड़ी।
12: दिमागी नक्सली।
10: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था।
11: पीएम मोदी का इतना कहना था कांग्रेस और यूपीए के भागीदार राजनीतिक दलों के लिए काफी था, और उनकी प्रतिक्रिया तीखी हैरतअंगेज तरीके से मोर्चा उन्हीं पी चिदम्बरम ने खोला जिन्होंने भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। चिदम्बरम ने खुद को नक्सली बताते हुए गर्व करने की बात कही तो कभी विपक्ष को अरब नक्सल आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग बताने वाली बीजेपी की ओर से दिमागी नक्सल वाले नए अपशब्दों वाले वेरिएंट का आरोप लगाया। रही सही कसर पीएम के बयान के अगले हिस्से में की गई टिप्पणी ने पूरी कर दी थी, जिसमें विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल का कनेक्शन युवाओं से जोड़ दिया।
10: मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
11: दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद सीजेपी के सौरव दास ने युवाओं को नक्सली बताने वाले बयान पर टिप्पणी की तो पीछे से कांग्रेस के पी चिदम्बरम से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तक ने खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया।
13: 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकल कर सामने आ गया।
14: प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की कि संविधान को ना मानने वाले, समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, काटने वाले, प्रधानमंत्री जरा सी निगाह नीची कर लें, अपने इर्द गिर्द सारे वही मिलेंगे।
13: चिदम्बरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है।
11: लाल किले से दिमागी नक्सली का जिक्र करने के पीछे सरकार एक तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति की कामयाबी का जिक्र करना चाहती थी तो दूसरी तरफ शहरों कस्बों में पैठ बना चुकी वामपंथी विचारधारा के खतरे को अंडरलाइन कर रही थी, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान 2004 में वामपंथी उग्रवाद के अर्बन पर्सपेक्टिव आवर वर्क इन अर्बन एरियाज और 2013 की स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन नाम से दो खुफिया दस्तावेज में जो खुलासे हुए थे वो संवैधानिक हिंदुस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ब्लूप्रिंट थे। इन दस्तावेज में 3 प्लान था। पहला था कामकाजी वर्ग, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को आंदोलन के लिए तैयार करना, दूसरा था सभी शोषित पीड़ितों को एकजुट करना और तीसरा था PLGA और PLA के सशस्त्र विद्रोह में मदद के लिए गुप्त लोगों की घुसपैठ कराना। हालांकि पिछले 20 साल में भारत से सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन इत्तफाक है कि वामपंथी उग्रवादी संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सियासी मुद्दे वंचितों, शोषितों और युवाओं के समसामयिक मुद्दों से मेल खाते हैं और इनका समर्थन करने वालों पर सियासी हमले होते हैं। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि दिमागी नक्सली सिर्फ वही हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन की बुनियाद जिस तरह पड़ी और अप्रत्याशित रूप से हुकूमत पर जनता का दबाव बना, उसमें सरकार के दिमाग की बत्ती ने खतरे का ऐलान बजाया है कि बिना किसी राजनीतिक बुनियाद और समर्थन के अगर एक आंदोलन मंत्री के इस्तीफे को मजबूर कर सकता है तो इसके पीछे की ताकत मामूली नहीं। और सरकार को आशंका है कि वर्षों से रोडमैप बनाकर काम कर रही वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ऐसे आंदोलनों के पीछे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।
6: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार, TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षा रद्द, छात्रों में खुशी की लहर, आज तक से बोले देवेंद्र महतो, तोड़ूंगा अनशन, जारी रहेगा संघर्ष, सोनम वांगचुक से की बात। आज तक की खबर से तेजी से हुआ असर, खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जारी हुआ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल बने राष्ट्रीय महासचिव, पीयूष गोयल संभालेंगे कोषाध्यक्ष का जिम्मा, 22 को होगी पहली मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने चला है बड़ा दाव, नितिन नवीन की टीम में मिला बंपर प्रतिनिधित्व, 8 चेहरे शामिल, राजस्थान और गुजरात से भी 4-4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि कैबिनेट ने JSSC और CGL परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 2014 में हुई सभी छोटी बड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच की जाएगी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी की लहर है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने यह कहा कि वो आंदोलन तोड़ देंगे, लेकिन संघर्ष उनका ऐसे ही जारी रहेगा।
1: साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
2: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सब
1: देखिए, अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है, हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे।
2: कितना संतुष्ट है अभी तक घोषणा?
1: अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम CBI जांच, CID जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए।
3: DPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या TDPL के जितनी भी गतिविधियां यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
4: वार्ता हुई, लंबी बात बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि CGL एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पर हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि CGL का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा,
5: 11-13
4: आज सब होगा। मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम TDPL ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा। देखिए, हमने कहा था ना कि युवा हमारे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, उनकी जो भी मांग है, थोड़ा 19-20 होता है, हर बिंदु पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, बातें हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सीजीएल एग्जाम है जो उनकी जो प्रथम मांग थी वो रद्द होगा। मान लिया टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किया गया है वो सारे एग्जाम रद्द होंगे।
0: नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और खुद एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। इतने भी एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल पा रही हैं। नीट पेपर लीक के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा से परीक्षा कराने का ऐलान किया गया है।
5: तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा।
6: 24 में नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, 2026 में नीट का फिर से पेपर लीक होता है।
7: एकदम से आप दो महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो।
8: एनटीए फिर हो गया फेल, अब की बार यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी। एनटीए के खिलाफ फिर फूटा गुस्सा, एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम हो रही है एजेंसी? एनटीए पर फिर उठे सवाल। एनटीए पर पिछली परीक्षा के सवाल, नई परीक्षा में रिपीट करने के आरोप।
9: एनटीए को बैन करवा के
10: एनटीए को बैन करो।
8: क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही? आखिर खोट कहाँ है? ये तस्वीरें दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुख्यालय की हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
8: एनटीए के पुराने दाग अभी धुले भी नहीं हैं कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो रहा है। जी हाँ, नीट पेपर लीक, उसके चलते 21 छात्रों के सुसाइड के खिलाफ जंतर मंतर पर पूरे 36 दिन कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में आंदोलन चला। छात्रों ने लाठियां खाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन रुकता है। और अब भी नीट यूजी पेपर लीक मामले में इस समय सीबीआई की कानूनी कार्रवाई, अदालती सुनवाई और एनटीए के भीतर बड़े प्रशासनिक बदलाव चल रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अगस्त 2026 से ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अदालती सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर एक बार एनटीए फेल हो गया है। जी हां, एनटीए ने फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। रविवार को इनमें से यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका खामियाजा आदित्य सिमरत जैसे परीक्षार्थी, उनके परिवार और दक्षिता जैसे शिक्षकों को उठाना पड़ा है। आप पूछेंगे कैसे, तो पहले सुनिए और सोचिए कि जिस एनटीए के 40 से ज्यादा अधिकारी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद बदले गए, वो एनटीए सिर्फ भांग खाकर पेपर नहीं सेट कर रहा बल्कि दावा है कि एनटीए के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कैसे, सुनिए। यूजीसी नेट जून 2026 को इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थी, समाजशास्त्रियों और अवधारणाओं का गलत नाम लिखा था, अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था, कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की पीडीएफ प्रसारित होने का दावा भी किया गया था, हालांकि एनटीए ने लीक के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था, 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। एनटीए कहता है कि इन सबकी वजह से अब 3 विषय में परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, आगे सितंबर में पेपर करा लेंगे। लेकिन 2 महीने तक सन्नाटा खींचे रहे एनटीए को लेकर युवा नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ये ठगी है।
10: कितनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं, और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
7: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट 2 महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। मैम यहाँ पे बहुत बार ही आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम। सो वी वर होपिंग कि आंसर की आएगी, बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज की टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, PYQs रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
11: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
8: अब एनटीए वाले कह रहे हैं कि पेपर दोबारा करा लेंगे, दोबारा पेपर की फीस बच्चों से नहीं लेंगे, लेकिन इतने सब से क्या छात्रों के वक्त की बर्बादी, दोबारा परीक्षा देने के तनाव समेत दूसरे नुकसानों की भरपाई होगी। चिंता की बात यह है कि जो पेपर पास करके छात्र PhD करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता हासिल करेंगे, उस परीक्षा के पेपर में न अनुवाद सही है न व्याकरण। यहाँ तक कि पुराने पेपर से ही सवाल टीप दिए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि ये सब पता करने में 2 महीने का वक्त क्यों लग गया, या फिर लीक पेपर के दाग को व्याकरण की चूक और रिपीट सवाल के लपेटे में लाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है।
12: यहाँ पे री एग्जामिनेशन का मुद्दा कहीं से भी नहीं आया था। री एग्जामिनेशन उन सिनेरियोज में होता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की इंटेग्रिटी के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे आप लोग री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें कि आपने 40 दिन तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया। आपने प्रोविजनल आंसर के लिए जो 1 हफ्ते में आती है उसके लिए आपने 30 दिन और लिए हैं। 30 दिन के बाद आपने फिर कमेटी बिठाई है, 4 घंटे में आप डिसीजन ले रहे हो इतने मेजर एग्जामिनेशन का।
8: एनटीए कहता है कि यूजीसी नेट से जुड़े 3 विषय की परीक्षा में खामियों को केवल कुछ सवाल हटाकर दूर नहीं किया जा सकता था। एनटीए ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बाद एक समिति बनाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी पेपर आंख और दिमाग बंद करके बन जा रहा है? इन गलतियों को पहले देखने वाला कोई नहीं था।
13: ये गलती जानने के बाद मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने एनटीए को लग गए, तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हों जो एनटीए ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स, या जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा, ऐसी और भी गलतियां होंगी।
8: अब एक तरफ शिक्षा मंत्रालय पोस्ट डालकर ये तो बताता है कि शिक्षा मंत्री का काम भी धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद से देख रहे प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जी को हाल की समस्याओं के बाद एनटीए की तरफ से उठाए गए कदमों, खासकर पूरे सिस्टम में सुधार के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एनटीए में वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से पहले पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट के 3 पेपर भी एनटीए ढंग से क्यों नहीं बना पाया। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आईटी सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अमित मालवीय 2015 से आईटी सेल के प्रमुख थे, उनकी जगह दीपक महस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
14: बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। संगठन में हुए इस फेरबदल में डिजिटल और सोशल मीडिया विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। लेकिन नितिन नवीन की टीम में बीजेपी के आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया आईटी सेल हेड बनाया गया है। अमित मालवीय साल 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे, जबकि छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक और मीडिया एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दीपक 2014 से छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं।
15: प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी।
16: यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे?
15: देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
14: महस्के की सहायता सोशल मीडिया सह संयोजक के रूप में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को नियुक्त किया गया। लेकिन नई जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिए। इसके चलते आम यूजर्स को उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट दिखने बंद हो गए। हालांकि नए कन्वीनर दीपक महस्के और को कन्वीनर अरुण यादव के एक्स अकाउंट्स सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रीति गांधी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय रही हैं और @Mrs. Gandhi हैंडल से पोस्ट करती आई हैं। उनकी पहचान बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए रही है। वो बीजेपी महिला मोर्चा के सोशल मीडिया से जुड़े काम में भी सक्रिय रही हैं। फिलहाल प्रीति गांधी या आलोक भट्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनके एक्स अकाउंट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे, इसलिए इसकी वजह को लेकर कोई पक्की बात कहना सही नहीं होगा। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुराने पोस्ट की समीक्षा एक संभावित वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर पहले किए गए किसी निजी बयान को पार्टी की आधिकारिक राय समझे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में पुराने कंटेंट की जांच के दौरान अकाउंट की पहुंच सीमित करना एक तरीका हो सकता है। नई भूमिका के साथ सोशल मीडिया पर पार्टी का संदेश भी अधिक व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत होती है। निजी पोस्ट और पार्टी के आधिकारिक रूप के बीच अंतर साफ रहे, इसके लिए भी अकाउंट की सार्वजनिक पहुंच बदली जा सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के तुरंत बाद इन अकाउंट्स में बदलाव हुआ। इसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ कर दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
17: वंदे मातरम के कथित अपमान पर शहर शहर बीजेपी में उबाल है। कल बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े। उनके निशाने पर रहे कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। राजस्थान में अमित शाह ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोला, तो आज दिन की शुरुआत ही बीजेपी ने वंदे मातरम विवाद से की है।
18: ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सरतन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है।
19: तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है।
20: सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जैन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है।
21: पहले से वंदे मातरम का अपमान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय झंडा, सब चीज का, राष्ट्रीय प्रतीक, अदालत, सबका कांग्रेस बार बार अपमान किया है केवल राजनीतिक हित के कारण।
17: हमला तेज था, कांग्रेस बैकफुट पर थी, इसलिए पलटवार की कोशिश शुरू हुई।
22: हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना बढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है।
17: इमरान मसूद तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका धर्म वंदे मातरम पढ़ने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे।
22: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा।
17: कांग्रेस नेता ठीक से बचाव कर पाते, इसी दौरान कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार बचाव की कोशिश में ऐसा कह गए जिससे पार्टी और मुसीबत में फंस गई। देखिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा।
1: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है।
17: तो वंदे मातरम पर विवाद थमने के बजाय गहराता जा रहा है। आज तक ब्यौरा।
0: यूपी में अभी चुनाव थोड़ी दूर है, लेकिन अभी से सियासत में हैसियत की बात होने लगी है। अखिलेश यादव ने कभी अपने साथी रहे आरएलडी को बिना नाम लिए चवन्नी कह दिया है। पिछला विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद जयंत चौधरी ने चुनावों के बाद एनडीए का दामन थाम लिया था, अब अखिलेश ने उसी दगाबाजी पर वार किया है।
2: मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा?
3: हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले।
23: यूपी में 27 की सियासी चर्चा रुपया और चवन्नी पर चकर घिन्नी बन गई है। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी का बगैर नाम लिए जोरदार निशाना साधा।
3: अरे कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
23: दरअसल पिछले चुनाव में अखिलेश ने जयंत चौधरी को 33 सीटें दी थी, लेकिन चुनाव के बाद जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए। अखिलेश उसी पर तंज कस रहे थे, अब आरएलडी पलटवार कर रही है।
24: माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उच्च टिप्पणी की गई है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि उनके पिता मुलायम सिंह को चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के नेता बनाया था। मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी थी और उसके बाद उन्हीं के पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में किस तरीके से धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, ये पूरा देश उसका गवाह है।
23: दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों दावा करते हैं कि उनके कारण ही पिछले चुनाव में एक दूसरे को सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़कर आरएलडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और दो लोकसभा की करीब 10 विधानसभाओं में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि आरएलडी को एनडीए के पाले से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी भड़काऊ बयान दे रही है।
25: जयंत चौधरी जी ने खुद से ही कहा था कि वो चोनी नहीं है जो पलट जाए, लेकिन उनको पलटने में देर नहीं लगी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को राज्यसभा ना भेज करके श्री अखिलेश यादव जी ने आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए श्री जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किया था, लेकिन वो इतने एहसान फरामोश थे कि उन्होंने उनको पाला बदलने में उनको पलटने में टाइम नहीं लगा।
23: अब अखिलेश यादव के बयान को आरएलडी चौधरी जयंत सिंह ही नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह और पूरे किसान समाज का अपमान बता रही है।
26: अब देखना यह है कि चवन्नी अठन्नी और रुपए की सियासत में यूपी के लिए आरएलडी बनाम समाजवादी पार्टी की यह लड़ाई कहां तक जाती है और सियासी तौर पर इन बयानों के बीच किसका नफा किसका नुकसान होता है ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी ने अब आरक्षण की मांग शुरू कर दी है। निषाद पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री संजय निषाद ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि आरक्षण की मांग पूरी करने में कहीं देर न हो जाए। संजय निषाद की इस चेतावनी के पीछे मंशा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
27: यूपी में 27 के संग्राम की शुरुआत अभी नहीं हुई है, मगर समीकरण साधने की कोशिशें जरूर शुरू हो गई हैं। सीटों के लिए दबाव की राजनीति तेज हो गई है। यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है।
0: Yeah.
27: संजय निषाद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए अगर उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। दरअसल संजय निषाद की मांग है कि निषाद समाज और उससे जुड़ी उपजातियों जैसे केवट, मल्ला, बिंद, मझवार और अन्य मछुआरा जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। इसी वादे को लेकर वो पिछले चुनाव में उतरे थे, लेकिन अब तक उनका ये चुनावी वादा पूरा नहीं हो पाया है। अब वो आने वाले चुनाव की तैयारी इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। उधर यूपी के सीएम भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। आज यूपी में सीएम योगी ने 78,000 से अधिक उचित मूल्य की राशन दुकानों का लाभांश 90 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर 125 रुपए क्विंटल कर दिया। इसके अलावा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली भी शुरू की है। सीएम योगी ने इस मौके पर 2017 से पहले और 2017 के बाद की सियासत का फर्क समझाया।
4: उस समय की सत्ता में जो लोग आसीन थे, नियत उनकी खराब थी, उनकी नियत में खोट था। उनके भ्रष्ट आचरण की आंच से आप चाहते हुए भी अपने आप को बचा नहीं सकते थे, और परिणाम क्या होता था।
27: जैसे जैसे दिन गुजरेंगे यूपी में सियासी लोग अपनी अपनी तैयारियों को और धार देंगे। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
1: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
2: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
3: नहीं सर।
2: 12th किससे की हो?
3: 12th सर मेरा PCM से रहा।
2: कंपाउंड क्या होता है?
3: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
2: यही है भिख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
1: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
2: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।